0: देखे तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है। और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है, जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस पांचवें आरोपी की तलाश कर रही है जो एफआईआर में नामजद है।
1: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो तीनों। असद फरार था। असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
2: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने ऊपर तक बात पहुंचाई। इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे।
1: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
3: असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए। और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगे करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
4: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, इसे अन्य प्रदेश में घटना हुई होगी लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल का हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा।
1: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
0: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त। और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
1: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी आरोपी भी उसके दोस्त ही थे और इसीलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर पर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है।
1: दहला देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
6: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरी की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
7: सूर्यप्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्यप्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्यप्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्यप्रताप को घेरा जाता है। फरहान असद को चाकू देता है तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्यप्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
1: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था, उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
8: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
1: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या करते हैं, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
5: योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी। अब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत उबल रही है।

0: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है क्या तने कभी देखी है, और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कुओं से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस पे फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगे।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
4: सूर्या की नृशंस हत्या की इसी
3: का मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए उसका इलाज।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
5: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
6: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई, तो इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
7: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में, अभिगाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या, अभिगाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
8: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
9: बात ईरान अमेरिका तनातनी की, जो किसी भी वक्त अब महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया जो कि यह बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका हमले के लिए तैयार है।
10: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
11: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear aggressor.
10: हेग्सेथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है। हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की ओर, इसराइल और लेबनान की, जहां पर युद्ध तेज होता दिख रहा है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला तो किया है, हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं।
12: बेरूत, ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इजरायल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इजरायल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
13: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना। कृपया ध्यान दें, हिजबुल्लाह द्वारा बार बार युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
12: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
14: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्लाह लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती हैं, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
12: अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनन और इसराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर यह युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो।
9: UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पेरिस की सड़कों पर लाखों प्रशंसकों का जश्न देखने को मिला और कई जगहों पर लोगों का पागलपन भी।
15: एफिल टावर PSG के रगों में रोशन, पेरिस पर चढ़ा PSG का रंग, रुका डेरो शहर में गजब की आतिशबाजी, जश्न मनाती झूमती प्रशंसक, यादगार बनी पेरिस की रात। PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब की ऐतिहासिक जीत के बाद पेरिस पूरी रात जश्न में डूबा रहा। एफिल टावर को क्लब के नीले और लाल रंगों से रोशन किया गया, जबकि हजारों प्रशंसक ट्रोकाडेरो और शहर के कई इलाकों में जमा होकर आतिशबाजी और नारों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, पार्क दे प्रिंसेस स्टेडियम, ये बड़ी स्क्रीन पर मैच खुशी से झूमती समर्थक। पार्क द प्रिंसेस स्टेडियम में मैच देख रहे हजारों समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, जरा ये देखिए कैसे फ्लेयर्स जलाए, झंडे लहराए गए और समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। PSG ने फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरा चैंपियंस लीग खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग फाइनल, आर्सेनल 1 PSG 1, पेनल्टी शूटआउट PSG 4 आर्सेनल 3। जैसे ही जीत की पुष्टि हुई, पेरिस की सड़कों पर प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोग चलती कारों पर चढ़कर जश्न मनाते दिखे। कहीं स्पाइडरमैन की वेशभूषा में समर्थक नजर आए,
16: तो कहीं हजारों की भीड़ पटाखों और नारों के बीच जीत का उत्सव मनाती दिखाई दी। एक खेल के लिए इतना पागलपन, शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़पें देखने को मिली। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ पीएसजी ने लगातार दूसरी बार यूरोप का सबसे बड़ा क्लब खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर फुटबॉल का जुनून कई जगहों पर बेकाबू भी नजर आया। जश्न, आतिशबाजी और पुलिस कार्रवाई के बीच पेरिस की ये रात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आज तक यूरोप।
9: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
17: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जीत लगातार दूसरी खिताब पर कब्जा, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर मना जश्न। बंगाल में शुभेंदु सरकार का कैबिनेट विस्तार, आज 35 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, अनुभवी और युवा नेताओं के बीच तालमेल की कोशिश। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट, आलाकमान के साथ शिवकुमार और सिद्धारमैया की बैठक। दस राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी का विक्ट्री प्लान तैयार, पीएम मोदी के आवास पर बड़ी बैठक, मोदी सरकार के 12 साल के सफर पर भी महामंथन। बदलते मौसम की दिल दहलाने वाली तस्वीरें, विकासनगर में पानी की तूफान रफ्तार, जैसलमेर में रेतीले बवंडर से हालात बिगड़े, आज दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट।

0: नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, और वो बड़ी खबर ये कि आरसीबी दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बन गई है। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर विराट की सेना ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विराट इस जीत के हीरो रहे तो वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कप खिताब जीता। तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पर्पल कैप पर कब्जा किया। आरसीबी की जीत के बाद फैंस का जोश हाई है, रात भर सड़कों पर जश्न मनाया गया। बेंगलुरु ने एक बार फिर आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उसने गुजरात को 5 विकेट से मात दी। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। ये देखते हैं फाइनल का ये पूरा एक्शन।
1: ये लम्हे यादगार है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर चैंपियन। ये जश्न शानदार है, 2026 अगेन द ये विराट विजय का ऐसा सिलसिला है जो सालों तक फैंस को गर्व करने का मौका देता रहेगा। बेंगलुरु ने फिर जीता आईपीएल खिताब। फाइनल में गुजरात को दी 5 विकेट से मात। बेंगलुरु ने हासिल की विराट विजय। शुरू से लेकर आखिर तक, चौकों से लेकर छक्कों तक, मैदान के हर कोने तक विराट कोहली ही छाए रहे। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इम्तिहान बड़ा था। वेंकटेश अय्यर के साथ ओपनिंग करने उतरे विराट ने 5 ओवर होने से पहले ही 63 रन की साझेदारी कर डाली। फिर टीम को 2 झटके लगे तो विराट ने जीत की मंजिल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अपने ही अंदाज में वो रन बनाते रहे। आखिरकार उनकी 75 रन की पारी ने गुजरात के अरमानों पर पानी फेंक दिया। फिर आया वो लम्हा जब विराट के मन की मुराद पूरी हो गई, विजयी सिक्सर लगाने की। 156 रन का लक्ष्य दिया था गुजरात ने। टॉप ऑर्डर फ्लॉप, हाफ सेंचुरी जमाई थी सुंदर ने। गुजरात ने तो अपने ही मैदान पर हाहाकारी शुरुआत की थी। हालात इतने बदतर थे कि 26 रन होते होते दोनों सलामी ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। लगा कि गुजरात की टीम शायद शुरुआती झटकों से उबर जाएगी, लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 100 रन होने से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट होकर पवेलियन में आराम फरमा रही थी। एक छोर पर वॉशिंगटन सुंदर अकेले ही लड़ते रहे, रन बनाते रहे और किसी तरह हाफ सेंचुरी जमा कर गुजरात का स्कोर 150 के पार ले जाने में कामयाब रहे। आज तकवीरों
0: तो बेंगलुरु की खिताबी जीत में विराट कोहली ने अहम किरदार निभाया। उनके 75 रनों की पारी की बदौलत बेंगलुरु को 5 विकेट की जीत दिलाई। पूरे सीजन में 675 रन बनाने वाले विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। आइए देखते हैं उनके इस शानदार सीजन पर रिपोर्ट।
1: मैदान का हर कोना विराट के शॉट से गुलजार हो रहा था। गुजरात के घरेलू मैदान में कोहली कोहली गूंज रहा था। आखिरकार 75 रनों की उनकी इस पारी ने बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए विराट ने। 9 चौके 3 छक्के जमाए विराट कोहली ने। इस सीजन 675 रन बनाए विराट ने। पूरे सीजन गदर ढाता रहा विराट कोहली का बल्ला। उनके तेवर, उनकी ताकत और उनकी तकनीक ने बेंगलुरु की कामयाबी की ऐसी इबारत लिख दी कि एक के बाद एक विरोधी सरेंडर करते चले गए। वो आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिसने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हों।
2: देखिए, वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए। शायद वो ये भी चाहते होंगे कि 155 के बदले अगर 255 होते तो उनका खुद का शतक भी बन जाता। तो यही तो मतलब इसी की वजह से तो उनको तो चेस मास्टर कहा जाता है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है, वो आत्मविश्वास है और वो एक जिद है दिखाने के लिए कि जब कोई चेस करना हो, कोई भी स्कोर चेस करना हो, तो उनके बल्ले से सारे रन बन सकते।
1: जाहिर है टीम की कामयाबी में करिश्माई योगदान देने के बाद हौसला बढ़ता है और दिल को एक सुकून मिलता है। सपने के एक बार फिर साकार होने से बेहद खुश हैं विराट। विराट ने इन लम्हों के लिए सालों तक इंतजार किया है। उनकी कप्तानी से पहले भी और कप्तानी के दौरान भी खिताब हमेशा दूर ही फिसलता रहा। अब उनके बल्ले ने लगातार 2 साल तक बेंगलुरु की विराट विजय की पटकथा लिखी तो एक बार फिर हर फैन यही कह रहा है कि विराट जैसा कोई नहीं। आज तक ब्यूरो।
0: एक तरफ विराट तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल सीजन में जो कर दिखाया उसे देखकर सभी हैरान है। वैभव ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से ऑरेंज कैप अपने नाम किया।
1: राजस्थान रॉयल्स भले आईपीएल 2026 में ट्रॉफी नहीं जीत पाई लेकिन इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोला। 15 साल के युवा बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया है और ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए। 732 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे स्थान पर रहे। साई सुदर्शन ने इस सीजन में 722 रन बनाए। इतना ही नहीं वैभव ने इस सीजन में कई कीर्तिमान कायम किए हैं। वो इस सीजन के सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी हैं। वैभव ने पूरे सीजन में कुल 72 सिक्सर जड़े जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला है। वैभव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। इस खिताब की दौड़ में वो खिलाड़ी शामिल थे जिनका जन्म 1 अप्रैल 2000 के बाद हुआ। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी वैभव के नाम रहा जिसके लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप अपने नाम की तो वहीं रबाडा ने भी खिताबी मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। गुजरात टाइटंस आईपीएल सीरीज गंवा बैठी लेकिन टीम के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पर्पल कैप अपने नाम कर लिया। लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहने वाले भुवनेश्वर कुमार इतिहास रचने से चूक गए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: आईपीएल में आरसीबी की खिताबी जीत का जश्न देर रात सड़कों पर मनाया गया। तिरंगे के साथ स्टेडियम के बाहर फैंस ने जमकर धूम मचाई। ढोल नगाड़े पर नाच गाना चला। जश्न ऐसा था मानो पहले कभी ना हुआ।

0: हाथ में तिरंगा ढोल की थाप पर नाचते गाते फैंस। जश्न की ये तस्वीर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की है। अंदर विराट की सेना गुजरात टाइटंस को धूल चटा रही थी और बाहर आरसीबी फैंस का जोश हाई हो रहा था। और जब विराट विजय का ऐलान हुआ तो माहौल देखने लायक था।
1: आरसीबी अगर जीती है तो उसकी वजह क्या है? क्या वजह?
2: विराट कोहली।
1: क्या वजह?
3: विराट कोहली।
4: जितना विराट कोहली है उतना भुवनेश्वर कुमार,
5: चेस मास्टर विराट कोहली,
6: कैप्टन सीनियर भाई रजत पाटीदार
7: और पूरी पाटीदार पूरी टीम का भी सपोर्ट है। एक साथ होकर खेली और आज फाइनली अच्छा कोई बोल रहा था एक वर्ल्ड एक एक ट्रॉफी ने जीत पा रहे अब जो
0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता तो बधाइयों का तांता लग गया।
8: रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को बधाई देता हूँ, आरसीबी को बधाई। बैक टू बैक चैंपियन बने और शायद यही क्रिकेट की लोकप्रियता है कि गुजरात का स्टेडियम हो, गुजरात की टीम हो और स्थानीय टीम के साथ साथ आरसीबी के भी खूब प्रशंसक यहाँ पर थे। मुझे लगता है यही क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है कि आप जीटी की होम ग्राउंड में खेल रहे हो लेकिन आपको समर्थन पूरा मिल रहा है। तो अच्छी क्रिकेट के प्रशंसक हर जगह पर हैं और ये क्रिकेट की बड़ी जीत है आरसीबी के साथ साथ।
0: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। दृढ़ संकल्प, धैर्य और सच्चे चैंपियन के जज्बे के साथ टीम ने एक बार फिर बेंगलुरु को गौरवान्वित किया है। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी चैंपियंस जब स्टेडियम से बाहर निकले तो चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। कुणाल पांड्या के हाथों में ट्रॉफी नजर आई और ट्रॉफी के साथ सेल्फी का क्रेज भी दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
9: चलो रुक करते हैं अगली खबरों का। 28 मई यानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि सूर्या का दोस्त निकला, उसी के दोस्त जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर बुलाया फिर उसका गला रेत दिया। इस हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही थी, विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार किया मगर मुख्य आरोपी असद फरार था। पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा, वही असद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया।
10: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला। मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या चौहान की कुर्बानी। मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत। मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद खोड़ा वापस लौटा था। ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी। जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
11: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी का भी अभियान चलाया गया था। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
10: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां नहीं, बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
12: ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है, और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है, जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस पांचवें आरोपी की तलाश कर रही है जो एफआईआर में नामजद है।
10: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो तीनों। असद फरार था। असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही हैं कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
3: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया, और जो 6 युवक है उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए, और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
10: असद इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सूर्या के पड़ोसी कहते हैं कि असद जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बाहर से पैसा मिल रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ।
13: असद भी यही रहता है, और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यही रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। जिस तरीके से एक बच्चे को दिन में 3 बजे सबके सामने कुर्बानी देने का प्रयास किया, मतलब कुर्बानी दी गई है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इनका। आगे ये कहीं ना कहीं इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके साथ बड़ी बड़ी फंडिंगे करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जुड़ जाती, और कल असद को बड़े बड़े वकीलों को हायर करके छोड़ा लिया जाता, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक बड़ा नासूर समाज के लिए और देश के लिए बनता।
14: हम इस घटना को एक न्याय देने की प्रक्रिया के साथ देखते हैं, इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने, इसे अन्य प्रदेशों में घटना हुई होगी लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रदेश में मिलता है, यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा उसे उसका रिजल्ट मिलेगा, यही करके दिखाया है कल हमारी प्रशासन पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी लोगों ने ये दिखाया कि जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।
10: अब जब असद मारा गया तो सूर्या के परिवार में संतोष है।
12: सुना कि जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार में एक संतुष्टि का माहौल है इस वक्त, और पिछले 2 दिनों से जो यहाँ माहौल खराब हो रहा था वो माहौल कहीं ना कहीं अब खोरा कॉलोनी में शांत होता हुआ दिख रहा है।
10: असद का एनकाउंटर बताता है कि यूपी पुलिस अपने उसी मॉडल पर चल रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया है। अब तक सूर्या चौहान हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, असद मारा जा चुका है और 5वां आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह और मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो।
9: सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी के आरोपी भी उसके दोस्त थे, इसलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर बुलाया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है। अब वो तस्वीरों में भी सामने आई है जिसमें सूर्या चौहान को असद और उसके साथी मिलकर मार रहे हैं, मगर बताया जा रहा है कि सूर्या को चाकू से रेतने वाला असद ही था। हैरानी इस बात की है कि सूर्या का कत्ल करने के लिए असद को उसके पिता ने ही कहा था।
10: देने वाली ये तस्वीरें बकरीद के दिन की हैं। असद और उसके दोस्त आतिफ, नवाब, फरहान और उसका एक साथी सब मिलकर सूर्या चौहान पर टूट पड़े थे, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर रहे थे। लेकिन सूर्या चौहान की हत्या के पीछे की जो साजिश है वो दहशत में डालने वाली है। बिल्कुल जानबूझकर असद ने सूर्या चौहान को घर बुलाया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक था।
15: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है ये हम तुम्हें दिखाएंगे। और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
16: बात सिर्फ इतनी नहीं थी, साजिश और भी गहरी थी। इस हत्याकांड में असद का पिता भी शामिल था। सूर्या चौहान को मारने के लिए चाकू फरहान ने असद को दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि इसकी कहानी अब यही खत्म कर दो।
17: सूर्यप्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्यप्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्यप्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्यप्रताप को घेरा जाता है। फरहान असद को चाकू देता है तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्यप्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
16: यानी जिस बाप को यह अपराध रोकना था उसी ने अपने बेटे को हत्या करने के लिए कहा और फिर सब ने मिलकर सूर्या चौहान का गला रेत दिया।
11: देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा।
16: सूर्या चौहान को मारने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और असद को उसके अपराध की सजा मिल गई। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो सवाल खड़े करता है कि असद जैसे युवकों के दिमाग में इतना जहर कहां से भरा जा रहा है कि वो अपने ही दोस्त की हत्या कर दें, वो भी बेवजह। अरविंद ओझा, अंशुल सिंह के साथ मयंक गौर, गाजियाबाद आज तक।
9: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि अपराधियों को खत्म करने के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी है। उनके बयान के 24 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर हो गया। कल डिप्टी सीएम ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी और अब जब असद का एनकाउंटर हो गया है तो यूपी की सियासत भी उबल रही है। एक पक्ष वो है जो एनकाउंटर को सही बता रहा है और पुलिस को धन्यवाद दे रहा है, तो दूसरी तरफ एक विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि सूबे में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर करके सरकार की छवि बचाने की कोशिश कर रही है।

0: हत्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: एक दिन पहले योगी सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश के सियासत में बवंडर ला दिया। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से एनकाउंटर की व्याख्या करने लगे।
2: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है क्या तने कभी देखी है, और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस में फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
1: संगीत सोम हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद वो एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं।
2: इससे खराब मानसिकता नहीं हो सकती, और जिस तरीके की मानसिकता ये जगह जगह बनाई जा रही है, जिस तरीके की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता को यहीं कुचलना बहुत जरूरी है। ये मानसिकता अगर नहीं कुचली गई तो ये दूसरा लेबनान और पाकिस्तान बनने में बहुत दिन नहीं लगेगा।
1: उधर असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा सूर्या चौहान के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा भी दिया कि सरकार परिवार के साथ है, हर संभव मदद मिलेगी।
3: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरशद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया। सूर्या के

0: करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए वो तो उसका इलाज हो
1: असद।
0: रहा।
1: बीजेपी बार बार कह रही है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़े या अपराध छोड़े, वरना अंजाम यही होगा।
2: देखिए, अपराध हो या अपराधी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, और उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंदर सुरक्षा और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करती रही है। और जो अपराधी हो या जो अराजक तत्व हो या जो अपराध कर करके अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित घूमते रहे हों, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो समाज की सुरक्षा के लिए और समाज के सौहार्द के लिए जरूरी है।
1: योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह इसमें भी खोट नजर आता है।
3: तो एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था? पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए, बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपी में पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है।
4: फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में, अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है। विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
1: विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ खुला ऐलान पहले ही कर रखा है। एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों से निपटने के लिए हिंसा भी जरूरी है।
5: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को मात दी थी और इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी। अपराध के खिलाफ योगी की सख्ती ही उनके दल की ताकत है। जाहिर सी बात है कि 27 के समर में ये मुद्दा फिर से रफ्तार भी पकड़ेगा और धारदार भी होगा। आज तक ब्यूरो।
6: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
8: चंद्रमा का कौन सा है रत्न जो आपके मन को मजबूत कर सकता है? इस रत्न के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या हैं? इस रत्न को पहनने का तरीका क्या है? क्या है चंद्रमा के रत्न की विशेषताएं और प्रयोग विधि? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
9: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें।

आईपीएल में बेंगलुरु की शानदार जीत, लगातार दूसरी खिताब पर कब्जा, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर मना जश्न। बंगाल में शुभेंदु सरकार का कैबिनेट विस्तार, आज 35 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, अनुभवी और युवा नेताओं के बीच तालमेल की कोशिश। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट, आलाकमान के साथ शिवकुमार और सिद्धारमैया बैठक करेंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी का विक्ट्री प्लान तैयार, प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बड़ी बैठक, मोदी सरकार के 12 साल के सफर पर भी महामंथन होगा। बदलते मौसम की दिल दहलाने वाली तस्वीरें, विकासनगर में पानी की तूफान रफ्तार, जैसलमेर में रेतीले बवंडर से हालात बिगड़े, आज दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट।

0: स्वागत है ब्रेक के बाद आपके। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। तो शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर के साथ जिसका सीधा असर हम पर आप पर होगा। हफ्ते के पहले दिन महंगाई का झटका लगा है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज से बढ़ गए हैं। सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि छोटू सिलेंडर, वही 5 किलो वाला। जब किल्लत होने लगी, सरकार ने कहा 5 किलो वाला सिलेंडर मिलेगा, वो 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी आज से महंगा हो चुका है। तो 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 42 रुपए दिल्ली में बढ़ा दी गई है, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत देश की राजधानी में 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। तो 53 रुपए कीमत कोलकाता में भी बढ़ गई है। अब कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत होगी 3,255 रुपए 50 पैसे। अब वो 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर जिसको FTL कहते हैं, उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई है। उसकी कीमत हो गई है 11 रुपए और अब वो दिल्ली में 821 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। अब तो आप समझिए कि कमर्शियल सिलेंडर बढ़ेंगे तो रेस्टोरेंट में खाना पीना और इंडस्ट्रियल जहां भी इस्तेमाल होता है उस पर फर्क पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फर्क पड़ेगा। और छोटू सिलेंडर खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वर्कफोर्स है, लेबर है, मजदूर हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, सप्ताह का पहला दिन और एक झटका तो लग चुका है कमर्शियल सिलेंडर का इम्पैक्ट, लेकिन उससे ज्यादा वो छोटू सिलेंडर ही आया था कि महंगाई में और खासकर जब किल्लत हुई तो लोगों को मिले। तो अभी अब सरकार क्या कह रही है? दूसरा, अभी ये यहां रुक जाएगा या अभी ये चल रही जो सीरीज चल रही है महंगाई की, इन्फ्लेशन की EMI, ये भी बढ़ेगी?
1: बिल्कुल आशुतोष, अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 महीनों की, तो लगभग 4 बार कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। और अगर ताजा दामों की बात करें तो 42 रुपए 19 किलोग्राम वाला जो कमर्शियल सिलेंडर होता है उसके दाम 42 रुपए जितने बढ़ा दिए गए, जो की अब 3,113 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। और साथ में अगर हम कोलकाता की बात करें तो ये 53 रुपए के आसपास बढ़ा दिए गए, जहां पर 3,255 रुपए 50 पैसे के आसपास ये सिलेंडर अब मिलेगा। इसी के साथ जैसा आपने खुद बताया कि जो छोटे सिलेंडर होते हैं उनका दाम भी 11 रुपए के आसपास बढ़ा दिया गया, यानी अब वो 821 रुपए 50 पैसे दिल्ली में उसका दाम रहेगा। ये कहीं ना कहीं महंगाई को कहीं ना कहीं दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट में खाना बहुत महंगा हो जाएगा, साथ साथ कई अलग अलग चीजों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 4 बार ये दाम बढ़ चुके हैं। 7 मार्च को 115 रुपए बढ़ाए गए थे, 1 अप्रैल को लगभग 195 रुपए बढ़ाए गए थे, और एक रिकॉर्ड जो वृद्धि की गई थी वो 1 मई को की गई थी, जिसमें 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ाए गए थे। लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो 42 रुपए बढ़ा दिए गए हैं कमर्शियल LPG सिलेंडर के ऊपर, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि कैसे आने वाले दिनों में ये दाम और भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और अलग अलग मंत्रालयों में सरकार में के मंत्रालयों में बात की है तो साफ ये कहा गया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो तेल कंपनियां हैं उनको लगातार नुकसान हो रहा है, अगर प्रतिदिन के नुकसान की बात करें तो लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है। इसीलिए लगातार चाहे वो LPG हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इनके दामों में वृद्धि लगातार दिख रही है।
0: इसका सीधा असर ये भी है कि एक तो रेस्टोरेंट में खाना पीना बहुत महंगा होगा, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल उद्योग जगत में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है, जहां पर क्लीन फ्यूल की जरूरत होती है, और ऐसे में ये एक बड़ा झटका। बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहीं अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कुछ ही मिनटों में 4 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील, तो कहीं हाईवे पर वाहनों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। कहीं 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग ने आसमान को धुएं से ढक दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो डराती हैं, चौंकाती हैं, व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। कुछ दिखा दें आपको बड़ी ऐसी हैरान कर देने वाली खबरें जो देखकर आप भी सोचेंगे कि आखिर ये कैसी मुसीबत आई है। अब बात मौसम की, क्योंकि अब तक सूरज आंखें दिखा रहा था लेकिन अब मौसम डराने लगा है। राजस्थान और उत्तराखंड से ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत 19 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्वी भारत में है, ये अलर्ट पूर्वी भारत से लेकर के पश्चिमी भारत, इसी के साथ उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के भी कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किए। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए। विरासनगर में अचानक ये झरने ही बदल में बदल,
2: ये खौफनाक तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर की है। जिड्डो के पास यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पहाड़ गिरते झरने ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि सड़क को निगलता चला गया। ऊपर झरना, नीचे खाई, पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो जहां था वहीं थम गया। सड़क पर उफनते झरने को देखकर चारधाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु ही नहीं, वहां से गुजर रहे राहगीरों के भी हाथ पैर फूल गए। एक तरफ पानी का प्रहार तो दूसरी तरफ तूफानी बवंडर। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच अचानक आए तूफान ने हाहाकार मचा दिया। ये रेतीला बवंडर इतना विशाल था कि कई किलोमीटर के इलाके को अपने चपेट में ले लिया। अचानक पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भीषण गर्मी से तप रहे उत्तरी राज्यों में भी एक बार फिर से आंधी और बारिश का प्रहार होने वाला है। मौसम विभाग ने आज यूपी, दिल्ली और बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश होगी और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश, तेज आंधी, गरज चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब आईएमडी का जो भारी बारिश का अलर्ट है, देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व से लेकर के उत्तर और दक्षिण, इन इलाकों में आईएमडी का भारी बारिश का अलर्ट है। मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसी के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के कई हिस्सों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और उन हवाओं का असर हमने पिछले दो दिनों में राजस्थान से आती हुई उस धूल भरी आंधी और सैंड स्टॉर्म में देखा है। तो केरल, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। राहत की बात यह है कि देश के अधिकांश हिस्सों से हीट वेव का असर अब काफी कम हो गया है। यानी दिल्ली एनसीआर में अगर आप होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एयर कंडीशन रात को 11 बजे बंद किया जा सकता है, क्योंकि तापमान, वार्मिंग नाइट जो थी कंडीशन, वो कम हो चुकी है। गरज चमक के साथ तेज हवाओं का जो अलर्ट है वो कहां, वो भी आपको बता देते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये जो पूरा भारत का आप बेल्ट देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के ये जो पूर्वी भारत का हिस्सा है, इन इलाकों में दरअसल यहां पर भी तेज हवा चल सकती है, आपको बादलों का गरजना सुनाई देगा, बिजली गिर सकती है और इसी के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना है, जिसके चलते जो फलों की खेती है उस पर असर पड़ेगा। ओलावृष्टि का अलर्ट कहां है वो भी बता देते हैं। खासकर किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यह है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर फलों की खेती है, सीजनल फ्रूट्स हैं, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ओलावृष्टि, तेज हवाओं के साथ बारिश और ये सब जून के महीने में हो रहा है। कहां तो नौतपा चल रहा था, लेकिन पिछले चार दिनों से मौसम ने जो करवट बदली है, एक तरफ तापमान जो बढ़ती थी उससे राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दूसरा साइड इफेक्ट देखने को मिला है। पहाड़ों पर भी अब खतरा इससे बढ़ जाएगा और उसी के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं इसके चलते भी जानमाल के नुकसान के खतरे की आशंका बनी रही। अब देखिए कि बारिश, तूफान, मौसम और उसका, ये देखिए अब राजस्थान की आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए जैसलमेर में कैसे रेतीला तूफान उड़ा, आपको लग रहा हॉलीवुड की किसी एनिमेटेड फिल्मों का ये सीन है, लेकिन इसके चलते पूरा का पूरा शहर जो है वो बादलों के गुबार में, धुएं, धूल के गुबार में था। ये देखिए ऐसा लग रहा है दिन में ही रात हो गई हो। चले रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई के पॉश कफ परेड इलाके में स्थित कन्वल मेंशन इमारत में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिली तो दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत बचाव अभियान शुरू किया गया और शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग इमारत के जिस हिस्से में लगी उसके बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली और घटना के दृश्य डीएमसी द्वारा जारी किए गए। ये देखिए यहां पर आग लगी और उसके बाद राहत बचाव कार्य चलाया गया, भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मालवा में देर रात बस स्टैंड के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास की गुमटियां, दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आग के लपटों में ऑटो पार्ट समेत कई दुकानों का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिली तो पुलिस, नगर पालिका, दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।
3: I'm going to go.
0: हादसे की अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां कानपुर वाराणसी हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसा सोराव इलाके के कुरगांव के पास हुआ, जहां रिफाइन तेल से भरा एक कंटेनर कथित तौर पर एक कार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया, दूसरे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते देखते ट्रक आग में धू धू कर जलने लगा। आग से उठता धुएं का गुबार दूर तक आसमान में दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सामान्य कर दिया। अगली खबर भी प्रयागराज से ही, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही का खतरनाक नजारा सामने आया है। सिविल लाइन्स इलाके में कथित तौर पर शराब के नशे में एक कार चालक ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। कार ने कई वाहनों को टक्कर भी मारी और फिर डिवाइडर पार करते हुए सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को एकदम नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ा। पूरी घटना वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें कैद हुई। इसके बाद कार की रफ्तार और टक्कर कितनी भयानक थी ये देखिए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। अब सिविल लाइन्स पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से। शालीमार बाग इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान एक बिल्डिंग के जमीन ध्वस्त होने की तस्वीरें सामने आई, जिसमें बुलडोजर इमारत को गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ लोगों की रिहाइश थी, प्रशासन ने कहा कि ये सारी रिहाइशें अवैध हैं और सालों तक लोग इस आशियाने में रहते रहे, अपने खून पसीने की कमाई से अपना घर बनाया और अब उसके बाद पूरे इलाके को यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। शालीमार बाग वो इलाका और देश की राजधानी का, और अब यहाँ लोगों के वो घर तोड़े जा रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। एक और सनसनीखेज वारदात यहां सामने आई है। 24 साल के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक अन्य पैरा एथलीट को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ में हत्या की बात कबूल करने का दावा किया है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में।
3: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
4: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
3: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: उधर कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्णा को अब उत्तर प्रदेश का स्थायी पुलिस प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। आज तक से खास बातचीत में डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
5: माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं के तहत उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 8-9 सालों में जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है वो नीति लगातार जारी रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि एक सोच में बदलाव है। इस सोच में बदलाव के साथ आपने देखा होगा कि जब भी छोटी से छोटी घटना भी होती है, छोटे से छोटा अपराध भी होता है, उसके प्रति भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उस कानून के तहत जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कार्रवाई करती है और उन अपराधियों को सजा दिलाने का कार्रवाई करती है। तो ये प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ नागरिकों विशेष तौर पर महिलाओं में सुरक्षा का भाव हो, व्यापारियों में सुरक्षा का भाव हो, अपराधियों में भय की भावना हो, इस दिशा में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न तरीकों से विभिन्न प्राथमिकताओं के साथ और विभिन्न स्ट्रेटेजीज के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य कर रही है जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। तो वो भी हमारी प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी।
6: सर एक सवाल कि आपने अपराधियों के नियंत्रण की बात की, अपराध नियंत्रण की, तो एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पुलिस करती है, आज भी लखनऊ में भी एनकाउंटर हुए, गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस की इन कार्रवाइयां भी रहती हैं।
5: देखिए ऐसा है कि ये एनकाउंटर आपका मतलब मीडिया का वर्ड है, पुलिस सभी मामलों में एक समान कार्रवाई करती है, कानून के सम्मत कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस साल में लगभग 6 लाख अपराधियों को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है। नेचुरल तौर पर इसमें अधिकतर अपराधी ऐसे होते हैं या जो अधिकतर आरोपी ऐसे होते हैं जो कि कानून के दायरे में रह करके पुलिस उनको अरेस्ट करती है या कानून के दायरे में रह करके पुलिस के पहुंचने पर वो पुलिस के सामने प्रस्तुत होते हैं और उनको विधिक प्रावधानों के तहत उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो कि भागने का प्रयास करते हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, कुछ मनभर टाइप के होते हैं जो कि बहुत ही दुर्दांत टाइप के और डेस्परेट टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं और उनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इस बात को इंडिकेट करती है कि उनके मन में ना तो कानून का भय है ना उनको मानवीय जीवन का कोई मूल्य उनके दिमाग में है और वो पुलिस को देख करके या पुलिस को की घेराबंदी को देख करके पुलिस के ऊपर भी फायर करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे समय में नेचुरली अब पुलिस का मनोबल ऊंचा है, ऐसे समय में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आत्मरक्षार्थ जो आवश्यक बल प्रयोग करते हैं उसमें कार्रवाई करते हैं। इसमें कुछ अपराधी घायल होते हैं, कुछ अपराधी जो है वो मारे जाते हैं।
0: अरब खबर पश्चिम एशिया से, जहां तनाव के चलते पूरी दुनिया संकट में है, ईरान अमेरिका तनातनी किसी भी वक्त अब एक महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। इसका इशारा खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया है। ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया है जो बता रहा है कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिका अब हमले के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान से डील हो सकती है बशर्ते कुछ मुद्दों पर वो सहमति बने। देखिए खास रिपोर्ट।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अवतार दुनिया के लिए एक संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी।
1: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our president, who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. Iran is the clear...
0: हेक्सेथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है और हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो।
2: तो अब रुख करते हैं युद्ध के एक दूसरे मोर्चे के, जहां इसराइल और लेबनन में फिर से युद्ध तेज हो गया है। इसराइल ने लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया, तो हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
3: बेरूत, ये लेबनन पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनन की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनन पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनन और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इजरायल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्ला ने इजरायल पर अपने हमले रोके। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनन की सीमा के अंदर कूच कर सकती है।
4: लेबनन के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनन के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्ला लेबनन में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनन के निवासियों को जहरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
3: इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनन की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं।
5: इजरायल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover. Interested in what's going on around the world?
8: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
7: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
9: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: चंद्रमा का कौन सा है रत्न जो आपके मन को मजबूत कर सकता है? इस रत्न के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या हैं? इस रत्न को पहनने का तरीका क्या है? क्या है चंद्रमा के रत्न की विशेषताएं और प्रयोग विधि? जानिए मेरे साथ सिर्फ।
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आईपीएल में बेंगलुरु की शानदार जीत, लगातार दूसरे खिताब पर कब्जा। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर जश्न मना। बंगाल में शुभेंदु सरकार का कैबिनेट विस्तार, आज 35 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। अनुभवी और युवा नेताओं के बीच तालमेल की कोशिश। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। आलाकमान के साथ शिव कुमार और सिद्धारमैया की बैठक। हफ्ते के पहले दिन महंगाई का एक और झटका, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 42 रुपए की बढ़ोतरी। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा। कोलकाता में भी बढ़े दाम। और बदलते मौसम की दिल दहलाने वाली तस्वीरें, विकासनगर में पानी की तूफान रफ्तार, जैसलमेर में रेतीले बवंडर से हालात बिगड़े। आज दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे चंद्रमा के रत्न की, जिसका नाम है मोती। मोती रत्न की विशेषताएं क्या हैं, किन स्थितियों में इसको धारण करना चाहिए और इसको धारण करने का तरीका क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 4:37 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:08 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के रत्न की, जिसका नाम है मोती। मोती है क्या और इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, मोती मुख्यतः माइनिंग से नहीं निकलता, एक मिनरल नहीं है बल्कि एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल क्रिएशन है। लेकिन इसके प्रभाव को देखते हुए इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है और मोती केवल पहना ही नहीं जाता, इसको खाया भी जाता है मुक्ता भस्म के रूप में, औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो गुण चंद्रमा के अंदर होते हैं वो उसके रत्न के अंदर भी होते हैं। उसका रत्न शांत, सुंदर और शीतल होता है। और जब आप मोती धारण करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा आपके मन पर और आपके शरीर के रसायनों पर, आपके केमिकल पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, मोती बहुत धीरे धीरे और बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक असर डालता है। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मोती भी नुकसान कर सकता है अगर आपको सूट ना करे तो। मोती धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्यतः लोग नीलम के नाम से डरते हैं कि नीलम का प्रभाव खतरनाक होता है, उतना ही खतरनाक प्रभाव मोती का भी होता है, लेकिन वो प्रभाव बहुत धीरे धीरे जिंदगी पर असर डालता है। मोती पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब अगर आपको मोती धारण करने की सलाह दी गई है और मोती आपको सूट करता है, फायदा करता है, तो मोती पहनने के लाभ क्या हैं? मोती मन को शांत करता है और बेवजह की चिंता और तनाव को घटा देता है। मोती अगर लाभ पहुंचाए तो आपकी नींद को दुरुस्त कर देगा और आपके मन की डर और चिंताओं को दूर कर देगा। मोती पहनने से हार्मोन्स की समस्या बेहतर होती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और मोती अगर सूट करे तो ये आर्थिक पक्ष को, फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत अच्छा बना देता है। मोती के बारे में ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः अगर डॉक्टर्स मोती पहने, चिकित्सक मोती धारण करें तो उनको मोती धारण करने से लाभ होगा। अब आपने बिना सोचे विचारे मोती पहन लिया और मोती नुकसान कर रहा है तो क्या नुकसान करेगा? देखिए, मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप बिना सोचे विचारे मोती मत पहनिए, क्योंकि अगर मोती नुकसान करेगा तो ये धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति को, आपके मेंटल लेवल को खराब कर देगा। मोती अगर नुकसान करे तो गंभीर रूप से डिप्रेशन देगा, गंभीर रूप से तनाव देगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा। मोती पहनने से अगर नुकसान है तो आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी
और आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। और मोती अगर नुकसान करे तो खास तौर से महिलाओं का जो हार्मोन्स है, हार्मोनल पार्ट है, वो बुरी तरह बिगड़ सकता है। और मोती अगर नुकसान करे तो आपकी बीपी अचानक से बढ़ सकती है या अचानक से बीपी नीचे आ सकती है, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन पैदा हो सकता है। मोती पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

जी, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, रिश्तों में समस्या आ सकती है। धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शैलजा त्रिपाठी ने हमें लिखा है और शैलजा हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1989। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है वाराणसी। शैलजा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, क्या मेरी किस्मत में विवाह का योग है? क्या मेरी शादी हो सकेगी? शैलजा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह अवश्य होगा। साल 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह हो सकता है। किसी डिवोर्सी से या विडोवर से भी शादी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12-13 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और हर रविवार को दिन के समय में सात्विकता के साथ पार्वती मंगल का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब आपने मोती उठा के पहन लिया। मोती का प्रभाव भी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों को सामान्यतः मोती धारण करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लोगों के लिए मोती धारण करना बहुत ही अच्छा है। अगर ये लोग मोती पहने तो इनका मन और स्वास्थ्य बेहतर होता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए मोती धारण करना खतरनाक है।
अगर ये लोग मोती पहने तो इनकी मानसिक स्थिति पर, इनके सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहनी जा सकती है। लेकिन मैं फिर बता दूं, अपने मन से बिना जानकारी के मोती मत पहनिएगा। आपकी कुंडली के चंद्रमा की स्थिति और आपकी जो महादशा अंतर दशा चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए ही मोती धारण करना बेहतर होगा। मोती पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रखें, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि मोती धारण करने का सही तरीका क्या है। देखिए, मोती को चांदी की अंगूठी में राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा अंगुली में, शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात को पहनना चाहिए। विशेष स्थितियों में मोती को सोने में भी पहना जाता है। अगर चंद्रमा आपके लिए अनुकूल है और चंद्रमा कुंडली में अस्त है तो ऐसी स्थिति में मोती को सोने में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन 90% मामलों में मोती चंद्रमा कुंडली में अस्त है तो ऐसी स्थिति में मोती को सोने में भी धारण कर सकते हैं लेकिन 90% मामलों में मोती को चांदी में पहनना ही बेहतर होता है। शुक्ल पक्ष के सोमवार के अलावा मोती को पूर्णिमा की रात को भी पहन सकते हैं। रात को चंद्रमा निकल जाने के बाद चंद्रमा की रोशनी में अगर मोती पहने तो बहुत बेहतर होगा। मोती को धारण करने से पहले एक कटोरी में गंगा जल लेकर शाम को इसको डुबा दीजिए। 2-3 घंटे गंगा जल में डूबे रहने दीजिए। उसके बाद निकालिए, साफ कपड़े से पोंछिए, भगवान शिव को अर्पित करिए और शिव जी का नाम लेकर के चंद्रमा की रोशनी में बालकनी में या छत पर जाकर मोती धारण करिए। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा धारण करना अच्छा होता है। कुछ स्थितियों में मोती के साथ माणिक्य भी अलग अलग हाथों में पहन सकते हैं, लेकिन मोती के साथ नीलम, पन्ना, हीरा, गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मोती के साथ बिना सोचे समझे गोमेद पहन लेते हैं। ऐसा करना बहुत नुकसान कर सकता है, मानसिक स्थिति को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक

बेटी अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी को क्रोध ज्यादा आता हो तो उसको मोती पहना देनी चाहिए। क्या ऐसा सही है? देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा का संबंध आपके मन से होता है, लेकिन हर क्रोध के पीछे चंद्रमा नहीं होता है। क्रोध के पीछे मंगल बुध की स्थिति भी हो सकती है। तो हर आदमी को क्रोध आने पर मोती नहीं पहनाया जा सकता। जिसके क्रोध आने में चंद्रमा की जिम्मेदारी है उसको मोती पहनाने से लाभ होगा, लेकिन जिसको क्रोध किसी और कारण से आ रहा है और अगर आपने बिना पूछे और बिना सोचे मोती पहना दी तो आदमी का क्रोध और ज्यादा बढ़ सकता है, उससे मुश्किलें ज्यादा आ सकती हैं। तो हर क्रोध के मामले में मोती पहनाना उचित नहीं है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। नंबर 5, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 8, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनिरुद्ध गुप्ता ने हमें लिखा है और अनिरुद्ध जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1975

जन्म का समय रात में 8:30, जन्म का स्थान है दिल्ली। अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि मेरे व्यापार की वजह से कर्जा बहुत हो गया है और अब मैं व्यापार छोड़ चुका हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो कर्जा मेरा कब तक चुक पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनिरुद्ध जी, व्यापार छोड़ करके नौकरी की तरफ जाने का निर्णय आपका बिल्कुल सही है। अभी दूर दूर तक व्यापार में दोबारा मत जाइएगा। आपके परिवार के, खासतौर से पिता के सहयोग से आप अगले साल तक अपने मैक्सिमम कर्जे उतार लेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। आप ऐसा करिए, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक पन्ना लगभग 6-8 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ सफेद फूल रखिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के लिए आज सावधानी का दिन होगा।

वालों के लिए काम में सफलता मिलेगी, जीवन में बड़े लाभ होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, बेवजह का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत ना करें। आज जल और सफेद मिठाई का अगर दान करें तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई, कोहली 75 रन बनाकर नाबाद लौटे। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 155 8 रन बनाए, आरसीबी ने 156 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल किया। वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए। आरसीबी लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बनी, इससे पहले मुंबई ने साल 2019-2020 और चेन्नई ने साल 2010-2011 में जीता था खिताब। राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी बने आईपीएल सीजन के इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर, 16 पारियों में 776 रन और 237 रनों की धमाकेदार स्ट्राइक रेट रही। वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी अवार्ड, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के लिए वैभव को 10 लाख रुपए का इनाम मिला। वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी अपने नाम किया, इसी के साथ वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड जीता। वैभव को सबसे ज्यादा 776 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिला। वैभव सूर्यवंशी को कुल 35 लाख रुपए और टाटा सेरा कार मिली। अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, बीजेपी समर्थकों पर हमले का आरोप। के बाद कल्याण बनर्जी के सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने इसे ड्रामा करार दिया। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा की, बीजेपी बोली जनता का गुस्सा कहीं न कहीं सामने आता है। बंगाल में सियासी तनाव बढ़ चुका है, कल्याण बनर्जी बोले मेरी हत्या की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा की, शशि थरूर बोले राय का इजहार बैलेट से होना चाहिए, हिंसा से नहीं। सौगत राय का आरोप, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों से विपक्षी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा बंगाल की घटनाएं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हैं, युवाओं को आगे आना होगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र पर अब यह गंभीर खतरा है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। कपिल सिब्बल ने हमले को लोकतंत्र की हिंसा बताया, दोषियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सांसद की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। संजय निरुपम ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसे बंगाल की पुरानी राजनीतिक संस्कृति से जोड़ा। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार बोले सांसद पर हमला लोकतंत्र के लिए खतरा, दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। के कविता ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपा नेता आनंद दुबे बोले जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक आज, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन की यह बैठक, नई राष्ट्रीय टीम जल्द घोषित होने के भी संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आवास पर हाई लेवल इस बैठक में अमित शाह शामिल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम पार्टी के शीर्ष नेता शामिल। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां भी तेज हैं, 18 जून को 24 सीटों पर मतदान होना। अब शिक्षा व्यवस्था पर संसद की नजर होगी, नीट एनटीए और सीबीएसई पर समिति करेगी समीक्षा। संसद की स्थायी समिति ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय को तलब किया है नीट और परीक्षा प्रणाली पर बड़ी समीक्षा होनी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग और 3 भाषा नीति पर भी सवाल उठाए जाएंगे, सीबीएसई की परीक्षा व्यवस्था की जांच तेज। नेता विपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, बोले 18.5 लाख छात्रों की समस्याओं पर प्रधानमंत्री अब तक मौन क्यों है। ओएसएम स्कैनिंग सिस्टम पर विवाद गहरा गया है, राहुल ने प्रक्रिया को छात्रों के साथ अन्याय बताया है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी संग्राम भी तेज है, जांच के लिए आईआईटी और एसआईटी की मांग उठी है। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश से आफत देखने को मिली, यमुनोत्री हाईवे पर झरने ने रौद्र रूप ले लिया। भारी बारिश से सड़क दरिया बन गई, चारधाम यात्री भी रास्ते में फंसे। पहाड़ों में मौसम का कहर देखने को मिला है। झरने से सड़क पर मलबा और पानी आया, यातायात इसके चलते ठप हो गया। वायरल वीडियो में खौफनाक नजारा दिखा, हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल रुक सी गई है। उधर ऋषिकेश देहरादून में भारी जाम देखने को मिला, हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर घंटों वाहन फंसे रहे। लखनऊ में मौसम बदल गया, भीषण गर्मी से राहत मिली, मौसम सुहाना हुआ। तो नैनीताल में भी मौसम सुहाना हुआ, जिसके चलते पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है, घाटी में अब रौनक लौटी है। राजस्थान से धूल भरी आंधी का डरावना वीडियो सामने आया, जैसलमेर में दिन में ही अंधेरा छाया। रेतीले तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ, कई इलाकों में बिजली गुल हुई जिसके चलते अंधेरा हुआ। रामगढ़ और मोहनगढ़ में धूल भरी आंधी देखने को मिली, गर्मी से राहत तो मिली लेकिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। गुजरात के नवसारी में भी मौसम बदला, लोगों को गर्मी से निजात मिली। कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी जमा हुआ, तापमान में इसके बाद गिरावट देखने को मिली। गुजरात के अंबाजी और आसपास के इलाकों में गरज और बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश हुई, तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। अंबाजी और आसपास में कई जगह होर्डिंग भी गिरे, अंबाजी मंदिर के चाचर चौक पर लगा मंडप भी इस हवा की रफ्तार के साथ खुल गया। छत्तीसगढ़ को पहले आईटी और आईओटी पार्क की सौगात मिली, मुख्यमंत्री ने दुर्ग में प्रदेश के पहले आईटी और आईओटी पार्क का शुभारंभ किया। आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों से शुरू किया गया आईटी और आईओटी पार्क, युवाओं उद्यमियों स्टार्टअप्स को यहां से प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है। राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय आम महोत्सव में देश विदेश की 250 से ज्यादा आम की किस्मों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के अकोला में अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई, शहर में भव्य रैली निकाली गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पुस्तक रामचरितमानस का वैज्ञानिक विश्लेषण का विमोचन किया गया, प्लास्टिक कम इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। गाजियाबाद में दोस्त ही निकला कातिल, पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या। बेंगलुरु में बारिश में व्यस्त सड़क पर पार करने में दिव्यांग युवक की मदद करने पर पुलिस कांस्टेबल की तारीफ हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है। बुलंदशहर कोर्ट में बंदर ने 2 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया, पेड़ों से नोट की बारिश होने लगी। मुजफ्फरनगर में बहन के प्रेम संबंध से नाराज भाई ने गला काटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हिमाचल के कसोल में पार्किंग विवाद हिंसक हो गया, पर्यटक ने स्थानीय व्यक्ति को गोली मारी। आगरा मालवा में बिजली विभाग में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मनेर में एसआईटी और रेलवे पुलिस ने एलटी एक्सप्रेस के अंतर जिला शराब तस्करी गिरोह के मुख्य सदस्यों को पकड़ लिया है। ग्वालियर के डबरा शहर इलाके में दिन दहाड़े किशोर का अपहरण हुआ, पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। चंबा की गहरी खाई में पर्यटकों की टैक्सी गिर गई, 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे महाराष्ट्र के बुलढाणा में किसान ने ट्रैक्टर को बैलगाड़ी से बांधा, डीजल लेने के लिए फ्यूल पंप तक ले गया। झांसी में मंदिर कुश्ती का अखाड़ा बन गया, ट्रस्ट के अध्यक्ष और पुजारी की पत्नी के बीच हिंसक झड़प कैमरे में कैद हो गई। सुल्तानपुर में पिता ने बेटी को कई बार नाले में डुबाया, इसका वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। पंचकुला में टीबीआरएल ने डीआरडीओ यूनिट की देखरेख में कड़ी सुरक्षा के बीच हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया। सोशल मीडिया पर प्यार हुआ, पीओके का युवक लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर भारत पहुंच गया, सेना ने गिरफ्तार किया। कटिहार के कमला घाट पर आजादी के बाद से अब तक कोई पुल नहीं बना है, अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डालते हैं। तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की मासूमियत पर फिदा हुए निर्देशक शेखर कपूर, एक्स पर लिखा वैभव अगर इतने जबरदस्त क्रिकेटर न होते तो फिल्म मासूम में कास्ट करता। इन दिनों फिल्म मासूम द न्यू जनरेशन पर काम कर रहे निर्देशक शेखर कपूर, साल 1983 में आई क्लासिक फिल्म मासूम का सीक्वल होगी ये नई फिल्म। तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म करुप्पू ने सिर्फ 15 दिन में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए कमा लिए, सफलता से गदगद एक्टर सूर्या ने संगीतकार सिनेमेटोग्राफर को कार गिफ्ट की है। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर में राम की भूमिका निभाने पर टीवी के राम अरुण गोविल ने कहा कि मेरा निभाया किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार निभाने पर निर्देशक इम्तियाज अली ने कहा कि रणबीर कपूर की जिंदगी भी बदल सकता है ये किरदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है, बोले नया समझौता नहीं होगा तो जल्दी ही सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर सीधे सैन्य विकल्प की भी बात कही है। अमेरिका ने ईरान को समझौते के लिए बेहद कड़ा प्रस्ताव भेजा है। ईरान के फंड रिलीज दावे को भी अमेरिका ने खारिज कर दिया है। ईरान के शीर्ष वार्ताकार कालिबाफ का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि दुश्मन के वादों पर भरोसा अब नहीं है, सिर्फ ठोस नतीजों पर ही भरोसा करेंगे। अमेरिका के साथ समझौते पर ईरान ने भी शर्त रखी है, बोले कालिबाफ की जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे कोई डील नहीं हो सकती। फारस की खाड़ी में भी तनाव बढ़ रहा है, ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी एमक्यू ड्रोन को उसने मार गिराया है। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि ईरान हवाई हमले में हवाई सीमा में घुसते ही अमेरिकी ड्रोन को उन्होंने नष्ट कर दिया। लेबनन में इजराइल सेना की घुसपैठ हुई है, हिजबुल्ला के गढ़ में बड़ी कार्रवाई का दावा किया गया है। इजरायली सेना ने बियूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है, अब इस इलाके में तनाव भी बढ़ रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री काट ने कहा कि बियूफोर्ट पर कब्जा एक रणनीतिक जीत है, इजरायली झंडा वहां पर लहरा दिया गया है। बियूफोर्ट किले पर कब्जे के बाद लेबनान इजरायल में भी तनाव चरम पर है, हालात गंभीर हो चले हैं। इजरायली सेना के बड़े हमलों के बाद उत्तरी इजरायल में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए। दक्षिण चीन सागर में चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया, फिलीपींस चीन तनाव के बीच हलचल बढ़ गई है। साउथ चाइना सी में चीनी युद्धाभ्यास से सैन्य चौकसी बढ़ी है, क्षेत्र में अब तनाव चरम पर है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान एक बिल्डिंग के जमींदोज होने की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में बुलडोजर इमारत को गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन कह रहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे जारी रहेगा, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में बिल्डिंग गिराई जा रही है, ये रिहायशी इलाका है, शालीमार बाग है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र भी है। दावा यह किया जा रहा है कि दरअसल रेलवे की जमीन पर यहां सालों से अवैध निर्माण होते रहे। ये और बात है कि अवैध निर्माण जिनकी देखरेख में हुए उन अधिकारियों पर नगर निगम पुलिस इन तमाम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई से उन्होंने जो अपना आशियाना खड़ा किया, अब उस पर बुलडोजर चल रहे हैं। और जब बुलडोजर चला, देखिए कैसे पहले एक इमारत तोड़ी गई और उस बुलडोजर के बाद ये पूरी 3 से 4 मंजिला इमारत ध्वस्त हो जाती है, धूल का गुबार उठता है। देखिए लोगों की कभी ये रिहायश थी, सैकड़ों लोग यहां रहा करते थे और अब ये खंडर हो चुके हैं, इन्हें तोड़ा जा रहा है। ये वीडियो है उस समय का जब इस इमारत को ध्वस्त किया जा रहा था। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज में तेज रफ्तार और लापरवाही का खतरनाक नजारा सामने आया है। सिविल लाइन्स इलाके में कथित तौर पर शराब के नशे में एक कार चालक ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी, डिवाइडर पार करते हुए सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहां सीसीटीवी लगा था, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। कार की रफ्तार और टक्कर कितनी भयानक थी ये देखिए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। अब सिविल लाइन्स पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी कार चालक को पहचाना, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे कार्रवाई की जरिए देखिए कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी आती है, डिवाइडर पार कर जाती है, गाड़ियों को रौंद देती है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: సోకుడు
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
7: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
11: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.
12: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था, दरअसल वो नकली था. अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी. शरद कुमार, जयपुर आज तक.

0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
1: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटीक है। यश खटीक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटीक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटीक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
0: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: गाजियाबाद में खत्म। गाजियाबाद में एक हत्या हुई, एक परिवार का बेटा चला गया, गुस्सा उठा, सवाल उठे और फिर पुलिस की कार्रवाई हुई। सूर्या की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही पुलिस की बंदूक से निकली गोली ने एक नया संदेश लिख दिया। सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी अब असद एनकाउंटर में मारा गया।
1: असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है।
0: गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या की हत्या बकरीद वाले दिन यानी 28 मई को हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीएम योगी इन 48 घंटे में दो बार संदेश दे चुके हैं कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरसों पहले विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार का ब्लूप्रिंट रख दिया था। यही वजह है कि यूपी में हर एनकाउंटर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं रहता, वो राजनीतिक संदेश बन जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है और इस बार भी उठा रहा है।
2: एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई, इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं।
0: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन नैरेटिव आकार लेने लगा है। कांग्रेस योगी राज को जंगल राज बता रही है। गाजियाबाद का एनकाउंटर यूपी की राजनीति में ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनावी रैलियों में भाषण भुलाए जा सकते हैं लेकिन घर लौटते वक्त सुरक्षित महसूस करने का एहसास नहीं भुलाया जा सकता। तो क्या उत्तर प्रदेश को योगी का मॉडल पसंद है?
3: कुछ है पर पूरी तरह नहीं, जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
0: सूर्या की हत्या से मुस्लिम धर्म गुरु आहत है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन हत्यारे को शैतान बता रहे हैं।
4: इंसानियत का कत्ल है ये, ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया। किसी का भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका पोता चला गया, जिसका नवासा चला गया, उस पर क्या बीत रही होगी, बहुत तकलीफ हुई।
0: यूपी में अब सवाल नाम का नहीं अंजाम का पूछा जा रहा है। गोली गाजियाबाद में चली है लेकिन उसका राजनीतिक असर 2027 तक जाएगा। अपराधी का अंत हुआ है लेकिन बहस की शुरुआत अब होगी। योगी का दावा फिर चर्चा में है और विपक्ष हो गया है आग बबूला। अरविंद ओझा, मयंक गौर और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर मना जश्न। 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड्स। बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, लोक भवन में 35 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। रूपा गांगुली, अर्जुन सिंह, स्वप्नदास गुप्ता और तपस रॉय समेत कई चेहरे दावेदार। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान। आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। 3 जून को डीके ले सकते हैं सीएम की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा। कोलकाता में भी बढ़े दाम। और बदलते मौसम की दिल दहलाने वाली तस्वीरें, देहरादून में पानी की तूफानी रफ्तार। जैसलमेर में रेतीली बवंडर से हालात बिगड़े। आज दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 8 बजे हैं और वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम और बड़ी खबरें होंगी। आपको दिखाएंगे बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने के बाद कैसे मनाया गया है ग्रैंड जस्ट। साथ ही साथ दिखाएंगे आपको पूरे टूर्नामेंट में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का जलवा भी। खबर महंगाई की भी बताएंगे आपको, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ है इस बात का जिक्र होगा। बात हम करेंगे बंगाल के बारे में भी, जहां शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। साथ ही साथ खबर राजस्थान के रेतीले तूफान की भी करेंगे, अपडेट दिल्ली में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान की भी। साथ ही बताएंगे आपको अमेरिका और ईरान डील पर अपडेट क्या है, इसराइल के हमले की पूरी खबर इस बुलेटिन में आपके लिए होगी। तो तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आईपीएल के फाइनल मुकाबले की। तो लगातार दूसरी बार आरसीबी आईपीएल चैंपियन बन गई है। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आरसीबी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। विराट कोहली इस जीत के हीरो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आईपीएल सीजन खत्म हो गया है। इस पूरे सीजन में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने ऑरेंज कैप खिताब जीता। तो वहीं तेज गेंदबाज कासे गोरवाडा के पर्पल कैप पर उन्होंने कब्जा किया है। आरसीबी की जीत के बाद फैंस का जोश आए रहा, रात भर जीत का जश्न मनाया गया सड़कों पर। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जबरदस्त जीत के बाद अलग अलग जगहों पर जश्न की तस्वीरें नजर आई हैं। और तीनों ही जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जबरदस्त तरीके से खिताब अपने नाम करने के बाद आरसीबी के तमाम प्रशंसकों ने जश्न मनाया है। तो बेंगलुरु ने एक बार फिर से आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे बेंगलुरु ने आसानी के साथ हासिल कर लिया। आइए देखते हैं फाइनल का पूरा एक्शन।
1: 2 years, 2 trophies, 1 ये लम्हे यादगार है।
2: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर चैंपियन।
1: ये जश्न शानदार है।
2: 2026 अगेन द
1: ये विराट विजय का ऐसा सिलसिला है जो सालों तक फैंस को गर्व करने का मौका देता रहेगा। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इम्तिहान बड़ा था। वेंकटेश अय्यर के साथ ओपनिंग करने उतरे विराट ने 5 ओवर होने से पहले ही 63 रन की साझेदारी कर डाली। फिर टीम को 2 झटके लगे तो विराट ने जीत की मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। फिर आया वो लम्हा जब विराट के मन की मुराद पूरी हो गई, विजयी सिक्सर लगाने की। 156 रन का लक्ष्य दिया था गुजरात ने। टॉप ऑर्डर फ्लॉप, हाफ सेंचुरी जमाई थी सुंदर ने। गुजरात ने तो अपने ही मैदान पर हाहाकारी शुरुआत की थी। हालात इतने बदतर थे कि 26 रन होते होते दोनों सलामी ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। लगा कि गुजरात की टीम शायद शुरुआती झटकों से उबर जाएगी, लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 100 रन होने से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट होकर पवेलियन में आराम फरमा रही थी। एक छोर पर वॉशिंगटन सुंदर अकेले ही लड़ते रहे, रन बनाते रहे और किसी तरह हाफ सेंचुरी जमा कर गुजरात का स्कोर 150 के पार ले जाने में कामयाब रहे। आज तक
0: तो बेंगलुरु की खिताबी जीत के हीरो रहे विराट कोहली। उन्होंने फाइनल मुकाबले में नाबाद 75 रनों की शानदार पारी खेली है। इसके लिए विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। पूरे सीजन में उन्होंने 675 रन बनाए। देखिए विराट परफॉर्मेंस पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
1: मैदान का हर कोना विराट के शॉट से गुलजार हो रहा था। गुजरात के घरेलू मैदान में कोहली कोहली गूंज रहा था। आखिरकार 75 रनों की उनकी इस पारी ने बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए विराट ने। 9 चौके 3 छक्के जमाए विराट कोहली ने। इस सीजन 675 रन बनाए विराट ने। पूरे सीजन गदर ढाता रहा विराट कोहली का बल्ला। उनके तेवर, उनकी ताकत और उनकी तकनीक ने बेंगलुरु की कामयाबी की ऐसी इबारत लिख दी कि एक के बाद एक विरोधी सरेंडर करते चले गए। वो आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिसने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हों। जाहिर है टीम की कामयाबी में करिश्मा योगदान देने के बाद हौसला बढ़ता है और दिल को एक सुकून मिलता है। सपने के एक बार फिर साकार होने से बेहद खुश हैं विराट। विराट ने इन लम्हों के लिए सालों तक इंतजार किया है। उनकी कप्तानी से पहले भी और कप्तानी के दौरान भी खिताब हमेशा दूर ही फिसलता रहा। अब उनके बल्ले ने लगातार 2 साल तक बेंगलुरु की विराट विजय की पटकथा लिखी तो एक बार फिर हर फैन यही कह रहा है कि विराट जैसा कोई नहीं। आज तक ब्यूरो।
0: तो अपनी शानदार पारी और आरसीबी के फाइनल में जीत के बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ झूमते हुए नजर आए। दोनों ने शानदार जीत का जश्न मनाया। डांस फ्लोर पर झूमते कोहली और अनुष्का का ये वीडियो रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु ने पोस्ट किया है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें और आपको बता दें कि इस वीडियो को रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ही पोस्ट किया है। अनुष्का के साथ फ्लोर पर झूमते हुए नजर आए इस जीत के बाद विराट कोहली।

0: तो आरसीबी ने फाइनल जीता है। महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबका दिल। इस पूरे आईपीएल सीजन में वैभव ने जैसा परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उसे देखकर सभी हैरान हैं। अपने धाकड़ बल्लेबाजी की बदौलत वैभव ने ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया।
1: राजस्थान रॉयल्स भले आईपीएल 2026 में ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोला। 15 साल के युवा बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया है और ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए। 732 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे स्थान पर रहे। साई सुदर्शन ने इस सीजन में 722 रन बनाए। इतना ही नहीं, वैभव ने इस सीजन में कई कीर्तिमान कायम किए हैं। वो इस सीजन के सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी हैं। वैभव ने पूरे सीजन में कुल 72 सिक्सर जड़े, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला है। वैभव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। इस खिताब की दौड़ में वो खिलाड़ी शामिल थे जिनका जन्म 1 अप्रैल 2000 के बाद हुआ। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी वैभव के नाम रहा, जिसके लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप अपने नाम की, तो वहीं रबाडा ने भी खिताब मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। गुजरात टाइटंस आईपीएल सीरीज गंवा बैठी, लेकिन टीम के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पर्पल कैप अपने नाम कर लिया। लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहने वाले भुवनेश्वर कुमार इतिहास रचने से चूक गए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो आईपीएल में आरसीबी के खिताबी जीत का जश्न देर रात तक सड़कों पर मनाया गया है। तिरंगे के साथ स्टेडियम के बाहर फैंस ने जमकर धूम मचाई है। ढोल नगाड़े बजते रहे, नाच गाना चलता रहा।
2: हाथ में तिरंगा और ढोल की थाप पर नाचते गाते फैंस। जश्न की ये तस्वीर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। अंदर विराट की सेना गुजरात टाइटंस को धूल चटा रही थी और बाहर आरसीबी फैंस का जोश हाई हो रहा था। और जब विराट विजय का ऐलान हुआ तो माहौल देखने लायक था।
3: चेस मास्टर विराट कोहली,
4: कैप्टन सीनियर भाई रजत पाटीदार
5: और पूरी पाटीदार पूरी टीम का भी सपोर्ट है। एक साथ होकर खेली और आज फाइनली अच्छा कोई बोल रहा था एक वर्ल्ड एक एक ट्रॉफी ने जीत पा रहे। अब दो दो
2: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता, तो बधाइयों का तांता लग गया।
6: रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को बधाई देता हूँ, आरसीबी को बधाई। बैक टू बैक चैंपियन बने और शायद यही क्रिकेट की लोकप्रियता है कि गुजरात का स्टेडियम हो, गुजरात की टीम हो और स्थानीय टीम के साथ साथ आरसीबी के भी खूब प्रशंसक यहाँ पर थे। मुझे लगता है यही क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है।
2: आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी चैंपियंस स्टेडियम से बाहर निकले तो चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। कृणाल पांड्या के हाथों में ट्रॉफी नजर आई और ट्रॉफी के साथ सेल्फी का क्रेज भी दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। महंगाई के झटके की अब हम बात करेंगे, क्योंकि आज से कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हुआ है। इसके हिसाब से अगर कमर्शियल सिलेंडर जो कल तक आप खरीदते थे 3,071.50 रुपए में, वो उसके लिए अब आपको खर्च करने पड़ेंगे 3,113.50 रुपए। आपको ये भी बता दें कि कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के भाव में 53.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले वहां कमर्शियल सिलेंडर 3,202 रुपए में मिलता था और अब ये बढ़कर हो गया है 3,255.50 रुपए। आपको यह भी बता दें कि 5 किलो जो छोटा वाला सिलेंडर रहता है ना, उसके भाव में भी इजाफा हुआ है। अब 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर दिल्ली में 821.50 रुपए में आपको मिलेगा। तो देखिए, हम बता दें कि पहले क्या कीमत थी और अब किस तरह से रेट्स बढ़ गए हैं। पहले 3,071 रुपए आप खर्च करते थे और अब आपको 3,113.50 रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही साथ कोलकाता में 3,202 रुपए बढ़कर 3,255 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा प्रति सिलेंडर 53.54 रुपए का फर्क आया है। दिल्ली की अगर हम बात करें देश की राजधानी की, देखिए जरा अब छोटे सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, प्रति सिलेंडर 11 रुपए इस पे रेट्स बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में पहले 810 रुपए का जो सिलेंडर था अब ये मिलेगा आपको 821 रुपए का। तो 5 किलो वाला जो छोटा वाला सिलेंडर है उसके दाम में भी इजाफा कर दिया गया है। लगातार चाहे वो सीएनजी की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर की बात हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है। और अब बात करेंगे हम सियासत की। पश्चिम बंगाल की खबर है ये, क्योंकि कैबिनेट विस्तार वहां पर होने जा रहा है। आज 35 मंत्रियों की शपथ होनी है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में होना है, जहां राज्यपाल और आरएन रवि सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस लिस्ट में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। शुभेंदु कैबिनेट में अनुभवी और युवा नेताओं को जगह दी जा रही है। बंगाल में इस बार मंत्रिमंडल में क्षेत्र और अनुभव को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि अनुभवी और युवा चेहरों को आज जगह दी जा सकती है। कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी कोशिश रहेगी। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि ये विधायक हैं जो शपथ लेंगे। अर्जुन सिंह है, अजय कुमार पोद्दार हैं, दीपक बर्मन हैं, शंकर घोष हैं, उमेश राय, कलिता मांझी, इसके अलावा जोएल सरगोत, पूर्णिमा, आदूत कुमार मंडल, जगन्नाथ, इंद्रनील, तपस और गार्गी घोष, मालती रावा रॉय, स्वप्नदास गुप्ता, कई बार आपने इनको देखा होगा टीवी पर, इसके अलावा रूपा गांगुली भी हैं उसमें, उमेश राय भी हैं, अर्जुन सिंह, अजय कुमार पोद्दार, ये तमाम वो नाम हैं जो आज कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहे हैं। तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है, पश्चिम बंगाल की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राष्ट्रीय राज्य सरकार की पूरी कैबिनेट लोकभवन में शपथ लेगी। हम पश्चिम बंगाल में लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यह खबर भी बंगाल से ही है, जहां टीएमसी के दो सांसदों पर हमले के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। हमले के खिलाफ ममता बनर्जी ने महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आज से टीएमसी दो दिन का राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। पूरे बंगाल में टीएमसी विरोध मोर्चा निकालने वाली है। और आपको बता दें कि कल ममता बनर्जी ने खुद धरने पर बैठने की बात कही थी। टीएमसी ने अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों को सुनियोजित साजिश बताया है। ममता बनर्जी ने आरोप यह लगाया है कि जनाक्रोश की आड़ में बीजेपी टीएमसी के नेताओं को बना रही है निशाना, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह सरासर गलत है। जो जन लोगों के बीच में आक्रोश है वो अब निकल कर आ रहा है, दौड़ा दौड़ा कर टीएमसी के नेताओं को पीटा जा रहा है। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, अंडे फेंके गए, शर्ट फाड़ दी, जबरदस्त तरीके से तनाव था, नारेबाजी उनके खिलाफ हुई, उसके बाद कल्याण बनर्जी ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, वहां पर भी जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई हैं और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से खामोश रहता है। ममता बनर्जी की तरफ से तो ये भी आरोप लगाए गए थे कि अभिषेक बनर्जी जब बुरी तरह से घायल हुए तो उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, अस्पताल बदला गया, दूसरे अस्पताल में भी उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ और नाराजगी जाहिर वो करती हुई नजर आई। तो उन्होंने कहा था अगर कुछ होता है अभिषेक बनर्जी को तो अस्पताल इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आंदोलन पर बैठने की बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कही गई है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल होंगे। कल भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जबरदस्त अलग अलग जगहों पर हंगामा किया गया था, नाराजगी जाहिर की गई थी। अब कर्नाटका की हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 जून को डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीएम के रूप में डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में मंत्रियों की संख्या और डिप्टी सीएम के नाम पर भी कांग्रेस आलाकमान आज चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ नए मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे और कांग्रेस संगठन को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। आज डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों कांग्रेस नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। शिवकुमार अभी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, अब मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है दोपहर 1 बजे के करीब। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा से पहले ये बैठक होगी और केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं नितिन नवीन। साथ ही साथ पार्टी के नेता मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और बाकी के बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। यह खबर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, सूर्या हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस मामले में खुलासा हुआ है कि हत्या के लिए आरोपी के पिता ने ही उकसाया था। सूर्या को चाकू असद नाम के आरोपी ने मारा था। बाइक चलाने के विवाद के बाद असद ने अपने पिता को इसके बारे में पूरी जानकारी दी तो उसके पिता ने कहा कि इस कहानी को खत्म कर दो। इसके बाद सूर्य प्रताप की हत्या कर दी गई।
1: वो बकरीद का दिन था, 28 मई की दोपहर 3 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी असद और सूर्य प्रताप में झगड़ा हुआ। बाइक चलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। असद ने झगड़े की बात अपने पिता नवाब और अन्य आरोपियों को बताई। तभी गिरफ्तार आरोपी फरहान और आतिफ के साथ साथ अन्य आरोपियों ने मिलकर सबक सिखाने की साजिश रच डाली। महज बाइक चलाने का विवाद था। 28 मई की दोपहर 3:30 बजे आरोपियों ने सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया। फरहान ने पुलिस के सामने कबूला कि मैंने असद को चाकू दिया। असद के पिता ने कहा आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आरोपी पिता नवाब के ये कहते ही उसके बेटे असद ने सूर्या के पेट में चाकू भोंक दिया। हमले के बाद सूर्या खून खून होकर वहीं गिर पड़ा। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में हत्या के लिए उकसाने वाला असद का पिता नवाब के साथ साथ अन्य 2 आरोपी फरहान और आतिफ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक।
0: और अब रुख करेंगे पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका और ईरान में अब तक डील को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। ईरान ने साफ कह दिया कि दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान का कहना है कि ठोस नतीजों के बिना अमेरिका के साथ कोई भी समझौता नहीं होने जा रहा। तो एनरिच्ड यूरेनियम के साथ साथ जो पूरा का पूरा ये जो विवाद है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जिस पर अभी भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और उधर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष एक बार फिर से तेज हुआ है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के बाद अब कई इलाकों में धुएं के गुबार देखे गए हैं। इजरायली सेना ने दावा यह किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में स्थित रणनीतिक महत्व वाले 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले को और उससे जुड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हिजबुल्ला के ठिकानों और उसके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर की गई है। हाल ही के दिनों में उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला की ओर से बड़े हमलों के बाद क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। और अब बात मौसम की करेंगे। जब तक सूरज आंखें दिखा रहा था लेकिन मौसम का रुख अब बदल गया है। बहुत गर्मी के बाद एकदम बदलाव देखा गया है मौसम में। राजस्थान, उत्तराखंड से कुछ हाहाकारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें काफी कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। कहीं जबरदस्त बवंडर है आंधी का तो कहीं लबालब पानी।
1: ये खौफनाक तस्वीर उत्तराखंड के विकास नगर की है। जिड्डो के पास यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पहाड़ गिरते झरने ने

0: वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। राजस्थान में फिर उठा रेत का तूफान, जैसलमेर के रामगढ़ और मोहनगढ़ में धूल भरी आंधी का असर देखा गया। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads, and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: Your Ayurvedic beauty.
6: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
7: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
8: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
6: मतलब
8: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
6: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
8: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
6: ये माना जा रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोक के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक, हाकिमपुर।
7: सोरोस आ गया इसमें, बीच में पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम।
8: दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटीनेशनल एंड पाकिस्तानी।
7: 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ टेररिस्ट के चेहरे, दिखाओ जरा।
9: जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके उस पर हमारे साथ ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं अप्लाई,

0: फोटो कॉपी के लिए, लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी। लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार, खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी स्लिप नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे। लोगों का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है।
1: बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट agents that are trying to create unrest in India.
2: 17 साल के deep state agents. Deep state क्या होता है भाई?
1: Soros is.
2: Soros आ गया इसमें बीच में. Pakistan, Soros, everybody has come.
1: They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that,
2: that's crazy.
1: That is very crazy.
2: You know,
1: that is not right.
2: And your students, I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you've become anti-national. You have to accept the problem if you want to solve the problem.
1: Right.
2: You are just refusing to accept that the problem of blaming the poor kids and saying, you know, you are deep state, you are spies or terrorists.
1: Then we are trying to get
2: terrorists
1: in India.
2: Terrorists.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर बना जश्न, 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड्स। बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, लोक भवन में 35 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ, रूपा गांगुली, अर्जुन सिंह, स्वप्नदास गुप्ता और तपस रॉय समेत कई चेहरे दावेदार। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट, 3 जून को टीके ले सकते हैं सीएम की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए, 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा, कोलकाता में भी दाम बढ़े।

आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई, कोहली 75 रन बनाकर नाबाद लौटे। आरसीबी ने टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी को चुना था, गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 155 रन बनाए। आरसीबी ने 156 रन का लक्ष्य 5 विकेट में हासिल किया, वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए। आरसीबी लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बनी, इससे पहले मुंबई ने साल 2019 और 2020 और चेन्नई ने साल 2010 और 11 में जीता था खिताब। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी बने आईपीएल सीजन के इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर, 16 पारियों में 776 रन और 237 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट। वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के लिए वैभव को मिला 10 लाख रुपए का इनाम। वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी अपने नाम किया, इसी से साल से वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड जीता। वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा 776 रन बनाने के लिए मिला ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी को कुल 35 लाख रुपए और टाटा सियरा कार मिली। अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगाए गए। हमले के बाद कल्याण बनर्जी के सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया इसे ड्रामा। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा की है, बीजेपी बोली जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं सामने आता है। बंगाल में सियासी तनाव बढ़ गया है, कल्याण बनर्जी बोले मेरी हत्या की कोशिश की गई। शशि थरूर ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा की, शशि थरूर बोले राय का इजहार बैलेट से होना चाहिए, हिंसा से नहीं। सौगत रॉय का आरोप है बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए और विपक्षी नेताओं पर उसके बाद हमले हो रहे हैं। अशोक गहलोत बोले बंगाल की घटनाएं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, युवा आगे आए। संजय राउत ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा की है, कहा लोकतंत्र पर गंभीर खतरा। प्रियंका कक्कड़ पर हमला, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। कपिल सिब्बल ने हमले को लोकतंत्र की हिंसा बताया, दोषियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बोले सांसद की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। संजय निरुपम ने हमले की निंदा की लेकिन इसे बंगाल की पुरानी राजनीतिक संस्कृति से जोड़ा। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार बोले सांसद पर हमला लोकतंत्र के लिए खतरा है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। के कविता ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा भारतीय राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आनंद दुबे बोले जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन बैठक, नई राष्ट्रीय टीम जल्द घोषित होने के संकेत। प्रधानमंत्री मोदी आवास पर हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी तैयारियां तेज कर चुकी है, 18 जून को 24 सीटों पर मतदान। शिक्षा व्यवस्था पर संसद की नजर, नीट और एनटीए और साथ ही सीबीएसई पर समिति करेगी समीक्षा। संसद की स्थायी समिति ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय को किया है तलब, नीट और परीक्षा प्रणाली पर होगी बड़ी समीक्षा। ऑन स्क्रीन मार्किंग और 3 भाषा नीति पर सवाल, सीबीएसई की परीक्षा व्यवस्था की जांच तेज हुई। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, बोले 18.5 लाख छात्रों की समस्याओं पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से मौन। ओएसएम स्कैनिंग सिस्टम पर विवाद गहराया, राहुल गांधी ने प्रक्रिया को बताया है छात्रों के साथ अन्याय। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी संग्राम तेज हुआ, जांच के लिए आईआईटी और एसआईटी की मांग उठी है। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश से आफत, यमुनोत्री हाईवे पर झरने का रौद्र रूप नजर आया। भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं, चारधाम यात्री भी रास्ते में फंसे। पहाड़ों में मौसम का कहर, झरने से सड़क पर मलबा और पानी, यातायात ठप हुआ। वायरल वीडियो में दिखाई दिया खौफनाक नजारा, हाईवे पर रुक गई थी गाड़ियों की रफ्तार। ऋषिकेश देहरादून में भारी जाम, हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर घंटों तक फंसे रहे वाहन। लखनऊ में मौसम बदला, भीषण गर्मी से राहत मिली, मौसम सुहाना हुआ। नैनीताल में सुहावना मौसम हुआ, पर्यटकों की बढ़ गई भीड़, घाटियों में रौनक।
राजस्थान में धूल भरी आंधी का कहर, जैसलमेर में दिन में ही छा गया था अंधेरा। रेतीले तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ, कई इलाकों में बिजली गुल हुई, अंधेरा छाया रहा। रामगढ़ और मोहनगढ़ में धूल भरी आंधी, गर्मी से राहत लेकिन मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के नवसारी में बदल गया मौसम, लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जाम हुआ पानी, झमाझम बारिश। गुजरात के अंबाजी में और आसपास के इलाकों में गरज और बिजली के कड़कने के साथ बारिश शुरू हुई, तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी भी चली। अंबाजी और आसपास की कई जगहों पर होर्डिंग्स गिरे, अंबाजी मंदिर के चाचर चौक में मंडप भी खुल गया था। छत्तीसगढ़ को मिली पहले आईटी और पार्क की सौगात, मुख्यमंत्री ने दुर्ग में प्रदेश के पहले आईटी और एलओटी पार्क का शुभारंभ किया। आईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों से शुरू किया गया आईटी और एलओटी पार्क युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म मिलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय आम महोत्सव में देश विदेश से 250 से ज्यादा आम की किस्मों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के अकोला में मनाई गई अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती, शहर में निकाली गई भव्य रैली। गाजियाबाद में दोषी निकला कातिल, पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद में 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। बुलंदशहर कोर्ट में बंदर ने 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीना, पेड़ से नोटों की बारिश की। मुजफ्फरनगर में बहन के प्रेम संबंधों से नाराज भाई ने गला काटकर उसकी हत्या कर डाली, मौके से फरार हुआ। हिमाचल के कसौल में पार्किंग विवाद हिंसक रूप में बदला, पर्यटकों ने स्थानीय व्यक्ति को गोली मारी। आगरमालवा में बिजली विभाग के अज्ञात कारणों से भीषण आग की खबर, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। मनेर में एसआईटी और रेलवे पुलिस ने एलटी एक्सप्रेस से अंतर जिला शराब तस्करी गिरोह के मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर के डबरा शहर इलाके में दिन दहाड़े किशोर के अपहरण और पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। चंबा की एक गहरी खाई में गिरी थी पर्यटकों की टैक्सी, 8 लोगों की मौत हुई। बुलडाणा में किसान ने ट्रैक्टर को बैलगाड़ी से बांधा, डीजल लेने के लिए फ्यूल पंप तक ले गया था ऐसे ही। झांसी में मंदिर बना कुश्ती का अखाड़ा, ट्रस्ट के अध्यक्ष और पुजारी की पत्नी के बीच हुई हिंसक झड़प, कैमरे में कैद हुई। सुल्तानपुर में पिता ने बेटी को कई बार नाले में डुबोया, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंचकुला में टीवीआरएल ने डीआरडीओ यूनिट की देखरेख में कड़ी सुरक्षा में हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया। सोशल मीडिया पर हुआ प्यार, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का युवक एलओसी पार करके भारत पहुंचा, सेना ने पकड़ा। कटिहार के कमला घाट पर आजादी के बाद कोई पुल नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डालते हैं। तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की मासूमियत पर फिदा हुए निर्देशक शेखर कपूर, एक्स पर लिखा, वैभव अगर इतने जबरदस्त क्रिकेटर न होते तो फिल्म मासूम में कास्ट करता। इन दिनों फिल्म मासूम द न्यू जनरेशन पर काम कर रहे निर्देशक शेखर कपूर, साल 1983 में आई क्लासिक फिल्म मासूम का सीक्वल होगी नई फिल्म। तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म करप्पू में सिर्फ 15 दिन में दुनिया भर में कमाल डाले हैं 300 करोड़ रुपए, सफलता से गदगद नजर आए एक्टर। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के राम की भूमिका पर निभाने पर टीवी के राम अरुण गोविल ने कहा, मेरा किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर बोले निर्देशक इम्तियाज अली, रणबीर कपूर की जिंदगी बदल सकता है ये किरदार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, बोले नया समझौता नहीं तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका का कड़ा रुख, ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर सैन्य विकल्प की बात कही है। अमेरिका ने ईरान को समझौते के लिए भेजा है बेहद कड़ा प्रस्ताव, ईरान के फंड रिलीज दावे को भी खारिज किया गया। ईरान के शीर्ष वार्ताकार कलीबाफ का बयान, दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं सिर्फ ठोस नतीजों पर भरोसा। अमेरिका के साथ समझौते पर ईरान की सख्त शर्त, बोले कलीबाफ, जब तक हथियार सुरक्षित नहीं कोई डील नहीं की जाएगी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 4:37 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:08 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

की शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, रिश्तों में समस्या आ सकती है, धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

से पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: अभिषेक बनर्जी बंगाल की सियासत में अब विपक्ष के दूसरे सबसे अहम चेहरा है। ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी टीएमसी के अघोषित उत्तराधिकारी हैं। लिहाजा पार्टी के अंदरूनी फैसलों में इनकी दखल काफी ज्यादा है। 4 मई से पहले तक वो बंगाल के सबसे पावरफुल नेताओं में शुमार थे। ये भले ही टीएमसी सांसद हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार के दौरान शासन प्रशासन पर इनकी पकड़ जग जाहिर रही है। अब वही अभिषेक बनर्जी भीड़ के गुस्से का शिकार बने। ये हमला दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में हुआ, जहां हाल के विधानसभा चुनाव से पहले तक टीएमसी का दबदबा था। तीस मई को अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे, वहां चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए संजू कर्मकार के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। इस मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी बाहर आते हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी तेज हो जाती है। हालात को भांपते हुए अभिषेक बनर्जी बाइक पर सवार होकर निकलने की कोशिश करते हैं। निजी सुरक्षा कर्मी और समर्थक उन्हें घेरे रखते हैं, लेकिन सैकड़ों की भीड़ नारेबाजी करते करते धक्का मुक्की करने लगती है। वहां स्थिति ऐसी हो गई कि अभिषेक बनर्जी की बाइक भीड़ के बीच फंस गई। बिगड़ते हालात को देख टीएमसी सांसद ने बाइक छोड़ी और पैदल ही निकलना चाहा। उन्होंने हेलमेट पहनी और वहां से आगे बढ़ने लगे। तभी उन पर हमले शुरू हो गए। एक तरफ से उन्हें थप्पड़ मारे गए तो दूसरी तरफ से अंडे फेंके गए। भीड़ में मौजूद कुछ लोग अभिषेक बनर्जी को पत्थर मारते भी कैमरे में कैद। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को पहले अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही देर बाद उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज में सियासी दबाव का आरोप लगाती ममता बनर्जी देर रात उन्हें अपने साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गयी। बीजेपी और उसके मंत्री हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही गिना रहे हैं कि कैसे ममता राज में बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया। दिसंबर 2020 में डायमंड हार्बर जाते समय जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ था। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कोलकाता में अमित शाह पर पथराव हुआ था। 2016 में दक्षिण 24 परगना में ही रूपा गांगुली को निशाना बनाया गया था। बीजेपी की माने तो पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर हमले की लिस्ट लंबी है और अभिषेक बनर्जी पर हमला जनाक्रोश का नतीजा है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद एक बार फिर बंगाल की सियासत सुलग उठी है, जिसकी आहट अब दिल्ली की सियासत तक महसूस की जा रही है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली। रात भर मना जश्न। 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड। बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार। लोकभवन में 35 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। रूपा गांगुली, अर्जुन सिंह, स्वपन दास गुप्ता, तपस रॉय समेत कई चेहरे दावेदार। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान। आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। 3 जून को डीके ले सकते हैं सीएम की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए। 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर 11 रुपए महंगा। कोलकाता में बढ़े दाम। बदलते मौसम की दहलाने वाली तस्वीरें। देहरादून में पानी की तूफानी रफ्तार। जैसलमेर में रेतीले बवंडर से हालात बिगड़े। आज दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं निहा बातम। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत, बिना ब्रेक के सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। बंगाल में बवाल अब भी जारी है। अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हमले के बाद बीजेपी टीएमसी आमने सामने। यूपी में असद एनकाउंटर, योगी सरकार का मैसेज क्लियर, अपराधी साथ जैसे को तैसा। राजस्थान में फिर उठा रेतीला तूफान, पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद दिखाएंगे आपको, कहां कहां मची है तबाही। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि जून का पहला दिन है, आज 1 जून है और पहले दिन महंगाई का नया झटका दिया गया है। महंगाई किश्तों में आ रही है और आज एक और झटके की खबर आई है आपसे। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके हिसाब से कमर्शियल सिलेंडर जो कल रात तक 3,071.50 रुपए मिल रहा था, आज वो 3,113.50 रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा है। वहीं कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 53.50 रुपए बढ़ गए हैं। पहले ये 3,202 में मिलता था, अब आज से ये 3,255.50 रुपए मिल रहा है। इसके साथ ही 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर का भाव भी बढ़ गया है। अब 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर दिल्ली में 881.50 रुपए का हो गया। एक महीने में कमर्शियल गैस कीमतों में दूसरी बार इजाफा है। एक महीने पहले 1 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 993 रुपए बढ़ा दी गई थी। ऐश्वर्या पाटिल भाई सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, ये जो किश्तों में महंगाई आ रही है, जाहिर तौर पर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जहां जहां खाना पीना बनता है, रेस्टोरेंट हो, छोटे ढाबे हो, सब जगह महंगाई देखी जाएगी।
1: आज सुबह ही 19 किलोग्राम्स के जो सिलेंडर्स हैं उनके प्राइसेस बढ़े हैं। हमने देखा है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट देखा गया है वो कमर्शियल की तरफ है। इसीलिए इस वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान कई सारे रेस्टोरेंट्स और जो कमर्शियल एंटिटीज है उनको काफी सारे इश्यूज फेस करने पड़े हैं। दाम तो बढ़े ही है हर महीने, कुछ ना कुछ अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल मई जून में हमने देखा है 4 प्राइस हाइक्स हुए हैं अब तक कमर्शियल सिलेंडर के, और वो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। कुछ जगह पे महंगाई की वजह से छोटे रेस्टोरेंट्स, माइक्रो एंटरप्रेनर्स, इनके जो रेस्टोरेंट्स है वो बंद हो चुके हैं, और कुछ जगह पे जो है आप देखेंगे दाम में उनके जो मेन्यू की लिस्ट में प्राइसिंग में भी चेंजेस कई जगह दिखाई दिए हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि दाम ना बढ़ाए, एंड यूजर्स पर इसका असर ना हो, लेकिन कमर्शियल पर जरूर इसका असर हुआ है। ब्रेंट और WTI जो इंटरनेशनल तेल के दाम है, कच्चे तेल के दाम है, वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कमर्शियल पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है ताकि डोमेस्टिक पे उनको।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी के लिए आपका। बात बंगाल में बवाल करेंगे क्योंकि सत्ता बदलने के बाद से टीएमसी के नेता लगातार निशाने पर हैं। कल दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में टीएमसी सांसद बापी हल्दार के दफ्तर में भीड़ ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मथुरापुर थाने की पुलिस मौके पर तैनात की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सांसद के दफ्तर के भीतर सरकारी राहत सामग्री का एक बड़ा भंडार जमा करके रखा गया था और यह सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग एकत्र हुए और बापी हल्दार के कार्यालय में प्रवेश किया, जहां से कथित तौर पर विभिन्न सरकारी राहत सामग्री बरामद की गई। निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र के प्रभावित लोगों में राहत सामग्री वितरित करने के बजाय मथुरापुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद उसे अपने कार्यालय में जमा करके रख रहे थे। उनका कहना है कि वो उन राहत सामग्रियों को वापस प्राप्त करने के लिए सांसद के कार्यालय पहुंचे थे। और बंगाल की सत्ता से बेदखल होने से टीएमसी के बुरे दिन ऐसा लग रहा है कि शुरू हो गए हैं, क्योंकि शनिवार को ही टीएमसी सांसद और पार्टी में नंबर 2 अभिषेक बैनर्जी पर हमला किया गया। तो कल एक और सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला हुआ। आज से टीएमसी 2 दिन का प्रदर्शन शुरू करने वाली है।
2: इन दो तस्वीरों पर पश्चिम बंगाल की सियासत फिर से गर्मा गई है। पहली तस्वीर 30 मई की है, जब दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। अभिषेक चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे। दूसरी तस्वीर कल की है, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि उन पर भी हमला हुआ।
3: There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head.
2: इस हमले पर बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आज टीएमसी कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर राज्यभर में प्रदर्शन करेंगे, जबकि कल ममता बनर्जी खुद आंदोलन की कमान संभालेंगी। इससे पहले नए हालात पर मंथन करने के लिए कल ममता बनर्जी ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक नहीं हो पाई। पार्टी ने बताया कि टीएमसी के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन करने में व्यस्त हैं।
4: अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई थी उनके कालीघाट स्थित आवास पर, और ये उनका कालीघाट स्थित आवास है जहां पर बैठक बुलाई गई थी। सारे विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन ज्यादातर विधायक अनुपस्थित रहे। लगभग 20 विधायक ही इस मीटिंग में आ पाए, ऐसे में मीटिंग ही नहीं हो पाई, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जो टीएमसी की ओर से कहा गया कि ज्यादातर विधायक जो प्रोटेस्ट चल रहा है भिन्न जिलों में वहां पर हैं, इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता निकल नहीं पा रहे हैं, उनको निकालने के लिए, उनकी मदद के लिए ज्यादातर विधायक इस मीटिंग में नहीं आ पाए, इसलिए इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा है। आज
5: हमारा पास, हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास, एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरस कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम भी जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है।
2: इस बीच अभिषेक बनर्जी पर हमले के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आरोपियों को जब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, उन्होंने हमले के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: इस बीच एक और बड़ी खबर बंगाल से, टीएमसी के पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकारी सामान चोरी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी बर्धवान जिला के पूर्व स्थली उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व तृणमूल विधायक तपन चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल पर जमा भीड़ ने उन्हें घेर कर चोर चोर के नारे लगाए। तपन चैटर्जी के आवास से सरकारी तिरपाल, फुटबॉल, अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, इन सब हिंसा के खिलाफ जो प्रदर्शन का कार्यक्रम आज तृणमूल का होना है, वो कहां कहां पर होगा और उसमें कौन से बड़े नेता शामिल होने वाले?
4: जी देखिए, टीएमसी की ओर से जो कहा गया है कि विभिन्न पंचायत स्तर में जो ब्लॉक लेवल पे जो नेता हैं वो ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं, इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन कल जो देखने में आया बहुत कम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता कहाँ गए? आखिर विरोध प्रदर्शन जो इससे पहले तक हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता देखने को मिलते थे, वो लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसे में संशय बना हुआ है कि कितनी बड़ी संख्या में या कितने बड़े पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये ऐलान टीएमसी ने कल ममता बनर्जी के घर के बाहर से किया, जब मीटिंग में लोग नहीं आए, 60 विधायक नहीं आए, उसके बाद मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा और तब ये ऐलान किया गया। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितने बड़े पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन आज होता है। और कल यानी 2 अक्टूबर को ममता बनर्जी 2 जून को ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर रही हैं, तो वहां पर भी देखने वाली स्थिति होगी कि कितने कार्यकर्ता इस वक्त ममता बनर्जी के साथ अब आ रहे हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं टीएमसी सांसदों पर हमले को लेकर विपक्ष और बीजेपी की जुबानी जंग तेज है, आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते।
6: जनता सब देख रहे हैं, जनता जनार्दन, अभी अभी तो बीजेपी पावर में है ना, दे हैव टू रेंडर गुड गवर्नेंस, वो सुशासन उसका देने का काम है, अगर वो नहीं दे तो जनता सब देख रहे हैं, जब टाइम आएगा इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा।
7: तब तो बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि नौटंकी किसने ज्यादा करी, अभिषेक बैनर्जी या कल्याण बैनर्जी, एक को तो अंडे से वो घायल हो गए और एक को तो चोट चोट स्लोगन सुनते ही वो घायल हो गए और ऐसे गिरे कि आंखों में सनग्लास और कान में फोन, मतलब उनको मेरे ख्याल से ऑस्कर नहीं तो एटलीस्ट फिल्म फेयर का जो ये है प्राइस देना ही चाहिए।
8: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले है वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ, वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा। ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
9: आप देखें उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है, झूठा पार्टी झूठा प्रपंच बना के दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है ममता बनर्जी को, देख के मन लागे, बंगला में एक बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।
0: बंगाल से जुड़ी एक और खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल की कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, 35 मंत्रियों की शपथ होगी और शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में होगा जहां राज्यपाल आरएन रवि सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पैतीस विधायक शपथ लेंगे ऐसी जानकारी मिल रही है और राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे पद और गोपनीयता की। तो संभावित मंत्रियों के लिस्ट में कई दिग्गज शामिल हैं, अनुभवी युवा चेहरों को मिल सकती है जगह। आपको दिखा लेते हैं कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिसमें अर्जुन सिंह, स्वपन दास गुप्ता, पूर्णिमा चक्रवर्ती, शंकर घोष, अशोक डिंडा जैसे बड़े नाम शामिल है जो संभावित मंत्री बन सकते हैं। वही उमेश राय, अजय कुमार पोद्दार, कलिता मांझी, दीपक बर्मन, विशाल लामा, ये सभी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं मौमिता बिस्व मिश्रा, जोएल मुर्मू, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, शरद द्योत मुखोपाध्याय और इंद्रनील खान, इन सबके नाम सामने आ रहे हैं। तापस रॉय एक प्रमुख चेहरा, दूत कुमार मंडल, गार्गी घोषदास, मालती रावा रॉय, ये सभी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो 35 कुल संभावित नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है जो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकते हैं। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, पिछला रिकॉर्ड देखते हुए किसको कौन सा मंत्री पद मिल सकता है, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिली है?
4: जी देखिए, कुछ संभावनाएं जरूर सामने आ रही हैं, कुछ बातें हैं जो अभी तक सामने आ रही हैं। जैसे स्वपन दास गुप्ता जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, एजुकेटेड नेता हैं, उनको हो सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जगह दी जाए, शिक्षा मंत्री के तौर पर उनको एक स्थान मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्टर शारद्वत मुखर्जी हैं जो बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो विधाननगर से जीते हैं, पहली बार जीते हैं, उनको हो सकता है स्वास्थ्य विभाग में, चूंकि स्वास्थ्य विभाग अभी भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास है तो उनको एमओएस का वहां पर एक दायित्व मिल सकता है। इसके अलावा जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, इस कल्चरल डिपार्टमेंट में जो कल्चरल उससे जुड़े लोग हैं जैसे रूपा गांगुली, उनको स्थान मिल सकता है। तो इस तरह के कई नाम हैं जो जहां पर संभावित उनको जो मिनिस्ट्री है वो मिल सकती है। तापस राय जैसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, टीएमसी में भी बहुत वरिष्ठ नेता रहे, 2022 में बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद पहली बार वो बीजेपी की ओर से एमएलए बने, उनको भी हो सकता है कानून विभाग में स्थान दिया जा सकता है। तो ऐसी कई संभावनाएं सामने नजर आ रही हैं, अब देखने वाली बात होगी, कुछ ही क्षणों का इंतजार है, उसके बाद साफ हो जाएगा किसको क्या दिया जाएगा।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और बंगाल में बदलाव और बवाल की बात करेंगे, एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है बंगाल से। राजनीति के मैदान में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल कल मंच पर रविंद्र संगीत गाती हुई दिखाई दी। आसनसोल के रविंद्र भवन में आयोजित बांग्ला सांस्कृतिक उत्सव के दौरान उन्होंने रविंद्र संगीत गाया।

0: और अब बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां पर सूर्या हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। हत्या के लिए आरोपी के पिता ने ही उकसाया था। सूर्या को चाकू असद नाम के आरोपी ने मारा था। बाइक चलाने के विवाद के बाद जब असद ने अपने पिता को इसके बारे में बताया तो उसके पिता ने कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर देंगे। इसी के बाद सूर्य प्रताप की हत्या कर दी गई।
1: वो बकरीद का दिन था, 28 मई की दोपहर 3 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी असद और सूर्य प्रताप में झगड़ा हुआ। बाइक चलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। असद ने झगड़े की बात अपने पिता नवाब और अन्य आरोपियों को बताई। तभी गिरफ्तार आरोपी फरहान और आतिफ के साथ साथ अन्य आरोपियों ने मिलकर सबक सिखाने की साजिश रच डाली। महज बाइक चलाने का विवाद था। 28 मई की दोपहर 3:30 बजे आरोपियों ने सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया। फरहान ने पुलिस के सामने कबूला कि मैंने असद को चाकू दिया। असद के पिता ने कहा आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आरोपी पिता नवाब के ये कहते ही उसके बेटे असद ने सूर्या के पेट में चाकू भोंक दिया। हमले के बाद सूर्या खून खून होकर वहीं गिर पड़ा। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
2: सूर्य प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्य प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्य प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है। फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
1: इस मामले में हत्या के लिए उकसाने वाला असद का पिता नवाब के साथ साथ अन्य 2 आरोपी फरहान और आतिफ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है।
3: मैं बाबा योगी और मोदी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मेरी मांग पूरी करी, पर अभी मांग पूरी नहीं हुई है। अभी एक ही आरोपी मारा गया, जो मेन आरोपी था वही मारा गया है। अभी 6 आरोपी और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए।
1: अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक।
0: बात यूपी के एनकाउंटर पर सियासत की करेंगे। सियासत इस पर छिड़ गई है, पक्ष विपक्ष आमने सामने।
4: बंद करो योगी जी, जौनपुर में अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है। विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया, जंगल राज चल रहा है।
5: अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा? एक नाबालिग बच्चे को घर से बुला के और उसे ये कह के कि किस तरीके से कुर्बानी होती है, क्या तने कभी देखी है? और उसे कुर्बानी के नाम पे उसे कुर्बान कर दिया गया, उसका चक्कू से उसे रेत दिया गया, मार दिया गया। ये तो जितने लोग हैं, अभी पुलिस ने एक का एनकाउंटर किया है, पुलिस को सबका एनकाउंटर करना चाहिए और सबको मौत के घाट उतारना चाहिए, इसी तरीके से उतारना चाहिए। पुलिस पे फायरिंग करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, ये इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है, इससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है।
6: सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है, जो अपराध करेगा वो दंडित होगा। अरसद ने पुलिस पर हमला किया और मुठभेड़ में मारा गया।
7: सूर्या की नृशंस हत्या की गई,
6: मैंने बताया ना, उसने नृशंस हत्या की, उसे चाहिए था कि पुलिस के सामने सरेंडर करता, उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए तो उसका इलाज।
8: एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था? पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए, बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है।
0: तो अपराधियों को योगी सरकार का मैसेज क्लियर है, जैसे को तैसा। यही बात यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्णा आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं।
9: 31 मई 2025 को आप कार्यवाहक डीजीपी बने और 31 मई 2026 को आप पूर्णकालिक डीजीपी, कामकाज में क्या अंतर आएगा, क्या प्रायोरिटीज?
10: देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के तहत उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 8-9 सालों में जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है वो नीति लगातार जारी रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि एक सोच में बदलाव है। इस सोच में बदलाव के साथ आपने देखा होगा कि जब भी छोटी से छोटी घटना भी होती है, छोटे से छोटा अपराध भी होता है, उसके प्रति भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उस कानून के तहत जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कार्रवाई करती है और उन अपराधियों को सजा दिलाने का कार्रवाई करती है। तो ये प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी।
11: सर एक सवाल कि आपने अपराधियों के नियंत्रण की बात की, अपराध नियंत्रण की, तो एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पुलिस करती है, आज भी लखनऊ में भी एनकाउंटर हुए, गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस की इन कार्रवाइयां भी रहती हैं।

0: नजर आएगी जब पूरी की पूरी टीम जो है वो एक तरीके से नई होगी और सबको पता होगा
1: ठीक
0: उनकी
1: है
0: क्या क्या जिम्मेदारी है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात कर्नाटक की करेंगे। 3 जून को डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में मंत्रियों की संख्या और डिप्टी सीएम के नाम पर कांग्रेस आलाकमान आज चर्चा करेगा। इसके साथ साथ नए मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे और कांग्रेस संगठन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। आज डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों कांग्रेस नेतृत्व में दिल्ली में मुलाकात करेंगे। शिवकुमार अभी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: तो कांग्रेस हाई कमान से डीके शिव कुमार की औपचारिक मुलाकात, उसके बाद कर्नाटक में शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली में बैठक की जाएगी। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं और वो शपथ जल्द लेंगे। कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे और इस पर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, ये जो बैठक होने वाली है और आला कमान से मुलाकात है, इसमें मंत्रियों के नाम फाइनल हो जाएंगे 3 जून तक?
1: बिल्कुल, देखिए जो मंत्रियों के नाम है उस पर मोहर लग जाएगी। आलाकमान के साथ बैठक है, तकरीबन 4 बजे तक राहुल गांधी दिल्ली में नहीं है, तो ये बैठक आप कह सकते हैं कि सेकंड हाफ में होगी। इसके अंदर ना सिर्फ जो जातीय समीकरण है उसको साधा जाएगा, क्योंकि आप जानती हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाया गया है, तो ओबीसी दलित इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा ये भी चर्चा होगी कि आखिर राज्यसभा की जो 3 सीटें आ रही हैं उस पर किसको उम्मीदवार बनाना है, एमएलसी की 7 सीटें आ रही हैं उस पर किसको उम्मीदवार बनाना है, और कोशिश होगी कि मोटा मोटा एक खाका तैयार किया जाए जो अगले 2 साल तक जो सरकार है उसमें खटपट खटपट ना हो। सिद्धरमैया को हटाया गया है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके करीबी हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। ऐसे में जो आलाकमान होगा वो चाहेगा कि एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाए डीके शिव कुमार के बीच में और सिद्धरमैया के बीच में, ताकि किसी प्रकार की कोई खटपट ना हो और जो पार्टी है वो यूनाइटेड लगे और एक साथ आप कह सकते हैं कि दो तरह का चुनाव है उसके अंदर बीजेपी के खिलाफ लड़े, तो आप कह सकते हैं कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी शाम तक।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात मौसम भी करेंगे, अब तक सूरज आंख दिखा रहा था लेकिन अब मौसम का रुख बदल गया है। राजस्थान और उत्तराखंड से कुछ हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने आज यूपी, दिल्ली और बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: ये खौफनाक तस्वीर उत्तराखंड के विकास नगर की है। जिड्डो के पास यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पहाड़ गिरते झरने ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि सड़क को निगलता चला गया। ऊपर झरना, नीचे खाई, पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो जहां था वहीं थम गया। सड़क पर उफनते झरने को देखकर चारधाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु ही नहीं, वहां से गुजर रहे राहगीरों के भी हाथ पैर फूल गए। एक तरफ पानी का प्रहार तो दूसरी तरफ तूफानी बवंडर। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच अचानक आए तूफान ने हाहाकार मचा दिया। ये रेतीला बवंडर इतना विशाल था कि कई किलोमीटर के इलाके को अपने चपेट में ले लिया। अचानक पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भीषण गर्मी से तप रहे उत्तरी राज्यों में भी एक बार फिर से आंधी और बारिश का प्रहार होने वाला है। मौसम विभाग ने आज यूपी, दिल्ली और बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश होगी और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर मना जश्न, 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड्स। बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, लोकभवन 35 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। रूपा गांगुली, अर्जुन सिंह, स्वपन दासगुप्ता और तपस रॉय समेत कई चेहरे दावेदार। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। 3 जून को डीके ले सकते हैं सीएम की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रूपये बढ़े। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर को भी 11 रूपये महंगा किया गया। कोलकाता में भी बढ़े दाम। बदलते मौसम की दिल दहलाने वाली तस्वीरें, देहरादून में पानी की तूफानी रफ्तार, जैसलमेर में रेतीले बवंडर से हालात बिगड़े। आज दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट।

9:30 बज गए हैं, वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। आज कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा, दिल्ली में 42 रुपए बढ़े दाम। कमर्शियल सिलेंडर अब 3,071.50 रुपए में मिल रहा था, वो आज से 3,113.50 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर के भाव में इजाफा, 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर दिल्ली में 821.50 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 53.50 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ये 3,255.50 रुपए में मिलेगा। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का, महंगाई मैन ने 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर किया महंगा। पहले महंगाई मैन ने जनता को छोटा सिलेंडर खरीदने को कहा, फिर वसूली चालू कर दी। फतेहपुर में सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, मामले में एफआईआर दर्ज, गरीब लोगों को प्रलोभन देकर कराया जा रहा है धर्मांतरण। अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर शोभा यात्रा के दौरान सड़नबाजी रोकने पहुंचे दरगाह से की गई मारपीट, ट्रैक्टर बाइक से खतरनाक सन से लगा जाम और अफरा तफरी, पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। गुजरात के अहमदाबाद में जिला प्रशासन के स्टेट हाईवे 17 के 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर हटाया गया अतिक्रमण। मेरठ में 3rd मंजिल से कूदी किशोरी, मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग में परिजनों ने लगाया युवक पर प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। राजस्थान के डिरवाना में 72 घंटे तक खदान में फंसा रहा मजदूर का शव, पानी से भरी मार्बल खदान बनी मौत का कारण। मजदूर के शव मामले पर सांसद हनुमान बेनीवाल पर सरकार का तीखा हमला, बोले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का समय है। बेंगलुरु में राज्यपाल के काफिले के दौरान ट्रैफिक रोके जाने से नाराज शख्स सड़क पर बैठा, अपनी गर्भवती पत्नी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। भोजपुर में सोन नदी में बड़ा हादसा, एक को बचाने गए 6 बच्चे डूबे, 3 की मौत, गांव में पसरा मातम। आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत, 75 रन बनाकर कोहली नाबाद लौटे। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 155 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। आरसीबी ने 156 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल किया, वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंद में 32 रन बनाए। आरसीबी लगातार 2 IPL ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बनी, इससे पहले मुंबई ने साल 2019-20 और चेन्नई ने साल 2010-11 में जीता था खिताब। राजस्थान रॉयल्स 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। सूर्यवंशी बने आईपीएल सीजन के इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर, 16 पारियों में 776 रन और 233 रन की धमाकेदार स्ट्राइक रेट रहा। वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किया अपने नाम, इसी के साथ वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का भी जीता अवार्ड। वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा 776 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप, 35 लाख रुपए और टाटा सियेरा कार मिली। आईपीएल में बेंगलुरु की जीत पर विराट कोहली ने मचाया धमाल, पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जमकर किया डांस। विराट कोहली के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने डांस कर जीत का मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हुबली में आईपीएल की बेंगलुरु की जीत पर लोगों ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, टीम को दी जीत की बधाई। कर्नाटक की हुबली में बेंगलुरु की जीत पर मना जश्न, फैंस सड़क पर उतरकर जमकर की आतिशबाजी। बेंगलुरु की जीत के बाद कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, जश्न मनाने वाली जगहों पर तैनात दिखे जवान। सीएम योगी का बिजनौर दौरा आज, पाक विस्थापित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। बिजनौर में 1,645 पाक विस्थापित परिवारों को भूमि धरी अधिकार पत्र देंगे सीएम योगी। लखनऊ से बिजनौर तक सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, मेधावियों का सम्मान और लाभार्थियों को सौंपेंगे अधिकार पत्र। प्रतिभा, मातृशक्ति और अंत्योदय पर जोर, सीएम योगी आज मेधावी छात्रों को करेंगे सम्मानित। बढ़ते अपराध को लेकर राजीव कृष्ण का बयान, यूपी में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। अभिषेक बैनर्जी के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला, बीजेपी समर्थकों पर लगाया आरोप। हमले के बाद कल्याण बैनर्जी के सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी पर हमला की निंदा की, बीजेपी बोली जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं सामने आता है। बंगाल में सियासी तनाव बढ़ा, कल्याण बैनर्जी बोले मेरी हत्या की कोशिश की गई। शशि थरूर ने अभिषेक बैनर्जी पर हमले की निंदा की, बोले राय का इजहार बैलेंस होना चाहिए, हिंसा से नहीं। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर, बीजेपी ने कहा चुनावी वादा पूरा किया। अशोक गहलोत बोले बंगाल की घटनाएं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय, युवा आ गया है। संजय राउत अभिषेक बैनर्जी पर हमले की निंदा की, कहा लोकतंत्र पर गंभीर खतरा। प्रियंका कक्कड़ का हमला, बोली विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। कपिल सिब्बल ने हमले को लोकतंत्र का ही हिंसा बताया, दोषियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए।
अधीर रंजन चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बोले सांसद की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। संजय निरुपम ने हमले की निंदा की, इसे बंगाल की पुरानी राजनीतिक संस्कृति से जोड़ा। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार बोले सांसद पर हमला लोकतंत्र के लिए खतरा।

के कविता ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा भारतीय राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आनंद दुबे बोले जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी राजनीतिक बैठक, मोदी सरकार के 12 साल पूरे के कार्यक्रम की समीक्षा होगी। नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन बैठक, नई राष्ट्रीय टीम जल्द घोषित होने के संकेत। पीएम मोदी आवास पर हाई लेवल बैठक, अमित शाह राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी तेज, 18 जून को 24 सीटों पर मतदान। शिक्षा व्यवस्था पर संसद की नजर, नीट एनटीए और सीबीएसई पर समिति करेगी समीक्षा। उत्तराखंड के विकास नगर में बारिश से आफत, यमुनोत्री हाईवे पर झरने का रौद्र रूप। भारी बारिश से सड़क बना दरिया, चारधाम यात्री रास्ते में फंस गए। पहाड़ों में मौसम का कहर, झरने से सड़क पर मलबा और पानी, यातायात ठप। वायरल वीडियो में दिखा खौफनाक नजारा, हाईवे पर रुके कई गाड़ियां। ऋषिकेश देहरादून में भारी जाम, हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर घंटों फंसे रहे वाहन। लखनऊ में मौसम बदला, भीषण गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। नैनीताल में सुहाना मौसम, पर्यटकों की भरी बढ़ गई भीड़, घाटियों में रौनक। राजस्थान में चली धूल भरी आंधी, जैसलमेर में दिन में छाया अंधेरा। रेतीले तूफान से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में बिजली गुल और अंधेरा। रामगढ़ और मोहनगढ़ में धूल भरी आंधी, गर्मी से राहत लेकिन मुश्किलें बढ़ी। गाजियाबाद में दोस्त से निकला कातिल, पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद में 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। बुलंदशहर कोर्ट में बंदर ने 2 लाख रुपए से भरा बैग छीना, पेड़ों से नोटों की हुई बारिश। मुजफ्फरनगर में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने गला काट कर उसकी हत्या की, मौके से फरार। हिमाचल कसौल में पार्किंग वाद हिंसक हुआ, पर्यटक ने स्थानीय व्यक्ति को गोली मारी। आगर मालवा में बिजली विभाग ने अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, कई मशक के बाद आग पर काबू। मनेर में एसआईटी और रेलवे पुलिस ने एलटी एक्सप्रेस से अंतर जिला शराब तस्करी गिरोह का मुख्य सदस्य पकड़ा। गोलर के डबरा शहर इलाके में दिनदहाड़े किशोर का अपहरण, पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। चंबा की गहरी खाई में गिरी पर्यटक की टैक्सी, 8 लोगों की मौत। बुलढाणा में किसान ने ट्रैक्टर को बैलगाड़ी से बांधा, डीजल लेने के लिए फ्यूल पंप तक ले गया। तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की मासूमियों को फिदा हुए निर्देशक शेखर कपूर, एक्स पर लिखा, वैभव अगर इतने जबरदस्त क्रिकेटर ना होते तो फिल्म मासूम में कास्ट करता। इन दिनों फिल्म मासूम द न्यू जनरेशन पर काम कर निर्देशक शेखर कपूर, 1983 में आई क्लासिक फिल्म मासूम का सीक्वल है ये। तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म करप्पू ने सिर्फ 15 दिन में दुनिया भर में कमाए 300 करोड़। फिल्म बरामद में रणवीर कपूर के राम की भूमिका निभाने वाले टीवी के राम अरुण गोविल बोले, मेरा निर्भया किरदार आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर बोले निर्देशक इम्तियाज अली, रणवीर कपूर की जिंदगी बदल सकता है ये किरदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, बोला नया समझौता नहीं तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका कड़ा रुख, ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर सीधे सैन्य विकल्प की बात कही। अमेरिका ने ईरान को समझौते के लिए भेजा बेहद कड़ा प्रस्ताव, ईरान के फंड रिलीज दावे को किया खारिज। ईरान के शीर्ष वार्ताकार कलीबाफ का बयान, दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, सिर्फ ठोस नतीजों पर भरोसा है। अमेरिका के साथ समझौते पर ईरान की सख्त शर्त, बोले कलीबाफ, जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं कोई डील नहीं। फारस की खाड़ी में तनाव, ईरान का दावा, अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया। IGC का दावा, ईरानी हवाई सीमा में घुसे अमेरिकी ड्रोन को नष्ट किया। लेबनान में इजरायली सेना की घुसपैठ, हिजबुल्लाह के गढ़ में बड़ी कार्रवाई का दावा। इजरायली सेना ने ब्लू फोर्ट किले पर कब्जे का किया दावा, क्षेत्र में बढ़ा तनाव। इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड बोले, ब्लू फोर्ट पर कब्जा, रणनीतिक जीत, इजरायली झंडा लहराया गया।

0: बेंगलुरु ने एक बार फिर आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उसने गुजरात को 5 विकेट से मात दी। गुजरात पहले खेलते 156 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं फाइनल का पूरा एक्शन।
1: टू ट्रॉफीज,
2: ये लम्हे यादगार है,
1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर चैंपियन,
2: ये जश्न शानदार है।
1: 2026 अगेन द विन,
2: ये विराट विजय का ऐसा सिलसिला है जो सालों तक फैंस को गर्व करने का मौका देता रहेगा। बेंगलुरु ने फिर जीता आईपीएल खिताब। फाइनल में गुजरात को दी 5 विकेट से मात। बेंगलुरु ने हासिल की विराट विजय। शुरू से लेकर आखिर तक, चौकों से लेकर छक्कों तक, मैदान के हर कोने तक विराट कोहली ही छाए रहे। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इम्तिहान बड़ा था। वेंकटेश अय्यर के साथ ओपनिंग करने उतरे विराट ने 5 ओवर होने से पहले ही 63 रन की साझेदारी कर डाली। फिर टीम को 2 झटके लगे तो विराट ने जीत की मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अपने ही अंदाज में वो रन बनाते रहे। आखिरकार उनकी 75 रन की पारी ने गुजरात के अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर आया वो लम्हा जब विराट के मन की मुराद पूरी हो गई, विजय सिक्सर लगाने की। 156 रन का लक्ष्य दिया था गुजरात ने। टॉप ऑर्डर फ्लॉप, हाफ सेंचुरी जमाई थी सुंदर ने। गुजरात ने तो अपने ही मैदान पर हाहाकारी शुरुआत की थी। हालात इतने बदतर थे कि 26 रन होते होते दोनों सलामी ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। लगा कि गुजरात की टीम शायद शुरुआती झटकों से उबर जाएगी, लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 100 रन होने से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट होकर पवेलियन में आराम फरमा रही थी। एक छोर पर वॉशिंगटन सुंदर अकेले ही लड़ते रहे, रन बनाते रहे और किसी तरह हाफ सेंचुरी जमा कर गुजरात का स्कोर 150 के पार ले जाने में कामयाब रहे। आज
0: बेंगलुरु के खिताबी जीत के हीरो रहे विराट कोहली। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 975 रन की पारी खेली। इसके लिए विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। पूरे सीजन में उन्होंने 675 रन बनाए। देखिए विराट परफॉर्मेंस पर ये खास रिपोर्ट।
2: मैदान का हर कोना विराट के शॉट से गुलजार हो रहा था। गुजरात के घरेलू मैदान में कोहली कोहली गूंज रहा था। आखिरकार 75 रनों की उनकी इस पारी ने बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए विराट ने। 9 चौके, 3 छक्के जमाए विराट कोहली ने। इस सीजन 675 रन बनाए विराट ने। पूरे सीजन गदर ढाता रहा विराट कोहली का बल्ला। उनके तेवर, उनकी ताकत और उनकी तकनीक ने बेंगलुरु की कामयाबी की ऐसी इबारत लिख दी कि एक के बाद एक विरोधी सरेंडर करते चले गए। वो आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिसने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हों। जाहिर है टीम की कामयाबी में करिश्मा योगदान देने के बाद हौसला बढ़ता है और दिल को एक सुकून मिलता है। सपने के एक बार फिर साकार होने से बेहद खुश हैं विराट। विराट ने इन लम्हों के लिए सालों तक इंतजार किया है। उनकी कप्तानी से पहले भी और कप्तानी के दौरान भी खिताब हमेशा दूर ही फिसलता रहा। अब उनके बल्ले ने लगातार 2 साल तक बेंगलुरु की विराट विजय की पटकथा लिखी तो एक बार फिर हर फैन यही कह रहा है कि विराट जैसा कोई नहीं। आज तक ब्यूरो।
0: आरसीबी ने फाइनल जीता, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पूरे आईपीएल सीजन में वैभव ने जैसा परफॉर्म किया उसे देखकर सभी हैरान थे। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी की बदौलत वैभव ने ऑरेंज कैप अपने नाम किया।
2: राजस्थान रॉयल्स भले आईपीएल 2026 में ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोला। 15 साल के सीवा बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया है और ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए। 732 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे स्थान पर रहे। साई सुदर्शन ने इस सीजन में 722 रन बनाए। इतना ही नहीं, वैभव ने इस सीजन में कई कीर्तिमान कायम किए हैं। वो इस सीजन के सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी हैं। वैभव ने पूरे सीजन में कुल 72 सिक्सर जड़े, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला है। वैभव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। इस खिताब की दौड़ में वो खिलाड़ी शामिल थे जिनका जन्म 1 अप्रैल 2000 के बाद हुआ। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी वैभव के नाम रहा, जिसके लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप अपने नाम की, तो वहीं रबाडा ने भी खिताब के मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। गुजरात टाइटंस आईपीएल सीरीज गंवा बैठी, लेकिन टीम के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पर्पल कैप अपने नाम कर लिया। लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहने वाले भुवनेश्वर कुमार इतिहास रचने से चूक गए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: वक्त ईश्वर से ब्रेक का हौसला, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक।
4: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen. Beauty.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
1: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
0: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गाजियाबाद में एक हत्या हुई, एक परिवार का बेटा चला गया, गुस्सा उठा, सवाल उठे और फिर पुलिस की कार्रवाई हुई। सूर्या की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही पुलिस की बंदूक से निकली गोली ने एक नया संदेश लिख दिया। सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी अब असद एनकाउंटर में मारा गया।
3: असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना थोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है।
2: गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या की हत्या बकरीद वाले दिन यानी 28 मई को हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीएम योगी इन 48 घंटे में दो बार संदेश दे चुके हैं कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरसों पहले विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार का ब्लूप्रिंट रख दिया था। यही वजह है कि यूपी में हर एनकाउंटर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं रहता, वो राजनीतिक संदेश बन जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है और इस बार भी उठा रहा है।
4: एनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं, ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था, कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था, पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं।
2: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन नैरेटिव आकार लेने लगा है। कांग्रेस योगी राज को जंगल राज बता रही है। गाजियाबाद का एनकाउंटर यूपी की राजनीति में ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनावी रैलियों में भाषण भुलाए जा सकते हैं लेकिन घर लौटते वक्त सुरक्षित महसूस करने का एहसास नहीं भुलाया जा सकता। तो क्या उत्तर प्रदेश को योगी का मॉडल पसंद है?
5: कुछ है पर पूरी तरह नहीं, जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से कर किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए।
2: सूर्या की हत्या से मुस्लिम धर्म गुरु आहत है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन हत्यारे को शैतान बता रहे हैं।
6: इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया। किसी का भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका पोता चला गया, जिसका नवासा चला गया, उस पर क्या बीत रही होगी, बहुत तकलीफ हुई।
2: यूपी में अब सवाल नाम का नहीं अंजाम का पूछा जा रहा है। गोली गाजियाबाद में चली है लेकिन उसका राजनीतिक असर 2027 तक जाएगा। अपराधी का अंत हुआ है लेकिन बहस की शुरुआत अब होगी। योगी का दावा फिर चर्चा में है और विपक्ष हो गया है आग बबूला। अरविंद ओझा, मयंक गौर और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार। लोक भवन में 35 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। रूपा गांगुली, अर्जुन सिंह, स्वपन दास गुप्ता और तपस रॉय समेत कई चेहरे दावेदार। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान। आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। 3 जून को डीके शिवकुमार ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा। कोलकाता में भी बढ़े दाम। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली। रात भर मना जश्न। 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड्स। बदलते मौसम की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। देहरादून में पानी की तूफानी रफ्तार। जैसलमेर में रेतीले बवंडर से हालात बिगड़े। आज दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। आज सुबह में आपका स्वागत है। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में चार बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि दो टीएमसी सांसदों पर हमले के बाद कैसे पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल बढ़ा हुआ है। साथ ही बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी की टीम में किसे किसे मौका मिल सकता है। इसके साथ बात करेंगे गाजियाबाद में सूर्य चौहान मर्डर केस की, जहां मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उधर दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी एमसीडी पर गंभीर आरोप लगा रही है। तो इस सब की बात हम करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के सत्ता से जाने के बाद से बवाल थम नहीं रहा है। पहले अभिषेक बैनर्जी और फिर कल्याण बैनर्जी पर हमले के बाद ये संग्राम और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच पूर्व टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी पर तनाव और ज्यादा बढ़ता ही नजर आ रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जो ममता बैनर्जी की चिंता बढ़ाने वाली है। खबर है कि आज ममता बैनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ज्यादातर विधायक शामिल ही नहीं हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि यह भी बताया जा रहा है कि करीब 60 विधायक इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए, जिसके बाद बैठक को ही कैंसिल करना पड़ा। उधर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि ज्यादातर विधायकों ने फोन कर बता दिया था कि मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अपने इलाकों में हिंसा के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी पार्टी को पहले से ही थी, ये आयोजित था, तो बैठक बुलाई ही क्यों गई, या विधायकों के न आने की वजह के बाद अब ये दलील दी जा रही है, ये सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा जुड़ गए हैं। सीधा रुख उन्हीं का करते हैं। अनुपम, सवाल ये लाजमी है कि अगर पहले से विरोध प्रदर्शन का प्लान था और ये सुनने में भी आ रहा था, तो फिर ये बैठक क्यों बुलाई गई, क्योंकि इससे तो किरकिरी ही हो रही है।
1: जी बिल्कुल, और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी दो बैठकें ऐसी हो चुकी हैं जहां पर विधायक अनुपस्थित रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बैठक थी, लेजिस्लेटिव बैठक थी, जिसमें सभी 80 विधायकों को, जो तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक हैं जो जीते हैं, उनको बुलाया गया था। लेकिन खास बात है कि ज्यादातर विधायक, यानी कि दो तिहाई विधायक, 60 विधायक यहाँ पर अनुपस्थित रहे और सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। अब बाद में टीएमसी की ओर से कहा गया कि वो अपने इलाकों में प्रोटेस्ट रैलीज, इसके अलावा जो कार्यकर्ता भागे हुए हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, उनके लिए वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इससे एक बात साफ है, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी जब सोनारपुर गए, उनके साथ भी कार्यकर्ता बहुत कम थे। जब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, उनके साथ विधायकों की संख्या बहुत कम थी, उनसे मिलने विधायकों की संख्या बहुत कम हो रही है। तो ऐसे में एक बात तो साफ तौर पर उभर कर आ रही है, जो दिख रही है, कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो अब कतरा रहे हैं, मीटिंग तक में अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे में ममता बनर्जी जब 2 जून को, यानी कल, वो सड़कों पर उतरेंगी, विरोध प्रदर्शन करेंगी, तो उनके साथ कितने लोग होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।
0: बिल्कुल अनुपम, आप हमारे साथ बने रहें। तो अंदरूनी कलह की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस ऐसी ही एक और खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल टीएमसी सांसदों पर हमले या उसके दावे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। शनिवार को पार्टी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई, तो रविवार को कल्याण बैनर्जी ने भी दावा किया कि हुगली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पत्थर मारे। ये दो तस्वीरें उन हमलों की ही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो पिछले हफ्ते हुई हैं, और उसके बाद लगातार ये मामला सियासी रुख ले रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मदन मित्रा की, जिन्होंने आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। और यही कहा जा रहा है कि कई विधायक भी हैं, कई सांसद भी हैं जो कि टीएमसी के हैं, वो विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। तो अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के सिलसिले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और खबर इस वक्त बड़ी जो आ रही है वो ये है कि इस गिरफ्तारी को लेकर कथित तौर पर 1 महीने पहले तक पूर्व टीएमसी विधायक लवली मैथ्रा के ये लोग सहयोगी थे, जो गिरफ्तार किए गए हैं। इस खुलासे को लेकर कई सवाल अब विपक्षी पार्टियां और कई बीजेपी के लोग भी खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने अब सवाल पूछा है कि क्या ये महज एक घटना थी या फिर खुद टीएमसी के भीतर गुटबाजी के ये संकेत हैं। तो बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के मोड़ रही है, खुद टीएमसी के अंदरूनी कलह से जोड़ रही है।
2: अभी तक तो जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, तो 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाबली मैत्र जो वहां के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, अटैक किसने किया या किसने करवाया? क्या बीजेपी के ऊपर जो जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे, तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए।
0: टीएमसी सांसदों पर हमले को लेकर विपक्ष और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई। देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं।
3: जनता सब देख रहे हैं, जनता जनार्दन, अभी तो बीजेपी पावर में है ना, दे हैव टू रेंडर गुड गवर्नेंस, वो सुशासन उसका देने का काम है। अगर वो नहीं दे तो जनता सब देख रहे हैं, जब टाइम आएगा इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा।
4: तब तो बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि नौटंकी किसने ज्यादा करी, अभिषेक बैनर्जी या कल्याण बैनर्जी। एक को तो अंडे से वो घायल हो गए और एक को तो चोट चोट स्लोगन सुनते ही वो घायल हो गए और ऐसे गिरे कि आंखों में सनग्लास और कान में फोन। मतलब उनको मेरे ख्याल से ऑस्कर नहीं तो एटलीस्ट फिल्म फेयर का जो ये है प्राइस देना ही चाहिए।
5: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले है वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
6: आप देखें, उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे, बंगला में एक बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।
0: तो अब बड़ी खबर बंगाल से ही, बवाल से ही जुड़ी हुई। सत्ता बदलने के बाद से टीएमसी के नेता लगातार निशाने पर है। कल दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में टीएमसी सांसद बापी हल्दार के साथ और उनके दफ्तर में भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मथुरापुर थाने की पुलिस मौके पर तैनात की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सांसद के दफ्तर के भीतर सरकारी राहत सामग्री का बड़ा भंडार जमा करके रखा गया था। ये सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग एकत्र हुए और बापी हल्दार के कार्यालय में प्रवेश किया, जहां से कथित तौर पर विभिन्न सरकारी राहत सामग्री बरामद की गई है। निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र के प्रभावित लोगों में राहत सामग्री वितरित करने के बजाय मथुरापुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने उसे अपने कार्यालय में जमा करके रखा था। उनका कहना है कि वे उन राहत सामग्रियों को वापस लेने के लिए सांसद के कार्यालय तक पहुंचे थे। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का। अनुपम, लगातार हम देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं, दावे हो रहे हैं कि या तो नेताओं पर हमला हो रहा है या ये जो कार्यालय पर इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वहां पर छीना झपटी हुई है, अटैक किया गया है, तो क्या कह रही है इसको लेकर इस वक्त सरकार बंगाल की?
1: ये देखिए, पिछले कई दिनों से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर विभिन्न दफ्तरों में, खासतौर पर टीएमसी के ऑफिसेज में या टीएमसी नेताओं के दफ्तरों पर जनता अटैक कर रही है या पुलिस रेड कर रही है, तो विभिन्न चीजें बरामद हो रही हैं, सामग्री बरामद हो रही हैं। तो ऐसे में टीएमसी का साफ कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह की स्कैम हुए हैं, उन सबको खोला जाएगा और सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो वो फिलहाल देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरीके से जगहों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, बर्दवान में पूर्व विधायक टीएमसी के वो गिरफ्तार हो चुके हैं, इसी तरह बहुत सारे काउंसलर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ये कार्यवाही अभी चलेगी, ये सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया।
0: जी अनुपम, आप हमारे साथ बने रहे। और इस वक्त बंगाल से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, आज 35 मंत्रियों की शपथ होगी। बड़ी खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में होगा, जहां राज्यपाल आरएन रवि सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम का। अनुपम, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, कौन कौन होंगे शामिल और किसको मिल सकता है कौन सा विभाग?
1: जी बिल्कुल, थोड़ी देर में ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है और इस वक्त हम राजभवन में ही हैं, जहां पर ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां पर अभी तक जमावड़ा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है और कई भारी भरकम चेहरे जैसे तापस राय हैं, उनको कानून मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके बाद शारदवत मुखोपाध्याय हैं, मुखर्जी हैं, जो विधाननगर से आए थे, उनको स्वास्थ्य विभाग में एमओएस बनाया जा सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी खुद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, तो हो सकता है उनको एमओएस बनाया जाए। इसके अलावा काफी लोग हैं जिनको इस वक्त मंत्रालय मिलने वाला है, उत्तर बंगाल से कई लोग हैं, विभिन्न जिलों से लोगों को लाया जा रहा है, जैसे हावड़ा से उमेश राय को, 3 हिंदी भाषी जो विधायक हैं उनको चुना गया है और ये पहला मौका है जब बीजेपी सरकार में 3 हिंदी भाषियों को, एक उमेश राय, एक कुलटी के विधायक और दूसरा अर्जुन सिंह, 3 विधायकों को मंत्री पद दिया जा रहा है। रूपा गांगुली को हो सकता है कल्चरल डिपार्टमेंट से, चूंकि वो वहां पर कोई पद दिया जा रहा है। इसमें कई नाम हैं, कई क्षेत्र में चल रहे हैं, सुभाष गुप्ता, उनको एडुकेशन डिपार्टमेंट में जगह मिल सकती है। तो इस तरह से ये जो नाम है अभी चर्चा में है और कुल 35 लोग थोड़ी देर में ही शपथ लेने वाले हैं।
0: जी बिल्कुल, और ये भी बताइए, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है, लोगों का आना शुरू हो चुका होगा, लेकिन जिन जिन चेहरों की बात हो रही है, जो जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी के तहत, क्या सोच समझकर इस कैबिनेट की रूपरेखा को बनाया गया है?
1: देखिए, जो स्ट्रैटेजी है, हर जगह को उसका प्रतिनिधित्व मिले, सबसे बेसिक जो रणनीति है ये जो मंत्रिमंडल तैयार करने की पीछे, वो यही है कि हर जगह को, हर क्षेत्र को उसका प्रतिनिधित्व मिले। उत्तर बंगाल से प्रतिनिधित्व मिले, मथुरा इलाके से प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए मथुरा इलाके से सुब्रत ठाकुर हो सकते हैं मंत्री। इसके अलावा जंगल महल से पहले ही एक को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा चुका है, खुदीराम टुडू। इसके अलावा और भी 2 नाम चर्चा में है, हावड़ा जैसे, इससे पहले हावड़ा से कोई नहीं थे तो उमेश राय को यहाँ पे मंत्री बनाया जा रहा है। कोलकाता में 2-3 लोगों को नाम आ रहे हैं, तापस राय, पूर्णिमा चक्रवर्ती और स्वपन दास गुप्ता, तो कोलकाता का प्रतिनिधित्व भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है। जंगल महल की बात की, इसके अलावा जो कोयलांचल है, बर्धमान, आसनसोल, वहां से भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो सब क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई।
0: जी शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर दिल्ली से है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर टीम से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जल्द बड़े सांगठनिक बदलाव की तैयारी है, चर्चा है कि संगठन में पुराने चेहरों की जगह अब नए चेहरे लाए जा सकते हैं। 2 और 3 तारीख को दिल्ली में मंथन भी चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली में है। कई राउंड की मुलाकात राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े से हो चुकी है। प्रदेश के कई मंत्री, डिप्टी सीएम 2 और 3 जून को दिल्ली बुलाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि यह मुलाकात है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की, और कोशिश यह है कि यूपी बीजेपी में संगठन को एक नया स्वरूप दिया जाए, और इसके लिए सभी अहम लोग जो कि संगठन का हिस्सा हैं या सरकार का हिस्सा हैं, वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, आज की इस बैठक का फोकस क्या रहेगा, एजेंडा क्या है?
7: देखिए, सबसे बड़ा जो एजेंडा है, एक तो उत्तर प्रदेश की टीम को लेकर है, जहां उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ कई मंत्रियों को बुलाया गया है, क्योंकि 2027 में वहां चुनाव है। उससे पहले उनकी टीम को जो है पंकज चौधरी की नई टीम का स्वरूप कैसा हो, उसको लेकर जो पिछले 3 बैठकों के अंदर जो है वो माथापच्ची हुई है, और अब उसके बाद जो है ये मान के चला जा सकता है कि अगले 102 दिनों के अंदर जो है वो पंकज चौधरी की नई टीम मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आज नितिन नवीन ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, क्योंकि मोदी सरकार के जो 12 साल है वो 9 जून को कंप्लीट हो रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश भर के अंदर जश्न मनाएगी। और सबसे बड़ा कार्यक्रम ये रहने वाला है कि 12 साल लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री है जो लगातार रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसको लेकर और फिर एनडीए की जो बैठक है, तमाम किस तरीके के कार्यक्रम देश भर में रहेंगे मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के, उसको लेकर जानकारी होगी। और नितिन नवीन की नई टीम आनी है तो इस पुरानी टीम को नितिन नवीन की तरफ से धन्यवाद भी दिया जा सकता है।
0: जी हिमांशु, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। कल शाम पुलिस ने असद के पिता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर यह है कि पुलिस एक्शन के बीच इस केस में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूर्या चौहान असद का दोस्त था, उसकी हत्या में शामिल बाकी के आरोपी भी उसके दोस्त थे, इसलिए जब असद ने सूर्या को अपने घर बुलाया तो उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके लिए कैसी कातिलाना साजिश रची गई है। बताया जा रहा है कि सूर्या को चाकू से देखने वाला असद ही था, और हैरानी की बात यह है कि सूर्या का कत्ल करने के लिए असद को उसके ही पिता ने उकसाया था। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इसमें यह आ रही है कि असद का जो पिता है उसी ने अपने बेटे को उकसाया और कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। जो परिवार है सूर्या का वो चाहता है कि बाकी के आरोपियों के साथ भी न्याय किया जाए, और इस वक्त जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक असद दोस्त था सूर्या का, और यही वजह थी कि सूर्या बुलाने पर चला गया था उसके घर, जहां उसे घेर लिया गया और चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया।
8: 28 मई को ईद उल अधा के त्योहार के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवान बच्चों ने अपने ही दोस्त सूर्या चौहान को घर बुलाया और उसको बुलाकर ये कहा कि देखो कि कुर्बानी बकरे की कैसे होती है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे। और उस बच्चे को बुलाकर बेरहमी के साथ उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत दुख लगा सुनकर, इंसानियत का कत्ल है ये बच्चे शैतान हैं जिन्होंने ये किया।
0: खबर दिल्ली से, जहां के मेहरोली इलाके में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको हादसे की वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। बिल्डिंग के गिरने का जो पल है वो लोगों ने मोबाइल में कैद किया कि किस तरीके से भरभराकर ये बिल्डिंग नीचे गिर गई और 6 लोगों की मौत हो गई। कई सवाल अब इस बिल्डिंग को लेकर खड़े हो रहे हैं कि इसकी जो बनावट थी वो कैसी थी, साथ ही जो काम चल रहा था इस बिल्डिंग में आखिर वो क्यों चल रहा था। सवाल ये भी है कि इसकी शिकायत भी की गई थी और इसको लेकर कुछ जवाब भी MCD ने दिए थे, जो अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद उसमें कई खामियां थी, कई कमियां थी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। मध्य पूर्व में फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के ड्रोन साइट पर हमला किया है, तो वहीं ईरान अमेरिकी ड्रोन को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है। इन सबके बीच कुवैत के एयर डिफेंस ने भी कुछ प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट किए हैं। कुवैत एयर डिफेंस ने मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं और फायर भी किए हैं। तो खबर यह है कि इंटरसेप्शन किया गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की गई है कुवैत की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, कुवैती एयर डिफेंस ने ये जो मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, इनका ओरिजिन कहां से ये आए हैं पता चल पा रहा है और किस तरफ जवाबी कार्रवाई की गई?
9: देखिए, ये जो मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं ये मूलतः ईरान की तरफ से दागे गए हैं। ईरान ने भी इस बात की पुष्टि की है और दोनों ही तरफ से, यानी अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वार किए हैं। हालांकि दोनों ही ये भी कह रहे हैं कि सीज फायर अभी नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि गोरख और खासतौर कश्म आइलैंड जो हैं ईरान के, उनके खिलाफ कार्रवाई का दावा अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से किया गया है। और अमेरिका का कहना है कि ईरान की तरफ से उसके खिलाफ जो ड्रोन दागे गए थे उसकी पलटवार की कार्रवाई में अमेरिका की सेंटकॉम ने, यानी सेंट्रल कमांड की तरफ से अमेरिकी सेना ने यह कार्रवाई की है। वहीं जवाबी कार्रवाई बताते हुए ईरान का यह कहना है कि उसने कुवैत में, चूंकि कुवैत में आप जानती हैं अंजलि अमेरिका का एयरबेस है वहां पर, अमेरिका का सैन्य ठिकाना है, और उसे निशाना बनाते हुए ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे समय में जबकि दुनिया उम्मीद कर रही थी कि कोई कूटनीतिक समाधान निकलेगा, 92 दिन हो चुके हैं।
0: बिल्कुल, सबकी नजर इसी बात पे है कि शायद इस युद्ध का कोई समाधान निकले। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
11: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेद।
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के आईटीओ स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग की बिल्डिंग में आग लग गई है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग में आग की खबर इस वक्त आ रही है। सेकेंड फ्लोर पर कह रहे हैं कि यह आग लगी है, वहां पर दमकल

0: फोकस रहेगा वहां पर मौजूद प्रशासन और दूसरी एजेंसियों का, वो ये कि आग को काबू में लाया जाए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, करीब 10 गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जो मशक्कत करके आग को काबू में लाने की कोशिश कर रही हैं। ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का सेकंड फ्लोर है जिसमें आग लगी है। ये एक प्रतिष्ठित संस्थान है, इसकी बिल्डिंग है, स्कूल की अपनी बिल्डिंग है। इसके अलावा अगर उस परिसर की बात करें तो वहां हॉस्टल भी है। तो किस हद तक, कहां, किस बिल्डिंग में ये आग लगी है, इसकी जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन जो इमारत है उसके सेकंड फ्लोर में आग लगने की बात कही गई है। कैसे लगी आग, क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ साफ नहीं हो पाया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। लेकिन इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जो इस वक्त आ गई हैं। ये तस्वीरें हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की, आईटीओ में स्थित एक बेहद प्रतिष्ठित संस्थान, कई सालों पुराना यह संस्थान, जहां पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्रेन के जरिए दमकल कर्मचारी सेकंड फ्लोर में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
2: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो, फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। टू टैप्स लेटर, क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: Pure Ayurvedic Beauty.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: सोरोस, सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान सोरोस, एवरीबॉडी इज कम।
10: दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी।
9: 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ टेररिस्ट के चेहरे, दिखाओ जरा।
10: जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसे मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके उस पर हमारे साथ ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं बुलाए फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार, खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पर, लोगों का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पर पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया।
9: 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई?
10: सोरोस इज।
9: सोरोस, सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान सोरोस, एवरीबॉडी इज कम।
10: दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी, देन आफ्टर दैट
9: दैट्स क्रेजी,
10: दैट इज वेरी क्रेजी,
9: यू नो
10: दैट इज नॉट राइट।
9: एंड योर स्टूडेंट्स, आई मीन यू गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग, यू आर आस्किंग फॉर योर आंसर शीट, दैट्स ऑल, नाउ सडनली यू बिकम एंटी नेशनल। You have to accept the problem if you want to solve the problem.
10: Right.
9: You are just refusing to accept that the problem, blaming the poor kids and saying, you know, you are deep state, you are spies or terrorists.
10: Then we are trying to be terrorists in India.
9: Terrorists. Shabash.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज

दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं की बैठक। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े सांगठनिक बदलाव की तैयारी। यूपी में बीजेपी बड़े बदलाव की तैयारी में है। 2 और 3 तारीख को दिल्ली में मंथन होगा। उप मुख्यमंत्री समेत कुछ मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी का 17 दिवसीय अभियान 5 जून से शुरू होगा। जनसंपर्क कार्यक्रम लखनऊ में 5 जून को एक पेड़ मां के नाम के साथ शुरू होने वाला है संकल्प कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 21 जून के विश्व योग दिवस तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा आज। पाक विस्थापित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। बिजनौर में 1645 पाक विस्थापित परिवारों को भूमि धरी अधिकार पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी। 50 पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा लाभ। लखनऊ से बिजनौर तक सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम। मेधावियों का सम्मान और लाभार्थियों को सौंपेंगे अधिकार पत्र। प्रतिभा मातृशक्ति और अंत्योदय पर जोर। सीएम योगी आज मेधावी छात्रों को करेंगे सम्मानित। लाभार्थियों को देंगे योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा। दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने सीएम योगी को पत्र लिखा। शंखभारी त्रासदी पर मृतकों के परिजनों और प्रभावित दुकानदारों को मुआवजे की मांग।

परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मी भी परीक्षा हॉल में नहीं ले जा सकेंगे अपना मोबाइल। बढ़ते अपराधों को लेकर पूर्णकालिक डीजीपी बने राजीव कृष्ण का बयान, यूपी में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा, नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, उनका बयान। प्रयागराज में जबरन वसूली और धमकी के आरोपी टीएमसी के पूर्व विधायक होकनदास को प्रयागराज से किया गया गिरफ्तार।

0: प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों ने बुलडोजर से गिराया घर, फायरिंग और लूट के आरोप, 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर कोर्ट में बंदर ने 2 लाख रुपए से भरा बैग छीना, पेड़ से नोटों की बारिश हुई। झांसी में मंदिर बना कुश्ती का अखाड़ा, ट्रस्ट के अध्यक्ष और पुजारी की पत्नी के बीच हुई हिंसक झड़प, कैमरे में कैद। सुल्तानपुर में पिता ने बेटी को कई बार नाले में धक्का दिया, वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, मामले में FIR दर्ज, गरीब लोगों को प्रलोभन देकर कराया जा रहा था धर्मांतरण। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के ITO स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग में आग लगी है, इस वक्त ये खबर आ रही है। और ये जो आग लगी है ये सेकंड फ्लोर में लगी है। दमकल की इस वक्त 8 गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सेकंड फ्लोर में लगी आग को बुझाने की कोशिश, वहां मौजूद फायर ब्रिगेड की लगातार कोशिश, क्रेन की मदद से पानी की बौछार को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। सेकेंड फ्लोर में आग लगने की खबर आ रही है, वजह क्या रही है ये अभी इस वक्त साफ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सुबह का वक्त, सुबह सुबह ये आग लग गई है, धुआं बाहर निकल रहा है खिड़कियों से। आग कितनी बड़ी है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन 8 गाड़ियों का पहुंचना अहम हो जाता है। और ये इलाका भी बहुत ही संवेदनशील है, ITO का ये जो इलाका है, इस इलाके में कई अहम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जो सरकारी भी हैं और गैर सरकारी भी हैं। इसी इलाके में आपको कई बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, चाहे वो DDA की बिल्डिंग हो, पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग हो, कई बिल्डिंग्स यहाँ पर इस जगह पर मौजूद हैं। और उसी के पास में ITO के इस इलाके में ये जो बिल्डिंग है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की, जहाँ पे आग लगी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंशुल सिंह। अंशुल, तस्वीरें हमारे सामने हैं, धुआं बाहर निकल रहा है, मशक्कत पूरी हो रही है क्रेन की मदद से सेकंड फ्लोर तक पानी की बौछार को पहुंचाने की, क्या ताजा हाल है वहां पर?
1: जी, अभी तक जो खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की जान के नुकसान की अभी तक संभावना नहीं सामने आई है। जो लोग थे अंदर थे वो सब सेफली बाहर निकल गए हैं। इसके अलावा जो फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि करीब 9:47 पर उनके पास ये फोन आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो ITO पर है, जो दिल्ली का एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, स्पेशली अभी पीक आवर में जब लोग अपने ऑफिस जाते हैं, वहां से सेकेंड फ्लोर में धुआं निकलने की बात कही जाती है। जब वहां पे टीम पहुंचती है तो ये देखा जाता है कि वहां पे अंदर कोई लोग नहीं फंसे हैं, लेकिन अभी भी जो धुआं है वो लगातार बाहर आ रहा है। और 8 फायर की गाड़ियां हैं जो इस वक्त इस पूरे ऑपरेशन में लगी हैं और आग को बुझाने का काम कर रही हैं।
0: जी बिल्कुल, शुक्रिया अंशुल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत के तमाम शहरों में हुई बारिश से गर्मी से कुछ राहत बनी हुई है। दूसरी ओर उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बीच भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों पर पहुंचने से काफी दिक्कतें भी वहां पर पैदा हो रही हैं और जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं। उधर कल राजस्थान में फिर धूल भरी आंधी और तेज हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। आज से जून का महीना शुरू हो गया है। नौतपा के बीच बदला मौसम राहत तो दे रहा है, लेकिन आंधी पानी से कई जगहों पर दिक्कतें भी हो रही हैं। तो सबसे पहले बात उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश की। बीते 3 दिनों से उत्तर भारत में मौसम बदला हुआ है, कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के बीच कई जगहों से मुसीबत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।

0: मौसम ने ऐसी करवट ली कि रास्ते पर सैलाब मुसीबत बनकर बहने लगा। तेज बारिश के बीच झरने ने रौद्र रूप लिया और पानी सड़क तक पहुंच गया। तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की हैं, जहां भारी बारिश आफत लेकर आई। इन तस्वीरों को देखिए, झरना पूरे वेग के साथ बहता जा रहा है, पानी सड़क पर आ गया है। गाड़ियां थम गई हैं, लोग दूर खड़े हैं और उनके मन में दहशत साफ महसूस की जा सकती है। ये रास्ता चार धाम की ओर जाता है, लिहाजा काफी देर तक गाड़ियां यहां फंसी रही। लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड के कई शहरों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। कई शहरों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से मुसीबत भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर्फ पहाड़ पर हालात ऐसे नहीं है, उत्तर भारत के कई राज्यों की स्थिति कुछ इसी तरह की। आंधी पानी से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई जगहों पर तेज बारिश मुसीबत बनकर सामने आई है। आने वाले एक दो दिन में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान है, यानी गर्मी से राहत का दौर कुछ और दिन तक चलेगा। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात राजस्थान के जैसलमेर में आए रेतीले तूफान की, जिसे पूरे इलाके में धूल ही धूल छा गई।

0: एक बार फिर राजस्थान में रेतीला तूफान उठा। एक बार फिर राजस्थान में अंधेरा छा गया। एक बार फिर जैसलमेर में मौसम ऐसा बदला कि हर जगह धूल ही धूल बिखर कर फैल गई। लगातार दूसरे दिन आए भीषण रेत के तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के साथ उठी धूल की विशाल दीवार से दिन में भी अंधेरे जैसा माहौल बन गया। आसमान लाल दिखाई देने लगा, विजिबिलिटी शून्य हो गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार कई दिनों तक चली भीषण लू के चलते रेगिस्तानी इलाका बेहद गर्म हो गया था। जमीन के ऊपर की गर्म हवा तेजी से ऊपर उठी, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसको भरने के लिए तेज हवाएं आसपास से तेजी से पहुंची और थार मरुस्थल की बड़ी मात्रा में रेत को आसमान में उड़ा ले गई। इसी वजह से धूल की ऊंची दीवारें बनी और रेत का तूफान खड़ा हो गया। इस तूफान ने लंबे समय से जारी भीषण गर्मी को काफी हद तक कम कर दिया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान ज्यादा यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव के बीच घरों में ही रहने का अलर्ट है, ताकि मौसम के इस बदलाव के बीच जोखिम कम रहे। आज तक ब्यूरो।
1: देश के पहाड़ी इलाकों में भारी भीड़ और ट्रैफिक जैम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के चलते लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें दिख रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धाम में यात्रियों की खूब भीड़ है, जिसकी वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पर गाड़ियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा के लिए यहां रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी है। उधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में वीकेंड टूरिस्ट रश की वजह से पलचान से लेकर मनाली तक सड़कों पर भीड़ और जाम की स्थिति बनी हुई है।
2: बीते दिनों पूरे उत्तर भारत में तपती गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि जीना मुहाल हो गया। शहर शहर पारा 45 के पार पहुंचा। लू के तेज थपेड़ों के बीच घर से निकलना दूभर हो गया। लिहाजा इस प्रचंड गर्मी से राहत के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों का रुख किया। धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ी कि मानो सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। बात चाहे उत्तराखंड की हो या हिमाचल प्रदेश की, इन दिनों एक सी तस्वीर नजर आती है। टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से भरे पड़े हैं, रास्तों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं।
3: श्री हेमकुंड साहब के लिए आए थे यात्रा के लिए, और हमने जहां पे जोशीमठ के लिए, जहां पे जो बहुत बड़ा लंबा जाम है, और तकरीबन जहाँ 3-4 किलोमीटर आगे और 3-4 किलोमीटर पीछे जाम लगा हुआ है, और मान लीजिए भी जो भी भाईजान जहां पे आना चाहता है, जहां तो 2-4 दिन लेट आए और जाम, मतलब कि अपना इस जाम के बारे में सोच के आए, ताकि उसको आने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके।
4: केदारनाथ में रास्ता बहुत बुरा है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो उधर जो विजिटर है, बहुत लोग बाहर से भी, बाहर कंट्री से भी आ रहा है।
2: पहले उत्तराखंड के जोशीमठ की इन तस्वीरों को देखिए। दूर तक गाड़ियों की कतार नजर आ रही है। रास्ते पर लंबा जाम है, लोग फंसे हुए हैं। घंटों इंतजार ने परेशानी बढ़ा दी है।
3: जहाँ पे 1.5 से 2 घंटा हो गए इस जाम में फंसे हुए हैं, और हमारे साथ बच्चे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं, जो कि हमें मान लो काफी परेशानी हो रही है, और तकरीबन हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है।
2: अब मसूरी का हाल देखिए। बड़ी तादाद में पर्यटक मसूरी घूमने पहुंचे हैं। पूरा शहर सैलानियों से भरा हुआ है।
5: पूरे देश में नौतपा का कहर बरप रहा है। तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से पार तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो है वो भारी संख्या में टूरिस्ट देखा जा रहा है। इस वक्त हम मसूरी में मौजूद हैं, और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइब्रेरी चौक का ये एरिया है जहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुँच रहा है। और मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम खुशनुमा है, जिसके चलते मसूरी में जो है वो भारी संख्या में जो है वो पर्यटक पहुँच रहा है। और ये वो कतारें हैं जो नीचे से पहुंच रही है, दिल्ली नंबर की गाड़ी हो, हरियाणा नंबर की गाड़ी हो, खासतौर से हरियाणा नंबर की गाड़ियां भी आज यहां पे देखी जा रही हैं और लोग जो है वो मौसम का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि आगे की तरफ दिखाते चले। ये वो नज़ारा है जो लाइब्रेरी चौक का इस वक्त है। होटल्स की अगर हम बात करें तो होटल्स भी जो है वो अच्छी संख्या में पैक हो रहे हैं। मध्यम वर्गीय होटल की बात करें या उच्च वर्गीय होटल की बात करें, तमाम जो होटल्स हैं वो पूरी तरीके से पैक चल रहे हैं। लगभग 80% ऑक्यूपेंसी मसूरी की वीकेंड्स में बताई जा रही है और अनुमानित है कि अभी भी जो है वो भारी संख्या टूरिस्ट की पहुंचेगी। अब ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है वो सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम बदलेगा और एक बार फिर से मसूरी में ठंडक लौटेगी।
6: मैं तो बहुत ही मतलब ज्यादा गर्मी हो रखी है, और अगर वहाँ से कंपेयर करें यहाँ का, तो यहाँ का बहुत अच्छा वेदर है। इवन यहाँ पे हवा चल रही है, बारिश हो रही है, मतलब मौसम एक घंटे में चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
7: बहुत डिफरेंस है, रात को तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन सुबह ठीक ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, तो रात का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और रात को मजा है यहाँ पे।
8: हम तो मिला था लेकिन इतना भी नहीं मिला, नाइट में आए थे ना, इस वजह से तो बढ़िया लगा आगे।
5: बढ़िया लगा।
8: हाँ
5: तो दिल्ली के कंपैरिजन में टेम्परेचर थोड़ा लो है, धूप है बट हवा ठंडी है, तो बहुत रिलीफ है यहाँ तो, और बाकी सफर तो अच्छा रहा।
2: गर्मी से राहत पाने के लिए लाखों लोग पहाड़ों की ओर रुक कर रहे हैं। पहाड़ों के हर पर्यटन स्थल पर भारी भीड़ दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर है, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट रोहतांग पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं।
9: पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे पर्यटकों ने पहाड़ी राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। मैं इस समय मनाली के पर्यटन स्थल रोहतांग में हूँ। आप 13,000 फीट की ऊंचाई पर आप यहाँ का एक नजारा देख सकते हैं।
10: फर्स्ट स्नो है ये, मैं पहली बार स्नो देख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और तो सुबह से इतना ट्रैफिक था कि हम थोड़े से परेशान शुरू में हो रहे थे, बट हम जब से मस्ती करते हुए आ रहे हैं तब से हमें बहुत मजा आ रहा है।
11: आते ही मतलब ये जो 3-4 किलोमीटर लास्ट के थे, इस टाइम पे हमको ट्रैफिक मिला
10: और हम बहुत देर
11: मतलब
10: से यही है।
11: उसमें हम बहुत देर फंसे रहे, लेकिन फिर भी अब जाके थोड़ा आप लोग भी देख रहे हो,
10: मौसम
11: वर्थ इट है, लग जाएगी।
2: लेकिन बढ़ती भीड़ ने मनाली रोहतांग रोड की रफ्तार लगभग रोक दी है। शनिवार को इस रास्ते पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पर्यटकों का कहना है कि रास्ते में 3-4 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। मई महीने में 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां शिमला पहुंच गई हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं।
12: 29 दिनों में मई महीने में जो है 7,80,000 के करीब जो है गाड़ियां हमारे डिफरेंट एंट्री पॉइंट से शिमला शहर में आ चुकी है, जो कि शोगी बिलासपुर साइड और किन्नौर साइड से है। यदि मैं बात करूं कि इतना ह्यूज जो है नंबर होने के बावजूद, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं, कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है, ट्रैफिक इज गोइंग वेरी स्मूथली। जो टूरिस्ट हैं और आम लोग भी हैं शिमला के, उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और इतने ह्यूमंगस ह्यूज ट्रैफिक को जो मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई है।
2: पर्यटकों की भारी तादाद का सीधा फायदा लोकल टूरिज्म को मिल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: पहाड़ों पर बर्फबारी ने लोगों को हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर मई महीने के अंत में तमाम पहाड़ी इलाकों में इतनी बर्फबारी कैसे हो रही है? क्या ये बर्फबारी मौसम में किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही है?
13: ये तस्वीरें 3 पहाड़ी राज्यों की हैं। उत्तराखंड के चमोली के कुछ इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर चल रहा है। हिमाचल के मनाली में कुछ दिनों पहले एक ऐसा नजारा दिखा। लद्दाख के द्रास में भी लगातार बर्फ गिर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पहाड़ों पर क्या ऐसी स्थिति सामान्य है, या इस बर्फबारी से भी पहाड़ों पर भी मौसम के बदलते पैटर्न का इशारा मिल रहा है? पहाड़ों पर मौसम के इस मिजाज की पड़ताल से पहले आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर मई के महीने में पहाड़ों पर इतनी बर्फ कहां से आई। सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली का हाल देखिए। लगातार बर्फबारी से यहां की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। हर ओर सफेद चादर बिछी हुई है, ताल जम गए हैं, रास्तों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ये सिखों का पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है। गुरुद्वारे के सामने सरोवर में जमी बर्फ साफ देखी जा सकती है। गुरुद्वारे के चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फबारी के बीच लगातार श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब में दर्शन के लिए पहुंच रहा है। अब मनाली का हाल देखिए, पूरी सड़क बर्फ से पटी हुई है। मनाली पहुंच रहे सैलानी बेहद खुश हैं, बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। रोहतांग में तो इतनी भारी बर्फबारी हुई कि पूरे रास्ते पर बर्फ ही बर्फ है। बर्फ के चलते सड़कें बंद हो गईं और सैलानियों की गाड़ियों पर ब्रेक लग गया। बर्फ के बीच गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। इस बार
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
15: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
16: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
1: चीन के हरबिन शहर से कुदरत के कहर की बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। मंगोलिया से उठे एक चक्रवात के बाद आए भीषण सैंडस्टॉर्म यानी धूल के बवंडर ने दिन में ही रात कर दी। देखिए कैसे चंद सेकंड में आसमान पूरी तरह काला हो गया और चारों तरफ पिच ब्लैक अंधेरा छा गया। मई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद आए इस रेतीले तूफान ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे विजिबिलिटी शून्य हो गई।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, स्वागत है आपको। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। और सबसे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं कोलकाता लोकभवन, जहां पर शुभेंदु कैबिनेट के मंत्री एक एक करके अब शपथ ले रहे हैं।
2: श्री अर्जुन सिंह, श्री गौरी शंकर घोष,

0: 기다려. 아멘.
1: 아미타 보츠라에
2: 우리 법문
1: ঈশ্বরের নামে শপথ সংবিধানের প্রতি আমি
2: অকৃতিবৃষ্ট দ্বারায়
1: আমি ভারতের
2: সংবিধানের ভীতি
1: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমি
2: ভারতের সার্বভৌমত্ব আর অখণ্ডতা বর্তে আছেন
1: এবং বিবেকসম্মতভাবে
2: মন্ত্রী
1: নির্বাহ করিব
2: মোর কর্তব্য লা নিষ্ঠার আর বিবেক বিবেচনার নগর পালন করিম
1: রহিত হইয়া
2: ভয় বা জনগণের ভীতি সংবিধান আর বিধি অনুযায়ী ন্যায্য আচার করিম
1: আমি তাপস রায়
2: দীপক বর্মন
1: ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে কোনো বিষয়
2: রাজ্যের মন্ত্রী হয়া
1: যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে আমি জ্ঞাত হইব তা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য
3: সময় সম্বন্ধে অনুপম বিষয় অনুপম जो संभावित जो नाम चर्चा में थे वो शपथ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप एक एक करके सबके बारे में उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी बताते चलें।
4: बिल्कुल तापस रॉय काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सालों तक मंत्री भी रहे हैं 2022 में बीजेपी आए वो उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है दीपक बर्मन काफी पुराने नेता हैं अर्जुन सिंह बहुत वरिष्ठ और हेवीवेट कैंडिडेट रहे हैं पहले टीएमसी में रहे फिर बीजेपी में आए और अब उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है गौरी चंद्र घोष काफी पुराने बीजेपी से जुड़े हुए नेता रहे हैं कल्याण चक्रवर्ती स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए हैं शरद्रत मुखर्जी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है शंकर घोष जो उत्तर बंगाल सिलीगुड़ी से जीते थे वो भी दो बार के विधायक हैं और काफी दबदबा रखते हैं उत्तर बंगाल में उनको दिया गया है मनोज राव जो आदिवासी समुदाय से आते हैं उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है तो सभी एक तरह से जो देखने में आ रहा है सभी क्षेत्रों के लोगों को और जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उनको फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है इसमें जो वरिष्ठ हैं उनको भी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई गई है जो वरिष्ठ लोग हैं उनको जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है जैसे अर्जुन सिंह तापस राय शंकर घोष
5: मे आई नाउ रिक्वेस्ट द फॉलोइंग कैबिनेट मिनिस्टर्स डेजिग्नेट टू राइज एंड टेक ओथ बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर श्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय श्री सपन दासगुप्ता डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती डॉक्टर शरद्रत मुखर्जी श्री अरूप कुमार दास डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार श्री दूत कुमार मंडल
6: ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি ভারতের সংবিধানের প্রতি
7: অনুপম এক এক করকে না চার সে ছ মন্ত্রী ইস বক্ত এক সাথ শপথ লে রহে বজা ক্যা হ্যায় টাইম সেভিং
4: जी बिल्कुल टाइम सेविंग की वजह क्योंकि 35 लोगों को शपथ लेनी है ऐसे में अगर 35 लोग एक के बाद एक शपथ लेते तो शायद दो घंटे का समय लग जाता तो ऐसे में समय बचाने के लिए ही एक साथ एक मंत्री शपथ ले रहे हैं फिर समय काफी कम खर्च होगा बहुत जल्दी कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री का रखा जाएगा उनको इस वक्त शपथ दिलाई जा रही है वरिष्ठ लोग हैं इनमें काफी एक्सपीरियंस लोग हैं इनमें राजनीति से
7: ज्यादातर इसमें वही लोग हैं जो बीजेपी कार्यकारिणी समिति में है
4: जी बिल्कुल इसमें जो टीएमसी के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं जो कोर कमेटी में रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है, कुछ नए लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं काफी पुराने वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। जैसे तापस राय बहुत वरिष्ठ, बहुत पुराने वो टीएमसी सरकार में भी मंत्री रहे थे, अर्जुन सिंह काफी बहुत ज्यादा अनुभव है राजनीति का उनको, शंकर घोष काफी सालों से राजनीति में है, गौरी शंकर घोष काफी सालों से राजनीति में है, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय बहुत ज्यादा दिनों से राजनीति में नहीं है, पहले वो पत्रकार हुआ करते थे, कुछ साल पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अब वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं। स्वपन दास गुप्ता बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, बहुत दिनों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, पहले पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए थे। अजय पोद्दार दो बार के विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के पुराने लोग हैं। दूध कुमार मंडल वीरभूम में बहुत, जब बीजेपी का कुछ भी संगठन नहीं था, दूध कुमार मंडल सबसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सबसे पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं में शुमार आता है दूध कुमार मंडल का। और वीरभूम में जो प्रत्याशित रूप से इस बार जीत ली है, दूध कुमार मंडल का काफी योगदान रहा है। और वीरभूम जैसी जगह में जहां पर एक तरह से तृणमूल कांग्रेस की टूटी बोलती थी, जो बाहुबली थे अनुब्रत मंडल की टूटी बोलती थी, उस समय भी दूध कुमार मंडल वहां पर बीजेपी के संगठन को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहे और कामयाब रहे, उसकी वजह से उनको दिया गया है। शारदचंद्र मुखर्जी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
5: मे आई नाउ रिक्वेस्ट द फॉलोइंग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेजिग्नेट टू राइज एंड टेक ओथ before the Honorable Governor. Shrimati Malati Rama Roy, Shri Rajesh Mahata, Dr. Indraneel Khan,

0: अनुपम, अब तीन जो राज्य मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं, इन तीनों के बारे में बताएं और साथ ही साथ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन किस तरह से बिठाया जा रहा है शुभेंदु कैबिनेट में वो भी।
1: बिल्कुल, देखिए सभी जो क्षेत्रीय संतुलन की बात है उसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि पूरे पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों पे इन 35 लोगों को जगह देने की कोशिश की गई है, चाहे वो हावड़ा हो, चाहे हुगली हो, चाहे बर्धमान हो। अब जैसे जंगल महल का इलाका है वहां से मनोज राव को लाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोलकाता को सबसे ज्यादा अभी वरीयता दी जा रही है जो देखने में आ रहा है। यहाँ पर शारद्रत मुखर्जी हैं, स्वतंत्र दास गुप्ता हैं, इसके बाद अभी नाम नहीं आया है लेकिन पूर्णिमा चक्रवर्ती को भी जगह दी जाने वाली है। तो ये उत्तर बंगाल से बहुत लोगों को लाया गया है। शंकर घोष इससे पहले भी उत्तर बंगाल से कैबिनेट मिनिस्टर प्रमाणिक से बनाया गया था कैबिनेट मिनिस्टर, शंकर घोष को वहां से लाया गया है। तो सभी जगहों से बंगाल के हर क्षेत्र से जगह देने की कोशिश की गई है। अब जैसे मालती रावा रॉय इस वक्त से शपथ ले रही है, काफी पुरानी बीजेपी की कार्यकर्ता रही है। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं पुराने अनुभवी लोग और अपने क्षेत्र में जो काम कर पा रहे हैं और जो बहुत क्राइसिस के समय में बीजेपी से जुड़े रहे थे, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था, बीजेपी को के संगठन को बनाए रखा, बचाए रखा, उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो सब कुछ मिला जुला एक तरह से असर देखने को मिल रहा है इसको।
2: और आज के 35 मिलाकर कुल मिलाकर 41 अब संख्या हो जाती है कैबिनेट में, जो अभी भी तीन शॉर्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ से, तो ये तीन की भी संभावना आगे बनी रहेगी या फिर इतने में ही अब फुल स्टॉप लग जाएगा?
1: जी देखिए, अभी तो फिलहाल जो खबर है बीजेपी के अंदर से कि फिलहाल तो यही संख्या रहेगी, 41 की संख्या रहेगी। आने वाले दिनों में इस पर अगर देखा जाएगा कि जरूरत पड़ रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री वो काफी सारी मिनिस्ट्री उनके पास रह रही है, ऐसे में अगर कुछ मिनिस्ट्री बाकी रह रही है किसी जगह और जरूरत पड़ रही है तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो संख्या है वो 40 ही रहने वाली है।
0: और शपथ ग्रहण जो है लगातार चल रहा है, लेकिन एक और बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है अनुपम कि इसमें संघ की छाप कितनी दिख रही है?
1: देखिए, कई पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता जो संघ से भी जुड़े रहे थे वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनको जगह दी गई है। अब देखिए, डॉक्टर अजय पोदार जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, कुलटी से विधायक रहे हैं, काफी पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो अब जगन्नाथ चट्टोपाध्याय शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे, बचपन से दूध कुमार मंडल जो आरएसएस से जुड़े रहे, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं ये जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो टीएमसी से भी जुड़े थे, अर्जुन सिंह को कहिए या फिर आप तापस राय कहिए, दो बड़े नाम हैं जो सालों तक टीएमसी से जुड़े हुए थे, इसमें तापस राय थे टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे। तो ऐसे में हर जगह हर क्षेत्र अनुभव के आधार पर
3: टू राइज एंड टेक ओथ बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर श्री जोयल मुर्मू, डॉक्टर हरेकृष्ण बेरा, श्री आनंदमय बर्मन, श्री अशोक डिंडा, श्री नादियार चंद बावड़ी, श्री विशाल लामा, श्री शांतनु प्रमाणिक, श्रीमती मौमिता विश्वास मिश्रा, श्री उमेश राय, श्रीमती पूर्णिमा चक्रवर्ती।
2: ये जो तमाम अभी नाम पुकारे गए हैं शपथ ग्रहण के लिए, इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे आप अनुपम?
1: बिल्कुल, उमेश राय जैसे हावड़ा से उनको जगह दी गई है, इसके अलावा पूर्णिमा चक्रवर्ती जो कोलकाता से श्याम पुकुर से जिन्होंने हासिल की थी उनको जगह दी गई है। इसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जगह दी जा रही है, जैसे मथुरा इलाके से जगह दी जा रही है। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हर क्षेत्र से लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है, पूरे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 208 लोग जीते हैं, 208 बीजेपी के विधायक हैं, ऐसे में अकोमोडेशन बहुत ज्यादा लोगों को भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में
0: अनुपम, हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेहरा दिखाई दे रहा है अशोक डिंडा का, जो मतलब क्रिकेट के मैदान में थे और अब राजनीति के मैदान में, और सीधा जीतने के बाद कैबिनेट, उनको जो है कैबिनेट में जगह मिली है शुभेंदु के।
1: ये देखिए काफी पहले से वो जुड़े रहे हैं बीजेपी के साथ और खेल के मतलब खेल जगत से वो आते हैं, काफी जाना पहचाना चेहरा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनको खेल जो डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो संभालेंगे वो, क्योंकि उनसे बड़ा अनुभवी खेल के मामले में तो अभी बीजेपी में वही है। तो ऐसे में एक बड़ी उम्मीद जग रही है कि स्पोर्ट्स में हो सकता है बहुत कुछ वो कर पाए। अब देखने वाली बात होगी कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाता है, लेकिन खेल जगत के बहुत जाने माने बड़े चेहरे हैं।
2: इसके अलावा जो शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसमें नाम जो चयनित किए गए हैं, किसका इसका योगदान रहा है, किसका से इस पर हावी दिखाई दे रहा है? शुभेंदु जाहिर तौर पर उस मीटिंग में जरूर होंगे जिसमें ये मंत्री पद डिसाइड किए जा रहे होंगे, लेकिन कुछ और ऐसे नाम जिनका इसमें योगदान रहा है?
1: ये देखिए ज्यादातर जो नाम रहे हैं ये आपसी सहमति के बाद ही यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जो मुझे मालूम है कि जिनका हो सकता है कि नाम यहाँ पर हो सकता था लेकिन वो अंत लास्ट मोमेंट में कट गया। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की जो अगर हम बात करें जो मुख्यमंत्री हैं चूंकि, तो उनका सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखें जो इस वक्त शपथ ले रहे हैं, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुभेंदु अधिकारी की वजह से काफी तरजीह काफी वरीयता भी मिल रही है। तो शुभेंदु अधिकारी का तो निश्चित रूप से ज्यादा प्रभाव रहा है। थोड़ा बहुत समय भट्टाचार्य का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उनके भी वजह से कई लोग यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। तो मिली जुली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये 35 लोगों की लिस्ट है इसमें मिला जुला असर है, लेकिन ज्यादा प्रभाव शुभेंदु अधिकारी क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं उनका।
0: अनुपम, जो एक्सपीरियंस्ड है, चूंकि बीजेपी तो पहली बार जीती है और कैबिनेट में जगह मिली है, जो एक्सपीरियंस है इसमें से कितने ऐसे हैं जिनका जो पुराना इतिहास है वो टीएमसी से जुड़ा हुआ रहा है या पहले भी एक्सपीरियंस रहे हैं, कैबिनेट चला चुके हैं?
1: जी देखिए, इनमें से एक ही नाम है तापस राय, जो टीएमसी सरकार में मंत्री रहे। वो सबसे ज्यादा अनुभवी इस पूरे अगर हम कैबिनेट में देखें तो उनसे ज्यादा अनुभवी अभी तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको बहुत ज्यादा अनुभव है सरकार चलाने का, सरकार में तो मिल रहे हैं, 15 वर्षों तक ममता जी सरकार रही यहाँ, वो 2022 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन इससे पहले तक टीएमसी में रहे, तो लगभग 11-12 सालों तक वो सरकार में रहे। तो ऐसे में उनका एक्सपीरियंस अभी सबसे ज्यादा है। दूसरा अर्जुन सिंह की अगर हम बात करें, अर्जुन सिंह काफी सालों तक टीएमसी में रहे, हालांकि बीच में बीजेपी में आए, फिर टीएमसी फिर बीजेपी, लेकिन वो उनका अनुभव टीएमसी में सत्ता के करीब रहने का है, सरकार किस तरह से चलती है ये अनुभव रहा है। शुभेंदु अधिकारी खुद यहाँ पर हैं जो
3: राइज एंड टेक ओथ बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर श्री कौशिक चौधरी, श्री भास्कर भट्टाचार्य, दिबाकर घरामी, श्री अमिया किश्कू, श्रीमती कालिता राजी, श्रीमती गार्गी दास घोष, श्री विराज विश्वास, श्री दीपांकर जाना, श्रीमती सुमना सरकार।
2: इसके अलावा अनुपम, आज का शपथ ग्रहण समारोह पहले से शेड्यूल था, ये तमाम मंत्री आज शपथ ले रहे हैं जिसमें 35 की संख्या है। पोर्टफोलियो जब डिसाइड होगा कौन कौन सा मंत्रिमंडल संभालेगा, इस पर क्या कोई डिटेल सामने आए?
1: ये देखिए, अभी तक तो पोर्टफोलियो कौन संभालेगा अंदर में बात हो चुकी है, ऐसे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल रही है, जैसे जो कानून मंत्रालय है वो तापस राय को दिया जा सकता है, इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है शारद्रत मुखर्जी को दिया जा सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है कि अशोक बिंदा को संभालने को कहा जाए, कल्चरल जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में भी इस वक्त कहा जा रहा है कि रूपा गांगुली जैसे कुछ लोग हो सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इस पोर्टफोलियो मिलता है, लेकिन काफी लोग इसमें ऐसे हैं जैसे अब स्वपन दास गुप्ता, उनको शिक्षा जो विभाग है उसे उनको दिया जा सकता है। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो लग रहा है कि उनको ये डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय थोड़े देर में ही होगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जा रहा है।
0: अनुपम, थोड़ा सा जातीय समीकरणों पर भी आते हैं, जातीय समीकरणों के हिसाब से किस समुदाय को कितना नंबर इसमें दिख रहा है?
1: देखिए वो अभी देखना होगा, वो मतलब जातीय समीकरण पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा भी नहीं होती है। बिहार में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो बाद में देखा जाएगा कि जातीय समीकरण की वजह से किसको क्या है। मथुआ समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व, जंगल महल में जो आदिवासी समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व, ये दो तो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
2: इसके अलावा अनुपम, ब्राह्मण समुदाय के कितने शामिल किए गए हैं इस मंत्रिमंडल में?
1: ये देखिए ब्राह्मण समुदाय से भी काफी लोग शामिल हैं, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल में उस तरीके से जातिवाद नहीं है जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं जातिवाद रहता है। पश्चिम बंगाल में उस तरीके से जातिवाद एकदम प्रखर रूप से सामने नहीं आता है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी खुद ब्राह्मण है जो मुख्यमंत्री है, इसके अलावा भी काफी लोग है, शारदोत्त मुखोपाध्याय, अर्ज सिंह मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय, बंदोपाध्याय या बनर्जी, ये सब ब्राह्मण समुदाय में आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रमुखता से उसको उजागर नहीं किया जा सकता है। या जाति
0: सामाजिक ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अनुपम, हम बीजेपी को देखते हैं तो वो महिला आरक्षण का अपने आप को बड़ा समर्थक मानते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हमने एक लंबी इस पर बहस भी देखी। पश्चिम बंगाल में अभी शपथ लेते हुए हमें काफी महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में क्या इसमें आप बता सकते हैं नंबर्स में कि उनको कितनी प्राथमिकता दी गई है कैबिनेट में?
1: ये देखिए कैबिनेट में पहले ही एक महिला अभिनेता पॉल को पहले ही जगह दी जा चुकी है। इसके अलावा अब जो देखने में आ रहा है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या थोड़ी कम मुझे नजर आ रही है, बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं है। पूर्णिमा चक्रवर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है, मौमिता मिश्रा यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अभी भी ज्यादा पुरुषों की संख्या ही है। अब उसमें भी एक बात ये है कि कितने लोग जीत के आए हैं। अब देखा जाए तो जो 208 लोग जीत के आए हैं उसमें से पुरुषों की संख्या ही ज्यादा थी, तो वो जाहिर तौर पर जो पुरुषों का वर्चस्व है वो ज्यादा रहने की बात है, क्योंकि जीत कर ही पुरुष ज्यादा आए हैं, महिलाएं कम आई हैं। ऐसे में 3 या 4 से ज्यादा महिलाएं अभी नहीं।

0: तो शुभेंदु कैबिनेट में नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है और अब रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
2: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और 19 राज्य मंत्री बनाए गए।
1: कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। 3 जून को डीके ले सकते हैं सीएम पद की शपथ।
0: जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े, 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर 11 रुपए महंगा, कोलकाता में भी बढ़े दाम।
1: लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराए, फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर मना जश्न, 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड।
0: दिल्ली में आईटीओ के पास स्कूल ऑफ प्लानिंग की इमारत में लगी आग बुझाई गई, दमकल की आग गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत बाद आग पर पाया काबू।

0: में ममता बनर्जी के खिलाफ असंतोष और बगावत भड़क रही है। ये सवाल अब इसलिए गंभीरता से उठने लगा है क्योंकि ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग से 80 में से 60 विधायक गैर हाजिर रहे और बैठक स्थगित करनी पड़ी।
1: अब ये पहला मौका भी नहीं है जब टीएमसी की बैठक में विधायकों की संख्या इतनी कम रही हो। इसके अलावा टीएमसी में चुनावी हार के बाद भी पार्टी पदों से इस्तीफे का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। ममता बनर्जी ने बैठक तो बुलाई लेकिन बड़ी संख्या में विधायक गैर हाजिर रहे, तो क्या टीएमसी के संगठन पर अब ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर होती जा रही है?
0: जाहिर तौर पर विधायकों के ना आने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनमें असंतोष है। जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया और बंगाल में टीएमसी करारी हार हुई, 60 से ज्यादा एमएलए ममता की इस अहम बैठक में नहीं पहुंचे। ये दरअसल एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी और अभिषेक के हमले के बाद समीक्षा के लिए बैठक होनी थी, बैठक को स्थगित कर दिया गया जब 60 विधायक गैर हाजिर रहे। शनिवार को ये बैठक बुलाई गई थी, इमरजेंसी मीटिंग बताई जा रही है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद 80 में से 60 विधायक एब्सेंट रहे।
1: ये बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है। तृणमूल कांग्रेस में अब संकट दिखाई दे रहा है। चुनावों में बहुत बड़ी हार हुई लेकिन उसके बाद अब विधायक बुलाने के बाद भी नहीं पहुंच रहे। 6 मई को बैठक में जो है 10 विधायक नहीं आए, 19 मई को बैठक हुई इसमें 35 विधायक नहीं आए, 31 मई को बैठक और उसमें 60 विधायक नहीं आए। ममता बनर्जी के खिलाफ एक असंतोष का संकेत इसे माना जा रहा है। विधायक अब ममता बनर्जी की बात नहीं मान रहे।
0: अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये सांकेतिक तौर पर गैर हाजिर रहना दिखाता है कि वो नाराज है, असंतोष है उनमें?
2: जी देखिए, काफी कुछ टीएमसी में चल रहा है ये तो साफ है, क्योंकि आप देखिए जो लगातार 3 बैठकें बुलाई गई ममता बनर्जी के आवास पर कालीघाट स्थित, पहली बैठक में काफी कम लोग अनुपस्थित थे, दूसरी बैठक में जो अनुपस्थिति थी वो ज्यादा हुई और जो कल बैठक बुलाई गई 80 में से 60 विधायक अनुपस्थित रहे, सिर्फ 20 विधायक वहां पहुंचे। तो ऐसे में एक बात तो जाहिर तौर पर साफ आ रही है कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देखिए, जब अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे उनके साथ कार्यकर्ता बहुत कम थे, उनको चोट लगी, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, वहां पर भी 80 विधायकों में से मुश्किल से 2 या 3 विधायक पहुंचे। उनको वो घर में उनका इलाज चल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ होनी चाहिए थी, विधायकों की भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी कार्यकर्ता और विधायकों की भीड़ नहीं है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस में एक टूट का जो संकेत है वो फिलहाल साफ तौर पर
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व को अब चैलेंज किया जाने लगा है। और क्या टीएमसी भी खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है?
2: जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व को चैलेंज किया जा रहा है या फिर खेमों में बट रही है, लेकिन उनका मोरल जो है बहुत डाउन है। इस हार के बाद निराशा बहुत ज्यादा पसरी हुई है टीएमसी खेमे में। जो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे हैं, इसके बाद एक डर भी, एक पैनिक भी टीएमसी के विधायकों में है, नेताओं में है। तो ये मुख्य तौर पर खास वजह है। हालांकि अभी तक 2 खेमे में बट गई है या 3 खेमे में बट गई है ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ नाराजगी अभिषेक के खिलाफ हो सकती हो, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा मतलब 2 टुकड़ों में बट गई है।
0: ठीक है, लौड़ेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ ममता के लिए पार्टी के भीतर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं क्योंकि 80 में से 60 विधायक उनकी इमरजेंसी मीटिंग में नहीं पहुंचे, लेकिन इस बीच टीएमसी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, असंतोष है, नाराजगी है।

0: ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत। टीएमसी में असंतोष की ज्वालामुखी। ममता ने बुलाई मीटिंग, एमएलए कहां गायब। टीएमसी में अंदरूनी भूचाल की इनसाइड स्टोरी। विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेलने के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष और बगावत के शोले उठते दिख रहे हैं। कल यानी शनिवार को टीएमसी में जो कुछ हुआ वो ममता बनर्जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। शनिवार को ममता बनर्जी ने विधायक दल की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के 80 में से 60 विधायक नदारद रहे। बैठक का मकसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद हालात की समीक्षा करना था, लेकिन 60 विधायक की गैर हाजिरी के चलते बैठक स्थगित करनी पड़ी।
1: अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई थी उनके कालीघाट स्थित आवास पर। और ये उनका कालीघाट स्थित आवास है जहां पर बैठक बुलाई गई थी। सारे विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन ज्यादातर विधायक अनुपस्थित रहे। लगभग 20 विधायक ही इस मीटिंग में आ पाए। ऐसे में मीटिंग ही नहीं हो पाई, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जो टीएमसी की ओर से कहा गया कि ज्यादातर विधायक जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिलों में वहां पर हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता निकल नहीं पा रहे हैं, उनको निकालने के लिए, उनकी मदद के लिए ज्यादातर विधायक इस मीटिंग में नहीं आ पाए, इसलिए इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा है आज।
0: सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? 80 में से 60 विधायकों की गैर हाजिरी को लेकर टीएमसी की तरफ से बेहद कमजोर तर्क आया।
2: हमारा पास, हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास, एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था, देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरस कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम भी जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है।
0: बात सिर्फ एक बैठक की होती तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन चुनाव में हार के बाद पार्टी की बैठकों से लगातार विधायकों की दूरी ममता की पकड़ पर सवाल खड़ा कर रहा है। 6 मई को ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में 10 विधायक शामिल नहीं हुए। 19 मई की एक और बैठक में करीब 35 विधायक नहीं आए और फिर 31 मई की बैठक में 60 विधायक नहीं आए। चुनाव में शिकस्त के बाद टीएमसी में छोटे बड़े नेताओं के इस्तीफे की झड़ी सी लगी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सांसद काकोली घोष दस्तिकार का है। तो सवाल यही है कि क्या चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर भी पकड़ ढीली पड़ रही है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
3: तो एक तरफ ममता के लिए पार्टी के भीतर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, फिर कल्याण बैनर्जी पर हमला हुआ और उसके बाद से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे
4: हैं। सवाल यही कि क्या बंगाल में नई सरकार आने के बाद बदले की राजनीति शुरू हो चुकी है?
5: ये जनता का गुस्सा है। अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये। अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहाँ का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं।
6: इस किस्म की चीज अच्छी नहीं है मेरे राजनीति के लिए।
7: डेमोक्रेसी में जनता प्यार भी करती है और अंडे भी मारती है।
8: बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं।
9: बीजेपी इज क्रिएटिंग ए टोटल स्टेट ऑफ लॉलेसनेस इन वेस्ट बंगाल।
10: देखो पब्लिक का रोष था।
0: क्या बंगाल बदले की राजनीति की राह पर आगे निकल रही है? इन दो तस्वीरों को देखिए। जिस बंगाल में विकास की नई बयार की आहट सुनाई देनी चाहिए, वहां से आई ये रक्त रंजित तस्वीरें चिंता पैदा कर रही हैं। पहले 30 मई की ये तस्वीर देखिए। सांसद और टीएमसी के नंबर दो के नेता अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना में हमला होता है। उन पर अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंका जाता है, उनसे धक्का मुक्की की जाती है। ये हमला तब होता है जब अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के दौरे पर होते हैं। अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। ममता बनर्जी खुद अस्पताल पहुंचती हैं, लेकिन इस घटना पर राजनीति क्या शक्ल लेती है, ये आप दिलीप घोष के इस बयान से समझ सकते हैं।
11: जनता कितना खपा हुआ है देखिए फलता इलेक्शन में। अब टीएमसी को फोर्थ पोजीशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए। काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा? तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी, आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के दो दो MLA हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी, जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए देश विदेश।
12: अभिषेक बनर्जी पर हमले के ठीक एक दिन बाद टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी की तस्वीरें सामने आती है। ये हुगली की घटना है। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, उनके सिर पर पत्थर मारा गया।
13: There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. It is now 2 hours ago.
12: Yes. कल्याण बनर्जी की माने तो वो पार्टी के गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने गए थे जब उन पर हमला किया गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सरासर झूठ है, कल्याण बनर्जी नाटक कर रहे हैं। अब बंगाल में बड़ा सवाल ये है कि वहां हिंसा और खून खराबे का दौर कब तक चलता रहेगा? ममता बनर्जी के राज में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए तो क्या अब शुभेंदु के शासन में टीएमसी पर हमले जारी रहेंगे? बंगाल में टकराव और तनाव की राजनीति जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।
14: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले हैं वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
15: आप देखें, उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है। झूठा पार्टी, झूठा प्रपंच बना के दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे, बंगला में एक बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागे।
12: आज टीएमसी कार्यकर्ताओं का वार्ड स्तर पर प्रदर्शन राज्य भर में है। कल ममता बनर्जी खुद आंदोलन की कमान संभालेंगी, विरोध में सड़क पर उतरेंगी। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
4: अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, देखिए जाहिर तौर पर जनता का गुस्सा तो है ही, लेकिन ये भी तो सच है ना कि जो अभिषेक बनर्जी 22 गाड़ियों वाला कॉन्वॉय लेके घूम रहे थे, अचानक जब उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, तो इस तरह की घटना प्रत्याशित या अप्रत्याशित थी, इस पर तो कई सवाल उठ ही सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी कि आखिरकार वो निकले ही क्यों, क्योंकि आपको तो कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि जनता के बीच इस वक्त आपके खिलाफ किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं।
1: देखिए, राजनीति है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा मतलब लग रहा था कि चली जाएगी, लेकिन जा नहीं रही है। समस्या यहीं पर आ रही है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले जो चुनाव हुए वो काफी हद तक हिंसा रहित चुनाव हुए। इस बार जो 2026 के चुनाव हुए और उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि हिंसा की जो खबरें हैं वो कम होगी, बंद होगी, लेकिन कम तो हुई लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। ऐसे में अभी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों ही दोबारा हो सकता है कि फिर निकलें, लेकिन ऐसे में जो इस वक्त स्थिति है यहां पर, एक बात तो यह है कि जनता में एक रोष है, खासतौर पर जो निचले स्तर पर जो करप्शन हुआ है और जो अभी जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से तृणमूल के नेताओं के घरों से राहत सामग्री निकल रही है या रुपए निकल रहे हैं, वैसे में एक क्रेडिबिलिटी, एक छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को अब नई रणनीति तलाशनी होगी कि किस तरीके से वो राजनीति में अपने पांव दोबारा
3: और उसके लिए तो टीएमसी के पहले साथ में बैठना होगा, और साथ में तो विधायक अभी बैठ भी नहीं रहे। अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में कुछ भी बदला नहीं है, वही राजनीतिक हिंसा। अब बंगाल में चुनाव के बाद ये राजनीतिक रंजिश किस हद तक बढ़ गई है, इसकी अब आप वानगी देखिए। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर न सिर्फ आरोप लगाया ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को एडमिशन करने की जरूरत नहीं थी, ये बीजेपी कह रहे हैं।
16: अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था।
17: जब आप उनसे मिले तो उनकी क्या कंडीशन थी, अपोलो में थे और अपोलो से आपको निकाल के बेलव्यू लाना पड़ा उनको, यहाँ भी
16: क्यों उसको उधर में ट्रीट किया? और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं और बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है?
18: डॉक्टर अगर सोचेगा कि आपको कुछ हुआ नहीं है, आपको सिर्फ एक 1040 का जरूरत है, आपको क्या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा? आपको बेड दिया जाएगा? हाँ, नाटक करने के लिए, राजनीति करने के लिए? अब डॉक्टर लास्ट बात बोलेगा ना, हम तो नहीं बोल सकते, सीएम साहब तो नहीं बोल सकते, ममता बनर्जी आप भी नहीं बोल सकते। आपका भाईपो को, आपका भांजा को 1040 का जरूरत था, उसके लिए भर्ती होना जरूरत नहीं था। राजनीति फिर से बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव राजनीति मत करिए।
4: इस मामले में टीएमसी लगातार बीजेपी के निशाने पर है, वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि हिंसा रुकनी चाहिए।
19: जो हमला हुआ वो प्री प्लान्ड, वो कॉन्स्पिरेसी है। ये लोग क्या कर रहे थे, इसका पुलिस क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वही अभिषेक है जो कुछ दिन पहले देश का जब जरूरत था एमपी लोगों को टीम भेजना है हर एक देश में, तब हमारा देश का जो फेस था उसमें एक था ये अभिषेक बनर्जी, उसका ऊपर हमला हुआ। कैसे चल रहा है बंगाल, कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख लिया।
20: बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रही है। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सारे चीज बंद होना चाहिए।
21: जनता सब देख रहे हैं, जनता जनार्दन, अभी तो बीजेपी पावर में है ना, दे हैव टू रेंडर गुड गवर्नेंस, वो सुशासन उसका देने का काम है। अगर वो नहीं दे तो जनता सब देख रहे हैं, जब टाइम आएगा इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा।
22: तब तो बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि नौटंकी किसने ज्यादा करी, अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी। एक को तो अंडे से वो घायल हो गए और एक को तो चोट चोट स्लोगन सुनते ही वो घायल हो गए और ऐसे गिरे कि आंखों में सनग्लास और कान में फोन। मतलब उनको मेरे ख्याल से ऑस्कर नहीं तो एटलीस्ट फिल्म फेयर का जो ये है प्राइस देना ही चाहिए।
3: और अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको देते हैं, जहां पर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मजीठिया के ठिकानों पर पंजाब पुलिस ने धावा सा बोल दिया है। विक्रम मजीठिया पर पुलिस थाने से आरोपी को छुड़ाने का गंभीर आरोप है। पंजाब पुलिस ने मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए बकायदा टीम बनाई।
4: तो अब मजीठिया किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। अकाली नेता विक्रम मजीठिया थाने से आरोपी को छुड़ाने का इन पर गंभीर आरोप है।
3: विक्रम मजीठिया पहले भी लगातार आरोपों में रहे हैं, पहले भी अलग अलग मामले उन पर चल ही रहे, लेकिन इस बीच में ये गंभीर आरोप है। थाने पर गए, अपने साथियों के साथ गए और एक आरोपी को पुलिस की कस्टडी से उन्होंने छीन लिया, निकालने का आरोप है और गिरफ्तारी की तलवार अब उन पर लटक रही है। किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि पुलिस उनको ढूंढ रही है और उनके ठिकानों पर इस समय पुलिस पहुंची हुई है।
4: इस बीच बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, मध्यपूर्व में फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के ड्रोन साइट्स पर हमला किया, तो वहीं ईरान अमेरिकी ड्रोन को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है। सबके बीच कुवैत एयर डिफेंस ने भी कुछ प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट किए हैं। कुवैत एयर डिफेंस ने मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किया और फायर भी किया।
3: मध्य पूर्व का तनाव जो इससे पहले लग रहा था कि क्या पता समाप्त हो जाए, इस तरह के संकेत मिल रहे थे, लेकिन जो ईरान के ड्रोन फिर से देखने को मिला, कुछ इंटरसेप्ट भी दावा किया गया है कि किए गए उनको खत्म किया गया, लेकिन एक बार फिर से ये विश्व भर के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है क्योंकि अभी तक डील साइन हुई नहीं है। लगातार एक तरफ से पॉजिटिव तो दूसरी तरफ से नेगेटिव, फिर इसी तरह की चीजें चल रही है और इस बीच में कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने भी कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। तो ईरान अमेरिका में जो तनाव है वो फिर से बढ़ता दिख रहा है।
4: वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
5: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
23: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
24: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
25: In association with
26: Bharat ki apni electric savari, Sokudo.
27: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

जल्द ही गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त लोगों को पेट्रोल पंप पर खड़े होकर खुद तय करना होगा कि उनकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल सही रहेगा। इसकी वजह है कि सरकार ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी में है जहां पेट्रोल भी इंजन के हिसाब से चुना जाएगा। दरअसल देश में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर अलग अलग तरह के इथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिल सकते हैं, जिससे लोग अपनी गाड़ी की जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सकें। आने वाले समय में E20, E22, E25 और E30 जैसे फ्यूल ऑप्शन पेट्रोल पंप्स पर मिल सकते हैं। इनमें नाम के हिसाब से 20, 22, 25 और 30 फीसदी इथेनॉल जबकि बाकी पेट्रोल होता है। सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल पर निर्भरता कम की जाए और देश में तैयार होने वाले इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल्स को लेकर भी तैयारी चल रही है, लेकिन पेट्रोल पंप्स पर कई तरह के फ्यूल आने की खबर के साथ लोगों के मन में सवाल भी बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता माइलेज को लेकर है, क्योंकि ज्यादा इथेनॉल मिक्स फ्यूल में माइलेज कम होने का डर रहता है। वहीं पुरानी गाड़ियों के इंजन पार्ट्स पर असर की आशंका बढ़ जाती है, जबकि रबर और प्लास्टिक पार्ट्स के भी जल्दी खराब होने की आशंका जताई गई है। इसकी वजह है कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले अलग तरीके से जलता है। ऐसे में पुराने इंजन वाले व्हीकल्स में परफॉर्मेंस और पार्ट्स की लाइफ को लेकर लोगों में दुविधा बनी हुई है। यही वजह है कि सरकार पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों के हिसाब से जानकारी देने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग सही फ्यूल चुन सकेंगे। इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा रोल पेट्रोल पंप्स पर लगने वाली उस लिस्ट का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा इथेनॉल ब्लेंड सही रहेगा। इससे लोगों को अंदाजा रहेगा कि उनकी बाइक, कार या स्कूटर किस फ्यूल के साथ बेहतर चलेगी, यानी पेट्रोल पंप्स पर व्हीकल कंपैटिबिलिटी लिस्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं नई गाड़ियों को हाई इथेनॉल ब्लेंड के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है और पुराने व्हीकल्स के लिए लोअर ब्लेंड फ्यूल ऑप्शन रहने की संभावना है। सरकार की नजर फ्यूल इंपोर्ट बिल घटाने पर भी है, क्योंकि इथेनॉल का बड़ा हिस्सा देश में तैयार होता है। ऐसे में ज्यादा ब्लेंडिंग होने पर कच्चे तेल पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ किसानों के लिए भी इसे बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गन्ने और दूसरी फसलों से बनने वाले इथेनॉल की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के साथ लोगों को सही जानकारी देना सबसे जरूरी होगा। इसकी वजह है कि गलत फ्यूल चुनने पर इंजन पर असर पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप का पूरा सिस्टम बदलता दिखाई दे सकता है। जहां पहले लोग पेट्रोल और डीजल में फर्क देखते थे, वहीं आगे चलकर फ्यूल का चुनाव इंजन की जरूरत देखकर किया जाएगा। ऐसे में गाड़ी मालिकों के लिए ये समझना जरूरी होगा कि उनकी जेब, माइलेज और इंजन तीनों के लिए कौन सा फ्यूल सबसे सही बैठता है। आदित्य के राणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री बनाए गए। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा कैबिनेट का ब्लूप्रिंट, 3 जून को डीके ले सकते हैं सीएम की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े, 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा, कोलकाता में भी बढ़े दाम।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत करते हैं सिलसिले की आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पश्चिम बंगाल से है। आज शुभेंदु सरकार का विस्तार हुआ है। 35 मंत्रियों ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। सबसे पहले 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई। इसके बाद 3 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण ली, फिर 19 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं दीपक बर्मन, तापस रॉय, डॉक्टर शंकर घोष, मनोज कुमार, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वप्नदास गुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोडार, इसके साथ साथ सरद्वत मुखर्जी और भी सारे कई सारे इसमें नाम है। मनोज कुमार दास भी इसमें है और दुध कुमार मॉन्डल भी इसमें है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, कैबिनेट में शामिल कर लिए गए 35 जने, लेकिन सबसे दिलचस्प बात आपको इन मंत्रियों की सूची में क्या लगी है?
1: तुम्हें आवाज़ के फेमस दाओ।
0: इंद्रजीत, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली बात इस कैबिनेट की सूची में क्या है, क्या क्या समीकरण साधने का प्रयास हुआ? जी
1: बिल्कुल, देखिए पहला कैबिनेट एक्सपेंशन है नया बीजेपी सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में, और महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी टोटल जो मिनिस्ट्री है वो 41 हो गया है। पहले 5 मंत्री और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था जहां पे खुद प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन आज दिलचस्प बात यह है कि जहां पे एकदम जो नए लवीली एमएलए जिसे कहते हैं एकदम पॉलिटिकल गिनहॉन जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कलिता मांझी हो या इंद्रनील खां हो जो पहली बार एमएलए बने हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। उसके साथ साथ जो दिग्गज है जैसे स्वपन दास गुप्ता जो पहले राज्यसभा के सांसद रहे हैं, अब पश्चिम बंगाल में आके चुनाव लड़के जीत के आए हैं प्रेस्टीजियस राजबिहारी सीट से, उनको लिया गया है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो 13 कैबिनेट मंत्री आज उनकी शपथ ग्रहण हो गई है। उसके साथ साथ बाकी जो 19 मंत्रियां हैं जिनमें एमओएस है उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया गया है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है जहां पे एक उत्तरी बंगाल वहां पे फोकस किया गया है, मध्य बंगाल, दक्षिण बंगाल। पहले ममता बनर्जी के सरकार के जमाने में ये बार बार ये कहा जाता था कि जो जितने भी बड़े पोर्टफोलियो हैं वो सिर्फ कोलकाता में दिए जाते हैं, उन मंत्रियों को दिए जाते थे, उन मिनिस्टर्स को। इस बार वो नहीं किया गया है, सभी जगह से रिप्रेजेंटेशन दी गई है शुभेंदु अधिकारी के और बीजेपी के सरकार के।
0: थैंक यू सो मच इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बंगाल में सियासत भी गर्म है। टीएमसी के 2 सांसदों पर हमले के आरोपों को लेकर टकराव जारी है। अपने सांसदों पर हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद कल धरने पर बैठने वाली है। 30 मई को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, फिर 31 मई को हुगली में पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। इसके खिलाफ टीएमसी ने आज राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज वार्ड ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होंगे, जबकि कल ममता बनर्जी रानी रासमणी मार्ग पर प्रदर्शन में शामिल होंगे।
2: ममता बनर्जी अब खुद सड़कों पर उतर रही हैं। 2 जून को ममता बनर्जी कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर जो विरोध प्रदर्शन होगा, एक दिन का विरोध प्रदर्शन रखा गया है, उसमें शामिल होंगी। खास तौर पर जो टीएमसी नेताओं और सांसदों पर हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ, इसके अलावा और भी कई इश्यूज हैं जैसे जो ऑयल प्राइसेस में हाइक हुई है उसके खिलाफ, इसके अलावा आज तृणमूल कांग्रेस की ओर से समूचे राज्य में विरोध प्रदर्शन की कार्यसूची रखी गई है। विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया है टीएमसी कार्यकर्ताओं को। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस वक्त जब टीएमसी हार चुकी है, ऐसे में जब ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता कितनी संख्या में उनके साथ होते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा अभिषेक बनर्जी जब सोनारपुर गए तो बहुत कम कार्यकर्ता उनके साथ थे, जब वो अस्पताल गए तब भी बहुत कम कार्यकर्ता और एमएलएज उनके साथ थे। कल जो मीटिंग बुलाई गई उसमें भी 60 विधायक अनुपस्थित रहे, 80 में से सिर्फ 20 विधायक शामिल हुए। तो ऐसे में टीएमसी के भीतर ही टूट की खबरें भी आ रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अगर सड़कों पर उतरती हैं तो कितनी संख्या में इस टूट को तोड़ने की कोशिश हो सकती है, कितने लोग शामिल हो सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करेंगे कर्नाटक के। 3 जून को डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं और इसकी तैयारियां भी तेज है। मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में मंत्रियों की संख्या और डिप्टी सीएम के नाम पर भी कांग्रेस आलाकमान आज चर्चा करेगा।
3: आज देर शाम तक कर्नाटक का कैबिनेट और अगले केपीसीसी चीफ को लेकर फैसला संभव है। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आज दोपहर दिल्ली आ रहे हैं, और क्योंकि राहुल गांधी 4 बजे तक दिल्ली में मौजूद नहीं है, ऐसे में शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक के अंदर कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे डीके शिव कुमार के साथ 3 तारीख को, इस बात को लेकर फैसला हो सकता है। क्योंकि केपीसीसी चीफ की आज जो पद है वो खाली हो गया है, क्योंकि अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में पार्टी के पास एक ये भी चुनौती होगी, एक नया केपीसीसी अध्यक्ष बनाए और ऐसे व्यक्ति को बनाए जो कि तमाम लोगों को साथ में लेकर चल सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनावों के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल सिद्धारमैया के कैंप की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं या जो उनके खास हैं उन लोगों को नई कैबिनेट में जगह दी जाए। वहीं डीके शिव कुमार भी चाहते हैं कि उनके पसंद के लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट पोर्टफोलियोज बने। ऐसे में आलाकमान के सामने ये चुनौती होगी कि आखिर इन दोनों खेमों को वो कैसे साधता है और एक तरीके से किस प्रकार से कर्नाटका के अंदर मेंढकों को तोलता है।
0: अब बात बीजेपी की बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक दोपहर 1 बजे के करीब है। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा से पहले केंद्रीय पदाधिकारियों की यह बैठक हो रही है। इसमें मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की उम्मीद है।
4: नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है आज दोपहर 1 बजे बुलाई है। इस बैठक का मुख्य जो उद्देश्य है वो तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सरकार के 12 साल का कार्यकाल है वो 9 जून को पूरा हो रहा है, और उसको लेकर जो सेलिब्रेशन है वो पूरे देश में कैसे मनाया जाए, कैसे आम जनता के बीच जाकर ये बताया जाए कि 12 साल में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इसको लेकर है। लेकिन इसके साथ साथ नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा होनी है, और उस घोषणा से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये अंतिम बैठक है जो फिलहाल में टीम है। लेकिन जो नई टीम नितिन नवीन की बननी है उस टीम में किनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी ये एक बड़ा सवाल है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी इसको लेकर भी कई संशय जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि नितिन नवीन की टीम में युवाओं को तरजीह दी जाएगी, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, उनके साथ साथ जो अनुभवी नेता है उनको भी तरजीह दी जाएगी। एक सवाल और जो है वो ये है कि मंत्रिमंडल से कई लोगों को जो है वो नितिन नवीन की टीम में जगह मिल सकती है, और नितिन नवीन की टीम में जो लोग हैं जो पदाधिकारी हैं उनको जो है वो मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के द्वारा जो है वो जताई जा रही है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी का पूरा फोकस विनिंग कैंडिडेट उतारने पर है। अब इसी लेकर खबर यह है कि पार्टी उम्मीदवारों का टिकट सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर फाइनल किया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिनका जनाधार मजबूत होगा और इलाके में अच्छी छवि होगी। मजबूत दावेदारी के बाद भी किसी की छवि खराब हुई तो उसे समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी।
5: समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए दिनों जिलेवार बैठकें ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने होने वाले विधानसभा के कैंडिडेट्स को एक मैसेजिंग भी कर रहे हैं। पार्टी सर्वे रिपोर्ट और जमीनी हकीकत यानी कि जो बूथ स्तर और जिले स्तर से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके हिसाब से टिकट वितरण करने का मन बना चुकी है। इतना ही नहीं, अगर किसी नेता की दावेदारी मजबूत हुई लेकिन क्षेत्र में उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई तो उसका टिकट कट भी सकता है। यानी कि समाजवादी पार्टी का इस दफा पूरा जोर इस बात पर है कि जिसको भी उम्मीदवार विधानसभा से बनाया जाएगा उस सीट को लेकर उसकी छवि क्षेत्रीय स्तर पर अच्छी होनी चाहिए। ये एक बड़ी बात समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से निकल कर सामने आ रही है। कुछ लोग ये भी चर्चा इस वक्त कर रहे हैं कि कई नेताओं को धीरे ही धीरे एक मैसेजिंग दे दी गई है कि आपको फलाना सीट से चुनाव लड़ना है, और उन नेताओं ने अपने अपनी विधानसभा सीटों पर इसका प्रचार प्रसार तो नहीं लेकिन जमीनी स्तर पर काम जरूर शुरू कर दिया है।
0: अब बात करते हैं बिहार के। बिहार विधान परिषद के 10 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 सीटों पर पूरा इस समय पूरा हो गया है, जबकि एक सीट पर मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। 8 जून तक नामांकन की अंतिम तारीख है, 11 जून तक नाम वापस भी लिए जा सकेंगे।
6: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगामी 7 जून तक उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। इन 10 सीटों में से 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर समयबद्ध यानी समय पूरा होने के बाद चुनाव हो रहे हैं, जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। विधानसभा कोटे से MLC चुनाव के लिए जो प्रक्रिया है उसमें नंबर गेम का खासा महत्व है। जाहिर है जो NDA गठबंधन है उसके पास 9 सीटों के आंकड़े हैं विधानसभा में, लेकिन एक सीट पर महागठबंधन का भी दावा है। वहीं NDA की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे राज्यसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेक NDA का रहा, उसी तरह MLC चुनाव में भी सभी सीटें उनके पास आएंगी। देखना होगा कि क्या वाकई कोई खेल होता है MLC चुनाव में।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब खबर गाजियाबाद के खोड़ा की। सूर्य प्रताप हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक 28 मई को आरोपी असद और सूर्य प्रताप में बाइक चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था, और इसी केस में गिरफ्तार फरहान ने अपने कबूलनामे में कहा है कि 28 मई को दोपहर 3:30 बजे उसने असद और बाकी आरोपियों के साथ सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया। फरहान ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसी ने असद को चाकू दिया था। असद के पिता ने कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आरोपी पिता नवाब के ये कहते ही उसके बेटे असद ने सूर्य के पेट में चाकू घोंप दिया, और उसका CCTV भी सामने आया था।
7: सूर्य प्रताप हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नवाब, आतिफ और फरहान है। फरहान ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान ने बताया है कि दरअसल असद और सूर्य प्रताप के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से सभी ने सूर्य प्रताप की हत्या का प्लान बनाया। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है। फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
0: बात करते हैं महंगाई की। आज से कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हुआ है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के भाव में 53.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही 5 किलो वाले जो छोटा सिलेंडर है, छोटू सिलेंडर, उसके भाव में भी इजाफा कर दिया गया।
8: वेस्ट एशिया क्राइसिस को 75 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इसका प्रभाव आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल, LPG इनके दामों पर। आज सुबह 1 जून से इफेक्टिव जो है कमर्शियल LPG सिलेंडर्स, जो 19 किलो की ब्लू सिलेंडर्स होते हैं, उनका दाम बढ़ाया गया है। दिल्ली में करीब 42 रुपीज़ यानी 3200 रुपये के करीब उसका दाम बढ़ चुका है, और कैलकटा में भी आप देखेंगे करीब 3300 रुपीज़ इनके दाम बढ़ाए गए। इसके अलावा जो FTL सिलेंडर्स है, जो छोटे सिलेंडर्स है जिनको माइग्रेंट और लेबरर्स के लिए जारी किया गया था, उनका दाम भी 11 रुपये बढ़ चुका है। तो ये कमर्शियल साइड पे 4th राउंड ऑफ प्राइस हाइक है। देखेंगे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस, हॉर्मूज स्ट्रेट ब्लॉकेड के कारण कितना कमर्शियल और पेट्रोल और डीजल के दाम पर प्रभाव पड़ा है। तो आज 4th राउंड ऑफ प्राइस हाइक आपको कमर्शियल सिलेंडर्स पर देखने को मिलेगा।
0: 12:12 रिपोर्टर में आप पंजाब के लुधियाना से खबर, जहां पर फैक्ट्री में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत हो गई, 4 लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। लुधियाना में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव के चलते 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 4 की तबीयत बिगड़ भी गई है, जिन्हें अस्पताल में जानकारी मिल रही है कि भर्ती करवाया गया है। जहरीली गैस का रिसाव होने के चलते फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। संवाददाता कमलजीत इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कमलजीत, क्या इस समय क्या हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएं, और कैसे ये गैस लीक हुई?
9: देखिए ये अब जांच का विषय है और इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है। आपको बता दें ये एक गोल्ड बनाने वाली फैक्ट्री है जहाँ पे गैस लीक हुई है और उसके बाद एक बाप बेटे की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है और जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्योंकि रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और उसके बाद जांच की जाएगी कि ये गैस लीक आखिर हुई कहाँ से।
0: बहुत शुक्रिया कमलजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मजीठिया के ठिकानों पर पंजाब पुलिस पहुंची है, ढूंढ रही उनको। विक्रम मजीठिया पर पुलिस थाने से एक आरोपी को छुड़ाने का आरोप है। पंजाब पुलिस ने मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा टीम बनाई है और छापेमारी कर रही है। तो अकाली नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तार, उन पर गिरफ्तारी की यह तलवार लटक रही है। उन पर बहुत गंभीर आरोप है, थाने पहुंचकर एक आरोपी को छुड़ाने के गंभीर आरोप है।
10: अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया और पंजाब पुलिस एक बार फिर आमने सामने है। विवाद है नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ, जब 26 मई को अमृतसर मजीठा के अंदर आम आदमी पार्टी के वर्कर और अकाली नेता और वर्कर आमने सामने होते हैं। उसके बाद क्लैश हुआ, एक जोबन प्रीत नाम के जो अकाली दल से जुड़ा हुआ था उसको डिटेन किया गया। उसको छुड़वाने के लिए विक्रम मजीठिया मजीठा थाने पहुंचे, अकाली दल ने धरना दिया और उसके बाद अब ये रिसेंट डेवलपमेंट है कि इसी ये जो चंडीगढ़ की आप विजुअल्स में रिहाइश देख रहे हैं विक्रम मजीठिया की, यहां पर और इसके साथ साथ अमृतसर हो और ठिकाने जहां भी लगता है वहां पर पंजाब पुलिस की ओर से रेड की जा रही है। और ये बताया गया है कि पंजाब पुलिस ने एक 91 नंबर FIR दर्ज की है और अमृतसर मजीठा पुलिस स्टेशन में हमला करने के चार्जेस पर ये FIR दर्ज की गई है और उसमें विक्रम मजीठिया को।
0: अब बात करते हैं IPL की। लगातार दूसरी बार RCB IPL चैंपियन बन गए हैं। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर RCB ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। विराट कोहली इस जीत के हीरो रहे और इस पूरे सीजन में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने ऑरेंज कैप खिताब जीता। तो वहीं तेज गेंदबाज कासिको रबाड़ा ने पर्पल कैप हासिल किया।

0: गुजरात टाइटंस को हराकर आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना नाम लिख दिया है। विराट कोहली इस मैच में ऐसे खिलाड़ी बनकर निकले जिन्होंने 75 रन की शानदार पारी खेली और ये तय किया कि आरसीबी ये ट्रॉफी एक बार फिर अपने नाम करे। पूरे अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी एक ऐसे खिलाड़ी बनकर निकले जिन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा किया। 776 रन पूरे सीजन में वैभव ने बनाए और अगर वहीं गेंदबाजी की बात करें तो कवतीसो रबाडा 29 विकेट के साथ इस लिस्ट में सबसे पहले है। और अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं इस बात का पहले से ही अंदाजा लग रहा था कि आरसीबी कंप्लीट टीम है और हो सकता है कि ट्रॉफी जीते। मुकाबला जिस तरीके से कल आरसीबी ने खेला, खासतौर पर विराट कोहली ने, इसी का ये नतीजा है कि लगातार दूसरी बार आरसीबी विजेता बनने में कामयाब रही।
1: आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जश्न की तस्वीरें, वीडियोस लगातार चर्चा में। इस बीच में आरसीबी ने खास वीडियो साझा किया, इसमें विराट कोहली डांस फ्लोर पर शानदार अंदाज में दिखे। टीम ने वीडियो के साथ लिखा, किंग कोहली का डांस फ्लोर पर मास्टर क्लास। वीडियो में विराट और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जीत को सेलिब्रेट करते दिखाई दे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। फैंस इस खास पल को खूब पसंद कर रहे हैं।
2: आरसीबी के आईपीएल टाइटल जीतने के बाद पूरी टीम जश्न में डूबी नजर आई, लेकिन जिस मोमेंट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो में विराट रेड टी शर्ट पहने अपने टीममेट्स के साथ फुल एनर्जी में डांस करते नजर आ रहे हैं, वहीं अनुष्का भी उनका साथ देती दिख रही है। कभी दोनों एक दूसरे का स्टेप मैच करते हुए नजर आए तो कभी अनुष्का विराट को चीयर करती हुई दिखती है। ट्रॉफी जीतने की खुशी दोनों के चेहरे पर साफ दिख रही है और फैंस को भी उनका ये कैंडिड सेलिब्रेशन काफी पसंद आ रहा है। आरसीबी ने खुद वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन किया, किंग कोहलीज मास्टर क्लास ऑन द डांस फ्लोर। वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैंस कपल्स की केमिस्ट्री और उनका कैरफ्री सेलिब्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यही नहीं, विराट को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। ट्रॉफी के साथ वरुष का ये डांस मोमेंट अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल कर रहा है।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करेंगे राजस्थान के, जहां पर कल लगातार दूसरे दिन रेतीला तूफान आया। यह रेतीला बवंडर इतना विशाल था कि कई किलोमीटर के इलाके को इसने अपनी चपेट में ले लिया। अचानक पूरे इलाके में अंधेरा सा छा गया। ये बवंडर राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले से आया। उत्तर दिशा से आए इस बवंडर के चलते आसमान धूल धूसरित हो गए। बवंडर इतना विशाल था कि दिन में अंधेरा दिखाई दिया, लोग हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे थे और इसका दायरा भी विशाल था, कई किलोमीटर को इसने अपनी चपेट में लिया था।
3: राजस्थान में लगातार पिछले दो दिनों से रेतीली आंधियां चल रही है। पश्चिमी राजस्थान में गर्द का गुबार आसमान में उठ रहा है। पाकिस्तान के तरफ से रेतीली हवाएं चल रही है जिसकी वजह से दोपहर में अंधेरा हो जा रहा है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान में 8 से 9 डिग्री की गिरावट आई है। हालांकि जैसलमेर और बाड़मेर में अभी भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। रेतीली आंधियों की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, गाड़ियों में हादसा हुआ है। इसके अलावा बिजली के खंभे उखड़ गए हैं जिसकी वजह से कई इलाकों में अंधेरा छाया रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 4 जून तक इस तरह का माहौल बना रहेगा, उसके बाद फिर से एक बार पूरे राजस्थान में गर्मी का प्रकोप शुरू होगा।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप लोग ने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए राजस्थान।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
6: Oh, ouch.
5: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
9: ये माना जा रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोक के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हकीमपुर।

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
8: सोच बदलो और बैंक भी.
9: हाथ में तिरंगा और ढोल की थाप पर नाचते गाते फैंस, जश्न की ये तस्वीर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की. अंदर विराट की सेना गुजरात टाइटंस को धूल चटा रही थी और बाहर आरसीबी फैंस का जोश हाई हो रहा था. और जब विराट विजय का ऐलान हुआ तो माहौल देखने लायक था.
10: चेस मास्टर विराट कोहली,
11: कैप्टन सीनियर भाई रजत पाटीदार
10: और पूरी पाटीदार पूरी टीम का भी सपोर्ट है. एक साथ होकर खेली और आज आज फाइनली अटैच कोई बोल रहा था एक वर्ल्ड एक एक ट्रॉफी जीत पा रहे. अब जो
9: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता तो बधाइयों का तांता लग गया.
12: रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को बधाई देता हूँ, आरसीबी को बधाई. बैक टू बैक चैंपियन बने और शायद यही क्रिकेट की लोकप्रियता है कि गुजरात का स्टेडियम हो, गुजरात की टीम हो और स्थानीय टीम के साथ साथ आरसीबी के भी खूब प्रशंसक यहाँ पर थे. मुझे लगता है यही क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है.
9: आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी चैंपियंस स्टेडियम से बाहर निकले तो चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी. कृणाल पांड्या के हाथों में ट्रॉफी नजर आई और ट्रॉफी के साथ सेल्फी का क्रेज भी दिखाई दिया. ब्यूरो रिपोर्ट आज तक.
13: राजस्थान रॉयल्स भले आईपीएल 2026 में ट्रॉफी नहीं जीत पाई लेकिन इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोला. 15 साल के युवा बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया है और ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली. वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए. 732 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे स्थान पर रहे. साई सुदर्शन ने इस सीजन में 722 रन बनाए. इतना ही नहीं, वैभव ने सीजन में कई कीर्तिमान कायम किए हैं. वो इस सीजन के सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी हैं. वैभव ने पूरे सीजन में कुल 72 सिक्सर जड़े जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला है. वैभव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया. इस खिताब की दौड़ में वो खिलाड़ी शामिल थे जिनका जन्म 1 अप्रैल 2000 के बाद हुआ. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी वैभव के नाम.
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा. हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

बंगाल में शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, लोक भवन में 35 मंत्रियों ने ली शपथ, 13 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 19 राज्य मंत्री बनाए गए, टीएमसी से भी आए चेहरों को मौका।

कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। 3 जून को शपथ ले सकते हैं डीके शिवकुमार।

यूपी में बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी। प्रदेश संगठन की नई टीम पर दिल्ली में होगा 2 दिनों का मंथन। लखनऊ से बुलाए गए कई नेता और वक्त से पहले चुनाव करवाने की भी अटकलें। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और झटका। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा। कोलकाता में भी बढ़े दाम। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली। रात भर मना जश्न। 15 साल के सूर्यवंशी को भी कई अवार्ड्स।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब सुपर बस अंदाज में आपको दिखाते हैं यूपी एक्सप्रेसवे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं की बैठक। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े सांगठनिक बदलाव की तैयारी। यूपी में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारियां। 2 से 3 तारीख को दिल्ली में मंथन होगा। डिप्टी सीएम समेत कुछ मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी का 17 दिवसीय अभियान। 5 जून से शुरू होगा जनसंपर्क कार्यक्रम। लखनऊ में 5 जून को एक पेड़ मां के नाम के साथ शुरू होगा संकल्प कार्यक्रम। 21 जून को विश्व योग दिवस तक चलेगा यह कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर का दौरा। आज पाक विस्थापित परिवारों से उनको मुख्य धारा में जोड़ने की एक पहल होगी। बिजनौर में 1600 से ज्यादा पाक विस्थापित परिवारों को जमीन का अधिकार पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी पूर्व 50 पूर्व सैनिकों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम। मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। सीएम योगी का कई लाभार्थियों को वो योजनाओं का लाभ भी देंगे और लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा। दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे। सीएम अधिकारियों के साथ बैठक। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र और शाकंभरी त्रासदी पर मृतकों के परिवार वालों और प्रभावित दुकानदारों को मुआवजे की मांग। मेरठ में कैंट बोर्ड में नामित सदस्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा के घर पर सीबीआई का छापा। पार्किंग का ठेका दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़े गए। कसमंडी किला विवाद में पासी सांसदों का समर्थन जुटाने निकलेगी लाखन आर्मी। समाजवादी पार्टी के सांसदों से मिलकर रखेंगे पक्ष। यूपी में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी। सिपाही भर्ती परीक्षा में कलावा मंगल सूत्र जैसे धार्मिक चिन्हों पर पाबंदी नहीं है। यूपी के 75 जिलों में 1183 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मी भी परीक्षा हॉल में नहीं ले जा सकेंगे अपना मोबाइल फोन। बढ़ते अपराध को लेकर पूर्णकालिक डीजीपी बने राजीव कृष्ण का बयान। यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। गाजियाबाद में दोस्त से निकला कातिल। पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या की। एनकाउंटर में मारे गए हत्या के आरोपी असद के चाचा आबिद का बड़ा बयान। गलत संगत में असद को अपराध की ओर उसने धकेल दिया। गाजियाबाद सूर्या मर्डर केस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा कि इस घटना ने दोस्ती को कलंकित किया है। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में दबंगों ने बुलडोजर से गिराया घर। फायरिंग और लूट का भी आरोप। 3 गिरफ्तार। बुलंदशहर कोर्ट में बंदर ने 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीन लिया और पेड़ से नोटों की बारिश होती दिखी। झांसी में मंदिर बना कुश्ती का अखाड़ा। ट्रस्ट के अध्यक्ष और पुजारी की पत्नी के बीच में झड़प। कैमरे में कैद। सुल्तानपुर में पिता ने बेटी को नाले में डुबोया। वीडियो हुआ वायरल। आरोपी गिरफ्तार। वीकेंड पर मां के बिहारी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। घंटों लाइन में खड़े रहे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही 200 दिनों से ज्यादा का वक्त बचा हो लेकिन चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर है। यूपी में समय से पहले चुनावों की सियासी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दरअसल चुनाव आयोग को बताया गया है कि फरवरी से लेकर मार्च तक देश भर में बड़े पैमाने पर जनगणना का काम होगा और अधिकारियों कर्मचारियों की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में चुनाव मुश्किल हो सकता है। अब इसी बिना पर सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी की मीटिंग में नेताओं कार्यकर्ताओं को यह कहा है कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है। और बीजेपी के भीतर भी इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि हर हाल में वक्त से पहले अगर चुनाव हो तो उसकी तैयारी हमें रखनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से ऐसी कोई भी अभी तक चर्चा सामने नहीं आई है।
1: क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव वक्त से पहले हो जाएंगे? ये चुनाव 2027 के फरवरी मार्च में होने हैं, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सर्किल में, ब्यूरोक्रेसी में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि ये चुनाव वक्त से पहले होंगे, यानी कि प्रीपोन हो सकते हैं। और वजह बड़ी साफ है, जिस तरीके से सेंसस यानी जनगणना का मैसिव एक्सरसाइज फरवरी और मार्च में होना है, जब प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मचारी बड़ी तादाद में लगाए जाएंगे, ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव को थोड़ा पहले खिसकाया जाए। दरअसल जनगणना जिस विभाग को करना है उसने चुनाव आयोग को यह फ्लैग कर दिया है कि फरवरी और मार्च में उन्हें बड़े स्तर पर राज्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। तो माना यह जा रहा है कि यह चुनाव जो शेड्यूल टाइम है फरवरी और मार्च 2027 का, उससे पहले खिसक सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर भी इस बात की चर्चा तेज है। अखिलेश यादव ने जो सूत्रों की माने तो अपने तमाम ऑफिस बियरर्स को यह बता दिया है कि आप पहले चुनाव के लिए भी तैयार रहें, यानी कि नवंबर दिसंबर में भी ये चुनाव हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अगर बदला तो पांचों राज्यों के चुनाव की तारीख बदल सकती है। और अब जिस तरीके से पार्टियों के भीतर लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, हो सकता है ये चुनाव वक्त से पहले हो जाएं। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: चुनाव की तिथियां क्या होंगी ये निर्वाचन आयोग तय करता है। निर्वाचन आयोग जब भी अपने चुनाव का कैलेंडर जारी करेगा, आदर्श आचार संहिता लगाएगा, भारतीय जनता पार्टी कमर कसके तैयार रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी मौसम के आधार पर तैयार होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अहर्निश काम करने वाला एक राजनीतिक दल है। और अभी रविवार को ही प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ समितियों की बैठक की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता सूची के दुरुस्तीकरण से लेकर के बूथ समितियों के बैठक करके हर मतदाता के साथ लगातार सक्रिय रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम जैसा परिणाम फिर दोबारा दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है।
3: समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, चुनाव चाहे पहले हो, चुनाव चाहे बाद में हो, चाहे वो तय सीमा पे हो या जैसे भी हो, हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने विकास की राजनीति की है और पूरा विश्वास है जनता इस बार विकास को जिताएगी और नफरत की राजनीति को हराएगी।
0: यूपी के योगी राज में कानून व्यवस्था के पीच पर बड़े चुनावी दांव खेले जाएंगे, लेकिन इसी बीच में चुनावी बिसात पर मोहरों की सेटिंग भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, संगठन के स्तर पर दोनों ही दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दो तीन हफ्तों में बीजेपी के लिहाज से बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं।

0: उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने चुनावी महायज्ञ के लिए अपने मोर्चे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली है। अगले दो दिनों यानी 2 और 3 जून को उत्तर प्रदेश में पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को लाने की तैयारी हो चुकी है, जिसके बारे में 11 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उधर लखनऊ में भी पूरा प्लान तैयार है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर अब बीजेपी 17 दिनों तक 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम की पॉलिटिकल टैगलाइन के साथ कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसमें हर विधानसभा में 10 किलोमीटर लंबी प्रगति पथ यात्रा निकलेगी। मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े पार्टी पदाधिकारी इलाके में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह शाम ग्रामीण इलाकों में चौपाल व जनसंवाद करेंगे। जनता को सरकार की 5 मुख्य योजनाओं की रिपोर्ट दी जाएगी, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना में बने और बनने वाले मकानों का जिक्र होगा, उज्ज्वला योजना की बात होगी, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख के मुफ्त इलाज वाले कार्ड का वितरण तेज किया जाएगा, पीएम स्वनिधि और जनधन योजना का प्रचार तेज किया जाएगा और यूपी में एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए विकास के बारे में बताए जाएंगे। सरकार पूरी कोशिश में है कि विकास की पिच पर वोट की सियासत सेट हो जाए, लेकिन खुद बीजेपी के नेता को शायद उस पर विश्वास नहीं। वरना हरदोई जिले के गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश नहीं कहते कि चुनाव विकास नहीं तिकड़म से जीते जाते हैं।
1: हमने तो बहुत विकास कार्य देखे, जिन जिन गांव की सड़कें बनवा दी उन गांव में बक्से में भूतर बोटे नहीं निकलते। हम क्रिटिकल बात आपको बताएं, चुनाव तिकड़म से जीता रहता है, चुनाव विकास से नहीं जीता रहता। तो इन 6 साल 1 महीने में साम राम दंड भेद जो भी तिकड़म पाटा पाना कर लेना, अगला चुनाव आपको जीतना है दिल से।
0: वैसे तो विधायक श्याम प्रकाश पंचायत चुनाव के लिए प्रधानों को चुनावी जीत का मंत्र सिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, जिसके लिए निर्दलीय विधायकों को बीजेपी में लाने की जुगत शुरू हो चुकी है। उधर समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी भी नजर आ रही है। पता चला है कि इस बार अखिलेश यादव 2027 का टिकट सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर फाइनल करेंगे। इसमें एक निजी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट मंगाई जा रही है, पार्टी के बूथ और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के फीडबैक से उसका मिलान किया जा रहा है। खबर है कि टिकट उसी को मिलेगा जिसका जनाधार और छवि दोनों ठीक होगी।
2: जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में पावर में रही है, वो देखते हैं कि टिकट देने में किसका किसका दबंग वाली फहरिस्त में नाम है, वो दबंग वाली लिस्ट बना दो।
3: कह रहा छवि जिनकी अच्छी होगी उन्हीं को टिकट देंगे इस बार।
2: देखिएगा सूची तो आपके सामने आ जाएगी, कहीं बाहर तो जाने वाली नहीं। देखिएगा सूची किसकी कौन सूची में आता है।
4: हमारी पार्टी जो प्रत्याशी को उतारेंगे वो समझ करके प्रत्याशी की बात उतारेंगे। अब यहाँ से भी हमारे कान में सज्जन थे पार्टी के हमदर्द थे, एक ऐसा प्रत्याशी उतारना तो बताओ जनता की ये जब आवाज हो तो निश्चित परिवर्तन होना है।
0: हालांकि सर्वे और कार्यकर्ता फीडबैक पर समाजवादी पार्टी की चुनावी इंजीनियरिंग भारी पड़ेगी, क्योंकि तब इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर धर्म जाति की बिसात पर भी उम्मीदवारों का वजन तौला जाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
5: तो चुनाव वक्त पर हो या फिर वक्त से पहले हो, यूपी में तैयारियां जोर शोर से दिखाई दे रही हैं। एक तरफ संगठन के स्तर पर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक तैयारियों में जुटी है। बीजेपी में 11 विधान परिषद सीटों पर चुनाव की सरगर्मी है। बीजेपी के अंदर संगठन के स्तर पर बदलाव की तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे का प्लान बना रही है, तो दूसरी तरफ चुनावी मुद्दे सेट किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था और विकास बनाम धर्म जाति बुलडोजर एनकाउंटर की मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने चुनावों की पिच सेट कर रखी है। चुनाव होगा तो विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर होगा, क्योंकि बीजेपी राज्य में उत्तर प्रदेश के भीतर शांतिपूर्ण शासन और कानून व्यवस्था की 2 सबसे बड़ी पहचान बने, जिसमें एक है बुलडोजर और दूसरा है एनकाउंटर, जिस पर 5 वर्षों में अवैध इमारतों से लेकर गुनहगार के घरों तक 1.5 लाख बार बुलडोजर गरजा है। 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर में 150 से ज्यादा अपराधी ढेर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि यूं तो इंसान का सच्चा धर्म अहिंसा ही है, लेकिन अगर कोई समाज देश के लिए खतरा हो तो फिर हिंसा अपनानी पड़ती है।
6: हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
5: अब गाजियाबाद खोड़ा से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। आसाद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने आसाद के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया है। ये एक पुरानी प्रॉपर्टी है जिसके मालिक असद के पिता थे। ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी को पिता ने बेच दिया है। हालांकि गाजियाबाद अथॉरिटी का कहना है कि प्रॉपर्टी अभी भी असद के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है और एक नोटिस चिपका दिया गया है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर एक तरफ विपक्ष सियासी सवाल खड़े करता है तो दूसरी तरफ पुलिस और सरकार एनकाउंटर को शासन की आवश्यकता जरूरत के तौर पर दिखाता है। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी यह कहा है कि अपराधी तत्वों को सियासी संरक्षण अब नहीं मिलता, गोली चलाने वाले अपराधियों पर पुलिस गोली चला रहे। इस बीच में गाजियाबाद में आपको बता दें कि असद के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है, बुलडोजर एक्शन की तैयारियां चल रही हैं। तो अधिकारी भी पहुंचे हैं और बकायदा ढोल बजाकर जो हमेशा की जाती है मुनादी, वो बताया जाता है कि ये नोटिस है और ऐसे ही स्पीकर पर लाउड स्पीकर का बोला भी जा रहा है।
7: आपके द्वारा काम घोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको अनुसार ग्राम घोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2: निवासी कोई इनकाउंटर पॉलिसी नहीं होती है। जो भी अपराधी है यदि पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस क्या उसका माला फूल से स्वागत करेगी? ये हमारा जो कानून व्यवस्था है उस तंत्र में लिखा हुआ है, यदि किसी साधारण व्यक्ति पर भी कोई साधारण व्यक्ति हमला करता है, बगैर पुलिस की वर्दी में हमला करता है, तो उसको हक है अपनी जान बचाने का। और जो भी इस प्रकार की कार्रवाइयां हैं सब माननीय न्यायालय के परिवीक्षा में होती हैं, सभी जांच के दायरे में हैं। हम जांच कमेटी बना करके और माननीय न्यायालय तक मामले को ले जाते हैं और ये लोकतंत्र में यही तरीका है काम करने का। क्या अपराधी तत्वों को आप सत्ता सौंपना चाहते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है उसको दिखाने के लिए आप एक बच्चे की हत्या कर देंगे? और जब कानून के रखवाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पकड़ने के लिए जाएंगे तो आप गोली चलाएंगे, कौन माफ करेगा आपको? ये कहां कानून व्यवस्था का आप चाह रहे हैं?
5: सीएम योगी क्लियर कट हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर उनकी सबसे बड़ी चुनावी यूएसपी है और 2027 के चुनावी महायज्ञ में इसका फल प्राप्त करने के लिए सीएम योगी ने पुलिस महकमे के इंतजाम भी चाक चौबंद कर दिए। अब उत्तर प्रदेश को पूरे 4 साल और 19 दिन यानी कि लगभग 1480 दिन के लंबे इंतजार के बाद अपना स्थायी और पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक मिल गया। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को यूपी का नया पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया। राजीव कृष्ण कहते हैं कि यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा।
8: उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 8-9 सालों में जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है वो नीति लगातार जारी रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस मात्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक सोच में बदलाव है। इस सोच में बदलाव के साथ आपने देखा होगा कि जब भी छोटी से छोटी घटना भी होती है, छोटी से छोटा अपराध भी होता है, उसके प्रति भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उस कानून के तहत, जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कार्रवाई करती है और उन अपराधियों को सजा दिलाने का कार्रवाई करती है। तो ये प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी।
5: डीजीपी राजीव कृष्ण बताते हैं कि पिछले 8-9 साल के योगी राज में यूपी में तेजी से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगी है। अब 2024 में एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं। प्रदेश के कुल अपराध राष्ट्रीय औसत से लगभग 28.5% कम है, यानी कि लगभग 24 करोड़ आबादी के बावजूद प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में यूपी देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 11वें स्थान के स्थान से सुधार करके अब 18वें स्थान पर आ गया है, जिसमें देश की प्रति लाख आबादी पर औसत संज्ञेय अपराध दर 252.3 है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह घटकर मात्र 180.2 पर आ गया है। क्योंकि तरह तरह के संज्ञेय अपराधों में लगभग 25-85% तक की भारी कमी दर्ज की गई है और इसकी एक बड़ी वजह अपराधियों के प्रति पुलिस का सख्त रवैया है, जिसमें यूपी के अपराधियों में अब एनकाउंटर का डर नजर आने लगा है। हालांकि डीजीपी कहते हैं कि एनकाउंटर पर उठाए जा रहे ज्यादातर सवाल सियासी हैं। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
10: In association with
11: Bharat ki apni electric sawari.
10: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
10: In association with
11: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
13: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: पहले अभिषेक और फिर कल्याण बनर्जी पर हुए हमले से बंगाल का सियासी माहौल और गर्मा गया है। चुनाव के बाद से हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। हमलों को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। ममता बनर्जी ने आज से दो दिन के राज्यव्यापी प्रदर्शन का प्लान तैयार किया है। आज टीएमसी कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे, जबकि कल ममता बनर्जी खुद आंदोलन की कमान संभालेंगी। इस बीच टीएमसी की एक अहम बैठक टलने से पार्टी में अंदरूनी कलह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर ममता के कालीघाट स्थित आवास पर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 60 टीएमसी विधायकों ने भाग नहीं लिया और बैठक रद्द करनी पड़ी। हालांकि टीएमसी ने इस पर सफाई दी। कुणाल घोष मीडिया के सामने आए और बताया कि क्यों विधायक बैठक में नहीं पहुंचे।
1: आज का मीटिंग फॉर द टाइम बीइंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरेसमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है।
0: इसके पहले कुणाल घोष ने खुद अपनी ही पार्टी के कुछ सदस्यों की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी नेताओं के बदले रुख पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी पर ममता की पकड़ अब कमजोर हो रही है? क्या ये अंदरूनी कलह और टूट के संकेत हैं? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: अभिषेक बनर्जी बंगाल की सियासत में अब विपक्ष के दूसरे सबसे अहम चेहरा है। ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी टीएमसी के अघोषित उत्तराधिकारी हैं। लिहाजा पार्टी के अंदरूनी फैसलों में इनकी दखल काफी ज्यादा है। 4 मई से पहले तक वो बंगाल के सबसे पावरफुल नेताओं में शुमार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

में शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, लोक भवन में 35 मंत्रियों ने ली शपथ, 13 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री बनाए गए, टीएमसी से आए चेहरों को भी मौका। यूपी में बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी, प्रदेश संगठन की नई टीम पर दिल्ली में होगा 2 दिन का मंथन, लखनऊ से बुलाए गए कई नेता, वक्त से पहले चुनाव कराने की अटकलें। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट, 3 जून को डीके ले सकते हैं सीएम की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई की कौर किश्त, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए, 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा, कोलकाता में भी बढ़े दाम। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर मना जश्न, 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड्स।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, बहुचर्चित ट्रिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की टीम कथित सुसाइड सीन को रिक्रिएट करके भोपाल के कटारा हिल्स में ट्रिशा के ससुराल पहुंची है। सीबीआई की टीम एक कुत्ता लेकर पहुंची है। ट्रिशा के पति और सास के मुताबिक ट्रिशा ने आत्महत्या की थी, जबकि ट्रिशा के मायके वाले इसे हत्या बता रहे हैं। रवीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, ये लाइफ साइज डमी है जिसके साथ रिक्रिएशन किया जाएगा?
1: जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये हूबहू उसी वजन का डमी है जो वजन ट्रिशा का था। इसके जरिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीबीआई की आज जांच होगी। पहली जांच, सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ट्रिशा को जब फंदे से उतारा गया और फिर उसे वहां से लेकर सीढ़ियों से निकाला गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम सब ने देखा, तो ये पूरा टाइम फ्रेम जो है, क्या वो बयानों से, गिरिबाला सिंह के और समर सिंह के बयानों से मैच करता है या नहीं, कितना समय लगा उन्हें पुतला उतारने में, ये उनसे आज जब देखा जाएगा तो ये पता किया जाएगा उनके बयानों के आधार पर जो इतने दिनों में सीबीआई ने लिए हैं पूछताछ के दौरान। ये देखेगी सीबीआई कि समर्थ ने बयानों में कितना समय बताया है पुतला उतारने में और सीढ़ियों से नीचे उतारने में, और अभी कितना समय लगा, यह महत्वपूर्ण बिंदु होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर सीबीआई और फॉरेंसिक की टीम सबसे ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करने वाली है, वो है गले पे बना लिगिएचर मार्क, यानी वो निशान जो फांसी लगाते समय ट्रिशा के शव पर बना हुआ था, जिसकी तस्वीर हम सबने देखी थी और जिसे लेकर के ट्रिशा के परिवार ने आरोप लगाए थे कि अगर कोई फांसी लगाता है तो एक बार निशान बनता है, ट्रिशा के गले पे ऐसे दो मार्क थे। तो सीबीआई आज उन्हीं परिस्थितियों में देखेगी कि ये पुतले में क्या उतने ही मार्क बनते हैं या नहीं उस बेल्ट से जितने ट्रिशा के शव पे बने थे, और इसीलिए सीबीआई के साथ आज फॉरेंसिक की टीम भी यहां पे मौजूद है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब रुक करेंगे नॉन स्टॉप 100 का।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के 35 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, राज्यपाल आर एन रवि सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला चुके। सीएम शुभेंदु की कैबिनेट मनोज ओराम और गौरी शंकर घोष मंत्री बने। पश्चिम बंगाल विस्तार मंत्रिमंडल में क्षेत्र और अनुभव को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश, कैबिनेट विस्तार अनुभवी और युवा नेताओं को जगह दी गई है। सरदियोत मुखोपाध्याय, इंद्रनील खान और पूर्णिमा चक्रवर्ती ने ली मंत्री पद की शपथ। तापस रॉय, दूत कुमार मोंडोल, गार्गी घोषदास और रूपा गांगुली ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ। अभिषेक बैनर्जी पर हमले का मामला गरमाया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से करेंगे शिकायत, कोर्ट भी जाएंगे टीएमसी। 30 मई के हमले पर अभिषेक बैनर्जी का बड़ा कदम, कानूनी लड़ाई की तैयारी, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के साथ अदालत का रुख करेंगे। स्वास्थ्य कारणों से सीआईडी के समन पर नहीं होंगे पेश, स्वास्थ्य के चलते सीआईडी पूछताछ चली, जल्द कोर्ट जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर, बीजेपी ने कहा हमने अपना वादा पूरा किया। आज से कमर्शियल सिलेंडर महंगा, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े। इसके हिसाब से कमर्शियल सिलेंडर 3,071.50 रुपए मिल रहा था, वो आज से 3,113 रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा है। इसके साथ ही 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर के भाव में इजाफा हुआ है, 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर दिल्ली में अब 821.50 रुपए पर मिलेगा। वहीं कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के भाव में 53 रुपए की बढ़ोतरी, आज से 3,255.50 रुपए में मिल रहा है। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी ने कहा महंगाई मैंने 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर किया महंगा, पहले महंगाई मैंने जनता को छोटा सिलेंडर खरीदने को कहा फिर वसूली चालू कर दी। सीएम योगी का बिजनौर दौरा आज, पाक विस्थापित परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल। बिजनौर में 1,645 पाक विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र देंगे सीएम योगी, 50 पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा लाभ। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, मेधावी छात्रों का सम्मान। सीएम योगी कई लाभार्थियों को देंगे योजनाओं का लाभ, लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा, दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जारी किए निर्देश, सिपाही भर्ती परीक्षा में कलावा मंगलसूत्र जैसे धार्मिक चिन्ह पर पाबंदी नहीं। यूपी के 75 जिलों में 1,183 परीक्षा केंद्रों पर होगी सिपाही भर्ती, 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मी भी परीक्षा हॉल में नहीं ले जा सकेंगे अपना मोबाइल। लखनऊ में कसमंडी किला विवाद में पास सांसदों का समर्थन जुटाने निकलेगी लाखन आर्मी, बड़े आंदोलन का दिया हवाला। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश, बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में, कहा चुनाव केवल विकास कार्यों के आधार पर नहीं जीते जाते बल्कि राजनीतिक तिकड़म और रणनीति का अहम योगदान होता है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा हमने भी बहुत विकास कार्य कराकर देख लिए लेकिन वहां बक्सों से वोट ही नहीं निकाले। समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया ने कहा पार्टी किसी वक्त चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव चाहे समय से पहले हो या फिर समय के बाद हम इसके लिए तैयार हैं। अनुराग भदौरिया ने कहा हमने हमेशा विकास की पॉलिटिक्स की है तो हमें चुनाव के वक्त कोई असर नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में कल 5 बजे नए जज लेंगे शपथ, सुप्रीम कोर्ट में विस्तारित भवन के ऑडिटोरियम में चीफ जस्टिस सूर्यकांत दिलाएंगे शपथ। पिशा मौत मामले में सीबीआई की टीम क्राइम सीन आज रिक्रिएट करेगी, सीबीआई की एक टीम डमी लेकर जाएगी। समर्थ और गिरबाला को भी साथ लेकर जाएगी सीबीआई की टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी रहेंगे साथ। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में आरोपी नारायण साहू ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, नारायण साहू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। चंडीगढ़ में विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने आई टीम, नहीं मिले अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया, सभी जगहों पर छापेमारी जारी। दिल्ली बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रम की समीक्षा होगी। नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन बैठक, नई राष्ट्रीय टीम जल्द घोषित होने के संकेत। पीएम मोदी आवास पर हाई लेवल बैठक, अमित शाह राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी तेज, 18 जून को 24 सीटों पर होगा मतदान। यूपी चुनाव से बीजेपी विधायक का मन से अधिकारियों को धमकी और पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, विराट कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई, 75 रन बनाकर नाबाद लौटे। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 155 रन बनाए। आरसीबी ने 156 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल किया, वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंद में 32 रन बनाए। आरसीबी लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बनी, इससे पहले मुंबई ने साल 2019-20 और चेन्नई ने साल 2010-11 में जीता था बैक टू बैक खिताब। राजस्थान रॉयल्स 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी बने आईपीएल सीजन के इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर, 16 पारियों में 776 रन और 237 रन की धमाकेदार स्ट्राइक रेट। वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड, इसमें आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के साथ वैभव को 10 लाख रुपए का इनाम।
वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है। इसी के साथ वैभव ने मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का भी जीता अवार्ड। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 776 रन बनाए, मिला ऑरेंज कैप। आईपीएल में बेंगलुरु की जीत पर विराट कोहली ने मचाया धमाल, पति अनुष्का शर्मा के साथ जमकर किया डांस। विराट कोहली के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने डांस कर जीत का मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हुबली में आईपीएल में बेंगलुरु की जीत पर लोगों ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, टीम को दी जीत की बधाई। कर्नाटक के हुबली में बेंगलुरु की जीत का जश्न, फैंस ने सड़क पर जमकर की आतिशबाजी। बेंगलुरु की जीत के बाद कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, जश्न मनाने वाली जगहों पर तैनात दिखे जवान। फतेहपुर में सभा के आड़ में धर्मांतरण का खेल, मामले में एफआईआर दर्ज, गरीब लोगों को प्रलोभन देकर कराया जा रहा था धर्मांतरण, मौके से बाइबल की पुस्तक बरामद। अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर शोभा यात्रा के दौरान सनबाजी, रोकने पहुंचे दरगाह से लोगों ने की मारपीट। ट्रैक्टर बाइक से खतरनाक स्थान से लगा जाम और अफरा तफरी, पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लिया। गुजरात के अहमदाबाद में जिला प्रशासन ने स्टेट हाईवे 17 के 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया। मेरठ की तीसरी मंजिल से कूदी किशोरी, मुस्लिम युवक के साथ प्रेम प्रसंग ने परिजनों ने लगाया युवक पर प्रताड़ित करने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में नशा मुक्ति केंद्र में 3 दिन के अंदर 2 युवकों की मौत, संचालक पर ओवरडोज देने और मारपीट का घर वालों ने लगाया आरोप। गाजियाबाद में दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल, पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या। इनकाउंटर मारे गए हत्या के आरोपी असद के चाचा आबिद का बयान, गलत संगत से असद को अपराध की राह पर धकेला, जो किया उसने खामियाजा भुगता। ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद मामले में कहा इस घटना ने दोस्ती को अलंकृत किया, समाज को बांटने की साजिश। गाजियाबाद में 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। पटना में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल, जमीन पर घसीट कर की गई पिटाई। मेरठ में गन्ने के खेत में लाश जला शव, मुजफ्फरनगर निवासी प्रवीण के रूप में पहचान, पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली के आईटीओ में स्कूल ऑफ प्लानिंग की बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। आगरमालवा में बिजली विभाग में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों ने बुलडोजर से गिराया घर, फायरिंग और लूट के आरोप, 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में परिक्रमा मार्ग पर महिलाओं को परेशान करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मुरादाबाद में युवक ने बनाया सुसाइड वीडियो, लाइसेंस से बंदूक से खुद को मारी गोली। इटाफा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में संविदा कर्मी सरिता ने लेन देन का बदला लेने के लिए रची साजिश, पुलिस ने किया खुलासा। बिजनौर में वाटर पार्क में हुई कहा सुनी बनी खूनी संघर्ष की वजह, आरोपी ने युवक पर किए चाकू से ताबड़तोड़ हमले। कानपुर में मुफ्त के गोलगप्पे और आइसक्रीम खाना पुलिसकर्मी को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ सस्पेंड। बड़ोदा में पुलिस भवन के बाहर दलित समाज और पुलिस के बीच झड़प, इलाके में फैला तनाव। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। राजस्थान के डिडवाना में 72 घंटे तक खदान में फंसा रहा मजदूर का शव, पानी से भरी मार्बल खदान बनी मौत का कारण। बेंगलुरु में राजपाल काफिले के दौरान ट्रैफिक रोके जाने से नाराज शख्स सड़क पर बैठा। भोजपुर के सोन नदी में बड़ा हादसा, एक को बचाने गए 6 बच्चे डूबे, 3 की मौत, गांव में फंसा मातम। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के निर्माण जोरों पर, 63 सीढ़ियों की डिजिटल वंशावली की जाएगी प्रदर्शित। रामेश्वर में पीएम मोदी ने भाई परहलत दामोदर दास मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर के किए दर्शन। करगिल में एमवीसी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, कई टीमों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में 6ठे पटनी टॉप मैराथन का आयोजन, 800 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया निःशुल्क नेत्र जांच का शिविर, बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की जांच हुई। ग्रे शेड्स वाले रोल्स पर बोली करिश्मा कपूर, अब किरदार से बचे या बुरे के नहीं होते, उनके व्यक्तित्व की कई परतें हैं। बागेश्वर में डोला रेडोला की शूटिंग के दौरान गर्भवती होने की खबरों को किया खारिज। तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म करप्पू ने सिर्फ 15 दिन में दुनिया भर में कमाए 300 करोड़, सफलता से गदगद एक्टर सूर्या ने संगीतकार सिनेमाटोग्राफर को गिफ्ट की कार। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के राम की भूमिका निभाने पर बोले टीवी के राम अरुण गोविल, मेरा निभाया किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर बोले निर्देशक इम्तियाज अली, रणबीर कपूर की जिंदगी बदल सकता है ये किरदार। वाशिंगटन ने अमेरिका ईरान समझौते में संशोधन का अनुरोध किया, ये बदलाव होमस्ट्रेट और यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ा हुआ है। गाजा के कैफे पर हवाई हमला, इजरायली हमले में कम से कम 2 की मौत, 12 घायल। इसराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में संदिग्ध कार ने 2 किशोर लड़कियों को कुचला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, घायल लड़कियों की उम्र 17 और 15 साल। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और यूक्रेन के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले पर IAEA ने जताई चिंता, कहा परमाणु संयंत्रों पर हमले अस्वीकार्य हैं।
कोलंबिया के आम चुनाव में किस तरह के उम्मीदवार को नहीं मिला 50% मत। 21 जून को दूसरे दौर में दक्षिणपंथी एस्प्रियला और वामपंथी इवान सेपेडा के बीच है मुकाबला। अमेरिका में बढ़ती यहूदी विरोधी भावना के बीच न्यूयॉर्क में इजराइल डे परेड, यहूदी समुदाय के हजारों लोग शामिल। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होप को ले लिया भाग। इटली में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए समुद्री तटों की ओर लोग कर रहे हैं रुख। मोंडेलो बीच पर रविवार को स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भारी भीड़ दिखी। ग्रीस के पोसिडोन मंदिर में ऊपर दिखा दुर्लभ नीला चंद्रमा, वसंत ऋतु के अंत का प्रतीक। नासा के मुताबिक इस साल के सबसे छोटे चंद्रमाओं में से एक है। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने प्रीमियर लीग ट्रॉफी को अपने नाम किया। लंदन की सड़कों पर जीत को सेलिब्रेट करने के लिए भव्य परेड। पंद्रहवीं वैधता प्राप्त कैस्पर रूड फ्रेंच ओपन से बाहर। ब्राजील के युवा खिलाड़ी जुआओ फोंसेका को 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।

0: इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। सूर्या के आरोपी असद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया है। वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 15 दिन का वक्त दिया गया है कि अवैध कब्जा हटाएं, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या की गई थी, जिसे पुलिस ने असद को तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन उसके पिता और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बुलडोजर एक्शन की नोटिस घर पर चस्पा कर दी गई।
1: की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है, अतएव आपको अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील मौनी जिला गाजियाबाद के खसला संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके जवाब निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला गाजियाबाद।
0: अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, ये जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, इस पर कई लोगों ने एतराज जताया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, आरोपी को पहले पकड़कर उसके बाद पुलिस की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, तमाम चीजें की जाती सकती थी, लेकिन एनकाउंटर ही क्यों?
2: जी बिल्कुल, लेकिन जैसा पुलिस का दावा है कि उन्होंने एनकाउंटर, उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद था असद को पकड़ना, लेकिन जिस तरीके से असद ने फायरिंग की, एक देसी कट्टे से पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और उसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है, उसके बाद ये पूरा एनकाउंटर हुआ। लेकिन अगर इस बुलडोजर एक्शन की बात करें तो अभी कुछ देर पहले एक असद का पुराना घर है जो उसके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। याद रखें कि उसके पिता भी नवाब जो हैं, उनको भी गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है और यहां तक गाजियाबाद पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि नवाब ही वो आदमी था जिसने असद को उकसाया था कि वो सूर्या को चाकू मारे उस रात को, उस दिन को। लेकिन अभी की जो हालिया कार्रवाई हुई है उसमें एक पुराना घर जो असद के पिता के नाम पे रजिस्टर्ड था, उस पर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसपे ये कहा गया है कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, करीब 50-55 गज की प्रॉपर्टी है, वो एक अवैध जमीन पर बनी है, जो जमीन गाजियाबाद अथॉरिटी की है, और अगर अगले 15 दिनों में उसे खुद से हटाया नहीं गया तो गाजियाबाद अथॉरिटी यहां आकर उसे हटा देगी। तो अब ये देखना होगा क्या असद का परिवार, जिनके नाम पर ये रजिस्ट्री है, क्या वो उस घर को हटाता है, खाली करता है, या फिर गाजियाबाद में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। उसके लिए हमें 15 दिन अभी इंतजार करना होगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात लुधियाना की करेंगे, जहां फैक्ट्री में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की जान चली गई, 4 लोगों की तबियत बिगड़ गई है। लुधियाना की एक फैक्ट्री में गैस रिसाव की वजह से 3 मजदूरों की जान गई है। जहरीली गैस के रिसाव होने के कारण फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। अभी भी 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चार लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये उसी जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये गैस रिसाव हुआ है।

0: अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, गैस रिसाव के कारण क्या बताए जा रहे हैं?
1: देखिए, रात को ये वर्कर्स लगे थे और जब काम किया जा रहा था कोई मशीनी दिक्कत की वजह से ये गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद 5 लोगों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। और जो इस डीप टूल्स के नाम से ये फैक्ट्री चलती है लुधियाना गगन नगर में, और ओनर के द्वारा ही इन लेबरर्स को, जो वर्कर्स थे, 5 जनों को अस्पताल भर्ती करवाया गया, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 2 जने बेटा है, एक अन्य व्यक्ति और है, और 2 जने अभी भी इस इम्पैक्ट में है, उस गैस की लीक, गैस के इन्फ्लुएंस के अंदर है, जिनका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। लेकिन इन 3 मौत के बाद फैमिली ये एलिगेशन लगा रही है कि किस तरीके से रात को एक तो काम करवाया गया और फैमिली को इत्तला नहीं दी गई जब उनकी हालत बिगड़ी और गैस लीकेज की वजह से उनको दिक्कत आई, उनकी जान चली गई। और इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ साथ अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किसकी नेग्लिजेंस है, क्या मालिक का रोल है और क्या अस्पताल लेकर जाने में कोई कोताही रही है, जान बच सकती थी और कैसे गैस लीक हुई, सीसीटीवी वगैरह।
0: तौर पर लापरवाही का ये मामला बात चंडीगढ़ की करेंगे। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मजीठिया के ठिकानों पर पुलिस की धावा है, छापेमारी जारी है, क्योंकि विक्रम मजीठिया पर पुलिस थाने से आरोपी को छुड़ाने के गंभीर आरोप है। पंजाब पुलिस ने मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई।
2: विक्रम सिंह मजीठिया और पंजाब पुलिस एक बार फिर आमने सामने है, विवाद है नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ। जब 26 मई को अमृतसर मजीठा के अंदर आम आदमी पार्टी के वर्कर और अकाली नेता और वर्कर आमने सामने होते हैं, उसके बाद क्लैश हुआ। एक जोबनप्रीत नाम के जो अकाली दल से जुड़ा हुआ था उसको डिटेन किया गया, उसको छुड़वाने के लिए विक्रम मजीठिया मजीठा थाने पहुंचे, अकाली दल ने धरना दिया। और उसके बाद अब ये रिसेंट डेवलपमेंट है कि इसी, ये जो चंडीगढ़ की आप विजुअल्स में रिहाइश देख रहे हैं विक्रम मजीठिया की, यहाँ पर और इसके साथ साथ अमृतसर हो और ठिकाने जहां भी लगता है वहां पर पंजाब पुलिस की ओर से रेड की जा रही है। और ये बताया गया है कि पंजाब पुलिस ने 91 नंबर FIR दर्ज की है और अमृतसर मजीठा पुलिस स्टेशन में हमला करने के चार्जेस पर ये FIR दर्ज की गई है और उसमें विक्रम मजीठिया को एक्यूज बनाया गया। लेकिन अब तक इस मामले में दामनवीर सोपती, जो मजीठिया के वकील हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं मजीठिया की रिहाइश पर परिवार से मिलने के लिए और लीगल अल्टरनेटिव्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच रही है अलग अलग ठिकानों पे, 12 टीम्स बताया जा रहा है बनाई गई है पुलिस की ओर से, और थाने पर हमला इसको बताया गया अमृतसर के, तो इस मामले में लीगल रेमेडीज देखी जा रही है। और साथ साथ ये भी कहा गया दामनवीर सोपती की ओर से कि मजीठिया के वो वकील हैं तो वो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की ईगो है। हालांकि इस मामले में क्या मजीठिया एक्यूज है या नहीं ये अभी नहीं पता, ना ही उनको FIR की कॉपी दी गई।
0: इसी के साथ यहां रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom,

0: पर्यटकों से गुलजार रहने वाला कसूर आज खौफ और दहशत की तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में है। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि गोलियां चलने लगी। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। जिस चार दीवारी के बाहर लोग खड़े हैं उसी में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ। अंदर से दो लोग निकले जिनमें से एक गोली लगने से घायल था, दूसरे ने उसे कंधे पर उठाया और भागता नजर आया। कुछ ही सेकंड में सफेद शर्ट पहने वो दबंग भी नजर आया जो सरेआम पिस्टल लहरा रहा था। फिल्म स्टाइल में बीच सड़क पर पिस्टल लोड की और भाग रहे लोगों के पीछे निकल गया।
1: स्थानीय लोगों के साथ कहा सुनी में जैसे कपल जैसे में उसमें झगड़ा हुआ और उन्होंने एक युवराज स्थानीय लड़का जिसका नाम युवराज है उसके पांव में गोली मारी, जो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने त्वरित एकदम कार्रवाई करते हुए इनमें से चार लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया है।
0: प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद सफेद शर्ट वाले युवक ने दूसरे युवक पर फायरिंग कर दी। पीड़ित के पैर में गोली लगी, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कैबिनेट का विस्तार, लोक भवन 35 मंत्री ने ली शपथ, 13 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री बनाए गए, टीएमसी से आए चेहरों को भी मौका। यूपी में बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी, प्रदेश संगठन की नई टीम पर दिल्ली में होगा 2 दिन का मंथन, लखनऊ से बुलाए गए कई नेता, वक्त से पहले चुनाव कराने की अटकलें। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान, आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट, 3 जून को डीके ले सकते हैं सीएम की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई की और किश्त, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए, 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के 11 रुपए दाम बढ़ाए गए, कोलकाता में भी बड़े दाम। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर मना जश्न, 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड्स।

0: नमस्कार, मैं इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। ट्रिशा मौत के मामले में सीबीआई आज फिर एक्शन मोड में है। जांच अधिकारी इस वक्त भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर मौजूद हैं, जहां करीब एक घंटे से लगातार जांच जारी है। इस वक्त समर सिंह के साथ सीबीआई अधिकारी उस जगह पर मौजूद है जहां ट्रिशा ने फांसी लगाई थी। समर से अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं कि 12 मई की रात क्या कुछ हुआ था। क्राइम सीन पर पहुंचकर डमी के साथ सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन गिरिबाला सिंह और समर सिंह दोनों ने चुप्पी साध रखी है। 2 जून को उनकी सीबीआई की रिमांड पूरी हो रही है, लेकिन अब तक दोनों मौन धारण किए हुए हैं। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, 2 तारीख को रिमांड खत्म हो रही है दोनों की, ऐसे में उनका कुछ ना बोलना, चीजों को स्पष्ट ना करना, ये कितनी बड़ी चुनौती है और क्या क्या अब तक सीबीआई कर चुकी है या फिर 2 दिन जो अभी बचे हैं उसमें करना चाहती है?
1: देखिए, 2 दिन में से आज का दिन तो लगभग पूरा दिन सीबीआई का निकलने वाला है इस सीन रिक्रिएशन में, क्योंकि सीबीआई इस पूरे सीन को एक बार नहीं, बताया जा रहा है कि कई बार रिक्रिएट करेगी और हर एक वो चीज मैच करने की कोशिश करेगी जो बयान में अब तक गिरिबाला सिंह और समर्थ ने कहा है। अगर वो मैच नहीं होगा तो सीधी सी बात है सीबीआई कल कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि कई ऐसे अहम सवाल है जिस पर अब तक कोई ठोस जवाब ना तो समर सिंह की तरफ से दिया गया है, ना ही गिरिबाला सिंह की तरफ से। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से साफ तौर पर पूछा था कि पुलिस को देर से सूचना क्यों दी गई, त्विशा को अस्पताल पहुंचाने में इतना समय क्यों लगा, अगर फांसी उसने लगा ली थी 8:30 बजे के लगभग तो फिर साकेत जो भोपाल एम्स है वहां तक पहुंचने में 2 घंटे का समय क्यों दिखा रहा है बार बार, क्योंकि भोपाल एम्स का कहना है कि यहां पे शव लाया गया तकरीबन 10:30 बजे के बाद। तो ऐसे कई सारे सवाल है जो गिरिबाला सिंह से पूछे गए, लेकिन उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, वो खामोश है। समर सिंह से पूछा गया कि आप भागे क्यों, आप फरार क्यों हुए, समर सिंह ने यह तो बताया कि वो त्विशा की मौत के बाद अगले 48 घंटों तक भोपाल में ही रहा, उसके बाद वो जबलपुर गया, जबलपुर में बाकी के दिन उसने फरारी काटी और बाद में 22 तारीख को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि फरारी में आपकी मदद किसने की, आप कहां कहां रहे इस दौरान, कौन उस वक्त आपके साथ था, कौन आपको सपोर्ट कर रहा था, इसका कोई जवाब समर सिंह ने नहीं दिया है। देखिए, समर सिंह खुद एक वकील है, गिरिबाला सिंह जज रह चुकी हैं, तो कानूनी दांव पे इस दोनों को बहुत अच्छे से पता है और सीबीआई को भी ये बात बखूबी मालूम है। इसलिए आज का जो ये सीन रिक्रिएशन है, ये काफी हद तक इनके अब तक के जो बयान रहे हैं उसको मैच करने की कोशिश में एक अहम कड़ी साबित होने वाला है। और ये भी देखने की कोशिश है सीबीआई की कि जो टाइम फ्रेम ये दोनों माँ बेटे बता रहे हैं

0: क्या सब कुछ उसी टाइम फ्रेम में ये सब कर भी पाए थे या नहीं?
1: बने रहिए हमारे साथ। इस बीच त्विशा शर्मा की मौत करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। सीबीआई क्राइम सीन पर पहले भी पड़ताल कर चुकी है, आज एक बार फिर अधिकारी क्राइम सीन पर पहुंचकर बारीकी से पड़ताल की तैयारी में है। वो जांचना चाहते हैं कि त्विशा को कितनी देर बाद फंदे से उतारा गया और उतारने के बाद क्या स्थिति रही होगी।
2: जो 12 मई को हुआ था वो अब तक अनसुलझा है और उस मिस्ट्री से पर्दा हटाने के लिए आज सीबीआई की टीम एक बार फिर भोपाल के कटारा हिल्स स्थित इस मकान में पहुंची है और जांच की है। ये बिल्डिंग गिरिवाला और समर्थ सिंह की है। त्विशा की लाश इसी बिल्डिंग की छत पर फंदे से लटकी हुई मिली थी। ऐसे में सीबीआई क्राइम सीन की जाँच में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज तीसरी बार सीबीआई की टीम गिरिवाला सिंह के घर की पड़ताल कर रही है। इससे पहले 27 मई को और दूसरी बार 28 मई को घर के अंदर और बाहर जांच अधिकारियों ने सबूत खंगाले थे और अब आज सीबीआई की टीम डमी पुतले के साथ क्राइम सीन की जांच कर रही है। पुलिस कर्मी तोल कांटा मशीन लेकर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि इस मशीन से पहले सीबीआई टीम डमी का वजन मापेगी। डमी का वजन उतना ही रखेगी जितना कि त्विशा का वजन। फिर घर की छत पर जांच अधिकारी उस जगह क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है जहां त्विशा की लाश मिली थी। सीबीआई की टीम गिरिराज और समर्थ को लेकर मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी में ही क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए ताकि 12 मई की रात की असलियत सामने आ सके। सवाल कई है, जैसे तारीख की रात उस दिन क्या हुआ था, त्विशा को कैसे फंदे से उतारा गया, उसे कैसे घर की छत से नीचे ले जाया गया, नीचे तक ले जाने में कितना वक्त लगा। गिरिबाला और समर्थ दोनों सीबीआई के सवालों पर अब तक चुप ही रहे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे। दोनों 2 जून तक सीबीआई की रिमांड में हैं, लेकिन जब भी अधिकारियों ने अहम सवाल किए हैं दोनों खामोश हो जाते हैं। आमने सामने बैठा कर हुई पूछताछ में अब तक कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ है। सीबीआई जानना चाहती है कि समर्थ की फरारी के दौरान उसे किस किस ने मदद की, लेकिन इस सवाल पर समर्थ चुप रहा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गिरिबाला से भी सवाल किए कि आपने त्विशा की मौत की जानकारी घर वालों को तुरंत क्यों नहीं दी, क्या समर्थ को फरार होने में मदद की, पुलिस को समय पर जानकारी क्यों नहीं दी। ऐसे अहम सवालों पर माँ बेटे मौन बताए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई आज क्राइम सीन रिक्रिएट कर अब तक मिली जानकारी के आधार पर तथ्यों को वेरीफाई करना चाहती है। आज रिक्रिएशन के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी साथ होंगे।

0: रवीश मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, क्या प्रोसीजर इसमें रहने वाला है? क्या इसमें सिर्फ पति समर सिंह का इन्वॉल्वमेंट रहेगा या फिर सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की जाएगी कि उस रात क्या क्या हुआ? क्या सीसीटीवी से छेड़छाड़ भी एक अहम सबूत है? क्या उसमें कुछ टाइमिंग के सीन्स मिसिंग है इसलिए इस निष्कर्ष पर निकला गया है कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है?
1: देखिये, फिलहाल सीबीआई इस निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंची है कि सीसीटीवी से कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं, लेकिन सीसीटीवी का एक एक मिनट जो है वो सीबीआई के कब्जे में है, क्योंकि जो डीवीआर एसआईटी ने जब की थी वो फिलहाल सीबीआई ने ले ली है। सीबीआई ने उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भी कहा गया है और इसीलिए उससे ये साफ हो जाएगा कि जो शक जताया जा रहा है कि क्या टेम्परिंग हुई है एविडेंस के साथ, तो वो शक काफी हद तक साफ हो जाएगा। दूसरी बात, जो तस्वीरें हम अभी देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो समर्थ सिंह छत पे खड़े होकर के ठीक उसी जगह पर जहां पे त्विशा का शव मिला था, वहां सीबीआई के अधिकारियों को बता रहा है कि कैसे त्विशा का शव वहां लटका हुआ था और कैसे वो चढ़ के उसने उस शव को वहां से ऊपर उतारा, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है। आपको वो काली बेल्ट भी दिख रही होगी इन तस्वीरों में जो हमें दिख रही है, उस काली बेल्ट के जरिए ही त्विशा ने संदिग्ध रूप से, कथित रूप से जो है फांसी लगाई थी, तो उस बेल्ट का ही निशान बहुत ज्यादा देखने वाली बात हो गया सीबीआई के लिए कि बेल्ट का जो मार्क बना था त्विशा के शव पर, क्या वैसा ही मार्क इस पुतले पर बनता है? नहीं तो फिलहाल जो अभी पुतले को लगाया नहीं ऊपर, अभी फिलहाल समर्थ को पुलिस जो सीबीआई है वो ऊपर चढ़ा करके ये देख रही है कि वो जो बातें बता रहा था बयान में वो काफी हद तक मैच करती है या नहीं, वो तमाम चीजें सीबीआई नोट कर रही है और इन तमाम पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई भी कर रही है और इसके साथ ही 3D मैपिंग भी कर रही है। तो जो हमने पहले बात कही थी टनल व्यू टेक्निक की, उसके जरिए भी आज के रिक्रिएशन को जोड़ करके और साथ ही में जो वाईफाई लॉक्स है, कॉल लॉक्स है,
0: क्योंकि एक्चुअल बॉडी की स्किन में और डमी में काफी अंतर होता है, उन सब चीजों को कितना ध्यान में रखा जाता है? और क्योंकि हम ये जानते हैं गिरिबाला सिंह क्राइम सीन रिक्रिएट या फिर मैनेजमेंट में उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल करी थी, वो इस मामले में कितना ध्यान में रखा जा रहा है वो एस्पेक्ट?
1: देखिए, आरोप गिरिबाला सिंह पर यही लगते आए हैं शुरू से कि गिरिबाला सिंह जो है वो बेहद प्रभावशाली है, क्योंकि जज रह चुकी है और वर्तमान में कंज्यूमर फोरम की चेयरपर्सन, तो काफी प्रभावशाली है, तो इसीलिए उन पे जो आरोप लग रहे थे उसी को एक तरीके से जो वकील है त्विशा के परिवार के, उन्होंने हाईकोर्ट पे ये कहा था कि जो गिरिबाला सिंह है वो क्राइम सीन की ट्रेनिंग ले चुकी है, मैनेजमेंट की, क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले चुकी है, तो क्या क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो उन्होंने ली थी क्या उसका इस्तेमाल उन्होंने क्राइम सीन पर, यानी जहां पर त्विशा ने फांसी लगाई थी, वहां पर किसी भी तरीके के सबूतों के हेरफेर में या छेड़छाड़ की कोशिश तो नहीं उन्होंने की है? ये आरोप लगाए गए और बकायदा ये कोर्ट में कहा गया उनके वकील की तरफ से, त्विशा के परिवार के, ये कोई सोर्सेस की तरफ से या फिर हवा हवाई बातें नहीं थी, और इसीलिए सीबीआई ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और सीबीआई आज गिरिबाला सिंह को लेकर के भी इसीलिए पहुंची है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्राइम सीन जैसा बताया जा रहा है और जैसा एफआईआर में है क्या वैसा ही है या फिर कोई बदलाव क्राइम सीन में इस घटना के पहले या घटना के बाद हुआ है जिसकी जानकारी एसआईटी को नहीं मिल पाई, क्योंकि गिरिबाला सिंह क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले चुकी है, तो सीबीआई ने इस तथ्य पर बेहद गंभीरता से विचार किया है और इसीलिए आज समर्थ से जहां एक तरफ इस पुतले को उतारने से लेकर के नीचे ले जाने तक का पूरा टाइमलाइन मैच किया जाएगा, तो ये भी देखा जाएगा कि गिरिबाला सिंह ने जो बयान दिए थे
0: इसकी डिटेल्स इस वक्त खंगालने की कोशिश की जा रही है, तभी क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। त्विशा का पति समर्थ सिंह सीबीआई के कई सवालों पर मौन रहा, लेकिन कुछ खुलासे भी आए हैं। सामने ये आया है कि त्विशा की मौत के बाद अपनी फरारी के दौरान वो 2 दिन तक भोपाल में रुका, उसके बाद वो जबलपुर चला गया। एक तरफ समर्थ को लेकर खुलासा हो रहा है, दूसरी ओर त्विशा के इंसाफ के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं।

0: ट्रिशा का परिवार इंसाफ मांग रहा है। उसके पड़ोसी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। भोपाल में मौत हुई थी और इंसाफ के लिए ग्रेटर नोएडा तक आवाज उठ रही है। यहां हाथों में पोस्टर बैनर लिए सोसाइटी के लोग सीबीआई से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ट्रिशा को इंसाफ मिलेगा। नोएडा की इसी सोसाइटी में ट्रिशा का मायका था, उसके घर वाले यहीं रहते हैं। रविवार को उसकी याद में शोक सभा का आयोजन हुआ तो हर किसी की आंखें भर आईं। ट्रिशा के लिए आयोजित शोक सभा में परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में सोसाइटी के लोग शामिल हुए। सभी ने ट्रिशा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मामले में न्याय की मांग उठाई।
1: अभी जो चल रहा है, अभी जांच सही दिशा में चल रही है और सीबीआई के हाथ में है, जहां उम्मीद है कि सबको जस्टिस मिलेगा।
2: काफी बोल्ड थी, सपोर्टिव थी, हर किसी से मिलकर बात करना उसका आदत था। बहुत ही सॉफ्ट नेचर की बच्ची थी, इस टाइप का एक्शन वो ले नहीं सकती। हमें अभी सीबीआई को केस दिया गया है, हमको पूरा भरोसा है और हम पूरे कॉलोनी वासी उनके साथ हैं।
0: इंसाफ की मांग करते लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर मौन जुलूस भी निकाला, फिर कुछ देर मौन रखकर ट्रिशा को याद किया।
3: जो हुआ वो बर्बरता की लिमिट है, उसका तो मतलब कुछ, उसका एक वर्ड भी उसमें हम उसको कुछ कह ही नहीं सकते। जो चीजें न्यायालय के अंदर है वो तो वहां से होंगे, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। रखना पड़ना और होना दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आज डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए मामला, बस हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला डाइल्यूटेड नहीं हो किसी भी तरीके से।
4: वो भी इतने एजुकेटेड लोग थे, इतनी चीजें थी, फिर भी
5: सीबीआई से
4: कि बस ये जल्द से जल्द ये केस इसको रिजॉल्व होना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। और ये केस सिर्फ ऐसे घूमता ही नहीं रहना चाहिए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और ये सिर्फ लोअर कोर्ट्स में ही रह के नहीं फंसना चाहिए, इसका जल्द से जल्द आना चाहिए रिजल्ट और फांसी होना चाहिए जो भी अक्यूज्ड है।
1: आगे बढ़ करके
0: परिवार भरोसा जता रहा है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई की तफ्तीश में सारी सच्चाई सामने आएगी और उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा।
6: अभी तक जो शुरुआत हुई है न्याय प्रक्रिया की, जब से संज्ञान लिया गया है तब से हमें उम्मीद है कि न्याय की उम्मीद बढ़ गई है और इस कदम से सर्वोच्च न्यायालय के ये उद्धृत होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में संपूर्ण न्याय मिलेगा और संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
0: सीबीआई लगातार मामले में पूछताछ कर रही है, साथ ही क्राइम सीन की जांच कर रही है। समर्थ ने अपनी फरारी को लेकर सीबीआई को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ट्रिशा की मौत के बाद वह दो दिनों तक भोपाल में ही रुका था। इसके बाद वो जबलपुर चला गया जहां उसने फरारी के बाकी दिन बिताए। समर्थ ने यह भी बताया है कि वह 22 मई को अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन असल सवाल कि इन 10 दिनों में उसे कौन मदद करता रहा, इस पर समर्थ चुप है। उसके ठहरने, आने जाने या अन्य सुविधाएं किसने मुहैया कराई, ऐसे तमाम सवालों पर वो मौन है। ट्रिशा को इंसाफ दिलाने की मांग के बीच इस केस से जुड़े डॉक्टर भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने पहले दावा किया था कि वो ड्रग्स की आदी थी और उसने भारी मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया था। ऐसे तमाम बयानों को वेरीफाई करने के लिए सीबीआई डॉक्टरों से बातचीत करने वाली है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
7: और अब बात गाजियाबाद की, जहां के खोड़ा क्षेत्र स्थित नवनीत विहार प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर अब प्रशासन बुलडोजर एक्शन कर सकता है। इसके लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया। प्रशासन ने बता दिया कि 15 दिन में कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर नोटिस लगाया गया, ढोल बजवाकर और लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर पूरे इलाके में आज इसकी जानकारी दी गई। प्रशासन ने नोटिस में साफ कहा कि संबंधित भूमि पर किया गया कब्जा अवैध है, लिहाजा आरोपी को 15 दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा। चेतावनी दी गई कि अगर 15 दिन के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन अपने स्तर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और इसका पूरा खर्च आरोपी से ही वसूला जाएगा।
8: शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2002-6 की धारा 136 के अंतर्गत
9: नवनीत के दिन सूर्य की हत्या हो जाती है और उसके बाद से ही पूरे परिवार और यहाँ के
5: लोगों की एक ही मांग थी कि असद के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्राधिकरण जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है और इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जिस जमीन पर ये घर बना है ये अवैध कब्जे की जमीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहां पर इस जगह को खाली करवाएगा यानी बुलडोजर एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी ज्यादा प्रेशर था और ये कहा जा रहा था कि पूरी ताकत से बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, वो बुलडोजर एक्शन अब कहीं ना कहीं हकीकत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वक्त की अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताएं तो इसमें असद नहीं रहता था, असद का ये पुराना घर है लेकिन जो कागजात है उस पर यह बताया जा रहा है कि असद के पिता नवाब के नाम पर ये जो घर है ये जमीन है ये घर अभी तक रजिस्टर्ड है जिसके वजह से यहां पर ये नोटिस चस्पा किया गया है और ये बोला गया है कि अगले आने वाले 15 दिनों में ये घर बिल्कुल खाली कर दें और ये जो भी अवैध कब्जा कर रखा है इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए नहीं तो यहां पर प्रशासन खुद आकर इस पूरे कब्जे को हटाएगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या और भी जो आरोपी हैं उनके साथ भी इसी तरीके का एक्शन होता है और गाजियाबाद अथॉरिटी जो है वो खुद जाकर इन सबको इन्फॉर्म करेगी कि किस तरीके से जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो लीगल है या इलीगल है, इसकी तफ्तीश भी अब गाजियाबाद अथॉरिटी कर रही है। तो अगले कुछ दिनों में और बुलडोजर एक्शन होता है यानी ये देखना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
7: 28 मई यानी बकरीद वाले दिन भरी दोपहर में सूर्या चौहान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले भी कोई और नहीं, सूर्या के दोस्त थे जिन्होंने साजिश के तहत सूर्या को अपने घर बुलाया फिर उसका गला रेत दिया। इस हत्याकांड के बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है मगर मुख्य आरोपी असद फरार था। पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। वहीं असद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया।
9: मारा गया वो आरोपी जिसने सूर्या का रेता था गला। मारा गया वो आरोपी जिसने दी थी सूर्या की कुर्बानी। मारा गया वो आरोपी जो फैलाना चाहता था दहशत। मारा गया वो आरोपी जिसकी मानसिकता समाज विरोधी थी। जी हां, गाजियाबाद के खेड़ा में सूर्या के नाम के युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर असद खोड़ा वापस लौटा था। ये वही पिस्तौल है जिससे असद ने पुलिस पर गोलियां दागी थी। जवाबी फायरिंग में मारा गया असद।
10: आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
9: ये जो घेरे आप देख रहे हैं यहाँ गोलियां मिली थी। बताया जा रहा है कि असद के साथ एक आदमी और था जो भाग निकला मगर असद मारा गया।
5: मार्किंग्स की हुई है यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा, ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में इस पूरे हादसे में गोली लगी है जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो एफआईआर में नामजद है।
9: असद से पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। असद फरार था। असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या की मां मांग कर रही है कि बाकी के आरोपियों का भी एनकाउंटर किया जाए।
11: मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
7: एक बार फिर से आपको भोपाल ले चलेंगे, जहां पर गिरिबाला सिंह के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है और क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। गिरिबाला सिंह के साथ साथ त्रिशा के पति समर सिंह ऊपर छत पर मौजूद हैं, जहां पर कथित तौर पर सुसाइड हुआ था, त्रिशा ने आत्महत्या की थी। अब कैसे वहां पर वो फंदा लटका था आप देख सकते हैं, और उसके साथ वो डमी भी मौजूद है जिसको लेकर सीबीआई टीम पहुंची है। ये दरअसल डमी उसी वजन की बनाई गई है, उसी तरह से बनाई गई है जिस तरह से त्विशा की शारीरिक संरचना थी, ताकि पूरे क्राइम सीन को समझा जा सके कैसे फंदे से नीचे उतारा गया। ये तमाम सवाल इस वक्त अब समर सिंह से पूछे जाएंगे, जिस वक्त ये किया जा रहा था उनके साथ कौन कौन मौजूद था, किस वक्त पर वो ऊपर पहुंचे थे, कितनी देर बाद वो त्विशा को नीचे लाए। कुछ सबूत मौजूद है सीसीटीवी फुटेज में। इसके अलावा त्विशा की सास गिरिबाला सिंह से भी इस पूरे मामले में क्राइम सीन को रिक्रिएट करके पूछताछ की जाएगी। अभी भी जांच जारी है, आप देख सकते हैं कई सीबीआई के अफसर हैं जो मौजूद हैं ऊपर छत पर, जहां पर कथित तौर पर त्विशा ने आत्महत्या की थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, दिखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
14: वन सेकंड यू आर एंजॉयिंग योर फर्स्ट डे ऑफ इन फॉरएवर, देन मिड लंच योर फोन बजेस, अ विंडोज बीन ब्रोकन एट होम एंड यू आर माइल्स अवे। इन वन सेकंड एवरीथिंग कैन चेंज। दैट्स व्हाई ADT ऑफर्स सिक्योरिटी सिस्टम्स विद 24/7 मॉनिटरिंग, विद टेक दैट हेल्प्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स प्रायोरिटाइज योर इमरजेंसी. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
15: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
18: In association with
13: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
12: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: गाजियाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र के साईकुंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 24 वर्षीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में की। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका हुई कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिनके आधार पर यश खटीक नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यश खटीक ने बताया कि वह भी एक पैरा एथलीट है और पहले चिराग त्यागी के साथ प्रशिक्षण लिया करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। पुलिस के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन से जुड़े एक मामले में चिराग त्यागी ने यश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके चलते उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। इसी बात को लेकर यश चिराग से नाराज था और बदला लेने की नीयत से उसने कथित तौर पर चिराग पर पिस्टल से फायर कर दिया। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
1: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी।
0: फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: अपन में 35 मंत्रियों ने ली शपथ, 13 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री बनाए गए। टीएमसी से आए चेहरों को भी मिला मौका। यूपी में बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी। प्रदेश संगठन की नई टीम पर दिल्ली में होगा 2 दिन वाला मंथन। लखनऊ में बुलाए गए कई नेता, वक्त से पहले चुनाव कराने की भी अटकलें। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम पर खींचतान। आज दिल्ली दरबार में तय होगा नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट। 3 जून को डीके ले सकते हैं सीएम की शपथ। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और बड़ा झटका। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम भी 11 रुपए बढ़े। कोलकाता में भी दाम बढ़े। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल में हीरो रहे विराट कोहली, रात भर मना जश्न। 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड भी मिले। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। न्यूज रूम लाइव जिसमें हम आपको दोपहर तक की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। जिन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, सबसे पहले आपको बता देते हैं आज हम बात करेंगे कि कैसे सरकार से हाथ धोने के बाद अब ममता बनर्जी की दिक्कतें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि पार्टी पर भी उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। बताएंगे पूरी खबर। इसके बाद बात करेंगे कि कैसे 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया और उस तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये भी इसका जिक्र करेंगे। अब तीसरी बड़ी खबर होगी एनकाउंटर पॉलिटिक्स को लेकर, जो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से शुरू हो गई है। फिर हम आपको 2:30 बजे दिखाएंगे फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ खास मुलाकात। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल से आ रही एक बड़ी खबर को लेकर। दरअसल ममता बनर्जी ने कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी विधायकों की, लेकिन 80 में से बताया जाता है कि 60 विधायक उस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं, यानी करीबन 60 से ज्यादा विधायकों ने आने से मना कर दिया। और टीएमसी की तरफ से ये लगातार कहा गया कि ये सारे के सारे विधायक अपनी विधानसभाओं में कामों को लेकर बिजी हैं। देखिए ये तर्क दिया गया टीएमसी की तरफ से कि देखिए सभी के सभी विधायक जो थे वो अपने कामों के लिए बिजी थे, इसलिए वो इस महत्वपूर्ण मीटिंग में नहीं आ पाए। लेकिन बड़ी बात तब बढ़ गई जब एक विधायक ने खुद ममता बनर्जी के कार्यप्रणाली को लेकर, उनके कामकाज के करने के तरीकों को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार से हाथ धोने के बाद ममता बनर्जी की दिक्कतें इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अब पार्टी पर वैसे भी उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। आखिरकार टीएमसी के विधायकों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
1: एक सिस्टम फॉलो करके ही एक प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है। इतना दिन का एक दल पहले भी विरोधी में थे, फिर सरकार में आए, आज विरोधी में गए हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना ही भूल गए। ये मुझे बहुत ताज्जुब लगा। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं, फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
0: और देखिए ऐसा नहीं है कि पहला मौका हो जब टीएमसी के विधायक लगातार मीटिंग से नदारद रहे। आपको एक पूरा विश्लेषण करके एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको बताएगी कैसे लगातार टीएमसी की दिक्कतें इस समय पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है।

0: ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत, टीएमसी में असंतोष की ज्वालामुखी। ममता ने बुलाई मीटिंग, एमएलए कहां गायब। टीएमसी में अंदरूनी भूचाल की इनसाइड स्टोरी। विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेलने के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष और बगावत के शोले उठते दिख रहे हैं। कल यानी शनिवार को टीएमसी में जो कुछ हुआ वो ममता बनर्जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। शनिवार को ममता बनर्जी ने विधायक दल की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के 80 में से 60 विधायक नदारद रहे। बैठक का मकसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद हालात की समीक्षा करना था, लेकिन 60 विधायक की गैरहाजिरी के चलते बैठक स्थगित करनी पड़ी।
1: अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई थी उनके कालीघाट स्थित आवास पर। और ये उनका कालीघाट स्थित आवास है जहां पर बैठक बुलाई गई थी। सारे विधायकों को बुलाया गया था लेकिन ज्यादातर विधायक अनुपस्थित रहे। लगभग 20 विधायक ही इस मीटिंग में आ पाए। ऐसे में मीटिंग ही नहीं हो पाई, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जो टीएमसी की ओर से कहा गया कि ज्यादातर विधायक जो प्रोटेस्ट चल रहा है विभिन्न जिलों में वहां पर हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता निकल नहीं पा रहे हैं, उनको निकालने के लिए, उनकी मदद के लिए ज्यादातर विधायक इस मीटिंग में नहीं आ पाए, इसलिए इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा है आज।
0: सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? 80 में से 60 विधायकों की गैरहाजिरी को लेकर टीएमसी की तरफ से बेहद कमजोर तर्क आया।
2: हमारा पास, हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास, एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था, देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरस कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम भी जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है।
0: बात सिर्फ एक बैठक की होती तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन चुनाव में हार के बाद पार्टी की बैठकों से लगातार विधायकों की दूरी ममता की पकड़ पर सवाल खड़ा कर रहा है। 6 मई को ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में 10 विधायक शामिल नहीं हुए। 19 मई की एक और बैठक में करीब 35 विधायक नहीं आए और फिर 31 मई की बैठक में 60 विधायक नहीं आए। चुनाव में शिकस्त के बाद टीएमसी में छोटे बड़े नेताओं के इस्तीफे की झड़ी सी लगी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सांसद काकोली घोष दस्तिकार का है। तो सवाल यही है कि क्या चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर भी पकड़ ढीली पड़ रही है? अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
3: और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, देखिए आप तो ममता बनर्जी के काम करने के तरीके को लंबे समय से देखते हैं। इससे पहले अगर पश्चिम बंगाल में कुछ भी होता था तो सबसे पहला रिएक्शन ममता बनर्जी खुद देती थी, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके कार्यप्रणाली पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एकदम गायब है।
1: जी देखिए, पिछले सालों से अब तक जो हुआ है उसमें ये बड़ा अप्रत्याशित है कि ममता बनर्जी एक तरह से घर में बैठी हुई हैं, वो कहीं नहीं निकल रही हैं। कल यानी 2 जून को वो पहली बार सड़कों पर उतरेंगी जहां विरोध प्रदर्शन करेंगी, लेकिन इस बीच जो ये उनकी अनुपस्थिति रही है, जबकि टीएमसी का दावा रहा है कि उनके कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मर्डर हो रहा है, लेकिन बहुत दिनों बाद अभिषेक बनर्जी सोनारपुर गए लेकिन इस बीच ममता बनर्जी कहीं नहीं गई। ऐसे में जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी लगभग 60 विधायक अनुपस्थित रहे। अब धीरे धीरे बगावत के सुर भी जो विधायक हैं उनके पास से आ रहे हैं। अरूप राय हावड़ा के जो विधायक हैं वो भी वहां नहीं पहुंचे थे। उनका कहना है कि पार्टी ने उनको फोन तक नहीं किया है। उनके जो गोदाम में पुलिस जब आई थी वहां पर जो राहत सामग्री मिली थी उन्होंने प्रशासन से ही बोला था वहां से निकाल लेने को। ऐसे में जो उनको चोर चोर कहकर उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, इस घटना के बाद से पार्टी की ओर से उनसे फोन पर बातचीत नहीं की गई, जबकि वो वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं ममता सरकार में। तो ऐसे में कई बगावत के सुर अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पार्टी बड़ी कठिन स्थिति में, इतना मैं बता सकता हूं। ममता बनर्जी के जीवन काल में तृणमूल कांग्रेस इस हालत में इससे पहले शायद ही कभी दिखाई दी हो। ऐसे में इस स्थिति से ममता बनर्जी इस पार्टी को कैसे निकालेंगे, ये बड़ा सवाल है फिलहाल ममता बनर्जी के सामने।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अनुपम, यही सवाल है कि कैसे ममता बनर्जी इस चीज को मैनेज करेंगी, क्योंकि देखिए ये सिर्फ पार्टी के नेताओं के सवाल खड़े करने की बात नहीं है, अब लगातार जो बदले की राजनीति हो रही है, जरा दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, उनके नेताओं पर जो हमले हो रहे हैं, ये भी ममता बैनर्जी के लिए बड़ा कंसर्न है। हमने देखा अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, उसके बाद कल्याण बैनर्जी पर हमला, और शायद इसी वजह से अब टीएमसी के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जा रही है।
4: जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये। अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहाँ का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं।
5: इस किस्म की चीज अच्छी नहीं है मेरे राजनीति के लिए।
6: डेमोक्रेसी में जनता प्यार भी करती है और अंडे भी मारती है।
7: बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं।
8: बीजेपी इज क्रिएटिंग ए टोटल स्टेट ऑफ लॉलेसनेस इन वेस्ट बंगाल।
9: देखो पब्लिक का रोष था।
0: क्या बंगाल बदले की राजनीति की राह पर आगे निकल रही है? इन दो तस्वीरों को देखिए। जिस बंगाल में विकास की नई बयार की आहट सुनाई देनी चाहिए, वहां से आई ये रक्त रंजित तस्वीरें चिंता पैदा कर रही हैं। पहले 30 मई की ये तस्वीर देखिए, सांसद और टीएमसी के नंबर दो के नेता अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना में हमला होता है। उन पर अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंका जाता है, उनसे धक्का मुक्की की जाती है। ये हमला तब होता है जब अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के दौरे पर होते हैं। अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। ममता बनर्जी खुद अस्पताल पहुंचती हैं, लेकिन इस घटना पर राजनीति क्या शक्ल लेती है, ये आप दिलीप घोष के इस बयान से समझ सकते हैं।
10: जनता कितना खपा हुआ है देखिए फलता इलेक्शन में। अब टीएमसी को फोर्थ पोजीशन मिला है, इसको देख के समझ जाना चाहिए। काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा? तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के दो दो MLA हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी, जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों? घर में रहिए ना, शांति से बहुत कमाया, खाइए देश विदेश।
0: अभिषेक बनर्जी पर हमले के ठीक एक दिन बाद टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी की तस्वीरें सामने आती हैं। ये हुगली की घटना है। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, उनके सिर पर पत्थर मारा गया।
11: There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. It is now 2 hours.
0: Yes. कल्याण बनर्जी की माने तो वो पार्टी के गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने गए थे जब उन पर हमला किया गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सरासर झूठ है, कल्याण बनर्जी नाटक कर रहे हैं। अब बंगाल में बड़ा सवाल ये है कि वहां हिंसा और खून खराबे का दौर कब तक चलता रहेगा? ममता बनर्जी के राज में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, तो क्या अब शुभेंदु के शासन में टीएमसी पर हमले जारी रहेंगे? बंगाल में टकराव और तनाव की राजनीति जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।
12: अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सी इन्वेस्टर जाने वाले है वहाँ, कौन सा टूरिस्ट जाने वाला है वहाँ? वहाँ तो दिख रहा है कि कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और ऐसे राज्य में फिर कौन सा इन्वेस्टर जाएगा? ये भाजपा के हर एक राज्य में ऐसी ये घटनाएं घट रही है।
13: आप देखे हैं उसका सर पर अटैक हुआ तो कहीं भी खून निकला है? झूठा पार्टी झूठा प्रपंच बना के उसका दिखाना चाहते हैं, उसको कौन विश्वास करता है? ममता बनर्जी को देख के मन लागे, बंगला में एक बात है ना, उसके लिए पूरा सही लागू।
0: आज टीएमसी कार्यकर्ताओं का वार्ड स्तर पर प्रदर्शन राज्य भर में है। कल ममता बनर्जी खुद आंदोलन की कमान संभालेंगी, विरोध में सड़क पर उतरेंगी। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
3: चलिए पश्चिम बंगाल के बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर गाजियाबाद में कोड़ा हत्याकांड के बाद लगातार अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है। डीएम एडिशनल सीपी और कई आला अधिकारी लगातार इस इलाके में मौजूद है। पिछले 3 दिनों से लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया क्लीन स्वीप, यानी लगातार अपराधियों का सफाया करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जहां पर ना सिर्फ हर अपराधी के घर को चिन्हित किया जा रहा है, वहां पर लगातार उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, बल्कि घर घर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कैमरों की मदद से, ड्रोन की मदद से और स्नीपर डॉग की मदद से भी लगातार वहां पर तफ्तीश या फिर वहां पे जांच परख की जा रही है। 3 दिन से लगातार ये ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस इलाके को, यानी कोड़ा के इस इलाके को अपराध मुक्त किया जा सके।

0: और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार हर इलाके में, आज पूरे इलाके के अंदर आपको भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रहा होगा। यहां पे ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि डीएम हो, एडिशनल सीपी हो, इसके अलावा आला अधिकारी जो मौके पर वहां मौजूद हैं, खुद जाकर वहां पर गली गली घर घर जाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप इसको नाम दिया गया और इसका मकसद यही है कि अपराधियों से मुक्त कराया जा सके इस पूरे इलाके को। 3 दिन से इस इलाके में ये बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और देखिए, इसी बीच प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई का अंदेशा भी मिल रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि ऐसा जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां भी चल रही हैं, यानी उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, इसको लेकर भी संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से हमने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई जहां पर प्रशासन और पुलिस बल की भारी तैनाती इस इलाके में की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले पे, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी प्रशासन की तरफ से लिया जा सकता है। उसके घर पर आज कहा जा रहा है कि एक ऐसा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है।
1: आपको ग्राम खोड़ा परगना तहसील मौनी जिला गाजियाबाद के खसला संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002-6 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला गाजियाबाद।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से अंशुल सिंह जुड़ गए हैं। अंशुल, देखिए लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन का नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है। अभी वहां पर क्या कुछ और है, क्योंकि देखिए असद के अलावा कई और आरोपी इसमें बताए जा रहे थे, क्या उनके खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी?
2: जी बिल्कुल, जो गाजियाबाद अथॉरिटी है वो सारे कागजात अभी निकाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आरोपी हैं उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी भी इलीगल है। जैसा असद की एक पुरानी प्रॉपर्टी पे अभी एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि जिस जमीन पर वो 55 गज का मकान बना है वो जमीन गाजियाबाद अथॉरिटी की है और अगले 15 दिन में अगर उस जमीन को खाली नहीं किया जाता तो दोबारा वहां पर फिर से एक बार बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर अभी मैं सूर्या के घर के बाहर हूं, अगर आप देखिए यहाँ पे माहौल अभी भी काफी खराब है, काफी गमहीन है और बीजेपी के नेता काफी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं जिन्होंने मृतक की माता से बात करने की कोशिश की है और उनको यह आश्वासन दिया है कि पूरा का पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिनों में गाजियाबाद पुलिस का एक्शन रहा है, कहीं ना कहीं माहौल अब थोड़ा बहुत सुधरता हुआ दिख रहा है, लोगों में थोड़ा गुस्सा कम हुआ है। लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस लगी है और उसके लिए करीब 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं जिसमें गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में गाजियाबाद पुलिस रेड कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश करें कि जो 5वां आरोपी है वो अभी तक कहां है और वो अभी तक फरार कैसे है।
0: बिल्कुल, और देखिए अंशुल आप बने रहिए हमारे साथ। अंशुल हमें बता रहे थे कि देखिए कैसे लगातार 5वें आरोपी की धरपकड़ भी तेज कर दी गई, लेकिन प्रशासन और पुलिस बल वहां पे कैसे तैनात है ये भी तस्वीरों में हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया। आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आज तक ने खास बात की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ, क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनाते हैं।
3: कोई इनकाउंटर पॉलिसी नहीं होती है। जो भी अपराधी है यदि पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस क्या उसका माला फूल से स्वागत करेगी? ये हमारा जो कानून व्यवस्था है उस तंत्र में लिखा हुआ है, यदि किसी साधारण व्यक्ति पर भी कोई साधारण व्यक्ति हमला करता है बगैर पुलिस की वर्दी में हमला करता है तो उसको हक है अपनी जान बचाने का। और जो भी इस प्रकार की कार्रवाइयां हैं सब माननीय न्यायालय के परिवीक्षा में होती हैं, सभी जांच के दायरे में हैं। हम जांच कमेटी बना करके और माननीय न्यायालय तक मामले को ले जाते हैं और ये लोकतंत्र में यही तरीका है काम करने का। क्या अपराधी तत्वों को आप सत्ता सौंपना चाहते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है उसको दिखाने के लिए आप एक बच्चे की हत्या कर देंगे? और जब कानून के रखवाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पकड़ने के लिए जाएंगे तो आप गोली चलाएंगे, कौन माफ करेगा आपको? ये कहां का कानून व्यवस्था का आप चाह रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? एनआरकी पैदा करना चाहते हैं सोसाइटी में? भरोसा तोड़ना चाहते हैं लोगों का? कौन भरोसा करेगा दोस्त पर? दोस्ती को कलंकित करने का काम गाजियाबाद की घटना ने किया है। कौन दोस्त पर भरोसा करेगा? समाज को विखंडित करने का प्रयास हम बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे।
0: और देखिए, सुबह के डिप्टी सीएम से हम बात कर रहे थे, खासतौर पे हमारे सहयोगी ने बात की और उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई की जा रही है खोड़ा के इस इलाके के अंदर, जिसे अपराध मुक्त करने के ऊपर कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए यूपी के अंदर अपराध मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कई बड़ी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई और हमने आपको ये भी बताया कि आखिरकार किस तरीके से लगातार वहां की गाजियाबाद की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि वहां पर प्रशासन के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद है, जो हमारे सहयोगी ने भी तस्वीरों में दिखाया था, और देखिए कैसे वहां पर हर घर को चिन्हित किया जा रहा है, कैसे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से वहां पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, यानी अपराधियों मुक्त द्वारा कराने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर हर घर की तलाशी की जा रही है और अपराधियों के घर के साथ साथ उनके संपत्तियों का भी चिन्हित किया जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कही जा रही है या फिर सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ही मुलाकात होगी, दिखाएंगे आपको बड़ी खबरें, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: रेडी टू मेक अ मूव, स्टार्ट योर होम बाइंग जर्नी विद CME फेडरल क्रेडिट यूनियन। ओपन एन ओहियो होम बायर प्लस अकाउंट टू अर्न 6.5% APY फॉर अप टू 5 years, सेविंग्स टुवर्ड्स योर होम परचेस। व्हेन रेडी, लॉक इन अ 5/1 मॉर्गेज एट जस्ट 5% APR। व्हेदर इट्स योर फर्स्ट होम और अ न्यू चैप्टर, CME इज हियर फॉर यू। लर्न मोर एट CMEFCU.org। APY equals annual percentage. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org for details.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: न्यूज़रूम लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कहा जा रहा है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में जल्दी कराए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर लगातार मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। इस खबर को लेकर लगातार ये जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि देखिए जनगणना के कारण चुनाव प्रीपोन होने की संभावनाएं प्रबल हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये प्रीपोन कराया जा सकता है, यानी तय समय से पहले ही ये चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि फरवरी और मार्च में यूपी में जनगणना भी होने वाली है और उसी के तौर बाद इस पर चुनाव कराए जा सकते हैं।
7: चुनाव की तिथियां क्या होंगी, ये निर्वाचन आयोग तय करता है। निर्वाचन आयोग जब भी अपने चुनाव का कैलेंडर जारी करेगा, आदर्श आचार संहिता लगाएगा, भारतीय जनता पार्टी कमर कसके तैयार रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी मौसम के आधार पर तैयार होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अहर्निश काम करने वाला एक राजनीतिक दल है, और अभी रविवार को ही प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ समितियों की बैठक की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता सूची के दुरुस्तीकरण से लेकर के बूथ समितियों के बैठक करके हर मतदाता के साथ लगातार सक्रिय रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम जैसा परिणाम फिर दोबारा दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है।
8: समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, चुनाव चाहे पहले हो, चुनाव चाहे बाद में हो, चाहे वो तय सीमा पे हो या जैसे भी हो, हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने विकास की राजनीति की है और पूरा विश्वास है जनता इस बार विकास को जिताएगी और नफरत की राजनीति को हराएगी।
0: चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
9: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
10: Oh, ouch.
9: However you make money work, we can work with that.
11: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: Tune in's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
13: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: कानपुर की धरती से गूंजेगी यूपी के विकास की बुलंद आवाज। यूपी की तरक्की का क्या है रोड मैप? जनता के सवालों का सटीक जवाब, दिग्गजों के साथ सबसे बड़ा संवाद। विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है, सिर्फ यूपी तक पर।
16: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
17: ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोक के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हाकिमपुर।
18: पुलिस की और MCD की जानकारी में था कि ये बिल्डिंग झुक गई है और ये बिल्डिंग गिरने वाली है।

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

13 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री बनाए गए। टीएमसी से आए नए चेहरों को भी मिला मौका। यूपी में बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी। प्रदेश संगठन की नई टीम पर दिल्ली में होगा 2 दिन का मंथन। लखनऊ से बुलाए गए कई नेता। वक्त से पहले चुनाव कराने की अटकलें भी तेज। सीबीएसई 12वीं के नतीजों के वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए शुरू होने वाले पोर्टल में आई खराबी। बोर्ड का बयान, जल्द ही एक्टिव होगा पोर्टल। जून की पहली तारीख को महंगाई का एक और बड़ा झटका। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा। कई शहरों में बढ़े बड़ा ऑटो का भी किराया। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना बेंगलुरु। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो बने विराट कोहली। रात भर मना जश्न। 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड मिले।

सूर्य हत्याकांड के बाद खोड़ा के अंदर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत अपराधियों पर शिकंजा। गाजियाबाद के खोड़ा पहुंचे संगीत सोम पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा कि मां को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पुलिस की गोलियां जेब में रखने के लिए नहीं दी जाती। खोड़ा को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। 3 दिन तक चलेगा यह सर्च ऑपरेशन, ड्रोन और स्नाइपर डॉग के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। गुंडो हिस्ट्री शीटरों के घरों पर पुलिस का छापेमारी जारी है। सूर्य हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा में हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीएम और एडिशनल सीपी की मौजूदगी में खोड़ा में मेगा सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं की बैठक। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े संगठन में बदलाव की तैयारी हुई है। यूपी में बीजेपी बड़े बदलाव की तैयारी में 2 और 3 तारीख को दिल्ली में मंथन होगा। डिप्टी सीएम समेत कुछ मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी का 17 दिवसीय अभियान है। 5 जून से शुरू होगा ये जनसंपर्क कार्यक्रम। लखनऊ में 5 जून को एक पेड़ मां के नाम के साथ शुरू होगा संकल्प कार्यक्रम। 21 जून को विश्व योग दिवस पर तक चलेगा यह कार्यक्रम। सीएम योगी का बिजनौर द्वारा आज पाक विस्थापित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। बिजनौर में 1600 से ज्यादा पाकिस्तान विस्थापित परिवारों को जमीन का अधिकार पत्र सौंपेंगे सीएम योगी। 50 पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा लाभ। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, मेघावी छात्रों का किया सम्मान। सीएम योगी ने कई लाभार्थियों को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा, दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक।

सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने सीएम योगी को पत्र लिखा, शक भरी पर मृतकों के परिजनों और प्रभावित। मेरठ के कैंट बोर्ड के नामित सदस्यों के डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा के घर पर सीबीआई का छापा, पार्किंग का ठेका दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया। पासवान के खिलाफ विवाद में पासी सांसदों का समर्थन जुटाने में निकले लाखन आर्मी, समाजवादी पार्टी के सांसदों से मिलकर रखेंगे अपना पक्ष। शोपी में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई, सिपाही भर्ती परीक्षा में कलावा मंगलसूत्र जैसे धार्मिक चिन्हों पर पाबंदी नहीं है। शोपी के 75 जिलों में 1183 परीक्षा केंद्रों पर होगी सिपाही की भर्ती, 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों भी परीक्षा हॉल में नहीं ले जा सकेंगे अपना मोबाइल फोन। बढ़ते अपराध का लेकर पूर्णकालीन डीजीपी बने राजीव कृष्ण का बयान, यूपी में अपराधियों के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस रहेगा, नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। गाजियाबाद में दोस्त ही निकला कातिल, पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइड करने वाले चिराग त्यागी को गोली मारकर हत्या कर दी। एनकाउंटर में मारे गए हत्या के आरोपी असद के चाचा आबिद का भी बयान, गलत संगत में असद को अपराधी की राह पर ढकेल दिया। गाजियाबाद सूर्य मर्डर केस के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा कि इस घटना ने दोस्ती को कलंकित किया। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों ने बुलडोजर से गिराया घर, फायरिंग और लूट का भी आरोप, 3 गिरफ्तार। बुलंदशहर कोर्ट में बंदर ने 2 लाख रुपए से भरा बैग छीना, पेट से नोटों की बारिश हुई। झांसी में मंदिर बना कुश्ती का अखाड़ा, ट्रस्ट के अध्यक्ष और पुजारी की पत्नी के बीच हुई झड़प, कैमरे में कैद हुई। सुल्तानपुर में पिता ने बेटी को नाले में डुबोया, वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीकेंड पर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, घंटों लाइन में लगे रहे श्रद्धालु।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ है माँ बहन की टीम। और मैं अभी शुरुआत से पहले हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि फास्ट न्यूज में पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक खबर आ गई कि नेटफ्लिक्स पर माँ बहन आ रही। और जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने लिटरली ऐसे पढ़ा और अब बहुत ही जल्द आप नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं माँ बहन। और मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि आप ये क्या लिखते रहे। तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये एक्चुअली फिल्म का नाम है, तो फिल्म का नाम यही है। स्टारकास्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, माधुरी जी, तृप्ति जी, हमारे साथ है रेखा, जया, सुषमा, राइट, तीन, और हमारे साथ धारणा भी मौजूद है और सुरेश त्रिवेणी जी। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं उसी पे आऊंगी जिस पे मैं फंस गई थी पढ़ते पढ़ते। ये नाम कहाँ से आया?
1: नाम कहानी से आया, क्योंकि कहानी एक एक माँ है जिनका नाम रेखा है। हाँ। और उनकी दो पुत्रियां हैं, एक जया और एक सुषमा। तो आप सोच सकते हैं कि, और फिर एक कांड हो जाता है।
0: अच्छा।
1: घर के अंदर। तो इससे ऐप टाइटल जो कहानी के बारे में भी, मूड के बारे में भी पता है, और प्रोटैगनिस्ट कौन है मेरे, माँ और बहन, तो आके बैठ गया पूरा अच्छी तरह से।
0: हाँ।
1: और हमने, अब फिल्म देखेंगे समझ में आएगा कि क्यों है टाइटल माँ बहन।
0: नहीं, ट्रेलर्स में तो हमने देखा है, बहुत ही अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटमेंट हमारी बढ़ी हुई है। तो माधुरी जी, माँ बहन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों चीजें इसमें है। हम देख, वही है कि देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। तो इस टाइटल को लेकर, ये जब टाइटल आपके सामने आया तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आए?
2: बिल्कुल आए, क्योंकि मुझे पहले जब इन्होंने कहा टाइटल, मैंने कहा टाइटल क्या है, बोले माँ बहन, तो एक मिनट के लिए मैं मजाक कर रहे ऐसे हुआ कि ये तो टाइटल नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी तो फिर मुझे ऐसे लगा, नहीं, दिस इज अ वेरी एप्ट टाइटल, यही चाहिए था टाइटल।
0: मतलब मेरा, मेरे प्रोड्यूसर और राइटर ने जो लिखा था, हमारी एंकर लिंक लिखा था, उसमें मेरा चौकना गलत नहीं था।
2: नहीं, गलत
0: बिल्कुल गलत नहीं।
2: जैसे हम लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मैं कहती हूँ कि मेरी नई फिल्म आ रही है, देखना जरूर, क्या टाइटल क्या है, माँ बहन, ऐसे लोग हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, रियली टाइटल इज माँ बहन, लेकिन कहानी ऐसी है, सो दे आर लाइक, बट दे आर ऑल वेरी थ्रिल्ड एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: एक बहुत अच्छा आपका डायलॉग, बार बार मैंने तो उसी में ट्रेलर और प्रोमोज वगैरह में देखा है कि मम्मी तुम फिर स्लीवलेस ब्लाउज पहन के। मम्मी स्लीवलेस ब्लाउज क्यों नहीं पहन सकती?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल पहन सकती हैं, पहनना चाहिए।
0: अच्छा, ये स्लीवलेस ब्लाउज के पीछे वाली कहानी क्या है, क्योंकि ये बहुत हिट हो रही है लाइन पूरी।
1: ये कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, और इसका क्रेडिट जाता है इसकी राइटर पूजा तुलानी को, क्योंकि हम जब जैम कर रहे थे तो उनके तरफ से आया था और वहीं से शुरू हुआ, बिकॉज आई थिंक माय सोसाइटी में अननेसेसरी टैबूज हैं फॉर सम रीजन, कुछ कुछ किसी एक रीजन के लिए, और इनको तो गर्मी लगता है।
2: गर्मी लगता है हमको।
0: लेकिन जिस तरीके से इस पूरी फिल्म में हमने देखा, जिस तरीके से एक मदर है, एक डॉटर है, दोनों यंग लड़कियां, बट आज की डेट में मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में, आपने कहा कि एक टैबू, लेकिन आजकल ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। मदर डॉटर दोनों सिस्टर्स ही लगती हैं आजकल।
2: हाँ, बिकॉज सब अपनी देखभाल करते हैं, द मदर्स आल्सो एज एक्टिव, और यू नो, इट्स कहते हैं ना, दे ऑल लुकिंग आफ्टर देयर हेल्थ, दे ऑल लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स, एंड they all want to do so many things in life, and the kids keep them young. बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को यंग रखते हैं हमेशा।
0: अच्छा, इसमें एक डायलॉग आता है जब आप इन दोनों को बोल रहे हैं कि अगर मैं जेल गई ना तो तुम दोनों को साथ लेके जाओ। मम्मी तो ऐसी नहीं होती, मम्मी तो बड़ा सैक्रिफाइस करती है।
2: You know, that's why I loved the character, क्योंकि ये बहुत ही अलग है, जैसे माँ को पेडेस्टल पे रखते हैं हमेशा, कि हमेशा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, और हमेशा खुद बहुत, मतलब बुखार होगा फिर भी खाना पकाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बहुत अलग है इसकी, और that's what attracted me to this character.
1: एक सीन होना चाहिए था सिलाई कढ़ाई वाला।
0: नहीं, उसमें इस बीच में डायलॉग भी बोलती भी तो है कि मुझे ये सब चीजें नहीं आती हैं। हाँ, ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो एक सीन है, वो इमेजिन करती है। तृप्ति, कितना क्लोज लगता है, क्योंकि फिल्म में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है
4: जी,
0: और आप लोग उस मैसेज को दे भी रहे हैं फिल्म में, कितना आज की डेट में कितना स्ट्रॉन्ग लगता है वो कैरेक्टर अगर आप रियल लाइफ में कहीं देखते हैं तो?
4: काफ़ी स्ट्रांग लगता है, क्योंकि जैसा कि मैम ने अभी कहा, हम माओ को हमने एक पेडेस्टल पे रख दिया है, हम उनको किसी और रोल में देखना भी नहीं चाहते। यू नो अब आई एम ग्लैड दैट थिंग्स आर चेंजिंग दैट किड्स हैव यू नो व्हेन दे ग्रोन अप दे आर लुकिंग आफ्टर देयर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो यू नो टेकिंग चार्ज ऑफ देयर लाइफ बिकॉज ये नहीं होना चाहिए ना कि आपकी लाइफ इज ओनली रिवॉल्विंग अराउंड अदर्स यू नो पहले आप हो फिर इफ यू आर नॉट वेल देन हाउ विल यू लुक आफ्टर अदर्स एंड आई थिंक आई एम ग्लैड दैट वुमेन टुडे आर टेकिंग दैट यू नो स्टैंड दे आर मेकिंग श्योर दैट they are well, they work out, they eat well, they look after their kids, then women can do all of it. You know, they can work at home, they can work multiple jobs. They are doing, I've seen my sister, I've seen my mother, they can do it all. So, you know, I'm so, so glad that I got an opportunity to do a film like Maa Behen because the messaging is so strong in this and I hope that whoever watches the film learn something from it. I'm dying for my family to watch the film. They'll be so proud of it. I'm so proud of it. I think all of us are very, very proud of this. And thank you.
0: नाना आप कंटेंट क्रिएटर से अब एक्टर बनी हैं. मैं उस सवाल पे नहीं आऊंगी कि कैसा लग रहा है दोनों में से कौन सा अच्छा है. लेकिन उस जो आप कंटेंट क्रिएट करती थी उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे देखे जहां पर आप मम्मी का रोल करते हैं. कितना सिमिलर लग रहा है और क्या क्योंकि उसमें भी एक मैसेज होता है और यहाँ भी एक मैसेज है.
5: हाँ मैंने भी कभी कभी ऐसी मम्मी दिखाई है जो नहीं कर रही है सैक्रिफाइस. पर मेरी मोस्टली इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से ही होती है उन कैरेक्टर्स के पीछे जैसे वो रिएक्ट करती हैं सिचुएशंस में कि बहुत ही ओवर ड्रामेटिक होके यहाँ पे. पर तो वो फिर भी उसमें थोड़ा सैक्रिफाइस चलता है बट ये एकदम ही अलग है. जहाँ पे जेल जा रही है तो लेके जा रही है. मैं इमेजिन नहीं कर सकती
4: मेरी मम्मी
5: कि मैं वहाँ पे ये बोलूँ कि क्योंकि मैं तो वहां से रिलेटेबिलिटी ले रही हूँ जो मेरी मम्मी मुझे बोलती है. बट ये बहुत ही अलग है. ये मैंने भी नहीं इमेजिन किया कि ऐसी माँ ऐसे माँ बोल सकती है.
0: एक सिंगल मदर के लिए आपको लगता है वाकई बहुत टफ होता है दो डॉटर्स को रेज करना फिर खुद भी स्ट्रगल कर रही हैं और बच्चियों के साथ भी और फिर उस बीच ऐसा कुछ अनवांटेड
2: डिफिकल्ट क्योंकि एक सोसाइटी की भी नजर होती है एंड दे लुक एट हर डिफरेंटली. जजमेंट होती है उनकी कि you know she doesn't have a male like a dominating male character in her life but amazingly I've seen so many single mothers do such a great job. मतलब वो बच्चों को मतलब उनकी परवरिश करते हैं सब कुछ. शी वर्क्स और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं सब. मतलब जो एक फुल फैमिली जो करती है वो खुद अपने बलबूते पे करती है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम.
0: सर आपने एक एक बहुत संजीदा मुद्दे को जो सोसाइटी का है उसको बहुत अच्छे से बड़ा फाइनली आपने इस फिल्म के जरिए दिखाया है. तो एग्जैक्ट जब आप बना रहे थे तो क्या पीछे की सोच थी क्या मैसेज आप देना चाह रहे थे.
1: नहीं मैं क्या कहता हूँ मुझे मैसेजिंग ना हर कहानी में क्योंकि आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है आपकी जो कंडीशनिंग होती है तो मैसेजिंग तो हर कहानी में होती है. बट मेरा पहला फोकस रहता है कहानी पे. आप कहानी ढंग से कह दो एंटरटेनिंग करो क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा है और उसमें हम दो तीन चीजें ऐसे कह के चले जाते हैं. उससे बेटर कुछ होता नहीं क्योंकि स्कूल में भी जब हमको बहुत सीख सिखाई जाती है किसी को प्रीची चीजें अच्छी नहीं लगती. तो फोकस है कहानी कहने में और उसके साथ आफ्टर टेस्ट में आप कुछ लेके जाओ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे दो मिनट के लिए से. लेकिन वो फिर एक हर कहानी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बहन के साथ है.
0: तो मम्मी के कैरेक्टर से क्या क्या लेके जाओगे सीखते जाओगे
4: कि बिंदास रहने का
0: और हमारी आज की मदर्स के लिए भी तो कोई मैसेज होना चाहिए
4: यही कि यू नो दे शुड लुक आफ्टर देमसेल्व्स और दैट दैट खाली एक वो माँ है बट एक इंसान भी है एंड दे नीड टू ऑल्सो रियलाइज दैट एंड वी एज किड्स ऑल्सो नीड टू सी द ह्यूमन साइड ऑफ देम एंड नॉट जस्ट कि यार ये मम्मी है तो दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो यू ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो मतलब बड़े हो गए हो अब नहीं भी हुए तो मदर्स शुड ऑल्सो टीच देयर किड्स आई फील फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू बी इंडिपेंडेंट क्योंकि बहुत जरूरी होता है आई थिंक इंडिपेंडेंट होना.
0: माधुरी जी आपके तो दो बेटे हैं
2: जी
0: तो कभी ऐसा फील हुआ कि मम्मी मम्मी वाले रोल में आना है मुझे.
2: हाँ होता है ना अलग अलग रोल होते हैं मम्मी के. कभी मम्मी वाला रोल होता है कभी डॉक्टर वाला रोल होता है कभी रेफरी वाला रोल होता है. जैसे झगड़ा करने लगे तो यू आर द रेफरी इन द मैच. सो जैसे मॉम्स कहते हैं ना वी वेयर अ लॉट ऑफ हैट्स तो अलग अलग रोल होता है एवरी डे इज डिफरेंट.
0: उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं आपसे.
2: नो आई थिंक माई किड्स आर वेरी स्वीट, मतलब और हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है. दो बच्चे हों उनकी भी पर्सनालिटी अलग, तीन हो तो और भी अलग. तो आई थिंक दे बेसिकली सपोर्ट मी अलॉट और दे लव मी. दे अगर कुछ अच्छा देखते हैं तो दे विल प्रेज मी. दे लव द फैक्ट दैट आई वर्क. और जब भी मैं सेट से वापस जाती हूँ, डिड यू हैव फन टुडे, ऐसे पूछते हैं. डिड यू हैव फन टुडे, डिड यू हैव अ ग्रेट टाइम. उन्होंने ट्रेलर देखा, बहुत पसंद आया दोनों को. सो दे आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग माँ बहन. तो पहले जब मैंने टाइटल उनको भी बताया तो हंसने लग गए थे. आफ्टर ऑल देन दे सेड ओह दिस आफ्टर द ट्रेलर दे सेड मॉम एप्ट है, टाइटल इज वेरी गुड. सो दे हैव दे कुक यू नो, खुद बनाते हैं अपना खाना वाना, सब देखना नहीं पड़ता उनको.
0: एक्सपेक्टेशंस जब हम करते हैं आज की तारीख में, ठीक है, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम हो गई या चेंज हो गई है बच्चों की प्रायोरिटीज, क्योंकि आधा टाइम तो बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो इसलिए मम्मी अगर नहीं भी दिखे तो चलेगा. तो ये ट्रेंड क्या चेंज हुआ है आज की डेट में आपको लगता है, या हम पहले टाइम में ज्यादा मम्मी पास रहे तो बेटर है और आज की डेट में अगर नहीं भी रह रही है तो ठीक है चलेगा?
5: मेरा तो ऑनेस्टली मिक्स चलता है. मुझे चाहिए भी मम्मी, पर जब मम्मी बिजी है तो ठीक है मम्मी आप अपना काम भी कर लो. तो मैं इतना मम्मी को बॉदर नहीं करती हूँ, मैं एक अच्छी बच्ची हूँ. मेरी मम्मी भी एक वर्किंग मदर है, तो वो अपना हैंडल करती हैं सब कुछ, बिजनेस ऑनर होन, तो मुझे पता है कि उनके पे ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. और वो फिर भी ट्राई करती हैं कि उसमें से जितना भी टाइम मिले जो उनको नहीं करना चाहिए वो अपने से ज़्यादा हम पे ही हमारा ध्यान रख दें. आज मैं तेरी पैकिंग करा दूँ, ये करा दूँ, वो करा दूँ. तो मैं ट्राई करती हूँ जितना कम से कम उनको परेशान करूँ, पर मेरे अंदर का वो एक है छोटी धारणा अभी भी जिसको हमेशा मम्मी अपने पास चाहिए. बट जब तक मैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही, मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ खुद कर लूँ और उन्हें सिर्फ तब अपने साथ रखूँ जब वो भी इंजॉय कर रही हैं. जैसे मैं उन्हें सबसे पहले जब मुंबई लेकर आई और मरीन ड्राइव पे बैठ के इंजॉय कर रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आया वो देख के कि वो आज सिर्फ बीच पे बैठी हैं और मज़े कर रही हैं, कुछ टेंशन नहीं. तो वो बहुत इंजॉय करती हैं जब मैं उन्हें यहाँ लेके आती हूँ. तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जब भी हो तो मैं लेके आऊँ. बाकी आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए.
0: मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बस आप ही से है. तो हम आगे अब आपको कहाँ कैसे देख पाएंगे, और डिमांड अब बहुत ज्यादा आ गई है. सर ने सूबेदार भी आई गेस बनाई है अनिल जी के साथ, तो वी वॉन्ट अनिल जी एंड माधुरी जी टूगेदर. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है?
2: बस इनपे है सर,
0: इनपे है सर.
2: अभी सर
1: कॉमेडी कॉमेडी कर
2: कॉमेडी इनपे है.
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. दो सवालों के लिए बोला गया था, दूसरा बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी. बहुत बहुत
1: शुक्रिया.
0: अभी के लिए इतना ही.
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
8: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
9: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
10: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
7: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
11: और इस समय कोलकाता से एक बड़ी खबर आ रही है कि कोलकाता के लेक टाउन क्रॉसिंग पर स्थापित फुटबॉलर स्टार लियोनी मेसी की प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इंजीनियर्स ने जांच के बाद प्रतिमा को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया क्योंकि तेज हवाओं से यह झूल रही थी. आज सुबह दो हाइड्रोलिक क्रेन मौके पर पहुंची, जिसके बाद प्रतिमा को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जानकारी विधान नगर प्रशासन को दी थी और जांच में पाया गया कि इस लगातार इस प्रतिमा को तेज हवाओं से हिल रही है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका है। 13 दिसंबर 2025 को लेक टाउन क्रॉसिंग पर स्थापित इस प्रतिमा का अनावरण अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी ने कोलकाता के दौरे के दौरान खुद किया था वर्चुअली।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
9: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
13: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
14: Oh, ouch.
13: However you make money work, we can work with that.
15: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
16: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
17: वो बकरीद का दिन था। 28 मई की दोपहर 3 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी असद और सूर्य प्रताप में झगड़ा हुआ। बाइक चलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। असद ने झगड़े की बात अपने पिता नवाब और अन्य आरोपियों को बताई। तभी गिरफ्तार आरोपी फरहान और आतिफ के साथ साथ अन्य आरोपियों ने मिलकर सबक सिखाने की साजिश रच डाली। महज बाइक चलाने का विवाद था। 28 मई की दोपहर 3:30 बजे आरोपियों ने सूर्या को नवनीत बिहार की गली नंबर 4 में घेर लिया। फरहान ने पुलिस के सामने कबूला कि मैंने असद को चाकू दिया। असद के पिता ने कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आरोपी पिता नवाब के ये कहते ही उसके बेटे असद ने सूर्या के पेट में चाकू भोंक दिया। हमले के बाद सूर्या खून खून होकर वहीं गिर पड़ा। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में हत्या के लिए उकसाने वाला असद का पिता नवाब के साथ साथ अन्य दो आरोपी फरहान और आतिफ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक।
18: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
13: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
14: Oh, ouch.
13: However you make money work, we can work with that.
15: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
20: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
21: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
22: In association with
23: Bharat ki apni electric sawari, so kudos.
11: और चलिए 3 बजे के इस बुलेटिन 100 शहर 100 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको ये खबरें दिखाएं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो कोलकाता से आ रही है, जहां पर टीएमसी ने अपने विधायकों को पार्टी से निकालने का आदेश दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि विधायक रीता बर्ता बैनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी ने निकाल दिया गया है। देखिए, आपको बता दें कि रीता बर्ता बैनर्जी और संदीपन साहा को निकालने की खबरें लगातार सूत्रों के हवाले से मिल रही है। दोनों विधायकों के खिलाफ सीआईडी चल रही है और टीएमसी ने 2 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। और चलिए, अब वक्त है 100 शहर 100 खबरों का।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन।
11: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के 35 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, राज्यपाल आरएन रवि ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में मनोज उराव और गौरी शंकर घोष मंत्री बनाए गए। पश्चिम बंगाल में इस बार मंत्रिमंडल के क्षेत्र और अनुभव का ध्यान रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की गई। कैबिनेट ने इस बार अनुभवी और युवा चेहराओं को जगह दी है। संधोत मुख्योपाध्याय, इंद्रनील खान और पूर्णिमा चक्रवर्ती ने ली है मंत्री पद की शपथ। तापस रॉय, भूत कुमार मोंडोल और कार्गी घोषदास और रूपा गांगुली ने भी ली है शपथ। अभिषेक बैनर्जी पर हमले का मामला गरमाया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से करेंगे शिकायत, कोर्ट भी जाएंगे। 30 मई के हमले पर अभिषेक बैनर्जी का बड़ा कदम, कानूनी लड़ाई की तैयारी, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के साथ ही अदालत का भी रुख करेंगे। स्वास्थ्य कारणों से सीआईडी के समन नहीं होंगे सामने पेश, खराब स्वास्थ्य के चलते सीआईडी पूछताछ चली, जल्द कोर्ट जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 1 जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की शुरुआत की गई, बीजेपी ने कहा कि चुनावी वादा पूरा किया। आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हुआ। इसके हिसाब से कमर्शियल सिलेंडर 3,071.50 रुपए का मिल रहा है, वो अब 3,113.50 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के भाव भी इजाफा कर दिया गया, अब 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर दिल्ली में 821.50 रुपए का मिलेगा। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के भाव 53.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, आज से 3,255.50 रुपए का मिल रहेगा। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई मैन ने 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी महंगा कर दिया, पहले महंगाई मैन ने जनता को छोटा सिलेंडर खरीदने के लिए कहा और फिर वसूली चालू कर दी। सीएम योगी का बिजनौर दौरा आज, पाकिस्तान स्थापित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। बिजनौर में 1645 पाक विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र देंगे सीएम योगी, 50 पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा लाभ। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, मेघावी छात्रों का किया सम्मान। सीएम योगी का बयान, कहा कि धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है, तभी यह देश सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा, दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक।

बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में, कहा कि चुनाव केवल विकास कार्यों के आधार पर नहीं जीते जाते बल्कि राजनीतिक तिगड़म और राजनीति रणनीति की अहम भूमिका निभाते हैं। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि हमने भी बहुत विकास कार्य कराकर देख लिए लेकिन वहां के बक्सों से वोट ही नहीं मिल निकले। समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया ने कहा कि पार्टी किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है, ये चुनाव चाहे समय से पहले हो या फिर समय के बाद, हम तैयार हैं। अनुराग भदौरिया ने कहा कि हमने हमेशा विकास की पॉलिटिक्स की है, हमें चुनाव के वक्त से कोई असर नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में कल 5 नए जज लेंगे शपथ। सुप्रीम कोर्ट के विस्तारित भवन में ऑडिटोरियम में चीफ जस्टिस सूर्यकांत दिलाएंगे शपथ। भीषण मौत मामले में सीबीआई की टीम क्राइम ब्रांच सीन आज रिक्रिएट कर रही है। सीबीआई की टीम एक डमी लेकर जाएगी। समर्थ और गिरिवाला सिंह को लेकर जाएगी सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी साथ रहेंगे। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में आरोपी नारायण साहू ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। नारायण साहू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। जस्टिस विक्रम नाथ के कहा कि जुलाई में सुनवाई करेंगे, कोई अर्जेंसी नहीं है। चंडीगढ़ में विक्रम मजीठिया के गिरफ्तार करने के लिए गई टीम, नहीं मिले अकाली दल के विक्रम मजीठिया, सभी जगहों पर छापेमारी जारी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन बैठक, नई राष्ट्रीय टीम जल्द घोषित होने के संकेत मिले। पीएम मोदी आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, अमित शाह राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। राज्यसभा चुनावों से पहले बीजेपी की तैयारी तेज, 18 जून को 24 सीटों पर मतदान होने। यूपी के उन्नाव से बीजेपी विधायक कमंच से अपराधियों को धमकी देते हुए और पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीता है, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से हराया है। विराट कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई है, कोहली ने 75 रन बनाकर नाबाद लौटे। आरसीबी ने टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी चुनी है। गुजरात टाइटंस को ने 20 ओवर में 155 रन बनाए। आरसीबी ने 156 रन का लक्ष्य 5 विकेटों को खोकर हासिल कर लिया। वेंकटेश्वर अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए। आरसीबी लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे पहले मुंबई ने साल 2019, 2020 और चेन्नई ने 2010 और 11 में जीता था खिताब। आईपीएल में बेंगलुरु की जीत का विराट कोहली ने मनाया है धमाल, पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जमकर के डांस। विराट कोहली के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने भी डांस कर जीत का जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कोहली आईपीएल के बेंगलुरु की जीत पर लोगों ने साई बाबा मंदिर में पूजा भी की, टीम को जीत की बधाई भी दी गई। कर्नाटक के हुबली में बेंगलुरु की जीत पर मना जश्न, फैंस ने सड़कों पर उतरकर जमकर आतिशबाजी भी की। बेंगलुरु की जीत के बाद कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, जश्न मनाने वाले जगहों पर तैनात दिखे जवान। फतेहपुर में सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। गरीब लोगों को प्रलोभन देकर कराया जा रहा था धर्मांतरण। अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर शोभा यात्रा के दौरान स्टंटबाजी की गई, रोकने पहुंचे दरोगा से भी लोगों ने मारपीट की। ट्रैक्टर बाइक से खतरनाक स्टंट से लगा जाम और अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में जिला प्रशासन ने स्टेट हाईवे 17 के 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर हटाया अतिक्रमण। मेरठ में 30वीं मंजिल से कूदी किशोरी, मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग के परिजनों ने लगाया युवक पर प्रताड़ित करने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में नशा मुक्ति केंद्र में 3 दिन के अंदर 2 युवकों की मौत, संचालन पर ओवरडोज देने और मारपीट का घर वालों ने लगाया आरोप। गाजियाबाद में दोस्ती निकला कातिल, पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफायर करने वाले चिराग त्यागी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। एनकाउंटर में मारे गए हत्या के आरोपी के असद के चाचा आबिद का बयान, गलत संगत में असद को अपराध की राह पर धकेला, जो किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद मामले पर कहा कि इस घटना ने दोस्ती को कलंकित किया, समाज को बांटने की साजिश हुई। गाजियाबाद में 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। सूर्य हत्याकांड के बाद खोड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत अपराधियों को शिकंजा कसा जा रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा में पहुंचे संगी सोम पीड़ित परिवार से मुलाकात करी, मां को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। खोड़ा को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई, 3 दिन तक चलेगा सर्च ऑपरेशन, ड्रोन और स्नाइपर डॉग की निगरानी में होगा यह ऑपरेशन। गुंड और हिस्ट्री शीटरों के घर पर पुलिस की छापेमारी, सूर्य हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा में हाईलाइट कर दिया गया है।
पीएम और एडिशनल सीपी भी मौजूदगी में खोड़ा में मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अवैध संपत्तियों में भी चिन्हित किया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप से अपराधियों में हड़कंप है। पटना में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर घसीट घसीट कर पिटाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ में गन्ने के खेत में मिला अजला शव। मुजफ्फरनगर निवासी प्रवीण के रूप में हुई है इस शख्स की पहचान। जिले के आईटीओ में स्कूल ऑफ प्लानिंग की बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। आगरा मालवा में बिजली विभाग ने अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों ने बुलडोजर से गिराया घर। फायरिंग और लूट का भी आरोप। 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में परिक्रमा मार्ग पर महिलाओं को परेशान करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। मुरादाबाद में युवक ने बनाया सुसाइड वीडियो। लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। इटावा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में सरिता लेने से लेन देन का रची है साजिश। पुलिस ने किया खुलासा। बिजनौर में वाटर पार्क में हुई कहासुनी बनी खूनी संघर्ष की वजह। आरोपी युवक पर किए गए चाकू से ताबड़तोड़ हमले। कानपुर में मुफ्त के गोलगप्पे और आइसक्रीम खाना पुलिसकर्मियों को पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने पर हुए सस्पेंड। वडोदरा में पुलिस भवन के बाहर दलित समाज और पुलिस के बीच भारी झड़प। इलाके में फैला है तनाव। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। राजस्थान के डिडवाना में 72 घंटे के से खदान में फंसा रहा मजदूर का शव। पानी में भरी मार्बल खदान बनी मौत का कारण। बेंगलुरु में राजपाल के काफिले के दौरान ट्रैफिक रोके जाने से नाराज शख्स ने सड़क पर बैठा अपनी गर्भवती महिला के पत्नी के साथ किया विरोध प्रदर्शन। भोजपुर में सोन नदी पर बड़ा हादसा। एक को बचाने गए 6 बच्चे डूबे। 3 की मौत। गांव में पसरा समातम। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण जोरों शोरों पर है। भगवान राम के 63 पीढ़ियों की डिजिटल वंशवाली भी दिखाई जाएगी। रामेश्वर में पीएम मोदी ने भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी के रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन के भगवान को का लिया आशीर्वाद। कारगिल में एमवीसी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कई टीमों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पर 6 पार्टनरशिप पटनी टॉप मैराथन का आयोजन किया गया। 800 से अधिक धावकों ने इसमें हिस्सा लिया। श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की जांच की गई। ग्रे शेड्स रोल्स पर बोली करिश्मा कपूर, अब किरदार सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते, उनके व्यक्तित्व की कई परतें होती हैं। माधुरी दीक्षित ने डोला रे डोला की शूटिंग के दौरान गर्भवती होने की खबरों का खारिज कर दिया है। तमिल फैंटेसी एक्शन करुप्पु ने सिर्फ 15 दिन में दुनिया भर में कमाए 300 करोड़ रुपए। सफलता से गदगद एक्टर सूर्या ने संगीतकार और सिनेमेटोग्राफर को गिफ्ट की है कार। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर के राम की भूमिका निभाने पर बोले टीवी के राम अरुण गोविल, मेरा निभाया किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर बोले निर्देशक इम्तियाज अली, रणबीर कपूर की जिंदगी बदल सकता है किरदार। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी ईरान समझौते पर संशोधन का अनुरोध किया है। यह बदलाव हॉर्मोन स्ट्रेट और यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। गाजा के कैफे पर हवाई हमले किए गए। इजरायली हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल बताया जा रहा है। कैफे पर हमला उस वक्त हुआ जब वीकेंड के दौरान काफी ज्यादा भीड़ थी। इसराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में संदिग्ध कार में 2 किशोर लड़कियों को कुचला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक लड़की की उम्र 17 और दूसरी की 15 साल थी। ईरान सहित अरब अमीरात और यूक्रेन के परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों पर IAEA ने जताई चिंता। कहा कि परमाणु संयंत्रों पर हमले अस्वीकार्य हैं, इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोलंबिया के आम चुनावों में किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिली है 50% की का मत। 21 जून को दूसरे दौर की दक्षिणपंथी और वामपंथी इवान स्पेडा के बीच मुकाबला होगा। अमेरिका में बढ़ती यहूदी विरोधी भावनाओं के बीच न्यूयॉर्क में इजरायली टीएम परेड की गई है। यहूदी समुदाय के हजारों लोग ने इसमें शामिल हुए। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी हुकूल भी इसमें भाग लिया है। इटली में पड़ रही है भीषण गर्मी से बचने के लिए समुद्री तटों पर लोग उसका रुख कर मोंडेलो में के बीच लगातार वहां पर लोग और पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। ग्रीस के पोसिडॉन में मंदिर के ऊपर दिखा दुर्लभ नीला चंद्रमा वसंत ऋतु के अंत का है प्रतीक। नासा के मुताबिक ये साल के सबसे छोटे चंद्रमा में से एक है।
इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने प्रीमियर लीग ट्रॉफी में अपने नाम कर लिया। लंदन की सड़कों पर जीत को लेकर सेलिब्रेट करते हुए दिखा भव्य नजारा, जश्न मनाते नजर आए लोग। 15वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड ने फ्रेंच ओपन में बाहर हो गए हैं। ब्राजील के युवा खिलाड़ी जुआओ ने 7-5, 7-6, 5-7 और 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है।

0: नमस्कार, आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। क्या देश में लगातार हिंदू आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी का बढ़ना आगे चिंताजनक हो सकता है? क्या देश में अलग अलग जगहों पर सीमा से सटे हुए इलाकों के पास अचानक मुस्लिम आबादी दूसरे धर्म या समाज के नागरिकों की तुलना में वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, या इसकी वजह घुसपैठ है? क्या हमारे देश में एक साल के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालने, घुसपैठियों की वजह से आबादी का संतुलन बिगाड़ देने वाली बड़ी साजिश को रोकने के लिए सख्त कानून बन सकता है, जिस पर मोदी सरकार के कई बड़े फैसले, गृहमंत्री अमित शाह के बॉर्डर के पास होते दौरे और बंगाल में अचानक घुसपैठियों में मची भागम भाग के बीच में एक बड़ी बहस चल पड़ी है। इसीलिए आज हम एक एक करके जानेंगे कि क्या घुसपैठ और घुसपैठियों का वक्त अब खत्म हो चुका है, और अगर फैसले घुसपैठियों के खिलाफ होते रहे हैं तो फिर शंका क्यों कुछ लोगों के मन में पैदा हो रही है?
1: देश से आके यहाँ पर बैठ के हर इंसान का पेट पे लात मार रहा है और हर इंसान का नौकरी खुद ले ले रहा है।
2: ये एक राजनीतिक प्रोपेगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉपुलेशन जैसा था वैसे ही है।
3: ये तो सही बात है, अगर अभी से इस घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहते तो इंडिया का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा।
4: सिर्फ यहाँ पे लोगों को, मुसलमानों को उलझाने की बात हो रही है, सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की बात हो रही है।
5: घुसपैठी की वजह से वही बदनामी हो रहा है। हम लोग यहाँ का बासिंदा, हम लोग यहाँ फंस रहे हैं, हम लोग को परेशानी हो रही है
6: कि बीजेपी जो अभी देश में आया है तो ये सब मुसलमान को डरवा दिया है।
7: कोई भी मुसलमान किसी भी बांग्लादेशी मुसलमान का समर्थन नहीं करता है।
8: जो बांग्लादेशी है उसका आप कभी समर्थन करेंगे नहीं, और वाकई अगर बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर में है तो उसे निकाला जाए, क्यों रहेगा हमारे देश के अंदर? डेमोक्रेसी मुस्लिम के बदले क्यों बदलेंगे? मुस्लिम के रीजन क्या है जो मुस्लिम के बदले? मुस्लिम क्या यहाँ पे मतलब क्या बोझ है क्या देश के अंदर में?

0: बकरीद पर सड़क की जगह मस्जिद में नमाज करने वाले, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य में गोवंश की कुर्बानी पर पाबंदी को इस बार मानने वाले, देश के मुस्लिमों के मन से लेकर भारत के तमाम नागरिकों के मन में दो सवाल चल रहे हैं। क्या मुस्लिमों की वजह से आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है, और क्या घुसपैठ करके डेमोग्राफी यानी किसी इलाके में आबादी का अनुपात बिगाड़ देने वाले अब किसी हालत में बचेंगे नहीं।
1: जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के हर बयान, हर पोस्ट, हर दौरे को लेकर सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। क्या देश में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला जल्द होने वाला है, जिसकी एक झलक 26 मई को दिखती है, जब सोशल मीडिया पर गृह मंत्री ने पोस्ट किया, लिखा, घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया, जो पूरे भारत में हो रहे अप्राकृतिक डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर इसका समाधान भी देगी।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: एक साल में केंद्र सरकार की बनाई कमेटी रिपोर्ट देने वाली है, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अचानक किसी धर्म की आबादी कम होकर दूसरे धर्म की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उसके कारण समझकर फैसला होगा। मई के महीने में चार चीजें ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि सरकार पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब पूरे देश में एक मिशन के रूप में जुट चुकी है, मिशन घुसपैठिया बाहर जाओ, जहां बंगाल में 600 एकड़ सीमा से सटी जमीन बीएसएफ को सौंप दी जाती है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है, अनेचुरल डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी बना दी जाती है और फिर बॉर्डर मिशन पर खुद अमित शाह जाना शुरू कर देते हैं। दशकों तक देश में नक्सल मुक्त भारत के जिस सपने को नामुमकिन माना गया उसे मुमकिन करने के बाद गृह मंत्री अब घुसपैठियों की एंट्री बंद और वर्षों से भारत में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों को आउट करने के रण में उतर चुके हैं, जिसका लक्ष्य लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल तय किया।
2: षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा।
0: प्रधानमंत्री के इसी बयान के 9 महीने के भीतर पूरे देश में एक्शन शुरू होता है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बॉर्डर इकट्ठा होकर बस किसी तरह वापस बांग्लादेश वापसी का इंतजार करने लगे।
3: बांग्लादेश से मैं बांग्लादेश से आया था, मेरे पास सभी पहचान पत्र हैं। मैं यहाँ काम की तलाश में आया था, अब मैं वापस बांग्लादेश जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सरकार अब पहले जैसी नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड भी है। मैं यहाँ 7-8 साल पहले आया था, लेकिन अब सरकार बदल गई है। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। मैं सीमा पार करके यहाँ आया था। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। अब हम कैसे रहेंगे यहाँ?
0: होल्डिंग सेंटर में वो संदिग्ध लाकर रखे जा रहे हैं जो घुसपैठ करके पहले भारत में घुसे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बांग्लादेश से सटी सीमा के पास ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि कोई घुसपैठिया अगर भीतर तक पहुंचा है तो ड्रोन से नजर रखकर तुरंत उसे रोकने के लिए पुलिस एक्शन में आ सके। इन सब के साथ ही आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर बंगाल से घुसपैठिए तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन देश भर में छिपे घुसपैठिए कैसे निकलेंगे? तो जवाब है, मोदी शाह की डेमोग्राफी चेंज का सच समझने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, जो घुसपैठ या किसी दूसरी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आबादी के ढांचे में आए बदलाव का हिसाब करेगी, देखेगी कि जो धर्म या सामाजिक समुदाय में जनसंख्या का अनुपात बदला है उसका कोई खास तरीका या पैटर्न तो नहीं, बदलाव के पीछे असली वजह क्या है उसकी तह तक जाएगी। पड़ताल के बाद ये कमेटी तय समय में सुधार वाला रास्ता बताएगी और ये भी बताएगी कि क्या नया कानून, नई नीति लानी पड़ सकती है। कमेटी को एक साल में रिपोर्ट देना है, लेकिन उससे पहले ही हलचल देश के मुस्लिम नागरिकों के बीच बढ़ चुकी है।
4: अभी एक तरह का नैरेटिव चला है कि मुस्लिम की वजह से बन रहा है, अभी एक कमेटी भी बनी है उसके लिए करके। मगर आप बताइए कि यहाँ पर जितने हम लोग खड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। अब बताइए कि यह आबादी, हम लोग तो भारत सरकार के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम 2 हमारे 2 के साथ चल रहे हैं। लगभग लोगों की फैमिली आजकल वही है, 2-3, तो हमारे वजह से कैसे चेंज हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी मुस्लिम की वजह से क्यों बदलेगी? मुस्लिम की वजह से रीजन क्या है जो मुस्लिम की वजह से बदलेगी? मुस्लिम क्या यहाँ पे मतलब क्या बोझ है क्या देश के अंदर में? हम इस देश के है ना, मतलब के क्या बोलते हैं उसको, बाय चॉइस क्या बोलते हैं, इन चॉइस नहीं, बाय चॉइस हम इस देश में रहते हैं, वरना हम तो पटिशन के समय हम भी जाते ना, लेकिन हमको हमारे देश से मोहब्बत है तो हम बाय बर्थ यहीं पे है।
5: ये राजनीतिक जुमला है, और जो है यहाँ पे हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज़्यादा है, तो इसका बाद अगर आप हमें भुई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू, जब से ज़्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है, ठीक है, वहाँ भी आबादी बढ़ रहा है, यहाँ भी आबादी बढ़ रहा है। जब यहाँ 44,000 वोट है तो वहाँ का भी 43-42,000 वोट है, इसका वजह से आबादी का इसमें कोई इशू उठना नहीं चाहिए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
7: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर 2 taps later क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
10: Savari Sokudo.
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
5: अब सवाल यह आता है कि क्या वाकई भारत में डेमोग्राफी अप्राकृतिक रूप से बदल रही है? डेमोग्राफी के असामान्य रूप से बदलने, यानी कि जहां पर हिंदू पहले ज्यादा रह रहे थे वहां पर अचानक मुस्लिम, या फिर जहां सिख या ईसाई ज्यादा रहे वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे क्या कोई खास वजह है? और क्या इसकी वजह से राष्ट्र की सुरक्षा तक को खतरा हो सकता है? पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो रिपोर्ट 2014 में दी है वो रिपोर्ट बताते हैं कि 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी का 7% तक घटा है और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है।
6: हिंदुओं को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा।
7: लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, देश के 6 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी के आधार पर हिंदू की संख्या कम है। हिंदू अल्पसंख्यक नजरिए से यहाँ देखे जाते हैं। सवाल है कि और कितने राज्यों में हिंदू आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक होने वाले हैं?
6: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है।
7: क्या घुसपैठ की वजह से असम में हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यक जैसी हो जाएगी?
8: कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया। असम के 9 जिले घुसपैठिया बहुल हो गए। मैं आज हीलाकांडी की इस पवित्र भूमि से कहकर जाता हूं, ये भारत की भूमि है, यहां कोई घुसपैठियों की जगह नहीं है।
7: क्या घुसपैठ के साथ लव जिहाद भी डेमोग्राफी बदलने की बड़ी वजह है?
9: डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है।
7: क्या भारत की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या भारत में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है? मुसलमानों की आबादी के बढ़ने की वजह क्या सिर्फ घुसपैठ ही है?

0: लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ है कि आने वाले चुनावों में डेमोग्राफी में आता बदलाव ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसके लिए बीजेपी नेता अक्सर घुसपैठ और मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे पैदा करने को इसकी वजह बताते हैं।
1: एक चीफ मिनिस्टर ये क्यों बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि असम में असम इज अंडर थ्रेट, और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैंस दैट बैंस एम्पावर असम गवर्नमेंट इन 24 आवर्स टू एविक्ट पीपल। मैं तो एक रुपया का बात बोला हूं, सुप्रीम कोर्ट बोला है 26 घंटा में उनको बाहर भगाओ।
0: घुसपैठ का जिक्र आते ही असम और पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाने लगता है, जहां बांग्लादेश से सटे जिलों का आबादी का हुलिया बदल गया है। पिछले साल अक्टूबर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने एक ग्राफ शेयर किया और दावा किया कि असम में दशकों से हो रही अवैध घुसपैठ के कारण बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस ग्राफ में हिमंत बिस्व शर्मा की तरफ से बताया गया कि 1971 में असम की आबादी में 24.5% मुस्लिम थे, जो बढ़कर 38% से ज्यादा हो गए। वहीं 1971 में 72.51% हिंदू, जो तेजी से घटकर 57% पर रह गए।
1: जो लोग बांग्लादेशी मुसलमान के लिए रोते हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, बट हमारे असमिया लोगों के लिए भी तो रो, बराबर करो, बैलेंस करो। एक समाज के लिए आप रोते हैं बिकॉज यू आर सेकुलर, बट जो एक एथेनिक कम्युनिटी टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन जा रहा है, हमें असम का 30% भूभाग से बाहर निकाला गया है, तो हमारे लिए कोई नहीं रोएगा।
0: असम के चुनाव में हिमंता का बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह कड़ा रुख जनता को पसंद आया और बीजेपी पहली बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या भविष्य में हिंदू असम में आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं?
2: मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है।
0: हिमंता की तरफ से मुस्लिमों की आबादी 40% बताए जाने की वजह साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की प्रजनन दर का ज्यादा होना है, जिसके हिसाब से अनुमान है कि 2037 में होने वाली संभावित जनगणना में मुस्लिम आबादी का अनुपात 44.52% और 2047 की जनगणना में 49.31% हो जाएगा। यानी असम में मुस्लिम जनसंख्या की वर्तमान विकास दर बरकरार रही तो 2047 तक राज्य में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि इसमें घुसपैठ भी एक बहुत बड़ी वजह होगी, जिसके आधार पर हिमंता लगातार ये कहते सुने जाते रहे कि अगले 20 सालों में डेमोग्राफी में बदलाव ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
1: We do not fight with the Indian and Assamese Muslim. हमारा जो लड़ाई है ये बांग्लादेशी मुसलमान से है। अगर कोई बाकी CM होते थे बोलता है रिक्शा वाला को धक्का मार के बांग्लादेश भेजो, लेकिन मैं इतना मेरा बड़ा डील है, मैं बोला यार 5 रुपया का जगह में 7 रुपया दे दो।
0: अमित शाह डेमोग्राफी में बदलाव के लिए सबसे बड़ी वजह में से एक को घुसपैठ मानते हैं। पिछले साल अक्टूबर में अमित शाह ने सोशल मीडिया पर आबादी को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए, इसमें 1951 से 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े बताए गए, जिसमें कहा गया कि 1951 में 84.1% हिंदू थे, जो 2011 में घटकर 79% हो गए। वहीं इस दौरान 9.8% मुस्लिम आबादी 2011 तक बढ़कर 14.2% हो गई। शाह ने दावा किया कि 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% थी और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। अमित शाह ने कहा कि 1951 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है उसका कारण घुसपैठ है।
3: ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है

0: घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे।
1: बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर झारखंड का भी हवाला दिया जाता है, जहां 1951 से 2011 के बीच आदिवासी 36% से घटकर 26%, हिंदू 87.9% से घटकर 81.7% हो गए, जबकि मुस्लिमों की आबादी 8.9% से बढ़कर 14.5% हो गई।
2: सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है।
1: झारखंड की तरह ही बिहार के सीमांचल का भी हवाला दिया जाता है, जहां साल 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 30% के करीब बढ़ी है, जिसे बीजेपी डेमोग्राफी में बदलाव से जोड़कर देखती है। इसीलिए सरकार की तरफ से एक तरफ घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से कोशिश की जा रही है, तो वहीं डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव के कारण खोजने के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई, जो हिंदुओं की तेजी से घटती आबादी और मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के दावों को हकीकत की रोशनी में पढ़ने में मदद कर सकती है।
3: पश्चिम बंगाल चुनाव से भी पहले याद करिए, गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था। 2025 में सभी राज्यों को हर जिले में होल्डिंग सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए गए थे, यानी कि तैयारियां पहले से की गई, जिसे बंगाल जीतने के बाद अब तेज किया जा रहा है। घुसपैठ का इलाज बॉर्डर से लेकर घर के भीतर तक होना चाहिए। शुरुआत पश्चिम बंगाल से बड़े स्तर पर हो चुकी है, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा लोग सीमा से सटे हुए इलाकों में होल्डिंग सेंटर में पहले से रखे जाते हैं और इसके बाद ये बांग्लादेश भेज दिए जाते हैं। तो क्या बंगाल मॉडल ही घुसपैठियों के खिलाफ काम करेगा?
2: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
4: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते छिजे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के एक कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
5: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे, भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
6: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है?
7: इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं।
6: झमेला चल रहा है मतलब क्या?
7: सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं।
6: आप रहने वाले कहाँ के हो?
7: हम लोग बंगाल का है।
6: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
7: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
6: कब आए थे?
7: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
6: कैसे आए थे?
7: वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
6: ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
7: यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम धाम करेगा।
6: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
7: नहीं,
6: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
7: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
6: जी। क्या काम करते थे?
7: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिये बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
6: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
1: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
5: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पौथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है, और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
8: यहाँ पर ऑन सिक्स और एक दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ऑन 63 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतर साथी है, वहाँ पर 53 शिविर है, वहाँ पर 52।
1: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
9: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले, और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है। प्रशासन, बीडीओ, लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है, और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
10: फिलहाल इसको जहाँ पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा इलाका आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
1: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
3: 1991 में पश्चिम बंगाल की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गए। जबकि दावा किया जाता है कि इसी दौरान बंगाल में हिंदू आबादी 8% तक घटी है। जबकि 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का हिस्सा 2% घटकर 71% हो गया है और मुस्लिमों का हिस्सा 2% बढ़ गया है, 27% हो गया है। तो क्या इसकी वजह बांग्लादेश से सटी रही पश्चिम बंगाल की वो खुली सीमा रही, जिसे अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से लेफ्ट, कांग्रेस और फिर टीएमसी ने कभी बंद करने की चिंता ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश से घुसपैठ जारी रही, आबादी का संतुलन बंगाल में बिगड़ता रहा।
11: क्या प्रॉब्लम थी?
12: प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है ना, वो जो हमारी ही राशि है ना, हमारी जो काज है वो उसको छीन कर ले जाते हैं। डेमोग्राफी का भी बहुत चेंज हो रहा है, इसलिए इस बीच मुझे तो निकल के बाहर कर देना चाहिए। तो इस घुसपैठिया को निकल देने से देश का ही अच्छा होगा। अभी से इस घुसपैठिया को नहीं निकालना चाहता तो इंडिया का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। जो काम हो रहा है बॉर्डर में फेंसिंग दे रहा है तो अच्छे अच्छे के लिए हो रहा है।
1: आखिर ये घुसपैठिए कैसे इतनी आसानी से आते रहे? क्यों बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद घुसपैठ पर बड़ा प्रहार होना शुरू हो पाया? इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज आप देख सकें, समझ सकें। इसीलिए कूच बिहार और मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से सटी उस सीमा तक हम पहुंचते हैं जहां से अब तक घुसपैठ का रास्ता खुला रहता था। क्या इस बॉर्डर के पास रहने वाले भारतीय मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो घुसपैठ पर होती सख्ती से खुश हैं? क्या वो मानते हैं कि घुसपैठिए सबसे बड़ा खतरा आम नागरिकों के लिए ही बन रहे थे? इसीलिए सबसे पहले कूच बिहार आपको लेकर चलते हैं। ये बांग्लादेश से सटा वो इलाका है जहां सिंगवारी नदी के किनारे से इंसानों की घुसपैठ होती थी और गायों की तस्करी, क्योंकि यहां कोई बाढ़ ही नहीं लगी थी।
13: ये जो सिंगवारी रिवर है, इसी सिंगवारी रिवर अभी यहां से जाते वक्त बांग्लादेश की मुगल हाट होके लालमनी हाट जाएगा। बांग्लादेश में घुसने से पहले जो मुगल हाट होके जाएगा ये रिवर का उसी तरफ इंडिया का दो गांव है, दोरीबर्स और जारीदल्ला। वो जो दो दोरीबर्स जारीदल्ला दो गांव है, उसी गांव का आगे कोई फेंसिंग नहीं है। इसी रिवर के आसपास बीएसएफ ने ड्यूटी करते हैं और इसलिए 10-20 मीटर का दूरी में रिवर की जो दोनों साइड है, दोनों साइड में बीएसएफ की पोस्ट बना हो चुका है। रात को इसी जगह में, दिन भर रात भर इसी जगह में बीएसएफ ड्यूटी करते हैं। यही है इंडिया का बंगाल का आखिरी डोमिनेशन लाइन जहाँ पे बीएसएफ डोमिनेट करते हैं। पहले कैसे था?
14: पहले तो खूब खतरनाक में था सर।
13: कैसे कैसे खतरनाक था?
14: जो टीएमसी का अंबल था सर, जो मेंबर वगैरह सर सारे लूट करके सर खाते हैं।
13: तो टीएमसी के जमाने में कैसे कैसे होता था, कैसे काउ तस्करी होता था, कैसे
14: कैसे? तो सारे चूरी वगैरह करके सर आता था सर। टीएमसी में मेंबर था, उन लोगों का अंबल था, उन लोग सारे किया था सर, जो है वही करते था।
13: कैसे कैसे करता था बताइए।
14: सोलर था हमारा गांव में, हाँ, जो सरकार ने दिया था, हाँ, वो सारे चूरी करके बिक के खा लिया सर।
13: कहाँ का? बांग्लादेश में बेच दिया
14: सारे? बांग्लादेश
13: में बेच दिया
14: बांग्लादेश।
1: जहाँ टीएमसी राज में पहले घुसपैठ की अंधेर गर्दी चलती रही, वहाँ इस जगह से बांग्लादेश का लाल मोनिरहाट हवाई अड्डा केवल 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ दावा है कि घुसपैठ से ही आबादी का संतुलन बिगाड़ा गया, क्योंकि घुसपैठियों ने यहाँ महंगी जमीन खरीदी और फर्जी दस्तावेज बनाकर स्थानीय लोगों का हक छीनना शुरू कर दिया।
15: जरूर फायदा होगा।
13: कैसे कैसे फायदा होगा?
15: जैसे इधर का जो बांग्लादेशी पहले आया था, वो जमीन इधर ले लिया था और जमीन का दम थोड़ा ज्यादा रेट के ले लिया था। अभी चला जाएगा दूसरा, वो जमीन का रेट कम होगा। दो नंबर इधर का जो किसी जमीन है ना, वो भी थोड़ा वृद्धि होगा।
16: हमारा जमीन उमीन कब्जा करके खरीद करके लेता है और खरीद करके उसका जमीन का रेट भाव बढ़ा देता है और रेशन भी ले लेता है। हमारा जो इंडिया का नागरिक है उसको रेशन नहीं मिलता है, जो घुसपैठी आ गया उसको रेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, घर मिलता है। अब दो दो नाकि जो घर आता है ना, वो सब कुछ उनको मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है।
17: एक भी बटार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है, सारे घुसपैठिया अंदर चला गया।
13: मतलब आप बोल रहे हैं दिल्ली बेंगलुरु में काम करने
17: चला उधर चला जाता है, यहीं पे नहीं रुकता है, कोई भी इधर नहीं रुकता है। क्यों? वो जानता है जब बटार में कोई भी हमला हो जाता है उसको भगा देगा, इसलिए बटार में नहीं है, जो है सब बाहर गया। अब उसको बाहर से आप चिन्हित करके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है गाँव वालों को।
1: इसी तरह मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर आज तक संवाददाता पहुंचकर अब आपको घुसपैठ के खिलाफ देश में छेड़े गए अभियान की जरूरत बताने जा रहे हैं। पद्मा नदी के किनारे का ये वो इलाका है जहां ममता राज में फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी गई थी, लेकिन अब यहां काम शुरू हो चुका है।
9: इधर ही पूरा इलाका ओपन है यही पद्मा रिवर से, और उधर चौर, ये चौर दियर पार करके ही बांग्लादेश। इधर के कोई भी फेंसिंग नहीं है, कांटा तार भी नहीं है। वोट चुनाव के बाद ही इधर फेंसिंग का थोड़ा टेम्पररी काम हुआ है, ये भी पहले नहीं था। इधर पूरा ओपन था, ओपन ही कैटल जैसे स्मगलिंग होता था, इधर से लेकर मुर्शिदाबाद के हर एक बॉर्डर से ही कैटल स्मगलिंग होता था, और घुसपैठियों भी इधर से ही आ जा सकता था।
18: ओपन बॉर्डर है ना, जो BSF वाले नहीं रहे थे, उसके बाद बड़े बड़े लाठी है हिसार लेके जाते थे, लेकिन अब BSF कुछ नहीं कर पाते। वर्षा काल में ज्यादा होता था, हमने तो बहुत बार देखा है ना, बांग्ला के आदमी इधर आया था,
9: इधर आता
18: है, इधर आते थे,
9: कोई दिक्कत नहीं है,
18: कोई दिक्कत नहीं। वो थाना वाले कुछ नहीं बोलते, सबकी वो जो TMC का लीडर उसकी हेड है ना, इसलिए जो गाय तस्करी होता था वो बहुत ही ज्यादा होता था। और इधर से जितना भी बड़ा बड़ा हम लोग देखा पिछले 2-4 साल में, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी आके इधर से गाय तस्करी करता था, इतना हालत भी गई, पूरा हम लोग का मिठपुर का इलाका की हालत भी बहुत खराब कर दिया था गाय तस्करी कर करके। जैसे मान लीजिए मेरा घर के बगल से जमीन से रात में इतना गाय लेके जाता था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रशासन उसके हाथ में था। हम लोग का चीफ मिनिस्टर भी जमीन जो है वो फेंसिंग के लिए पूरा दे दिया है सरकार, BSF वालों का हाथ में दे दिया है, कुछ दिन में पूरा फेंसिंग हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। पिछले दिन में हम लोग अच्छे में रह पाएंगे, कोई गाय तस्कर भी नहीं होगा।
1: सरकार जब घुसपैठ के खिलाफ ईमानदार और आक्रामक कोशिश करती है तो जनता भी उसका साथ देती है। कुछ बिहार जिले के माथा भंगा ब्लॉक के पास सतग्राम मानबाड़ी इलाके के 3 लोगों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ के निर्माण को सुगम बनाने के लिए अपनी मर्जी से 33 डेसिमल जमीन दान की है।
19: बहुत प्रॉब्लम होता था बिकॉज उधर से लोग आते थे और जो वो लोग का चोरी का कारोबारी है वो बहुत ज्यादा से बहुत मात्रा से होता था। अगर ये फेंसिंग हो जाए तो इंडिया का जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, और इधर का जो फार्मर है और बॉर्डर के बगल में जो लोग रहते हैं उनका भी अच्छा सिक्योरिटी है। और यहाँ का ये सिर्फ यहाँ का सिक्योरिटी का बात नहीं है, ये पूरा हमारा इंडिया का सिक्योरिटी का बात है, तो फेंसिंग होना चाहिए। अगर फेंसिंग हो जाए तो उधर से जो घुसपैठिया आते थे इधर वो लोग नहीं आ पाएगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगा यहाँ का।
20: हम लोग इसीलिए जमीन दिया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अपना देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए मान लो ये अच्छा होना चाहिए। फेंसिंग नहीं रहने का मतलब ये है, जो पहले बांग्लादेशी आदमी आता था इधर रात को आके गोरू अपना सामान ले जाता था, ऐसे ही घुसपैठ भी आता था।
1: यानी जनता खुद चाहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भागे और भगाए जाएं। इसीलिए अब की बार सरकार जब सख्ती कर रही है तो बॉर्डर भागम भाग मची नजर आ रही है।
3: भारत के संसाधनों पर भारतीयों का हक है, वोट की राजनीति में घुसपैठ और घुसपैठियों को सहारा नहीं दिया जा सकता, यही राष्ट्रहित में जरूरी है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
23: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
0: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.

0: राजस्थान रॉयल्स भले आईपीएल 2026 में ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोला। 15 साल के युवा बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया है और ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए। 732 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे स्थान पर रहे। साई सुदर्शन ने इस सीजन में 722 रन बनाए। इतना ही नहीं, वैभव ने इस सीजन में कई कीर्तिमान कायम किए हैं। वो इस सीजन के सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी हैं। वैभव ने पूरे सीजन में कुल 72 सिक्सर जड़े, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला है। वैभव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। इस खिताब की दौड़ में वो खिलाड़ी शामिल थे जिनका जन्म 1 अप्रैल 2000 के बाद हुआ। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी वैभव के नाम रहा, जिसके लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप अपने नाम की, तो वहीं रबाडा ने भी खिताबी मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। गुजरात टाइटंस आईपीएल सीरीज गंवा बैठी, लेकिन टीम के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पर्पल कैप अपने नाम कर लिया। लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहने वाले भुवनेश्वर कुमार इतिहास रचने से चूक गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
3: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

सूर्या हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेताया, दोस्ती की ओट में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं, नालायक औलादों को समझाना जरूरी। यूपी बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी, संगठन में फेरबदल के लिए दिल्ली बुलाए गए बड़े नेता, समय से पहले चुनाव की सुगबुगाहट। ममता बैनर्जी का बड़ा एक्शन, दो बागी विधायक ऋतव्रता और संदीपन निष्कासित, दोनों ने टीएमसी अध्यक्ष के फैसले पर उठाए थे सवाल। सीबीएसई 12वीं नतीजे के रिवैल्यूएशन पोर्टल खुलते ही हुआ ठप, छात्रों में बढ़ी बेचैनी, बोर्ड ने कहा जल्द होगा एक्टिव। त्रिशा की मौत का सीन रिक्रिएट कर 3 घंटे बाद घर से निकली सीबीआई, डमी पुतले की गिरिबाला ने खोली फंदे की गांठ, समर्थ ने नीचे उतारी डमी लाश।

0: चुनावी कैलेंडर के चक्रव्यूह में फंसा मिडिल ईस्ट का बारूद, ट्रंप नेतन्याहू का चुनावी दांव, पश्चिम एशिया में महातनाव, सीज फायर के बीच सुलगती रही अमेरिका ईरान की जंग, बंदर अब्बास से कुवैत तक भड़क रहे शोले, मलबे से फिर जी उठी ईरान की मिसाइल सिटी, अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने तक जंग को तैयार ईरान, गाजा से लेबनन तक नेतन्याहू का खूनी चुनावी खेल, ट्रंप की कूटनीति नवंबर चुनाव तक खींचेगा युद्ध का डर, ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइलें फिर आग उगलने को तैयार, शांति वार्ता का मुखौटा पर्दे के पीछे सीधी बारूदी झड़प,
1: नमस्कार मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। क्या युद्ध के डर का चुनावी कैलेंडर से कोई सीधा संबंध है? आखिर क्यों हर बार डील की बात कहकर डोनाल्ड ट्रंप समझौते के बजाय संग्राम या मिसाइल बरसाते नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों सीजफायर के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में अपनी फौज को अब तक बेरूत की चढ़ाई करने का इशारा दे रहे हैं? हम आपको युद्ध के पीछे छिपे चुनावी कैलेंडर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज पहले चार धमाकेदार तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आज कुवैत पर हुए ईरान के एक मिसाइल हमले की है। यह अमेरिका के वार का पलटवार है। दरअसल अमेरिका की जो सेना है उसने आज यह बताया कि इस वीकेंड तेहरान ने एक अमेरिकी MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने ईरान में ईरान के रेडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर भारी बमबारी की। ईरान ने जवाबी हमला किया और उसकी बात स्वीकार की। कुवैत ने कहा कि उसने अपनी ओर आने वाले ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को बीच में रोक दिया था और उसके एयर डिफेंस ने उसे ध्वस्त कर दिया। अब ईरान ने अमेरिका को यह चेतावनी दी है कि वो मध्य पूर्व छोड़कर अगर नहीं गया तो ईरान की जो मिसाइलें हैं अमेरिका के बचे कुचे जितने भी ठिकाने हैं पूरे मध्य पूर्व में उन्हें तबाह कर देंगे। आज ही कुवैत पर 28 मई को हुए हमले की तस्वीर सामने आई और इसमें अमेरिका के चार सैनिक घायल हो गए थे। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से ईरान हर बार पलटवार कर रहा है। एक बड़ी और बेहद सनसनीखेज खबर इस समय पश्चिम एशिया के जंग के मोर्चे से आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो इस समय चरम पर है। ईरान की जो इस्लामी सेना है IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसने अमेरिका को सीधी और खुली चेतावनी दी है। ईरान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने अमेरिकी सेना की एक कथित घुसपैठ का न केवल करारा जवाब दिया है बल्कि एक मिसाइल दागकर अमेरिका को संदेश दे दिया है जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ईरान की इस मिसाइल पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र को छोड़कर नहीं चला जाता। ईरान की IRGC का दावा यह है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत में सिरिक द्वीप पर एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया था। इसके तुरंत बाद ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी एयरबेस को पलटवार कर निशाना बनाया जहां इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईरान का दावा यह है कि जो उसकी मिसाइलें हैं अमेरिकी ठिकानों को उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। साथ ही अब ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर ऐसी कोई भी गुस्ताखी अमेरिका आगे से करेगा, यानी जो पूरे दक्षिणी ईरान का जो क्षेत्र है उसमें कभी बंदर अब्बास तो कभी केशम आइलैंड, अगर उन पर दोबारा हमला हुआ तो इसका अंजाम और भी भयानक ईरान की तरफ से होगा। इस घटना ने खाड़ी देशों को युद्ध की कगार पर एक बार फिर, हालांकि दोनों ही देश दावा कर रहे हैं कि अभी सीज फायर है, लेकिन ये जो चिंगारियां हैं ये कभी भी एक शोले का रूप ले सकती है और आग युद्ध की भड़क सकती है। ईरान ने आज अपने हमले में कुवैत को निशाना बनाया। ईरान ने सवेरा होते ही कुवैत में जो अमेरिका का हवाई अड्डा है, अमेरिकी बेस है, उसे निशाना बनाया और कुवैत ने कहा कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कुवैत की ओर आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर की। ईरान के हमले को कुवैत के मुताबिक पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल को बाकायदा कैमरे में कैद किया गया। नीले आसमान में अगर आप ध्यान से देखिए तो वो सफेद लकीर साफ तौर पर दिख रही है और कुवैत में इसका खौफ था। ये जो आप एयर रेड सायरन सुन रहे हैं, पूरे कुवैत में इस हमले के साथ सायरन बजने लगे। कुवैत ने अपनी जमीन पर ईरान के हमलों की निंदा भी की है। वहां के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के हमले इस पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने के जो प्रयास है उन्हें समय कमजोर कर रहे हैं। साथ ही कुवैत ने यह भी कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम जरूरी होगा उसे उठाने का उसको पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ आईआरजीसी ने भी यानी ईरान की सेना ने भी दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिका के उस सैन्य अड्डे को निशाना बनाया जहां से ईरान के केशम द्वीप और गोरुख पर अमेरिका ने हमले किए थे। यानी ईरान ने देखा कि हमला कहां से हुआ, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस से हमला हुआ तो उन्होंने पलटवार कुवैत पर किया और वहां पर भी केवल अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। आईआरजीसी का दावा यह है कि उसका हमला पहले से तय था। अगर अमेरिका फिर से ऐसी हिमाकत करता है तो पूरे मध्य पूर्व में जिस अमेरिकी एयरबेस से या अमेरिकी बेस से हमला हुआ तो जवाब अलग होगा और जबरदस्त होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर ही होगी। कुवैत पर ईरान का हमला होते ही अमेरिका ने भी एक बड़ा दावा किया। ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाले अमेरिका का जो सेंटकॉम है यानी सेंट्रल कमांड, अमेरिका के सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पे कहा कि उसने शनिवार और रविवार दो दिन ईरान के दो ठिकानों पर हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि इस वीकेंड उसने इराक के गोरुख और केशम द्वीप में ईरान के रेडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर हमला किया। अमेरिका ने इसे डिफेंसिव ऑपरेशन करार दिया यानी अपनी आत्मरक्षा में किया गया हमला करार दिया। उसने दावा किया कि ये नपे तुले और सोचे समझे हमले ईरान की जो आक्रामक कार्रवाई है उसके जवाब में दिए गए। ये कार्रवाई उस हमले का जवाब थी जिसमें ईरान ने एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था। अमेरिका ने दावा किया कि ड्रोन पर हमला तब हुआ जब वो ड्रोन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था, वो ईरान के ऊपर नहीं था। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है उसको ध्वस्त किया और ईरान का जो ग्राउंड कंट्रोल सेंटर है जहां से वो अटैक का आदेश हुआ था दोनों पर वन वे हमलावर ड्रोन वहां भेजे और एक मिसाइल बेस को और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दिया। ये ड्रोन क्षेत्रीय जल क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा बने हुए थे, ऐसा अमेरिका ने दावा किया। इस कार्रवाई में भी किसी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसा सेंटकॉम ने कहा। वैसे ईरान का दावा यह है कि उसके गोरुख और केशम द्वीप पर जो हमला था वो कुवैत में जो अमेरिकी एयरबेस है वहां से हुआ था। इसीलिए पहले 28 मई को जब ईरान की बोट समुद्र में माइंस बिछा रही थी तब भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। ईरान उस हमले के बाद भी कुवैत में अमेरिका का जो अली अल सलेम एयरबेस है उस पर उसने हमला किया था। यह हमला फतेह मिसाइल से किया गया। उस हमले का बकायदा एक वीडियो जारी किया गया। यह कहा जा रहा है कि उस हमले में 4 अमेरिकी सैनिक और 3 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यानी 3 ठेकेदार जो वहां पर काम कर रहे थे उन्हें चोट पहुंची है लेकिन कोई भी गंभीर रूप से जख्मी नहीं है। एयर रेड सायरन सुनते ही सभी शेल्टर में भागने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हमले के दौरान सैनिकों में दहशत थी। यह ईरान का बड़ा दावा है। ईरान ने कहा कि उसकी तरफ से एक बहुत सधा हुआ हमला हुआ और उसके भीतर जब भी अमेरिका का हमला होगा तो वो पलटवार करेगा, एस्केलेट नहीं करेगा यानी युद्ध का स्तर बढ़ाएगा नहीं लेकिन वार का पलटवार जरूर होगा। जहां से वार होगा उसी जगह पलटवार होगा ताकि अमेरिका को पता चल सके कि ईरान कमजोर देश नहीं है, ईरान की शक्ति भी उतनी ही है या ईरान के मुताबिक उससे ज्यादा है। और अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के किन किन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और कब कब। कुल मिलाकर चार ठिकाने बेहद महत्वपूर्ण है जिसे हम एक बड़े स्क्रीन पर आपको दिखाने का अब प्रयास कर रहे हैं। जो पहला ठिकाना है वो कुवैत का बहुत ही संवेदनशील एक एयरबेस है। कुवैत में अमेरिका का एयरबेस है, इसे अल सलेम एयरबेस कहा जाता है। यहां पर अमेरिका, अब हम आपको अलग अलग जगह पर दिखा रहे हैं किसने कहां हमला किया और क्या दावे किए गए हैं दोनों ही तरफ से। सबसे पहले ये छोटा सा कुवैत, ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य को आप समझ ही गए हैं, ये पर्शियन गल्फ है, ये वो छोटा सा इलाका हॉर्मुज का, और उसके बाद यहां अरब सागर का वो बड़ा इलाका, एक तरफ ईरान है दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ के, ये छोटा सा कुवैत है, फिर यहां पर इराक आ जाता है और यहां नीचे सऊदी अरेबिया और उस तरफ ओमान आ जाता है। मानचित्र पर आप यह पूरा अब इतने महीनों में भली भांति समझ गए। छोटा सा कुवैत, दावा क्या है? ईरान का दावा है कि कुवैत से यहां पर दो बहुत महत्वपूर्ण ईरान के एयरबेसेस को, ईरान के मिसाइल बेसेस और ड्रोन सेंटर्स को निशाना बनाया गया। अच्छा, इसको अगर आप जरा ध्यान से समझें, बहुत ही सुनियोजित तरीके से अमेरिका टारगेट कर रहा है उन जगहों को जहां से जब अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा हॉर्मुज में घुसने के लिए, तो जहां जहां से ईरान वार कर सकता है उनको धीरे धीरे सीजफायर रहते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। आप इसे डिफेंसिव एक्शन कह सकते हैं, आप इसे सीजफायर कह सकते हैं। लेकिन देखिए, पहले आपको याद है चार दिन पहले जब पहला हमला हुआ था तो वो भी बंदर अब्बास पे हुआ था, बंदर अब्बास इस जगह आता है, तो बंदर अब्बास को ध्वस्त किया गया, गोरुख को ध्वस्त किया गया, केशम द्वीप पर इसको ध्वस्त किया गया, और ईरान ने जब पलटवार किया तो उसने कुवैत को टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें दावा किया कि पर्शियन गल्फ के ऊपर ही यहां पर जो इनकमिंग मिसाइल्स थी उनको ध्वस्त कर दिया गया ईरान की तरफ से। लेकिन बंदर अब्बास को निशाना बनाना, बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण एक बेस है और बंदरगाह है, इसके अलावा दो और ठिकानों केशम द्वीप और गोरुख, इसे निशाना बनाया गया। यानी ये जो बेल्ट है जहां से ईरान वार कर सकता है, अगर कोई जहाज पर्शियन गल्फ में आने का प्रयास करे, फारस की खाड़ी में आने का प्रयास करे अरब सागर से, तो जहां जहां से ईरान वार कर सकता है उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को अमेरिका ध्वस्त कर रहा है, उन ड्रोन सेंटर्स को अमेरिका ध्वस्त कर रहा है। तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस समय सेंटकॉम कार्रवाई कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सीजफायर है, और वैसे सीजफायर है, लेकिन सीजफायर के बावजूद ऑपरेशंस चल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों के तमाम दावे भी हैं। अच्छा, अमेरिका और ईरान के जो दावे हैं वो भीषण बमबारी हो भी रही है, उसको धता बता रहे कि यहां पर सीजफायर चल रहा है, लेकिन ईरान ने युद्ध के मोर्चे पर एक पलटवार कर दिया है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के जो विशेषज्ञ और खुफिया एजेंसी है वो चौंक गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक हालिया जंग में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान के जिन खुफिया अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को मलबे में तब्दील करने का दावा किया था, ईरान ने रिकॉर्ड समय में उनमें से कुछ को फिर से बहाल कर दिया है और वहां से पलटवार करने की स्थिति में है। खुफिया एजेंसियों के तमाम अनुमान के पीछे को पीछे छोड़ते हुए ईरान ने बेहद तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा कर लिया है। जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 18 अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस को और 69 खुफिया रास्तों को और सुरंगों को बमबारी कर मलबे से उनके द्वार को बंद कर दिया था। अब खबर यह आ रही है कि उन 69 में से 50 रास्तों को ईरान ने बुलडोजर और डंप ट्रक की मदद से दोबारा खोलकर दोबारा चालू कर दिया है, वहां पर कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमले सिर्फ ऊपर के सतही बुनियादी ढांचों और सुरंगों के केवल मुहाने तक सीमित रह गए थे, जमीन की गहराई के पीछे ईरान ने लगभग 1000 बैलिस्टिक मिसाइल का एक विशाल जखीरा है, और उस बैलिस्टिक मिसाइल का जो विशाल जखीरा है 1000 मिसाइलों का, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, केवल द्वार बंद हुआ था। अब वो डंपर ट्रक से मलबा हटा हटा के द्वार खोल दिया गया, फिर मजबूत कर दिया गया, और अब मिसाइलें वहां पर सुरक्षित हैं। जानकारों की माने तो भले ही मिसाइल के उत्पादन उसमें एक समस्या है, उत्पादन प्रभावित भी हुआ, लेकिन रास्तों के खुलने के बाद ईरान के पास उसके लॉन्चर भी हैं, क्रू भी हैं और इजराइल या इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर बड़े पैमाने में पलटवार करने में या वार करने में लंबी दूरी की मिसाइल दागने की स्थिति में ईरान इस समय एक बार फिर आ गया है। वैसे इजराइल की मीडिया ने यानी चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ मिसाइल बेसों को बहाल कर लिया है बल्कि उम्मीद से कहीं तेज रफ्तार से बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन भी ईरान ने शुरू कर दिया है। इजरायली रक्षा अधिकारियों का अनुमान यह है कि ईरान अगले कुछ महीनों में अपने ड्रोन नेटवर्क को भी, जो पिछले 40 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद खैर जो शांति का दौर आया, फिर नो वॉर नो पीस का दौर, इसमें ईरान बहुत तेजी से अपने हथियारों को फिर से स्थापित कर रहा है। और यह सनसनीखेज खुलासा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका के साथ सीजफायर को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है अब उसे अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। और इस समय का जो घटनाक्रम है उससे साफ है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की आग ठंडी होने के बजाय पर्दे के पीछे सुलग रही है। एक हवा का झोंका और यह आग फिर से भड़क सकती है। यह पूरे मध्य पूर्व में इस समय सबसे बड़ा तनाव का कारण है। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग में ये दो बड़े किरदार हैं। दोनों ही फिलहाल इस युद्ध को पूरी तरह से बंद करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। दरअसल इसराइल में इसी साल यानी अगले कुछ महीनों में सितंबर अक्टूबर में संसद यानी सेनेट वहां के जो केनेसेट है केनेसेट के चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में नवंबर 2026 में मिड टर्म्स मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी कैलेंडर का मध्य पूर्व में तनाव से आप सोचेंगे क्या संबंध है? अब यह हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि दोनों ही नेता यानी एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में कमजोर दिखते हुए नहीं जाना चाहते और इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले यह आग और भड़क सकती है।

0: ओमान और कतर के रास्ते वाशिंगटन और तेहरान के बीच जंग को पूरी तरह रोकने के लिए समझौता अब तक नहीं हुआ है। अमेरिका का ड्राफ्ट तैयार था, लेकिन ट्रंप ने आखिरी समय में उसमें कुछ बड़े बदलाव कर दिए। पहला बदलाव ये था कि किसी भी डील में ईरान को ये मानना पड़ेगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। उसे अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। दूसरा, हुर्मुज से जहाजों की मुक्त और मुफ्त आवाजाही हो सकेगी। ट्रंप ने सीएनएन को कोसते हुए लिखा कि वो ये दावा करता है कि ईरान के साथ डील में परमाणु मुद्दे की बात ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि डील पूरी तरह से इसी मुद्दे पर है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया, उसमें लिखा, ईरान सच में एक अच्छी डील चाहता है, जो अमेरिका और जो उसके साथ हैं उनके लिए अच्छी डील होगी। ट्रंप अपने विरोधी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ अपने ही दल के कुछ रिपब्लिकन्स को देश विरोधी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी नकारात्मक बातों से उनके लिए अपना काम और बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें कोई ये ना बताए कि वो जल्दी करें या धीरे चलें या युद्ध करें या नहीं, वो आराम से बैठें, अंत में सब ठीक होगा। ट्रंप के इस पोस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि वो अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले यानी नेतन्याहू की बात करते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों ही नेता अपने अपने देश में चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। इसराइल में इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी की साख बेहद कमजोर हो चुकी है। जोर तोड़कर चल रही उनकी सरकार चुनाव में उतरी तो शायद वापसी ना हो, क्योंकि विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले में केस भी चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की बात करें तो उनकी पार्टी को इसी साल नवंबर में बेहद अहम मध्यावधि चुनाव का सामना करना है। अमेरिका में ईरान युद्ध का विरोध हो रहा है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरा ट्रंप ने अब तक इस युद्ध में सिर्फ गंवाया है, हासिल कुछ नहीं किया। सबसे ताज़ा तस्वीर ईरान की चेतावनी की और कुवैत पर हुए हमले की है। अमेरिका को ईरान से जंग के मोर्चे पर दो टूक जवाब मिल रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ईरान के साथ डील में अपनी शर्तों को सख्त करते जा रहे हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्होंने ऐसी डील की है जो ओबामा के साथ हुई डील से ज्यादा अच्छी है। लेकिन ईरान उनकी शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं। 39 दिन की जंग में इसराइल अमेरिका के साझा हमलों के बावजूद वो अब भी अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। हुर्मुज को अब भी बंद कर रखा है, लिहाजा ट्रंप युद्ध से समझौता कर निकलने के बजाय उसे खींचते जा रहे हैं। दूसरी तरफ है नेतन्याहू, जिन्हें वाशिंगटन में ट्रंप की सोची समझी रणनीति और देरी का सीधा फायदा मिल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले के बाद से ही नेतन्याहू लोकप्रियता के संकट से जूझ रहे हैं। इसराइल का आगामी चुनाव उनके राजनीतिक जीवन और मरण का सवाल बन चुका है। यही वजह है कि वाशिंगटन की कूटनीतिक अनिश्चितता के बीच नेतन्याहू ने लेबनन में हिजबुल्ला के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और गहरा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। 900 साल पुराने रणनीतिक ब्यूफोर्ट कासल पर कब्जा करके नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो लेबनन के मोर्चे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, इसराइल गाजा पट्टी के लगभग 70% से ज्यादा हिस्से पर स्थायी या दीर्घकालिक सैन्य नियंत्रण की तैयारी कर चुका है। उधर तेहरान भी अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक इस बातचीत को लंबा खींचने की डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी बयान दाग दिया है कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते और बिना अपने अधिकार सुरक्षित किए कोई फाइनल साइन नहीं करेंगे। यानी दोनों तरफ से शह और मात का खेल जारी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ये जंग सिर्फ मोर्चे पर हथियारों से नहीं बल्कि चुनावी कैलेंडरों को देखकर लड़ी जा रही है। ट्रंप के पास आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य दबाव का फायदा है, तो नेतन्याहू के पास लेबनन और गाजा में जमीन पर कब्जा बढ़ाने का मौका। इस बीच ऊर्जा का संकट भयावह होता जा रहा है, जबकि ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान तनाव को खींचते चले जा रहे हैं। इन तीनों के चक्रव्यूह में दुनिया बुरी तरह फंस गई है। आज तक ब्यूरो।
1: मध्य पूर्व के इस चक्रव्यूह में दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय फंसी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहाँ ब्रेक के बाद लेबनान के मोर्चे पर तो युद्ध और ज्यादा भड़कता जा रहा है, क्या कर रही है इजराइल की सेना ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल,
3: We wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
12: Pure Ayurvedic Beauty.
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्विशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
4: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट।
2: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
5: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

सीएम योगी ने चेताया, दोस्ती की ओट में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं, नालायक औलादों को समझाना जरूरी। उत्तर प्रदेश बीजेपी

ट्विशा की मौत का सीन रिक्रिएट कर 3 घंटे बाद घर से निकली सीबीआई, डमी पुतले की गिरिबाला ने खोली फंदे की गांठ, समर्थ ने नीचे उतारी लाश।

बढ़ गया घमासान, टहल रहा है लेबनन। ईरान की दोस्ती का खामियाजा भुगतेगा लेबनन। हिजबुल्ला के हर एक ठिकाने पर मचा कोहराम। बरस रहे बम, एयर स्ट्राइक ने ली कई जान। सदियों पुराने किले पर कब्जा क्यों चाहता है इजराइल? क्या लेबनन पर संपूर्ण नियंत्रण चाहता है इजराइल? शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब लेबनन में बमों के धमाके ना सुनाई दे रहे हों। इजराइल लेबनन में निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। उसके निशाने पर हिजबुल्ला के ठिकाने हैं, जिनकी तबाही की उसने कसम खा रखी है। बर्बादी के मंजर के बीच क्या है मौजूदा हालात, देखिए हमारी इस खास पेशकश में।

आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। और जबरदस्त घमासान इस समय लेबनान में है, युद्ध अपने चरम पर है, शहर शहर लेबनान में कोहराम बढ़ता जा रहा है। इसराइल की जो सेना है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हिजबुल्ला अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। 2 मार्च को हिजबुल्ला ने इसराइल पर मिसाइल से, रॉकेट से अटैक किया था। उसके बाद से इसराइल जो ठोक रहा है हिजबुल्ला के अलग अलग ठिकानों को, बीच बीच में इसराइल की मुश्किलें जरूर हिजबुल्ला बढ़ाता है, लेकिन फिलहाल इसराइल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के लिए कमर कस भी ली है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जॉइंट अटैक्स किए हैं, एयर एंड लैंड अटैक्स यानी हवा से बमबारी, और जमीनी सेना और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 900 साल पुराना एक किला है, कहा यह जाता है कि क्रूसेड्स के समय जब धर्म युद्ध होते थे उस समय यह किला बनाया गया था, और नबातीय के क्षेत्र में बोफोर्ट का यह किला, उस पर अब जाकर यानी 26 साल बाद इसराइल ने एक बार फिर बोफोर्ट के किले पर अपनी पताका लहरा दी है। इस किले की जो रणनीतिक अहमियत है, सैन्य अहमियत है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसकी एक ऐतिहासिक अहमियत भी है। और पूरे लेबनान में समय हड़कंप मचा हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश की सेनाओं को जमीनी आक्रमण और तेज करने के आदेश दे दिए हैं। इसराइल की जो फौज है वो लगातार शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे अटैक करते हुए आगे बढ़ रही है। टायर शहर से लेकर कई इलाकों में एयर स्ट्राइक से हिजबुल्ला को भारी नुकसान पहुंचा है, उसके बड़े बड़े किले या गढ़ ध्वस्त हो रहे हैं। हालात इतने हाहाकारी हैं इस समय कि अमेरिका और ब्रिटेन तेजी से अपनी प्रतिक्रिया यहां तक कि अलग अलग मंच पर व्यक्त कर रहे हैं। फ्रांस ने तो यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में अब आपात बैठक बुलाने की मांग कर डाली है कि इसराइल को रोकने की आवश्यकता है, ऐसा फ्रांस का कहना है। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के जो रक्षा मंत्री है इसराइल कार्ट्स, उन्होंने अपनी सेना को हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में अपने जमीनी सैन्य अभियान को और तेज करने के आदेश दे दिए हैं। इजरायली सेना पहले से ही लेबनान में जो लिटानी नदी है उस तक उसने सारे इलाकों को खाली करने का आदेश दे दिया था। फिर बख्तरबंद गाड़ियां, बुलडोजर, टैंक, इन सब के जरिए उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब इसराइल की जो सेना है वो लिटानी नदी के उत्तर में बढ़ गई है और लगभग 10 किलोमीटर

और उत्तर में जो लेबनान की दूसरी बड़ी नदी है ज़हरानी नदी, उसकी तरफ अब वो आगे तेज बढ़ रहे हैं। इसराइल की सेना के मुताबिक अप्रैल में युद्ध विराम तो हो गया था, शनिवार को जो हमला हुआ वो इसराइल की तरफ से वो सबसे बड़ा था। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में गोलीबारी की, गोलाबारी भी की, रॉकेट भी दागे। इस हमले के बाद इसराइल को अपने स्कूल बंद करने पड़े थे, कई तरह की पाबंदियां उत्तर इसराइल में अपने लोगों पर लगानी पड़ी थी। अब इसराइल ने बोफोर्ट पर, बोफोर्ट एक ऐतिहासिक किला है और उस पर अब इसराइल ने अपना झंडा लगा दिया है। इसराइल ने सैन्य अभियान तेज कर दिया है और तेज करने की आदेश उन्हें मिल चुके हैं। खासतौर पर यह आदेश बेरूत के दाहिया इलाके के लिए आईडीएफ को दिए गए हैं कि बेरूत का जो दक्षिण का इलाका है, दाहिया का जो बिल्कुल गढ़ है हिजबुल्ला को, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, यानी हिजबुल्ला के गढ़ को ध्वस्त कर दिया जाए। इस बीच लेबनान में इसराइल के रणनीतिक मोर्चे पर उसने एक बड़ी सफलता भी हासिल कर दी है। उसने 900 वर्ष पुराने एक महत्वपूर्ण किले पर अपना ध्वज, अपना झंडा लहरा दिया है। आसपास के इलाकों से देखिए, एक बहुत ऊंचाई पर, एक पहाड़ी के ऊपर ये किला है, ऐतिहासिक किला है। क्रूसेड्स के समय, यानी जब धर्मयुद्ध चल रहे थे, उस समय किला बनाया गया था। तो इसका एक सांकेतिक महत्व भी है और इसका एक सामरिक महत्व भी है। एक पहाड़ी के ऊपर है तो आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है, और वहां पर जब इसराइल का ध्वज, स्टार ऑफ डेविड हर तरफ नजर आएगा, तो यह हिजबुल्ला को एक संकेत भी है। किसी जमाने में यह किला इसराइल के कब्जे में था, 26 साल पहले जब इसराइल ने दक्षिणी लेबनान छोड़ा तो इस किले पर अपना कब्जा भी छोड़ दिया था, लेकिन 26 साल बाद एक बार फिर अपना झंडा इसराइल ने बोफोर्ट पर लगा दिया है।

0: जन्नत सा खूबसूरत नजारा, चारों तरफ हरियाली, आपकी आंखों के सामने से गुजरते बादल और आसमान को छूते पहाड़ों पर बसा यह किला जो करीब 900 साल के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। ये लबनन की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, लेकिन अब इस पर इजराइल का कब्जा है। इन वायरल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक एक करके इजराइल की सेना किले के अंदर घुस रही है और उसके हर एक हिस्से पर कब्जा कर लेती है। इजराइल की फौज लगातार दक्षिणी लेबनन में आगे बढ़ रही है। पिछले काफी दिनों से इस किले पर कब्जा करने के अभियान में लगी थी और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गई। IDF ने 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से रविवार को तस्वीरें जारी की गईं और इन तस्वीरों में किले पर इजरायली झंडा लहराता दिखाई दिया। जिस किले पर इजरायल ने कब्जा जमाया है वो रणनीतिक रूप से खासी अहमियत रखता है। ब्यूफोर्ट किला 1982 से 2000 तक इजरायली सेना का प्रमुख अड्डा था। उस वक्त इजरायल ने दक्षिणी लेबनन पर कब्जा किया हुआ था। यह किला 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है, लिहाजा इससे दक्षिणी लेबनन के अलावा इजरायल के बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए इसका सैन्य महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। 26 साल बाद ये पहला मौका है जब इजरायल ने इस किले पर कब्जा किया है। पिछले 26 साल में इजराइल ने कई बार कोशिश की लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। वजह थी हिजबुल्ला का लगातार मजबूत होते चले जाना। धीरे धीरे इजराइल ने हिजबुल्ला को कमजोर किया, उसके ठिकानों को एक के बाद एक बर्बाद किया, आसपास के गांवों को खाली कराया और आखिरकार एक ऑपरेशन चलाकर इस किले को कब्जा लिया। वैसे कहने को 17 अप्रैल को इजराइल और लेबनन के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, लेकिन शायद ही कोई दिन गुजरा हो जब इजराइल के हमले यहां ना हुए हों। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्ला के उकसाने के बाद हमले करना उसकी मजबूरी है और वो किसी भी कीमत पर हिजबुल्ला को हावी होने का कोई मौका नहीं दे सकता। उसकी रणनीति ये भी है कि इससे पहले कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई फाइनल डील सील हो, हिजबुल्ला को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर उसकी कमर ही तोड़ दी जाए। किले पर कब्जे के फौरन बाद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया। आसमान में इंटरसेप्टर साफ दिखाई दे रहे थे और सायरन की आवाज काफी दूर से सुनी जा सकती थी। किले पर कब्जे ने नेतन्याहू की भी एक बड़ी मुराद पूरी कर दी है और उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है।
1: अलैला लोखमीम गिबोरीम शलानु कब्शो एत मुत्सव बुफोर हम हनीफू शम बगावा את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים, המקום הזה היה סמל לקרב גבורה, הירואי של לוחמנו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, אמרו לי, ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ובכן, מתחילת מלחמת התקומה, אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה. אני איתכם, עם ישראל כולו איתכם, זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה.
0: इजरायली सेना इस अभियान को अब और तेजी से आगे बढ़ाने में जुट गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा है कि सेना दक्षिणी लेबनन में इजराइल के सुरक्षा क्षेत्र के हिस्से के रूप में ब्यूफोर्ट को अपने कब्जे में रखेगी। ब्यूफोर्ट की वीरतापूर्ण लड़ाई के 44 वर्ष बाद और शहीद हुए सैनिकों के स्मृति दिवस पर, जिनमें ब्यूफोर्ट की लड़ाई में शहीद हुए गोलानी ब्रिगेड के सैनिक भी शामिल हैं। गोलानी ब्रिगेड के नेतृत्व में IDF के योद्धा ब्यूफोर्ट की चोटी पर लौट आए और एक बार फिर इजराइल और गोलानी का झंडा फहराया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मेरे निर्देश पर IDF ने लेबनन में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया, लिटानी नदी को पार किया और ब्यूफोर्ट ब्रिज पर कब्जा कर लिया। ये हमारे दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जो भी इजरायली नागरिकों को धमकी देगा वो एक एक करके अपनी रणनीतिक संपत्तियां खो देगा। ये अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सभी हिजबुल्ला की ताकत को कुचलने का अपना मिशन पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इजराइल के लिए लेबनन के बाकी इलाकों में सैन्य ऑपरेशन चलाना अब और आसान हो जाएगा। धीरे धीरे हिजबुल्ला के ठिकानों को ध्वस्त करके आगे बढ़ी इजरायली फौज के लिए ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा रणनीतिक और सैन्य तौर पर बड़ी कामयाबी है। जो उसके मंसूबों को लिटानी नदी से आगे तक ले जाने का काम बेहद आसानी से कर सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: इजराइल की तरफ से संदेश बहुत साफ दिया जा रहा है कि इस बार वो हिजबुल्ला को केवल कमजोर नहीं बल्कि सिरे से कमर उनकी तोड़ देना चाहती है, उनको उखाड़ फेंकना चाहती है। लेकिन ये जो बोफोर्ट का किला है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? केवल सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, या फिर इसका एक सांकेतिक असर भी पूरे क्षेत्र को दिया जा रहा है? बोफोर्ट का जो किला है ये दक्षिण लेबनान में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। एक बात और, आसपास के इलाके पर यानी इजराइल के अंदर भी और लेबनान के अंदर भी देखने में बहुत महत्वपूर्ण यहां से मदद मिलती है। लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर यह किला है। किले का जो ध्वज है यह 900 मीटर पर माना जाता है। तो 700 मीटर की ऊंचाई पर यह किला है, आसपास के पूरे इलाके पे नजर रखने में इससे मदद मिलती है। ऐतिहासिक किला इसलिए भी है, कहा यह जाता है कि जब क्रूसेड्स लड़े जा रहे थे, धर्मयुद्ध लड़ा जा रहा था, तो उस समय यह किला बनाया गया था और यही से आगे के अटैक्स शुरू हुए थे। रणनीतिक महत्व जो इसका है इसको लेकर कई बार इस पर युद्ध हुआ। 80 के दशक में इजराइल की सेना और खासतौर पर उसकी जो गोलानी ब्रिगेड है यानी गोलान हाइट्स पर जिन्होंने बहुत जबरदस्त ऑपरेशन किए थे, तो गोलानी ब्रिगेड यहां पर आई थी। लेकिन इसका जो निर्माण है वो 12वीं सदी में हुआ था। ईसाई धर्म के योद्धाओं ने इसका निर्माण किया था। अब हम बात कर रहे हैं उस समय जब धर्मयुद्ध चल रहे थे, एक तरफ क्रूसेडर्स थे यानी जो जो ईसा मसीह को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे, और दोनों के बीच जेरूसलम को लेकर उसके कब्जे को लेकर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई भी हुई थी। तो पहले इसका नाम बेलफोर्ट था यानी सुंदर किला। बेलफोर्ट इसका पुराना नाम था, फिर बोफोर्ट नाम इसका पड़ा। बनने के कुछ सालों बाद इस पर मुस्लिम शासक सलाउद्दीन अयूबी ने कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से 1982 में लेबनान पर इजराइल के हमले के दौरान यहां पर एक बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इजराइल की सेना ने इस फोर्ट पर अपना कब्जा किया और काफी समय तक रखा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये वो तस्वीर है 1982 के उस ऑपरेशन के बाद उस विजय की, और इसमें काफी इजराइल के सैनिक शहीद भी हुए थे इस ऑपरेशन में। 2000 साल तक ये किला इजराइल के कब्जे में, मतलब यहूदियों के कब्जे में रहा था इजराइल के बनने के पूर्व भी, और एक समय ऐसा आया जब उनको ये छोड़ देना पड़ा था। फिर 1982 का हमने आपको जिक्र भी किया कि जब उन्होंने किला छोड़ा तो एक बार फिर लेबनान की सेना आ गई। यहां से बहुत पैनी निगाह रखी जा सकती है उत्तरी इजराइल के इलाकों में, और इसीलिए इजराइल चाहता है इस पर उसका कब्जा बना रहे। लेबनान में बढ़ते घमासान को लेकर बवाल बढ़ रहा है। फ्रांस ने इस बीच लेबनान में इजराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी है। यह मांग इजराइल की सेना के बोफोर्ट किले पर कब्जा करने के बाद की गई है। इजराइल के फ्रांस के विदेश मंत्री जो नोएल बारो ने कहा है कि फ्रांस इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को तो मानता है, लेकिन लेबनान के भीतर लगातार सैन्य अभियान चलाना, और वो भी पहले लिटानी नदी तक और अब कहना जहरानी नदी तक, और ऐतिहासिक शहरों को अपने कब्जे में लेना, अंदर तक कब्जा करना कितना उचित या कितना अनुचित है, इस पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा होनी चाहिए। फ्रांस के मुताबिक मौजूदा हालात जो है न केवल लेबनान में बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फ्रांस का मानना यह है कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को रोकना चाहिए, इस संघर्ष को पूरे क्षेत्र में फैलने से भी रोकना चाहिए, और इसी वजह से फ्रांस चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा करे और एक समाधान निकाले। बोफोर्ट किले पर कब्जे के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बड़े इलाके में रहने वाले लेबनान के लोगों को कहा है कि वो अब जहरानी नदी के दक्षिण का पूरा इलाका खाली कर दे। अब फ्रांस को आशंका इस बात की है कि इससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक मानवीय संकट बहुत ज्यादा बड़ा पैदा हो सकता है, और स्थिति और गहरा सकती है, गंभीर हो सकती है, और इसीलिए अब संघर्ष विराम की आवश्यकता है ताकि संघर्ष और ज्यादा बढ़े ना। इसराइल और लेबनान के बीच पिछले करीब 1.5 महीने से युद्ध विराम है, यानी मार्च 2 को ऑपरेशन शुरू हुए थे, 17 अप्रैल के आसपास युद्ध विराम हुआ था, लेकिन बमों की बरसात फिर भी हो रही है। हिजबुल्ला इसराइल को उकसाने के लिए हमले करता है, उत्तरी इसराइल पर हमले करता है, तो जवाब में इसराइल तमाम ठिकानों को तबाह कर डालता है और अब उसकी जमीनी सेना भी, यानी इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर, तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और पैदल सैनिक, वो सब लेबनान के अंदर हैं। वहां के मौजूदा हालात और नुकसान कितना बढ़ रहा है उस पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।

0: लेबनन में इसराइल के ताबड़तोड़ हमले, बमों की बरसात से कई जगह लगी आग, धू धू कर जल रही इमारतें, कईयों की गई जान। दक्षिणी लेबनन के कई इलाकों पर इसराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं। 1 के बाद 1 की गई एयर स्ट्राइक से जगह जगह आग लग गई और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्बादी का मंजर किस कदर रहा होगा। सीज फायर का लेबनन के दक्षिणी इलाकों में कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इजरायली फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका दावा है कि उसने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को उड़ाने में कामयाबी हासिल की है और इस अभियान को जारी रखा जाएगा।
1: आशंका यह है कि यह युद्ध और ज्यादा गंभीर और विकराल रूप ले सकता है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश

0: पर्यटकों से गुलजार रहने वाला कसूर आज खौफ और दहशत की तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में है। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि गोलियां चलने लगी। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। जिस चार दीवारी के बाहर लोग खड़े हैं उसी में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ। अंदर से दो लोग निकले जिनमें से एक गोली लगने से घायल था, दूसरे ने उसे कंधे पर उठाया और भागता नजर आया। कुछ ही सेकंड में सफेद शर्ट पहने वो दबंग भी नजर आया जो सरेआम पिस्टल लहरा रहा था। फिल्म स्टाइल में बीच सड़क पर पिस्टल लोड की और भाग रहे लोगों के पीछे निकल गया।
1: स्थानीय लोगों के साथ कहा सुनी मैं जैसे कपल जैसे में उसमें झगड़ा हुआ और उन्होंने एक युवराज स्थानीय लड़का जिसका नाम युवराज है उसके पांव में गोली मारी, जो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने त्वरित एकदम कार्रवाई करते हुए इनमें से चार लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया है।
0: प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद सफेद शर्ट वाले युवक ने दूसरे युवक पर फायरिंग कर दी। पीड़ित के पैर में गोली लगी, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस मात्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक सोच में बदलाव है। इस सोच में बदलाव के साथ आपने देखा होगा कि जब भी छोटी से छोटी घटना भी होती है, छोटी से छोटा अपराध भी होता है, उसके प्रति भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उस कानून के तहत, जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कार्रवाई करती है और उन अपराधियों को सजा दिलाने का कार्रवाई करती है। तो ये प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी।
1: सर, एक सवाल कि आपने अपराधियों के नियंत्रण की बात की, अपराध नियंत्रण की, तो एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पुलिस करती है, आज भी लखनऊ में भी एनकाउंटर हुए, गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस की इन कार्रवाइयां भी रहती हैं।
0: कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो कि भागने का प्रयास करते हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, कुछ मनभर टाइप के होते हैं जो कि बहुत ही दुर्दांत टाइप के और डेस्परेट टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, और उनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इस बात को इंडिकेट करती है कि उनके मन में ना तो कानून का भय है, ना उनको मानवीय जीवन का कोई मूल्य उनके दिमाग में है, और वो पुलिस को देख करके या पुलिस को की घेराबंदी को देख करके पुलिस के ऊपर भी फायर करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे समय में नेचुरली अब पुलिस का मनोबल ऊंचा है, ऐसे समय में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आत्मरक्षार्थ जो आवश्यक बल प्रयोग करते हैं उसमें कार्रवाई करते हैं। इसमें कुछ अपराधी घायल होते हैं, कुछ अपराधी जो है वो मारे जाते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कड़ा रुख, बकरीद पर गोमाता का चित्र पोस्ट करने वाले शोहलों को दी चेतावनी, कहा ऐसी दुर्गति होगी कि पीढ़ियां रखेंगी याद। यूपी बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी, संगठन में फेरबदल के लिए दिल्ली बुलाए गए बड़े नेता, समय से पहले चुनाव की सुगबुगाहट। ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन, दो बागी विधायक ऋतव्रता और संदीपन निष्कासित, दोनों ने टीएमसी अध्यक्ष के फैसले पर उठाए थे सवाल। सीबीएसई नीट विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में कहा छात्रों के साथ नहीं होगा अन्याय। दिशा की मौत का सीन रिक्रिएट कर 3 घंटे के बाद घर से निकली सीबीआई, डमी पुतले की गिरबाला ने खोली फंदे की गांठ, समर्थ ने नीचे उतारी लाश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। लेकिन असली दंगल तो दीदी की पार्टी में मचा हुआ है बंगाल के भीतर, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका ठिकरा बंगाल सरकार पर फोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर डराने, धमकाने, पार्टी तोड़ने की कोशिश करने और बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को मीटिंग में आने से, मीटिंग करने से रोक रही है। 2500 दफ्तर तोड़ डाले गए हैं पार्टी के, कहीं ईदगाह पर कब्जा तो कहीं मिशनरी बंद कर दी गई है। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव नतीजों में भी धांधली के आरोप एक बार फिर सामने आए हैं।
3: यदि हेलमेट ना पे तो एमन भाव पाथर छुड़े যে তার মাথাটাকে মানে পুরো স্পট ডেথ হয়ে যেতে পারত, এইভাবে একজন পুলিশ মারা গিয়েছিল। তারপরও বিজেপি সভাপতি বলছেন গর্ব করে, আরে বেঁচে তো আছে। হ্যাঁ বেঁচে আছে, আপনারাও বেঁচে ছিলেন আমাদের সময়, আমরা আপনাদের দুধে ভাতে রেখেছিলাম, আর আপনারা আজকে বন্দুকের গুলি আর পুলিশ দিয়ে, পুলিশি রাজ দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করছেন।
0: तो ममता बनर्जी के आरोप तब सामने आए हैं जब बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी अंदरूनी टूट और मतभेद का सामना कर रही है, क्योंकि जब से ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है तब से उनकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद उन्हें पहचानने तक से इनकार करने लगे हैं। ममता मीटिंग बुलाती है, विधायक जा नहीं रहे। कल टीएमसी की मीटिंग बुलाई गई थी, 80 विधायकों को बुलाया गया था, 60 गायब रहे। इससे पहले 2 विधायकों ने स्पीकर को शिकायत कर डाली है कि उनके फर्जी दस्तखत लगाकर टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया है। अब सीआईडी जांच होने लगी तो 13 विधायकों का नाम सामने आया जिनके फर्जी दस्तखत की जांच हो रही है। नाराज पार्टी नेतृत्व ने विधायक संदीपन साहा और ऋतिव्रत बैनर्जी को प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया, यानी वो चुनकर आए 1 महीने पहले और 1 महीने के भीतर ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया। इससे पहले बंगाल में टीएमसी के नेताओं के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी के साथ हुई लिंचिंग हो या कल्याण बैनर्जी पर किया गया हमला या फिर स्वगता राय का विरोध, जगह जगह टीएमसी नेता भीड़ के गुस्से का शिकार हुए। बंगाल में सरकार और सत्ता बदलने के बावजूद क्या सियासत का चरित्र नहीं बदला है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है। ये कहा गया था कि बदलाव की राजनीति होगी, बदले की नहीं होगी, लेकिन सियासत का चरित्र ऐसा होता है कि वो बदलना बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए इसी मसले पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बंगाल को लेकर यह रिपोर्ट देखते हैं।
4: हाल ही बंगाल बस इतना है कि कहीं सत्ता का जश्न है, कहीं सियासत बेहाल, कहीं शुभेंदु के 35 मंत्रियों वाली कैबिनेट के सामने सत्ता का कालीन बिछा है, तो कहीं सड़क के संग्राम से निकली सियासत के वजूद पर सवाल मंडरा रहा है। 4 मई तक बंगाल की सत्ता की कमान संभालने वाली ममता बनर्जी अब बड़ी परेशानी में घिरती दिख रही है। एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन हो रहा है, ऊपर से टीएमसी के नेताओं पर जनता का हिंसक रिएक्शन दिख रहा है। इधर टीएमसी के सांसद आपस में भी संग्राम करे बैठे हैं और अब टीएमसी के नेताओं ने खुलेआम पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले तो टीएमसी के पंचायत से पार्लियामेंट तक स्तर के नेता इस्तीफे पर इस्तीफा देते रहे। अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
5: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
4: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैलिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
6: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहाँ भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
4: फिर मामला संज्ञान में आया तो बंगाल पुलिस की सीआईडी ने फर्जी दस्तखत के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 सदस्यों की जांच टीम की निगरानी डीआईजी रैंक के अफसर को मिली। पूछताछ का समय अभिषेक बनर्जी को दिया गया, लेकिन अभिषेक ने खराब सेहत का हवाला दिया, पेश नहीं हुए। अब टीएमसी कहती है अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से लेकर अदालत तक की जाएगी, लेकिन टीएमसी ये नहीं बता रही कि कार्यकर्ताओं नेताओं के उठते भरोसे और पार्टी की एकता के बिखरते तिनके को कैसे संभाला जाए।
7: सुमित महाजा बाड़ी तक आउट बाड़ी तक रुकते हुए बाड़ी सामने मार दिए ताकि एक फोन पर्यंत राज्य नेतृत्व करे एमएलए एक हमारा 80 जन एमएलए जीते
4: दरअसल नई सरकार टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। टीएमसी के पंचायत और वार्ड स्तर के नेताओं से लेकर सांसदों तक के दफ्तरों में सरकारी सामान मिल रहा है। इसे लेकर बीजेपी का कैडर आक्रामक है। विरोध प्रदर्शनों की आज टीएमसी के नेताओं तक पहुंच रही है, लेकिन उन्हें नेतृत्व की मदद नहीं मिल रही। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो 2 विधायकों पर कार्रवाई हो चुकी है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ये भय फैलाने के लिए हमले कर रही है। अभी ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप एक बार फिर लगाया हुआ है। तो क्या बंगाल का चरित्र अभी भी वही का वही कायम है? क्या अभी भी वो बदलने को तैयार नहीं है? चर्चा होगी। हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के इस चर्चा में शामिल होंगे। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगी। कांग्रेस ने भी चुनाव के पहले बंगाल में गुंडागर्दी को लेकर काफी सवाल उठाए थे, अब चुनाव के बाद कांग्रेस का क्या कहना है वो भी उनसे हम पूछेंगे। प्रसून आचार्य वरिष्ठ पत्रकार है, कोलकाता से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन तीन सवाल पहले मैं इस पैनल के सामने रखूंगा और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, क्या बंगाल में बीजेपी पर पार्टी तोड़ने के ममता बनर्जी के आरोपों में क्या दम है? क्योंकि एक के बाद एक हमें ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि ममता बनर्जी का उन्हीं के पार्टी पर कंट्रोल छूटता जा रहा है। लेकिन ममता का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल, क्या चुनावी हार के बाद जांच कार्रवाई के डर से नेता कार्यकर्ता टीएमसी छोड़ रहे हैं? क्या ये अपॉर्चुनिटी है या डर के वजह से टीएमसी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों को जनाक्रोश बता देना सही है? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है तो जनाक्रोश है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो टीएमसी के दो विधायकों पर कार्रवाई, 35 विधायक बैठक से गायब, काकोली दस्तेदार की बगावत और अभिषेक बनर्जी पर हमला, एक महीना भी नहीं हुआ है लेकिन मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद इस वक्त जुड़ रहे हैं, पहले उनसे ही कुछ सवाल पूछ लेते हैं। क्या हुआ कीर्ति जी, अचानक सारा मामला बदला हुआ नजर आ रहा है? एक महीने पहले आप सत्ताधारी पार्टी थे, लोग आपसे डरते थे, अब पूरा दांव, पूरा उल्टा दांव यहां पर दिखाई दे रहा है।
8: आपने काश पूछा होता कि 32 लाख वोटर जिनका नाम नहीं चढ़ पाया और इलेक्शन कमीशन कहता है कि लास्ट पर्सन एवरी पर्सन शुड वोट, तो वो नहीं हो पाए जो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर तो आप संभवतः इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आपने हमारा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देखा, उसमें बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं के जो जो लोग वहां पर थे, महिलाएं थी जो अंडा लेकर बोल रही हैं कि हम इस तरीके से मारेंगे, क्या करेंगे, जो प्रायोजित था। क्या कोई चीज प्रायोजित होकर आम जनता पुलिस के सामने इतना खुल के कर सकती है? जब तक कि शह न मिला हुआ, यह शह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है और वह इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि बदलाव की हम राजनीति करेंगे, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें एक एक आदमी का नाम मैंने गिना करके दिखा दिया। जिस आदमी ने पत्थर मारा, अगर हेलमेट ना होता तो मर जाता, फिर क्या होता? कभी इसके बारे में आपने चर्चा करने की सोची? तो यह सब प्रायोजित है। दूसरा, हमारे विधायक और दूसरे कार्यकर्ता नहीं घर से निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में भय है और बीजेपी चाहती है कि भय रहे, और इस भय के कारण से लोग बाहर नहीं आ पा रहे। तो आपका यह कहना कि 30 विधायक आए, 32 विधायक आए, तो आप कहिए जो आप उड़ाना चाहते हैं उड़ाएं, लेकिन जो असलियत है वह मैंने आपके सामने रख दी है।
0: चर्चा नहीं करनी होती तो कीर्ति जी आपसे आज बात नहीं कर रहे होते। 32 लाख वोटर्स पर तो आप आगे क्या करेंगे ये भी तो पूछना होगा। ट्रिब्यूनल में 6000 सुनवाई हो चुकी है, 4000 को दोबारा मताधिकार मिल चुका है, अब आगे टीएमसी इस पर क्या एक्शन लेगी? लेकिन सवाल आज की स्थिति में यह है कि क्या टीएमसी टूटेगी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ममता दीदी का वही आरोप है।
8: तृणमूल नहीं टूटने वाली, कुछ भी प्रयास कर ले, इन्होंने तो वैसे सबको तोड़ दिया, जिस जिसके साथ ये रहे उन्हीं को तोड़ दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी रही हो, चाहे बादल हो अकाली दल के, या फिर दुष्यंत चौटाला रहे हो इनके साथ में, नीतीश कुमार को ये गोल करके खा गए, तो यह तो किसी को भी खा जाते हैं। इनका प्रयास तो ये रहता है किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। सफल हो जाते हैं लेकिन तृणमूल के ऊपर सफल नहीं हो पाएंगे। यह अभी डराने की, स्टेट एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड हुलिगनिज्म चल रही है, लोगों को डराया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, जिससे कि यह लोग डर करके हमारे पास आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होने वाला।
0: लेकिन सीआईडी की जांच चल रही है ना, नेता विपक्ष और चीफ व्हिप के चयन को लेकर, दो विधायकों पर आपने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन पार्टी के भीतर कुछ चल रहा है आपके? ऐसे ही दो विधायक सामने नहीं आएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे हस्ताक्षर नहीं है, कुछ तो चल रहा है पार्टी के भीतर?
8: नहीं, कुछ नहीं, सीआईडी जांच करे, जो उसको करना है करें, फर्जी तो सिग्नेचर बहुत लोगों ने करवाए थे, तो इसमें तो जो चीज है वो सामने जब आएंगी तो देखे जाएंगे।
0: लेकिन खेत खलियान के भीतर नकद राशि भी तो मिल रही है, उसकी तस्वीरें भी काफी चल रही थी कि लाखों करोड़ों रुपए वहां पर कैश में मिल रहे हैं, नकद मिल रहे हैं।
8: अरे सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो आदमी आपके कैमरे पे 5 लाख रुपया नकद लेता हुआ हाथ में पकड़ा गया, वह उधार का सिंदूर आज चीफ मिनिस्टर बन गया है पश्चिम बंगाल का। जरा उसके बारे में भी तो पूछिए क्या हुआ उसके इंक्वायरी का। वो सारे जितने लोग थे, हेमंत बिस्वा शर्मा थे, ये सारे उधार का सिंदूर है जो अपनी मांग में लगाए आरएसएस और बीजेपी ने, इनके बारे में थोड़ा सा पूछिए ना। जिसका निकला उसको पकड़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पकड़िए, उसके ऊपर कार्रवाई करिए, ऐसी गंदी मछली तो सब जगह निकलती है, होती है, भारतीय जनता पार्टी में तो भरी पड़ी है।
0: नहीं, लेकिन 32 लाख वोटर्स का मामला तो आपने निकाला, लेकिन एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। लगता है कि आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है क्या? आपको लगता है कि गलत फैसला हो गया है?
8: नहीं, देखिए, बड़ी स्पष्ट लिहाजे में अगर आप अभिषेक बैनर्जी को माफ कीजिएगा, अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लेंगे तो वह बता देंगे कि किस प्रकार से अपने आप को ही कॉन्ट्रोडिक्ट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उसे अपने स्पष्ट हो जाएगा, उसकी बाल की खाल निकाली है ना, जैसे उस बच्चे ने निकाली थी सीबीएसई की, तब आपको पता लगेगा कैसे है। तब तो पहले कोलगेट क्या हुआ, 2G घोटाला हुआ, सब लोग बरी हो गए, लेकिन महीनों भर ये चलता रहा, जबकि वो सारी जितनी न्यूज थी झूठी थी।
0: तो कीर्ति आजाद यहां पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया जी कि भय का माहौल फैलाया जा रहा है उनके नेताओं के खिलाफ, और इसीलिए विधायक वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, और बीजेपी की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी पार्टी टूट जाए।
9: देखिए, सबसे पहले टीएमसी टूट जाए नहीं, टूट चुकी है। ममता बनर्जी के चेहरे पे निराशा है। जो लीडर है वो इस्तीफा देके ममता बनर्जी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जनता आक्रोशित है। और क्यों आक्रोशित है? जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? ममता बनर्जी की राजनीति क्या रही है? 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। क्या ममता बनर्जी न्याय दिलाती है? न्याय नहीं दिलाती है ममता बनर्जी, बल्कि हत्यारों के साथ खड़ी हो जाती है। दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी का चुनाव के दौरान का बयान है, पुलिस तो चली जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो चले जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? आज जो धमकी देता था जनता को, जब जनता ने उसको सबक सिखाया, उसको बताया कि उसकी हैसियत क्या है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, तो किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को समझ में आ गया। तीसरी बात, ममता बनर्जी स्वयं कैसी मुख्यमंत्री हैं? ममता बनर्जी विधानसभा के पटल पे साहिल जी क्या कहती हैं? प्रधानमंत्री को गाली देती हैं, गृह मंत्री को गाली देती हैं, और सुवेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष, उनको निष्कासित करती हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अराजकता की मूर्ति और जंगल राज का पर्याय कोई है तो वो ममता बनर्जी है। और ये जो बैठक में 60 विधायक नहीं आते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जनता तो ममता बनर्जी की राजनीति को जान के उसको वोट नहीं करती, सत्ता से बाहर कर देती है, लेकिन टीएमसी के भी जो नेता हैं, जो केवल मलाई खा रहे थे, जनता को लूट रहे थे, हिंसा फैला रहे थे, उन्होंने भी ममता बनर्जी को त्याग दिया है। और अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमने देखा जो भी हुआ अभिषेक बनर्जी के साथ, कल्याण बनर्जी जो नौटंकी कर रहे थे, उन्होंने अपना हाथ रखा और बार बार, आज तक का कैमरामैन भी वहां रहा होगा, कहने लगे देखो खून बह रहा है, खून बह रहा है। एक बूंद खून की तो नहीं निकली, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसका पसीना उनके चेहरे से जरूर बह रहा था। और उनके शब्द, शब्द शाह मैं आपके सामने रखता हूं, वो कहते आ सुकांत आ, सीआईएसएफ के बिना चले आ, देखते हैं कितने लोग तेरे हैं, कितने लोग मेरे हैं, कोई सीआईएसएफ नहीं रहेगी, कोई बीएसएफ नहीं रहेगी। और आगे कहते आ तू देख जा, चले आ शुभेंदु आ, पुलिस के बिना तू भी रहेगा, पुलिस के बिना हम भी रहेंगे, फिर देखते हैं घर लौटेगा या नहीं। ये क्या था, क्या था ये, क्या कार्रवाई करी टीएमसी ने? आप मुझे बताइए साहिल जी, हम लोग चुनाव जीते हैं अपने आदर्शों पे जीते हैं, विचारधारा पे जीते हैं, जनता का विश्वास जीता तब हम जीते हैं। ये किस तरह की भड़काने वाली भाषा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो कल्याण बनर्जी,
0: भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल होगा
9: अब जनता इनको
0: तो जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा, कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश है। लेकिन गौरव भाटिया जी, स्वयं प्रकाश जी के पास जाने से पहले जरा आप मुझे बताइएगा कि क्या यह इन्वेस्टिगेशन हो चुका?
9: नहीं, एक मिनट,
0: नहीं, मैं भी एक 10 सेकंड में पहले आपको सवाल पूछ लूं। आप मुझे बताइए, आपने दावा किया कि वो जो कार्यकर्ता थे वो तो मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो आम लोग हैं, और उनका गुस्सा टूट पड़ा। टीएमसी ने उनके फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं ट्विटर हैंडल पे और कहा है कि वो तो आपके आपके नेताओं के साथ दिखाई दे रहे थे। क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और समझ में आ चुका है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, कोई आम लोग थे जो पत्थर मार रहे थे अभिषेक बैनर्जी पर? क्योंकि बीजेपी ने खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदले की नहीं बदलाव की राजनीति होगी अब बंगाल के भीतर।
9: साहिल जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसी बात को आगे बताता हूं। देखिए, बदलाव भी आ रहा है और हम कभी भी हिंसा के पक्षधर नहीं हो सकते, लेकिन क्या सच्चाई है वो कहना भी आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा था ये जनता का आक्रोश है। और तीसरी बात, आप उसी दिन की आज तक की रिपोर्ट देखिएगा, उन व्यक्तियों से आपके कैमरामैन और रिपोर्टर ने कहा क्या आप भाजपा से जुड़े हैं, तो उन्होंने गाली देते हुए अभिषेक बैनर्जी के लिए कहा ये लोग वसूली करते थे, ये लोग हमें धमकाते थे और हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनको सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने हमें प्रताड़ित किया है। ये आज तक की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, और मैं तब भी कहूंगा
0: वो तो कोई उनका स्टेटमेंट वो आज तक की रिपोर्ट पे आया होगा। मैं आपको स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि जो लोग वहां पर पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग बीजेपी के नेताओं के साथ दिख रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स एआईटीसी ने ट्वीट किया हुआ है, सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। लगातार 3 से 4 लोगों के फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं।
9: क्या
0: क्या इसका इन्वेस्टिगेशन होगा?
9: मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, हमने संविधान की शपथ ली है जो अपराधी होगा जेल के पीछे सड़ेगा। लेकिन किसी की तस्वीर किसी के साथ हो, मान लीजिए कल हफीज सैयद की तस्वीर आपके साथ हो, तो आप हफीज सैयद के हितैषी नहीं हो जाएंगे, दोस्त नहीं हो जाएंगे। अगर हफीज सैयद कहीं आतंकवादी,
0: उस पर दिक्कत क्या मालूम है क्या गौरव भाटिया जी? मैं चुनाव में उतरूंगा नहीं कि हफीज सईद मेरे साथ जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के साथ में एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि वो वहां पर जीप पर बैठकर प्रचार कर रहे हैं और वहां पर वो महिला उनके साथ में जीप पर दिखाई देती है और सेल्फी ले रही है इस तरीके से। हफीज सईद तो मेरे पास आके इस तरीके से सेल्फी नहीं लेंगे ना।
9: राहुल गांधी की
0: सेल्फी आप तभी ले सकते हो आप किसी को अगर जीप पर चढ़ा रहे हो आपके साथ में झंडा लेकर, तभी तो वो सेल्फी की तस्वीर दिखाई देगी इस तरीके से।
9: अरे ये तर्क मत,
0: अलग अलग फर्क है,
9: गलत तर्क मत दीजिए। साहिल जी आपसे उम्मीद नहीं है,
0: आपसे भी ये उम्मीद नहीं है कि आप गलत तरीके का तर्क देंगे कि हाफिज सईद की तस्वीर किसी के साथ दिखाई देंगे।
9: मेरे को
0: सीरियस बातें चल रही है यहाँ पर, हाफिज सईद कहाँ से आ गया इसमें?
9: मैं कहता हूँ मेरा तर्क ये है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, और कोई माइकल लाल नहीं है जो कानून व्यवस्था तोड़ दे। शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री हैं।
0: चलिए स्वयं प्रकाश जी जवाब दीजिएगा, बीजेपी साफ शब्दों में कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनके सरकार की जिम्मेदारी है और उसको वो निभाएंगे। स्वयं प्रकाश जी,
10: बहुत अच्छी बात है ये, भारतीय जनता पार्टी के, देखिए तस्वीर आप नहीं दिखा पा रहे, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर थोड़ी भी ये व्यक्ति सामने से पीछे से कॉलर टान के अभिषेक बनर्जी की पत्थर मार रहा है, अभिषेक गायन नाम है इसका, और ये जो भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेके खड़ा है उसमें लिखा हुआ है शिल्पो ताई बीजेपी ताई, शिल्पो चाहिए मतलब इनको बंगाल में इंडस्ट्री चाहिए, परिवर्तन चाहिए, इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा और ये इनको बिजनेस मिला है क्या, अंडे फेंकने का, ईंटे फेंकने का, ये काम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं को। ये मिस्टर गायन है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, स्थानीय नेता है, उसने पत्थर मारा अंडे, सुष्मिता दत्ता, मैं नाम बता रहा हूं आपको, उसके खिलाफ पे क्या हुआ है, गिरफ्तार किया है उसको। देखिए ये सब आईवॉश है अभिषेक बनर्जी की, जिस तरह से सिक्योरिटी लैप्स कर दी गई थी, हटा ली गई थी, जबकि उनको पता था इनके नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं। राजीव गांधी की सिक्योरिटी हटाई थी इन्होंने, राजीव गांधी को जिसने मारा वो भी भारत की नागरिक थी, वो तो बाहर से नहीं आई थी, वो भी भारतीय थी, क्या आक्रोश था, बम लेकर के फट गई खुद भी। तो ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी तैयार करते हैं।
0: राजीव गांधी की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त सरकार में कौन था जरा देख लीजिए,
9: देना चाहता हूं जरा साहिल,
0: जरा इतिहास को लेकर बयानबाजी ठीक से होनी चाहिए। राजीव गांधी जब नेता विपक्ष थे या आपने जो दावा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी हटाई थी, तब कौन था सत्ता में वो जरा देख लीजिएगा।
10: वो भी जरा देख लीजिएगा, जिन्होंने गांधी को मारा वही विचारधारा है, जिन्होंने इंदिरा को मारा वही विचारधारा है, जिसको जान से मार दो। मतलब इनको जान से मार दो ममता बनर्जी और अभिषेक।
0: लेकिन माहौल तो यही बनाया हुआ है ना स्वयं प्रकाश जी, जिस तरीके का माहौल बंगाल के भीतर 2021 में था, तब आपके तरफ से भी यही कहा जाता था कि जो अटैक करने वाले लोग हैं तो वो आम बंगाली है। कई सारी ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी थी कि बीजेपी के नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं गाड़ी से और पथराव हो रहा है उनकी गाड़ी पर।
10: सुनिए ना, आपके पास
0: शुभेंदु अधिकारी पर खुद अटैक हुआ है, शुभेंदु अधिकारी पर खुद अटैक हुआ है उस अधिकारी, तब आप भी यही बोलते थे कि भाई वो तो आम बंगाली है, बंगाल के खिलाफ बीजेपी के नेता बोलते हैं इसके लिए आक्रोशित हो रहे हैं। वही चीज आज बीजेपी भी बोल रही है, आप इसे सीख के
10: शायद बोल रहे हो। अरे भाई मैंने आपको नाम दिया है, अमित शाह के साथ तस्वीर है सुष्मिता दत्ता की, एक गृह मंत्री के साथ जिसकी तस्वीर है, अग्निमित्रा पाल जो मंत्री है, शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है उसके साथ तस्वीर पर पत्थर मार रही है और उसके खिलाफ।
0: ये तो कल्चर है ना वहां पर, आपको याद होगा 60 साल की महिला सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाकर वहां पर गुहार लगा चुकी है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, बंगाल के भीतर रूल का नहीं रूलर का राज चल रहा है,
10: तो
0: यानी किसी भी न्याय का राज वहां पर नहीं चल रहा है,
10: वही है
0: वहां पर सत्ताधारी का राज चल रहा है, सत्ता नहीं चल रही है। ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, आपको याद होगा उस वक्त स्वयं प्रकाश जी।
10: जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है उन राज्यों में क्या उनके नेताओं को पकड़ पकड़ के पीटा जाए? क्या देश में भीड़ तंत्र का राज होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कोई बात नहीं की? वो मोटो केस लेना चाहिए।
0: सवाल यही है इस पर, अगर उनके राज में ये बातें हुई थी तो क्या आपके राज में भी वही बातें होनी चाहिए? सवाल यहाँ पर यही उठता है
10: हमारे राज में।
0: गौरव भाटिया जी,
10: आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें।
11: अब मैं उत्तर देता हूं।
10: आपने बहुत
11: मैंने अभिषेक बैनर्जी का वक्तव्य बताया साहिल जी, आपको
10: आपके पीए को
11: बीच में ना बोले, शांत कराइए। देखिए ये तरीका गलत है, ये गुंडागर्दी अब चलेगी नहीं।
0: स्वयं प्रकाश जी अभी जवाब सुन लेते हैं, सवाल उनको वही पूछा गया है स्वयं प्रकाश जी कि आपके अगर टीएमसी के राज में ये घटनाएं होती थी, ये बीजेपी का आरोप है, तो क्या बीजेपी के राज में भी ये घटनाएं होनी चाहिए? सवाल यहाँ पर उठता है। गौरव भाटिया जी,
10: और ज्यादा होगी, और ज्यादा करेंगे ये लोग,
11: धन्यवाद,
10: और ज्यादा करेंगे।
11: देखिए साहिल जी, आज आप शांत कराइए प्लीज। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए था और आपके द्वारा भी, हो सकता है आप आगे कार्यक्रम में मेरी बात से सहमत होकर सवाल पूछे कि अभिषेक बैनर्जी ने ये जनता को धमकी क्यों दी, भाजपा के नेताओं को धमकी क्यों दी? पुलिस तो चली जाएगी, हम यही रहेंगे, 4 मई के बाद फिर तुम्हें देख लेंगे। और कल्याण बैनर्जी ने जो कहा था, तू आ जा शुभेंदु, तुझे मैं दिखाऊंगा, कहा है तू आ बाहर, ये शब्द क्या एक नेता को बोलने चाहिए थे? एक सांसद है कल्याण बैनर्जी। लेकिन ये सवाल मैं समझता हूं अब अगले भाग में जरूर पूछेंगे। दूसरी बात, फर्क क्या है? देखिए शुभेंदु अधिकारी जी बीच में ना बोले, साहिल जी देखिए बदतमीजी जब करेंगे बदतमीजी करते हैं बैठ के, इसीलिए कपड़े फाड़े जाते हैं, अंडे पड़ते हैं, इनको अंडे क्यों पड़ते हैं ये आज तक पे दिखाई दे रहा है। देखिए लाइव डिबेट में जो बदतमीजी कर रहा है वो कैसा व्यक्ति बोल रहा है आप सोचिए,
10: और वन साइडेड नहीं, बदतमीजी नहीं है,
11: बीच में मत
10: आइना दिखाना,
11: आपका भाई नहीं, आपके भाई रोहिंग्या है बांग्लादेश।
0: स्वयं प्रकाश जी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, जरा शांत करिए उनको प्लीज,
11: बीच में ना बोले
0: नहीं तो डिबेट भटक जाएगी पूरी तरीके से। गौरव भाटिया जी आप अपना जवाब दीजिएगा। और रही बात, आपने दो सवाल उठाए कि अभिषेक बैनर्जी ने,
11: धन्यवाद,
0: मतलब क्योंकि आप गाइड भी करते हैं ना कि भाई इस ये सवाल पूछने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, शायद तब आप ही थे बीजेपी के तरफ से, जब चुनाव प्रचार के दौरान ये सवाल पूछे गए थे ना, उठाए गए थे या स्टेटमेंट्स दिए गए थे, तब भी हमने इस बारे में डिबेट की थी। आज सवाल ये उठता है कि यही सारी भाषणबाजी के वजह से आज तृणमूल कांग्रेस के नेता सत्ता में नहीं है, यही बीजेपी का दावा है भय से मुक्ति, तो उसी वक्त अगर इस तरीके के चित्र दिखाई देते हैं तो सवाल तो किसको पूछा जाएगा फिर?
11: साहिल,
0: बयान देने वालों को उस वक्त के कि अभी होने वालों को?
11: सुनिए साहिल जी, आपका एक मिनट, साहिल जी आपका साधुवाद, आज तक का साधुवाद कि आपने ये सवाल पूछे थे, लेकिन आप जब जनता की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं तो वो सवाल फिर से पूछे जाने चाहिए। क्या उस पे ममता बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी ने माफी मांगी? और कल्याण बैनर्जी का ये जो बयान है वो तो मैं अभी का बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बार बार पूछिए। दूसरी बात, फर्क क्या है? देखिए शुभेंदु अधिकारी जी वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं और राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते मैंने अभी कहा कानून व्यवस्था बनी रहेगी, बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि 7 न्यायिक मैजिस्ट्रेट, 7 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनको बंधक बना लिया था टीएमसी के गुंडों ने? क्या यह सत्य नहीं है मधु मंडल चुनाव के परिणाम आने के बाद हमारे कार्यकर्ता को मारा टीएमसी के गुंडों ने मारा? क्या उसके लिए माफी मांगी आज तक? नहीं मांगी। जब आप रक्तपात करोगे, जब आप कहोगे मां बाटी मानुष लेकिन उसी मिट्टी को रक्त से रंजित कर दोगे, तब जरूर पूछा जाएगा कि ये जो जनता आक्रोश कर रही है इसमें गलत क्या है। और तीसरी बात मैं कहता हूं,
0: स्वयं प्रकाश जी कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि आक्रोश तो जनता का है, बीजेपी का नाम बेवजह लिया जा रहा है। स्वयं प्रकाश जी, आक्रोश तो जनता का है, बीजेपी का नाम बेवजह लिया जा रहा है। लेकिन इसके आगे एक सवाल
10: साहिल जी,
0: नहीं एक सवाल इसके आगे, एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, और एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं इसमें। एक चीज यहां पर यह भी दिखाई देती है कि एक महीना नहीं बीता है चुनाव के नतीजे आने के बाद, ऐसा क्या हो गया है कि 80 विधायकों की मीटिंग बुलाई जाती है, आते सिर्फ 20 है? ऐसा क्या होता है कि 2 विधायक उठकर यह कहने लगते हैं कि जो चीफ व्हिप और नेता विपक्ष का के लिए जो लेटर दिया गया है उसमें हमारे हस्ताक्षर है ही नहीं? ऐसा क्या होता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खेत खलिहानों में नगदी कैश मिलना शुरू हो जाता है? यह भी तो बदल हो रहा है ना कहीं, ये क्यों हो रहा है, क्या हो गया अचानक? ममता बनर्जी का हुकुम पार्टी के अंदर भी नहीं चल रहा है।
10: सुनिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए जो 2 लोगों की बात आप कर रहे हैं जिन्हें एक्सपेल किया गया है उसमें एक ऋतु तो बैठे हैं, जिन्हें सीपीएम में जब थे तब सीपीएम से भी एक्सपेल किया गया था, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में आए, तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने जनता के लिए कुछ अच्छे काम भी किए होंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी के कुछ ज्यादा प्रभाव में आ गए 4 मई के बाद में, ठीक है। दिल्ली भी चले गए थे वो मिलने के लिए शुभेंदु अधिकारी से, तो उनके बारे में मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा। जो लोग सत्ता का सुख पोना चाहते हैं ना,
0: ऐसा क्यों है?
10: तो जाएंगे ना,
0: ऐसा क्यों है कि एक महीने के भीतर आपके नए नए चुने गए विधायक अचानक इधर उधर क्यों जाने लगते हैं, ऐसा क्या हो गया है?
10: सुनिए ना, दूसरा सुन लो, दूसरा जो है उसका नाम है संदीपन शाह। 2011 में उनके पिताजी स्वर्ण कमल शाह को ममता बनर्जी ने टिकट दी थी, वो विधायक बने, 15 साल विधायक रहे। इस बार उनके बेटे, वो बोले मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे बेटे को दो। ममता बनर्जी ने एक

0: है, उसके ऊपर ऐसे अटैक होता है, तो बीजेपी के लोग भी टीएमसी की तरह ही बात कर रहे हैं। ये जनता का आक्रोश है। मैं एक चीज बता दूं, कोई भी जनता, कोई भी आम बंगाली ना, वो तब बीजेपी के नेता के ऊपर अटैक में इन्वॉल्व थे, ना आज अभिषेक बनर्जी के अटैक में इन्वॉल्व है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी था, एंटी इनकम्बेंसी है, टीएमसी की करप्शन, टीएमसी की गुंडाराज, टीएमसी का सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ जनता ने वोट डाला है और बीजेपी वॉज चोजन एज अ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। पर इसका मतलब ये नहीं कि जनता जाके अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक कर रहा है, जैसे जनता उस दिन खोगेन मुर्मू के ऊपर भी अटैक नहीं किए थे। तो बीजेपी जो बदलाव की बात और परिवर्तन की बात करते थे, जो बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये भी बोला था ऑन रिकॉर्ड कि हम बीजेपी का तृणमूली कोरोन, मतलब वी विल नॉट अलाउ बीजेपी टू बिकम अनदर टीएमसी, नॉट अलाउइंग बीजेपी टू बिकम अनदर टीएमसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टीएमसी से लोग नहीं लेंगे, उसका मतलब ये भी होता है कि टीएमसी का पॉलिटिकल कल्चर इनहेरिट नहीं करेंगे। पर अगर आप अभी देखेंगे स्टेट में क्या हो रहा है, एक जगह टीएमसी का, आपका, हम लोग क्या ये सोचे कि टीएमसी का जो 50 विधायक, अभी रितो ब्रोतो क्लेम कर रहे हैं कि एक नया टीएमसी बनाएंगे 50 विधायक को लेके, ये सारे चीज कोई लॉजिस्टिक फंडिंग ऑपरेशनल सपोर्ट के बिना हो रहा है? एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इज दिस इवन बिलीवेबल? और क्या हम लोग ये मान ले कि
1: गौरव
0: जो
1: भाटिया जी,
0: नेशनल जनरल
1: कोई
0: सेक्रेटरी
1: महाशक्ति
0: है
1: का हाथ
0: टीएमसी
1: पीछे
0: का,
1: होगा
0: अभिषेक
1: तभी तो ये हो
0: बनर्जी,
1: रहा है
0: उनके
1: ना।
0: ऊपर हमला होता है, एंड
1: अगर
0: बीजेपी
1: इतने
0: हैज
1: सारे
0: नो
1: विधायक
0: नो,
1: एक
0: इट
1: साथ
0: इज
1: हो
0: ऑल
1: रहे हैं,
0: नेचुरल, कोई
1: जैसे
0: ऑर्केस्ट्रेशन
1: महाराष्ट्र में एक
0: ऑर्केस्ट्रेशन
1: नाथ
0: तो
1: शिंदे
0: नहीं
1: ने कहा था
0: है,
1: कि हमारे साथ
0: ये सारे
1: महाशक्ति खड़ी
0: चीज
1: है।
0: स्टेज मैनेज्ड है।
1: मीता चक्रवर्ती कह रही है कि वो 50 विधायक अगर गुस्सा है तो उसके पीछे भी कोई महाशक्ति होगी।
0: लॉजिस्टिक सपोर्ट है,
1: देखिए ऐसा है, मैं उत्तर दे सकता हूं साहिल जी। हाँ देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस वो राक्षसी शक्ति है, जहां भी कुछ गलत हो समझ लीजिएगा इस राक्षसी शक्ति का हाथ जरूर है, और इसीलिए इनका खूनी पंजा, खूनी हाथ सिंबल है। अरे ये खून की बात करते हैं, इनका कार्यकर्ता मारा गया,
0: आप न्यूट्रल
1: इनका
0: ही बात
1: कार्यकर्ता मारा
0: कीजिए।
1: गया, और किसने मारा? टीएमसी के गुंडों ने, जब ममता बनर्जी की जो बोली सरकार ना
0: थी।
1: वो,
0: बीच में ना बोलिए
1: उन्होंने
0: मैडम जी,
1: कहा कि मैडम जी अभी आप नई नहीं आई हैं तृणमूल का
0: चर्चा करने
1: कैरेक्टर
0: में।
1: बीजेपी क्यों ले रही है? वो तो कह ही रही है कि तृणमूल के इस रूल के वजह से ही लोगों ने उनको दूर मैं रखा।
0: उत्तर दे सकता
1: कहा
0: हूं,
1: उन्होंने, कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना होगा आपने।
0: सच बोलने का हिम्मत नहीं रखते बीजेपी के
1: मैंने
0: प्रवक्ता,
1: सुना
0: क्या
1: और मैं
0: करें
1: उसी का
0: अभी?
1: उत्तर दे रहा हूं। सुनिए
0: जी
1: मीता जी, ऐसे मत बात करिए, आप तो ऐसी ना थी, आपको क्या हो गया? अच्छा, बौखलाहट भी हो सकती है,
0: नहीं नहीं
1: परिणाम में
0: नहीं
1: आपकी
0: कुछ
1: सीटें
0: नहीं,
1: तो
0: आप
1: आती नहीं
0: सच
1: है,
0: बोलिए।
1: चाहे यूपी हो,
0: मैं तो
1: बिहार
0: बोल
1: हो,
0: रही हूँ
1: पश्चिम
0: आपके
1: बंगाल हो, आंध्रा
0: लीडर के
1: हो,
0: लिए,
1: दिल्ली हो,
0: खोगेन मुर्मू जी के
1: अंडे ही आते
0: लिए
1: हैं।
0: मैंने बोला कि वो
1: साहिल जी
0: क्लेम
1: शांत
0: निकालने का
1: कराइए ना,
0: इरादे,
1: मेरी बहन को
0: आप
1: शांत
0: लोग नहीं
1: कराइए।
0: थे, आप
1: मेरी
0: तो सच
1: बहन
0: बोलिए।
1: इतनी नर्वस
0: चलिए
1: क्यों है? नई
0: मीता
1: नई
0: जी, जरा
1: डिबेट में
0: सुन
1: आई
0: लेते हैं ना,
1: है,
0: अभी वो मुद्दे
1: शांत
0: पर
1: हो
0: आ गए,
1: जाइए
0: अब
1: साहिल
0: वो
1: जी।
0: मुद्दे पर आ गए,
1: आपसे गुजारिश
0: अब
1: है,
0: वो
1: मेरी
0: मुद्दे पर
1: बहन
0: आ
1: को
0: गए, जरा
1: कहिए
0: मुद्दा
1: बीच
0: उनका
1: जरा
0: सुन लेते
1: बोले।
0: हैं, फिर दोबारा आपके पास आता हूं।
1: हाँ धन्यवाद,
0: चलिए गौरव जी बोलिए।
1: धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो क्या बदला है, मैं आपको बता दूं, जो जमीन ममता बनर्जी नहीं दे रही थी बीएसएफ को, वो ट्रांसफर कर दी गई तुरंत सरकार आते ही। आपने सुना होगा महिलाओं के लिए मुफ्त बस राइड, कानून व्यवस्था पहले से ये बेहतर है कि जनता आज सुरक्षित है, लेकिन टीएमसी के गुंडे जो गुंडाई करते थे वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इसकी वजह क्या है? इतने पाप किए हैं, जनता हिसाब मांग रही है, लेकिन फिर भी मैं दोहराते हुए कहता हूं, कानून के हवाले से न्याय होगा और कानून अपना काम करेगा, यही हमारी शपथ है, यही हमारा प्रण है। लेकिन कांग्रेस पे जो मैं कह रहा था, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा गया, मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, मारा टीएमसी के गुंडों ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा यह गलत हुआ है, लेकिन इनके अपने नेता कहते रहे कि अरे कैसे टीएमसी से समझौता कर रहे हो, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप देखिए, जिन कार्यकर्ताओं को मारा टीएमसी के गुंडों ने, उसी टीएमसी से इन्होंने गठबंधन किया था, इनके
0: नहीं
1: साथ कौन खड़ा होगा साहिल जी, आप मुझे
0: नहीं
1: बताइए।
0: नहीं
1: और मैं पुनः
0: गलत
1: कहता
0: बात,
1: हूं,
0: गलत
1: ये
0: बात।
1: सब
0: पश्चिम
1: करवाने
0: बंगाल
1: में
0: के अंदर कोई
1: ये
0: कंसर्न
1: यही
0: से नहीं हुआ
1: अदृश्य
0: है
1: हाथ
0: टीएमसी के
1: है,
0: साथ।
1: जो राक्षसी शक्ति है, अराजकता की शक्ति है, वो कांग्रेस पार्टी है। मीता
0: नहीं,
1: जी
0: इसको मैं
1: चलिए जल्दी से
0: गलत
1: जवाब
0: गलत
1: दीजिएगा,
0: इंफॉर्मेशन
1: वो
0: दे
1: कह
0: रहा
1: रहे
0: हूँ,
1: हैं कि
0: क्योंकि
1: उनका
0: पश्चिम
1: कोई
0: बंगाल के
1: अदृश्य हाथ
0: अंदर
1: नहीं है,
0: 2011
1: हालांकि
0: के
1: मैंने
0: बाद
1: अदृश्य हाथ से
0: टीएमसी
1: ज्यादा
0: और
1: महाशक्ति
0: आईसीसी
1: का
0: में
1: जिक्र
0: कोई
1: किया था,
0: गठबंधन नहीं
1: लेकिन
0: किया
1: मीता जी
0: है।
1: आप जवाब दीजिए।
0: पहली बात तो मैं बोल
1: नहीं
0: दूं कि
1: लेकिन
0: 2011

0: 2012 के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई अलायंस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और टीएमसी के अंदर हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये कि गठबंधन की बात झूठी है,
1: अरे
0: पश्चिम बंगाल
1: लोकसभा
0: के
1: में
0: अंदर
1: हुआ
0: कोई
1: कि
0: सीट
1: नहीं?
0: एडजस्टमेंट ही नहीं हुआ तो किस किस बात की गठबंधन की बात कर रहे हो आप? हाँ, वो
1: इंडिया
0: पोस्ट पोल
1: अलायंस क्या
0: अलायंस का
1: है?
0: नेशनल
1: इनको
0: कॉन्टेक्स्ट
1: आइडिया ही
0: में
1: नहीं
0: था,
1: है,
0: वो नेशनल
1: इंडिया
0: कॉन्टेक्स्ट
1: अलायंस
0: में
1: नहीं
0: था।
1: है।
0: और
1: आप चुनाव नहीं लड़े हैं
0: रविशंकर,
1: ना साथ में, ये
0: वेस्ट
1: आप
0: बंगाल के अंदर
1: बोलिए।
0: आप एक राज्य, एक लोकसभा, ये एक विधानसभा का चुनाव दिखा दीजिए 2011 के बाद, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोई सीट
1: अधीर
0: एडजस्टमेंट हुआ
1: रंजन
0: हो या
1: चौधरी
0: कोई
1: से बड़ी
0: गठबंधन
1: नेता
0: हुआ हो।
1: हैं आप,
0: तो पहली बात
1: अधीर
0: तो
1: रंजन
0: ये कि
1: चौधरी का
0: यहाँ पर
1: विक्टिम में
0: वेस्ट बंगाल
1: चलाइए
0: के
1: जरा।
0: अंदर कोई गठबंधन
1: राहुल
0: नहीं था।
1: गांधी ने ममता बनर्जी
0: दूसरी
1: को
0: बात,
1: कहा
0: आप प्लीज
1: कि ये
0: बीच में ना
1: सांप्रदायिक है,
0: बोले,
1: और
0: आप
1: इंडिया
0: प्लीज
1: अलायंस
0: बीच
1: पे
0: में
1: आज
0: ना
1: आप कह
0: बोले,
1: दीजिए कि
0: आप
1: नहीं,
0: गलत
1: ये ममता
0: इंफॉर्मेशन
1: बनर्जी।
0: शेयर कर रहे हो, आप प्लीज बीच में ना
1: गौरव जी जरा
0: बोले।
1: उनको बोलने दीजिए ना,
0: दूसरी
1: फिर
0: बात
1: वो
0: ये
1: आके
0: है
1: बीच में
0: कि
1: बोलेंगे तो
0: स्टेट
1: अच्छा नहीं
0: की
1: होगा।
0: लॉ
1: अभी
0: एंड
1: तक ये
0: ऑर्डर के
1: बताइए,
0: लिए स्टेट
1: अधीर
0: गवर्नमेंट
1: रंजन चौधरी जी
0: रेस्पॉन्सिबल
1: का
0: है।
1: वक्तव्य क्या
0: अगर
1: है?
0: आम आप देख रहे हो कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं है, सांसद को पीटा जा रहा है, दो सांसद दोनों 2 days in a row are getting attacked and manhandled, और आप बोल रहे हो कि भॉय आउट एंड भरोसाहीन। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास।
1: क्या बोला मैंने?
0: अगर
1: मेरा
0: इस बात
1: वक्तव्य
0: की
1: रिपीट करिए।
0: अकाउंटेबिलिटी बीजेपी के गवर्नमेंट नहीं लेंगे
1: नहीं,
0: तो
1: मेरा
0: कौन
1: मेरा
0: लेगा?
1: वक्तव्य
0: और
1: रिपीट करिए, क्या बोला मैंने जरा बताइए।
0: इस चीज को रिमोटली भी
1: सुनती है नहीं,
0: जस्टिफाई
1: बोल
0: करने
1: रही है
0: की
1: यहां पे।
0: कोशिश मत कीजिए कि
1: ठीक
0: बंगाल के लोगों का जन आक्रोश है, क्योंकि ये बोल के आप
1: है,
0: वायलेंस को नॉर्मलाइज कर रहे हो, ये बोल के आप वायलेंस को जस्टिफाई
1: रसून
0: कर रहे हो।
1: आचार्य
0: इस
1: कैसे आप
0: परिवर्तन
1: देखते
0: के
1: हैं इस
0: बीच
1: पूरे
0: में
1: मामले
0: लोगों ने
1: को?
0: आपको
1: वायलेंस
0: वोट
1: क्या
0: नहीं
1: होता
0: दिया
1: है?
0: था।
1: 84
0: 84 के
1: शंस हो
0: दंगे
1: रहे
0: कैसे हुए
1: हैं,
0: थे सबको
1: सीआईडी के
0: पता है,
1: नोटिसेस दिए जा
0: कश्मीर
1: रहे
0: में क्या
1: हैं,
0: हुआ सबको
1: अभिषेक
0: पता है,
1: बैनर्जी पर
0: पूरा
1: अटैक हो
0: सुप्रीम
1: रहा
0: कोर्ट में
1: है,
0: दंगे हुए,
1: अरेस्ट हो
0: केंद्र
1: रहे
0: में
1: हैं
0: आपकी
1: तृणमूल
0: सरकार
1: कांग्रेस
0: की
1: के
0: सुप्रीम कोर्ट
1: कार्यकर्ता।
0: में फटकार लगाई, यहाँ
1: ये
0: पे
1: सारी
0: आपके
1: चीजें
0: इंडिया
1: आप
0: के
1: किस
0: बारे में
1: तरीके
0: क्या
1: से
0: दे
1: देख रहे
0: रही
1: हैं,
0: है?
1: इसका टाइमिंग आप
0: असल
1: किस
0: में
1: तरीके से देख रहे हैं, क्या ये
0: वहां क्या
1: कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स आपको नजर आती है, या सचमुच में इसके पीछे कुछ आपको एक तस्वीर नजर आ रही है कि जो आगे जाकर रूप ले लेगी?
0: ना हुआ क्या, लोगों का नाराजी था, लेकिन जहां जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था वो थोड़ा बहुत ऑर्केस्ट्रेट भी था, महिला लोग इकट्ठा हुए एक जगह जमा हुआ था, और जो लोग, जिस लड़का पथराव किया था वो भी जमा हुआ था पहले से, और आज जो लोग अरेस्ट हुआ था उसका जमानत भी मिल गया थोड़ा पहले, नंबर वन बात है। नंबर टू बात है, जिस दोनों एमएलए को पार्टी से निष्कासित किया गया था उसका अपना कारण से वो लोग थोड़ा नाराज था, ऐसा करीबन हमको सुनाई दे रहा है। करीबन 10-15 विधायक और उससे 20 भी विधायक हो सकता है पार्टी से नाराज है, नाराज इसके लिए नहीं जो इडियोलॉजिकल कारण से उसका भय है ईडी सीबीआई से। हर पॉलिटिशियन जो है वो उसका थोड़ा डिस्प्रोपोर्शन एसेट केस बनता ही है, और इसके चलते उसका पीछे अगर ईडी लग जाए उसका डर भी है। लेकिन ये
1: लेकिन
0: बात भी
1: प्रसून
0: सच
1: जी,
0: है जो रेजोल्यूशन
1: आप तो
0: दिया गया
1: बंगाल
0: था,
1: के चुनाव जब से हम डिस्कस कर रहे हैं, आप तब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको याद
0: एकदम
1: होगा कि हमने सीपीएम को भी डिस्कस किया था, जैसे ही 2011 में वहां पर ममता बनर्जी जीतती है, सीपीएम जिस तरीके से डेसिमेट हुआ वहां पर, और ये एक यहां से लेकर वहां कूदना कार्यकर्ताओं का, ये इसी तरीके से हमले, लोगों का गुस्सा, यही तो प्रोजेक्ट किया गया था। एग्जैक्टली वही तस्वीर आज दिखाई दे रही है 2026 में,
0: उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि
1: एग्जैक्टली वही तस्वीर
0: सीपीएम
1: दिखाई
0: का
1: दे रही है ना।
0: थोड़ा
1: ये तो बंगाल का
0: इडियोलॉजिकल
1: पॉलिटिकल
0: थोड़ा,
1: कल्चर बन गया है, सत्ता बदल जाती
0: हाँ
1: है
0: हाँ एकदम
1: तुरंत वहां के
0: एकदम
1: लोगों का नेचर बदल जाता है, पॉलिटिकल नेचर।
0: देखिए आज जो शंकर घोष शपथ लिया था वो 2021 तक सीपीएम में ही था, उसका टिकट नहीं मिला, वो तुरंत बीजेपी में चला आया, लेकिन 2011 का बाद भी सीपीएम का कैडर बेस इतना घबरा हुए थे नहीं, और विधायक जितना था 60 विधायक था वो भी इतना घबराए हुए नहीं था, क्योंकि उसका पास उतना डिस्प्रोपोर्शन नेट एसेट की आ, आ, खेती में इतना बुरा वाला रुपया नहीं मिलता था। तो टीएमसी का लोग का जो करप्शन है उसका अपना थोड़ा डर भी है, पुलिस का डर भी है, और खुद ममता बनर्जी थोड़ा
1: मैं
0: पहले
1: पूछता
0: वो
1: हूं
0: फेसबुक
1: स्वयंप्रभा
0: लाइव
1: जी,
0: में
1: सुन
0: आया
1: रहे हैं
0: था,
1: आप
0: बोला दल टूटने का
1: जो
0: शंका भी
1: पहले
0: है, खेती में इतना बुरा वाला रुपया नहीं मिलता था। तो टीएमसी का लोग का जो करप्शन है उसका अपना थोड़ा डर भी है, पुलिस का डर भी है, और खुद ममता बनर्जी थोड़ा
1: मैं
0: पहले
1: पूछता
0: वो
1: हूं
0: फेसबुक
1: स्वयंप्रभा
0: लाइव
1: जी,
0: में आया
1: सुन रहे हैं
0: था,
1: आप
0: बोला दल टूटने का
1: जो
0: शंका भी
1: पहले
0: है।
1: किया हुआ है उसके वजह से डर है। प्रसून जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि
0: एकदम एकदम
1: सीपीएम के
0: एकदम
1: कार्यकर्ता
0: बिल्कुल
1: क्लीन
0: सही,
1: थे कम से
0: अगर
1: कम,
0: पहले नहीं करेगा तो
1: और
0: डर
1: उनको वो डर नहीं था। टीएमसी की
0: नहीं था
1: दिक्कत
0: जी।
1: यह है
0: प्रसून
1: कि
0: जी
1: वो
0: अब
1: पार्टी का
0: मैं
1: पैसा
0: बोलूं,
1: और ये सारी चीज है, तो इसके
0: मैं
1: वजह से
0: बोलूं
1: वो
0: और हो
1: डर है,
0: गया
1: इसके लिए
0: ना,
1: भाग रहे इधर उधर।
0: जो जिस
1: जैसे शिप,
0: दोनों
1: अगर
0: ना ना
1: कोई
0: दोनों सब
1: जहाज जब
0: डरे,
1: कूदने
0: हाँ
1: लगता है,
0: जिनकी रीढ़
1: हाँ
0: की
1: तो
0: हड्डी,
1: कैसे
0: जो बात
1: कूदने
0: कह रहे हैं
1: लगते हैं लोग?
0: ऋतव्रत बनर्जी,
1: जिनकी
0: उसका खिलाफ एक महिला
1: अरे
0: घटित
1: प्रसून,
0: केस
1: अभी रुक
0: था
1: जाओ, अभी हो गया
0: सीपीएम
1: आपका
0: से
1: प्रसून।
0: निष्कासित किया
1: प्रसून
0: गया
1: जी आप
0: था,
1: रुकिए,
0: बाद
1: प्रसून
0: में वो टीएमसी में
1: जी,
0: शामिल हुआ,
1: अरे आप
0: सुनाई दे
1: सवाल
0: रहा है
1: मुझसे
0: कि
1: कर रहे हैं,
0: हाँ,
1: जवाब
0: 8
1: दीजिए।
0: साल बाद
1: एनालिसिस
0: उसका
1: दे रहे हैं ना
0: केस
1: स्वयं प्रकाश जी,
0: रिओपन होने जा रहा है
1: बोलिए स्वयं प्रकाश
0: और
1: जी बोलिए।
0: संदीपन
1: प्रसून जी
0: साहा
1: अब उनको
0: तो
1: जवाब
0: फिर
1: देने दीजिए,
0: आप
1: क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि
0: कंटिन्यू देखिए
1: आप
0: ना तो उनकी
1: सीपीएम का कैडर और आपके कैडर में फर्क बता रहे हैं वो।
0: और
1: नहीं नहीं कुछ लोग
0: संदीपन साहा
1: हैं
0: है
1: जो लोग आते
0: उसका
1: हैं,
0: पिताजी
1: सत्ता
0: प्रवक्ता
1: परिवर्तन होते
0: बने
1: फिर
0: हुए
1: बीच में
0: हैं।
1: बोलना शुरू कर दिए, प्रवक्ता
0: बिना
1: थोड़े पार्टी
0: प्रसून
1: के।
0: जी एक मिनट रुक
1: गौरव
0: जाइए,
1: भाटिया
0: वो
1: चुपचाप
0: बात कर
1: बैठे
0: रहे
1: आप
0: हैं,
1: बोल रहे हैं प्रसून
0: जवाब
1: जी,
0: दे रहे हैं,
1: अरे रुक
0: जवाब दे रहे
1: जाइए
0: हैं,
1: ना
0: एक मिनट
1: प्रसून
0: सुनो,
1: जी,
0: मैं
1: जवाब दो।
0: स्वर्ण कमल साहा
1: बोलिए
0: है
1: स्वयं
0: साहब,
1: प्रकाश जी।
0: करीबन 40 साल से जानता हूँ, लेकिन
1: अरे अरे
0: सीईओ जो
1: अरे
0: कोऑपरेटिव का साथ जुड़ा हुआ
1: आप
0: था
1: जानते हो, मगर
0: इवान
1: स्वर्ण
0: कमल
1: कमल
0: साहब
1: साहब
0: है
1: है
0: ना
1: ना दादा,
0: निदाना,
1: वो
0: वो
1: हुए
0: हुए
1: गए
0: गए
1: चीज,
0: थे इसके
1: स्वयं प्रकाश
0: कारण,
1: जी,
0: इवान
1: ओ
0: कमल का बेटा
1: दादा,
0: बना, वो
1: ओ
0: बेटा भी
1: दादा
0: तुरंत
1: दादा
0: हल्के में आ गया
1: दादा,
0: है, दोनों दोनों का जो विधायक दोनों को निष्कासित किया
1: तेरी
0: गया,
1: क्या,
0: दोनों विधायक का ई टेबल
1: आप क्यों
0: देदाना का
1: बुलाते हैं
0: कारण
1: बोलिए,
0: अलग
1: कोई
0: है।
1: पत्रकार। जरा प्रसून जी को शांत करिए प्लीज, प्रसून जी जरा एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए, अब वो जवाब तो दे दे। हाँ
0: आप सुनिए साहिल जी, आपका आज तक बहुत अच्छा चैनल है, लोग सुनते हैं, तो ऐसे अगर हम लोग रिपब्लिक भारत की तरह नहीं बोले तो ज्यादा बेटर है। अच्छी बात कही
1: बोलिए
0: कि वो
1: तो,
0: स्वर्ण कमल साह को जानते हैं 40 साल से। स्वर्ण कमल साह को टिकट किसने दी थी? ममता बनर्जी ने दी, पर उनके बेटे को टिकट ममता बनर्जी दी। अब वो जा रहे हैं, दीदी एक बात बोलती है कि दल में जो कर्मी होते हैं ना, जो लोग दरी बिछाते हैं, वो हमारी संपत्ति है, कर्मी अमार
1: नहीं मेरा सवाल
0: संपद,
1: कुछ और था
0: हमारे जो
1: स्वयं
0: नेता
1: प्रकाश
0: है वो
1: जी,
0: आएंगे जाएंगे,
1: मेरे
0: क्या
1: सवाल
0: फर्क
1: का
0: पड़ रहा
1: जवाब
0: है
1: दीजिएगा,
0: आपका जो, आप
1: मैं
0: बोल रहे हैं
1: मैंने
0: रुपया
1: आखिर में क्या बोला
0: मिलने
1: वो सुनिए ना।
0: की, आपका जो सवाल है वो रुपए की बात, जो जो डर डर तो डराया तो जा रहा ना सीबीआईडी से, जिनको डर लगेगा वो चले जाएंगे, जिनको मौत से डर लगेगा, जिनको संघर्ष नहीं करना है जीवन में, वो तृणमूल कांग्रेस में उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का
1: मैं
0: तो
1: एक बात
0: जीवन
1: और
0: ही
1: आपको कहूंगा
0: संघर्षमय रहा है, उसने तो वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका, संघर्ष किया,
1: गौरव भाटिया जी,
0: मार
1: आखिरी
0: खाए,
1: 20 सेकंड है मेरे पास,
0: शरीर की हड्डियां तोड़ दी गई वामपंथियों ने,
1: 20 सेकंड गौरव
0: तोड़
1: भाटिया
0: दी
1: जी,
0: गई,
1: आखिरी 20 सेकंड
0: बहुत
1: है
0: ही
1: मेरे
0: गई,
1: पास। 30 सेकंड
0: मगर
1: बहुत है, सुनिए
0: आज अभिषेक
1: दो बातें बताऊंगा।
0: बोलिए।
1: आप याद करिए जहांगीर खान, जो कि चुनाव से पहले कह रहे थे फालता सीट से पिक्चर अभी बाकी है, मैं दिखा दूंगा, और बाद में कहते मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, तो अब इसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? अरे गलत किया है, आज डरे हुए। और यहां प्रसून जी ने जो बात कही वो तो विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा? आक्रोश
0: डरा
1: है
0: कौन
1: जनता
0: रहा है,
1: में,
0: वो
1: ये
0: भी तो
1: बात हम भी
0: सवाल यहां
1: कह
0: पर
1: रहे हैं।
0: उठेगा, लेकिन आज की स्थिति में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हो गया 1 महीने के भीतर कि अचानक बंगाल के भीतर ममता बनर्जी का हुक्म नहीं चल रहा है उन्हीं के पार्टी पर? चर्चा करते रहेंगे हम, इस पर नजर भी बनाए रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल, आप देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा। राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

काम आसान बनाने आई टेक्नोलॉजी अब काम छीनने लगी है और यही बदलाव धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने कंपनियों की स्पीड बढ़ाई है, खर्च घटाया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा खतरा भी खड़ा हो गया है जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा है। एक नई स्टडी में इस खतरे को ऑटोमेशन ट्रैप नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार कंपनीज AI के जरिए लागत घटा रही हैं, लेकिन छटनी होने पर लोगों की कमाई भी घटती है, जिससे बाजार में कुल खर्च कम होने लगता है। यानी जिस टेक्नोलॉजी से कंपनीज फायदा कमा रही हैं, वही आगे चलकर उनके बिजनेस पर दबाव बना सकती है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनीज चाहकर भी इस रेस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसकी वजह है कि एक कंपनी ऑटोमेशन करती है तो बाकी को भी करना पड़ता है। ये ऑटोमेशन आर्म्स रेस बन चुकी है, जिसके असर से जरूरत से ज्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। इसका असर धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। कम नौकरियां मतलब कम सैलरी, और कम सैलरी का सीधा असर बाजार की डिमांड पर दिखता है। इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफा बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस पर असर पड़ सकता है। जमीन पर भी इसके संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। दरअसल 2025 में 1,00,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छटनी हुई। इनमें आधे से ज्यादा मामलों में AI नौकरी जाने की वजह रही। 2026 में तो महज 4 महीने में ही 92,000 से ज्यादा लोग नौकरी गंवा चुके हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा ताकतवर होगा और कंपनीज के बीच मुकाबला बढ़ेगा, ये समस्या और गहरा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कई तरीके भी सुझाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं UBI, रीस्किलिंग और कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी देना, ऑटोमेशन पर खास टैक्स लगाने का सुझाव जिससे कंपनीज छटनी के असर को भी ध्यान में रखें। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ये कदम पूरी समस्या को सुलझा नहीं पाते। यानी टेक्नोलॉजी की दौड़ में संतुलन बनाए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। AI ने काम करने का तरीका तो बदल दिया है, लेकिन अगर यही रफ्तार जारी रही तो इसका असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो कमाता भी है और खर्च भी करता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: আনুগত্য পোষণ করি
1: দ্বারাই
0: ভয় বা
1: পক্ষপাত বিবেচনার নগর।
2: হাল বঙ্গাল বস ইতনা হ্যাঁ কি সত্তা কাজ জশ্ন হ্যাঁ কী সিয়াসত বেহাল কী শুভেন্দু কে 35 মন্ত্রিয়ো বালি ক্যাবিনেট কে সামনে সত্তা কা কালীন বিছা হ্যায় তো কী সড়ক কে সংগ্রাম সে নিকলি সিয়াসত কে বজুদ পর সওয়াল মন্ডরা রহা হ্যায়। 4 মই তক বঙ্গাল কি সত্তা কি কমান সম্ভালনে বালি মমতা ব্যানার্জি বড়ি পরিশানি মে ঘিরতি দিখ রহি হ্যায়। এক তরফ টিএমসি কে নেতাও পর তাবড়তোড় পুলিশ কা অ্যাকশন হো রহা হ্যায়, উপর সে টিএমসি কে নেতাও পর জনতা কা হিংসক রিয়াকশন দিখ রহা হ্যায়। ইধর টিএমসি কে সাংসদ আপস মে ভি সংগ্রাম করে বৈঠে হ্যায়, আর আব টিএমসি কে নেতাও নে খুলেআম পার্টি আলা কমান কে খিলাফ মোর্চা খোল দিয়া। পহলে তো টিএমসি কে পঞ্চায়েত সে পার্লামেন্ট তক স্তর কে নেতা ইস্তিফে পর ইস্তিফা দেতে রহে। अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 66 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे। अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे। फिर मामला संज्ञान में आया तो बंगाल पुलिस की CID ने फर्जी दस्तखत के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 सदस्यों की जांच टीम की निगरानी DIG रैंक के अफसर को मिली। पूछताछ का समय अभिषेक बनर्जी को दिया गया, लेकिन अभिषेक ने खराब सेहत का हवाला दिया, पेश नहीं हुए। अब TMC कहती है अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से लेकर अदालत तक की जाएगी, लेकिन TMC ये नहीं बता रही कि कार्यकर्ताओं नेताओं के उठते भरोसे और पार्टी की एकता के बिखरते तिनके को कैसे संभाला जाए। दरअसल नई सरकार TMC के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। TMC के पंचायत और वार्ड स्तर के नेताओं से लेकर सांसदों तक के दफ्तरों में सरकारी सामान मिल रहा है। इसे लेकर BJP का कैडर आक्रामक है। विरोध प्रदर्शनों की आज TMC के नेताओं तक पहुंच रही है, लेकिन उन्हें नेतृत्व की मदद नहीं मिल रही। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख, बकरीद पर गौमाता का चित्र पोस्ट करने वाले शोधों को दी चेतावनी, कहा ऐसी दुर्गति होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी, संगठन में फेरबदल के लिए दिल्ली बुलाए गए बड़े नेता, समय से पहले चुनाव की सुगबुगाहट। ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन, दो बागी विधायक रीता ब्रता और संदीपन निष्कासित, दोनों ने टीएमसी अध्यक्ष के फैसले पर उठाए थे सवाल। सीबीएसई 12वीं नतीजे के रीवैल्यूएशन पोर्टल खुलते ही हुआ ठप, छात्रों में बड़ी बेचैनी, बोर्ड ने कहा जल्द होगा एक्टिव। और त्विशा की मौत का सीन रिक्रिएट कर 3 घंटे बाद घर से निकली सीबीआई, दबी पुतले की गिरिबाला ने खोली फंदे की गांठ, समर्थ ने नीचे उतारी लाश।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ने टेंडर की कंडीशंस, जो शर्तें थी वो हल्की कर दी। एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए आपने नियम लगातार क्यों बदले?
1: द इंटायर प्रोसेस हैज बिकम अ बिजनेस। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी।
2: ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्वड।

साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। नीट पेपर लीक और उसके बाद सीबीएसई के ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की गड़बड़ी के मसले ने हंगामा खड़ा कर दिया है। आपने देखा होगा कि परीक्षा की अग्नि परीक्षा पर मेरे सवालों ने कैसा तूल पकड़ा, लेकिन सवाल अगर व्यवस्था पर है तो जवाब जरूर आने चाहिए। व्यवस्था में सरकार है, एनटीए जैसी संस्थाएं हैं और वो सारे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में परीक्षा के लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जब उस दिन हमने ये कार्यक्रम किया और उसके बाद से कई लोग काफी बवाल खड़ा कर रहे थे, तो आज हम उनको दिखाएंगे कि जिन तीन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है उनमें से एक कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति। इसीलिए आज मैं फिर वो सवाल उठाने आई हूं कि क्यों नीट सीबीएसई पर सिस्टम क्लीन बोल्ड नजर आता है। सबसे पहले बात सीबीएसई के वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन पोर्टल की, जो आज भी खुल नहीं सकी। इसकी वजह से बच्चों में एक बेचैनी, एक परेशानी बढ़ रही है। सीबीएसई ने 2026 से 12वीं के छात्रों की आंसर शीट को डिजिटल मार्किंग की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन कुछ छात्रों ने जब अपनी दोबारा मार्किंग के लिए अप्लाई किया तब एक नया सच सामने आया। छात्रों की कॉपी स्कैनर से स्कैन करने की बजाय खबर यह आई कि मोबाइल फोन से स्कैन करने जैसे गंभीर आरोप लगे। क्वेंट नाम की जिस कंपनी के पास इसका ठेका था वो सवालों में आए, तो फिर मुद्दा टेंडर का उठा, कई सारी खामियां उसमें आई। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम की पोल खोलने में तीन लोगों के नाम अहम है। पहला नाम है वेदांत श्रीवास्तव। 17 साल के वेदांत ने अपनी आंसर शीट के रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। 23 मई को एक्सपोज के जरिए बताया कि री इवैल्यूएशन के लिए दी गई फिजिक्स की आंसर शीट उनकी है ही नहीं। वेदांत को पहले सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। 25 मई को सीबीएसई ने एक्सपोज में उनकी चिंता को जायज माना। फिर आइए निसर्ग अधिकारी। निसर्ग अधिकारी 19 साल के एथिकल हैकर हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में कई गंभीर सुरक्षा खामियां हैं। निसर्ग के मुताबिक पोर्टल का लिंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था और जावास्क्रिप्ट कोड की जांच के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आई। उन्होंने दावा किया कि ओटीपी सुरक्षा को बाईपास किया जा सकता था, पासवर्ड रीसेट करना बहुत आसान था, किसी भी एग्जामिनर के अकाउंट में एंटर कर उसकी पहचान का इस्तेमाल किया जा सकता था। फरवरी 2026 में उन्होंने इन खामियों की जानकारी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टिन को दे दी थी, लेकिन जब कई महीनों तक सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने मई 2026 में इस पूरे जानकारी को कर दिया। और आखिर में तीसरे 18 साल के सार्थक सिद्धांत ने एक्सपोज के जरिए खुलासा किया कि किस तरह से टेंडर की शर्तें क्वेम्प्ट कंपनी को फेवर करती हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये तीनों बच्चे खुद स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि नीट सीबीएसई दोनों ही परीक्षा सिस्टम कैसे फेल हो चुकी है। आज बच्चे बेचैन हैं क्योंकि आज भी पोर्टल नहीं खुल पाई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। एक्सपोर्ट पर उन्होंने आंसर शीट के रिवैल्यूएशन के लिए लगने वाली फीस पर सवाल उठाते कहा जेब कतरों से सावधान। देखिए।

0: The entire process has become a business.
1: हमारी जो आंसर शीट थी वो स्कैन कॉपी में किसी दूसरे बच्चे की भेज दी गई थी. अगर आपका रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने चाहिए थे, यू कैन अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन. रीचेकिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है कि पहले फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द डिजिटल स्कैंड कॉपी ऑफ द आंसर शीट.
0: एंड उसको उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती
1: है. यस, 100 rupees पर सब्जेक्ट. देन आफ्टर दैट जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ पर मार्क्स बढ़ने चाहिए थे बट सीबीएसई ने या फिर चेकर ने आपको उतने मार्क्स नहीं दे रखे. देन यू हैव टू अप्लाई फॉर टोटलिंग. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे लगता है कि मेरे टोटलिंग में एरर ही नहीं है बट वो मैंडेटरीली मुझे 100 rupees वापस देने पड़ेंगे टोटलिंग. Then after that totaling, I have to apply 25 rupees per question.
0: And how many questions normally will someone apply for?
1: I guess abhi jo problem aa rahi hai, they can apply for all the questions.
0: So how many total questions?
1: 35 around right. Questions hote hain.
0: So huge amount of money.
1: Huge amount of money is involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation?
2: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं. हमारे साथ प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में जुड़ गए हैं. आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आशुतोष जी उस दिन भी हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे. उनको भी काफी लोगों ने अपने अपने तरीके से घेरने की कोशिश की है, वो अपने बात पर अडिग हैं. हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रमोद शर्मा वाइस प्रेसिडेंट हैं जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के नोएडा में. अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं. और करण सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एक एथिकल हैकर हैं. उनसे भी समझेंगे कि आखिर क्या कमजोरियां हैं, क्यों ये पोर्टल इस तरह से आसानी से हैक हो गया. क्योंकि अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा आरोप यही कि 30 मिनट के अंदर इस बच्चे ने, 19 साल के बच्चे ने इस पोर्टल को हैक कर लिया. वो एग्जामिनर बनके उसके सामने सारे 18 लाख बच्चों के आंसर शीट्स थे, उनकी सारी निजी जानकारी थी. ये कितनी बड़ी विफलता है इस पर चर्चा करेंगे. और पहला सवाल भी मेरा यही है आपके सामने प्रदीप भंडारी जी कि आप मतलब हम सब कुछ कर लेंगे देश में, हम ब्रह्मोस मना लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम एग्जाम नहीं करा पा रहे, पोर्टल हैक हो रहा है, ये क्या है, ये बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है.
3: देखिए अंजना जी, मैं इसका जवाब राजनीतिक नहीं ट्रू इंटेंट से देना चाहूंगा. जितना आप बच्चों के प्रति कंसर्न है या देश के अंदर लोग कंसर्न है, उतनी सरकार भी कंसर्न है. और सरकार की नीति और नियत साफ है और सरकार कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है. जो सामने नए फैक्ट्स आए जिन ये बच्चों ने जिस अपने पूरे के पूरे एडुकेशन को इस्तेमाल करके, साइंटिफिक टेंपर को इस्तेमाल करके जो फैक्ट सामने लगाए हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी आज जो है मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है. और अगर इसमें कोई भी जो भी दोषी होगा, कोई भी ऑफिशियल दोषी होगा जिसकी वजह से भी ये चीज होगी, तो इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. इस पे जो इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन का करना था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स और साथ में तमाम एक्सपर्ट्स, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और डिजिटल इंफ्रा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जिसके साथ भी इंश्योर किया जाएगा कि जून 21 के अंदर ऐसी कोई स्थिति ना हो. आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी हम जून 21 तक सरकार के साथ पूरी तरीके से हैं. द गवर्नमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी. दिग्विजय सिंह ने भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी को आज चेयर किया था जिसमें भी कहा गया था कि हम सरकार के साथ में हैं और इस समय के अंदर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जिसमें समाजवादी पार्टी
2: पूछे जा रहे हैं. पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब आपको भाई वायुसेना की जरूरत पड़ रही है.
3: मैं वायुसेना पे जवाब दूंगा. गांव-गांव एक चाइना का पब्लिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जून फर्स्ट वीक के अंदर होता है, जहां पे हिंदुस्तान से 10% कम बच्चे बैठते हैं, लेस 1/10 बैठते हैं. वो डिफेंस, वायुसेना सबका इस्तेमाल करते हैं. ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन के अंदर अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स किए जा सकते हैं. हमको जज इस बात से करना चाहिए कि क्या जून 21 के अंदर लीक फ्री एग्जामिनेशन होता है कि नहीं. हम कॉन्फिडेंट है कि होता है, इसके प्रति सरकार जो है कंप्लीटली सजग है. अब अगर कोई पॉलिटिकल सवाल है तो मैं उसका जवाब किसी भी राजनेता का पॉलिटिकल सवाल का जवाब भी दे सकता हूं. आपने जिस कंपनी की भी बात करी उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दी गई है. यह कंपनी को तेलंगाना से लेकर कर्नाटका में मेरे पास टेंडर का, इनको जो टेंडर दिया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, वो सब भी मेरे पास टेंडर की इस वक्त जो डॉक्यूमेंट है, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा. जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर करी है. मैं इस पर पॉलिटिक्स नहीं करूंगा. बच्चों को ऑपोजिशन को अपना राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. समय उनका पढ़ाई करने का है. अगर कोई भी चीज है, सीबीएसई ने नंबर भी इशू कर दिया है 1800118004, इसके ऊपर आप बता सकते हैं. वी आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और वी आर ओपन टू फीडबैक.
2: कांग्रेस ने किया इसलिए आपने भी कर दिया?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं.
2: ये जस्टिफिकेशन,
3: कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. इसीलिए इंक्वायरी ऑर्डर करी. हम जानना चाहते हैं कि किसके तरफ से ये हुआ है. कोई भी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे. वी आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट. मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ. मैं यहाँ पे अकाउंटेबल हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ.
2: ठीक है. इससे पहले कि मान्य मेहमानों के पास जाएं, एक बार सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं. हिमांशु, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई है जिसमें एनटीए की तरफ से डीजी भी गए थे, क्या कहा गया है और सख्त शब्दों में मुझे पता चला है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, सवाल पूछे गए हैं और कहा है कि ऐसी नौबत आ रही है कि वायुसेना को शामिल करना पड़ रहा है।
4: देखिए, वायुसेना को लेकर सवाल पूछे गए, उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाए कि भविष्य में इस तरीके की कोई चीज ना हो। 21 जून को जो एग्जाम हो उसके लिए जो है छात्रों में विश्वास बढ़े, इसके लिए कोई चाहे शिक्षा मंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से जो है ओपन लेटर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और क्या आगे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ये पेपर लीक नहीं होगा। उसके साथ साथ जब अनौपचारिक बैठक शुरू होने से पहले अनौपचारिक बातचीत हुई तो सत्ता पक्ष की तरफ से कई सांसदों ने कहा कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में इस मुद्दे को संसदीय समिति में बार बार लाना ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर जो चेयरमैन है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है, हम इस चीज को लेकर जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब जब भी नीट या अन्य एग्जाम होंगे उसमें किसी भी तरीके से पेपर लीक या ये कहें कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तमाम चीजों को लेकर जो है पूरी बहस हुई है जिसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक सिंह वो वहां मौजूद थे, उनके साथ साथ
2: हायर एजुकेशन
4: सेक्रेटरी अभिषेक सिंह वहां मौजूद थे, उनके साथ साथ जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है विनीत जोशी वो वहां पर थे और साथ ही साथ लीगल फ्रंट से डॉक्टर गर्ग वहां पर थे जिन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन कि आगे से ऐसी चीज ना हो। और उसके साथ साथ कई सदस्यों ने यह भी कहा कि इस पर जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को भी साथ लेकर जो है वो चलना होगा, चलना चाहिए जिससे पेपर लीक के मामले आगे ना हो। उसके साथ साथ प्रिंटिंग और एक्सपर्ट्स और जो भी लोग पेपर सेट कर रहे हैं उन वो इन हाउस होने चाहिए, उनको बाहर से आउटसोर्स ना किया जाए, इस तरीके के इंतजाम जो है वो होना चाहिए।
2: ठीक है, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मेहमानों को दिखा दीजिए आज अनुराग भदौरिया जी, पॉलिटिक्स से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि कैसे एग्जाम्स को सही ढंग से कराया जाए। मतलब उन बच्चों के बारे में तो सोचकर भी स्ट्रेस होता है कि भाई जिनके लिए अभी भी पोर्टल को खोल पाना मुश्किल हो रहा है।
5: तो आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर में जिस तरह की सरकार चल रही है वो एजुकेशन सिस्टम को कितना हल्के तरीके से लेते हैं। अभी तो आपके सामने देखा ही था नीट का पर्चा किस तरह से रद्द हुआ, लीक हुआ, कितने बच्चों ने सुसाइड किया। तो सरकार को तो इसकी गंभीरता समझना चाहिए था। सरकार तो डिजिटल इंडिया की बात करती है और डिजिटल इंडिया की बात करते करते डिजिटल व्यवस्था पे ना ध्यान देके वो प्रचार पे ध्यान दे रही थी। डिजिटल इंडिया करेंगे लेकिन डिजिटल की जो कहते हैं डिजिटलाइजेशन की जो व्यवस्था है उसको ठीक नहीं करेंगे। तो इसके मतलब सरकार प्रचार में ज़्यादा ध्यान देती है, डिजिटलाइजेशन को कितना मजबूती तरीके से किया जाए जिससे छात्रों को या लोगों को सुविधा मिले उस पर काम नहीं करती। उनका सिस्टम, अगर सिस्टम हैक हो जाएगा, सिस्टम को इस तरह से कोई हैक कर लेगा या सरकार के जो टेंडर होते हैं या जो भी जिस तरह से टेंडर सरकार कर रही होगी, क्या सरकार उनके जो जिनको टेंडर दे रही है उनके सिस्टम को या उनकी क्वालिटी को या उनकी एबिलिटी को चेक भी करती है या उनको टेंडर दे देती है उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, एक बात। दूसरी बात आप बताइए, जिस तरह का 13,000 कॉपियां मैनुअल देखनी पड़ रही हैं जो कि उनको कंप्यूटराइज देखना था, उनको स्क्रीनिंग के माध्यम से देखना था, जो स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे थे अब उनको मैनुअल देखना पड़ रहा है। और उसके बाद से मजेदार बात है कि आपका वो अपने रिवेल्यूएशन के लिए अगर दोबारा से बच्चे डालते हैं तो उनकी फीस भी ले ले, मान गलती भी आपकी, आपकी टेक्निकल फॉल्ट आपकी, जो टेंडर जिसको दिया है आपने, जिस कंपनी को काम दिया उसकी गलती, मतलब सरकार की गलती। उसके बाद फीस भी कौन भरेगा? वो बच्चा भरेगा। और बच्चे कौन? वो बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए या वो किस तरह से फीस इकट्ठा करते थे। इसलिए कह रहे हैं ना, ये सरकार प्रचार वाली है, डिजिटलाइजेशन का प्रचार करती है लेकिन व्यवस्था नहीं सुधारती। इसलिए कहते हैं ना ये प्रचार वाली सरकार है, डिजिटल इंडिया की तो बात करती है लेकिन डिजिटल इंडिया की व्यवस्था को नहीं सुधार सकती है, ये बाकी चिंता की बात है। और जैसे आप लगा एक बार थोड़ी हो रहा है, अब देखो नीट की परीक्षा 2024 लीक हुई, 2026 में लीक होगी, अब कह रहे हैं एयरफोर्स के माध्यम से होगा, तो ये आईपीएस आईएएस जूनियर अधिकारी ये फिर क्यों है? सरकार जब कुछ कर ही नहीं पा रही है तो हमें लगता है सेना को ही दे दीजिए, फिर सेना ही सारा काम करे। सस्पेंड करो आईएएस आईपीएस, क्यों रखें आपने सेवरी पेन को, किस बात के लिए रखें जब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं?
2: जवाब दीजिए, फिर मैं आने मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रदीप जी,
3: दो पार्ट्स में जवाब, अनुराग भाई की बात का दो पार्ट्स में जवाब दूंगा। पहला, मैं जिस भी बच्चे को जो भी सांपे है मैं आज तक के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, उनको जितना फीडबैक लिखना है लिखिए, हमारी और आपकी दोनों की मानसिकता यही है कि 21 जून को ये कंप्लीटली फुल प्रूफ हो। अब मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं। 2004 में सीबीएसई का पेपर लीक होता है, 6 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, हर साल लीक होता है, एक बार भी उन्होंने रिफॉर्म नहीं किया था। 1986 से लेकर 2013 में भले वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हो गया, प्रोग्राम डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस 2010 की हो गई, 2013 की टास्क फोर्स एचआरडी की हो गई, सबने कहा था यूनिफाइड टेस्टिंग एजेंसी बननी चाहिए एनटीए, जो उन्होंने बात किया कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट का, आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्ली गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त जून 21 को कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट नहीं हो सकता, वो अगले साल से होगा, जिसकी बात एचआरडी मिनिस्ट्री ने खुद ने करी है। तो यहां पर राजीव राय जो खुद इनके कमेटी के सदस्य थे वो ये खुद कह रहे हैं कि जून 21 तक सरकार को पूरी सुविधा देनी चाहिए और सरकार के साथ में रहना चाहिए। अनुराग जी अगर यहां पर पॉलिटिक्स करना चाहते तो मैं भी कह सकता हूं 13 साल में हरदीप पेपर लीक हुआ था यूपीए में, यूपी ने ना सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करी थी, कांग्रेस पार्टी के लोग पाए गए थे, पर ये समय नहीं है भाई, आपको अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है जैसे वो एथिकल हैकर्स ने करा तो करिए, हम आपके साथ।
2: इसीलिए हमने करण सैनी को आज शामिल किया जो कि खुद एक एथिकल हैकर है। करण आप बताइए कि ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि निसर को हमने कोशिश की है, दरअसल हमें बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि कल वो बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि मतलब हैक करना, यहां तक उन्होंने दावा किया निसर्ग ने कि वो उनके पास 18.5 लाख आंसर शीट्स का एक्सेस आ गया था, वो मार्क्स भी बदल सक रहे थे वेबसाइट पर घुसकर, पोर्टल पर जाकर।
6: जी करें तो वैसे जो इनिशियल इश्यू था जो निसर्ग ने फरवरी में ढूंढा था वो 5 वल्नरेबिलिटीज का था। जो पहली जो थी मास्टर पासवर्ड की, वो तो कोएम्प्ट ने साइलेंटली फिक्स कर दी थी उनके रिपोर्ट के बाद, बट बाकी जो इश्यूज हैं वो अभी 85 डेज तक के लिए जारी थे जब तक उनकी ब्लॉग पोस्ट नहीं गई, उसके बाद भी काफी दिनों के लिए वो वल्नरेबिलिटीज ऑन थी। वो पहला इशू था। उसके बाद से अब निसर्ग के अलावा काफी और लोग आ चुके हैं बाहर, जैसे एक तीर्थ परमर करके है, उन्होंने भी एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी है जिससे वो कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं सीबीएसई के और ऑनमार्क के पोर्टल में, एंड ये सिर्फ सीबीएसई तक लिमिटेड नहीं है, बिकॉज ये ऑनमार्क पोर्टल बाकी स्टेट एग्जामिनेशन एजेंसीज भी यूज करती हैं एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में भी यूज होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये फेलियर एक तरीके से मतलब सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये फेलियर सर्ट इन का है, जो जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया का, उनका फेलियर है, ये फेलियर सीबीएसई का है, ये फेलियर उस प्राइवेट कंपनी का भी है, तो एक जगह कहीं फेलियर नहीं हुआ है, एक्चुअली हर जगह फेलियर हुए हैं जहां पर इन चीजों को पकड़ के रोक दिया जाना चाहिए था।
2: ये सिस्टम फेलियर क्या है, और निसर्ग तो कह रहे हैं कि उन्होंने 25 फरवरी को इसको फ्लैग भी किया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।
6: जी तो जो सर्टेन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको निसर्ग ने रिपोर्ट भेजी थी, ये काफी साल से लोग कह रहे हैं कि जब वहां पर कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट होती है तो वहां से कोई रिस्पांस इतना एक्टिवली नहीं आता। 2019 पे एक्चुअली मैंने इस पे एक पेपर भी लिखा था, इसमें काफी लोग जिनको मैंने इंटरव्यू किया था उन्होंने बोला था कि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसका कोई सही तौर से उनको उपाय नहीं मिलता।
2: तो ये जी करण, ये आज क्यों नहीं खोल पा रहे हैं पोर्टल, ये बच्चे आज क्यों नहीं, मतलब अब क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको क्या लग रहा है?
6: जी अब अभी जाकिर से बात है, अगर ये पोर्टल को अगर आप सही करना चाहेंगे और आईआईटी से एक्सपर्ट बुलाएंगे तो उस पोर्टल को थोड़े टाइम के लिए डाउन करना पड़ेगा। तो मेरा असम्पशन ये होगा कि टू फाइंड कि इश्यूज क्या है, तो उस वजह से अब वो पोर्टल इनएक्सेसिबल बना दिया गया।
2: ये बच्चे तो इससे बड़े परेशान हो रहे हैं, चूंकि आप कॉलेज स्कूल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं प्रमोद शर्मा जी, तो आपसे एक जल्दी से रिएक्शन इस पर, क्योंकि बच्चे तो इससे बड़े परेशान हो रहे होंगे।
7: पहले तो मैं तारीफ करना चाहता हूं इन तीन बच्चों की, वेदांत, निसर्ग और सार्थक, कि ये भी हमारे ही स्कूलों के पढ़े बच्चे हैं और इन्होंने कितनी होशियारी से सब कुछ पता कर लिया है और ये भी पता लगा लिया कि इसमें इसके पीछे एक वेंडर एजेंसी है जो जिसका, और ये तो दिख ही रहा है कि वेंडर एजेंसी की वजह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, जो परीक्षक थे जो मार्किंग कर रहे थे ऑनलाइन उनको दिखाई नहीं दिया, तो जब दिखाई नहीं देगा ठीक से तो फिर मार्किंग कैसे होगी, और इतने सारे अगर पेपर्स हैं तो आई फैटीग और ये सब भी होगा, और उनका तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास बस एक इस बात की कमी है इस पूरे केस में कि हमने ये मानने में देरी करी कि हाँ हमारी गलती हुई है, और गलती हुई है तो बच्चों की को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजों का सुधार होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2014 में भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, मैं तब प्रिंसिपल था और हमने ऑनलाइन मार्किंग तब भी की थी 2014 में. तो इसका मतलब हमारे पास नो हाउ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, हम दूसरों को टेक्नोलॉजी देते हैं.
2: में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी?
7: कोई शिकायत नहीं आई थी. अच्छा, वो पायलट था तो पायलट कम था. लोगों के लिए था, कुछ लोगों
2: अच्छा,
7: के लिए
2: कम लोगों के लिए था पायलट था. ठीक है, डॉक्टर रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं ये सीबीएसई के. सर आपकी नजर से क्या समझे ये सिस्टम फेलियर के बारे में, आप क्या बताएंगे?
8: ये पूरी तरह से सीबीएसई का जो सिस्टम है फेलियर है. और ये पहले एक बार जो अभी शर्मा जी भी बता रहे थे उस समय फेल हो गया था ये सिस्टम, शायद शर्मा जी को पता नहीं होगा. मैं इंटरनल सिस्टम में जो है मैं 8 साल रीजनल हेड रहा हूँ, 7 से 8 साल, और बेंगलुरु भी मैंने देखा है. और ये सीबीएसई की गलती है, इसके अलावा किसी की गलती नहीं. सीबीएसई ने इसको लापरवाही में रखा हुआ है. इवन दो फिजिक्स की कापियां चेक करने जो है साइंस का टीचर जा रहा है जो क्लास 10 तक पढ़ाता है, हिंदी की कापियां चेक करने के लिए क्लास 10th तक पढ़ाने वाला इंग्लिश का टीचर और दूसरे सब्जेक्ट का टीचर जा रहा है. तो ये तो बिल्कुल गलत.
2: बोलिए बोलिए सिंह साहब
8: जी. तो अभी इसमें क्या है कि इसमें जो जितने भी काम हुआ है, जो आंसर शीट्स जो पहले तो 15 दिन डिले हुआ, भेज ही नहीं पा रहे हैं. फिर उसके बाद अभी भी देखिए कि स्थिति है कि अब टीचर्स को कुछ प्रिंसिपल्स को कहा जा रहा है कि सब आप इसकी तारीफ में लिखिए. ये ऐसा किस तरह का मजाक है बच्चों के साथ. 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, करीब 1 करोड़ कापियां है, और उसकी स्कैनिंग की व्यवस्था उसको पूरे भारत में बांट देना और फिर ये आनंद फानंद में एक रिजिडिटी के तहत इसको शुरू कर देना, ये तो बिल्कुल गलत है. और मैं तो ये कहूंगा कि हालांकि मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूं, मुझे बीआरएस लेना पड़ा, परंतु स्थिति इतनी दयनीय है, आपकी काम की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता.
2: ठीक है, आप प्रदीप जी रिस्पॉन्ड कीजिए. सरकार है,
9: इसीलिए तो सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है. इसीलिए सरकार ने ये इंक्वायरी ऑर्डर करी है कि सीबीएसई के अंदर वो कौन से ऑफिशियल्स हैं जिसके तहत ये बड़ी सी लापरवाही हुई है. एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है. इनफैक्ट ये सब इसीलिए हो पा रहा है अंजना जी क्योंकि देश के अंदर पहली बार एक लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024. इसके पहले देश के अंदर एक लीक को प्रिवेंट करने का एक्ट तक नहीं था 70 सालों में, कि अगर पेपर लीक हो जाता था, कॉपी हो जाती थी. उत्तर प्रदेश के अंदर तो एंटी कॉपी एक्ट को समाजवादी पार्टी की सरकार ने हटा दिया था, मतलब बच्चे चीटिंग करे पेपर लीक हो कोई कार्रवाई नहीं हो. अभी इस वक्त हम लॉ लेके आए जिसके तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है. और रणवीर सिंह जी बिल्कुल, हम लोग ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, तभी जाके हम फाइंड करना चाहते कौन है जिसको इस एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा सके.
8: बिल्कुल सही बात है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं कि सरकार में मेरा केवल ये कहना है कि बात सरकार की, बात राजनीति की नहीं है. बात यह कि बच्चों के भविष्य के लिए हमने ऐसे आनन-फानन में बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी प्रॉपर जो है प्रोग्राम चलाए हुए हमने ऐसा काम कैसे कर दिया.
2: बिल्कुल, और इसीलिए आज सीबीएसई से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं. आशुतोष जी, आपको और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी अब मैं लाना चाहती हूँ. नीट 2026 पेपर लीक के आरोपियों के बारे में बताती हूँ. आज जिन 3 आरोपियों को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उनमें एक नाम है डॉक्टर मनोज शिरूरे का. मनोज शिरूरे लातूर में पेशे से डॉक्टर है. उन पर 3 छात्रों को केमिस्ट्री का लीक पेपर दिलाने में भूमिका का आरोप है. आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह पुणे के कोचिंग सेंटर में, ये अगला आरोपी हर्षद कुमार शाह पुणे के कोचिंग सेंटर में फिजिक्स का टीचर. उन पर आरोप है कि उन्होंने फिजिक्स का लीक पेपर हासिल किया और 15 जून तक जेल भेजी गई. जो मनीषा संजय हवलदार है पुणे के इंस्टीट्यूट सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम करती थी, उन्हें एनटीएनए एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था. आरोप है कि उन्होंने फिजिक्स के पेपर को अप्रैल में लीक किया था. अब मैं इस बात पर भी चर्चा करना चाहती हूं, और मेरे साथ एक प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल भी है, जिनको हम लोग इस पूरी बहस में शामिल करना चाहते हैं और सीबीएसई से भी जुड़े लोग हैं. एक जो पूरा साठ गांठ स्कूल्स कोचिंग माफिया का चलता है इस देश में, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोचिंग से ही रिलेटेड, कोचिंग सेंटर में ही काम करने वाले आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह पुणे के कोचिंग सेंटर में फिजिक्स का टीचर है और उन्होंने फिजिक्स का पेपर लीक करने का उन पर आरोप है. आशुतोष जी,
10: देखिए मैं तो इस मूल्य ना तो मैंने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है ना ही जो सारी जानकारी हमें अखबार के माध्यम से मिल रही है उस पर, लेकिन मेरा बहुत पहले से ये बिल्कुल स्पष्ट मामला है कि कोचिंग सेंटर्स दरअसल हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ये एक तरीके का धंधा बन गया है, एक तरीके से इसके पीछे बड़े पावरफुल लोग होते हैं। इसलिए मैं इस संभावना, इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं कि ये पेपर लीक होने में इनमें से किसी की भूमिका हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए ना तो मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम ले रहा हूं ना मैं किसी के बारे में बातचीत कर रहा, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि इसमें इसके पीछे कुछ बहुत पावरफुल लोग होंगे, इसलिए हर साल ईयर दर ईयर कई ऐसे एग्जामिनेशन है जिसके लगातार पेपर लीक होते रहे, और अगर बार बार अगर पेपर लीक हो रहे हैं, अगर उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पा रही है या कार्रवाई होने के बाद भी अगर रोक नहीं लग पा रहा, तो क्या माना जाए? यही माना जाएगा कि दरअसल इसके इसमें इतने पावरफुल लोग हैं जिनको ना तो कानून का डर है ना जेल जाने का डर है, और वो उनको पता है कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो फिर वो पकड़े नहीं जाएंगे, वो मैनेज कर लिए जाएंगे, और जो पकड़े जाएंगे वो बेसिकली फुट सोल्जर्स होंगे। इसलिए मैं सिद्धांत के तौर पर मेरा साफ तौर पर मानना है कि कोचिंग सेंटर्स के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि ये जो बेचारे गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए ये स्थितियां बिल्कुल नहीं होती, वो पैसे नहीं दे सकते, वो वहां जाके हॉस्टल में नहीं रह सकते, वो वहां जाके कोचिंग नहीं कर सकते, और अंत में वो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हो जाते हैं उन तमाम फैसिलिटीज से। जरूरत यह है कि आज हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो भी स्कूल्स हैं, उनको मजबूत किया जाए, वहां अच्छे टीचर लाए जाए, वहां अच्छे प्रिंसिपल हों, अच्छी किताबों पर फोकस किया जाए, न कि कहीं कुंजी निकल रही है कि आप 10 पे कर दीजिए, कहीं कुछ और चीजें निकल लें, शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर दीजिए, इसकी वजह से हमारा सिस्टम बर्बाद हो रहा है।
2: ठीक है, एक जल्दी से प्रमोद जी आपसे एक कमेंट मैं इस पर चाहती हूँ, क्योंकि आप एक स्कूल को लीड करते हैं, उसके बाद मैं हर्ष जी के पास जाऊंगी, क्योंकि ये चिंता कई लोगों की है। प्राइवेट स्कूल्स में कई ऐसे टीचर्स हैं जो खुद अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, और वो क्लास के बच्चों को कहते हैं कि आप वहां पर भी आइए पढ़ने के लिए, तब आपके मार्क्स है ना।
11: आप सही कह, पर जो असली बात वो भी ये भी है कि ये कोचिंग सेंटर्स की वजह से आज एक डमी स्कूल्स की जमात खड़ी हो गई है, और सीबीएसई को भी पता है कि ये डमी स्कूल है, यहाँ आना जरूरी नहीं है, आप इस जगह पे अपनी अटेंडेंस दीजिए और जाइए और कोचिंग सेंटर में पढ़िए आराम से, और पूरी जमात है, मतलब इतने स्कूल है इस तरह के, और ऑब्वियसली जिसका धंधा यही है कि उसे कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट कराने हैं, तो वो कोचिंग अगर अगर पेपर आउट करने में कोई कोई तरकीब हो सकती है, पैसे दे के कुछ हो सकता है, तो वो जरूर ये सब कुछ करेगा। पर इस पूरे मामले में जो ये ओएसएम की बात हुई है, तो मुझे पक्का लग रहा है कि ओएसएम की तैयारी ऑनलाइन, ये जो ऑनलाइन इवेल्युएशन हुआ, इसके लिए हमने टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं की ठीक से, हमने इसके लिए जो तैयारी हमें चाहिए थी वो हमें पूरा टाइम नहीं मिला, या जो भी कुछ हुआ, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, ना टीचर्स में कमी है, ना स्कूल्स में कमी है, सीबीएसई के पास भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन सब चीजों पे काम किया।
2: ठीक है, आप सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, आपसे भी मैं रणवीर जी एक इस पर, लेकिन उससे पहले मुझे बताया जा रहा है, ये आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह जो की पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड है, उन्होंने क्या कहा है बैठक के बाद।
12: हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई।
2: तो इस पर बड़ी चर्चा हो रही थी, कुछ खबर आई कि उन्होंने पीएम पर भरोसा जताया है, फिर जयराम रमेश ने इससे साफ इनकार किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब उन्होंने कहा है कि पीएम इसका कर रहे हैं तो फिर उनको उम्मीद है कि ठीक से एग्जाम्स होगा। रणवीर जी जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर, ये जो पूरे सिस्टम में हम देख रहे हैं, जैसा उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, वो ग्लोबल जेनेसिस स्कूल से है और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ऐसे हैं टीचर्स जो कहते हैं तो डमी है स्कूल, तो डमी है, यहाँ बस अटेंडेंस लगा दो, पढ़ाई कोचिंग सेंटर में करना है और मोटी फीस देनी है।
8: मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा, मैं देहरादून से हूँ और देहरादून में अगर आप देखेंगे डिफेंस कोचिंग के नाम पे, बाकी स्कूल की कोचिंग के नाम पे, और सब तरह की कोचिंग की वजह से इतना गुमराह किया जाता है पेरेंट्स को, बच्चों को, कि सुबह 11 बजे से लेके 10 बजे से लेके बच्चे जो है स्कूलों में नहीं जाते, बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उनके एक बाकायदा ड्रेस होती है, और इवन दो स्कूलों के आगे कोचिंग, और बहुत सारे स्कूलों के साथ टाई अप है, और स्कूल के आगे कोचिंग सेंटर्स की गाड़ियां खड़ी रहती है और स्कूल में ही इटसेल्फ कोचिंग चलता रहता है,
2: उसके मतलब ऊपर कोई की भी फीस नहीं दे, फीस दे दीजिए तो स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और बाकी कोचिंग की फीस देकर वहां पढ़ाई कीजिए, तो एक डुअल अर्निंग हो गया उनका।
8: इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, स्कूल को इंफ्रा की जरूरत नहीं है, अगर स्कूल अपने इनसाइड इन हाउस कोचिंग कराता है तो वो फीस भी ले लेते हैं। दूसरी बात ये कि बस केवल कोचिंग वाले का स्कूल का एड्रेस पे कोई कोचिंग का नाम नहीं होगा। दूसरी बात इसमें जो जो बेसिकली बात है कि कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं कोचिंग वालों के ऊपर। दूसरा ये है कि जो ये OSM जो लागू किया गया है और OSM के बाद पूरे भारत में एक रीजन की कॉपी दूसरे रीजन में, तो इसको एटलीस्ट ट्रायंगल करते और OSM जो है पहले छोटे सब्जेक्ट्स में लगाते जिसमें कि 1000 बच्चे हों, 1500 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, एट ए ग्लैंस जो है सारे पे लगा दिया और उसके बाद वो कापियां समय पर नहीं पहुंची और फिर ब्लर थी और जिन जगहों पे पहुंची वहां टीचर क्वालिफाइड नहीं थे। अगर पिथौरागढ़ में कापी गई है या बिजनौर में गई है तो वो वहां पर कैसे जो है उस टीचर को पता ही नहीं कि मैं किस तरह से ऑपरेट करूं, किस तरह से इसको देखूं, तो उसने अपना जैसे जो बिला कर दिया बाकी छुट्टी।
2: मतलब तीसरी बात यह है कि CBSE को कोई भी चीज लागू करें, कल्पना भी करना मुश्किल है डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं कि सोचना भी मुश्किल है कि भाई बच्चों के साथ इस तरह का काम हुआ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जल्दी से आपका कमेंट इस पर। और साथ ही आशुतोष जी के पुराने साथी हैं संजय सिंह, जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो बाकायदा एडवोकेट किया था इस बात के लिए कि आप कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के लिए सरकार कानून लाए, आज सब इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं।
13: नहीं अंजना जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कोचिंग सेंटर और ये जो सेलिब्रिटी टीचर्स का नेक्सस है, करोड़ों में जो डील होती है, उसने देश की शिक्षा व्यवस्था को जो पहले से ही बहुत गड़बड़ हो गई थी उसको और विशेष साइकिल में डाल दिया है। विशेष साइकिल हम लोग आमतौर पर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं भारत में, लेकिन एजुकेशन भी विशेष साइकिल में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर इस कदर चिंतित होकर वायुसेना, सेना या दूसरी तरह की, तो इसका मतलब आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री की पीड़ा कितनी बड़ी है। और मैं ये मानता हूं फिर तो शिक्षा मंत्रालय नकारा हो गया, फिर तो अक्षम हो गया, इसको यहीं से शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को इस तरह से छात्रों का भविष्य चिंता में दिख रहा है और उनको ये करना पड़ रहा है, तो आप जरा सोचिए। अब इसके आगे की जो बात है, जब कोई ये कहता है ना, जैसे अभी किसी ने कहा, रणवीर जी ने कहा कि वो CBSE में रहे और पहले वो टीचर्स को पता नहीं होगा कैसे कॉपी, कैसे ऑन स्क्रीन मार्किंग वो इस्तेमाल करेंगे। इसी देश में नरेंद्र मोदी की ही सरकार में कोविन पोर्टल पर CHC और PHC में हमने लोगों को वैक्सीन लगवा दी। इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इतने करोड़ों रुपए का स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। और कॉपी जिसको पता है कि तय लोग, सर्टेन नंबर आपको, सर्टेन सेट ऑफ पीपल है ना, वो कोई अलग से तो आएंगे नहीं, वो टीचर होंगे, वो स्टाफ होगा, वो CBSE के लोग होंगे। और अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये सीधे सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, पाप कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रोकी नहीं जा सकती है। ठीक है, आज सेना वायुसेना 21 जून के लिए कर लें, लेकिन इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम हमें हमारे सिस्टम के बीच से निकालना पड़ेगा। और अभी तक क्या कोई बड़ा आरोपी, बड़ा अपराधी जो होगा वो पकड़ा गया है? कोई एक टीचर, कोई एक कोचिंग

0: एक्सरसाइज भी अगर कर रहे हैं उसको भी हम पॉजिटिव स्पिरिट के अंदर लेके इसको रेगुलेट करेंगे, इसको रिफॉर्म करेंगे, पर अभी हमें सिर्फ 21 जून के ऊपर हमारा पूरा फोकस है, उसके लिए जो हमें करना है हम करेंगे।
1: हर्षवर्धन जी हाथ
2: उठा। अंजना जी बड़ी गंभीरता से मैं एक बात कहूं, हाँ। भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने बच्चों को लेकर इतनी संवेदनशीलता से अपने प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में काम किया, हाँ। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो कोई तो जवाबदेह ठहराया जाएगा ना। ये प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता तो वो परीक्षा पे चर्चा सामान्य इनिशिएटिव नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बच्चा जिसकी कॉपी धुंधली हो गई जिसका नंबर नहीं मिला। हम लोग आज के समय में जो एक रेस है, हर माँ बाप हर बच्चा पीड़ित है, स्कूलों में चर्चा हो रही, जो बच्चे नहीं है वो हमारे बच्चे लौट जाते हैं तो डर रहे हो करें कि इस बार का सीबीएसई पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसे कॉपी चेक हो गई। जवाबदेही जाकर कहां रुकेगी जब तक ये तय नहीं होगा। यकीन मानिए कोई इस तरह से फिर
0: हर्षवर्धन जी, आप जर्नलिस्ट और मैं भाजपा का प्रवक्ता बाद में, मैं और आप भारतीय पहले, जितनी आपको संवेदना बच्चों के प्रति है उतनी मुझे भी बच्चों के प्रति संवेदना, उतनी हमारी सरकार को भी बच्चों के प्रति संवेदना है। वहां पे जवाबदेही रुकेगी हर्षवर्धन जी, जहां पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कहेगी जहां पे जवाबदेही रुकनी चाहिए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहेगी जवाबदेही नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जुलाई 27 को वापस से मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। हम कहीं नहीं भाग रहे, द बक विल स्टॉप वेयर द सुप्रीम कोर्ट विल वॉन्ट इट टू स्टॉप।
1: ठीक है, जल्दी से आशुतोष जी दो लाइन का, फिर मैं उनके पास जाऊंगी।
3: नहीं देखिए, ये कह देना कि पुरानी सरकारों के जमाने में भी सीबीएसई के पेपर लीक हुए और उससे आज का कोई जस्टिफिकेशन पैदा नहीं होता, बहुत सीधी सी बात है, दिस हैज टू स्टॉप। और मैं हर्षवर्धन जी की इस राय से सहमत हूं, द बक शुड स्टॉप एट सम टेबल। ये बच्चों का भविष्य, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जा रही है और हम अभी पेपर लीक को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और सिर्फ एक नीट का सवाल होता तो बात समझ में आती। लगातार कभी बिहार के अंदर होता है, कभी झारखंड के अंदर होता है, कभी यूपी के अंदर होता है, बच्चे सड़क पर उतरते हैं, उनको लाठी चार्ज उनके ऊपर होता है, उनकी पिटाइयां होती हैं, क्यों बच्चा कहां जाएगा? वो बच्चा हमारा बच्चा है, आपका बच्चा, सबका बच्चा है। तो मेरा कहना है कि कुछ भी करिए लेकिन इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और सरकार की तरफ से ये खुलकर एश्योरेंस होना चाहिए।
1: अर्गम जैन मुझे बताया जा रहा है, एक छात्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन, ठीक है कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वो। जल्दी से अनुराग जी आप अपनी बात कीजिए, काफी देर से आप हाथ उठाए हुए हैं। अनुराग जी सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि अब तो रास्ता खोजना है, जो ये जून में भी एग्जाम होना है वो अच्छे से हो।
4: देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे तो एक बात अच्छी लगी हर्षवर्धन जी ने बोली कि शिक्षा मंत्रालय जो है नाकारा है। जब शिक्षा मंत्रालय नाकारा है तो इसकी रहने की जरूरत क्या है, जब यहाँ आर्मी को ही सब कुछ करना है, एक बात। दूसरी बात, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस में होता था, समाजवादी में होता था, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन बार बार आप राजनीति कर रहे हो, कर्नाटका का नाम ले रहे हो, तेलंगाना का नाम ले रहे हो, राजनीति तो आप ही कर रहे हो ना, जबकि हमारे साथी साफ साफ कह रहे हैं कि 20 लाख स्टूडेंट इसमें बैठते हैं, 1 करोड़ कॉपियां होती हैं, हिंदी का टीचर है तो उसको देखने के लिए, जांचने के लिए कोई और टीचर जाता है, तो इसमें आपने अगर कार्रवाई पहले कर दी होती तो शायद नहीं होती। 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब नीट का पेपर लीक हुआ था, इस तरह की बातें कर रहे थे कि नहीं नहीं हम आएंगे इस बार, देखना किस तरह से होगा, कार्रवाई होगी, सीबीआई इंक्वायरी करती है, सब पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, अगली बार से कोई ऐसा करके दिखाए, लेकिन 2026 में फिर लीक हो गया, फिर रद्द हो गया। तो सवाल उठता है कि आप गंभीरता से इस पे विचार कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं? आप बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति मत कीजिए। जैसा कि कहा, बार बार पेपर लीक होते हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या इस तरह के सीबीएसई या नीट के पेपर हो, आप उसमें गंभीरता से काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप उसमें राजनीति कर रहे हो, ये दिक्कत की बात है।
1: अगर हम आपकी कमी गिनाते हैं तो आप हमारे 1900
0: अनुराग भाई, मैं इस पे राजनीति नहीं कर रहा, अगर राजनीति कर रहा होता तो जैसे आपने एंटी कॉपिंग एक्ट को हटाया था, मैं हटाता बिल्कुल नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा अनुराग भाई, जो आपने इस वक्त कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जून 21 तक सरकार का पूरा साथ देने की जरूरत है, टाइम बहुत कम है, मैं बच्चों के साथ हूं, जिम्मेदारी मेरी है, गंभीरता मेरी है। आप एक हाथ जोड़कर निवेदन करिए राहुल गांधी को कि बच्चों को गुमराह करने का प्रयास ना करें, जून 21 के बाद अपनी राजनीति कर ले, क्योंकि अनुराग भदौरिया और प्रदीप भंडारी हो, सबके लिए मैटर यह करता है कि बच्चों का एग्जाम प्रॉपरली हो, हम बाद में राजनीति करते रहेंगे अनुराग भाई, इसके लिए पूरा साल पड़ा है।
1: बोलिए अनुराग जी बोलिए।
4: अरे भाई 65 पर्चे 2019 से 2024 के बीच में लीक हो गए, विपक्ष जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हैं।
0: अनुराग भाई 2024 के बाद में राधाकृष्ण कमेटी बनी थी, राधाकृष्ण कमेटी
1: अर्गम जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्गम एक छात्र हैं, अर्गम आप बताइए कि एक स्टूडेंट के तौर पर आज पूरा देश आपको सुन रहा है आज तक के जरिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या बताएंगे? क्योंकि हमने दिखाया है कि कैसे 3 छात्रों ने मिलकर सीबीएसई की पूरी पोल खोली, उन्होंने पूरा सच देश के

0: सामने रखा, पोर्टल हैक का हो रहा है, टेंडर को लेकर कई शिकायतें हैं, वहीं तीसरी तरफ पेपर ही बदलने का आरोप।
1: यस मैम, ये सब तो है कि सीबीएसई में इस बार इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं चेकिंग में अब क्या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट है स्कूल में, मतलब टॉप 5 के मार्क्स कंसिडर होते हैं। उसमें से मेरे हर सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स है, एक में इवन 100 आउट ऑफ 100 भी है, पर उन्होंने इंग्लिश में 33 मार्क्स दे रखे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत था। मतलब फिर मुझे एक तरह से अंदर से बिलीव ही नहीं हुआ कि 33 मार्क्स, क्योंकि मैं इंग्लिश का टॉपर भी था स्कूल में। उसके बाद मैंने अपनी शीट के लिए अप्लाई किया, शीट पहले तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज रही कि साइट खुली नहीं, मोस्टली मेरी खुली थी 21 में, 21 के में खुलने के बाद 24 पे मेरे पास शीट आई
0: तो
1: थी।
0: आपने रिवैल्यू के वैल्यूएशन के लिए डाला है,
1: मैं अभी तक साइट ही नहीं खुली रिवैल्यूएशन के लिए, मेरे
0: साइट
1: पास
0: नहीं
1: अभी
0: खुल रही है। हाँ ठीक है ठीक है, पूरा बताएं।
1: हाँ, जब मैंने वो शीट देखी अपनी, शीट ही पूरी गलत चेक थी। आधा तो जैसे पूरी शीट ही अनचेक थी मेरी, आधा तो शीट अनचेक थी। ठीक है, उसके बाद
0: एक सेकंड
1: नंबरिंग।
0: अर्गम, आपको टोक रही हूं। तो आप ये बता रहे हैं कि आपने शुरू में अपना आंसर शीट एक्सेस किया, और
1: यस
0: जब
1: मैम।
0: आपने एक्सेस किया तब आपने देखा कि आधा आंसर शीट तो चेक ही नहीं था।
1: मैम जैसे आई ऑप्शन डाल रखा, जैसे व्हाट्सएप पे हम मैसेज सीन करके इग्नोर कर देते हैं ना, ऐसी जैसे शीट ही इग्नोर कर दी हो मेरी।
0: सोचिए।
1: और मैम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 से मैंने अपना शुरू करा था एग्जाम पेपर, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 की मार्किंग कर रखी है। वन वन क्वेश्चन तो एक वन मार्क्स का रहता है,
0: हाँ
1: और क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स का है। तो मैम बताइए, पूरी मार्किंग गलत कर रखी है लास्ट तक। इवन
0: अच्छा,
1: मैम मैं शो कर दूं अपनी
0: हाँ
1: शीट एक बार आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए, अगर आपके पास है उसका कॉपी है या कुछ है तो आप दिखाइए
1: यस
0: ऑन
1: मैम
0: स्क्रीन, और प्रदीप जी को उनके साथ दिखा दीजिए। प्रदीप जी
1: जी
0: प्लीज आंसर,
1: जी मैम,
0: इन
1: मेरे
0: दोनों को
1: पास
0: दिखा दीजिए।
1: सॉरी
0: हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए, फुल
1: अरबन
0: फुल
1: डे
0: स्क्रीन दिखा दीजिए प्लीज दोनों
1: जो
0: को।
1: जी
0: दिखाइए अर्गम।
1: मैम, जो ये टिक लगा रखे तो मेरी स्कूल की टीचर ने चेक करी थी बाद में।
0: हाँ
1: उसके बाद मैम आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये,
0: हाँ जी,
1: और क्वेश्चन नंबर 1 की मार्किंग है इधर।
0: प्रदीप जी को
1: जवाब
0: दिखाइए उनके
1: देता
0: साथ।
1: हूं।
0: प्रदीप जी जवाब
1: देखिए, जो अर्पण अर्पण इस वक्त कह रहे हैं, इसी के लिए
0: अर्गम।
1: अर्पण सरकार ने ये इंक्वायरी ऑर्डर करी कि हुआ कैसा है। क्योंकि एक से अंजना जी समझे, जो ओएसएम है इसमें भी चेक टीचर ही करता है। इट्स जस्ट दैट दी आंसर शीट जो होती है उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, उसके बाद जाकर टीचर ही उसको स्कैन करता है, कोई कंप्यूटर स्कैन नहीं करता है। तो बिल्कुल अर्पण की बात यहां पे सही है कि वो कैसे हो गया कि किस टीचर के हाथ में ये चीज आई थी, जिसको डाउनलोड करना था, स्कैन करने का, अपलोड करना था, और उसने ये पेज छोड़ा। ये इसी के लिए फाइंड आउट करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ में डीआईसी इन सबकी कमेटी बनाई है, और अर्पण जैसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ईमेल आईडी इशू किया गया है जिसमें जाके अपनी बात कर सकते हैं। जब ये पोर्टल वापस से आएगा, अर्पण कैन अपलोडेड एंड
0: नहीं सर,
1: दिस
0: बात
1: वन।
0: वो नहीं है सर, बात ये कि टीचर ने एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ा तक नहीं मेरा।
1: बिल्कुल
0: मतलब
1: सही
0: मैं
1: कह रहे
0: क्वेश्चन
1: हो
0: नंबर
1: आप, हम
0: सेवन
1: फाइंड
0: कर
1: आउट
0: सकता हूँ
1: करेंगे
0: क्वेश्चन
1: अर्पण
0: नंबर
1: की
0: वन
1: कौन
0: के।
1: से टीचर है जिसने नहीं किया, निश्चिंत रहो आप 100%।
0: सर ये तीनों क्वेश्चन अनचेक हैं, लास्ट के
1: एब्सोल्युटली
0: आप देख
1: यस,
0: सकते हैं मेरे पूरे।
1: एब्सोल्युटली यस, वी विल फाइंड इट आउट, दैट्स व्हेन इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड।
0: ठीक है, तीन व तीन पेज जो उन्होंने चेक ही नहीं किए, मार्क नहीं किए, वो भी दिखाइए
1: सर
0: अर्गम।
1: मैंने दोनों पेजेस हैं,
0: हाँ
1: ये तो टीचर ने बस, इन्होंने आई ऑप्शन डाल रखा था जहां पे आई ऑप्शन दिख रहा है ना आपको ये, और बाकी ये टीचर ने चेक रखे स्कूल की, जो लास्ट में आपको दिख रहा है कोने में, ये पेज पूरा अनचेक था, ये वाला पेज भी पूरा अनचेक्ड
0: ये आपने फिर अपने जब स्कूल में टीचर से पूरा चेक कराया तो उन्होंने आपको कितने मार्क्स दिए?
1: है मैम 90+, क्योंकि मैम वो खुद सीबीएसई एग्जामिनर है, उन्होंने खुद ओएसएम पे अपनी शीट भी चेक करी है, मतलब और बच्चों की।
0: और यानी आप ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से दिखाइए ये वाला जो शीट का लास्ट पेज आप दिखा रहे हैं, जब आपके क्लास टीचर ने, मतलब जो आपको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, जब उन्होंने इसकी मार्किंग की फुल पेज फुल आंसर शीट की, तब
1: यस मैम।
0: उन्होंने देखा कि इसमें 90+ मार्क्स आपको मिल रहे हैं।
1: मैम
0: और
1: देखिए, मैं
0: जब
1: जैसे इसमें आई ऑप्शन डाल रखा है, एक तरह से इग्नोर ही कर रखा है वाला पेपर तो।
0: हाँ बिल्कुल, और जब उन्होंने आपको, मतलब ओएसएम के थ्रू जो मार्किंग हुई उसमें 3-4 शीट्स छोड़ दिए और 33 मार्क्स देकर रफा दफा कर दिया है।
1: मैम एक तरह से मुझे तो ये लग रहा है उन्होंने बस पास करना था, बस 33 मार्क्स बिना चेक करे बस एक तरह से डाल के दे दिए कि हाँ बस पास हो गया बच्चा। मैं मतलब पूरी शीट ही गलत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट से मार्किंग है, जो कि 1 मार्क्स का होता है। मतलब मैं पूरी, मेरा तो सारा वही हो गया खराब इसमें इंग्लिश के चक्कर में।
0: और आपके
1: अगर
0: अगम
1: मैं
0: बाकी बाकी जितने आपके पेपर्स हैं उन सब में आपकी मार्किंग सही है?
1: मैम अकाउंट्स में एमसीक्यूज में 0.5 मार्क्स, जबकि हम एमसीक्यूज या तो 0 मिलते हैं या 1 मिलते हैं, 0.5 दे रखे हैं।
0: सॉरी, एक बार
1: और
0: रिपीट कीजिएगा प्लीज।
1: मैम एमसीक्यूज या तो 1 मार्क्स का होता है, मतलब 1 मार्क्स मिलते हैं। सही
0: हाँ
1: गलत है तो 0 मिलेंगे, पर
0: हाँ
1: हम 0.5 मार्क्स दे रखे हैं।
0: एमसीक्यू में,
1: हाँ, और मैम 1 MCQ मेरा सही है, उसमें भी पता नहीं उन्होंने क्यों काट रखा है, उसमें तो 0 ही दे रखे हैं। मेरा सही MCQ आंसर स्कीम से ही मैच कर रखा है मैंने। और मैम मेरे फ्रेंड्स भी, उनकी भी शीट में बहुत दिक्कत आई, एक तरीके से उन्होंने लिख रखा है, मतलब सब वो कर रखा है। और अगर मैम मैं अपनी इकोनॉमिक्स की बात बताऊं, मैंने 1 क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट, तो मैंने देखा नहीं था करते टाइम पेपर, तो मैंने वो लास्ट में कर दिया था अपना क्वेश्चन, तो मैंने वहां पे मेंशन भी कर दिया था कि मतलब ये वाला मेरा लास्ट में है मैम। उनके बाद उन्होंने लास्ट में भी वाला ऑप्शन डाल रखा है वाला, कि वो चेक ही नहीं करो उन्होंने मेरा।
0: चेक ही नहीं किया है।
1: मैम एक तरीके से मैनुअल चेकिंग का फायदा रहता है, जो हमारी फीलिंग्स रहती है जो हम पेपर में लिखते हैं और एक्सप्रेशन, वो सब हम दिखा पाते हैं। ऑन स्क्रीन में अगर हम खुद भी हो, हम भी नहीं कर पाएंगे चेक अगर अपनी शीट भी देखे हम। मैम इसलिए तो मैंने हार्ड कॉपी निकलवाई, अपनी शीट हम कैसे चेक कर पाएंगे मैम स्क्रीन पे मैम, क्योंकि डीपली देखना पड़ता है एक एक वर्ड का मतलब, क्योंकि हम इंग्लिश में तो हर वर्ड के अलग मतलब निकल जाते हैं, अगर हम पोएम की बात करें तो उसमें सब अलग निकल जाता है
0: और
1: मैम
0: आपके
1: पूरा ही।
0: फ्रेंड्स की भी आप बात आप बता रहे थे, अगर उनके साथ अगर कुछ ऐसा कुछ अलग सा चीज हुआ है जो आप बता सकें, क्योंकि मुझे लगता है प्रदीप जी भी नोट्स बना रहे हैं और कम से कम सीबीएसई एनटीए जैसी जो ये बोर्ड्स हैं इनको थोड़ा सा इन बच्चों की बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए कि क्या क्या
1: एक फ्रेंड
0: गलतियां
1: की तो
0: उनसे
1: मेरी
0: हुई
1: मिस
0: हैं
1: थी,
0: जो।
1: एक
0: हाँ
1: फ्रेंड की
0: बोलिए
1: तो शीट भी
0: बताइए।
1: मिस थी, अभी वो वेदांत आप बता रहे थे, वो मेरा फ्रेंड ही है।
0: अच्छा वेदांत आपका फ्रेंड है और वेदांत
1: हाँ
0: का तो पेपर ही मिसिंग था ना।
1: यस मैम। और मैम बाकी मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ भी मतलब मिस मार्किंग कर रखी है, जो उसने सही लिख रखा है उसको भी उन्होंने गलत कर रखा है। बाकी परसों हमारी राहुल सर से मीटिंग भी हुई थी, हमने अपनी बात भी रखी, उन्होंने भी समझी। और मैम जो NSUA के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ना विनीत, वो वरुण चौधरी सर, उनका ही मतलब हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहा, उनकी वजह से हमारी मीटिंग हो पाई, मतलब उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट कर रखा है, उनके रेगुलर हमारे पास कॉल आते हैं, हर चीज करते हैं मतलब।
0: और ये आप दिल्ली के ही स्कूल से हैं, दिल्ली स्कूल से हैं,
1: नो मैम बड़ौत, तो बागपत है डिस्ट्रिक्ट,
0: बागपत। अच्छा बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं,
1: बड़ौत
0: ठीक
1: बड़ौत
0: है ठीक है। और
1: बड़ौत
0: कितने बड़े कितने स्टूडेंट्स हैं आपके साथ उस स्कूल में जिन्होंने एग्जाम दिया होगा इस बार?
1: मैम अराउंड 12 के 150 होंगे,
0: 150
1: 150
0: होंगे और 150 में से कितने बच्चों को शिकायत है अगर रफली आप बता पाए अगम?
1: मैम रफली। तो मेरा ऐसे सबसे मिलना तो नहीं हुआ, जिन जिन से मिलना है सबको ही दिक्कत है, मतलब सबको अपने मार्क्स से दिक्कत है कि इतने नहीं आ सकते मैम। अगर मैं
0: प्रदीप जी
1: बताऊं
0: रिस्पॉन्ड कीजिए आप, क्योंकि देखिए बच्चों बच्चों ने और हाँ बोल बोलिए अगम।
1: मैम, मेरे टॉप 5 के 93% बैठ रहे थे, पर मैम जैसे इंग्लिश कंपलसरी होता है, वो लेना जरूरी होता है, तो मैम वो
0: बिल्कुल
1: सीधा 85% हो गई, एट्टी
0: सीधे नीचे ले आएगा पूरा परसेंटेज।
1: फाइव
0: नहीं,
1: परसेंट
0: अभी तो
1: मैम
0: पोर्टल खुलना ही खुलना है और ये आप लोगों का रिड्रेसल तो होना ही होना चाहिए मिस्टर भंडारी। हाँ
2: 100% गवर्नमेंट ने, अर्पण और तमाम स्टूडेंट्स ने जो फीडबैक लिखा है इसके आधार पे एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर करी है सीबीएसई के ऊपर। हमने भी 10th का एग्जाम दिया अंजना जी, हमने भी 12th का एग्जाम दिया है, हम समझ सकते हैं कि किस किस दिक्कत से ये लोग अंडरगो कर रहे हैं, और इसके ऊपर 100% कौन से वो टीचर्स थे जिसने सही नहीं किया। बात रही ओवरऑल ओएसएम के प्रोसेस की, तो ये पास से हर कमिटी ने इसके बारे में रिकमेंडेशन किया है, उसके ऊपर भी सरकार ने कार्रवाई ऑर्डर करी, जिसमें हम नहीं कर रहे हैं, आईटी मद्रास, डीआईसी और तमाम एक्सपर्ट्स जो इसको देखने वाले हैं, जिसके तहत एक प्रोफेशनल सोल्यूशन निकाला जा सके।
0: अरगम आपने अपनी बात कह दी है, अंत में कुछ एक लाइन दो लाइन आप बोलना चाहेंगे?
1: मैम बस लास्ट में ये कि जिन बच्चों को दिक्कत है अपनी कॉपीज, उनकी एक तो मैनुअल चेकिंग वो अच्छे से हो, मतलब पूरा डीपी से हो चेकिंग, मतलब कंपेंसेटरी मार्क्स भी दे जाए, जो बच्चे आरटी और
0: वो
1: फेल
0: यही
1: पे
0: कह रहे हैं
1: टच।
0: कि मैनुअल चेकिंग हो, आप सबको मैनुअल चेकिंग चाह रहे हैं बच्चे
1: यस मैम
0: ज्यादातर।
1: मैनुअल
0: हाँ
1: चेकिंग, मैं ये
0: मैनुअल चेकिंग।
2: फीडबैक आगे, मैं इनका ये फीडबैक आगे पहुंचा दूंगा, पर जो सीबीएसई के तरफ में जिस तरीके की दिक्कत हुई है, एक नंबर भी इशू किया गया है 1800118004, इस नंबर के ऊपर कॉल करके और ऐसी दिक्कतें आप बता सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी तरीके से संज्ञान ले रही है कि सीबीएसई के किस ऑफिशियल्स या किस लार्जर लेवल के ऊपर ये दिक्कत हुई है।
0: हाँ
1: मैंने बहुत बार मिला, वो बिजी जाता है, नंबर उठता ही नहीं।
2: हाँ तो एक ईमेल आईडी भी है अपन, जिस ईमेल आईडी को सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल हैंडल पे भी लिखा है, रिजल्ट cbse2026@cbse.in करके, वो ईमेल आईडी जो है वो भी आप अगर चेक कर लेंगे उस पर हो जाएगा।
1: मेल भी कर रखी है, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया उनका।
2: नहीं, उस पर रिप्लाई आएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इतने सारे
1: सर 10 डेज
2: रिस्पॉन्सेज आ
1: हो
2: रहे
1: गए।
2: होंगे, जरूर आएगा, ये आप जो फीडबैक दे रहे हैं उसी फीडबैक के आधार पर एक इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है।
0: ठीक है, आप
1: yes,
0: सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगम आपका भी, क्योंकि आपने एक बच्चे के नजरिए से बताया कि इन परेशानियों का इस वक्त आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, आज तक लगातार आपके साथ है। और हाँ, अपनी आवाज हम बुलंद करते रहेंगे, अगर व्यवस्था में कोई भी कमजोर कड़ी है तो उस पर उंगली उठाते रहेंगे। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि बकरीद पर हिंदू बच्चे सूर्य की कुर्बानी लेने वाली सोच पर इतना सन्नाटा क्यों है? इसके बाद आपको नीट पेपर लीक का मुद्दा विस्तार से समझाते हुए बताएंगे कि युवाओं के सपनों के नाम पर चल रहा धंधा कितना गंदा है, और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अब यूरोप बदल रहा है और दंगों में चल रहा है। देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
8: घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी तबाके खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: समकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: हिंट बड़े आराम से
5: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
6: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
7: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू।
3: विमल बोलो जुबां केसरी।
8: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स 11 बिलियन व्यूज 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
9: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं खास तौर पर दलालों को पैसा देकर पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
10: ये माना जा रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में खासकर इन घुसपैठियों में एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोक के साथ तपस सिंह गुप्ता आज तक हाकिमपुर।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
6: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
7: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
9: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट, बड़े आराम से
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
5: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
2: विमल बोलो जुबां केसरी।
6: पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के दावों पर क्या सोचता है आम मुसलमान?
7: ये राजनीतिक जुमला है, और जो है यहाँ पे हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज्यादा है, तो इसके बाद अगर आप हमें भुई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू, जब से ज्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है। बांग्लादेशी अपने जगह पे है, वो अपना बॉर्डर क्रॉस के आ रहा है, वो हम लोग का राजनीतिक फेलियर है ममता बनर्जी का, जो उन लोग को यहाँ रोहिंग्या बोल के रखने के लिए छोड़ दिया कि रोहिंग्या है, या कहीं पर आकर के बर्मा से आके बस गया, उसको बांग्लादेशी आप करार दे दीजिए या बर्मा का लोग को करार दे दीजिए।
6: बांग्लादेश से लगते जिलों में मुस्लिम आबादी में विस्फोट के दावों पर क्या है बंगाल के मुस्लिम नागरिकों की राय? क्या बंगाल में किसी साजिश के तहत आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है? बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की दशकों पुरानी बीमारी को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या वोट के लिए बंगाल में अवैध घुसपैठियों को आने दिया गया? पश्चिम बंगाल हो या फिर असम, बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में घुसपैठ सबसे आगे रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हर नेता ये साबित करने में लगा रहा कि ममता घुसपैठियों को बसा रही हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना वोट बैंक मानती हैं। बीजेपी ने इस बार बंगाल जीतने के लिए कई रणनीति पर काम किया, जिसमें एक रणनीति घुसपैठ से बंगाल की संस्कृति को हो रहे नुकसान की थी। इस नैरेटिव को फैलाने के लिए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया, जिसका नाम इश्तिहार रखने पर बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और इसे घुसपैठियों के बंगाल की संस्कृति पर पड़ने वाले असर से जोड़ा। ममता पर तुष्टिकरण का आरोप लगाने के लिए बीजेपी ने साल 1905 के लाल इश्तिहार शब्द की याद दिलाई और दावा किया कि ममता ने ऐसा सांप्रदायिक भावना पैदा करने के लिए किया है, क्योंकि उस समय ढाका के नवाब कलीमुद्दीन मुल्ला ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए हिंदुओं के प्रति विद्वेष फैलाने के मकसद से जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम भी इश्तिहार था। बंगाली बनाम पारसी की इस जंग का बीजेपी को कहीं न कहीं फायदा हुआ। बीजेपी की जीत के बाद जिस तरह से टीएमसी के दफ्तरों से आधार कार्ड मिलना शुरू हुए, उससे सवाल उठा कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों को बसाकर उन्हें बंगाल की योजना में हकदार बनाकर उनके वोट से जीतती रही?

0: सीबीएसई नीट परीक्षा फेल पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, अब देखिए सात तक मारिया के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

मैं शकील शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावी तैयारी में जुटे यूपी के सीएम योगी का सख्त बयान, गाय से लेकर गुंडागर्दी तक पर सीधी चेतावनी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती। संगठन पर सवाल खड़े करने वाले 2 विधायकों को दीदी ने निकाला बाहर। नीट और सीबीएसई परीक्षा में सिस्टम बुरी तरह फेल, रीवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक, अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने जताया सरकार पर भरोसा। जनता को लगा महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत भी 11 रुपए बढ़ी। ट्विशा केस में सीबीआई की तफ्तीश तेज, वारदात की जगह क्राइम सीन रिक्रिएट, दोनों आरोपी रहे मौजूद। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां आज सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लोकभवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल आरएन रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, लेकिन इन 35 मंत्रियों में 2 चेहरों पर ज्यादा चर्चा है।

0: इनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्हें मिलने वाला तोहफा कितना बड़ा है। ये शुभेंदु सरकार की नई मंत्री हैं। नाम है कलिता मांझी। कलिता मांझी लोगों के घरों में काम करके 2500 रुपए कमाती थी। पति प्लम्बर हैं, आर्थिक अभावों में पूरा जीवन गुजरा, लेकिन अब किस्मत पलटी है। शुभेंदु की सरकार में जिन 35 मंत्रियों ने आज शपथ ली है उनमें कलिता मांझी भी हैं। बारह बरस पहले बूथ लेवल पर कलिता मांझी ने बीजेपी ज्वाइन की थी। 2021 में भी चुनाव लड़ी थी मगर हार गई थी, लेकिन वोट 41% मिला था और इस बार टिकट मिला तो बर्धमान के आउस ग्राम से लगभग 12,000 वोटों से जीतकर पहली बार विधायक बनी। जब विधायक बनी तब भी भरोसा नहीं हो रहा था, अब मंत्री बनी है तब भी भरोसा नहीं हो रहा। शुभेंदु सरकार में दूसरा जो चेहरा मंत्री बना है वो ये है अशोक डिंडा। क्रिकेट के मैदान पर अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के स्टंप उड़ाने वाले अशोक डिंडा अब मंत्री बनकर राजनीति की पिच पर अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं।
1: हम पूरी तरह से जी जान दे के उसको दायित्व को संपूर्ण करने के लिए ट्राई करेंगे और बंगाल को आगे लेके जाने के लिए देखें।
0: अशोक डिंडा 2021 में विधायक बने थे मगर तब विपक्ष में बैठना पड़ा और अब सीधे कैबिनेट में एंट्री हुई है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु कैबिनेट में अब कुल 41 मंत्री हैं। इनमें 13 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 3 हैं और राज्य मंत्री 19 हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कलिता मांझी की ही है जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
2: पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने पहले ही इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा कर दी थी और अब इसे जमीनी स्तर पर लागू कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को रोजमर्रा की यात्रा में आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें शिक्षा, रोजगार और बाकी के जरूरी कार्यों के लिए भी आने जाने में सुविधा। टीएमसी सुप्रीमो ममता बैनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। टीएमसी ने दो विधायकों रीतब्रता बैनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से निकाल दिया है। ये कदम शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनके इस खुलासे के बाद हुआ, क्योंकि उन्होंने जिसमें उन्होंने बताया था कि इन दोनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से शिकायत की थी कि उन्होंने विपक्ष के नेता के नाम का प्रस्ताव करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
3: इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कॉम्प्लेन है कॉम्प्लेन जो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीप साहा, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए बहुत चिंता का बात है।
4: आज ही ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो ये बता दिया जो पार्टी के अंदर से वो दोनों कैसे स्पीकर को खत लिखा, अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है।
5: एक सिस्टम फॉलो करके ही एक प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है। इतना दिन का एक दल, पहले भी विरोधी में थे, फिर सरकार में आए, आज विरोधी में गए हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना ही भूल गए। ये मुझे बहुत ताज्जुब लगा। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं, फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
2: विधानसभा चुनाव में करारी हार का असर टीएमसी पर दिखने लगा है। टीएमसी में इंटरनल फाइट की खबर आ रही है, नेता बागी हो रहे हैं और ममता बनर्जी अकेली पड़ती दिख रही हैं।
6: ममता बनर्जी चुनाव क्या हारी, पार्टी में असंतोष और बगावत के शोले भड़क उठे। शनिवार को ममता बनर्जी ने विधायक दल की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के 80 में से 60 विधायक नदारद रहे।
7: अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई थी उनके कालीघाट स्थित आवास पर, और ये उनका कालीघाट स्थित आवास है जहां पर बैठक बुलाई गई थी। सारे विधायकों को बुलाया गया था लेकिन ज्यादातर विधायक अनुपस्थित रहे, लगभग 20 विधायक ही इस मीटिंग में आ पाए। ऐसे में मीटिंग ही नहीं हो पाई, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जो टीएमसी की ओर से कहा गया कि ज्यादातर विधायक जो प्रोटेस्ट चल रहा है विभिन्न जिलों में वहां पर हैं, इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता निकल नहीं पा रहे हैं, उनको निकालने के लिए उनकी मदद के लिए ज्यादातर विधायक इस मीटिंग में नहीं आ पाए, इसलिए इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा है आज।
6: सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? 80 में से 60 विधायकों की गैर हाजिरी को लेकर टीएमसी की तरफ से बेहद कमजोर तर्क आया।
8: हमारा पास, हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था, देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरस कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम भी जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है।
6: बात सिर्फ एक बैठक की होती तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन चुनाव में हार के बाद पार्टी की बैठकों से लगातार विधायकों की दूरी ममता की पकड़ पर सवाल खड़े कर रहा है। 6 मई को ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में 10 विधायक शामिल नहीं हुए। 19 मई की एक और बैठक में करीब 35 विधायक नहीं आए और फिर 31 मई की बैठक में 60 विधायक नहीं आए। चुनाव में शिकस्त के बाद टीएमसी में छोटे बड़े नेताओं के इस्तीफे की झड़ी सी लगी, तो सवाल यही है कि क्या चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर भी पकड़ ढीली पड़ रही है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
2: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा को लेक टाउन इलाके से हटा दिया गया है। मूर्ति की सुरक्षा कारणों से हटाया गया है। हाल के दिनों में आए तेज तूफानों के बाद प्रतिमा हिलने लगी थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार प्रतिमा को एक हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से सावधानी पूर्वक इसके चबूतरे से हटाकर ट्रक पर लाद दिया गया। 2027 के चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सियासी समीकरण साधने में लगे हुए हैं। सीएम योगी गाय को मुद्दा बना रहे हैं, हिंदुत्व को मुद्दा बना रहे हैं और पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर रहे हैं।
9: पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे।
2: क्या उत्तर प्रदेश में समय से पहले विधानसभा के चुनाव होंगे? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि यूपी में सभी दलों के बीच ये चर्चा जोर पकड़ रही है, लेकिन इस चर्चा की वजह क्या है ये देखिए।
6: यूपी में अगले बरस चुनाव है लेकिन चुनाव को लेकर अभी से तनाव है। यूं तो संभावित तौर पर 2027 में फरवरी और मार्च महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन चर्चा ये है कि चुनाव समय से पहले होंगे। और ये चर्चा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग को बताया गया है कि फरवरी से लेकर मार्च तक देश भर में बड़े पैमाने पर जनगणना का काम होगा, और अधिकारियों कर्मचारियों की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में चुनाव मुश्किल हो सकता है। इसी बिना पर सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की मीटिंग में नेताओं और कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है, इसलिए तैयार रहें।
10: चुनाव चाहे पहले हो, चुनाव चाहे बाद में हो, चाहे वो तय सीमा पे हो या जैसे भी हो, हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने विकास की राजनीति की है और पूरा विश्वास है जनता इस बार विकास को जिताएगी और नफरत की राजनीति को हराएगी।
6: बीजेपी के भीतर भी इस बात की चर्चा चल रही है कि हर हाल में वक्त से पहले अगर चुनाव हो तो उसकी तैयारी रखनी चाहिए।
11: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता सूची के दुरुस्तीकरण से लेकर के बूथ समितियों के बैठक करके हर मतदाता के साथ लगातार सक्रिय रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम जैसा परिणाम फिर दोबारा दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
6: हालांकि चुनाव आयोग की ओर से ऐसी कोई चर्चा अभी नहीं है। आज तक ब्यूरो।
2: अब आपको यूपी के मुजफ्फरनगर के स्टंट बाजों से मिलवाते हैं, जो रील बनाने के चक्कर में अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हैं, साथ में स्टंट के साथ तलवारें भी लहरा रहे हैं।
12: बाइक से स्टंट कर रहे इन लोगों को न कानून का खौफ है न वर्दी की परवाह। देखिए किस कदर ये युवक सड़क पर स्टंट कर रहे हैं। जरा सी लापरवाही से इन्हें भी चोट लग सकती है और इनकी वजह से लोग भी चोटिल हो सकते हैं, मगर इन पर तो स्टंट का भूत सवार है। इस स्टंट के साथ कुछ और युवा हैं जो तलवार लहरा रहे हैं। ये कैसा शक्ति प्रदर्शन है जिसमें तलवार लहराई जा रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं। एक दिन पहले अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा निकाली गई। उसी शोभा यात्रा के दौरान ये स्टंट किए गए और तलवारें लहराई गईं। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और स्टंट करने वाले और तलवार लहराने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनसे तलवारें भी बरामद कर ली हैं। सवाल ये है कि ये कैसी सनक है जो रील बनाने के लिए इस हद तक आदमी को ले जाती है। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक।
2: पटना में जमीन विवाद में एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स को घसीट रहे हैं और उसे बेल्ट से पीट रहे हैं।
13: एक आदमी को घसीटा जा रहा है, उसे बेल्ट से पीटा जा रहा है। करीब एक दर्जन लोगों के बीच ये आदमी जमीन पर पड़ा है। इसे कभी लातों से पीटा जा रहा है, कभी इस पर बेल्ट बरसाई जा रही है। जमीन पर इसे घसीट घसीट कर मारा जा रहा है। इस आदमी को इतना घसीटा गया कि इसके सारे कपड़े फट गए हैं। इतना पीटा जा रहा है कि अचेत हो गया है, मगर मारने वाले रुकने के लिए तैयार नहीं है। जिस आदमी को पीटा जा रहा है उसका नाम करीमन गोप बताया जा रहा है। मामला पटना में राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 8 का है। बताया जा रहा है कि इसकी पिटाई जमीन विवाद में हुई है।
14: अविवादित जमीन के चलते इसमें विवाद हुआ था और उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ है। गोली चलने की इसमें कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कुछ इसमें बरामदगी हुई है।
13: हैरानी की बात यह है कि पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक पीटने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। सुजीत कुमार, पटना, आज तक।
2: भोपाल में ट्विशा की मौत का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज सीबीआई एक बार फिर गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और पूरी घटना को रिक्रिएट किया।
13: सीबीआई ये रिक्रिएशन इसलिए कर रही है ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। सीबीआई की टीम आज ट्विशा के साथ गिरिबाला सिंह और ट्विशा के पति समर्थ को लेकर गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। सीबीआई के साथ 2 अलग अलग हाइट के पुतले थे। गिरिबाला के घर पहुंचकर सीबीआई ने रिक्रिएशन शुरू किया। पुतले को फंदे से लटकाया गया। समर्थ ने अपने बयान में कहा था कि उसने ट्विशा को नीचे उतारा, लिहाजा फिर से रिक्रिएट किया गया। समर्थ ने पुतले को नीचे उतारा, गिरिबाला ने गले की गांठ खोली। दरअसल सीबीआई जांच कर रही है कि गिरिबाला और समर्थ ने जो बयान दिए हैं वो घटना स्थल और परिस्थितियों से मेल खाते हैं या नहीं।
15: सीबीआई आज इस डमी पुतले के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ट्विशा को फंदे से उतारने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक के जो बयान दिए हैं, क्या उसकी टाइमलाइन आज के सीन रिक्रिएशन से मैच होती है या नहीं। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम यह भी देखेगी कि त्विशा के गले पर जो निशान थे, क्या वैसे ही निशान इस डमी पुतले पर भी बनते हैं या नहीं।
13: सीबीआई उस लिगेचर यानी बेल्ट की भी जांच कर रही है कि वो कितना वजन झेल सकती थी। देखना होगा कि त्विशा की मौत की मिस्ट्री कब खुलेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: अब खबर लुधियाना से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। लुधियाना की नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीक से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। फैक्ट्री में अचानक गैस लीक से कई मजदूर घायल भी हुए हैं।
6: लुधियाना में इस फैक्ट्री के सामने लोगों का जमावड़ा है, क्योंकि इस फैक्ट्री में हुआ है एक दर्दनाक हादसा। ऐसा हादसा जिसने 3 मजदूरों की जान ले ली।
16: सीवर सफाई करना है सी, उच सानू 10:30 बजे पता लगे भी 3 बंदियां दी डेथ हो गई गैस चढ़न नाल।
6: जानकारी के मुताबिक नट बोल्ट बनाने वाली इस कंपनी में रोजाना की तरह काम चल रहा था। अचानक गैस पाइपलाइन से रिसाव शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में जहरीली गैस पूरे परिसर में फैल गई। रिसाव ऐसा था कि मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हाँ, काम करने वाले आरोप लगा रहे हैं कि इस हादसे के लिए फैक्ट्री के मालिक जिम्मेदार है।
17: दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और कंपनी मालक जिसका साफ लापरवाही रहने के कारण ही जो हादसा हुआ।
6: अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर गैस रिसाव की वजह क्या रही और क्या फैक्ट्री में जरूरी नियमों का पालन हो रहा था। विवेक ढाल, लुधियाना आज तक।
2: अब खबरें शेयर बाजार की।
6: कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 508 अंक कमजोर होकर 74,267 और निफ्टी 165 अंक टूटकर 23,382 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए पर भी आज दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 94.95 रुपए पर बंद हुआ। वहीं सर्राफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और 10 ग्राम सोना 1,444 रुपए सस्ता होकर 1,55,599 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी प्रति किलो 1,066 रुपए टूटकर 2,62,900 रुपए के भाव पर बंद हुई।
2: लगातार दूसरी बार आरसीबी ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद जोरदार जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। विराट कोहली तो झूमते दिखे।
13: पहले गेंदबाजों को तरसाया विराट ने, फिर जमकर जश्न मनाया विराट ने। लगातार दूसरा खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु की टीम ने सारी रात जश्न मनाया, लेकिन विराट कोहली का अंदाज यहां भी सब पर भारी रहा। पहले टीम होटल में घुसते ही साथी खिलाड़ियों के साथ ढोल की थाप पर उनके इस डांस ने समा बांध दिया। फिर अनुष्का के साथ डांस फ्लोर पर उनके इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। आरसीबी टीम ने वीडियो साझा किया और लिखा, किंग कोहली का डांस फ्लोर पर मास्टर क्लास। वीडियो में विराट और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जीत की खुशी को खुलकर सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। फाइनल में 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए विराट ने, 9 चौके 3 छक्के जमाए विराट ने। इस सीजन 675 रन बनाए विराट ने। फाइनल में गुजरात के खिलाफ 75 रनों की उनकी पारी ने बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने इन लम्हों के लिए सालों का इंतजार किया है, उनकी कप्तानी से पहले भी और कप्तानी के दौरान भी। खिताब हमेशा दूर ही फिसलता रहा। अब उनके बल्ले ने लगातार 2 साल तक बेंगलुरु के विराट विजय की पटकथा लिखी, तो एक बार फिर हर फैन यही कह रहा है कि विराट जैसा कोई नहीं। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात क्रिकेट के नए सूरज यानी वैभव सूर्यवंशी की। वैभव ने इस बार आईपीएल में रनों की मूसलाधार बारिश कर 776 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। व्यक्तिगत पुरस्कारों में राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के इस बल्लेबाज का दबदबा रहा।
13: पूरा आईपीएल एक तरफ और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक तरफ। आईपीएल की ट्रॉफी भले ही लगातार दूसरी बार आरसीबी के पास गई हो, लेकिन पूरी लाइमलाइट वैभव सूर्यवंशी ले गए। धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का टाइटल अपने नाम किया। इसके लिए वैभव को 10 लाख रुपए का इनाम मिला। इसके साथ ही वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी मिला। 776 रन बनाने वाले वैभव ने एक शतक और 5 तूफानी अर्धशतक लगाए। इसके लिए सूर्यवंशी को 15 लाख की प्राइज मनी मिली। वहीं सुपर स्ट्राइकर बने सूर्यवंशी ने 237.3 के स्ट्राइक रेट से रन बरसा कर दिग्गज गेंदबाजों में भी खौफ भर दिया। इसके लिए उन्हें टाटा सियरा कार मिली। इधर आईपीएल के इस सीजन में 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल को बहुत पीछे छोड़ने वाले वैभव को 10 लाख रुपए और एक ट्रॉफी मिली। इतना ही नहीं, 776 रन का पहाड़ बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। इस तरह सूर्यवंशी को 5 अवार्ड मिले। इनसे उन्हें 45 लाख रुपए, ट्रॉफी और एक कार मिली। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताबड़तोड़ पारियों से धोनी, कोहली और रोहित शर्मा की तरह क्रिकेट फैंस को आईपीएल देखने की नई वजह दे दी है। आज तक ब्यूरो।
2: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
20: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
21: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
23: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
24: I think we still can win the World Cup with this squad.
23: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
25: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
11: जहां खबर वहां खबरदार।
15: इन एसोसिएशन विद
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: ट्रिशा का परिवार इंसाफ मांग रहा है। उसके पड़ोसी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। भोपाल में मौत हुई थी और इंसाफ के लिए ग्रेटर नोएडा तक आवाज उठ रही है। यहां हाथों में पोस्टर बैनर लिए सोसाइटी के लोग सीबीआई से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ट्रिशा को इंसाफ मिलेगा। नोएडा की इसी सोसाइटी में ट्रिशा का मायका था, उसके घर वाले यहीं रहते हैं। रविवार को उसकी याद में शोक सभा का आयोजन हुआ तो हर किसी की आंखें भर आईं। ट्रिशा के लिए आयोजित शोक सभा में परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में सोसाइटी के लोग शामिल हुए। सभी ने ट्रिशा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मामले में न्याय की मांग उठाई। इंसाफ की मांग करते लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर मौन जुलूस भी निकाला, फिर कुछ देर मौन रखकर ट्रिशा को याद किया।
1: आगे बढ़ करके
0: परिवार भरोसा जता रहा है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई की तफ्तीश में सारी सच्चाई सामने आएगी और उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा।
2: अभी तक जो शुरुआत हुई है न्याय प्रक्रिया की, जब से संज्ञान लिया गया है तब से हमें उम्मीद है कि न्याय की उम्मीद बढ़ गई है, और इस कदम से सर्वोच्च न्यायालय के ये उद्धृत होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में संपूर्ण न्याय मिलेगा और संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
0: सीबीआई लगातार मामले में पूछताछ कर रही है, साथ ही क्राइम सीन की जांच कर रही है। समर्थ ने अपनी फरारी को लेकर सीबीआई को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ट्रिशा की मौत के बाद वह दो दिनों तक भोपाल में ही रुका था। इसके बाद वो जबलपुर चला गया जहां उसने फरारी के बाकी दिन बिताए। समर्थ ने यह भी बताया है कि वह 22 मई को अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन असल सवाल कि इन 10 दिनों में उसे कौन मदद करता रहा, इस पर समर्थ चुप है। उसके ठहरने, आने जाने या अन्य सुविधाएं किसने मुहैया कराई, ऐसे तमाम सवालों पर वो मौन है। ट्रिशा को इंसाफ दिलाने की मांग के बीच इस केस से जुड़े डॉक्टर भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने पहले दावा किया था कि वो ड्रग्स की आदी थी और उसने भारी मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया था। ऐसे तमाम बयानों को वेरीफाई करने के लिए सीबीआई डॉक्टरों से बातचीत करने वाली है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा।
1: गाजियाबाद में बकरीद के दिन हिंदू दोस्त को घर बुलाकर मारने पर क्या बोले योगी? योगी ने यह धमकी किसे दी कि अपनी नालायक औलादों को समझा दो कि गलती न करें? योगी ने कौन से राक्षसों के खिलाफ शस्त्र उठाने की चेतावनी? गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान को दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर मारा गया। पीड़ित परिवार ने योगी आदित्यनाथ से दो डिमांड रखी, पहली आरोपी के एनकाउंटर की और दूसरी आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। योगी सरकार ने एक मांग तो पूरी कर दी और अब दूसरी पूरी होने जा रही है।
2: 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटा लेने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
1: और तभी से सूर्या के परिवार की उसकी बेसहारा मां की दो मांगे थी, पहला आरोपी असद का एनकाउंटर और दूसरी आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई।
3: बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 योग हैं उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे।
1: लखनऊ में बैठे बैठे योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एक्शन किया, तुरंत अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। 17 साल के सूर्या को घर बुलाकर चाकू मारने वाले असद का एनकाउंटर तो कल ही हो गया था और अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने वाली दूसरी मांग भी जल्द पूरी होने वाली है।
2: 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटा लेने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
1: खोड़ा कॉलोनी में असद के एक घर पर नोटिस चिपका दिया गया है, ये नोटिस खोड़ा नगर पालिका की तरफ से दिया गया है। नोटिस असद के पिता नवाब के एक पुराने मकान पर चिपकाया गया, इसमें लिखा है कि उनका ये मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है, अगर 15 दिन में इस अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया तो सरकार फिर खुद इस कब्जे को हटाने की कार्रवाई करेगी। आज बाकायदा नगर पालिका की तरफ से मुनादी करवा कर ये नोटिस चिपकाया गया।
2: श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है।
4: बकरीद के दिन सूर्या की हत्या हो जाती है और उसके बाद से ही पूरे परिवार और यहाँ के लोगों की एक ही मांग थी कि असद के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्राधिकरण जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है और इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि जिस जमीन पर यह घर बना है यह अवैध कब्जे की जमीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहां पर इस जगह को खाली करवाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं अब यह लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी ज्यादा प्रेशर था और यह कहा जा रहा था कि पूरी ताकत से बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, वो बुलडोजर एक्शन अब कहीं ना कहीं हकीकत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वक्त की अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताएं तो इसमें असद नहीं रहता था, असद का ये पुराना घर है लेकिन जो कागजात है उस पे ये बताया जा रहा है कि असद के पिता नवाब के नाम पर ये जो घर है ये जमीन है ये घर अभी तक रजिस्टर्ड है जिसके वजह से यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया।
1: 17 साल के सूर्या चौहान की माँ पहले दिन से यही मांग कर रही थी कि बेटे को मारने वालों का एनकाउंटर हो और उनके घर पर बुलडोजर चले। योगी आदित्यनाथ से सीधी डिमांड, कल असद एनकाउंटर में मारा गया और आज घर पर नोटिस चिपका दिया गया। उधर योगी ने भी चेतावनी दे दी है, समझा दिया है कि अपनी नालायक औलादों को समझा दे।
0: और दोस्ती कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा।

0: दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास योजनाओं का लाभ।
1: योगी फुल फॉर्म में, यूपी के चुनाव भी नजदीक है, इसीलिए योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज वो बिजनौर में थे और बिजनौर में उन्होंने खोड़ा में हुई घटना पर यही समझाया कि उनकी सरकार ने योजनाओं का लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको बराबर समझा है। ये भी कहा कि वो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर कोई राक्षसी बन जाए तो फिर शस्त्र उठाना ही पड़ता है।
0: हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा।
1: जिस तेवर में योगी हैं, उसी तेवर में उनकी पार्टी के नेता भी हैं। इसीलिए आज पीड़ित सूर्या चौहान की मां से मिलने के लिए पश्चिमी यूपी के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी गए, और संगीत सोम ने भी अपने वोटर्स को सीधी मैसेजिंग की है। चुनाव नजदीक है, इसीलिए वो भी जिहाद और जिहादियों का जिक्र कर रहे हैं।
2: वो माँ एक न्याय की उम्मीद करती है, और वो माँ ने यही कहा है कि हमें सरकार से उम्मीद है, सरकार ने जिस तरीके से एक जिहादी को ऊपर पहुंचाया है, इसी तरीके से सारे जिहादी ऊपर जाने चाहिए। देखिए, मानसिकता इस तरीके की है, दोस्ती की मानसिकता नहीं है इन लोगों की। दोस्ती उनसे करनी चाहिए जिनकी मानसिकता दोस्ती की हो, दोस्ती उनसे करनी चाहिए जो अच्छे लोग हो। ये जिहादी लोग, इनके फंड कुचल दिए जाएंगे और इन्हें रगड़ दिया जाएगा, जमीन में दफना दिया जाएगा इन जिहादियों को।
3: ऑपोजिशन का ये कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा इनकाउंटर की कार्रवाई हुई, ये कहीं ना कहीं फर्जी लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
2: देखिए, पुलिस पे अगर गोली चलाएंगे तो पुलिस जेब में रखकर तमंचे नहीं बैठी है, सरकारी असलाहत। अब वो जमाना गया ना, अखिलेश की सरकार में पुलिस पर गोली चलती थी और पुलिस मरती थी, अब ये नहीं है। पुलिस पर एक गोली चलेगी तो पुलिस 100 गोली चलाएगी, ये सरकार की इच्छा शक्ति है और पुलिस की इच्छा शक्ति है। आप निश्चित समझिए, लोगों को समझना चाहिए कि एक जेहादी जिसने ये कुकर्त किया वो कहां गया। जो जेहादी इस तरीके का कुकर्त करेगा वो ऊपर जाएगा, आप निश्चित समझिए, कोई बच नहीं पाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार सबके साथ खड़ी है, न्याय के लिए खड़ी है, लेकिन जिस तरीके की जेहादी मानसिकता है, इसे कुचल दिया जाएगा।
1: गाजियाबाद के खोड़ा का ये केस पूरी तरह से राजनीतिक भी हो गया है। पीड़ित परिवारों के साथ बीजेपी और हिंदुवादी नेता और पार्टियां खड़ी हैं, तो विपक्ष सीधे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है।
4: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा।
1: गाजियाबाद से अंशुल के साथ अरविंद ओझा आज तक।
5: उड़ा की घटना के बाद यूपी की सियासत भी सुलगी हुई है। वजह यह है कि यूपी में विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है, इसलिए कोई भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। और उधर गाजियाबाद की पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद खोड़ा में एक नया ही ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, जिसके तहत खोड़ा में तमाम क्रिमिनल्स की तलाशी की जा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए।
1: खोड़ा में अब घरों के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं। पुलिस घर घर जाकर तलाशी कर रही है कि कहीं कोई अपराधी तो नहीं छिपा है। सूर्या चौहान की हत्या के बाद खोड़ा कॉलोनी में गाजियाबाद पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रही है। खोड़ा में इलाके के बदमाशों और हिस्ट्री शीटर के घरों पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौजूद हैं। खुद गाजियाबाद के डीएम एडिशनल सीपी इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे हैं। 3 दिनों तक खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जाएगा। हर असामाजिक तत्व के घर की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के साथ स्निफर डॉग मौजूद है, साथ ही ड्रोन से छतों की निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा अपराधियों की अवैध संपत्तियों की भी जांच हो रही है।
6: उद्देश्य है जनपदीय पुलिस के द्वारा समय समय पर अपराधियों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में आज थाना खोड़ा क्षेत्र में हमारे द्वारा अपराधी सत्यापन के 3 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी साहब, एडीसीपी साहब और 3 ACPs, 6 SHO को बुलाया गया, जिनको इस पूरे क्षेत्र में आज तक थाना खोड़ा पे जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनसे जुड़े जितने भी अभियुक्त हैं उन सबकी सूची हमारे पास यक्ष ऐप पे उपलब्ध है। सभी को विभिन्न क्षेत्र बांट करके इन सब क्षेत्रों में जो अपराधी हैं उनके घर पे उनका सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कहीं पे अगर इनपुट है तो सबसे सर्च की कार्रवाई की जाएगी, एवं राजस्व की भी टीम है जो कि इन अपराधियों के रिकॉर्ड जिनके द्वारा कहीं कोई कब्जा तो नहीं किया गया है उन सब चीजों को वेरीफाई की जाएगी। 3 दिन तक खोड़ा के जितने भी अभियुक्त आज तक यहाँ पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनसे जुड़े जो भी अपराधी हैं उन सबके सत्यापन को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें सभी टीमों में एक सीनियर कोई राजपत्र अधिकारी एसीपी साहब के नेतृत्व में टीम जो है वो इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ जाकर के सब जगहों पर सत्यापन।
1: सूर्या की हत्या के बाद गाजियाबाद पुलिस जागी है और अब ये ऑपरेशन चल रहा है। बकरीद के दिन सूर्या की असद और उसके साथियों ने घर बुलाकर हत्या कर दी थी। उसे बुरी तरह से चाकुओं से गोदा था। पुलिस की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी फरहान ने असद को चाकू दिया था और असद के पिता नवाब ने असद को सूर्या की हत्या के लिए उकसाया था। पता चला कि असद के पिता ने कहा था कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो। इसके बाद असद ने सूर्य प्रताप के पेट में चाकू घोंप दिया। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है। तीनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है।
7: 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है, फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है।
5: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
8: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
9: Oh, ouch.
8: However you make money work, we can work with that.
10: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
11: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Well played, Jack. Well played.
4: Jack FM, playing what we want.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
9: सोच बदलो और बैंक भी.
10: अनुगत पोषण
11: पूरी दाढ़ाई
10: भाई बा
11: पक्षपात विवेचना नगरी.
12: हाल ही बंगाल बस इतना है कि कहीं सत्ता का जश्न है, कहीं सियासत बेहाल, कहीं शुभेंदु के 35 मंत्रियों वाली कैबिनेट के सामने सत्ता का कालीन बिछा है, तो कहीं सड़क के संग्राम से निकली सियासत के वजूद पर सवाल मंडरा रहा है. 4 मई तक बंगाल की सत्ता की कमान संभालने वाली ममता बनर्जी अब बड़ी परेशानी में घिरती दिख रही है. एक तरफ टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन हो रहा है, ऊपर से टीएमसी के नेताओं पर जनता का हिंसक रिएक्शन दिख रहा है. इधर टीएमसी के सांसद आपस में भी संग्राम करे बैठे हैं, और अब टीएमसी के नेताओं ने खुलेआम पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पहले तो टीएमसी के पंचायत से पार्लियामेंट तक स्तर के नेता इस्तीफे पर इस्तीफा देते रहे. अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे. यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी. और ये पहली बार नहीं हुआ. 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी. 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे. 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले. 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे. टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 66 विधायक गायब होने लगे, और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे. अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा. मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए. स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी. 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी. सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी. 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे. गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए. चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे. बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे. फिर मामला संज्ञान में आया तो बंगाल पुलिस की CID ने फर्जी दस्तखत के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया. 4 सदस्यों की जांच टीम की निगरानी DIG रैंक के अफसर को मिली. पूछताछ का समय अभिषेक बनर्जी को दिया गया, लेकिन अभिषेक ने खराब सेहत का हवाला दिया, पेश नहीं हुए. अब टीएमसी कहती है अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से लेकर अदालत तक की जाएगी, लेकिन टीएमसी ये नहीं बता रही कि कार्यकर्ताओं नेताओं के उठते भरोसे और पार्टी की एकता के बिखरते तिनके को कैसे संभाला जाए. दरअसल नई सरकार टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। टीएमसी के पंचायत और वार्ड स्तर के नेताओं से लेकर सांसदों तक के दफ्तरों में सरकारी सामान मिल रहा है। इसे लेकर बीजेपी का कैडर आक्रामक है। विरोध प्रदर्शनों की आज टीएमसी के नेताओं तक पहुंच रही है, लेकिन उन्हें नेतृत्व की मदद नहीं मिल रही। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: चुनावी तैयारी में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान, गाय से लेकर गुंडागर्दी तक पर सीधी चेतावनी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल खड़े करने वाले दो विधायकों को दीदी ने बाहर निकाला। नीट और सीबीएसई परीक्षा में सिस्टम बुरी तरह फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश, शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक, अध्यक्ष दिग्विजय ने जताया सरकार पर भरोसा। जनता को लगा महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत भी 11 रुपए बढ़ी। और ट्विशा केस में सीबीआई की तफ्तीश तेज, वारदात की जगह क्राइम सीन रिक्रिएट, दोनों आरोपी रहे मौजूद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के भीतर होती राजनीतिक मोर्चेबंदी से सबसे पहले हम आपको खबरदार करते हैं। 1 जून का दिन है, गर्मी का मौसम अपने चरम पर है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सियासी हलचल नजर आ रही है वो किस तरीके से राजनीतिक पारा देश का बढ़ाने वाली है उससे हम आपको खबरदार करते हैं। दरअसल केंद्र समेत कम से कम 5 राज्यों में इस समय बीजेपी नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वहां पर कुछ फेरबदल होने हैं। अब किसी को मंत्री पद मिलेगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किसी को संगठन में जगह मिलेगी, किसी का पत्ता मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से कटने वाला है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से एक बार फिर राजनीतिक रूप से चौंकाने वाले हैं।
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35
1: मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषय को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है।
3: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
2: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है। मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
4: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40 से 60 फीसदी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
5: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
2: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा हैं। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: एक राजनीतिक मोर्चेबंदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, जहां पर सवाल यह है कि क्या बंगाल में जो हिंदू वोटों की लहर नजर आई थी उसको 2027 तक उत्तर प्रदेश में कायम करने का प्रयास है। योगी आदित्यनाथ आजकल बहुत आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को भी इस तरह का एक बयान दिया था और फिर अब गाजियाबाद की घटना का जिक्र बगैर किए हुए उन्होंने कहा कि शस्त्र उठाना ही होगा अगर सामने खर दूषण हो।
6: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भरकर के चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
2: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं, व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई? और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी।
6: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
2: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
7: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
2: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
7: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
2: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
7: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
2: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है?
7: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
7: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
2: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाए?
7: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
2: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
7: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
2: यहाँ तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
7: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
0: सियासी भावनाओं के पीछे के राजनीतिक आंकड़ों को भी समझना जरूरी हो जाता है और ऐसे में हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के हिसाब से इस बयान के कुछ मायने भी समझाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं एसपी बीएसपी महागठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2024 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 11, बीजेपी को 12, आरएलडी को 2 और आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस को एक एक सीट पर जीत मिली, यानी बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। क्या इसीलिए 9 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले आक्रामक बयान देते मुख्यमंत्री योगी दिखते हैं? जहां गाजियाबाद के असद हत्याकांड के बाद एनकाउंटर हुआ तो भले विपक्ष सवाल करे, लेकिन असद जहां रहता था वहीं के मुस्लिम नागरिक कहते हैं जिसने गलती की उसके साथ सही हुआ।
7: दोस्ती कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा।
2: गाजियाबाद में कुर्बानी दिखाने के नाम पर हुई हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ भड़क गए, असद जैसे नौजवानों के परिवारों को खबरदार कर रहे हैं।
7: अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति।
2: 28 मई को बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या उसके दोस्त असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद में कर दी। इस वारदात के 50 से 55 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया। असद के पिता के इस घर पर आगे बुलडोजर की कार्रवाई वाली मुनादी होने लगी।
8: आपके द्वारा काम थोड़ा पड़ेगा लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निरस्त करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटा ले, अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा।
2: असद का ये घर मौकाए वारदात से थोड़ी ही दूर है जहां सूर्या की हत्या हुई। इस वारदात के बाद जब असद का एनकाउंटर हो जाता है तो उसके पड़ोसी उसे जानने वाले कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, वारदात को लेकर क्या बताना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पहुंचते हैं जहां एनकाउंटर के समर्थन में एक राय नजर आती है।
9: जिसने भी करा है बहुत गलत करा है, भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए और उसका जो इनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश ही थे।
10: पुलिस की कार्रवाई किस तरह देखते हैं, मुठभेड़ की कार्रवाई
9: बहुत बढ़िया हुआ, ये बढ़िया गया है, जिन्होंने भी कराई कार्रवाई जो बहुत बढ़िया कराई।
10: पुलिस का एनकाउंटर भी सामने आया,
11: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर वो नहीं होता तो उसके हो सकता है बढ़ती, मतलब उसकी हौसले बुलंद होते उसके,
10: लगता है सही कार्रवाई प्रशासन को,
11: बिल्कुल मैं तो खुश हूँ इस कार्रवाई,
12: एनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की। माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं ऐसे ही कार्रवाई करें, ऐसा करिए, किसी की हिम्मत नहीं करेगी किसी का एनकाउंटर वो कर दे, बढ़ना कर दे, ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, हम खुशी इस चीज की।
2: असद के एनकाउंटर को लेकर खोड़ा इलाके में कोई विरोध नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खोड़ा इलाके के लोग मानते हैं कि असद के गुनाह की वजह से वर्षों के भाईचारे पर सवाल या निशान लग गया, जबकि इससे पहले दावा है खोड़ा में ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई।
12: बिल्कुल भाईचारा जी, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में देख लो आप, बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आज तक 35 साल हो गए मुझे खोड़ा के अंदर, बचपन से आज 5 साल का 44 साल का हो गया,
9: हम लोग के बदनामी हो रही है और इतना बढ़िया यहाँ पे भाईचारे बन के हम लोग रहते, जो भी आज तक ऐसा कोई हरकत हुआ नहीं, इसने जो करा है बहुत गलत करा है।
11: जो उसने हरकत करी असद में वो भी ईद के दिन, अगर झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था उससे, अगर दिक्कत थी उसे उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है सबको, मतलब हो गई उससे, अगर उससे कोई दिक्कत थी तो उसे हत्या नहीं करनी।
2: असद कुछ महीने पहले ही खोड़ा के इस घर में रहने आया था। पड़ोसियों का कहना है कि असद की हरकतें ठीक नहीं थी, जिसने ईद पर इस वारदात को अंजाम देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसीलिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी।
9: ये जो लड़का था गलत टाइप का था, उधमबाजी करता रहता था, नशे में रहता था, और जो सूर्या को बहाने से बुला के जो मारा है बहुत ज्यादा गलत है, गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे तो ये सोच है उसका तो एनकाउंटर हो गया, जो साथ वाले पकड़े गए ना उनके उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पे भी लोग खेलना चाहिए।
13: भाषा जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, हमारे हिसाब से वो बच्चा मरा वो बहुत गलत मरा और हमें उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर होगा, मैं खुशी इस बात की, इससे बच्चों को सीख मिलेगी, जो ये नई नई उम्र के लड़के हैं जो सुबह शाम आवारागर्दी करते फिरते हैं, दोस्ती यारी में करते फिरते हैं, उन्हें इससे बहुत ज्यादा सीख मिलेगी।
2: सूर्या की मां ने बेटे के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की थी। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। एनकाउंटर के बाद प्रशासन की टीम असद के पिता के घर पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चिपका दिया।
14: इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जिस जमीन पर ये घर बना है ये अवैध कब्जे की जमीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहां पर इस जगह को खाली करवाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा।
2: सूर्या की हत्या के बाद पूरे इलाके में भले शांति हो लेकिन तनाव अब भी है। सूर्या के घर के बाहर उसकी फोटो लगाकर परिवार और पड़ोसी बैठे हैं। आसपास के लोग सूर्या को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लोगों के मन में अब भी गुस्सा भीतर ही भीतर धधक रहा है।
0: योगी आदित्यनाथ ने आज असद जैसे अपराधियों के परिवारों को ही खबरदार नहीं किया, उनका गुस्सा उन लोगों पर भी फूटा जो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं के लिए गाय माँ के समान है, माता समान है और गाय के सम्मान के लिए किसी घोषणा की, सरकारी योजना की आवश्यकता नहीं है।
7: अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है।
2: बिजनौर में मौका था विकास परियोजनाओं की सौगात देने का, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक गाय को लेकर चेतावनी देते दिखते हैं। सवाल है क्यों?
7: हमने गाय को माता माना है तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं, पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो।
2: गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग में योगी आदित्यनाथ ने कौन सी साजिश देखी?
7: और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौ कसी को प्रश्रय देते हो।
2: ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक यूपी में गौ हत्या की सजा याद दिलाने लगे?
7: यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? और जान रहे हो तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो।
2: बकरीद पर गाय को लेकर पश्चिम बंगाल में सख्त नियम लागू हुए तो देश भर की सड़कों पर पोस्टर लिए ये लोग दिखने लगे जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग होती रही।
15: वाणी को लेकर कहेंगे कि बड़े जानवर को गोरू को जो क्या नाम है उनको पूजनीय जानवर है उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा।
16: हम तो ये कहते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें। गाय हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है।
17: पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए।
18: हिंदू भाई को, हमारे मुस्लिम भाई को, बिरादरान वतन को इससे तकलीफ है, इससे आस्था जुड़ा हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन है छोटे जानवर का, हम बकरा करेंगे, बकरी करेंगे।
2: गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के पीछे अरशद मदनी और हामिद अंसारी समेत मुस्लिम नेताओं मौलानाओं की तरफ से तर्क ये दिया गया कि इससे शांति और सद्भाव मजबूत होगा, लेकिन फिर क्यों योगी इस मांग पर सवाल उठाते हैं?
7: तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो?
2: योगी के नाराज होने की वजह गाय को लेकर दिए गए वो अजीबोगरीब बयान है जिनमें योगी को तंज दिखा।
19: गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा, वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा।
15: उनको पूजनीय जानवर है, उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा।
2: लेकिन सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ नाराज उन लोगों से दिखे जिन्होंने सोशल मीडिया पर गाय की तस्वीर लगाकर ईद की बधाई दी।
7: मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? और जान रहे हो तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो।
2: गाय पर योगी की तरफ से खींची गई इस नई लकीर के कई सियासी मायने हैं। सबसे बड़ा संकेत तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने वालों की नियत पर सवाल उठाने से जुड़ा है, जो हिंदुओं की भावनाओं को जानते हुए भी गोकशी की वकालत करते हैं।
7: हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौमाता को पशु बोलते हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो।
2: ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी ने गाय पर इस तरह का बयान दिया हो। महीने भर पहले भी गाय को देवतुल्य बताया था। योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर जाते हैं तब गौ सेवा उनकी दिनचर्या का हिस्सा होती है, जहाँ नाम से पुकार कर गुड़ रोटी खिलाते योगी आदित्यनाथ देखे जा चुके हैं। इसीलिए गौ माता को जब राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग हुई तो योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि गाय हिंदुओं के लिए कितनी पवित्र है।
7: मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं? अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं।
2: बिजनौर में मौका तो पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को यूपी में जमीन देने का था, लेकिन योगी ने अचानक गाय पर बोलना शुरू किया तो फिर वो पाकिस्तान के मजहबी कट्टरवाद की याद दिलाने तक गए। ऐसे में योगी के तेवरों से साफ है कि 2027 के चुनावी समर में योगी हिंदुत्व वाली पिच पर हार्ड बैटिंग करने वाले हैं।
0: बेटियों से छेड़खानी करने वाले, कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका भी भरपूर इलाज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये खबर वृंदावन से है, जहां पर परिक्रमा कर रही लड़कियों से कुछ मनचले छेड़खानी कर रहे थे। आगे हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लड़कियों से छेड़छाड़ पर यूपी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। एक मनचला बाइक पर बैठकर पानी की बोतल से परिक्रमा करती लड़कियों को मार रहा था। मनचले की इस हरकत का परिक्रमा कर रहे लोगों ने विरोध किया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने मनचले को गिरफ्तार किया, जिसके बाद यह मनचला लंगड़ाता हुआ माफी मांगता दिखा। आरोपी मिठाई बनाने का काम करता है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अधिक मास की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से वृंदावन पहुंच रहे हैं, और उसी क्रम में ये तस्वीरें सभी मंचलों के लिए एक सबक है।

0: और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर आज 35 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसमें कलिता मांझी का भी नाम है। उनकी जो पूरी कहानी है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प, बहुत अहम है इसे जानना, कि वो दूसरों के घरों में काम किया करती थी और चुनाव लड़ने तक यही काम करती थी। आज देखिए कैबिनेट मिनिस्टर है।
1: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
2: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে
3: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी, तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
4: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
3: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
5: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
3: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव

0: जाती है कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
1: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
0: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैरिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
2: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
3: और अब आम आदमी के हित की खबर। सबसे ज्यादा जिस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, बेरोजगार युवा, रेड़ी वाले, ठेले वाले ये सब करते हैं, उसकी कीमत बढ़ गई है। छोटू सिलेंडर जिससे जो 5 किलो वाला सिलेंडर होता है उसकी कीमत 11 रुपए बढ़ी है और पिछले 2 महीने में 323 रुपए ये महंगा हो चुका है।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपया बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपया इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपये और अब 1 जून को 11 रुपये महंगा होकर यह 821 रुपये का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821.50 रुपये हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपये अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821.50 रुपये सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम

0: 400 का आता था 500 में खरीदते थे, अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब ये 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
1: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
0: महीने भर पहले 10 रुपए की थी, महीने के हो गए 15 रुपए।
2: पहले 500 रुपए का खरीदते थे
1: भरा हुआ सिलेंडर
2: 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
1: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
2: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का
1: खाली सिलेंडर था।
2: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
1: अब
2: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है बूझ।
1: भर के या खाली वाला?
2: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
1: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850-850 रुपए का ही है?
2: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
1: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
2: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
4: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
5: पहले जो कि 100 रुपये आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपये केजी हो गया।
4: 250 रुपये किलो?
5: बिल्कुल।
4: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
5: जी जी,
4: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
5: जी,
4: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
5: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे,
4: हाँ।
5: उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं, बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
3: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया, लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
6: और अब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रोकने के लिए खबरदार करना है। 12वीं की CBSE की जो परीक्षा हुई उसमें पहले ही जो गड़बड़ियां रही वो हमने आपको बताई, उसके बाद जो री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया आज से शुरू होनी थी उसमें घंटों तक पोर्टल खुला ही नहीं।
7: CBSE कहती है कि 1 जून को जो आप है, जो आपने स्कैन शीट्स पाई हैं, अगर आप में उनको कई कमियां नजर आती हैं, डिस्क्रिपेंसीज नजर आती हैं, तो आप उसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। और आज 1 जून है और सुबह से देखा जा रहा है कि देश भर में जो लाखों विद्यार्थी हैं CBSE का पोर्टल नहीं खोल पा रहे। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि हम CBSE की वेबसाइट पर हैं, जहां से हम मेन वेबसाइट के लिए क्लिक करेंगे और यहां से अगर आप नीचे जाएंगे, आप जाएंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस की ओर। ये वो पोर्टल है जिस पोर्टल को लाखों ही विद्यार्थी इस समय चला नहीं पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसके जरिए वो अपनी शिकायत CBSE तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जाम 2026। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने स्कैंड कॉपी के लिए आवेदन किया था और जब उनको स्कैंड कॉपीज मिल गई और उन्होंने स्कैंड कॉपीज में बहुत सी कमियां पाई, फिर वो आवेदन करें इवेल्युएशन के लिए, मार्क्स टोटलिंग के लिए, तो 1 जून को CBSE ने कहा था कि वो पोर्टल खुलेगा। पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, द साइट इज अंडर अपडेशन एंड विल बी अवेलेबल सून। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो साइट है वो नहीं चल पा रही है, अभी भी जो विद्यार्थी हैं इंतजार कर रहे हैं कि जो साइट है वो चले रीवेरिफिकेशन के लिए, साथ ही रीमार्किंग के लिए, रीवेल्युएशन के लिए जो बच्चे हैं वो आवेदन कर पाए।
8: 29 की डेट दी गई थी 29 से लेके आज 1 जून है एंड CBSE की वेबसाइट नहीं चल रही है। मैं अभी भी आपको दिखाऊं तो साइट इज अंडर अपडेशन, आज का डे कहा गया था कि आज ही चलेगी, बट साइट अभी भी अपडेशन पे है।
9: मैं CBSE से यही कहूंगी कि वो अपना वेबसाइट को अपडेट करे और इन बच्चों के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके कारण बच्चे बहुत परेशान हैं मेंटली, और वो खाना नहीं खा पाते हैं, बच्चे तरह तरह के माइंड में लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं और उसका फल अच्छा मिला नहीं है। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है फिर भी रिजल्ट अच्छा आया नहीं है। मैं CBSE से यही बोलूँगी कि कि वो अपने वेबसाइट को अपडेट करे, इन लोगों के साथ इंसाफ करे।
6: लखनऊ में रविवार को अक्सर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन यहां पर बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की हड़ताल की वजह से आम लोगों के साथ साथ जो छात्र परीक्षा देने जा रहे थे उन सबको परेशानी हुई। दरअसल जो संविदा पर भर्ती ड्राइवर कंडक्टर रहे उनकी ये हड़ताल थी, क्योंकि अब ये फैसला किया गया है कि उन्हें प्राइवेट ऑपरेटरों के हवाले किया जाएगा। ऐसे में जो कंडक्टर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर संविदा पर भर्ती ही क्यों की गई।
3: लखनऊ के लाल बत्ती चौराहे पर आत्मदाह की कोशिश करते ये रोडवेज के चार संविदा कर्मी जो बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचे और खुद पर छिड़कने लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया। सवाल है कि जिन्हें बसों में टिकट काटना चाहिए वो आत्मदाह करने की कोशिश क्यों करते हैं। लखनऊ की सिटी बसों में सेवा देने वाले सैकड़ों ड्राइवर कंडक्टर की कई दिनों से हड़ताल से शहर की रफ्तार दावाहे थमने लगी, क्योंकि साल 2021 में भर्ती किए गए संविदा कंडक्टर को विभाग में लगातार सेवाएं देने के बाद हटाकर अब निजी हाथों में सौंपा जा रहा।
10: कभी बसों में चढ़कर टिकट काटने वाले ये कंडक्टर अब पुलिस की बस में चढ़कर प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। एक मौका ये भी है जब एक और बस में ये सभी परिचालक जाने को मजबूर हैं, हाथ में अखबारों की कटिंग लिए।
3: आरोप है कि अधिकारियों की मिली भगत से कर्मचारियों को विभाग से बाहर कर निजी कंपनियों के हवाले करने की योजना बनाई जा रही है। इन लोगों का कहना है कि अगर विभाग को काम नहीं करवाना था तो फिर भर्ती क्यों की गई, अखबार में खबर क्यों छापी गई, इस पर अफसरों की दलील है तत्कालीन अधिकारियों से गलती हुई।
11: मुझे कंपनी से कोई मतलब नहीं है, मुझे संविदा पे भर्ती किया गया, मुझे संविदा पे ही रखो।
12: केवल एक ही मांग है, या तो यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफर किया जाए या तो संविदा बेस पर यहीं काम लिया जाए।
3: तो इनका सवाल सीधा है, क्या संविदा कर्मचारियों का भविष्य सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देने के लिए। इन लोगों का कहना है कि प्राइवेट कंपनी 25,000 से 30,000 की सिक्योरिटी मनी मांग रही, लेकिन जब तनख्वाह इतनी नहीं तो फिर ये पैसा लाकर कहां से दे। चौंकाने वाली बात ये कि अधिकारियों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं।
13: बट हम लोगों ने तो ये कंपनी के थ्रू पहले ही से कर रखा था, बट वो जो उस तत्कालीन एमडी थी ये उनकी गलती थी। ठीक है, अभी सिक्योरिटी की बात रही तो हम लोग 5,000 ही अभी हम लोगों ने अभी हमने बोला है, बट जो 30,000 आप बता रहे हैं ये मेरे नॉलेज में नहीं है, उसको हम देखेंगे। बट हम लोग यही चाहते हैं कि लोग आ जाएं, पहली प्रायोरिटी है कि कंपनी की जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे, वो आएंगे, उसके बाद से जो भी वैकेंसी क्रिएट होगी तब भर्ती की जाएगी।
3: इस मामले में परिवहन विभाग का कहना है कि राज्य के जिन भी जिलों में सिटी बस चल रही है वहाँ सभी प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए गए, सिर्फ लखनऊ में ये प्रक्रिया नहीं थी जिसे अब लागू कर दिया गया है। आज तक ने जब उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने भरोसा दिया कि जगह बनने पर परिवहन विभाग में इन संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
14: तो ये चाहते हैं कि मैंने हमको जो है जो पहले जिस तरह से हम लोग थे उसी तरह से रखा जाए, लेकिन इधर आउटसोर्सिंग, क्योंकि कुछ नगरीय सेवाएं वो 15 साल आयु पूरी करने के बाद वो गाड़ियां जो है स्क्रैप हो गई, तो अब ये लोग खाली हो गए हैं। ऐसे अभी नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इसको समायोजित किया जाएगा।
3: सवाल है कि किसी अधिकारी की वजह से इन संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर गफलत हुई तो इसमें सैकड़ों कंडक्टर का क्या कसूर है। क्या अधिकारियों की गलती की सजा परिवहन विभाग अपने ही कर्मचारियों को दे सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
18: Oh, ouch.
17: However you make money work,
18: We can work with that.
19: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, NA, member FDIC.
20: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
21: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
22: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज किए।
21: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
23: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
7: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
6: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: इन एसोसिएशन विद
10: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
9: हिंद, बड़े आराम से।
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
11: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
12: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
13: विमल बोलो जुबा केसरी।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: In association with
3: Samakool Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, Samakool Cooler, life बनाए wonderful.
2: Hint, बड़े आराम से
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक.
5: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Vimal, बोलो जुबां केसरी.
7: वो बकरीद का दिन था, 28 मई की दोपहर 3 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी असद और सूर्य प्रताप में झगड़ा हुआ। बाइक चलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। असद ने झगड़े की बात अपने पिता नवाब और अन्य आरोपियों को बताई। तभी गिरफ्तार आरोपी फरहान और आतिफ के साथ साथ अन्य आरोपियों ने मिलकर सबक सिखाने की साजिश रच डाली। महज बाइक चलाने का विवाद था। 28 मई की दोपहर 3:30 बजे आरोपियों ने सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया। फरहान ने पुलिस के सामने कबूला कि मैंने असद को चाकू दिया। असद के पिता ने कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आरोपी पिता नवाब के ये कहते ही उसके बेटे असद ने सूर्या के पेट में चाकू भोंक दिया। हमले के बाद सूर्या खून खून होकर वहीं गिर पड़ा। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में हत्या के लिए उकसाने वाला असद का पिता नवाब के साथ साथ अन्य दो आरोपी फरहान और आतिफ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम उस धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की बात करेंगे जिसकी परिभाषा और पैमाना देश में मौके, माहौल और मजहब साथ बदल जाते हैं। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के जानवरों पर विवाद हो तो पूरा देश दिन भर बहस करता है, इंटरनेशनल मीडिया में भारत की छवि को इनटॉलरेंट बनाकर पेश करता है। लेकिन जब गाजियाबाद के खोड़ा में 17 साल के हिंदू लड़के सूर्य प्रताप चौहान को उसका ही मुस्लिम दोस्त बकरीद के दिन ये कहकर चाकुओं से गोद देता है कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते देखा है, ये पुलिस ने बताया, तो पूरे देश में एक सन्नाटा पसर जाता है। आज देश को तय करना होगा कि क्या सेक्युलरिज्म का मतलब अब ये हो चुका है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े मामले को नेशनल इश्यू बनाया जाए क्योंकि वो एक खास समुदाय से जुड़ा है, जबकि दूसरे समुदाय के बच्चे की बेरहमी से हत्या को सिर्फ दो दोस्तों का आपसी विवाद कहकर रफा दफा कर दिया जाए। आज हम पूछेंगे कि मजहब के आधार पर समाज और सियासत की संवेदनाएं असमान कैसे होती हैं और कैसे एक हिंदू बच्चे की बर्बर हत्या के बाद तमाम सियासी सूरमा मुंह सिल लेते हैं। और इसके बाद देश की कोचिंग इंडस्ट्री की, ये शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि 1,33,000 करोड़ का वो बाजार है जो बच्चों के सपनों और मां बाप की गाढ़ी कमाई पर खड़ा है। बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, वो दिन रात खाना पीना सब भूलकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन नाम कौन कमाता है? कोचिंग इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े इश्तेहार देकर ये कहता है कि हमारी वजह से ये बच्चे आए हैं और यही से उनकी दुकान सजती है। वो ये दिखाते हैं कि अगर भारी भरकम फीस देकर भी माँ बाप अपने बच्चों को उनके कोचिंग सेंटर में डाल लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी एग्जाम परीक्षा निकाल लेंगे। सवाल है कि कोचिंग सेंटर्स जहां शिक्षक कम और खुद के नाम के आगे सर लगाने वाले शिक्षा माफिया ज्यादा है। पहले जो माफिया अखबारों में फर्जी टॉपर्स के विज्ञापन छापता था, कई बार तो बच्चे आकर बताते थे, 2-3 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट उनकी फोटो डाल देते थे। अब बच्चा हैरान कि ये भी क्रेडिट ले रहा है, वो भी क्रेडिट ले रहा है। अब उसी का एक डिजिटल अवतार आ गया है जिसमें यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर टीचर्स हैं। देखिए, अनेकों ऐसे यूट्यूब के टीचर्स हैं जो बहुत ही सार्थक और अच्छे वीडियो बना रहे हैं, जो टीचर्स की तरफ वीडियो में भी पेश आते हैं, जो वीडियो में पढ़ाई की बातें करते हैं, जो वीडियो में विषय पर ज्ञान देते हैं, जो वीडियो में बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कराते हैं। इसको आप कह सकते हैं स्कूल के अलावा अतिरिक्त ज्ञान लेने के लिए बच्चे वहां पर जाते हैं, क्योंकि कई बार टीचर्स बहुत सरल तरीके से बच्चों को उसमें समझा देते हैं और ऐसे टीचर्स को पूरा क्रेडिट भी मिलना चाहिए। लेकिन हम बात उन टीचर्स की कर रहे हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो व्यूज बटोरने के लिए कुछ भी बोलते हैं, जो व्यूज बटोरने के लिए विषय से हटकर तमाशा करते हैं, उटपटांग बातें बोलते हैं और कई बार व्यूज बटोरने के लिए वो पढ़ाई छोड़कर अनेकों ऐसी बातें करते हैं। हमारे देश में बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, हमारे वो युवा। ये भी सच है कि ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों के लिए कई अवसर पैदा किए। दुर्गम इलाकों में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान है, वो यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर का पूरा वीडियो एक सब्जेक्ट पर देख लेते हैं तो उनको बहुत अच्छे से उसकी जानकारी होती है। लेकिन वही टीचर जो पढ़ाई की बात करते हैं, सवाल यही है कि यही वो बच्चे जो हमारे सिस्टम की नाकामी, उसकी कमजोरी को आज बाहर भी ला रहे हैं। अगर सीबीएसई की गड़बड़ी बाहर आई तो इसके पीछे हमारे बच्चे ही थे। 3 बच्चे खासतौर पर जिनके बारे में आज हमने आपको लगातार आज तक पर बताया है, जिन्होंने एथिकल हैकिंग के जरिए या फिर टेंडर रिव्यू करके या फिर पेपर गलत मिलने पर जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने की। लेकिन उन इन्फ्लुएंसर टीचर्स की बात करेंगे जिन्होंने बच्चों की मेहनत को अपने व्यूज बटोरने का एक जरिया बना लिया है। स्टार टीचर्स 1 घंटे की क्लास में 40 मिनट इधर उधर की बात ताकि रील्स के कंटेंट पर फोकस हो, आखिरी के 20 मिनट में 2 सवाल कराकर कहेंगे चैनल सब्सक्राइब ठोको, इन्हें आपका सिलेक्शन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्ट हो गए इनका एक व्यूअर कम हो जाएगा। ये चाहते ही नहीं कि आप के भविष्य पर वो फोकस करें। इनकी बस एक ही मंशा होती है और वो है व्यूज ज्यादा मिलना, और उसके लिए वे किसी भी उटपटांग हद तक जा सकते हैं। पेपर लीक होने पर ये ग्लिसरीन के आंसू बहाएंगे। छात्रों से हमदर्दी नहीं है साहब, इन्हें पता है कि आपका गुस्सा इस वक्त हॉट कंटेंट है, इसे कैश करो। सावधान रहिए, सच्चा शिक्षक जो है वो आपको पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा। वो अगर आपको इस पेपर लीक की वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है तो वो आपके साथ खड़ा होगा। वो आपको हर वो रास्ता दिखाएगा जिससे आप सही तरीके से आगे बढ़े। और इसी के साथ युवाओं के सपनों का जो धंधा कर रहे हैं, आज हम उनका पर्दाफाश करने वाले हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, आखिर में जलते पेरिस की तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे अब यूरोप पूरी तरह बदल रहा है, दंगों में जल रहा है। आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता का मतलब अब पूरी तरह बदल चुका है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कम से कम हमारा संविधान तो यही कहता है। हमारे संविधान की नजर में हम हर नागरिक बराबर है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, और इस संविधान के लिए ना हिंदुओं की पीड़ा ज्यादा है ना मुसलमानों के लिए ज्यादा दर्द। ये सबको एक समान मानता है, जितनी पीड़ा हिंदुओं के लिए उतनी पीड़ा मुस्लिम्स के लिए। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में हमारे देश में एक अजीब सा बदलाव आया जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज अगर किसी घटना में मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई विवाद हो जाए तो उस पर तुरंत राष्ट्रीय बहस शुरू हो जाती है, लंबे चौड़े लेख लिखे जाते हैं, बयान आते हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलता है। सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत में मुसलमानों के प्रति असहनशीलता बढ़ रही है, और विदेशी मीडिया भी लपक लेता है। पिछले दिनों मुंबई और ठाणे की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को लेकर विवाद हुआ, उस पर भी यही बहस चली। कहा गया कि क्या मुस्लिम्स की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है और क्या उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों से रोका जा रहा है। ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि पूरा देश दिन भर इसी पर चर्चा करता रहा और बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने इस पर चिंता जताई। लेकिन फिर गाजियाबाद के खोड़ा की घटना सामने आई। खोड़ा में 5 मुस्लिम लड़कों ने एक 17 साल के हिंदू लड़के की बकरीद के दिन हत्या कर दी। हत्या भी ये कह के की गई कि क्या उसने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। अब बाकी मामलों की तरह होना ये चाहिए था कि इस घटना पर भी हमारे देश में बड़े बड़ी बहसें होती, मुश्किल सवाल पूछे जाते, लेकिन सन्नाटा आ गया। दुख की बात यह है कि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक सन्नाटा छा गया। ना इस घटना पर वैसी बेचैनी दिखी, ना बहस चली, ना कोई सवाल उठे, ना ही वो लोग चिंता जताते नजर आए जो भारत की धार्मिक असहनशीलता पर खूब ज्ञान बांटते हैं। आज बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी मुस्लिम के साथ हिंसा होती है और हम उसे पूरे समाज के लिए चिंता का विषय मानते हैं तो किसी हिंदू नागरिक के साथ हुई हिंसा पर उतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखती। सवाल यही है कि फिर पश्चिमी मीडिया भी इसको नहीं लपकता। किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब न्याय के सिद्धांत समान रहे न रहे लेकिन संवेदनाएं असमान हो जाए। जब एक घटना पर पूरा देश बोले और दूसरी पर पूरा देश चुप हो जाए, जब एक पीड़ित को प्रतीक बना दिया जाए और दूसरे पीड़ित को आंकड़ा, और जब एक मौत से विचारधारा आहत हो और दूसरी मौत से नहीं। देखिए,
1: उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू
2: हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। सूर्या से ये बोल रहा था, तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया।
0: गाजियाबाद के खोड़ा की ये खबर है, और गाजियाबाद के खोड़ा में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं था। 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान का मोहम्मद असद से ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं था जिसके लिए उसे बकरीद का दिन चुनकर मारा जाए। 17 साल का सूर्य तो असद को अपना दोस्त मानता था, ऐसा दोस्त जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। सूर्य और असद खोड़ा के एक ही इलाके में रहते थे और दोनों का घर एक दूसरे से सिर्फ 250 मीटर दूर था। पुलिस का कहना है कि कभी दोस्त रहे सूर्य और असद के बीच 7 से 8 महीने पहले एक झगड़ा हुआ जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हालांकि दोनों का घर नजदीक था और दोनों के दोस्त भी वही थे, इसलिए उनका आमना सामना होता रहता था, और इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस भी हो जाती थी। हालांकि ये बहस इलाके के लोगों को बच्चों की लड़ाई जैसी लगती थी, और सूर्या और उसका परिवार भी यही मानता था कि दो बच्चों की लड़ाई है, दोस्ती है, उन्हें लगता था कि दोस्तों में तो ऐसी गहमा गहमी चलती रहती है, इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। लेकिन 28 मई बकरीद का दिन था और बकरीद के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया। पुलिस के मुताबिक असद और सूर्या के बीच बकरीद के दिन एक बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद असद के पिता मोहम्मद नवाब ने उसे खूब उकसाया। ये कहा कि असद को सूर्या की कहानी खत्म कर देनी चाहिए। इसके बाद असद ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जिनमें मोहम्मद फरहान उसके लिए चाकू लेकर आया। चाकू आने के बाद असद ने सूर्या को फोन किया और उससे ये कहा कि वो बकरीद के दिन सारे गिले शिकवे भुलाकर सूर्या को गले लगाना चाहता है और उससे अपने सारे विवाद खत्म करना चाहता है। सोचिए, दोस्ती की दरकार देकर उसने उसको घर बुलाया। 17 साल के सूर्या को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और असद और वो वापस से दोस्त बन जाएंगे। लेकिन जब अपने घर से कुछ दूर वो असद और उसके दोस्तों से मिलने गया तो असद ने उससे ये कहा कि क्या उसने बकरीद पर किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है, और सूर्या इसका कोई जवाब दे पाता इससे पहले असद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसके शब्दों में वो उसे हलाल करके वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद भी सूर्या की धड़कन चल रही थी, उसे बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया। और जब परिवार ने इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले मुख्य आरोपी असद के पिता मोहम्मद नवाब को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि उसी ने अपने बेटे को इस हिंदू लड़के की हत्या के लिए उकसाया था। सोचिए, एक पिता से यह उम्मीद की जाती है ना कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देगा, गलत काम से बचने को कहेगा, और अगर वो फिर भी गलत रास्ते पर बच्चा जाएगा तो उसकी सही मार्गदर्शन करेगा, बोलेगा, समझाएगा। लेकिन यहां तो एक पिता पर ही आरोप लग रहा है कि उसने अपने बेटे से कहा कि बकरीद के दिन इस हिंदू लड़के को हलाल कर दे, और इससे यह भी पता चलता है कि इस पिता की क्या मानसिकता रही होगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जो किसी से पैसे लेने के लिए अपने घर के पास आया था। लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसने असद को गिरफ्तार करने की कोशिश की, और इसी दौरान पुलिस का कहना है कि असद ने उस पर गोलियां चलाई जिससे मुठभेड़ में वो मारा गया और एक आरोपी घायल होने के बाद फरार हो गया। अजीब बात यह है कि जो विपक्षी नेता इस हिंदू लड़के की मौत पर अब तक चुप थे, वो असद के एनकाउंटर के बाद सक्रिय हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि असद का एनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि पुलिस ने उसे एक फर्जी मुठभेड़ में जान से मारा है और असद को इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि असद के लिए इंसाफ मांगने वाले वही नेता हैं जिन्होंने उस हिंदू लड़के पर एक शब्द नहीं कहा जिसे असद ने बेरहमी से मारा था। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश होगा जहां पीड़ित का धर्म अगर हिंदू हो तो उस पर चुप्पी रखी जाती है, और आरोपी का धर्म अगर मुस्लिम हो तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए शोर मचता है। इस मामले में यह हो रहा है, और यह सिर्फ हमारे नेता करते हैं। खोड़ा के कई मुस्लिम परिवार असद के एनकाउंटर से दुखी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ नेता जरूर हैं। हालांकि सिंधु लड़के की मां का कहना है कि उसे पूरा इंसाफ तभी मिलेगा जब एक नहीं बल्कि सभी 5 आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर करेगी।
3: सबका एनकाउंटर कहां हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए।
4: आपने तो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है।
3: हाँ, वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी।
4: बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका?
3: उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ, क्यों उनने सबने मिल के किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए।
0: जब उत्तर प्रदेश के कई विपक्षी नेता असद के एनकाउंटर पर दुख जताते हुए उसके खिलाफ इंसाफ मांग रहे हैं, तब खोड़ा में असद के पड़ोसी और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग उसके एनकाउंटर से खुश हैं और ये कह रहे हैं कि असद ने जो किया वो गलत था, वो उसके एनकाउंटर का समर्थन करते हैं। ये भी सुनिए।
5: गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे तो ये सोचे उसका तो एनकाउंटर, जो 7 वाले पकड़े गए ना, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पे भी लोग चलना
6: चाहिए। हमारे हिसाब से तो वो बच्चा मरा, वो बहुत गलत मरा और हमें उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर हुआ, मैं खुशी बात की, इससे बच्चों को सीख मिलेगी। जो ये नई नई उम्र के लड़के हैं जो सुबह शाम आवारा गर्दी करते फिरते हैं, दोस्ती यारी में करते फिरते हैं, उन्हें इससे बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। बिल्कुल गलत हुआ है, जिसने भी करा है बहुत गलत करा है। भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए,
7: और उसका जो इनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश ही थे।
8: झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था उससे, अगर दिक्कत थी उसे उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी, पूरा माहौल खराब हो गया, दिक्कत दे सबको, मतलब हो गई उससे।
9: नहीं, एनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की, और माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं ऐसे ही कार्रवाई करें, ऐसा करिए, किसी की हिम्मत नहीं करेगी किसी का एनकाउंटर वो कर दे, घटना कर दे, ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, हम खुशी इस चीज की।
0: इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े शब्दों में ये कहा है कि अगर सामने खरदूषण खड़े होंगे तो शस्त्र भी जरूर उठाए जाएंगे। सुनिए।
10: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी, वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना हमारी संवेदना, गलती कर रहा है, याद रखना हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था।
0: क्या आपको 26 साल का तरुण याद है जिसकी इसी साल होली के मौके पर हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी? कसूर क्या था तरुण का? सिर्फ इतना कि उसकी 11 साल की छोटी बहन ने होली के मौके पर एक गुब्बारा फेंका था जिससे वहां से गुजरने वाली एक मुस्लिम महिला को रंग लग गया था। इसके बाद तरुण के परिवार ने इस महिला से माफी भी मांगी और ये कहा था कि उनकी बच्ची से गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी जब इस मुस्लिम परिवार के लोगों ने तरुण की लिंचिंग की, उसकी हत्या कर दी, तब भी हमारे देश में कुछ लोगों ने यही कहा कि आखिर इस हिंदू परिवार को रंग फेंकने की जरूरत क्या थी। और सोचिए उस वक्त इन लोगों ने तरुण की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की और आज ये सूर्या की हत्या को ये कहते हुए सामान्य बता रहे हैं कि ये दो दोस्तों का निजी मामला था। और हमारे देश में दो दोस्तों के बीच इस तरह की आपराधिक घटनाएं पहले भी हो चुकी है। हम भी कहेंगे बिल्कुल हो चुकी है, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन यह भी सच है कि ऐसा पहला कभी नहीं हुआ जब एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़के को बकरीद के दिन यह कहकर मारा हो कि वो उसे बकरा हलाल होते हुए दिखाएगा। और यहां बात सिर्फ एक हिंदू लड़के की हत्या की नहीं है, यहां बात आपसी विश्वास और भरोसे की भी है। हमारे देश में ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनके दोस्त मुस्लिम हैं, कितने हिंदू होंगे जो मुस्लिम बहुल इलाकों में रहते हैं, जिनके मुस्लिम परिवारों से अच्छी मित्रता होगी, बहुत अच्छे संबंध होंगे। सोचिए घटना इन लोगों के भरोसे पर कैसे प्रहार करेगी, अगली बार क्या कोई इस तरह से भरोसा कर पाएगा अपने दोस्त पर। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच भरोसे की ये दरार पहले से कई जगहों पर आप देखेंगे काफी चौड़ी हो चुकी है। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत के 36% हिंदू परिवार नहीं चाहते हैं कि उनका पड़ोसी कोई मुस्लिम परिवार का, जबकि 16% मुस्लिम परिवार नहीं चाहते हैं कि उनका पड़ोसी कोई हिंदू हो। या हिंदुओं का आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2011 की जनगणना कहती है कि हमारे देश में अधिकतर मुस्लिम एक ही इलाके में संयुक्त रूप से रहते हैं, लेकिन कई मुस्लिम जो है ऐसे भी हैं जो हिंदू इलाकों में जाकर रहते हैं और जिनका आज भी कई जगहों पर आप देखते हैं धार्मिक टकराव होता है। हमारे देश में लव जिहाद का मुद्दा उठाने पर हिंदू पक्ष की आलोचना होती है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि हिंदू इस मामले में मुसलमानों से ज्यादा उदार होते हैं। 67% हिंदू दूसरे धर्मों में महिलाओं के शादी करने का विरोध करते हैं, जबकि मुसलमानों में यही आंकड़ा 80% है। हालांकि जब पुरुषों को दूसरे धर्म में शादी करने से रोकना हो तो मुसलमानों में यही आंकड़ा 76% हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसी ऐसी जो घटनाएं हैं वो हिंदू मुस्लिम की खाई को चौड़ा करती है। जब हमारे देश में इस पर दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं तो इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता उसको भी बड़ा धक्का लगता है। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमारे देश के युवाओं को इस देश की सरकार से क्या चाहिए। वो आखिर कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके एग्जाम देते हैं, ऐसे बच्चे जो भारत का भविष्य है। भारत में ऐसे युवाओं की संख्या लगभग 5 करोड़ है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा हासिल करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम ये मान ले कि हर छात्र के परिवार में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे तो यह आंकड़ा 25 करोड़ हो जाता है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में रशिया जैसे लगभग 2 देशों की आबादी सिर्फ उच्च शिक्षा के जरिए अपना करियर, अपना भविष्य बनाने का सपना देख रही है और इन करोड़ों बच्चों ने इस भविष्य के लिए ना जाने कितने संघर्ष किए हैं। लेकिन सोचिए इन बच्चों को हमारे सिस्टम से, हमारी व्यवस्था से, हमारी सरकार से मिल क्या रहा है। भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर हर साल कम से कम 2 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। अकेले पिछले 20 सालों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ भर्ती परीक्षाओं के हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो अलग से परीक्षाएं होती हैं वो भी इस पेपर लीक की बीमारी से बची नहीं है। इस साल 22,79,000 छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। पेपर लीक हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहानी यूं ही चलती रहती है और इसके किरदार में नाम बस बदलते रहते हैं। कभी नीट यूजी का पेपर लीक होता है, कभी सीबीएसई की परीक्षा में गड़बड़ी, कभी सरकारी नौकरियों का पेपर लीक होता है और कभी कुछ और। कल्पना कीजिए जिन बच्चों ने ईमानदारी से पूरे साल मेहनत की हो, खाना पीना सब भूल कर पढ़ाई की हो, दिन रात जग कर, उनका मनोबल इस पेपर चोरी से कैसे टूटता होगा। और ये भी सोचिए कि पेपर चोरी होती कैसे है। आज हमने पेपर लीक से जुड़े कई मामलों को देखा जिनमें ये बात निकल कर आई कि पेपर लीक करने और कराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। ये 0.1% से भी कम होते हैं जो 99.9% ईमानदार मेहनती छात्रों का भविष्य अपनी बेईमानी से बर्बाद कर देते हैं। और यहां बात सिर्फ इन बेईमानों की नहीं है, बहुत सारे टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स भी ऐसे हैं जो ईमानदार टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स की मेहनत को निगल जाते हैं और इसके बाद ये खुद को मसीहा बताते हैं। जैसे नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ उसमें 3 आरोपियों को आज अदालत ने 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। इनमें भी सीधा सीधा कोचिंग सेंटर का कनेक्शन निकला है। एक है डॉक्टर मनोज शिरूरे, दूसरे है तेजस शाह और तीसरे है मनीषा संजय हवलदार। इनमें तेजस शाह पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर्स थे जबकि मनीषा संजय हवलदार पुणे के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। और एनटीए ने इस महिला टीचर को नीट यूजी परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी जिसके कारण इस महिला टीचर के पास फिजिक्स का पेपर सबसे पहले आना था। लेकिन जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। इस महिला टीचर ने इस पेपर को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को बेच दिया। खरीदने वाला कौन? कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर। और इसीलिए हम लगातार आज तक पर कोचिंग माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के जरिए इन लीक किए गए पेपर्स को बेचा और खरीदा जाता है। जानते इसने क्या किया? उसने फोन करके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को सारे सवाल लिखवाए और बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस टीचर ने यही सवाल नोट करके लीक कर दिए। और ऐसा सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं किया, महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लासेस नाम के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर ने इसी तरह की साठगांठ से पेपर लीक कराया और ये फिर इस कोचिंग सेंटर के साथ पहली बार नहीं हुआ है। साल 2024 में जब नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तब भी गुजरात पुलिस ने रॉय ओवरसीज नाम के कोचिंग सेंटर के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था जो इस बेईमानी में शामिल थे। 2024 में ही जब उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तब भी इसके पीछे लखनऊ का एक कोचिंग सेंटर था जिसके टीचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि 2022 में जब राजस्थान में सरकारी नौकरी और 2021 में सरकारी टीचर्स की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ तब भी इसमें कोचिंग माफिया का नाम सामने आया था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तथ्य बताते हैं कि पेपर लीक के अधिकांश मामलों में कोचिंग माफिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो पेपर बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री इसलिए फैली क्योंकि हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर हमारे देश में सरकारों की ओर से शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता तो कोचिंग इंडस्ट्री कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का 6 महीने का बजट है। 2022 में भारत की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की थी, जो 2 साल बाद 2028 में 1,33,000 करोड़ रुपए की होने वाली है, जबकि पूरे देश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बजट ही 1,39,000 करोड़ रुपए का है। अब कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा विस्तार कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के करोड़ों माता पिता की गाढ़ी कमाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रही है, जहां कई बार झूठे सपने बेचे जाते हैं। झूठे सपने कैसे, उसके लिए ये आंकड़े देखिए। ये कोचिंग सेंटर्स आपको अच्छे अच्छे विज्ञापन दिखाते हैं, दावा करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को इनके यहां भेजा तो वो यूपीएससी, नीट, जेई, सरकारी नौकरी की परीक्षा जरूर पास कर लेंगे। कई बार तो विज्ञापनों में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही बच्चे की तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है, ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है। कई बार हम लोग इन विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं, हकीकत में ये विज्ञापन कई बार कोरा झूठ होते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कराने वाले 2 बहुत बड़े कोचिंग संस्थान पर जुर्माना लगाया। जुर्माने का कारण क्या था, इन कोचिंग संस्थानों ने इन छात्रों को भी अपना छात्र बताकर अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए थे जो उनके यहां पढ़े ही नहीं थे। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, ये धांधली कई बड़े कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालना है तो हमें #coachingmafia कोचिंग माफिया का अंत करना ही होगा। अब सवाल यह कि सोचिए आप, केंद्र सरकार ने 60 नोटिस जारी किए और इन पर 1,46,00,000 का जुर्माना लगाया। ऐसे ऐसे बच्चों के इन्होंने इश्तेहार में अपने फोटो डाले जिन्होंने इनके यहां पढ़ाई नहीं की थी, उन बच्चों ने कंप्लेंट की जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन सोचिए उन माता पिता के साथ कितनी बड़ी बेईमानी है जो इन कोचिंग संस्थानों के झांसे में आकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, गाड़ी कमाई से स्कूल की भी फीस देते हैं जो सिर्फ एक डमी स्कूल रह जाता है क्योंकि वहां पर सिर्फ अटेंडेंस और बाद में वहां से सर्टिफिकेट मिलता है। असल पढ़ाई करने के लिए इन बच्चों को भारी भरकम फीस देकर कोचिंग सेंटर में ही भेजा जाता है और कई प्राइवेट स्कूल्स तो खुलकर ये कोचिंग सेंटर्स अपने स्कूल में ही चलाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स इन कोचिंग सेंटर्स को अपने तौर पर चलाते हैं और पेरेंट्स से कहते हैं कि क्लास में आपका बच्चा ठीक नहीं कर रहा, आप कोचिंग सेंटर में डाल दीजिए, इसको हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अब सवाल यही है कि आप स्कूल की भी फीस दे रहे हैं, यानी ड्यूअल फीस, 2 फीस कमाई करने का यह पूरा फॉर्मूला बन गया है। हैरत की बात यह है कि ये कोचिंग संस्थान बच्चों के मसीहा बनते हैं लेकिन इसकी फीस का कोई हिसाब नहीं होता। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नीट की तैयारी पर एक छात्र जानते हैं कितना खर्च करता है, 4,00,000 रुपए औसतन। इसका पूरा ब्रेकअप भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए जेई की तैयारी पर हर छात्र 4 से 5 लाख रुपए खर्च करता है। सारा पैसा कोचिंग संस्थानों के पास जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी ऐसी सरकारी नौकरियों की तैयारी पर 1 से 2 लाख रुपए खर्च होता है और जब ये छात्र कोचिंग संस्थानों के वादों के बाद भी फेल हो जाते हैं तो मसीहा बनने वाले ये कोचिंग संस्थान कभी फेल हुए छात्रों की फीस वापस लौटाते हैं क्या? तब सारा का सारा ठीकरा इन बच्चों पर फोड़ दिया जाता है कि आपके बच्चे ने ही मेहनत नहीं की, आपके बच्चे की वजह से नहीं हुआ, जबकि वो मेहनत सारे बच्चे उसी तरीके से करते हैं। इसके बाद हमारे देश में कोचिंग का एक दूसरा मॉडल आता है जिसमें YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8,052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना YouTube पर खुद का अकाउंट है। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें शिक्षक आते हैं शालीनता के साथ, विषय पर ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं, विषय पर रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के गांव में आज भी कोचिंग संस्थान जैसी सुविधा कई जगहों पर नहीं है और जब वहां पर पढ़ाई का वही स्तर है जहां पर बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में ये ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है और बहुत सारे शिक्षा YouTube पर इस शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इनको कितने व्यूज मिलते हैं और कितने ऐसे लोगों को व्यूज मिलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कराने का नाटक करते हैं। लेकिन सवाल तो उन शिक्षकों को लेकर है जो खुद YouTube पर अपने वीडियोज में अलग अलग चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जानते हैं ये नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? उन मेहनती बच्चों के मां बाप की ईमानदार कमाई से। और सारी दिक्कत यहीं शुरू होती है। इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर टीचर्स ये बताते हैं कि वो बच्चों के किसी भी कोर्स का पैसा नहीं लेते। इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पसंदीदा एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट और बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं, कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको हम टीवी पर दोहरा नहीं सकते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि आप कम से कम कभी नहीं चाहेंगे आप या हम कि हमारे बच्चे इनसे सीखें। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ब्रांड बनाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, ये ऑडियंस बनाते हैं। ये सिर्फ छात्रों को नहीं देखते, ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स देखते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, रीच, और इसका एक बड़ा खेल खेलते हैं। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं हम, शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं हम, गरीब बच्चों के मसीहा हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही, मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। आपका हर व्यू, हर क्लिक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन किसी ना किसी की कमाई में बदलता है। यानी इनके लिए छात्र अब विद्यार्थी कम, डिजिटल संपत्ति ज्यादा बन गए हैं। और ये छात्र जब अपना समय इन YouTube टीचर्स को देते हैं तो बदले में इन्हें क्या मिलता है? कई बार इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती, जो मिलती भी है उससे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हम एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों ईमानदार YouTube टीचर्स हैं जो चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को उस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, आसान सरल भाषा में। लेकिन जानते हैं ऐसे टीचर्स को बहुत व्यूज नहीं मिलता है, वो आज भी व्यूज के लिए स्ट्रगल करते हैं। यही से बिजनेस मॉडल निकलता है जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। ऐसे टीचर्स जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं उसको विषय बना देते हैं और उस पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यही है कि अपना इमेज बनाने के लिए आ रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए आ रहे हैं, व्यूज बटोरने के लिए आ रहे हैं? इसके लिए ऐसे ग्रैब्स भी लगते हैं, वो जो आप यूट्यूब पर देखते हैं ना, जिसको देखकर बच्चे क्लिक करते हैं, ऐसे ग्रैब लिखते हैं जिसे बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना होता ही नहीं। थंबनेल भी जिसे कहा जा सकता है। इनकी पढ़ाई भी कंटेंट है और यह कंटेंट जितना भावनात्मक होगा कमाई ज्यादा होगी। यही वजह है कि सब कुछ पढ़ाने से ज्यादा दिखाई देने में व्यस्त है। यहां भी ज्यादा परेशानी नहीं है भाई, जिसको देखना होगा वो देखेगा।

0: के लिए व्यूज बटोरने के लिए हीरोगिरी नहीं करते, लेकिन कोचिंग माफिया स्कूल को डमी स्कूल बना देता है। आज सवाल है कि एक बार जाकर उन छात्रों के पास देखिए जिनकी पढ़ाई के लिए उनके माता पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी है और आप हंसी अट्ठहास कर रहे हैं। किसी मां ने अपने कंगन अपने गहने गिरवी रखे, किसी माता पिता ने लोन लिया, आज भी वो इस लोन की किश्तें चुका रहा है, उम्मीद पर जी रहा है कि उसका बच्चा उन्हें गरीबी के इस दलदल से कैसे निकालेगा। लेकिन ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बच्चों को बस सब्सक्राइबर बना देते हैं, और जब वो देखते हैं तो उनको पढ़ाई कम शिक्षा कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलता है, वो भी सस्ते किस्म का एंटरटेनमेंट। देखिए
1: दिल्ली के दो इलाके मुखर्जी नगर और करोल बाग देखा जाता है यूपीएससी तैयारी का हब माना जाता है, यूपीएससी का मक्का माना जाता है। पर इन इलाकों में कैसे बच्चे जो हैं संघर्ष कर रहते हैं, एक तरफ तो लाखों की फीस जो इंस्टीट्यूशंस को वो देते हैं और दूसरी तरफ अपना गुजर बसर करना। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया है, कई बार वो मेंस का पेपर भी लिख चुके हैं, कई बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं।
2: पूरा जो हो रहा है एक गठबंधन के तौर पे गठजोड़ बन चुका है विभिन्न कोचिंग माफियाओं का, जो कि ना बच्चों को क्वालिटी दे पा रहे हैं, ना बच्चों को सही से गाइड कर पा रहे हैं। बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही रह गया कि अधिकतम एडमिशन हम कैसे लें। क्लास में हजारों लड़कों को बैठा दे रहे हैं, है ना, वो बेचारे क्लास कर रहे हैं और 10-15 जो सेलेक्टेड होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, रील बना ले रहे हैं, उनका टॉपर सेमिनार करा दे रहे हैं, मतलब उनको पैसे दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं उन टॉपर्स को खरीदने के लिए।
3: बड़े जितने भी रील बना रहे हैं, कोई भी आप चाहे मुखर्जी नगर में हो यहाँ पे हो, जितने बड़े संस्थान का आप नाम जानते हो, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा, वो केवल रील्स बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, पढ़वाते दूसरे से हैं और उनसे कम से मिनिमम से मिनिमम पैसे वाला टीचर चाहिए। पता चला दूसरा 50,000 मांग रहा है, उनको 40,000 वाला मिल जाए, 40,000 पढ़वाएंगे। उनसे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी, कितने स्टूडेंट आ जाएं, रील बनवाएंगे एडवर्टाइज करेंगे।
1: कोचिंग का आप सर कितना देते हैं, किराए का आप कितना देते हैं, खाने पीने का अगर आप खर्चा लगाएं तो महीने का आप कितना लगा देते हैं?
4: कोचिंग का तो लगभग 1.5 लाख रुपए फीस जब आया था मैंने यहाँ पे किया था आज से 3-4 साल पहले, और खाने पीने का मिला के 8.5 रेंट है, वाईफाई, आरओ का रेंट, बिजली, न्यूज़पेपर, खाना पीना, मतलब 20-22 हज़ार रुपये महीने में लगभग लग जाता है।
5: रील और रियल लाइफ में यही अंतर है कि अब आप देख लीजिए रियल लाइफ का संघर्ष, देख लीजिए यहाँ एक छोटे से कमरे में हम लोग कैसे गुजारा करते हैं, और ऊपर से रेंट भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की गंदी हवा में जीते हैं, और यहाँ गंदी सड़कें हैं, यहाँ पार्क गंदे हैं, और ऊपर से अब तो यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है कि गर्मी में इस कमरे में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
0: पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में, अगली खबर का हम रुक कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में राज कर रही तृणमूल कांग्रेस में अब फूट पड़ने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि बंगाल में टीएमसी के 80 विधायकों को एक मंच पर लाना ममता बैनर्जी के लिए मुश्किल हो गया। सोचिए कौन कल्पना कर सकता था कि ममता बैनर्जी एक तो 80 विधायक उनकर चुनकर आए और वो अपने विधायकों को एक साथ अपने बैठक में नहीं बुला पा रही हैं। चुनाव हारने के बाद ये तीसरी बार हुआ है जब ममता बैनर्जी की बात उनके ही विधायक अनसुना कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले दीदी की एक आवाज पर सारे विधायक एक सुर में उनके नाम का जाप करते थे, लेकिन अब वो अपने 80 विधायकों को बुलाती हैं तो हर बार गिनती कम होती जाती है। जैसे चुनाव हारने के बाद उन्होंने 6 मई को जीते हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी, जानते हैं 70 विधायक ही पहुंचे, 10 विधायक नहीं पहुंचे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर समर्थन को लेकर चर्चा होनी थी। अब हारने के बाद ममता बैनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं वो किसी तरह से अपनी पार्टी को एकजुट रखें, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने 19 मई को एक और बैठक बुलाई तो उसमें पार्टी की आगे की रणनीति तय करनी थी, लेकिन इसमें 80 विधायकों में से इस बैठक में 35 विधायक इस बार गायब थे। पहली बैठक में 10 विधायक गायब, दूसरी बैठक में 35 विधायक गायब, फिर ममता बैनर्जी ने 31 मई को विधायकों की एक और बैठक बुलवाई, लेकिन इस बैठक में केवल 20 विधायक पहुंचे थे, यानी 60 विधायक गायब थे। कहा तो ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि हार के बाद उनके सभी विधायक

0: के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन यहां तो स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि टीएमसी में फूट पड़ चुकी है और अब धीरे धीरे सारे नेता विधायक ममता बनर्जी से कन्नी काटने लगे। मीटिंग्स में विधायकों के ना पहुंचने की एक बड़ी वजह पार्टी के अंदर मौजूद गुटबाजी है। हमेशा से ममता और अभिषेक बनर्जी के करीबियों को मुख्य पदों पर नामित कर दिया जाता है। इस बार विधायकों का गुस्सा इस बात पर है कि नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए उनकी राय क्यों नहीं ली गई। दरअसल अभी तक पार्टी में ममता या अभिषेक बनर्जी वीटो पार वाले नेता थे और उनकी बात सभी को माननी होती थी। लेकिन जो हाल इस बार के चुनाव में हुआ उसको देखते हुए पार्टी के विधायकों ने पहली बार मनमानी के खिलाफ अपनी बात रखी। ये मनमानी 6 मई से शुरू हुई। 6 मई को टीएमसी की पहली बैठक हुई थी जब विधानसभा सचिवालय को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप बनाया गया। विधानसभा स्पीकर ने विधायकों के समर्थन वाला आधिकारिक पत्र मांगा। अब 13 मई को सांसद और टीएमसी की महासचिव अभिषेक बनर्जी ने खुद के दस्तखत वाली एक चिट्ठी भेज दी। लेकिन इसके बाद फिर से विधायकों की सहमति वाली चिट्ठी मांगी गई। इसी समर्थन को हासिल करने के लिए 19 मई को जो बैठक हुई उसमें 70 विधायकों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी तैयार की गई, जबकि इस बैठक में केवल 45 विधायक पहुंचे थे, 35 विधायक आए ही नहीं थे। विधायकों ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने उनके नाम पर जाली दस्तखत करके पत्र भेजे थे। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर अब इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसकी जांच सीआईडी को सौंपी गई। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को जांच में शामिल होने, विधायकों के समर्थन वाले पत्र की ओरिजिनल कॉपी मांगी। इस मामले की जांच में तेजी इतनी है कि सीआईडी की टीम आज ही अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंच गई। टीएमसी के विधायकों में ममता और अभिषेक बनर्जी की इसी मनमानी को लेकर गुस्सा है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके नेताओं को बीजेपी डरा रही है।
1: तृणमूल कांग्रेसের এমএলএ পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে।
2: तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को पुलिस धमका रही है, उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पहले पुलिस का फोन आता है, फिर बीजेपी दफ्तर से। क्या यही लोकतंत्र की मिसाल है? आपने थोड़ी बहुत लूटपाट करके चुनाव जीता, ठीक है, आप एक काम कीजिए। इसके बजाय आप बेकार का काम क्यों कर रहे हैं? आप घटिया काम क्यों कर रहे हैं?
1: गणतंत्र नमूना एक तो लूट करे अपनारा वोटे जीते।
0: अभी तक वो पार्टी को अपने हिसाब से ममता बनर्जी चला रही थी, अब उनके लिए मुश्किल आ रही है, इसीलिए आज परेशानी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से सत्ता में होने की वजह कोई भी उनके फैसलों पर पहले सवाल नहीं उठाता था, लेकिन अब टीएमसी के हार के बाद हर स्तर का नेता जो पार्टी के डिसीजन है उन पर गुस्सा दिखा रहा है। 24 मई को बारासात जिले के अध्यक्ष टीएमसी सांसद डॉक्टर काकुली घोष दस्तीदार ने पद से इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि वो पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार से नाराज थे। 26 मई को टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने अराजकता का अंत कर दिया है। इसके बाद 27 मई को सांसद काकुली घोष टीएमसी के 6 विधायकों के साथ सीएम शुभेंदु अधिकारी के सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच गए। इसे बीजेपी के साथ उनकी बढ़ती करीबी के तौर पर देखा गया। 27 मई को ही टीएमसी के 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से एक बंद कमरे में मुलाकात की, फर्जी हस्ताक्षर वाले समर्थन पत्र की शिकायत की। ममता बनर्जी ने जब इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। 28 मई को टीएमसी नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया।
3: ममता बनर्जी मास लीडर, पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में ममता दीदी जैसे, तो उनका जो काम करने का था पार्टी उससे हट हट कर, ये अभिषेक बनर्जी का लोग मुझे पूछ रहे थे कि अब अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा ऋतव्रत कभी खड़ा हुआ?
4: आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं, और दल अनैतिक काम को ही समर्थन करता है। आज दल के इस पदक्षेप से ये साफ जाहिर हो चुका है।
5: आज ही ऑनरेबल सीएम सुरेंद्र अधिकारी वो ये बता दिया कि पार्टी के अंदर से वो दोनों कैसे स्पीकर को खत लिखा, अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है।
0: अगली खबर शुरू करने से पहले आप ये तस्वीरें देखिए। 31 मई की शाम करीब 5 बजे चाइना के एक चमकते हुए शहर हाबिन के आसमान में एक ऐसा तूफान उठा जिसे देखकर लोग कांप उठे। प्रकृति के ऐसे रूप की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से कोई मामूली बादल नहीं बल्कि एक दैत्याकार गगनचुंबी दीवार पूरे शहर को निगलने के लिए जैसे आगे बढ़ रही थी। मतलब किसी हॉलीवुड की आपदा वाली फिल्म आपने देखा ही ऐसी तस्वीर, मतलब जिसे देखकर इंसान डर जाए। जो हमने डूम्सडे और प्रलय के दिन के बारे में तमाम कहानियां सुनी, लगे अचानक कि वही हो गया है। चाइना के हिलोंगजेंग प्रांत की यह खबर है जहां राजधानी हाबिन की यह खौफनाक तस्वीर है। इस रेतीले तूफान में हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इन विनाशकारी हवाओं ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। सड़कों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए बंकर्स की तरफ दौड़ते छात्र और हवा में उड़ती लोहे की छतें गवाही दे रही थी कि उस शाम हाबिन में कुदरत का सब्र टूट चुका था। खेल के मैदानों से लेकर हाईवे तक देखते ही देखते इस धूल के बवंडर ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह सोख लिया। कुछ मिनटों के भीतर गहरी काली रात में तब्दील हो गया दिन। विजिबिलिटी घटकर शून्य हो गई। गाड़ियां जहां की तहां थम गई। गाड़ियों की हेडलाइट्स और आसमान में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स भी इससे घने रतीले बवंडर को पार नहीं कर पा रही थी। सांस लेना दुभर था। आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ धूल का राज था। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: दिस इज द साउंड ऑफ जैक buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
9: Oh, ouch.
8: However you make money work, we can work with that.
10: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
11: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
12: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
13: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
12: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
15: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
16: विक्रम एक हिंट तो देते।
17: विक्रम
16: हिंट
15: बड़े आराम से।
18: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
19: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
20: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
18: मतलब
20: पंजाब नेशनल बैंक जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
18: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
20: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB मेरा अपना बैंक।
21: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
22: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
21: ज्यादा बड़ी ना है,
22: छोटे। ऑन कर दे, ऑन कर दे, ऑन कर दे,
21: पैक कर दे समर कूल।
22: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Kent se pani hota hai 100% pure.
5: Kent RO purity dikhata bhi hai.
4: Kent deta hai sabse shuddh pani.

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
0: Vimal, bolo zuba kesri.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के दावों पर क्या सोचता है आम मुसलमान?
3: ये राजनीतिक जुमला है और जो है यहाँ पे हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप बाढ़ देख रहे हैं, ये बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज्यादा है, तो इसके बाद अगर आप हमें भुई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू, जब से ज्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है। बांग्लादेशी अपने जगह पे है, वो अपना बॉर्डर क्रॉस के आ रहे हैं, वो हम लोग का राजनीतिक फेलियर है ममता बनर्जी का, जो उन लोग को यहाँ रोहिंग्या बोलकर रखने के लिए छोड़ दिया कि रोहिंग्या है या कहीं पर आकर के बर्मा से आके बस गया, उसको बांग्लादेशी आप करार दे दीजिए या बर्मा का लोग को करार दे दीजिए।
2: बांग्लादेश से लगते जिलों में मुस्लिम आबादी में विस्फोट के दावों पर क्या है बंगाल के मुस्लिम नागरिकों की राय? क्या बंगाल में किसी साजिश के तहत आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है? बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की दशकों पुरानी बीमारी को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या वोट के लिए बंगाल में अवैध घुसपैठियों को आने दिया गया? पश्चिम बंगाल हो या फिर असम, बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में घुसपैठ सबसे आगे रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हर नेता ये साबित करने में लगा रहा कि ममता घुसपैठियों को बसा रही हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना वोट बैंक मानती हैं। बीजेपी ने इस बार बंगाल जीतने के लिए कई रणनीति पर काम किया, जिसमें एक रणनीति घुसपैठ से बंगाल की संस्कृति को हो रहे नुकसान की थी। इस नैरेटिव को फैलाने के लिए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया, जिसका नाम इश्तिहार रखने पर बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और इसे घुसपैठियों के बंगाल की संस्कृति पर पड़ने वाले असर से जोड़ा। ममता पर तुष्टिकरण का आरोप लगाने के लिए बीजेपी ने साल 1905 के लाल इश्तिहार शब्द की याद दिलाई और दावा किया कि ममता ने ऐसा सांप्रदायिक भावना पैदा करने के लिए किया है, क्योंकि उस समय ढाका के नवाब कलीमुद्दीन मुल्ला ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए हिंदुओं के प्रति विद्वेष फैलाने के मकसद से जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम भी इश्तिहार था। बंगाली बनाम पारसी की इस जंग का बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। बीजेपी की जीत के बाद जिस तरह से टीएमसी के दफ्तरों से आधार कार्ड मिलना शुरू हुए, उससे सवाल उठा कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों को बसाकर उन्हें बंगाल की योजना में हकदार बनाकर उनके वोट से जीतती रही।

0: एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इंसान का वजन हर बार तौलने से ही नहीं, कई बार बोलने से भी पता चलता है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: चुनावी तैयारियों में जुटे यूपी के सीएम योगी का सख्त बयान, गाय से लेकर होंडा गर्दी तक पर सीधी चेतावनी, कहा शोहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल खड़े करने वालों को दीदी ने निकाला बाहर। नीट और सीबीएसई परीक्षा में सिस्टम बुरी तरह से फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश, शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक, अध्यक्ष दिग्विजय ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को लगा महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 11 रुपए बढ़ी। और भोपाल ट्विक्शा केस में सीबीआई की जांच तेज, वारदात की जगह क्राइम सीन रिक्रिएट, दोनों आरोपी रहे मौजूद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है। अब एक तरफ असद के एनकाउंटर को लेकर राजनीति शुरू हो गई तो दूसरी तरफ सूर्या का परिवार आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। बकरीद के दिन हुए सूर्या हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार बोले और योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहे हो तो गलती कर रहे। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आइए दिखाएं आपको गाजियाबाद के खोड़ा में अब क्या होने जा रहा है।
3: असद का एनकाउंटर, अब सीएम योगी का तगड़ा ऑर्डर। सूर्या हत्याकांड पर बोले योगी, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं।
4: पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है।
3: अब असद के घर पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस चिपक गया।
5: 15 दिनों के भीतर कोर्ट को अपने भावित कब्जे को हटाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3: गाजियाबाद के खोड़ा में उड़ने लगे ड्रोन, अपराधियों की पड़ताल। बकरीद के दिन मर्डर, 50 घंटे में एनकाउंटर, अब भड़की सियासत। गाजियाबाद की घोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन असद ने 11वीं क्लास के छात्र सूर्या चौहान की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या की तो गाजियाबाद से लेकर पूरी यूपी में जैसे कोहराम सा मच जाता है। सूर्या की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब सीएम योगी ने बकरीद से पहले ही चेतावनी दी थी कि गड़बड़ी की तो फिर इंतजार यमराज करेंगे।
6: यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए।
3: और खोड़ा हत्याकांड में ठीक वैसा ही हुआ। सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या करने वाले असद का 50 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया जाता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि असद गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में छुपा है, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। असद के एनकाउंटर में करीब 7 राउंड गोलियां चली, असद बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने असद को मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हो गया जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। अब घोड़ा के सूर्या चौहान हत्याकांड और असद के एनकाउंटर के बाद जब सीएम योगी बोले तो उन्होंने अपना मैसेज क्लियर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि अगर अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहे हो तो गलती कर रहे हो।
6: दोस्ती कैसी दोस्ती? आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है।
3: सूर्या के परिवार वालों की माने तो असद ने 28 मई यानी बकरीद के दिन सूर्या को कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था। जब सूर्या वहां पहुंचा तो आरोपियों ने उससे पूछा, तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या के मना करने पर और वहां से जाने की कोशिश करने पर आरोपियों ने मामूली विवाद या पुरानी कहासुनी को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर असद ने चाकू निकाला और सूर्या के पेट और शरीर पर ताबड़तोड़ 4 बार कर दिए और सूर्या की मौत हो गई। गाजियाबाद के खोड़ा में इस हत्याकांड से कोहराम मच जाता है और 50 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर कर दिया जाता है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों के नेताओं ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया है, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस एनकाउंटर को गलत बताया है।
7: देखिए, घटना बड़ी बीभत्स और हृदय विदारक है, संपूर्ण विश्व की आंखें खोल देने वाला है। चूंकि घटना मात्र एक लॉ एंड ऑर्डर की क्राइम की घटना नहीं है, ये विश्वास की हत्या है। और साथ ही साथ जिस तरह से ईद के दिन और कुर्बानी का नाम लेकर के और हिंदू युवक को कुर्बान किया गया, सार्वजनिक रूप से किया गया, ये बहुत सारे संदेश छोड़ता है।
8: क्या अपराधी तत्वों को आप सत्ता सौंपना चाहते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है? उसको दिखाने के लिए आप एक बच्चे की हत्या कर देंगे? और जब कानून के रखवाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पकड़ने के लिए जाएंगे तो आप गोली चलाएंगे? कौन माफ करेगा आपको? ये कहां का कानून व्यवस्था का आप चाह रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? एनार्की पैदा करना चाहते हैं सोसाइटी में? भरोसा तोड़ना चाहते हैं लोगों का? कौन भरोसा करेगा दोस्त पर? दोस्ती को कलंकित करने का काम गाजियाबाद की घटना ने किया है।
9: देखिए, हत्या का क्रम चल रहा है। अभी यहां लखनऊ में हत्या की गई है, बिल्डर की हत्या कर दी गई, अभी ये गाजीपुर में हत्या हो गई है। ये क्या है? ये फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटेलियर की हत्या कर दी गई है, विनीत राय उनका कोई राय साहब है वो, या लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया है, जंगल राज चल रहा है।
3: समाजवादी पार्टी के नेता असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एक और बड़ी बात कहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असद का एनकाउंटर हुआ और सूर्या के परिवार को न्याय मिला, लेकिन अगर जांच की जाए तो पता चलेगा कि गाजियाबाद में नाबालिग असद और सूर्या दोस्त थे और एक ही गली में रहते थे। सूर्या असद की बहन से दोस्ती रखता था जो असद को पसंद नहीं था और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसके बाद असद का परिवार अपना मोहल्ला बदल कर रहने लगा, लेकिन दोस्ती नहीं टूटी। यही मुद्दा सूर्या की जान के लिए खतरा बन गया। असद का पूरा सच क्या है, आइए उसके परिवार वालों से सुनते हैं।
10: ये हमारा भतीजा था।
11: अच्छा, परिवार में कौन कौन है असद के?
10: इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और ये इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है, और ये तीन ही मेंबर हैं जो एक साथ रहते हैं।
3: सूर्या हत्याकांड और असद एनकाउंटर पर खोड़ा के लोग क्या बोल रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं।
12: हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी इस चीज की, माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं कि ऐसे ही कार्रवाई करें, ऐसा करिए, किसी की हिम्मत नहीं करेगी कि इसके एनकाउंटर वो करने बंद ना कर दे।
13: ये जो लड़का था गलत टाइप का था, उधमबाजी करता रहता था, नशे में रहता था, और जो सूर्या को बहाने से बुला के जो मारा है बहुत ज्यादा गलत है। मतलब योगी बाबा की सरकार है, मुसलमान ये चारों का हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जो भी मुसलमान कुछ गलत करने की सोचेगा तो योगी बाबा सीधा उसे ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर देते हैं।
14: भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए और उसका जो इनकाउंटर हुआ है बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश हैं।
15: पहली बात तो जो उसने हरकत करी असद में, वो भी ईद के दिन, अगर झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था उससे, अगर दिक्कत थी उसे, उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है, सबको मतलब हो गई उससे। पुलिस का एनकाउंटर भी सामने आया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक
16: भाषा, जो जगह करेगा वैसे भरेगा। हमारे हिसाब से तो वो बच्चा मरा, वो बहुत गलत मरा और हम उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर हुआ, मैं खुशी बात की।
0: सूर्या हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने आरोपी असद के घर पर नोटिस चिपका दिया है। प्रशासन ने घर को अवैध बताते हुए आरोपियों को 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का अल्टीमेटम और आदेश दे दिया है। मकान खाली न करने पर बुलडोजर की कार्रवाई तय है। घर खाली कराने के लिए मुनादी भी करा दी गई है। मतलब यह हुआ कि असद के एनकाउंटर के बाद अब खूड़ा में असद के घर पर बुलडोजर की बारी है।
3: आपको बता दें कि सूर्या हत्याकांड में अब तक असद समेत चार के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने तीन आरोपियों फरहान, आसिफ, असद के पिता नवाब को गिरफ्तार किया है।
17: बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो छह युवक है उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और सातों के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे।
3: और ये देखिए, असद के घर पर एसडीएम के जरिए जारी किया गया नोटिस चिपका दिया गया है। इस दौरान बाकायदा ढोल बजाकर और मुनादी कराकर आसपास के लोगों को इस कार्रवाई की जानकारी दी गई।
18: श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला।
3: प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ये निर्माण अवैध जमीन पर किया गया है, इसलिए 15 दिनों के भीतर इस पर अपना जवाब दिया जाए। अगर तय समय में खुद कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
19: बकरीद के दिन सूर्या की हत्या हो जाती है और उसके बाद से ही पूरे परिवार और यहाँ के लोगों की एक ही मांग थी कि असद के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्राधिकरण जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है और इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जिस जमीन पर ये घर बना है ये अवैध कब्जे की जमीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहाँ पर इस जगह को खाली करवाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। जो कागजात है उस पर यह बताया जा रहा है कि असद के पिता नवाब के नाम पर ये जो घर है, ये जमीन है, ये घर अभी तक रजिस्टर्ड है, जिसके वजह से यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है और ये बोला गया है कि अगले आने वाले 15 दिनों में ये घर बिल्कुल खाली कर दें और ये जो भी अवैध कब्जा कर रखा है इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए, नहीं तो यहाँ पर प्रशासन खुद आकर इस पूरे कब्जे को हटाएगा।
3: साथ ही साथ पुलिस घोड़ा में ड्रोन उड़ा रही है। आप देख सकते हैं कि एडिशनल सीपी राजकरण नैयर, डीसीपी धवल जायसवाल और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस के मुताबिक खोड़ा को अपराध मुक्त बनाने के लिए ये अभियान 3 दिन तक चलाया जाएगा जिसे ऑपरेशन क्लीन स्वीप नाम दिया गया है।
20: जनपदीय पुलिस के द्वारा समय समय पर अपराधियों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में आज थाना खोड़ा क्षेत्र में हमारे द्वारा अपराधी सत्यापन के 3 दिन का अभियान चलाया जा रहा है।
3: खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर तो हो गया, अब उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। मयंक गौर के साथ अंशुल सिंह, खोड़ा, गाजियाबाद, आज तक।
0: और अब खबर त्रिशा शर्मा मौत मिस्ट्री। आज सीबीआई ने क्राइम सीन पर पूरी वारदात का रिक्रिएशन किया। मतलब ट्रिशा की मौत खुद फांसी का फंदा लगाने से हुई या फिर घर की चारदीवारी के अंदर ट्रिशा की पहले हत्या की गई और फिर उसकी डेड बॉडी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तीन घंटे तक सीबीआई ने रिक्रिएशन किया। इस दौरान ट्रिशा शर्मा की सास पूर्व जज गिरिबाला और पति समर्थ भी मौजूद रहे। आखिर सीबीआई ने जब 80 किलो की डमी को फंदे पर लटकाकर तीन घंटे तक सीन को रिक्रिएट किया तो क्या पता चला? क्या ट्रिशा की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या? आइए हम आपको बताते हैं।
3: ट्रिशा शर्मा के साथ मौत से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? केस हत्या का है या फिर आत्महत्या का? केस की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई आज क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंची। यहां पर सीबीआई की टीम है, पुतला है तो वैसा ही फंदा है जिससे ट्रिशा की डेड बॉडी लटकती हुई मिली थी। सीबीआई ने ट्रिशा केस को सुलझाने के लिए क्राइम सीन पर वारदात का पूरा रिक्रिएशन किया। सीबीआई ने पहले डमी पुतले को क्राइम सीन पर फंदे से लटकाया और फिर पुतले को फंदे से उतारा। दरअसल पूछताछ के दौरान पति समर्थ ने जांच टीम को बताया है कि उसने ही ट्रिशा की डेड बॉडी को फंदे से नीचे उतारा था, जबकि सास गिरिबाला ने ट्रिशा के गले में बंधे फंदे की गांठ खोली थी। सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ की मौजूदगी में घटनाक्रम का पूरा रिक्रिएशन किया ताकि सास और पति के बयानों के हिसाब से घटनाक्रम की टाइमलाइन को परखा जा सके। सीबीआई ने रिक्रिएशन के लिए 80 किलो के दो पुतलों का इस्तेमाल किया क्योंकि ट्रिशा की लंबाई को लेकर घर वालों का दावा अलग है और ससुराल वालों का अलग, लिहाजा ट्रिशा के दो पुतले तैयार किए गए थे। करीब तीन घंटे तक चले रिक्रिएशन के दौरान सीबीआई ने ट्रिशा की सास और पति के बयानों के हिसाब से घटना की कड़ियां आपस में जोड़ी।
2: आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीबीआई जो है ट्रिशा शर्मा का जो ससुराल है गिरिवाला सिंह के घर पर तीसरे फ्लोर पर मौजूद है और वो क्राइम रिक्रिएशन किया जा रहा है कि ट्रिशा जो उस दिन 12 मई की रात में जो फंदा था उस पर जो झूली थी उस पर समर सिंह को भी साथ में लेकर सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है, उसी तरह से रिक्रिएशन किया जा रहा है। जो ट्रिशा का जो डमी पुतला है उसको क्राइम रिक्रिएशन के तहत उसको फिर से चढ़ाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हर एंगल को देखा जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि उस दिन क्या रात में हुआ था, क्योंकि सीबीआई का जो दल है वो 5 सदस्यीय टीम जो दिल्ली से आई हुई है वो लगातार इसको जांच कर रही
3: है। ट्रिशा केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन का सबसे बड़ा मकसद सास गिरिबाला और पति समर्थ के बयानों की सच्चाई परखने के साथ साथ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करना है। दरअसल जब किसी वारदात पर किसी तरह का कोई शक होता है, यानी वारदात को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने होती हैं, तो जांच एजेंसी गुत्थी को सुलझाने के लिए क्राइम सीन पर उसी स्थिति को दोबारा नाट्य रूपांतरण के जरिए दोहराती है। मकसद होता है घटनाक्रम को समझना, वारदात की टाइमलाइन को मैच करना, यानी वारदात की शुरुआत से लेकर अंत तक चीजें किस क्रम में हुई थी। रिक्रिएशन से जांच टीम बयानों और गवाहियों की सच्चाई परखती है। यही नहीं, इस दौरान जांच टीम आरोपियों की मौजूदगी में क्रॉस वेरिफिकेशन भी करती है ताकि पता चल सके कि जो बयान दिए गए हैं वो क्राइम सीन के हालात से मेल खाते हैं या नहीं। इसी कड़ी में पुतले का इस्तेमाल किया जाता है। जांच टीम मौजूद साक्ष्यों और बयानों के आधार पर क्राइम सीन पर ये तय करती है कि वारदात कैसे हुई।
21: रिक्रिएशन के बाद अब गिरिबाला सिंह को उनके घर से सीबीआई की टीम लेकर जा रही है, समर्थ सिंह को आगे की गाड़ी में, जबकि पीछे गिरिबाला सिंह को बैठाया गया है। 12:11 से ये पूरा सीन रिक्रिएशन चला है। करीब तीन घंटे के सीन रिक्रिएशन के बाद अब सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर से निकली है। गिरिबाला सिंह का घर है जहाँ पर ट्रिशा ने आत्महत्या की थी, उसका शव यहाँ पर मिला था।
3: ट्रिशा केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई अब तक कई गवाहों का बयान दर्ज कर चुकी है, तो वहीं ट्रिशा के घर वालों से एक एक डिटेल जुटा चुकी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई का पूरा फोकस ट्रिशा की मौत के पीछे की असल वजह तक पहुंचना है।
22: हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर्षित जो है सीबीआई की जो टीम यहाँ पहुंची है मिलने के लिए, देखिए सीबीआई के अफसर हैं जो हर्षित जो ट्रिशा का परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे, और बातचीत ट्रिशा का पूरा परिवार जो है उनसे आज यहाँ पे किया जाएगा। ये बड़ी तस्वीर है, अहम तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो पहुंच गई है ट्रिशा के परिवार से मिलने के लिए उस जगह पर जहाँ पे सीबीआई के जो अफसर है और साथ ही में जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए ये सीबीआई के अफसर है, महिला अफसर भी हैं, क्योंकि ट्रिशा के परिवार में जो महिलाएं हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पे होगी। तो फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंच गई है ट्रिशा के परिवार से बात करने के लिए, और यहाँ पे पहले ही दिन एक्शन मोड में सीबीआई दिख रही है। पहले गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और फिर गिरीवाला सिंह के बाद अब सीबीआई पहुंच गई है त्रिशा के परिवार से बातचीत करने के लिए, और पूरी की पूरी जो सीबीआई की टीम है वो अपने तमाम जो सबूत उनके पास मौजूद है, जो केस डायरी उनके पास है, जो एफआईआर है उसे देखते हुए फिलहाल अब सीबीआई की टीम यहां पहुंच गई है, और साथ ही में लोकल पुलिस भी है जो लगातार सीबीआई की टीम के साथ बनी हुई है।
0: क्राइम रिक्रिएशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सीबीआई की टीम पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह से नए सिरे से पूछताछ करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के लिए सीबीआई ने 50 सवाल तैयार कर लिए हैं। पहले दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ सीबीआई करेगी और उसके बाद दोनों आरोपियों माँ बेटे को एक साथ बैठाकर सीबीआई सवाल पूछेगी। शुरुआती जांच में त्रिशा केस में जांच टीम को मिले ऐसे कई सारे सबूत हैं जो आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल उठाने के लिए काफी।
3: त्रिशा के घर वालों का सीधा आरोप है कि मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि दहेज के लिए हत्या का है। चूंकि त्रिशा शर्मा की सास जज रही हैं, लिहाजा अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके हत्या को खुदकुशी में बदल दिया। घर वालों के आरोपों को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जैसे ही मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की, सास गिरिबाला और फरार चल रहा पति समर्थ सलाखों के पीछे पहुंच गए।
15: ये तो कारवा बनता गया, लोग जोड़ते गए, लोगों को एहसास हुआ क्योंकि ये बहुत बड़ा कलंक है समाज पर। हर एक घंटे में एक लड़की की हत्या हो रही है, ये इस कलंक को दूर होना ही है और ये एक नजीर बनना चाहिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए कि ऐसा लगे लोगों को, डरे लोग, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी। न्याय
1: वही में कह रहे थे शुरुआत में आपको ये रसूख का पूरा मामला लगा, उसमें दबके रह गया शुरुआत में,
15: इसी वजह से तो स्वयं संज्ञान लेना पड़ा सीबीआई साहब को, उनका धन्यवाद। अगर उनको ये ऐसा केस नहीं लगता तो उसको संज्ञान में नहीं ले।
3: त्रिशा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई को पूछताछ के दौरान अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी समर्थ सिंह ने सीबीआई को बताया है कि त्रिशा की मौत के बाद वो दो दिनों तक भोपाल में ही रुका था। इसके बाद वो जबलपुर चला गया जहां उसने फरारी के बाकी दिन बिताए। समर्थ ने यह भी बताया कि वो 22 मई को अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था। अब सीबीआई की जांच का फोकस इस बात पर है कि फरारी के दौरान भोपाल और जबलपुर में समर्थ की मदद किस किस ने की है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे ठहरने, आने जाने या अन्य सुविधाएं किसने उपलब्ध कराई। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस पहलू पर समर्थ पूछताछ में ज्यादा खुलकर जानकारी नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ त्रिशा केस से जुड़े डॉक्टर भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई बहुत जल्द मामले से जुड़े चिकित्सकों से पूछताछ कर सकती है। दरअसल त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने पहले दावा किया था कि त्रिशा ड्रग्स की आदी थी, उसका इलाज चल रहा था।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के शालीमार बाग में क्यों बुलडोजर दहाड़ रहा है, क्यों 143 इमारतों को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त किया जा रहा है और क्यों दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रोकी गई। देखिए,
3: ये देखिए कैसे दिल्ली में शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में बड़ी बड़ी इमारतें गिराई जा रही है। इलाके में बुलडोजर की दहाड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। सालों की यादें और खून पसीने से खड़े किए गए आशियाने मलबे के ढेर में तब्दील किए जा रहे हैं। लोग गुहार लगा रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाकर ये आशियाने खड़े किए, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई के आगे एक ना सुनी। दिल्ली के शालीमार बाग में जब प्रशासन का बेरहम बुलडोजर गरजा तो कई बेबस परिवारों के आशियाने जमीन दोज हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कानून के सख्त डंडे के आगे बेबसी के आंसू रोते बिलखते बुजुर्गों और महिलाओं की चीखें हवा में गूंजती रहीं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक सड़क के लिए जरूरी जमीन पूरी तरह खाली नहीं हो जाती, ये अभियान जारी रहेगा। सड़क के 30 मीटर के रास्ते में 143 पक्के अवैध निर्माण बने हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क पर अवैध कब्जों की वजह से यहां अक्सर जाम लगा रहता है, इससे लोगों को परेशानी होती है। 8 एकड़ सरकारी जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये व्यापक अभियान चलाया गया।
4: डीडीए और दिल्ली सरकार के बुलडोजर्स ने तमाम अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनक्रोच करने वालों को किसी भी तरह की कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और बुलडोजर लगातार चल रहा है क्योंकि सड़क चौड़ी करनी है और जो ड्रेन है ड्रेन को उसकी अपनी जगह दिलानी है। हमारे साथ धीरज कुमार एडवोकेट हैं जो बता रहे हैं, जो दिल्ली सरकार की पैरवी करने वाली टीम के सदस्य हैं, और इनसे हम जानते हैं कि पूरा ये मामला क्या था, आखिर इंक्रोचमेंट की शुरुआत कैसे हुई।
5: बगल में वहां पे मैक्स हॉस्पिटल और एक सरकारी अस्पताल है और बाकी बड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने हैं, वहां पे डीडीएमए का ऑफिस बनना है, मिनी सेक्रेटरिएट बनना है, तो काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो तभी से डिमांड थी कि भाई इस रोड को, तो सरकार ने जब चेक करा सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो पता चला कि ये मास्टर प्लान के अंदर ये 30 मीटर की रोड और 30 मीटर की रोड के साथ में एक 16 मीटर का ड्रेन भी था, तो टोटल 46 मीटर का रोड और ड्रेन मिला के होता था। जब पिछली सरकार थी तो पिछली सरकार के टाइम में इस ड्रेन को अगर आप देखेंगे वहां पे मौके पे तो मैक्स हॉस्पिटल से रोड स्ट्रेट आती है, इस लोकेशन पे आके रोड साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है और वहां पे क्या करा गया है कि जो ड्रेन है उस 16 मीटर की ड्रेन को कम करके 3 मीटर का ड्रेन कर दिया गया और रोड को घुमा दिया गया और उस ड्रेन के ऊपर रोड बना दी गई।
3: विकास की चौड़ी सड़क के लिए कानून ने तो अवैध निर्माण वाली जमीन वापस ले ली, लेकिन कई मासूम जिंदगियों के सिर से उनकी छत और सुनहरे सपने हमेशा के लिए छिन गए। आज तक ब्यूरो।
0: दस्तक में एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे कैसे ट्रंप के युद्ध में फंस गई पूरी दुनिया। आप देखते रहिए

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू,
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: कानपुर की धरती से उठेगी यूपी के विकास की आवाज, जनता के सवालों का सीधा और सटीक जवाब, हर क्षेत्र के दिग्गजों से आमने सामने होगी बातचीत। यूपी तक बैठक कानपुर जल्द आ रहा है, सिर्फ यूपी तक पर।
15: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारतवर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
16: ये माना जा रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोभ के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हाकिमपुर।

0: उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने चुनावी महायज्ञ के लिए अपने मोर्चे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली है। 2 और 3 जून को उत्तर प्रदेश में पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को लाने की तैयारी हो चुकी है, जिसके बारे में 11 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उधर लखनऊ में भी पूरा प्लान तैयार है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर अब बीजेपी 17 दिनों तक 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम की पॉलिटिकल टैगलाइन के साथ कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसमें हर विधानसभा में 10 किलोमीटर लंबी प्रगति पथ यात्रा निकलेगी। मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े पार्टी पदाधिकारी इलाके में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह शाम ग्रामीण इलाकों में चौपाल व जनसंवाद करेंगे। जनता को सरकार की 5 मुख्य योजनाओं की रिपोर्ट दी जाएगी, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना में बने और बनने वाले मकानों का जिक्र होगा, उज्ज्वला योजना की बात होगी, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख के मुफ्त इलाज वाले कार्ड का वितरण तेज किया जाएगा, पीएम स्वनिधि और जनधन योजना का प्रचार तेज किया जाएगा और यूपी में एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए विकास के बारे में बताए जाएंगे। सरकार पूरी कोशिश में है कि विकास की पिच पर वोट की सियासत सेट हो जाए, लेकिन खुद बीजेपी के नेता को शायद उस पर विश्वास नहीं। वरना हरदोई जिले के गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश नहीं कहते कि चुनाव विकास नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं।
1: हमने तो बहुत विकास कराते देखे हैं, जिन जिन गांव में सड़कें बनवा दी उन गांव में बक्से में भूसे बोटे नहीं निकलते। हम प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, चुनाव तिकड़म से जीता रहता है, चुनाव विकास से नहीं जीता रहता। तो इन 6 साल 1 महीने में साम राम दंड भेद जो भी तिकड़म पाका पाना कर लेना, अगला चुनाव आपको जीतना है। फिर
0: वैसे तो विधायक श्याम प्रकाश पंचायत चुनाव के लिए प्रधानों को चुनावी जीत का मंत्र सिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, जिसके लिए निर्दलीय विधायकों को बीजेपी में लाने की जुगत शुरू हो चुकी है। उधर समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी भी नजर आ रही है। पता चला है कि इस बार अखिलेश यादव 2027 का टिकट सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर फाइनल करेंगे। इसमें एक निजी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट मंगाई जा रही है। पार्टी के बूथ और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के फीडबैक से उसका मिलान किया जा रहा है। खबर है कि टिकट उसी को मिलेगा जिसका जनाधार और छवि दोनों ठीक होगी।
2: हमारी पार्टी प्रत्याशी को उतारेंगे, यहाँ से भी हमारे कान में सज्जन थे, पार्टी के हमदर्द थे, एक ऐसा प्रत्याशी उतारना तो बताओ जनता की ये जब आवाज हो तो निश्चित परिवर्तन होना है।
0: हालांकि सर्वे और कार्यकर्ता फीडबैक पर समाजवादी पार्टी की चुनावी इंजीनियरिंग भारी पड़ेगी, क्योंकि तब इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर धर्म जाति की विसाद पर भी उम्मीदवारों का वजन तौला जाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बाप रे बाप इतना कंफ्यूजन। 7 अप्रैल से लेकर ये वक्त आ गया, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच न तो डील हो पा रही है, न ही युद्ध विराम ठीक से हो पा रहा है। ट्रंप के वॉर प्लान ने दुनिया को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल रखा है। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील को लेकर बातचीत चल रही है, हर दिन पीस डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नया दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल यही है कि ट्रंप के जिद की कीमत पूरी दुनिया को, आपको और हमें चुकानी पड़ रही है। मतलब ट्रंप की करनी की सजा आज दुनिया के सारे देश महंगाई और गैस तेल की कमी की शक्ल में चुका रहे हैं। किसी को भी यह नहीं पता कि ट्रंप की सनक अभी दुनिया के लिए कितनी और

0: नहीं करते। आज पूरी दुनिया के लिए ईरान और अमेरिका का तनाव सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसे यूं समझिए, अमेरिकी राष्ट्रपति खुद शांति समझौते में टकराव के मुद्दों को सुलझाना नहीं चाहते। बड़ी बात यह है कि ईरान को धमकी तो देते हैं, लेकिन दोबारा ईरान के साथ युद्ध में उलझना नहीं चाहते। ऐसे में ट्रंप की नीति और नियत पर भ्रांति के चलते पूरी दुनिया फंसी हुई है। मतलब ट्रंप ने शांति समझौते को लटका रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के सर्वेसर्वा ट्रंप हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इसी गुरूर को 40 दिन चले युद्ध में चूर चूर कर दिया। नंबर एक, ईरान को युद्ध में नहीं हरा सके ट्रंप। नंबर दो, ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्लान फेल। नंबर तीन, ईरान के एटमी सेंटर को तबाह नहीं कर सके। नंबर चार, होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में ट्रंप फेल रहे। नंबर पाँच, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म। याद करिए, युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर कितने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ईरान ने बहुत जल्द ट्रंप की तमाम भ्रांतियों को दूर कर दिया। अंजाम ये हुआ कि ट्रंप को उस युद्ध विराम के लिए तैयार होना पड़ा जिसकी मांग ईरान की तरफ से कभी नहीं की गई।
1: We've been very nice. We haven't ripped down too many bridges. We did one only because they broke their word, they broke their promise. And remember, their promise was that they were going to open the Hormuz Strait. They didn't do it. They lied. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil.
0: ईरान को लेकर ट्रंप की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ट्रंप जितनी जल्दी कोई नया ऐलान करते हैं उतनी जल्दी ही यू टर्न मार लेते हैं। कभी कहते हैं कि पीस डील के लिए ईरान बेचैन है, कभी कहते हैं कि बहुत जल्द पीस डील पर मोहर लग जाएगी, तो कभी कहते हैं कि ईरान को मिटा देंगे। यानी ट्रंप के लिए आज ईरान गले की हड्डी बन चुका है जिसे वो ना तो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं।
2: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
0: ट्रंप का दावा है कि पीस डील में ईरान का परमाणु प्रोग्राम शामिल है। ईरान जल्द से जल्द समझौता चाहता है। दोनों मुल्कों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है और बातचीत अच्छी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी करो, कुछ कहते हैं धीरे चलो, कुछ युद्ध की बात करते हैं और कुछ उसके खिलाफ बोलते हैं। इससे बातचीत करना और मुश्किल हो जाता है। बस आराम से बैठिए, आखिर में सब अच्छा होगा। इधर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत पटरी पर है, जल्द पीस डील पर बात बन जाएगी। उधर अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि उसने ईरान के गोरुख शहर और केशन द्वीप पर आत्मरक्षा में हमले किए हैं। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा, ये कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई। अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और दो वन वे अटैक ड्रोन को निशाना बनाकर नष्ट किया। ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री रास्तों से गुजर रहे जहाजों के लिए सीधा खतरा बन रहे थे। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सब कुछ ठीक है तो हमले क्यों जारी है, क्यों अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है? यही नहीं, अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया है। IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका की तरफ से हमले के लिए इस्तेमाल हुए एयर बेस को निशाना बनाया है। ये वही बेस है जहां से अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के सिरिक द्वीप के टेलीकॉम टावर पर हमला किया था। हमले सिर्फ अमेरिकी एयरबेस तक सीमित नहीं है, ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर मिसाइलें दागी। ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा अमेरिकी सेना कर रही है। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमला हुआ तो ईरान को आत्मरक्षा में सैन्य कार्रवाई का हक है।
3: अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ईरानी मीडिया की बात माने तो ईरान ने अपनी लक्ष्मण रेखा अमेरिका को बता दी है, न तो ईरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता करेगा और न ही ट्रंप के किसी दबाव में झुकेगा। मतलब यह हुआ कि ईरान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर ट्रंप ने शांति समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी तो ठीक, अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान भी विध्वंसक

0: ट्रंप और मुश्तबा के स्टैंड में बड़ा फर्क है। ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, जबकि मुश्तबा जो कहते हैं वही करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान परमाणु प्रोग्राम को रोकने और एनरिच यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है, लेकिन ट्रंप के इस दावे की हवा ईरान ने निकाल दी। हम जानते हैं कि परमाणु मामलों पर कार्रवाई कब आवश्यक है। परमाणु मुद्दे के विवरण पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इस समय हमारी प्राथमिकता युद्ध को समाप्त करना है। ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम समझेगा वो उठाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को लेकर जो खबरें छप रही हैं वो अटकलों से ज्यादा कुछ नहीं है। दावे के मुताबिक बातचीत अभी जारी है और किसी भी अंतिम समझौते तक पहुंचने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं। ईरान का कहना है कि अब तक किसी भी अंतिम दस्तावेज पर सहमति नहीं बन पाई है। युद्ध विराम में लेबनान शामिल है, ऐसे में एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्ध विराम का उल्लंघन है। किसी भी उल्लंघन के परिणामों के लिए अमेरिका और इसराइल जिम्मेदार हैं। वहीं ईरान के मुख्य वार्ताकार गालिबाफ ने अमेरिका पर युद्ध विराम का आरोप लगाया है, जिसमें ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखना और अपने सहयोगी इसराइल को लेबनान में हमले बढ़ाने से रोकने में विफल रहना शामिल है। लेबनान में नरसंहार करने वाले ज़ायोनी शासन द्वारा नौसैनिक नाकाबंदी और युद्ध अपराधों में वृद्धि युद्ध विराम के प्रति अमेरिकी गैर अनुपालन का स्पष्ट प्रमाण है। हर विकल्प की एक कीमत होती है और वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि अब लेबनान पर इजरायली हमलों को मुद्दा बनाकर ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। वहीं ट्रंप की कमजोर नस यानी हॉर्मुज आज भी ईरान ने दबा रखी है। यही वजह है कि हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की बौखलाहट जग जाहिर है।
1: Now the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: सिर्फ हॉर्मुज की बात करें तो इस मुद्दे पर ट्रंप इतनी बार बयान दे चुके हैं कि उसकी गिनती करना मुश्किल है। हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की, लेकिन ट्रंप का ये दांव भी ईरान के खिलाफ नाकाम साबित हुआ।
2: امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره ما کنترل تنگه دست ماست اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم ما بعد دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت
0: حالا هی ترامپ اور ان کی ٹیم کی طرف سے ایران کے خلاف آکرامک بیان بازی جاری ہے لیکن تمام دھمکیوں اور چیتاونیوں کے بعد ایران اپنے سٹینڈ پر قائم ہے یعنی نہ تو ایران جھکا اور نہ ہی ٹرمپ کے دباؤ میں آیا
3: The teams have been going back and forth. And President Trump has made it very clear, he talked about it at the cabinet meeting, that he has several red lines. And Iran has to turn over their highly enriched uranium. They cannot pursue a nuclear weapon. And the Strait of Hormuz, back to your question on energy, has to free transit. Navigation of the seas has to be free and open as it was before. So he's not going to take a bad deal. He's going to make a great deal for the American people.
0: ऐसी तमाम धमकियों को ईरान ने अनसुना कर दिया। बड़ी बात यह है, जब तक अमेरिका ने ईरान पर हमले किए तब तक ईरान ने पलटवार किया। ईरान के इरादे एकदम साफ हैं। जब तक ट्रंप झुकेंगे नहीं तब तक ईरान रुकेगा नहीं। आज तक ब्यूरो।
4: पूरी दुनिया इस समय अमेरिका और ईरान के युद्ध से परेशान है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर युद्ध तो थोप दिया और अब ये तनाव ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील करने में जुटे हुए हैं, इसराइल लेबनान में कहर बरपा रहा। लेबनान में घमासान अपने चरम पर है और शहर शहर कोहराम बढ़ता ही जा रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा 26 साल बाद इजरायल ने किया है। इतना ही नहीं, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेनाओं को जमीन पर आक्रमण और तेज करने के आदेश भी दे दिए। तो आखिर नेतन्याहू के दिमाग में चल क्या रहा है, आइए देखते हैं।
0: फिर बढ़ गया घमासान, फिर दहल रहा है लेबनान। ईरान से दोस्ती का खामियाजा भुगत रहा है लेबनान। हिजबुल्ला के हर ठिकाने पर इजरायली सेना का अटैक। लेबनन के सदियों पुराने किले पर इजरायल का कब्जा। क्या पूरे लेबनन पर कब्जा करके दम लेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। लेबनन के सदियों पुराने किले पर इजरायल का कब्जा। क्या पूरे लेबनन पर कब्जा करके दम लेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल के हमलों से एक बार फिर लेबनन थर्रा उठा है। टायर शहर से लेकर कई इलाकों में इसराइल की एयर स्ट्राइक से लेबनन को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात इतने हाहाकारी हो गए हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन तेजी से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जबकि फ्रांस ने यूएन से आपात बैठक बुलाने की मांग तक कर डाली है। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने सेना को हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनन में अपने जमीनी सैन्य अभियान को तेज करने के आदेश दिए हैं। इसराइली सेना पहले से ही लेबनन की लिटानी नदी तक के इलाके को अपने नियंत्रण में ले चुकी है, लेकिन अब इसराइली सैनिक वहां से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित जहरानी नदी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इसराइल ने लेबनन ब्यूफोर्ट पर कब्जा जमा लिया है। ये लेबनन की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, लेकिन अब इस पर इसराइल का कब्जा है। इन वायरल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक एक करके इसराइल की सेना किले के अंदर घुस रही है और उसके हर एक हिस्से पर कब्जा कर लेती है। इसराइली अधिकारियों की ओर से रविवार को तस्वीरें जारी की गयी और इन तस्वीरों में किले पर इसराइली झंडे लहराते दिखाई दिए।
4: आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ हमारे साथ हैं। इसराइल ने फिर से अशरफ लेबनान पर हमले शुरू कर दिए, आखिर इसका मतलब क्या हुआ अशरफ?
5: बस मात्र एक ही मकसद है जो इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू चाहता था। जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी, या हम कहें जब सीज फायर हुआ था, इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में हो, क्योंकि इस युद्ध में जो कि 28 फरवरी को शुरू हुआ था और साझा तौर पर इसराइल के कहने पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, उसके बाद जिस अंदाज से नुकसान उठाना पड़ा अमेरिकी सेना को, खासतौर से उन बेसिस को जो कि खाड़ी के अलग अलग देशों में हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये मजबूरी बन गई थी कि वो इस युद्ध का अंत करे, और जो दबाव अमेरिका की जनता और कांग्रेस की ओर से उन पर पड़ा था, तो उस भी जो है अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर ली, बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन वो काफ़ी नागवार गुजरा है बेंजामिन नेतन्याहू पर। और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है सबसे कमज़ोर नस जो है हम कहें ईरान की हिजबुल्ला, उस पर हमले तेज़ कर दिए, और अब हमले ही तेज़ नहीं किए बल्कि दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर जो है कब्जा भी कर दिया। और साथ ही साथ अब इसराइल ने यह भी धमकी दी है कि अगर हिजबुल्ला की तरफ से नॉर्दर्न इसराइल पर कोई हमला होता है तो वो बीरूत जो कि राजधानी है लेबनान की उस पर हमले करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये साफ लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सफल हुए हैं अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को सबर्डाज करने में, और अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला रुख क्या होता है। जो मांग है ईरान की कि जो पीस टॉक्स हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें हर फ्रंट पे सीज फायर हो, यानी लेबनान में भी सीज फायर हो, तो अब देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को आमादा करते हैं लेबनान पर हमले रोकने से, या फिर क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपनी राह चलते हैं और अपनी जो है सत्ता बचाने के लिए और हमले तेज करते हैं लेबनान और हिजबुल्ला पर।
4: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: वो बकरीद का दिन था, 28 मई की दोपहर 3 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी असद और सूर्य प्रताप में झगड़ा हुआ। बाइक चलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। असद ने झगड़े की बात अपने पिता नवाब और अन्य आरोपियों को बताई। तभी गिरफ्तार आरोपी फरहान और आतिफ के साथ साथ अन्य आरोपियों ने मिलकर सबक सिखाने की साजिश रच डाली। महज बाइक चलाने का विवाद था। 28 मई की दोपहर 3:30 बजे आरोपियों ने सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया। फरहान ने पुलिस के सामने कबूला कि मैंने असद को चाकू दिया। असद के पिता ने कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आरोपी पिता नवाब के ये कहते ही उसके बेटे असद ने सूर्या के पेट में चाकू भोंक दिया। हमले के बाद सूर्या खून खून होकर वहीं गिर पड़ा। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में हत्या के लिए उकसाने वाला असद का पिता नवाब के साथ साथ अन्य 2 आरोपी फरहान और आतिफ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health in association with
1: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
2: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: ओमान और कतर के रास्ते वाशिंगटन और तेहरान के बीच जंग को पूरी तरह रोकने के लिए समझौता अब तक नहीं हुआ है। अमेरिका का ड्राफ्ट तैयार था, लेकिन ट्रंप ने आखिरी समय में उसमें कुछ बड़े बदलाव कर दिए। पहला बदलाव ये था कि किसी भी डील में ईरान को ये मानना पड़ेगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। उसे अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। दूसरा, हुर्मुज से जहाजों की मुक्त और मुफ्त आवाजाही हो सकेगी। ट्रंप ने सीएनएन को कोसते हुए लिखा कि वो ये दावा करता है कि ईरान के साथ डील में परमाणु मुद्दे की बात ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि डील पूरी तरह से इसी मुद्दे पर है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया, उसमें लिखा, ईरान सच में एक अच्छी डील चाहता है। जो अमेरिका और जो उसके साथ हैं, उनके लिए अच्छी डील होगी। ट्रंप अपने विरोधी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ अपने ही दल के कुछ रिपब्लिकन्स को देश विरोधी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी नकारात्मक बातों से उनके लिए अपना काम और बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें कोई ये न बताए कि वो जल्दी करें या धीरे चलें, या युद्ध करें या नहीं। वो आराम से बैठें, अंत में सब ठीक होगा। ट्रंप के इस पोस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि वो अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले यानी नेतन्याहू की बात करते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों ही नेता अपने अपने देश में चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। इसराइल में इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी की साख बेहद कमजोर हो चुकी है। जोर तोड़कर चल रही उनकी सरकार चुनाव में उतरी तो शायद वापसी न हो, क्योंकि विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले में केस भी चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की बात करें तो उनकी पार्टी को इसी साल नवंबर में बेहद अहम मध्यावधि चुनाव का सामना करना है। अमेरिका में ईरान युद्ध का विरोध हो रहा है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरा ट्रंप ने अब तक इस युद्ध में सिर्फ गंवाया है, हासिल कुछ नहीं किया। सबसे ताज़ा तस्वीर ईरान की चेतावनी की और कुवैत पर हुए हमले की है। अमेरिका को ईरान से जंग के मोर्चे पर दो टूक जवाब मिल रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ईरान के साथ डील में अपनी शर्तों को सख्त करते जा रहे हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्होंने ऐसी डील की है जो ओबामा के साथ हुई डील से ज्यादा अच्छी है। लेकिन ईरान उनकी शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं। 39 दिन की जंग में इसराइल अमेरिका के साझा हमलों के बावजूद वो अब भी अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। हुर्मुज को अब भी बंद कर रखा है, लिहाजा ट्रंप युद्ध से समझौता कर निकलने के बजाय उसे खींचते जा रहे हैं। दूसरी तरफ है नेतन्याहू, जिन्हें वाशिंगटन में ट्रंप की सोची समझी रणनीति और देरी का सीधा फायदा मिल रहा है। उधर तेहरान भी अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक इस बातचीत को लंबा खींचने की डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी बयान दाग दिया है कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते और बिना अपने अधिकार सुरक्षित किए कोई फाइनल साइन नहीं करेंगे। यानी दोनों तरफ से शह और मात का खेल जारी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ये जंग सिर्फ मोर्चे पर हथियारों से नहीं बल्कि चुनावी कैलेंडरों को देखकर लड़ी जा रही है। ट्रंप के पास आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य दबाव का फायदा है, तो नेतन्याहू के पास लेबनान और गाजा में जमीन पर कब्जा बढ़ाने का मौका। इस बीच ऊर्जा का संकट भयावह होता जा रहा है, जबकि ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान तनाव को खींचते चले जा रहे हैं। इन तीनों के चक्रव्यूह में दुनिया बुरी तरह फंस गई है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चुनावी तैयारी में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर हुंडा गर्दी तक फिर सीधी चेतावनी, शोधो सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल खड़ने वाले दो विधायकों को निकाला बाहर। नीट और सीबीएसई परीक्षा में सिस्टम बुरी तरह से फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश, शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक, अध्यक्ष दिग्विजय ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को लगा महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम 11 रुपए बढ़े। त्रिशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन रिक्रिएट, दोनों आरोपी मौजूद।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ठीक 20 दिन बाद एक बार फिर ट्विशा की मौत हुई। इस बार ये एक डमी मौत थी। वही घर, वही छत, वैसा ही फंदा और वही दो लोग जिन्होंने ट्विशा को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखने का दावा किया था, यानी ट्विशा की सास और ट्विशा का पति। ट्विशा की कदकाठी का और ठीक उसी के वजन का एक पुतला तैयार किया गया, उसके गले में फंदा डाला गया। फिर ट्विशा की सास से कहा गया कि वो फंदा खोले, पति से कहा गया कि वो लाश को नीचे उतारे, और ये सब कुछ कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजी गई ये ट्विशा की सास और पूर्व जज साहिबा है गिरबाला सिंह। इस वक्त ये सीबीआई की हिरासत में है और उसी हिरासत में ये इस वक्त अपने घर जा रही है, उसी घर में जिसकी छत पर 12 मई को ट्विशा की मौत हुई थी। पिंक रंग के कुर्ते और ट्राउजर में सीबीआई अफसरों से घिरी गिरबाला सिंह के चाल और तेवर में अब भी कोई फर्क नहीं आया। ये समर्थ सिंह है ट्विशा का पति और जज साहिबा रही गिरबाला सिंह का बेटा। ये भी 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में है। इस वक्त उसी सीबीआई हिरासत में सीबीआई वाले इसे अपने साथ उसी घर में ले जा रहे हैं जिस घर में 12 मई को ट्विशा की मौत हुई थी। ये एक पुतला है, इसे आप डमी भी कह सकते हैं। ये डमी कुल 3 टुकड़ों में है और हर टुकड़ा कार से निकाले जाने के बाद एक एक शख्स इसे उठाकर अपने साथ ले जा रहा है उसी घर में जिस घर में ट्विशा की 12 मई को मौत हुई थी। पुतले के 3 टुकड़ों में पहला सिर और धड़ है, उसके पीछे जो शख्स है उसके हाथ में दोनों हाथ हैं, और उसके पीछे जो शख्स है उसके पास इस पुतले के दोनों पैर। यह वजन तोलने वाला मशीन है, इसे वेइंग मशीन भी कहते हैं। जब पुतले के 3 टुकड़े आपस में मिला लिए जाएंगे तब उस पुतले का वजन लिया जाएगा इसी वेइंग मशीन से। पुतले का वजन ठीक उतना ही होना चाहिए जितना ट्विशा का वजन था। यह वजन घटाने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला वेट प्लेट्स है। इसमें हर तरह के वेट प्लेट्स हैं, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। अगर पुतले का वजन कम ज्यादा होगा तो इसी वेट प्लेट से उसके वेट को पूरा 80 किलो किया जाएगा। तो माँ बेटे यानी गिरबाला सिंह और समर सिंह घर के अंदर पहुंच चुके हैं। डमी यानी पुतला, वेइंग मशीन, वेट प्लेट्स, ये सब भी घर के अंदर पहुंचाए जा चुके हैं। सीबीआई की टीम, खासकर फॉरेंसिक टीम भी अब घर के अंदर जा चुकी है।

0: घर के अंदर दाखिल होने के बाद पुतला समेत सारा साजो सामान सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक टीम, अब सभी पूर्व जज साहिबा ग्रिवाला सिंह के घर के इसी छत पर इकट्ठा हो चुके हैं। सीबीआई की टीम के बीच बस आपको ये दो चेहरे अलग नजर आएंगे, और ये दो चेहरे हैं ट्विशा के पति समर्थ सिंह और ट्विशा की सास ग्रिवाला सिंह। अब सवाल यह है कि सीबीआई की इस टीम के बीच छत पर इस वक्त समर सिंह और ग्रिवाला सिंह क्या कर रहे हैं? तो बस यूं समझ लीजिए कि जिस रिक्रिएशन या डमी ट्रायल के लिए सीबीआई की टीम यहां पहुंची है, वो समर सिंह और ग्रिवाला सिंह के बिना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि समर सिंह और ग्रिवाला सिंह वो पहले दो शख्स थे जिसने अपनी बीवी और बहू को 12 मई की रात इसी छत पर ठीक इसी जगह फंदे से लटका देखा था। वो समर सिंह और ग्रिवाला सिंह ही थे जो ये बता सकते थे कि फंदा कैसे कसा था, गांठ गर्दन के किस तरफ थी, पैर जमीन से कितना ऊपर या नीचे था, फंदे और गांठ के बीच चेहरे का रुख क्या था। समर्थ सिंह अगर पहला चश्मदीद था तो दूसरी चश्मदीद थी समर्थ की माँ यानी ट्विशा की सास ग्रिवाला सिंह, क्योंकि वो ग्रिवाला सिंह ही थी जिसने 12 मई की रात ट्विशा के गले का फंदा खोला था। पर पहले समर्थ सिंह की बारी थी क्योंकि छत पर सबसे पहले वही गया था। अब छत पर ट्रायल शुरू होता है। सबसे पहले सीबीआई और फॉरेंसिक टीम टायर जैसी उसे रिंग पर इलास्टिक का ठीक वैसा ही एक बेल्ट बांधती है। बेल्ट कसा जा चुका था, क्राइम सीन पर समर्थ मौजूद है। सीबीआई की टीम बाकायदा बेल्ट का फंदा बनाने के बाद उस फंदे की गांठ या रस्सी की हाइट सब कुछ उसी के हिसाब से रिक्रिएट कर रही थी। जब समर सिंह ने फंदे के बारे में अपनी फाइनल राय दे दी, उसी के बाद ट्रायल का पहला फेज पूरा हो गया। अब बारी सबसे अहम ट्रायल की थी। थोड़ी देर पहले जिस पुतले या डमी को आपने तीन टुकड़ों में देखा था, अब वो तैयार हो चुका था। सभी टुकड़ों को जोड़कर बाकायदा उसे ट्विशा के वजन और हाइट के बराबर बनाकर उस पुतले को काले रंग की वेस्ट पहनाई गई। अब इस डमी को छत पर लगे उसी रिंग से लटकते इलास्टिक के बेल्ट के फंदे से गले को कसना था। शायद ट्विशा के गले में जो फंदा कसा था उसकी गांठ बाई तरफ थी, क्योंकि सीबीआई की टीम ने समर्थ से पूछकर डमी के गले में गांठ बाई तरफ ही कसी थी। अब फंदा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जिस जगह और जैसे ट्विशा की लाश पहली बार फंदे से झूलते हुए माँ बेटे ने देखी थी, उसी हिसाब से डमी को लटकाया गया। पूर्व जज साहिबा ग्रिवाला सिंह और उसके बेटे समर सिंह से बातचीत के बाद अब आखिरी ट्रायल पूरा करना था। ये ट्रायल ये था कि अब ट्विशा फंदे से झूल चुकी है। थोड़ी देर बाद उसका पति समर्थ और सास ग्रिवाला सिंह छत पर आती है और पहली बार दोनों ट्विशा को फंदे से झूलते हुए देखती, जैसा कि दोनों ने सीबीआई को अपने बयान में कहा था। जब पहली बार माँ बेटे की नजर फंदे से झूलती ट्विशा पर पड़ी, तब दोनों ने क्या किया, अब यही ट्रायल शुरू होना है। तो चलिए देखते हैं माँ बेटे का उस रात पहला रिएक्शन क्या था। सबसे पहले ट्विशा के करीब 12 मई की रात समर्थ गया था। उसने फंदे से झूलती ट्विशा को पीछे से पकड़ा, पर शायद वो ट्विशा को नीचे नहीं उतार पा रहा था क्योंकि गले में फंदा कसा था। तभी सास ग्रिवाला सिंह छत पर आई। वो ग्रिवाला सिंह ही थी जिसने ट्विशा के गले से फंदा खोला। दोनों माँ बेटे इस वक्त बिल्कुल वही सीन रिक्रिएट कर रहे। फंदा खोलने के बाद अब समर्थ किसी तरह ट्विशा के इस पुतले को जमीन पर रखता है। वजन शायद ज्यादा है, इसीलिए उसे ट्विशा को उठाने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद ट्विशा को किसी तरह छत की सीढ़ी के करीब तक लाया गया। सीबीआई की टीम भी रिक्रिएशन के दौरान उस सीढ़ी तक पहुंची, लेकिन अफसोस हमारा कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पाया। वैसे ये उसी 12 मई की रात की सीसीटीवी की तस्वीर है जब सीढ़ी के ऊपर समर्थ और फिर बाद में उसका एक कजन और पड़ोसी शायद ट्विशा को सीपीआर देने की कोशिश कर रहे थे, यानी उसकी सांस वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम तस्वीर में तो यही दिखाया गया। और इस तरह क्राइम सीन का रिक्रिएशन और ड्रमी ट्रायल अपने अंजाम को पहुंचता है।
1: सीबीआई और फोरेंसिक की टीम आज हूबहू ट्विशा के वजन के बराबर का डमी पुतला लेकर गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंचे हैं। दरअसल सीबीआई आज इस डमी पुतले के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि गिरिबाला सिंह और समर सिंह ट्विशा को फंदे से उतारने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक के जो बयान दिए हैं, क्या उसकी टाइमलाइन आज के सीन रिक्रिएशन से मैच होती है या नहीं। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम यह भी देखेगी कि त्विशा के गले पर जो निशान थे, क्या वैसे ही निशान इस डमे पुतले पर भी बनते हैं या नहीं। माना जा रहा है कि आज का ये सीन रिक्रिएशन सीबीआई की जांच में एक अहम कड़ी साबित होगा।
0: पर सवाल ये है कि आखिर इस रिक्रिएशन या डमी ट्रायल से सीबीआई किस नतीजे पर पहुंचना चाहती है? क्या किसी क्राइम सीन के रिक्रिएशन या डमी ट्रायल से केस की सच्चाई सामने आ सकती है? अगर हाँ तो कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि यह डमी ट्रायल क्या होता है? इससे सीबीआई ये कैसे पता लगा सकती है कि त्विशा ने खुदकुशी की या उसका कत्ल हुआ है? तो चलिए अब आपको क्राइम सीन का रिक्रिएशन और डमी ट्रायल का सच और डमी ट्रायल के नतीजे तीनों के बारे में बताता हूँ।
2: इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली। तो इसमें होता क्या है कि एक डमी यानी जो भी डिसीज्ड है उसके हाइट की, उसके वेट का, और जो भी जहाँ पर भी ये देखी गई होगी फर्स्ट टाइम, ये भी बहिनी और हस्बैंड, तो किस स्थिति में थी, उस तरीके से सिमिलर टाइप ऑफ दी लिगेचर मटेरियल जो भी इस्तेमाल हुआ होगा, सेम टाइप का लिगेचर मटेरियल जो है वो भी यूज होगा, और किस तरीके से जो एंकर पॉइंट था कि जहाँ पर की पक्की गठान जिसको कहते हैं वहाँ बंदी होगी, एंड नेक में जिस तरीके का भी लूप हो, तो ये एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
0: ये मध्य प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर हर्ष शर्मा है। हैंगिंग यानी फांसी से हुई मौत के सैकड़ों केस इन्होंने देखे। डॉक्टर हर्ष शर्मा के मुताबिक किसी भी रिक्रिएशन या डमी ट्रायल के लिए सबसे जरूरी होता है वो चश्मदीद, जिसने सबसे पहले क्राइम सीन को देखा। फॉरेंसिक जुबान में इसे लास्ट सीन भी कहते हैं, यानी ऐसा गवाह जिसने लाश को फंदे से लटकते हुए देखा, जिसने ये देखा हो कि जब लाश फंदे से झूल रही थी तब उसकी पोजीशन क्या थी, उसके पैर कहाँ थे, गले पर फंदे की गांठ किस तरफ थी, सिर किस तरफ झुका हुआ था।
2: लास्ट सीन या रादर लास्ट सीन से मतलब ये है कि जो पहली बार जिसने भी देखा होगा, जिस स्थिति में देखा होगा, उस स्थिति को क्रिएट करते हैं, और उससे एट टाइम्स जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफी मदद मिलती है।
0: असल में एक डमी ट्रायल के जरिए ये पता करने की कोशिश की जाती है कि जिसने सबसे पहले उस लाश को देखा क्या वो उस लास्ट सीन के बारे में सच बोल रहा है। डमी ट्रायल खास तौर पर उसी केस में किया जाता है जब पुलिस के आने से पहले ही फंदे से लाश को उतार ली जाती है, क्योंकि अगर लाश फंदे से झूल रही हो और पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर हो तो फिर उन्हें ये पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि लाश की पोजीशन क्या है या फंदे की गांठ किधर है। डमी ट्रायल में सबसे पहले मरने वाला या मरने वाली का वजन पता किया जाता है, फिर उसकी हाइट नापी जाती है, इसके बाद उसी हाइट की एक डमी तैयार की जाती है। डमी के साथ वेट प्लेट्स की मदद से बाकायदा उस डमी का वजन उतना ही रखा जाता है जितना मरने वाला या मरने वाली की होती है। मसलन त्विशा का वजन 80 किलो था, इसीलिए त्विशा के हाइट और कद काठी की जो डमी तैयार की गई उसका वजन भी करीब 80 किलो रखा गया। फंदे से लटकती लाश को सबसे पहले देखने वाले चश्मदीद से पुलिस ऐसे केस में जो बेसिक सवाल पूछती है वो ये कि फंदे की गांठ किधर थी, सिर किस तरफ झुका हुआ था, पैर और जमीन के बीच कितना फासला था। असल में ये वो सवाल है जो एक खुदकुशी और कत्ल के फर्क को बड़ी आसानी से साफ कर देते हैं। जैसे जब भी हैंगिंग के केस में कोई मौत होती है तो फंदे पर झूलते ही शरीर का पूरा वजन किसी एक तरफ झुक जाता है, और जिस तरफ पूरा वजन जाता है उसी तरफ का सिर का हिस्सा झुका होता है। दूसरा, हैंगिंग के केस में हमेशा गांठ कभी सेंटर यानी बीच में नहीं रहती, बल्कि वो दाएं या बाएं खिसक कर चली जाती है। जिस तरफ फंदे का गांठ होगा, हैंगिंग के केस में हमेशा उसके उल्टे साइड सिर झुका होगा। इसके अलावा ऐसे केस में एक और बेहद अहम चीज होती है, और वो है दोनों आंखों में से किसी एक आंख का थोड़ा सा या फिर पूरा खुला होना। फंदा कसकर खुदकुशी करने वाले यानी हैंगिंग के केस में एक और बड़ी अहम चीज होती है, और वो है मरने वाला या मरने वाली का स्टूल, यूरिन या फिर फीमेल एजुकेशन पास होना। अगर किसी को मारकर यानी किसी का कत्ल कर उसे फंदे से लटका दिया जाए तो ये सारी चीज नहीं होगी। ट्रिशा की मौत के इसी डमी ट्रायल में गिरिबाला सिंह ने जब फंदा खोला तब आपको पुतले के गले पर लाल रंग का एक निशान दिखा होगा। अब जाहिर है पुतले में खून तो होता नहीं, तो हुआ ये कि डमी ट्रायल के दौरान जिस बेल्ट का इस्तेमाल फंदे के तौर पर किया गया उस पर लाल रंग लगाया गया ताकि ये पता किया जा सके कि कसे हुए फंदे या फंदे के गांठ की वजह से ट्रिशा के गले पर बेल्ट के जो निशान आए थे क्या वो ठीक उसी जगह पर थे जो इस पुतले के गले पर आए। फंदे से गले पर आने वाले इस निशान को लिगेचर मार्क कहते हैं। जिस भी रस्सी कपड़े या बेल्ट से फंदा कसा जाता है उसके निशान गले पर तो आते ही है, साथ ही मरने वाले के गले के निशान जैसे बाल या चमड़ी उस रस्सी कपड़े या बेल्ट पर भी आ जाते हैं। इसीलिए हैंगिंग के केस में ज्यादातर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो वक्त पर मौके पर पहुंच जाते हैं वो फंदा खोलने की बजाय उस फंदे को ही काट कर अपने साथ ले जाते हैं। इससे गले के लिगेचर मार्क और उस फंदे पर आए उस गले के निशान या सबूत को मैच कर ये साबित कर दिया जाता है कि जिस फंदे या बेल्ट से मौत हुई है वो यही है। आमतौर पर फंदे पर मौजूद मरने वाले के बाल या चमड़ी के सबूत उठाने के लिए उस फंदे को उस हिस्से पर टेप चिपकाया जाता है, फिर उसी टेप को उखाड़ कर उस टेप पर आ चुके सबूत की फॉरेंसिक टीम जांच करती है। लेकिन ट्रिशा केस में मामला थोड़ा अजीब था। पहली बात तो ये कि 12 मई की पूरी रात पुलिस इस छत तक आई ही नहीं, 13 मई की सुबह आई भी तो उस बेल्ट को उतार कर उसने फॉरेंसिक टीम या पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को दिया ही नहीं, यानी पोस्टमार्टम के वक्त इसी बेल्ट की गैर हाजिरी की वजह से डॉक्टर ये पता ही नहीं लगा पाए कि ट्रिशा की मौत इसी बेल्ट के फंदे की वजह से हुई या गले में कोई और फंदा था। अब यहाँ सवाल ये है कि फंदे पर झूलती लाश को जिस शख्स ने सबसे पहले देखा अगर वही गलत बयान दे, गलत गवाही दे, लाश के बारे में गलत कहानी सुनाए तो फिर डमी ट्रायल का मतलब क्या रह जाएगा? क्या डमी ट्रायल सचमुच जांच एजेंसी को किसी नतीजे पर पहुंचा सकता है?
2: नतीजा उसे ये नॉर्मली जो नतीजे की बात है, नतीजे की बात ये होती है कि व्हेन वी रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट तो उसकी सच्चाई हमको जो भी है समझ में आती है और किस तरीके की चोटें आती हैं उससे, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली। तो सिमिलर कंडीशंस बनाई जाती हैं, जैसा मैंने कि कहा कि बॉडी वेट सेम हो प्लस द हाइट ऑफ द डिसीज दैट शुड बी सेम ऑफ द डमी।
0: वैसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि रिक्रिएशन या डमी ट्रायल बस इस हद तक तो काम आता है कि ये पता लगाया जा सके कि चश्मदीद सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन रिक्रिएशन या डमी ट्रायल से कोई भी जांच एजेंसी ये पता नहीं कर सकती कि मामला खुदकुशी का है या कत्ल का। वैसे ट्रिशा की मौत पर ये रिक्रिएशन या डमी ट्रायल कितना असर डालेगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन अब सीबीआई भी होशियार हो चुकी है। उसे पता है कि किसी सुलगते हुए केस पर कैसे काम करना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट जो भी आए पर कम से कम सीबीआई मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश में है कि देखो वो कितनी मेहनत से इस केस पर काम कर रही है। वरना आप ही बताइए, आज से पहले क्या आपने कभी किसी फांसी का ऐसा लाइव रिक्रिएशन या डमी ट्रायल देखा है? सीबीआई की टीम को भी पता था कि इस छत के ठीक सामने वाली छत पर पूरी मीडिया इकट्ठी है, हर कैमरे का रुख उन्हीं की तरफ है, फिर भी उन्होंने किसी पर्दे से क्राइम सीन को ढकने की कोशिश तक नहीं की। इतना ही नहीं, सीबीआई की गाड़ियां आराम से गिरिबाला सिंह के घर के इस गेट तक भी आ सकती थी, लेकिन फिर कैमरे में एक्शन कहां कैद होता। लिहाजा जिस गाड़ी में पुतले यानी डमी रखे थे उसे घर से दूर खड़ी कर वहां से पैदल इन पुतलों को उतार कर लाया गया ताकि हर कैमरा अच्छे से इन्हें कैद कर सके। अब सोचिए ये सब देखकर भोपाल पुलिस के सीने पर कैसे सांप लौट रहा होगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। एक पैरा एथलीट जो भारत की तरफ से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला था, दिल्ली में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यह हत्या उसके अपने ही एक साथी पैरा एथलीट ने किया। इन दोनों की ही आंखों की रोशनी कमजोर थी, गोली पीठ में मारी गई थी। जानते हैं एक साथी एथलीट ने अपने ही साथी एथलीट का कत्ल क्यों किया?
3: गाजियाबाद के हिंडन इलाके में यही वो साई उपवन है जहां 30 मई की दोपहर को चिराग त्यागी की लाश मिली थी। 24 साल का चिराग कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि मुरादनगर का रहने वाला एक नामी पैरा एथलीट था जिसने हाल ही में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और एशियन पैरा गेम्स में भारत की ओर से खेलने वाला था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर चिराग की जान किसने ली और क्यों। चिराग के सिर पर गोली के निशान थे। सबसे पहले पार्क में घूमने आए लोगों की नजर लाश पर गई और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी।
4: पुलिस वालों का फोन आया था कि ये नंबर है और हमें ये मिला है तो आप कौन लगते हैं। मैंने कहा मेरे भाई का है। उन्होंने कहा कि आप एमएमसी आ जाइए। चुप लग गई है। तो जब एमएमसी पहुंचा तो जाके मुझे पता लगा कि उसका मतलब एक्सपायर हो चुका था। तो मैंने पूछा पुलिस वालों से तो उस टाइम तो पुलिस वालों ने कुछ मुझे बताया नहीं बट बाद में जब पता लगा कि उसका किसी ने डेथ वगैरह हो गई है।
5: आप मुझे फोन लगते हैं
4: और मैं उसे मामा का बेटा हूँ मैं उससे और अकेला ही हूँ वो अपने मम्मी पापा के।
6: मेरे छोटे भाई ने दीपक ने फ़ोन किया कि किसी का फ़ोन आया है कि चिराग का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने चिराग के फ़ोन पर फ़ोन करा तो पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है चिराग यहाँ डेड कंडीशन में मिला है और आप आ जाओ। हम आए तो चूँकि जो माया महामाया स्टेडियम है इसके पास जो है ना पुलिस चौकी है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाके हमें सारी सूचना मिली। तब से पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच के बाद ही निष्कर्ष आएगा जो भी है।
3: शुरू में इस मर्डर केस को लेकर पुलिस के पास भी कोई क्लू नहीं था क्योंकि न तो चिराग के घर वाले अपनी किसी के साथ दुश्मनी की कोई बात कह रहे थे और न ही उन्हें चिराग से किसी की कोई दुश्मनी का पता था।
7: आपको लगता है कि क्या घटना हो रही है किस तरह से कोई
6: भैया हमें अभी तक किसी पर शक नहीं है क्योंकि शक इसलिए नहीं है ना हमारी किसी से दुश्मनी है ना उसकी दुश्मनी। ये तो पुलिस निष्कर्ष के बाद ही पता लगेगा कि उसकी दुश्मनी किससे थी या किसने क्या किया।
5: पुलिस क्या बता रही
4: है? अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया।
5: क्या कोई गनशॉट इंजरी है? कोई
4: नहीं कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं अभी। कुछ पता नहीं।
3: इस बीच पुलिस लगातार चिराग के बारे में जानकारी जुटा रही थी। वो गाजियाबाद के ही मुरादनगर इलाके के बसंतपुर सिंथली गाँव के रहने वाले थे और हाल ही में पैरा एथलेटिक्स कैंप में हिस्सा लेने बेंगलुरु गए थे। चिराग एक दृष्टि बाधित नौजवान थे यानी उन्हें आम लोगों के मुकाबले काफी कम आंशिक रूप से दिखाई देता था और वो इसी कैटेगरी की एथलेटिक्स मुकाबलों में भी हिस्सा लेते थे। बेंगलुरु से लौटकर वो दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में ठहरे और शनिवार को अपने गांव लौटने वाले थे लेकिन इससे पहले कि चिराग गांव पहुंचते बीच रास्ते में ही किसी ने उनका कत्ल कर दिया।
8: कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में आज 3 बजे के पश्चात पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का शव साईं कुंज नामक क्षेत्र में पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। शव की पहचान चिराग त्यागी के रूप में हुई है जिसकी उम्र 24 वर्ष है और जो पैरालंपिक खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। शव को प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी गोली मार करके हत्या की गई है।
3: हालांकि जब पुलिस ने इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उसे मौकाए वारदात यानी साईं उपवन के पास कुछ सीसीटीवी तस्वीरों में एक संदिग्ध शख्स दिखाई पड़ा। ये शख्स चिराग के साथ ही मौजूद था लेकिन कत्ल के बाद जिस तरह से ये आदमी गायब हो चुका था पुलिस का शक उस पर गहरा गया। अब पुलिस ने चिराग को जानने वाले लोगों की मदद से इस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश की और उसे कामयाबी मिल गई। ये कोई और नहीं बल्कि चिराग का दोस्त यश खटिक था। वो यश खटिक जो चिराग की तरह ही एक नौजवान पैरा एथलीट था लेकिन आखिर यश की चिराग से क्या दुश्मनी थी? क्या वाकई वही चिराग का कातिल था? पुलिस अब यश की तलाश शुरू कर चुकी थी और जल्द ही वो शिकंजे में आ गया।
8: पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसका नाम यश खटिक है। यश खटिक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे।
3: अब सवाल ये था कि अगर यश वाकई चिराग का दोस्त था तो फिर दोनों दोस्तों के बीच ऐसी क्या बात हो गई कि उसने चिराग की जान ले। तो पूछताछ में पुलिस को इस सवाल का जवाब भी मिल गया। असल में दोस्त होने के बावजूद दोनों के बीच कई बातों को लेकर अनबन थी। खासकर चिराग ने यश के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर अथॉरिटीज को कुछ शिकायतें की थी, जिसके बाद जांच में यश के कागजातों में वाकई कुछ कमी पाई गई और उसे पैरा एथलेटिक इवेंट से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया और इसे लेकर यश चिराग से खुंदक रखता था।
8: यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसको क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी है। पिस्टल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें भेज दी गई हैं। इस संदर्भ में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है कि इस घटना में और भी लोगों की जो संलिप्तता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है।
3: चिराग और यश दोनों T12 कैटेगरी के एथलीट थे, ऐसे एथलीट जिनकी आंखों की रोशनी काफी कम होती है। आमतौर पर इंसान 60 मीटर तक आसानी से देख सकता है, लेकिन इस कैटेगरी के लोगों को किसी चीज को ठीक से देखने के लिए 2 मीटर या फिर उससे भी ज्यादा करीब जाना पड़ता है। कुछ लोगों का साइट विजन भी काफी खराब होता है, जिसके चलते उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जाहिर है चिराग ऐसे लोगों में शामिल थे, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में अपने हुनर का लोहा मनवाया। मगर एक दोस्त के साथ हुई मामूली अनबन आखिरकार उनकी मौत की वजह बन गई। मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: चुनावी तैयारी में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर गुंडा गर्दी तक फिर सीधी चेतावनी, शहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल खड़ने वाले दो विधायकों को निकाला बाहर। नीट और सीबीएसई परीक्षा में सिस्टम बुरी तरह से फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश, शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक, अध्यक्ष दिग्विजय ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को लगा महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम 11 रुपए बढ़े। त्रिशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन रिक्रिएट, दोनों आरोपी मौजूद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इनके पास से लगभग 4.25 करोड़ रुपए का 2.5 किलो से अधिक का सोना जब्त किया गया। इस मामले में नवी मुंबई के एक जौहरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। दिव्येश, क्या हुआ, कहां से सोना आ रहा था, कैसे पकड़ा गया?
2: जी, आपको बता दें कि दुबई से ये सोना लाया जा रहा था, स्मगलिंग कर ये सोना लाया जा रहा था और इसे वैक्स के रूप में यानी गोल्ड वैक्स के रूप में इसे सोने को पिघलाकर एक पाउच में छुपा कर लाया जा रहा था। 2 किलो 600 ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोना था ये जिसे लाया जा रहा था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जो आयात है उस पर सोने और चांदी पर आयात की ड्यूटी बढ़ा दी है और इस वजह से अब और भारी डिमांड की वजह से भारत में भारी डिमांड होने की वजह से सोने की स्मगलिंग काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 किलो 600 ग्राम शुद्ध 24 कैरेट सोना वैक्स के रूप में लाया जा रहा था और उसके बाद मुंबई बेचा जाना था।
0: बहुत धन्यवाद दिव्येश। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता। सोना तस्करी करने वालों को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने में महिला मतदाताओं की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, आप जानते हैं, लेकिन अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार महिलाओं को धोखा दे रही है और उसका बड़ा कारण यह है कि EKVIC के नाम पर सरकार ने लाड़की बहन योजना के 80 लाख लाभार्थियों यानी कि महिलाओं के नामों को हटा दिया। सरकार का दावा है कि ये महिलाएं नियमों का उल्लंघन कर योजना का लाभ ले रही थी। सरकार इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दे रही थी। अब लाड़की बहन योजना पर राजनीतिक संग्राम तेज हो गया लेकिन 80 लाख महिलाओं को नुकसान हुआ।
3: महाराष्ट्र में एक बार फिर महिलाओं के लिए सौगात वाली योजना लाड़की बहन सुर्खियों में है। दरअसल इस योजना के लाभार्थियों की संख्या EKYC अभियान के बाद 80 लाख कम हो गई।
4: महाराष्ट्र की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना के आंकड़ों ने महाराष्ट्र के सियासत में घमासान मचा दिया है। इस योजना के तहत करीब 80 लाख लाभार्थी छाटे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना में लगभग 80 लाख महिलाओं को महीना 1500 रुपए जो सरकार देती थी उसमें अब कटौती लगते लगते इसका असर अब महाराष्ट्र के बजट पर यानी इस योजना के बजट पर भी दिखाई दे रहा है। जहां पहले जब ये योजना लॉन्च की गई थी तब कुल मिलाकर 3.25 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलता था लेकिन अब उसे घटाकर करीब 2.25 करोड़ तक ला दिया गया है। इसका बजट अगर देखें तो 36,000 करोड़ इस योजना पर खर्च होते थे जो कि अब सिर्फ 26,000 करोड़ पर आ गए हैं।
3: अब लाड़की बहन के लाभार्थियों की संख्या में भारी गिरावट के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है।

0: महिलाओं तक यानी जरूरतमंदों तक ही पहुंचे, सरकार ये देखना चाहती है और उसी के तर्ज पर ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
1: बीएमसी की सत्ता में जब से बीजेपी आई है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ना उसका एजेंडा है। लेकिन शिवसेना नेता और मुंबई में उत्तर भारतीय लोगों की राजनीति करने वाले संजय निरुपम कह रहे हैं, इस आड़ में अपने देश के फेरी वालों को भी बीजेपी परेशान कर रही है। संजय निरुपम ने पूछा कि पुलिस कमिश्नर बताएं कि अभी तक उन्होंने कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।
2: महायुति बीएमसी में सत्ता में आने के बाद हॉकर्स पर बड़ी कार्रवाई देखी गई। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अश्विनी भिड़े से संजय निरुपम जी मिलकर आए हैं। सर, 99,000 आप कह रहे हैं 400 जो है हॉकर्स हैं मुंबई में जो अधिकृत हैं, उसके बावजूद इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है पिछले 2.5 महीनों में, क्या कहना चाहते हैं?
3: देखिए, बुनियादी विषय यह है कि बार बार कोर्ट भी कहता है और मुंबई के सभी गणमान्य नागरिक भी मांग करते हैं कि अनधिकृत यानी इलीगल हॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट भी ये कहता है, लोग भी ये मांग करते हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन महानगर पालिका और पुलिस की तरफ से अनधिकृत लोगों के खिलाफ नहीं, जो पात्र फेरी वाले हैं, जो अधिकृत फेरी वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये गलत है। और इसी विषय को लेकर के आज हम लोग मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिड़े जी से मिले, हमारे उपमहापौर साथ में थे, बाकी पार्टी के सभी लोग थे, सारे फेरी वाला यूनियन के सभी नेता लोग थे, और हमने यही मांग की कि हाईकोर्ट ने कहा है कि 99,435 जो फेरी वाले हैं वो रजिस्टर्ड हैं आपके सर्वे के हिसाब से, तो उनको अधिकृत तौर पर बैठने का इंतजाम करिए, उनको धंधा करने दीजिए। और इसके अलावा जो चुनाव हुआ उसमें 29,000 फेरी वालों का एक पहले की कोई लिस्ट थी जिनको एक वोटर बनाया गया था, उनके भी व्यवस्था के मतलब 1,30,000 जो पात्र है उनका धंधा चलना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पुलिस और महानगर पालिका दोनों की साठगांठ से इनके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज कमिश्नर मैडम ने कहा है कि 10 जून के आसपास जो भी पात्र हैं सबको आई कार्ड दे दिया जाएगा और उसके बाद वो आराम से बगैर किसी इंटरप्शन के वो धंधा कर सकते हैं।
2: मुंबई में फेरी वाले हटाने का काम पहले भी चलता था, लेकिन महायुति की सरकार बीएमसी में आने पर बदनामी का भी काम किया गया, बांग्लादेशी बताया जाता हॉकर्स को, उसके चलते ही दादर हो, बोरीवली हो, इन सभी स्टेशन पर काम किया गया है। तो कितने हॉकर्स जो है जो बांग्लादेश से आए हुए थे वो अभी तक बीएमसी को मिले?
3: मुझे नहीं मालूम कितने हॉकर बीएमसी को मिले हैं, लेकिन मैं भी इस बात में विश्वास करता हूं कि मुंबई में या कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर बांग्लादेशी घुसपैठी या हॉकिंग का धंधा कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको डिटेक्ट करिए, डिटेन करिए और डिपोर्ट करिए। लेकिन जब बांग्लादेशियों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या सचमुच महज बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या उनके नाम पे जो इस देश के वैध नागरिक है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है?
1: महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने गाजियाबाद में हुए असद एनकाउंटर पर प्रश्न उठाते हुए सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया।
4: नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कहीं भी उन पर फायरिंग नहीं होती, शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मॉडस ऑपरेंटिव बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए, क्रिमिनल है, उनको सजा तो होनी चाहिए, उनको सजा होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सजा दे दो, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए आप, उससे कबुलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सजा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है, अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता, किसी यादव को मार दिया उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी इनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है, आप इसको धर्म को मत बीच में लाइए। क्रिमिनल क्रिमिनल है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके साथ एक तरह का, एक ही तरह से उनको निपटना चाहिए।
5: योगी आदित्यनाथ तो खुले कह रहे हैं स्टेरिया चलती रहेंगी, जो ऐसी हिंसा करेगा उसका जवाब भी हम ऐसे ही हिंसा से देंगे।
4: नहीं, अगर यही हो गया तो फिर मतलब कानून क्या है, फिर आप जो है संविधान की बुक को फाड़ के फेंक दीजिए और सबसे पहले जेल को बंद कर दीजिए, जेलर को कहिए भाई तुम्हारी नौकरी ख़त्म, वकीलों से बोलिए भाई कोई और धंधा ढूंढ लो, अभी केस नहीं चलेगा, और तो इसी तरह से सब काम ख़त्म कर दीजिए आप, और सीधा उठाइए मार दीजिए, बात ख़त्म हो गई, फिर मतलब क्या होता है कि इस देश में सभी लोगों को अपने अपने धर्म पर चलने का पूरी परमिशन है। अब नमाज बाहर नहीं पढ़ने दे कोई इशू नहीं है, ये इशू बना करके जबरदस्ती आप जो पोलराइज करना चाहते हो। नमाज 10 मिनट की 5-15 मिनट की होती है, वो भी कब होती है, कुछ मस्जिदों में कुछ जगहों पर जहां मस्जिद भर जाती है और लोग बाहर नमाज पढ़ते, यहां नहीं। आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे ना, आप दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ, बहुत सारे मुल्कों में आप चले जाओ, बहुत सारे मुल्कों में, नाम कितना लूँ आपको, उन सारे मुल्कों में जुमा की नमाज और ईद की नमाज में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं जब मस्जिद भर जाती है। तो
1: महाराष्ट्र को मानसून का इंतजार है। मुंबई, ठाणे, पालघर में पिछले 3 वर्षों में मई का सबसे सूखा महीना रहा, लेकिन क्या मानसून समय पर आएगा और क्या महाराष्ट्र के सभी जिलों में इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होगी, क्या कह रहे हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक।
6: मुंबई में पिछले साल जहां 300 mm की बारिश हुई थी प्री मानसून शावर्स के दौरान, वहीं इस साल हुई है सिर्फ 8.8 mm की बारिश। आखिर ऐसा क्यों है और किस वजह से है और आगे क्या बरसात के क्या हालात रहेंगे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सिंह साहब हैं जो रीजनल डायरेक्टर हैं यहां पर मुंबई के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। सर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो कितना ऐसा क्यों हो रहा है कि इस पिछले साल हमने बहुत तेज बारिश देखी थी और इस बार एकदम ही बरसात नहीं हुई।
7: देखिए इस तरह का चीजें होती हैं, पिछली बार का अगर देखेंगे तो जो मानसून का अराइवल था दैट वाज अर्ली और यहाँ पर भी आपके 24-25 में दे दिया था कि मानसून यहाँ तक पहुँच गया था, और जो एक्टिविटी थी मानसून की लास्ट ईयर तो काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी, मतलब वो वन ऑफ द रिकॉर्ड उसमें ही है कि 63 में एक ऐसा था और उससे पहले भी एक बार ऐसा रहा है, तो इस तरह का जो अर्ली मानसून अराइवल था, तो पिछली बार इसीलिए जो बारिश थी अच्छी मिल गई थी, मई से शुरू हो गई थी, 15 मई के बाद ही अच्छी एक्टिविटी मिलनी शुरू हो गई थी और डिक्लेयर भी यहाँ पे जो है 24-25 मई के आसपास वो कर दिया गया था, तो इस तरह की स्थिति लास्ट बार थी। लेकिन इस समय जो है इस बार देखेंगे तो जो मानसून का अराइवल है उसके लिए हालांकि 26 के लिए बोला था जो मॉडल प्रिडिक्शंस थे, पर उतना उसमें अभी तक डिक्लेयर किया नहीं। रेन की अगर बात करेंगे, रेनफॉल एक्टिविटी केरला में कंटिन्यूस मिल रही है, ठीक ठाक रेन मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ भी जो और भी पैरामीटर्स है जिसके अनुसार फिर जो डिक्लेयर किया जाता है जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स है, तो वो सब अभी तक मैच किए नहीं है, तो इसीलिए अभी नहीं दिया गया है। और अगले 3 से 4 दिन में बोला है, आज आपकी फर्स्ट हो गई है, तो अगले 3 to 4 days में बोला कि जो मानसून है वो केरला में स्ट्राइक कर जाएगा, तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो जो महाराष्ट्र का है करीब 1 week लेता है
6: वही में जाए तो वो क्योंकि 3 से 4 दिन डिले वहां हो गया और 1 June को केरला में हिट करता है जनरली मॉनसून और 10 June को मुंबई के आसपास आता है, और तो क्या इसमें भी डिले हो जाएगा मॉनसून, क्या मुंबई में आने में उसको समय लगेगा।
7: देखिए 1 June जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज है कि इस डेट को ज्यादातर समय आप देखेंगे उसमें आता है, और उसका एक्सटेंडेड डेविएशन देखेंगे तो 1 week तक का है, तो 1 week पहले आए या 1 week लेट भी होता है केरला के ऊपर अगर बात करें 1 तारीख के रेस्पेक्ट में, तो वो विद इन नॉर्मल माना जाता है, उतना उसका डेविएशन है। तो 3 से 4 दिन अगर आप कहेंगे कि 1 तारीख की जगह 3-4 तारीख में वो आएगा यहाँ पे, तो उससे आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो लेट है, और आगे जो उसकी रफ्तार है अगर ठीक सर्ज रहेगा तो वो टाइम से पहुंच जाएगा यहाँ तक भी।
1: अपनी आने वाली फिल्म माँ बहन पर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने हमारी संवाददाता नवजोत से खुलकर बात की। पहली बार फिल्म का नाम सुनकर उनका रिएक्शन क्या था ये भी नवजोत ने उनसे पूछा।
8: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, बहुत स्वागत है आप सभी का, और हमारे साथ है माँ बहन की टीम। और मैं अभी शुरुआत से पहले हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि फास्ट न्यूज में पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक खबर आ गई कि नेटफ्लिक्स पर माँ बहन आ रही है, और जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने लिटरली ऐसे पढ़ा और अब बहुत ही जल्द आप नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं माँ बहन, और मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि आप ये क्या लिखते रहे, तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये एक्चुअली फिल्म का नाम है तो फिल्म का नाम यही है। स्टारकास्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, माधुरी जी, तृप्ति जी, हमारे साथ है रेखा, जया, सुषमा, राइट, 3, और हमारे साथ धारणा भी मौजूद है और सुरेश त्रिवेणी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं उसी पे आऊंगी जिस पे मैं फंस गई थी पढ़ते पढ़ते, ये नाम कहाँ से आया?
9: नाम कहानी से आया, क्योंकि कहानी एक माँ है जिनका नाम रेखा है, हाँ। और उनकी 2 पुत्रियां एक जया और एक सुषमा, तो आप सोच सकते हैं कि, और फिर एक कांड हो जाता है घर के अंदर, तो इससे ऐप टाइटल जो कहानी के बारे में भी, मूड के बारे में भी पता है, और प्रोटैगनिस्ट कौन है मेरे माँ और बहन, तो आके बैठ गया पूरा अच्छी तरह से।
8: हाँ।
9: और हमने अब फिल्म देखी समझ में आएगा कि हाँ। क्यों है टाइटल माँ बहन।
8: नहीं, ट्रेलर्स में तो हमने देखा है बहुत ही अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटमेंट हमारी बढ़ी हुई है। तो माधुरी जी, माँ बहन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों चीजें इसमें है। हम देख वही है कि देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। तो इस टाइटल को लेकर, ये जब टाइटल आपके सामने आया तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आए?
10: बिल्कुल आए, क्योंकि मुझे पहले जब इन्होंने कहा टाइटल, मैंने कहा टाइटल क्या है, बोले माँ बहन, तो एक मिनट के लिए मैं मजाक कर रहे ऐसे हुआ कि ये तो टाइटल नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी तो फिर मुझे ऐसे लगा नहीं, दिस इज अ वेरी एप्ट टाइटल, यही चाहिए था टाइटल।
8: मतलब मेरा, मेरे प्रोड्यूसर और राइटर ने जो लिखा था, हमारी एंकर लिंक लिखा था, उसमें मेरा चौंकना गलत नहीं था।
10: नहीं, गलत
8: बिल्कुल गलत नहीं।
10: जैसे हम लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मैं कहती हूँ कि मेरी नई फिल्म आ रही है, देखना जरूर, क्या टाइटल क्या है, माँ बहन, ऐसे लुक हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, रियली टाइटल इज माँ बहन, लेकिन कहानी ऐसी है, सो दे आर लाइक, बट दे आर ऑल वेरी थ्रिल्ड एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
8: एक बहुत अच्छा आपका डायलॉग, बार बार मैंने तो उसी में ट्रेलर और प्रोमोज वगैरह में देखा है कि मम्मी तुम फिर स्लीवलेस ब्लाउज पहन के मम्मी स्लीवलेस ब्लाउज क्यों नहीं पहन सकती?
11: एग्जैक्टली, बिल्कुल पहन सकती हैं, पहनना चाहिए।
8: अच्छा, ये स्लीवलेस ब्लाउज के पीछे वाली कहानी क्या है, क्योंकि ये बहुत हिट हो रही है लाइन पूरी।
9: ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और इसका क्रेडिट जाता है इसकी राइटर पूजा तुलानी को, क्योंकि हम जब जैम कर रहे थे तो उनके तरफ से आया था और वहीं से शुरू हुआ। बिकॉज आई थिंक माय सोसाइटी में अननेसेसरी टैबूज हैं फॉर सम रीजन, कुछ कुछ किसी एक रीजन के लिए, और इनको तो गर्मी लगता है।
10: गर्मी लगता है हमको।
8: लेकिन जिस तरीके से इस पूरी फिल्म में हमने देखा, जिस तरीके से एक मदर हैं, एक डॉटर हैं, दोनों यंग लड़कियां, बट आज की डेट में मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में, आपने कहा कि एक टैबू है, लेकिन आजकल ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। मदर डॉटर दोनों सिस्टर्स ही लगती हैं आजकल।
10: हाँ, बिकॉज सब अपनी देखभाल करते हैं, द मदर्स आल्सो एज एक्टिव, और यू नो इट्स कहते हैं ना, दे ऑल लुकिंग आफ्टर देयर हेल्थ, दे ऑल लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स, एंड they all want to do so many things in life and the kids keep them young. बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को यंग रखते हैं हमेशा।
8: अच्छा, इसमें एक डायलॉग आता है जब आप इन दोनों को बोल रहे हैं कि अगर मैं जेल गई ना तो तुम दोनों को साथ लेके मम्मी तो ऐसी नहीं होती, बड़ा सैक्रिफाइस करती
10: है। You know, that's why I loved the character, क्योंकि ये बहुत ही अलग है, जैसे माँ को पेडेस्टल पे रखते हैं हमेशा, कि हमेशा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग और हमेशा खुद बहुत, मतलब बुखार होगा फिर भी खाना पकाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बहुत अलग है इसकी, और that's what attracted me to this character.
9: एक सीन होना चाहिए था सिलाई कढ़ाई वाला।
8: नहीं नहीं, उसमें इस बीच में डायलॉग भी बोलती भी तो है कि मुझे ये सब चीजें नहीं आती हैं। हाँ, ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो एक सीन है, वो इमेजिन करती है। तृप्ति, कितना क्लोज लगता है, क्योंकि फिल्म में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है
11: जी,
8: और आप लोग उस मैसेज को दे भी रहे हैं फिल्म में, कितना आज की डेट में कितना स्ट्रॉन्ग लगता है वो कैरेक्टर अगर आप रियल लाइफ में कहीं देखते हैं तो?
11: काफ़ी स्ट्रांग लगता है, क्योंकि जैसा कि मैम ने अभी कहा, हम माओं को हमने एक पेडेस्टल पे रख दिया है, हम उनको किसी और रोल में देखना भी नहीं चाहते, यू नो। अब आई एम ग्लैड दैट थिंग्स आर चेंजिंग, दैट किड्स हैव, यू नो, व्हेन दे've ग्रोन अप, दे आर लुकिंग आफ्टर देयर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो, यू नो, टेकिंग चार्ज ऑफ देयर लाइफ। बिकॉज ये नहीं होना चाहिए ना कि आपकी लाइफ इज ओनली रिवॉल्विंग अराउंड अदर्स, यू नो, पहले आप हो फिर, if you're not well then how will you look after others? And I think I'm glad that women today are taking that you know, stand. They are making sure that they are well, they work out, they eat well, they look after their kids, and women can do all of it, you know. They can work at home, they can work multiple jobs, they are doing. I've seen my sister, I've seen my mother, they can do it all. So, you know, I'm so glad that I got an opportunity to do a film like Maa Behen, because the messaging is so strong in this, and I hope that whoever watches the film learns something from it. I'm dying for my family to watch the film. They'll be so proud of it. I'm so proud of it. I think all of us are very, very proud of this, and thank you.
8: नाना, आप कंटेंट क्रिएटर से अब एक्टर बनी है, मैं उस सवाल पे नहीं आऊंगी कि कैसा लग रहा है दोनों में से कौन सा अच्छा है, लेकिन उस जो आप कंटेंट क्रिएट करती थी उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे देखे जहां पर आप मम्मी का रोल करते हैं कितना सिमिलर लग रहा है और क्या, क्योंकि उसमें भी एक मैसेज होता है और यहाँ भी एक मैसेज है।
12: हाँ, मैंने भी कभी कभी ऐसी मम्मी दिखाई है जो नहीं कर रही है सैक्रिफाइस, पर मेरी मोस्टली इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से ही होती है उन कैरेक्टर्स के पीछे, जैसे वो रिएक्ट करती हैं सिचुएशंस में कि बहुत ही ओवर ड्रामेटिक होके यहाँ पे, पर तो वो फिर भी उसमें थोड़ा सैक्रिफाइस चलता है, बट ये एकदम ही अलग है जहाँ पे जेल जा रही है तो लेके जा रही है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती मेरी मम्मी मुझे।
1: छोटा सा ब्रेक और खबरों के साथ होते हैं उपस्थित, आप देखते रहिए मुंबई मेट्रो।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

यूपी के सीएम योगी की सख्त चेतावनी, सूर्या की हत्या पर बोले, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं, नालायक औलादों को सबक सिखाना होगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे मौलानाओं पर बरसे योगी, बिजनौर में कहा, गाय हमारी माता है, पशु नहीं। योगी बोले, धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन जरूरी, तभी देश होगा सुरक्षित। बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों, पूर्व सैनिकों, पट्टेदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र बांटे गए, सीएम योगी ने दिए प्रमाण पत्र। योगी ने दुश्मनों को चेताया, कहा, अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व हो जाएगा समाप्त। कोलकाता में धरने की जगह को लेकर पुलिस के साथ ममता की ठनी, टीएमसी का दावा, पुलिस ने हटाया मंच बनाने का सामान। ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली, बंगाल की कानून व्यवस्था खराब, गुंडों को दी गई छूट, जरूरत पड़ी तो जाऊंगी दिल्ली। ममता ने कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया, चुनाव में 177 सीटों पर वोट लूट की रिपोर्ट मेरे पास, चुनाव में हमारे 500 एजेंट गिरफ्तार। अभिषेक बनर्जी को फिर समन, फर्जी हस्ताक्षर मामले में बुलाया गया, 15 दिन का समय दिया। ममता के मंत्री अरूप राय का दावा, सीआईडी को दिखाई चिट्ठी पर मेरे हस्ताक्षर नहीं। बागियों पर सख्त ममता, संदीपन साह, ऋतुव्रत बनर्जी को हटाया। ममता का बड़ा बयान, मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, 35 मंत्रियों ने शपथ ली, 13 बने कैबिनेट, गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई। अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शरदवत मुखर्जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। घरों में झाड़ू पोछा करने वाली कलिता मांझी भी बनी कैबिनेट मंत्री। लक्ष्मी भंडार योजना पर बोले शुभेंदु अधिकारी, एसआईटी करेगी फर्जी खातों की जांच। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया की आज बैठक। राहुल ने ओएसएम को लेकर साधा निशाना, गलती सीबीएसई की, सजा बच्चों को, जेब कतरों से सावधान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा, शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में आग लगने पर सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी ने व्यवस्था में लगाई आग। सीबीएसई नीट विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने मोदी की तारीफ की, शिक्षा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले, हमें पीएम पर भरोसा, छात्रों के साथ नहीं होगा अन्याय। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ओएसएम और छात्रों की समस्या को लेकर आज बैठक, 9वीं 10वीं में 3 भाषा को लेकर होगी चर्चा। सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग मामले में कार्रवाई शुरू, सीओई एमपीटी को ठेका दिए जाने में रिपोर्ट तलब, दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नीट यूजी री एग्जाम पर पीआईएल दायर, 21 जून की परीक्षा सीबीटी मोड में कराने की मांग। बिहार के सहरसा में बेरोजगार आक्रोश मार्च, बीपीएससी प्री 4 शिक्षक बहाली, लंबे समय से अभ्यर्थियों में भारी गुस्सा। जून की शुरुआत में महंगाई, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम 11 रुपए बढ़े। बिहार में मदरसों का सख्त, सम्राट चौधरी सरकार, शिक्षा सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मदरसों में शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को समन, पंजाब एससी कमीशन ने दलित समुदाय पर टिप्पणी को लेकर पेश होने को कहा। अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की बड़ी मुश्किलें, पंजाब पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, उन पर है हमले का आरोप। पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईपीएस, 3 पीपीएस अधिकारियों के तबादले। बंगाल में महिलाओं के लिए सोमवार से फ्री बस सेवा शुरू, हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा मनेर में, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने आम की पैकेजिंग को लेकर किया निरीक्षण। दिल्ली में 11 से 12 जून को ब्रिक्स फोरम की बैठक, सिटीज फॉर पीपल थीम पर केंद्रित। राजस्थान के सांचू, गुजरात के भुज में चौकियों के बाद अमित शाह त्रिपुरा जाएंगे, 5 जून को जवानों के साथ बातचीत करेंगे। भारत ने फ्रांस को भेजी 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मेक इन इंडिया के तहत 90 विमान भारत में ही बनेंगे। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। भारतीय सेना को मिलेगी 30,000 स्वदेशी 152mm आर्टिलरी गोली, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। मैरूली में बिल्डिंग गिरने के मामले में
करमवीर गिरफ्तार, गैर रियायतन हत्या का केस दर्ज, 6 की हुई थी मौत। शालीमार बाग में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दिल्ली में सड़क चौड़ी करने के नाम पर 150 घर मिट्टी में मिला दिए। यूपी एडीएस ने पाकिस्तानी गैंग से शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया, मोहम्मद शेख अरेस्ट। भोपाल में ट्यूशा की मौत का सीन सीबीआई ने रिक्रिएट किया, पुतले की मां पूर्व जज गिरिवाला ने खोली फंदे की गांठ। ट्यूशा शर्मा मामले में नीरज दुबे का आरोप, समर्थ सिंह की दोस्तों ने मारपीट की। जेई एडवांस के रिजल्ट आए, शुभम कुमार बने AIR 1, आलम करियर इंस्टीट्यूट का दबदबा। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर निर्देश, कलावा मंगलसूत्र पर प्रतिबंध नहीं, 8 से 10 जून तक भर्ती परीक्षा। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद ऑपरेशन क्लीन स्वीप तेज, असद के मारे जाने के बाद उसके घर पर चिपकाया गया तोड़ने का नोटिस। देहरादून में जामा मस्जिद सील, मस्जिद प्रबंधन कमेटी को नोटिस के बाद कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान के तहत एसजी मनोज सिन्हा ने कुलगाम में पदयात्रा का नेतृत्व किया, लोग हुए शामिल। मेरठ में पैसों के विवाद में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर नाले में फेंका आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, बाल बाल बचा परिवार। मध्य प्रदेश के शहडोल में डंपर में बाइक सवार को कुचला, घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में कंप्यूटर शिक्षिका की हत्या करने वाले छात्र को उम्र कैद, एक तरफा प्यार में मार डाला। अमरावती से कार जलाने नागपुर पहुंची महिला, सीसीटीवी से खुला राज, पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोनभद्र में अवैध संबंध में हत्या, बेटे ने पिता की हत्या कर दी। खरगोन में युवक की संदिग्ध मौत पर भड़के लोगों ने पुलिस जवानों को पीटा, थाना इंचार्ज को बंधक बना लिया। लुधियाना में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में रिश्तेदार गिरफ्तार। लुधियाना में फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, 3 की मौत, 4 भर्ती। ओडिशा के गंजम में पुलिस कस्टडी में मजदूर की मौत, शरीर पर डाला गया गर्म पानी, पत्नी का आरोप। उज्जैन के 16 वर्ष के रिश्ते पर 5 वर्ष का प्यार पड़ा भारी, पत्नी ने पति की हत्या करवा दी, पुलिस ने खुलासा किया। हाजीपुर के राघोपुर में 34 साल पुराने जानलेवा मामले में 85 वर्ष के बुजुर्ग को दोषी ठहराया गया। ग्वालियर से इंदौर जा रही स्लीपर बस में अचानक आग लगी, अफरा तफरी मची। पटना के अस्पताल में भीषण आग, नुकसान का लगाया जा रहा है अंदाजा, कोई हताहत नहीं। हमीरपुर के पास नेशनल हाईवे 6 फुट गहरे गड्ढे में गिरी महिला। फरीदाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, हत्या का लगाया परिजन ने आरोप। डोंबिवली में नाबालिग चेन स्नेचर गैंग का भंडाफोड़, 6 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार। अररिया में पैसे नहीं देने पर बेटे ने अपने पिता की पत्थर से हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागपुर में 2,37,00,000 की 7 किलो ड्रग्स जब्त, 1 गिरफ्तार, महिला की मदद से चल रहा था नशे का व्यापार। सूरत के जहांगीराबाद में 2 बाइक में टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। आर्थिक मोर्चे पर मजबूत भारत, वित्तीय वर्ष 25-26 का घाटा तय सीमा के अंदर रहा, राजकोषीय घाटा 4.4 पर आया। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री आज भारत आएंगे, भारत ब्रिटेन FTA को लागू करने पर बात होगी। EMI और लोन के ब्याज दर पर असर डालने वाली RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठक 3 से 5 जून के बीच होगी। मॉनसून की चिंता के बीच ब्याज दर स्थिर रहने की उम्मीद। विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजार से करीब 33,000 करोड़ रुपए निकाले, कमजोर रुपए, कंपनियों की सुस्त कमाई के कारण ये बिकवाली बढ़ी। UPI से पैसे भेजते समय रिलीवर का बैंक में दर्ज असली नाम स्क्रीन पर दिखने वाला नियम लागू, NPCI ने ये कदम उठाया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पलायन की मार झेल चुके मांद्रा गांव में लौटी रौनक, गांव हुआ गुलजार। चमोली में पर्यटकों के लिए खुल गई फूलों की घाटी, पर्यटक कर रहे हैं दीदार। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण, 23 भगवान राम की 63 पीढ़ियों की वंशावली की जाएगी प्रदर्शित। रामेश्वरम में पीएम मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़। ईरान की IRGC ने हॉर्मुज पर दबदबे वाला वीडियो जारी किया, कमर्शियल जहाजों की जिम्मेदारी का दावा। कुवैत में अमेरिकी सेना को निशाना बनाती 2 ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट,
IRGC ने ली जिम्मेदारी। लेबनान में हिजबुल्ला को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की, न इसराइल करेगा हमला और न ही हिजबुल्ला। ट्रंप के हिजबुल्ला के साथ बातचीत की। दक्षिणी लेबनान में 3 महीने की सैन्य कार्रवाई में 550 से अधिक आतंकी ढेर, इसराइल का दावा। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी सेना ने रूस से आ रहे तेल टैंकर को रोका।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम उस धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की बात करेंगे जिसकी परिभाषा और पैमाना देश में मौके, माहौल और मजहब साथ बदल जाते हैं। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के जानवरों पर विवाद हो तो पूरा देश दिन भर बहस करता है। इंटरनेशनल मीडिया में भारत की छवि को इनटॉलरेंट बनाकर पेश करता है। लेकिन जब गाजियाबाद के खोड़ा में 17 साल के हिंदू लड़के सूर्य प्रताप चौहान को उसका ही मुस्लिम दोस्त बकरीद के दिन ये कहकर चाकुओं से गोद देता है कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते देखा है, ये पुलिस ने बताया है, तो पूरे देश में एक सन्नाटा पसर जाता है। आज देश को तय करना होगा कि क्या सेक्युलरिज्म का मतलब अब ये हो चुका है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े मामले को नेशनल इश्यू बनाया जाए क्योंकि वो एक खास समुदाय से जुड़ा है, जबकि दूसरे समुदाय के बच्चे की बेरहमी से हत्या को सिर्फ दो दोस्तों का आपसी विवाद कहकर रफा दफा कर दिया जाए। आज हम पूछेंगे कि मजहब के आधार पर समाज और सियासत की संवेदनाएं असमान कैसे होती हैं और कैसे एक हिंदू बच्चे की बर्बर हत्या के बाद तमाम सियासी सूरमा मुंह सिल लेते हैं। और इसके बाद बात देश की कोचिंग इंडस्ट्री की। ये शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि 1,33,000 करोड़ का वो बाजार है जो बच्चों के सपनों और मां बाप की गाढ़ी कमाई पर खड़ा है। बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, वो दिन रात खाना पीना सब भूलकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन नाम कौन कमाता है? कोचिंग इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े इश्तेहार देकर ये कहता है कि हमारी वजह से ये बच्चे आए हैं और यही से उनकी दुकान सजती है। वो ये दिखाते हैं कि अगर भारी भरकम फीस देकर भी माँ बाप अपने बच्चों को उनके कोचिंग सेंटर में डाल लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी एग्जाम परीक्षा निकाल लेंगे। सवाल है कि कोचिंग सेंटर्स जहां शिक्षक कम और खुद के नाम के आगे सर लगाने वाले शिक्षा माफिया ज्यादा है। पहले जो माफिया अखबारों में फर्जी टॉपर्स के विज्ञापन छापता था, कई बार तो बच्चे आकर बताते थे, 2-3 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट उनकी फोटो डाल देते थे। अब बच्चा हैरान कि ये भी क्रेडिट ले रहा है, वो भी क्रेडिट ले रहा है। अब उसी का एक डिजिटल अवतार आ गया है जिसमें यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर टीचर्स हैं। देखिए, अनेकों ऐसे यूट्यूब के टीचर्स हैं जो बहुत ही सार्थक और अच्छे वीडियो बना रहे हैं, जो टीचर्स की तरफ वीडियो में भी पेश आते हैं, जो वीडियो में पढ़ाई की बातें करते हैं, जो वीडियो में विषय पर ज्ञान देते हैं, जो वीडियो में बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कराते हैं। इसको आप कह सकते हैं स्कूल के अलावा अतिरिक्त ज्ञान लेने के लिए बच्चे वहां पर जाते हैं, क्योंकि कई बार टीचर्स बहुत सरल तरीके से बच्चों को उसमें समझा देते हैं और ऐसे टीचर्स को पूरा क्रेडिट भी मिलना चाहिए। लेकिन हम बात उन टीचर्स की कर रहे हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो व्यूज बटोरने के लिए कुछ भी बोलते हैं, जो व्यूज बटोरने के लिए विषय से हटकर तमाशा करते हैं, उटपटांग बातें बोलते हैं और कई बार व्यूज बटोरने के लिए वो पढ़ाई छोड़कर अनेकों ऐसी बातें करते हैं। हमारे देश में बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, हमारे वो युवा। ये भी सच है कि ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों के लिए कई अवसर पैदा किए। दुर्गम इलाकों में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान है, वो यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर का पूरा वीडियो एक सब्जेक्ट पर देख लेते हैं तो उनको बहुत अच्छे से उसकी जानकारी होती है। लेकिन वही टीचर जो पढ़ाई की बात करते हैं, सवाल यही है कि यही वो बच्चे जो हमारे सिस्टम की नाकामी, उसकी कमजोरी को आज बाहर भी ला रहे हैं। अगर सीबीएसई की गड़बड़ी बाहर आई तो इसके पीछे हमारे बच्चे ही थे। 3 बच्चे खासतौर पर जिनके बारे में आज हमने आपको लगातार आज तक पर बताया है, जिन्होंने एथिकल हैकिंग के जरिए या फिर टेंडर रिव्यू करके या फिर पेपर गलत मिलने पर जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने की। लेकिन उन इन्फ्लुएंसर टीचर्स की बात करेंगे जिन्होंने बच्चों की मेहनत को अपने व्यूज बटोरने का एक जरिया बना लिया है। स्टार टीचर्स 1 घंटे की क्लास में 40 मिनट इधर उधर की बात ताकि रील्स के कंटेंट पर फोकस हो, आखिरी के 20 मिनट में 2 सवाल कराकर कहेंगे चैनल सब्सक्राइब ठोको, इन्हें आपका सिलेक्शन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्ट हो गए इनका एक व्यूअर कम हो जाएगा। ये चाहते ही नहीं कि आप के भविष्य पर वो फोकस करें। इनकी बस एक ही मंशा होती है और वो है व्यूज ज्यादा मिलना, और उसके लिए वे किसी भी उटपटांग हद तक जा सकते हैं। पेपर लीक होने पर ये ग्लिसरीन के आंसू बहाएंगे। छात्रों से हमदर्दी नहीं है साहब, इन्हें पता है कि आपका गुस्सा इस वक्त हॉट कंटेंट है, इसे कैश करो। सावधान रहिए, सच्चा शिक्षक जो है वो आपको पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा। वो अगर आपको इस पेपर लीक की वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है तो वो आपके साथ खड़ा होगा। वो आपको हर वो रास्ता दिखाएगा जिससे आप सही तरीके से आगे बढ़े। और इसी के साथ युवाओं के सपनों का जो धंधा कर रहे हैं, आज हम उनका पर्दाफाश करने वाले हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आखिर में जलते पेरिस की तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे अब यूरोप पूरी तरह बदल रहा है, दंगों में जल रहा है। आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता का मतलब अब पूरी तरह बदल चुका है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कम से कम हमारा संविधान तो यही कहता है। हमारे संविधान की नजर में हम हर नागरिक बराबर है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, और इस संविधान के लिए ना हिंदुओं की पीड़ा ज्यादा है ना मुसलमानों के लिए ज्यादा दर्द। ये सबको एक समान मानता है, जितनी पीड़ा हिंदुओं के लिए उतनी पीड़ा मुस्लिम्स के लिए। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में हमारे देश में एक अजीब सा बदलाव आया जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज अगर किसी घटना में मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई विवाद हो जाए तो उस पर तुरंत राष्ट्रीय बहस शुरू हो जाती है, लंबे चौड़े लेख लिखे जाते हैं, बयान आते हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलता है। सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत में मुसलमानों के प्रति असहनशीलता बढ़ रही है, और विदेशी मीडिया भी लपक लेता है। पिछले दिनों मुंबई और ठाणे की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को लेकर विवाद हुआ, उस पर भी यही बहस चली। कहा गया कि क्या मुस्लिम्स की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है और क्या उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों से रोका जा रहा है। ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि पूरा देश दिन भर इसी पर चर्चा करता रहा और बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने इस पर चिंता जताई। लेकिन फिर गाजियाबाद के खोड़ा की घटना सामने आई, खोड़ा में 5 और क्या उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों से रोका जा रहा है। ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि पूरा देश दिन भर इसी पर चर्चा करता रहा और बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने इस पर चिंता जताई। लेकिन फिर गाजियाबाद के खोड़ा की घटना सामने आई, खोड़ा में 5 मुस्लिम लड़कों ने एक 17 साल के हिंदू लड़के की बकरीद के दिन हत्या कर दी। हत्या भी ये कह के की गई कि क्या बड़े विपक्षी नेताओं ने इस पर चिंता जताई। लेकिन फिर गाजियाबाद के खोड़ा की घटना सामने आई, खोड़ा में 5 मुस्लिम लड़कों ने एक 17 साल के हिंदू लड़के की बकरीद के दिन हत्या कर दी। हत्या भी ये कह के की गई कि क्या उसने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। अब बाकी मामलों की तरह होना ये चाहिए था कि इस घटना पर भी हमारे देश में बड़े बड़ी बहसें होती, मुश्किल सवाल पूछे जाते, लेकिन सन्नाटा आ गया। दुख की बात यह है कि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक सन्नाटा छा गया। ना इस घटना पर वैसी बेचैनी दिखी, ना बहस चली, ना कोई सवाल उठे, ना ही वो लोग चिंता जताते नजर आए जो भारत की धार्मिक असहनशीलता पर खूब ज्ञान बांटते हैं। आज बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी मुस्लिम के साथ हिंसा होती है और हम उसे पूरे समाज के लिए चिंता का विषय मानते हैं तो किसी हिंदू नागरिक के साथ हुई हिंसा पर उतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखती। सवाल यही है कि फिर पश्चिमी मीडिया भी इसको नहीं लपकता। किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब न्याय के सिद्धांत समान रहे न रहे लेकिन संवेदनाएं असमान हो जाए। जब एक घटना पर पूरा देश बोले और दूसरी पर पूरा देश चुप हो जाए, जब एक पीड़ित को प्रतीक बना दिया जाए और दूसरे पीड़ित को आंकड़ा, और जब एक मौत से विचारधारा आहत हो और दूसरी मौत से नहीं। देखिए,
1: मेरे लला घायल हो, इन मुसलमान अन्याय ने चक्कू भोंक रहे हो मेरे लाल के पेट में। अरे भैया मेरे लला ले लो इन्हें मुल्ला ने। अरे भैया रे
2: शांत हो जाओ
3: भैया। असलत ने ये बोला था पूजा को
4: कि क्या कहते हैं तुमने पकड़ा कटते हुए देखा है, पकड़ा कैसे कटता है। उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू घुसा दिया उसने कि पकड़ा कैसे कटता है।
5: हमें फोन करके बुलाया था मेरे को, आयुष को और सूर्या को। सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया।
0: गाजियाबाद के खोड़ा की ये खबर है, और गाजियाबाद के खोड़ा में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं था। 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान का मोहम्मद असद से ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं था जिसके लिए उसे बकरीद का दिन चुनकर मारा जाए। 17 साल का सूर्या तो असद को अपना दोस्त मानता था, ऐसा दोस्त जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। सूर्या और असद खोड़ा के एक ही इलाके में रहते थे और दोनों का घर एक दूसरे से सिर्फ 250 मीटर दूर था। पुलिस का कहना है कि कभी दोस्त रहे सूर्या और असद के बीच 7 से 8 महीने पहले एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हालांकि दोनों का घर नजदीक था और दोनों के दोस्त भी वही थे, इसलिए उनका आमना सामना होता रहता था और इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस भी हो जाती थी। हालांकि ये बहस इलाके के लोगों को बच्चों की लड़ाई जैसी लगती थी और सूर्या और उसका परिवार भी यही मानता था कि दो बच्चों की लड़ाई है, दोस्ती है। उन्हें लगता था कि दोस्तों में तो ऐसी गहमा गहमी चलती रहती है, इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 28 मई बकरीद का दिन था और बकरीद के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया। पुलिस के मुताबिक असद और सूर्या के बीच बकरीद के दिन एक बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद असद के पिता मोहम्मद नवाब ने उसे खूब उकसाया। ये कहा कि असद को सूर्या की कहानी खत्म कर देनी चाहिए। इसके बाद असद ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जिनमें मोहम्मद फरहान उसके लिए चाकू लेकर आया। चाकू आने के बाद असद ने सूर्या को फोन किया और उससे ये कहा कि वो बकरीद के दिन सारे गिले शिकवे भुलाकर सूर्या को गले लगाना चाहता है और उससे अपने सारे विवाद खत्म करना चाहता है। सोचिए, दोस्ती की दरकार देकर उसने उसको घर बुलाया। 17 साल के सूर्या को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और असद और वो वापस से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जब अपने घर से कुछ दूर वो असद और उसके दोस्तों से मिलने गया तो असद ने उससे ये कहा कि क्या उसने बकरीद पर किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है, और सूर्या इसका कोई जवाब दे पाता इससे पहले असद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसके शब्दों में वो उसे हलाल करके वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद भी सूर्या की धड़कन चल रही थी, उसे बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया और जब परिवार ने इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले मुख्य आरोपी असद के पिता मोहम्मद नवाब को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि उसी ने अपने बेटे को इस हिंदू लड़के की हत्या के लिए उकसाया था। सोचिए, एक पिता से ये उम्मीद की जाती है ना कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देगा, गलत काम से बचने को कहेगा, और अगर वो फिर भी गलत रास्ते पर बच्चा जाएगा तो उसकी सही मार्गदर्शन करेगा, बोलेगा, समझाएगा। लेकिन यहां तो एक पिता पर ही आरोप लग रहा है कि उसने अपने बेटे से कहा कि बकरीद के दिन इस हिंदू लड़के को हलाल कर दे, और इससे यह भी पता चलता है कि इस पिता की क्या मानसिकता रही होगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जो किसी से पैसे लेने के लिए अपने घर के पास आया था, लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसने असद को गिरफ्तार करने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस का कहना है कि असद ने उस पर गोलियां चलाई, जिससे मुठभेड़ में वो मारा गया और एक आरोपी घायल होने के बाद फरार हो गया। अजीब बात यह है कि जो विपक्षी नेता इस हिंदू लड़के की मौत पर अब तक चुप थे, वो असद के एनकाउंटर के बाद सक्रिय हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि असद का एनकाउंटर नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस ने उसे एक फर्जी मुठभेड़ में जान से मारा है और असद को इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि असद के लिए इंसाफ मांगने वाले वही नेता हैं जिन्होंने उस हिंदू लड़के पर एक शब्द नहीं कहा, जिसे असद ने बेरहमी से मारा था। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश होगा जहां पीड़ित का धर्म अगर हिंदू हो तो उस पर चुप्पी रखी जाती है, और आरोपी का धर्म अगर मुस्लिम हो तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए शोर मचता है। इस मामले में यह हो रहा है और यह सिर्फ हमारे नेता करते हैं। खोड़ा के कई मुस्लिम परिवार असद के एनकाउंटर से दुखी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ नेता जरूर हैं। हालांकि सिंधू लड़के की मां का कहना है कि उसे पूरा इंसाफ तभी मिलेगा जब एक नहीं बल्कि सभी 5 आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर करेगी।
6: सबका एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए।
7: आपने तो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है।
6: हाँ, वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी।
7: बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका
6: भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ, क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े है, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है, तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए।
0: जब उत्तर प्रदेश के कई विपक्षी नेता असद के एनकाउंटर पर दुख जताते हुए उसके खिलाफ इंसाफ मांग रहे हैं, तब खोड़ा में असद के पड़ोसी और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग उसके एनकाउंटर से खुश हैं और ये कह रहे हैं कि असद ने जो किया वो गलत था, वो उसके एनकाउंटर का समर्थन करते हैं। ये भी सुनिए।
8: गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे तो ये सोच है उसका तो एनकाउंटर, साथ वाले पकड़े गए ना, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पे भी बिल्डोजर चलना चाहिए।
9: भाई साहब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे साथ तो वो बच्चा मरा, वो बहुत गलत मरा और हमें उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर हुआ में खुशी बात की, इससे बच्चों को सीख मिलेगी। जो ये नए नई उम्र के लड़के हैं जो सुबह शाम आवारा गर्दी करते फिरते हैं, दोस्त यारी में करते फिरते हैं, उन्हें इससे बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। बिल्कुल गलत हुआ है, जिसने भी करा है बहुत गलत करा है। भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए और उसका जो इनकाउंटर हुआ है बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश सही थे।
10: झगड़ा था तो कंप्लेन दे सकता था उससे, अगर दिक्कत थी उसे उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है, सबको मतलब हो गई उससे। नहीं, एनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की। और माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं ऐसे ही कार्रवाई करें, ऐसा करिए, किसी की हिम्मत नहीं करेगी किसी एनकाउंटर वो कर दे, घटना कर दे, ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, हम खुशी इस चीज की।
0: इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े शब्दों में ये कहा है कि अगर सामने खरदूषण खड़े होंगे तो शस्त्र भी जरूर उठाए जाएंगे। सुनिए।
11: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी, वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था।
0: क्या आपको 26 साल का तरुण याद है जिसकी इसी साल होली के मौके पर हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी? कसूर क्या था तरुण का? सिर्फ इतना कि उसकी 11 साल की छोटी बहन ने होली के मौके पर एक गुब्बारा फेंका था जिससे वहां से गुजरने वाली एक मुस्लिम महिला को रंग लग गया था। इसके बाद तरुण के परिवार ने इस महिला से माफी भी मांगी और ये कहा था कि उनकी बच्ची से गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी जब इस मुस्लिम परिवार के लोगों ने तरुण की लिंचिंग की, उसकी हत्या कर दी, तब भी हमारे देश में कुछ लोगों ने यही कहा कि आखिर इस हिंदू परिवार को रंग फेंकने की जरूरत क्या थी। और सोचिए, उस वक्त इन लोगों ने तरुण की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की और आज ये सूर्या की हत्या को ये कहते हुए सामान्य बता रहे हैं कि ये दो दोस्तों का निजी मामला था। और हमारे देश में दो दोस्तों के बीच इस तरह की आपराधिक घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हम भी कहेंगे बिल्कुल हो चुकी है, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन यह भी सच है कि ऐसा पहला कभी नहीं हुआ जब एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़के को बकरीद के दिन ये कहकर मारा हो कि वो उसे बकरा हलाल होते हुए दिखाएगा। और यहां बात सिर्फ एक हिंदू लड़के की हत्या की नहीं है, यहां बात आपसी विश्वास और भरोसे की भी है। हमारे देश में ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनके दोस्त मुस्लिम हैं, कितने हिंदू होंगे जो मुस्लिम बहुल इलाकों में रहते हैं, जिनके मुस्लिम परिवारों से अच्छी मित्रता होगी, बहुत अच्छे संबंध होंगे। सोचिए, यह घटना इन लोगों के भरोसे पर कैसे प्रहार करेगी? अगली बार क्या कोई इस तरह से भरोसा कर पाएगा अपने दोस्त पर? ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच भरोसे की ये दरार पहले से कई जगहों पर आप देखेंगे काफी चौड़ी हो चुकी है। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत के 36% हिंदू परिवार नहीं चाहते हैं कि उनका पड़ोसी कोई मुस्लिम परिवार का, जबकि 16% मुस्लिम परिवार नहीं चाहते हैं कि उनका पड़ोसी कोई हिंदू हो। या हिंदुओं का आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2011 की जनगणना कहती है कि हमारे देश में अधिकतर मुस्लिम एक ही इलाके में संयुक्त रूप से रहते हैं, लेकिन कई मुस्लिम जो है ऐसे भी है जो हिंदू इलाकों में जाकर रहते हैं और जिनका आज भी कई जगहों पर आप देखते हैं धार्मिक टकराव होता है। हमारे देश में लव जिहाद का मुद्दा उठाने पर हिंदू पक्ष की आलोचना होती है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि हिंदू इस मामले में मुसलमानों से ज्यादा उदार होते हैं। 67% हिंदू दूसरे धर्मों में महिलाओं की शादी करने का विरोध करते हैं, जबकि मुसलमानों में यही आंकड़ा 80% है। हालांकि जब पुरुषों को दूसरे धर्म में शादी करने से रोकना हो तो मुसलमानों में यही आंकड़ा 76% हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो हिंदू मुस्लिम की खाई को चौड़ा करती है। जब हमारे देश में इस पर दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं तो इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता उसको भी बड़ा धक्का लगता है। अगली खबर का आप रुख करते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमारे देश के युवाओं को इस देश की सरकार से क्या चाहिए। वो आखिर कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके एग्जाम देते हैं, ऐसे बच्चे जो भारत का भविष्य है। भारत में ऐसे युवाओं की संख्या लगभग 5 करोड़ है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा हासिल करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम ये मान ले कि हर छात्र के परिवार में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे तो यह आंकड़ा 25 करोड़ हो जाता है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में रशिया जैसे लगभग 2 देशों की आबादी सिर्फ उच्च शिक्षा के जरिए अपना करियर, अपना भविष्य बनाने का सपना देख रही है और इन करोड़ों बच्चों ने इस भविष्य के लिए ना जाने कितने संघर्ष किए हैं। लेकिन सोचिए इन बच्चों को हमारे सिस्टम से, हमारी व्यवस्था से, हमारी सरकार से मिल क्या रहा है। भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर हर साल कम से कम 2 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। अकेले पिछले 20 सालों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ भर्ती परीक्षाओं के हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो अलग से परीक्षाएं होती हैं, वो भी इस पेपर लीक की बीमारी से बची नहीं है। इस साल 22,79,000 छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। पेपर लीक हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहानी यूं ही चलती रहती है और इसके किरदार में नाम बस बदलते रहते हैं। कभी नीट यूजी का पेपर लीक होता है, कभी सीबीएसई की परीक्षा में गड़बड़ी, कभी सरकारी नौकरियों का पेपर लीक होता है और कभी कुछ और। कल्पना कीजिए जिन बच्चों ने ईमानदारी से पूरे साल मेहनत की हो, खाना पीना सब भूल कर पढ़ाई की हो, दिन रात जग कर, उनका मनोबल इस पेपर चोरी से कैसे टूटता होगा। और ये भी सोचिए कि पेपर चोरी होती कैसे है। आज हमने पेपर लीक से जुड़े कई मामलों को देखा जिनमें ये बात निकल कर आई कि पेपर लीक करने और कराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। ये 0.1% से भी कम होते हैं जो 99.9% ईमानदार

एक है डॉक्टर मनोज शिरूरे, दूसरे है तेजस शाह और तीसरे हैं मनीषा संजय हवलदार। इनमें तेजस शाह पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर्स थे, जबकि मनीषा संजय हवलदार पुणे के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। और एनटीए ने इस महिला टीचर को नीट यूजी परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके कारण इस महिला टीचर के पास फिजिक्स का पेपर सबसे पहले आना था। लेकिन जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। इस महिला टीचर ने इस पेपर को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को बेच दिया। खरीदने वाला कौन? कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर। और इसीलिए हम लगातार आज तक पर कोचिंग माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के जरिए इन लीक किए गए पेपर्स को बेचा और खरीदा जाता है। जानते इसने क्या किया, उसने फोन करके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को सारे सवाल लिखवाए और बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस टीचर ने यही सवाल नोट करके लीक कर दिए। और ऐसा सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं किया, महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लासेस नाम के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर ने इसी तरह की साठगांठ से पेपर लीक कराया और ये फिर इस कोचिंग सेंटर के साथ पहली बार नहीं हुआ है। साल 2024 में जब नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तब भी गुजरात पुलिस ने रॉय ओवरसीज नाम के कोचिंग सेंटर के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इस बेईमानी में शामिल थे। 2024 में ही जब उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तब भी इसके पीछे लखनऊ का एक कोचिंग सेंटर था, जिसके टीचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि 2022 में जब राजस्थान में सरकारी नौकरी और 2021 में सरकारी टीचर्स की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तब भी इसमें कोचिंग माफिया का नाम सामने आया था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तथ्य बताते हैं कि पेपर लीक के अधिकांश मामलों में कोचिंग माफिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो पेपर बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री इसलिए फैली क्योंकि हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर हमारे देश में सरकारों की ओर से शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता तो कोचिंग इंडस्ट्री कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती, जितना हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का 6 महीने का बजट है। 2022 में भारत की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की थी, जो 2 साल बाद 2028 में 1,33,000 करोड़ रुपए की होने वाली है, जबकि पूरे देश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बजट ही 1,39,000 करोड़ रुपए का है। अब कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा विस्तार कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के करोड़ों माता पिता की गाढ़ी कमाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रही है, जहां कई बार झूठे सपने बेचे जाते हैं। झूठे सपने कैसे, उसके लिए ये आंकड़े देखिए। ये कोचिंग सेंटर्स आपको अच्छे अच्छे विज्ञापन दिखाते हैं, दावा करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को इनके यहां भेजा तो वो यूपीएससी नीट जेई सरकारी नौकरी की परीक्षा जरूर पास कर लेंगे। कई बार तो विज्ञापनों में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही बच्चे की तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है, ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है। कई बार हम लोग इन विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं, हकीकत में ये विज्ञापन कई बार कोरा झूठ होते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कराने वाले 2 बड़े बहुत बड़े कोचिंग संस्थान पर जुर्माना लगाया। जुर्माने का कारण क्या था, इन कोचिंग संस्थानों ने इन छात्रों को भी अपना छात्र बताकर अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए थे, जो उनके यहां पढ़े ही नहीं थे। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, यह धांधली कई बड़े कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालना है तो हमें #कोचिंग माफिया का अंत करना ही होगा। अब सवाल यह कि सोचिए आप, केंद्र सरकार ने 60 नोटिस जारी किए और इन पर 1,46,00,000 का जुर्माना लगाया। ऐसे ऐसे बच्चों के इन्होंने इश्तेहार में अपने फोटो डाले जिन्होंने इनके यहां पढ़ाई नहीं की थी, उन बच्चों ने कंप्लेंट की जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन सोचिए उन माता पिता के साथ कितनी बड़ी बेईमानी है, जो इन कोचिंग संस्थानों के झांसे में आकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, गाड़ी कमाई से स्कूल की भी फीस देते हैं, जो सिर्फ एक डमी स्कूल रह जाता है क्योंकि वहां पर सिर्फ अटेंडेंस और बाद में वहां से सर्टिफिकेट मिलता है। असल पढ़ाई करने के लिए इन बच्चों को भारी भरकम फीस देकर कोचिंग सेंटर में ही भेजा जाता है, और कई प्राइवेट स्कूल्स तो खुलकर ये कोचिंग सेंटर्स अपने स्कूल में ही चलाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स इन कोचिंग सेंटर्स को अपने तौर पर चलाते हैं और

0: पेरेंट्स से कहते हैं कि क्लास में आपका बच्चा ठीक नहीं कर रहा, आप कोचिंग सेंटर में डाल दीजिए, इसको हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अब सवाल यही है कि आप स्कूल की भी फीस दे रहे हैं, यानी ड्यूअल फीस, दो फीस कमाई करने का यह पूरा फॉर्मूला बन गया है। हैरत की बात यह है कि यह कोचिंग संस्थान बच्चों के मसीहा बनते हैं, लेकिन इसकी फीस का कोई हिसाब नहीं होता। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नीट की तैयारी पर एक छात्र जानते हैं कितना खर्च करता है, 4 लाख रुपए औसतन। इसका पूरा ब्रेकअप भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए जेई की तैयारी पर हर छात्र 4 से 5 लाख रुपए खर्च करता है। सारा पैसा कोचिंग संस्थानों के पास जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, ऐसी सरकारी नौकरियों की तैयारी पर 1 से 2 लाख रुपए खर्च होता है। और जब ये छात्र कोचिंग संस्थानों के वादों के बाद भी फेल हो जाते हैं तो मसीहा बनने वाले ये कोचिंग संस्थान कभी फेल हुए छात्रों की फीस वापस लौटाते हैं क्या? तब सारा का सारा ठीकरा इन बच्चों पर फोड़ दिया जाता है कि आपके बच्चे ने ही मेहनत नहीं की, आपके बच्चे की वजह से नहीं हुआ, जबकि वो मेहनत सारे बच्चे उसी तरीके से करते हैं। इसके बाद हमारे देश में कोचिंग का एक दूसरा मॉडल आता है जिसमें YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8,052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना YouTube पर खुद का अकाउंट है। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें शिक्षक आते हैं, शालीनता के साथ विषय पर ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं, विषय पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के गांव में आज भी कोचिंग संस्थान जैसी सुविधा कई जगहों पर नहीं है, और जब वहां पर पढ़ाई का वही स्तर है जहां पर बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में ये ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं, ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है। और बहुत सारे शिक्षा YouTube पर इस शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनको कितने व्यूज मिलते हैं और कितने ऐसे लोगों को व्यूज मिलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कराने का नाटक करते हैं। लेकिन सवाल तो उन शिक्षकों को लेकर है जो खुद YouTube पर अपने वीडियोज में अलग अलग चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जानते हैं ये नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? उन मेहनती बच्चों के मां बाप की ईमानदार कमाई से। और सारी दिक्कत यहीं शुरू होती है। इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर टीचर्स ये बताते हैं कि वो बच्चों के किसी भी कोर्स का पैसा नहीं लेते। इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पसंदीदा एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट और बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं, कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको हम टीवी पर दोहरा नहीं सकते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि आप कम से कम कभी नहीं चाहेंगे आप या हम कि हमारे बच्चे इनसे सीखें। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ब्रांड बनाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, ये ऑडियंस बनाते हैं। ये सिर्फ छात्रों को नहीं देखते, ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स देखते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, रीच, और इसका एक बड़ा खेल खेलते हैं। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं हम, शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं हम, गरीब बच्चों के मसीहा हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही, मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। आपका हर व्यू, हर क्लिक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन किसी ना किसी की कमाई में बदलता है। यानी इनके लिए छात्र अब विद्यार्थी कम, डिजिटल संपत्ति ज्यादा बन गए हैं। और ये छात्र जब अपना समय इन YouTube टीचर्स को देते हैं तो बदले में इन्हें क्या मिलता? नहीं होता। हम एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों ईमानदार YouTube टीचर्स हैं जो चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को उस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, आसान सरल भाषा में। लेकिन जानते हैं ऐसे टीचर्स को बहुत व्यूज नहीं मिलता है, वो आज भी व्यूज के लिए स्ट्रगल करते हैं। यही से बिजनेस मॉडल निकलता है जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। ऐसे टीचर्स जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं उसको विषय बना देते हैं और उस पर अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यही है कि अपना इमेज बनाने के लिए आ रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए आ रहे हैं, व्यूज बटोरने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए ऐसे ग्रैब्स भी लगते हैं, वो जो आप यूट्यूब पर देखते हैं ना, जिसको देखकर बच्चे क्लिक करते हैं, ऐसे ग्रैब लिखते हैं जिसे बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना होता ही नहीं। थंबनेल भी जिसे कहा जा सकता है, इनकी पढ़ाई भी कंटेंट है और ये कंटेंट जितना भावनात्मक होगा कमाई ज्यादा होगी। यही वजह है कि सब कुछ पढ़ाने से ज्यादा दिखाई देने में व्यस्त है। यहां भी ज्यादा परेशानी नहीं है भाई, जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। लेकिन इस बात पर तो सवाल पूछा जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका व्यवहार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब किताबों पर, कोर्स पर ध्यान नहीं है, पर्सनल ब्रांड बनने पर है, खुद की मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान है। सवाल यही है कि विवादित बयान, जो दिन भर का सबसे बड़ा मुद्दा हो उस पर विवादित बयान देकर हर ट्रेंड पर प्रतिक्रिया, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को शिक्षक नहीं चाहिए। और इसीलिए आज हम बार बार उन शिक्षकों को याद कर रहे हैं जो आज भी ईमानदारी से यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, क्योंकि उनको व्यूज नहीं मिलता। यूट्यूब भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करता है, उन्हें एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। और सवाल यही है कि अगर शिक्षा धीरे धीरे प्रदर्शन में बदलने लगे, अगर टीचर फटी जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे, अगर कोई टीचर अपशब्दों का इस्तेमाल करे, कभी किसी को डांटे, कभी किसी को गाली दे, तो क्या ये हमारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं? आप एक बार जाकर इनके यूट्यूब अकाउंट्स को चेक कीजिए जिन्हें इन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। YouTube पर व्यूज के अलावा शिक्षा से जुड़े कंटेंट पर ज्यादा पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, AI के बाद एजुकेशनल कंटेंट पर हर 1000 व्यूज पर सबसे ज्यादा 80 से 180 रुपए मिलते हैं, जबकि न्यूज कॉन्टेंट पर 50 से 120 रुपए। अगर किसी यूट्यूबर टीचर के 10 मिलियन व्यूज है तो वो सिर्फ एक वीडियो से ही 8 से 18 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, और यही पैसे के लिए ब्लैक बोर्ड लगाकर जो तमाम बातें, जिसमें चर्चा तो ये होती है कि वो क्लास लेने आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर कई बार बहुत भद्दी भाषा का, ऐसे शब्द जो हम टीवी पर रिपीट नहीं कर सकते हैं, और ये अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर ये अपने फॉलोअर्स को इस बात के लिए भी उत्तेजित करते हैं कि वो दूसरों पर अपशब्द बोलें, दूसरों के खिलाफ बोलें। कोई शिक्षक ऐसा कर सकता है क्या? हमारे देश में बार बार कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी है। सोचिए, इस युवा आबादी की मेहनत का सम्मान कहाँ हो रहा है? जब हमारे मेहनती छात्र हमारे सिस्टम, ऐसे स्टार यूट्यूबर्स द्वारा ठगे जाते हैं, तो वही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार संघर्ष करता है। ये हीरो बने रहते हैं लेकिन सिस्टम की नाकामी को बाहर लाने वाले छात्रों के संघर्ष की कोई बात नहीं करता। बच्चे मेहनत करते हैं, सोचिए, लेकिन तमाम ऐसे जो व्यूज बटोरने वाले हीरो हैं वो हीरो बनते हैं, वो हंसी ठहाके लगाते हैं, नाच गाना करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेहनत से जो असल टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए हीरोगिरी नहीं करते। लेकिन कोचिंग माफिया स्कूल को डमी स्कूल बना देता है। आज सवाल है कि एक बार जाकर उन छात्रों के पास देखिए जिनकी पढ़ाई के लिए उनके माता पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी है और आप हंसी अट्टहास कर रहे हैं। किसी माँ ने अपने कंगन, अपने गहने गिरवी रखे, किसी माता पिता ने लोन लिया, आज भी वो इस लोन की किश्तें चुका रहा है, उम्मीद पर जी रहा है कि उसका बच्चा उन्हें गरीबी के इस दलदल से कैसे निकालेगा। लेकिन ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बच्चों को बस सब्सक्राइबर बना देते हैं, और जब वो देखते हैं तो उनको पढ़ाई कम, शिक्षा कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलता है, वो भी सस्ते किस्म का एंटरटेनमेंट। देखिए
1: दिल्ली के दो इलाके मुखर्जी नगर और करोल बाग देखा जाता है यूपीएससी तैयारी का हब माना जाता है, यूपीएससी का मक्का माना जाता है। पर इन इलाकों में कैसे बच्चे जो हैं संघर्ष करके रहते हैं, एक तरफ तो लाखों की फीस जो इंस्टीट्यूशंस को वो देते हैं और दूसरी तरफ अपना गुजर बसर करना। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया है, कई बार वो मेंस का पेपर भी लिख चुके हैं, कई बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं।
2: पूरा जो हो रहा है एक गठबंधन के तौर पे गठजोड़ बन चुका है विभिन्न कोचिंग माफियाओं का, जो कि ना बच्चों को क्वालिटी दे पा रहे हैं, ना बच्चों को सही से गाइड कर पा रहे हैं। बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही रह गया कि अधिकतम एडमिशन हम कैसे लें। क्लास में हजारों लड़कों को बैठा दे रहे हैं, है ना, वो बेचारे क्लास कर रहे हैं और 10-15 जो सेलेक्टेड होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, रील बना ले रहे हैं, उनका टॉपर सेमिनार करा दे रहे हैं, मतलब उनको पैसे दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं उन टॉपर्स को खरीदने के लिए।
3: बड़े जितने भी रील बना रहे हैं, कोई भी आप चाहे मुखर्जी नगर में हो, यहाँ पे हो, जितने बड़े संस्थान का आप नाम जानते हो, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा, वो केवल रील्स बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, पढ़वाते दूसरे से हैं और उनसे कम से मिनिमम पैसे वाला टीचर चाहिए। पता चला दूसरा 50,000 मांग रहा है, उनको 40,000 वाला मिल जाए, 40,000 पढ़वाएंगे। उनसे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी, कितने स्टूडेंट आ जाएं, रील बनवाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे।
1: कोचिंग का आप सर कितना देते हैं, किराए का आप कितना देते हैं, खाने पीने का अगर आप खर्चा लगाएं तो महीने का आप कितना लगा देते हैं?
4: कोचिंग का तो लगभग 1.5 लाख रुपए फीस जब आया था मैंने यहाँ पे किया था आज से 3-4 साल पहले, और खाने पीने का मिला के 8.5 रेंट है, वाईफाई, आरओ का रेंट, बिजली, न्यूज़पेपर, खाना पीना मिला 20-22 हज़ार रुपये महीने में लगभग लग जाता है।
5: रील और रियल लाइफ में यही अंतर है कि अब आप देख लीजिए रियल लाइफ का संघर्ष, देख लीजिए यहाँ एक छोटे से कमरे में हम लोग कैसे गुजारा करते हैं और ऊपर से रेंट भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की गंदी हवा में जीते हैं और यहाँ गंदी सड़कें हैं, यहाँ पार्क गंदे हैं और ऊपर से अब तो यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है कि गर्मी में इस कमरे में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
0: पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में, अगली खबर का हम रुक कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में राज कर रही तृणमूल कांग्रेस में अब फूट पड़ने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि बंगाल में टीएमसी के 80 विधायकों को एक मंच पर लाना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो गया। सोचिए कौन कल्पना कर सकता था कि ममता बनर्जी एक तो 80 विधायक उनकर चुनकर आए और वो अपने विधायकों को एक साथ अपने बैठक में नहीं बुला पा रही हैं। चुनाव हारने के बाद ये तीसरी बार हुआ है जब ममता बनर्जी की बात उनके ही विधायक अनसुना कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले दीदी की एक आवाज पर सारे विधायक एक सुर में उनके नाम का जाप करते थे, लेकिन अब वो अपने 80 विधायकों को बुलाती हैं तो हर बार गिनती कम होती जाती है। जैसे चुनाव हारने के बाद उन्होंने 6 मई को जीते हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी, जानते हैं 70 विधायक ही पहुंचे, 10 विधायक नहीं पहुंचे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर समर्थन को लेकर चर्चा होनी थी। अब हारने के बाद ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं वो किसी तरह से अपनी पार्टी को एकजुट रखें, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने 19 मई को एक और बैठक बुलाई तो उसमें पार्टी की आगे की रणनीति तय करनी थी, लेकिन इसमें 80 विधायकों में से इस बैठक में 35 विधायक इस बार गायब थे। पहली बैठक में 10 विधायक गायब, दूसरी बैठक में 35 विधायक गायब, फिर ममता बनर्जी ने 31 मई को विधायकों की एक और बैठक बुलवाई, लेकिन इस बैठक में केवल 20 विधायक पहुंचे थे, यानी 60 विधायक गायब थे। कहा तो ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि हार के बाद उनके सभी विधायक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, लेकिन यहां तो स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि टीएमसी में फूट पड़ चुकी है और अब धीरे धीरे सारे नेता विधायक ममता बनर्जी से कन्नी काटने लगे। मीटिंग्स में विधायकों के ना पहुंचने की एक बड़ी वजह पार्टी के अंदर मौजूद गुटबाजी है। हमेशा से ममता और अभिषेक बनर्जी के करीबियों को मुख्य पदों पर नामित कर दिया जाता है। इस बार विधायकों का गुस्सा इस बात पर है कि नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए उनकी राय क्यों नहीं ली गई। दरअसल अभी तक पार्टी में ममता या अभिषेक बनर्जी वीटो पार वाले नेता थे और उनकी बात सभी को माननी होती थी, लेकिन जो हाल इस बार के चुनाव में हुआ उसको देखते हुए पार्टी के विधायकों ने पहली बार मनमानी के खिलाफ अपनी बात रखी। ये मनमानी 6 मई से शुरू हुई। छह मई को टीएमसी की पहली बैठक हुई थी जब विधानसभा सचिवालय को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप बनाया गया। विधानसभा स्पीकर ने विधायकों के समर्थन वाला आधिकारिक पत्र मांगा। अब 13 मई को सांसद और टीएमसी की महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने खुद के दस्तखत वाली एक चिट्ठी भेज दी, लेकिन इसके बाद फिर से विधायकों की सहमति वाली चिट्ठी मांगी गई। इसी समर्थन को हासिल करने के लिए 19 मई को जो बैठक हुई उसमें 70 विधायकों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी तैयार की गई, जबकि इस बैठक में केवल 45 विधायक पहुंचे थे, 35 विधायक आए ही नहीं थे। विधायकों ने आरोप लगाया कि अभिषेक बैनर्जी ने उनके नाम पर जाली दस्तखत करके पत्र भेजे थे। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर अब इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसकी जांच सीआईडी को सौंपी गई। सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को जांच में शामिल होने, विधायकों के समर्थन वाले पत्र की ओरिजिनल कॉपी मांगी। इस मामले की जांच में तेजी इतनी है कि सीआईडी की टीम आज ही अभिषेक बैनर्जी के घर भी पहुंच गई। टीएमसी के विधायकों में ममता और अभिषेक बैनर्जी की इसी मनमानी को लेकर गुस्सा है और ममता बैनर्जी कह रही हैं कि उनके नेताओं को बीजेपी डरा रही है।
6: তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে।
7: তৃণমূল কংগ্রেস কে বিধায়কों को पुलिस धमका रही है, उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पहले पुलिस का फोन आता है, फिर बीजेपी दफ्तर से। क्या यही लोकतंत्र की मिसाल है? आपने थोड़ी बहुत लूटपाट करके चुनाव जीता, ठीक है, आप एक काम कीजिए। इसके बजाय आप बेकार का काम क्यों कर रहे हैं? आप घटिया काम क्यों कर रहे हैं?
6: এটা গণতন্ত্রের নমুনা, এক তো লুট করে আপনারা ভোটে জিতেছেন।
0: अभी तक वो पार्टी को अपने हिसाब से ममता बनर्जी चला रही थी, अब उनके लिए मुश्किल आ रही है, इसीलिए आज परेशानी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से सत्ता में होने की वजह कोई भी उनके फैसलों पर पहले सवाल नहीं उठाता था, लेकिन अब टीएमसी के हार के बाद हर स्तर का नेता जो पार्टी के डिसीजन है उन पर गुस्सा दिखा रहा है। 24 मई को बारासात जिले के अध्यक्ष टीएमसी सांसद डॉक्टर काकुली घोष दस्तीदार ने पद से इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि वो पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार से नाराज थे। 26 मई को टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने अराजकता का अंत कर दिया है। इसके बाद 27 मई को सांसद काकुली घोष टीएमसी के 6 विधायकों के साथ सीएम शुभेंदु अधिकारी के सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच गए। इसे बीजेपी के साथ उनकी बढ़ती करीबी के तौर पर देखा गया। 27 मई को ही टीएमसी के 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से एक बंद कमरे में मुलाकात की, फर्जी हस्ताक्षर वाले समर्थन पत्र की शिकायत की। ममता बनर्जी ने जब इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। 28 मई को टीएमसी नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया।
8: ममता बनर्जी मास लीडर, पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में ममता दीदी जैसे ही, तो उनका जो काम करने का था पार्टी, उससे हट कर ये अभिषेक बनर्जी का, लोग मुझे पूछ रहे थे कि अब अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा ऋतव्रत कभी खड़ा हुआ?
9: आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं, और दल अनैतिक काम को ही समर्थन करता है। आज दल के पदक्षेप से ये साफ जाहिर हो चुका है।
10: आज ही ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो ये बता दिया कि पार्टी के अंदर से वो दोनों कैसे स्पीकर को खत लिखा, अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है।
0: अगली खबर शुरू करने से पहले आप ये तस्वीरें देखिए। 31 मई की शाम करीब 5 बजे चाइना के एक चमकते हुए शहर हाबिन के आसमान में एक ऐसा तूफान उठा जिसे देखकर लोग कांप उठे। प्रकृति के ऐसे रूप की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से कोई मामूली बादल नहीं बल्कि एक दैत्याकार गगनचुंबी दीवार पूरे शहर को निगलने के लिए जैसे आगे बढ़ रही थी। मतलब किसी हॉलीवुड की आपदा वाली फिल्म आपने देखा ही ऐसी तस्वीर, मतलब जिसे देखकर इंसान डर जाए। जो हमने डूम्स डे और प्रलय के दिन के बारे में तमाम कहानियां सुनी, लगे अचानक कि वही हो गया है। चाइना के हिलोंगजेंग प्रांत की एक खबर है जहां राजधानी हाबिन की यह खौफनाक तस्वीर है। इस रेतीले तूफान में हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इन विनाशकारी हवाओं ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। सड़कों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए बंकर्स की तरफ दौड़ते छात्र और हवा में उड़ती लोहे की छतें गवाही दे रही थी कि उस शाम हाबिन में कुदरत का सब्र टूट चुका था। खेल के मैदानों से लेकर हाईवे तक देखते ही देखते इस धूल के बवंडर ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह सोख लिया। कुछ मिनटों के भीतर गहरी काली रात में तब्दील हो गया दिन। विजिबिलिटी घटकर शून्य हो गई। गाड़ियां जहां की तहां थम गई। गाड़ियों की हेडलाइट्स और आसमान में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स भी इससे घने रतीले बवंडर को पार नहीं कर पा रही थी। सांस लेना दुभर था। आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ धूल का राज था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इंसान का वजन हर बार तौलने से ही नहीं कई बार बोलने से भी पता चलता है। नमस्कार।

0: जून के महीने में बीजेपी का राजनीतिक शेड्यूल, राजनीति का पारा बहुत बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद बीजेपी इस समय देश से लेकर कम से कम 5 बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कई राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह नेताओं को मिलनी है, कई नेताओं को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विदाई मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं?
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है।
3: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
2: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश के संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है
4: 40 से 60 फीसदी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए 10 जून जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है, लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं जो चुनकर आ रहे हैं।
5: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन दे। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
2: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा हैं। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: एक मोर्चा बंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है, क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
6: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
2: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई? और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
6: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
2: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
7: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
2: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
7: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
2: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
7: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
2: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है।
7: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी, वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
7: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
2: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाए?
7: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
2: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
7: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
2: यहाँ तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
7: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
0: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
8: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
9: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে
2: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान हो लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
10: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
2: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
11: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
2: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्दवान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया है। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनियाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का 4 वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
11: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है,
2: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
11: एक घरेलू कामगार।
0: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही 2 विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
2: अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ 4 मई को नतीजों के फौरन दो दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
12: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
2: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
13: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
0: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं, लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपए इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपए की थी, महीने के हो गए 15 रुपए।
5: पहले 500 रुपए का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर
5: 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर
5: 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है बूझ।
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 800-850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपया आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपए केजी हो गया।
6: 250 रुपया किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे, उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ ब्रेड वेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड वेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं। बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया। लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी तैयारियों में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर हुंडा गर्दी तक पर सीधी चेतावनी, शोहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने एम का सख्त बयान, गाय से लेकर हुंडा गर्दी तक पर सीधी चेतावनी, शोहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल उठाने वाले विधायकों को किया बाहर। नीट और सीबीएसई में सिस्टम फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाला सिलेंडर 11 रुपए महंगा। प्रिशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन किया रिक्रिएट दोनों आरोपियों की मौजूदगी में। जून के महीने में बीजेपी का राजनीतिक शेड्यूल, राजनीति का पारा बहुत बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद बीजेपी इस समय देश से लेकर कम से कम 5 बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कई राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह नेताओं को मिलनी है, कई नेताओं को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विदाई मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं?
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी। यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय

0: बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
1: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है, अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40 से 60 फीसदी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
0: तारीख नोट करिए 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है, लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
2: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
0: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा हैं। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: एक मोर्चा बंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है, क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
5: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
0: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं, व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दांव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई? और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
5: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
0: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है?

0: रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
1: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
0: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
1: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
0: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
1: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
0: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है।
1: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी, वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
1: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
0: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाए?
1: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
0: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे हैं, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
1: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
0: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
1: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
2: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
3: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
4: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে
0: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान हो, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
5: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
0: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
6: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
0: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का यह अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की माँ रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
6: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है,
0: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
6: एक घरेलू कामगार।
2: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही 2 विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
0: हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
7: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
0: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैलिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
8: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
2: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं, लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी है।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपये इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपये की थी, महीने के हो गए 15 रुपये।
5: पहले 500 रुपये का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर
5: 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर
5: 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है वो
3: भर के या खाली वाला।
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850-850 रुपए का ही है,
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक। क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है इसमें। हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में है, जहाँ हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहाँ पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपए आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपए केजी हो गया।
6: 250 रुपए किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे,
6: हाँ।
7: उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं, बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया, लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी तैयारियों में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर गुंडागर्दी तक पर सीधी चेतावनी, शोहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल उठाने वाले विधायकों को किया बाहर। नीट और सीबीएसई में सिस्टम फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाला सिलेंडर 11 रुपए महंगा। प्रिया शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन किया रिक्रिएट दोनों आरोपियों की मौजूदगी में। जून के महीने में बीजेपी का राजनीतिक शेड्यूल, राजनीति का पारा बहुत बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद बीजेपी इस समय देश से लेकर कम से कम 5 बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कई राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह नेताओं को मिलनी है, कई नेताओं को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विदाई मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं?
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं।
3: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
2: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40 से 60 फीसदी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा, तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
4: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
2: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: एक मोर्चा बंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है। क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
5: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
2: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई। और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
5: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
2: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
6: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
2: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
6: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
2: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
6: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
2: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है?
6: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
6: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
2: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाए?
6: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने।

0: परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए, सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
1: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे हैं।
0: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
1: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
0: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
2: और बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
3: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
4: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী।
1: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझकर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
5: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
1: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई, लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें वर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
6: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
1: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्दवान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का यह अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजी कर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी

0: से उम्मीदवार बना था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
1: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है।
0: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
1: एक घरेलू कामगार
2: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही दो विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
0: अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ। 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
3: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
0: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
4: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीप साहा, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
2: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं, लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे या छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं 850 रुपए इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपए की थी, महीने के हो गए 15 रुपए।
5: पहले 500 रुपए का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर
5: 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर था?
5: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है बोझ।
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850-850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपये आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपये केजी हो गया।
6: 250 रुपये किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे, उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं। बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया। लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: भोपाल में ट्रिशा शर्मा की मौत का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। CBI एक बार फिर से पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, पूरी घटना को रिक्रिएट किया।
9: CBI ये रिक्रिएशन इसलिए कर रही है ताकि ट्रिशा की मौत का सच सामने आ सके। CBI की टीम आज ट्रिशा के साथ गिरिबाला सिंह और ट्रिशा के पति समर्थ को लेकर गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। CBI के साथ 2 अलग अलग हाइट के पुतले थे। गिरिबाला के घर पहुंचकर CBI ने रिक्रिएशन शुरू किया। पुतले को फंदे से लटकाया गया समर्थ ने अपने बयान में कहा था कि उसने तुषा को नीचे उतारा, लिहाजा फिर से रिक्रिएट किया गया। समर्थ ने पुतले को नीचे उतारा, गिरबाला ने गले की गांठ खोली। दरअसल सीबीआई जांच कर रही है कि गिरबाला और समर्थ ने जो बयान दिए हैं वो घटना स्थल और परिस्थितियों से मेल खाते हैं या नहीं।
10: सीबीआई आज इस डमी पुतले के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह तुषा को फंदे से उतारने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक के जो बयान दिए हैं, क्या उसकी टाइमलाइन आज के सीन रिक्रिएशन से मैच होती है या नहीं। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम ये भी देखेगी कि तुषा के गले पर जो निशान थे, क्या वैसे ही निशान इस डमी पुतले पर भी बनते हैं या नहीं।
9: सीबीआई उस लिगेचर यानी बेल्ट की भी जांच कर रही है कि वो कितना वजन झेल सकती थी। देखना होगा कि तुषा की मौत की मिस्ट्री कब खुलेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: 8% संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
1: तारीख नोट करिए 10 जून जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है, लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं जो चुनकर आ रहे हैं।
2: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन दे। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
1: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: एक मोर्चाबंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है। क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
5: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
1: यू तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई? और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
5: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
1: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
6: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका

0: लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
1: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
0: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
1: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
0: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है।
1: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी, वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
1: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
0: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाए?
1: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
0: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे हैं, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
1: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
0: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
1: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
2: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
3: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
4: না না না, আমি বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে?
0: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान हो, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझकर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
5: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
0: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई, लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
6: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
0: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनियाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
6: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है,
0: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
6: एक घरेलू कामगार।
2: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही 2 विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
0: अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 66 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
7: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
0: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैलिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
8: जो कम्प्लेन है, कम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
2: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं, लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे या छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपये इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपये की थी, महीने के हो गए 15 रुपये।
5: पहले 500 रुपये का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर
5: 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर
5: 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है बोझ।
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850-850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह?
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपये आसपास था, लेकिन कुछ दिन से 250 रुपये केजी हो गया।
6: 250 रुपये किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे, उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं। बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया। लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी तैयारियों में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर हुंडा गर्दी तक पर सीधी चेतावनी, शोहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल उठाने वाले विधायकों को किया बाहर। नीट और सीबीएसई में सिस्टम फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाला सिलेंडर 11 रुपए महंगा। पेशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन किया रिक्रिएट दोनों आरोपियों की मौजूदगी में। जून के महीने में बीजेपी का राजनीतिक शेड्यूल, राजनीति का पारा बहुत बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद बीजेपी इस समय देश से लेकर कम से कम 5 बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कई राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह नेताओं को मिलनी है, कई नेताओं को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विदाई मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं?
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा, कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है।
3: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
2: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40 से 60 फीसदी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा, तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
4: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन दे। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
2: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: एक मोर्चाबंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है। क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
5: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना, हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
2: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं, व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई। और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
5: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
2: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
6: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
2: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
6: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
2: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
6: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
2: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है?
6: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
6: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
2: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाए?
6: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
2: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
6: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
2: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
6: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
0: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
7: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
8: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে
2: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
4: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
2: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई, लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
9: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
2: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धवान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की माँ रत्ना देवनाथ को पनियाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का 4 वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
9: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है।
2: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
9: एक घरेलू कामगार
0: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही दो विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
2: अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
10: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
2: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
11: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
0: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं, लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपये इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपये की थी, महीने के हो गए 15 रुपये।
5: पहले 500 रुपये का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर।
5: भरा हुआ सिलेंडर 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर था?
5: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है। वो
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 800-850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहाँ पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपये आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपये केजी हो गया।
6: 250 रुपये किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे, हाँ। उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं, बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया, लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: नहीं ले रहा, सीबीआई एक बार फिर से पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, पूरी घटना को रिक्रिएट किया।
9: सीबीआई ये रिक्रिएशन इसलिए कर रही है ताकि तुषा की मौत का सच सामने आ सके। सीबीआई की टीम आज तुषा के साथ गिरिबाला सिंह और तुषा के पति समर्थ को लेकर गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। सीबीआई के साथ दो अलग अलग हाइट के पुतले थे। गिरबाला के घर पहुंचकर सीबीआई ने रिक्रिएशन शुरू किया। पुतले को फंदे से लटकाया गया। समर्थ ने अपने बयान में कहा था कि उसने टुशा को नीचे उतारा, लिहाजा फिर से रिक्रिएट किया गया। समर्थ ने पुतले को नीचे उतारा, गिरबाला ने गले की गांठ खोली। दरअसल सीबीआई जांच कर रही है कि गिरबाला और समर्थ ने जो बयान दिए हैं वो घटना स्थल और परिस्थितियों से मेल खाते हैं या नहीं।
10: सीबीआई आज इस डमी पुतले के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह त्विशा को फंदे से उतारने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक के जो बयान दिए हैं, क्या उसकी टाइमलाइन आज के सीन रिक्रिएशन से मैच होती है या नहीं। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम ये भी देखेगी कि त्विशा के गले पर जो निशान थे, क्या वैसे ही निशान इस डमी पुतले पर भी बनते हैं या नहीं।
9: सीबीआई उस लिगेचर यानी बेल्ट की भी जांच कर रही है कि वो कितना वजन झेल सकती थी। देखना होगा कि त्विशा की मौत की मिस्ट्री कब खुलेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
1: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
0: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
2: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: एक मोर्चाबंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है। क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
4: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
0: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं, व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दांव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई? और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
4: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
0: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
5: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
0: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
5: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है
6: तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही

0: हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
0: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
1: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है।
0: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी, वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
0: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
1: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाए?
0: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
1: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
0: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
1: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
0: अगर भारत के अंदर दुस्साहस
2: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
3: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
4: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে
1: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है।
4: জায়গায় যাওয়া তো আমার খুবই আনন্দের বিষয়, কারণ এটা আমার স্বপ্নে ভাবা ছিল না, এবং স্বপ্ন করাটাই কিন্তু যে আমাকে আমার দল এবং মোদিজি এই জায়গায় নিয়ে গেছে আমি খুব খুশি।
1: কলিতা মাঝি কে চেহারে পর আজ ভালে হি মুস্কান, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
5: कविता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
1: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
6: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
1: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनियाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
6: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है,
1: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
6: एक घरेलू कामगार।
2: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही 2 विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
1: अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
7: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
1: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई। विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैलिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
8: जो कम्प्लेन है, कम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
2: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपए इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपए की थी, महीने के हो गए 15 रुपए।
5: पहले 500 रुपए का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर।
5: भरा हुआ सिलेंडर 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर,
5: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है। वो
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक। क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपए आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपए केजी हो गया।
6: 250 रुपया किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे,
6: हाँ।
7: उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं। बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया। लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।

0: चुनावी तैयारियों में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर होंडा गर्दी तक पर सीधी चेतावनी, शोहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल उठाने वाले विधायकों को किया बाहर। नीट और सीबीएसई में सिस्टम फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाला सिलेंडर 11 रुपए महंगा। प्रिशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन किया रिक्रिएट दोनों आरोपियों की मौजूदगी में। जून के महीने में बीजेपी का राजनीतिक शेड्यूल, राजनीति का पारा बहुत बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद बीजेपी इस समय देश से लेकर कम से कम 5 बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कई राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह नेताओं को मिलनी है, कई नेताओं को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विदाई मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं?
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं।
3: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
2: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40 से 60 फीसदी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है, लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
4: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन दे। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
2: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा हैं। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: एक मोर्चा बंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है। क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
5: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना, हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
2: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं, व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दांव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गयी। और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
5: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
2: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
6: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
2: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
6: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
2: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
6: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
2: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है?
6: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
6: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
2: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाएगा?
6: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
2: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे हैं, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
6: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
2: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
6: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
0: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
7: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
8: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে
2: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है।
8: জায়গায় যাওয়া তো আমার খুবই আনন্দের বিষয়, কারণ এটা আমার স্বপ্নে ভাবা ছিল না, এবং স্বপ্ন করাটাই কিন্তু যে আমাকে আমার দল এবং মোদিজি এই জায়গায় নিয়ে গেছে আমি খুব খুশি।
2: কলিতা মাঝি কে চেহারে পর আজ ভালে হি মুস্কান, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के ओसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
9: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
2: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद ओसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें वर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से ओसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
10: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
2: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्दवान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनियाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
10: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है।
2: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
10: एक घरेलू कामगार
0: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही 2 विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
2: हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
11: फॉलो करते ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
2: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
12: जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
0: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं, लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821.50 रुपए हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821.50 रुपए सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपए इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपए की थी, महीने के हो गए 15 रुपए।
5: पहले 500 रुपए का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर
5: 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर था?
5: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है बोझ।
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850-850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपए आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपए केजी हो गया।
6: 250 रुपए किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे,
6: हाँ।
7: उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं, बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया, लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: भोपाल में ट्रिशा शर्मा की मौत का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीबीआई एक बार फिर से पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, पूरी घटना को रिक्रिएट किया।
9: सीबीआई ये रिक्रिएशन इसलिए कर रही है ताकि ट्रिशा की मौत का सच सामने आ सके। सीबीआई की टीम आज ट्रिशा के साथ गिरिबाला सिंह और ट्रिशा के पति समर्थ को लेकर गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। सीबीआई के साथ 2 अलग अलग हाइट के पुतले थे। गिरिबाला के घर पहुंचकर सीबीआई ने रिक्रिएशन शुरू किया। पुतले को फंदे से लटकाया गया समर्थ ने अपने बयान में कहा था कि उसने टिशा को नीचे उतारा, लिहाजा फिर से रिक्रिएट किया गया। समर्थ ने पुतले को नीचे उतारा, गिरबाला ने गले की गांठ खोली। दरअसल सीबीआई जांच कर रही है कि गिरबाला और समर्थ ने जो बयान दिए हैं वो घटना स्थल और परिस्थितियों से मेल खाते हैं या नहीं।
10: सीबीआई आज इस डमी पुतले के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह त्रिशा को फंदे से उतारने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक के जो बयान दिए हैं, क्या उसकी टाइमलाइन आज के सीन रिक्रिएशन से मैच होती है या नहीं। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम ये भी देखेगी कि त्रिशा के गले पर जो निशान थे, क्या वैसे ही निशान इस डमी पुतले पर भी बनते हैं या नहीं।
9: सीबीआई उस लिगेचर यानी बेल्ट की भी जांच कर रही है कि वो कितना वजन झेल सकती थी। देखना होगा कि त्रिशा की मौत की मिस्ट्री कब खुलेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी तैयारियों में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर हुंडा गर्दी तक पर सीधी चेतावनी, शहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल उठाने वाले विधायकों को किया बाहर। नीट और सीबीएसई में सिस्टम फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाला सिलेंडर 11 रुपए महंगा। प्रिया शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन किया रिक्रिएट दोनों आरोपियों की मौजूदगी में। जून के महीने में बीजेपी का राजनीतिक शेड्यूल, राजनीति का पारा बहुत बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद बीजेपी इस समय देश से लेकर कम से कम 5 बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कई राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह नेताओं को मिलनी है, कई नेताओं को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विदाई मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं?
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। क्या जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है? जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा, कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं।
3: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
2: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40-60% संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा, तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
4: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना मैंने कभी नहीं देखा उनको।

0: निवारण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
1: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
2: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: एक मोर्चा बंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है, क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
4: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना, हरेक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
1: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दांव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई? और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
4: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
1: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
5: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
5: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
5: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने

0: सामने खरदूषण है।
1: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है।
0: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
0: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
1: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाएगा?
0: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
1: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जात में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
0: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
1: यहाँ तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
0: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
2: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
3: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
4: না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে
1: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
5: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
1: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकुरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
6: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
1: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का यह अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनियाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
6: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है,
1: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
6: एक घरेलू कामगार।
2: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही 2 विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
1: हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
7: फॉलो करके ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
1: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी,
8: 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैलिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
9: जो कम्प्लेन है, कम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
2: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं कि 850 रुपये इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपये की थी, महीने के हो गए 15 रुपये।
5: पहले 500 रुपये का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर
5: 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का
3: खाली सिलेंडर।
5: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है। वो
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 800-850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 लीटर वाला, 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपये आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपये केजी हो गया।
6: 250 रुपये किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे,
6: हाँ।
7: उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं, बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया, लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: भोपाल में ट्रिशा शर्मा की मौत का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीबीआई एक बार फिर से पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, पूरी घटना को रिक्रिएट किया।
9: सीबीआई ये रिक्रिएशन इसलिए कर रही है ताकि ट्रिशा की मौत का सच सामने आ सके। सीबीआई की टीम आज ट्रिशा के साथ गिरिबाला सिंह और ट्रिशा के पति समर्थ को लेकर गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। सीबीआई के साथ 2 अलग अलग हाइट के पुतले थे। गिरबाला के घर पहुंचकर सीबीआई ने रिक्रिएशन शुरू किया। पुतले को फंदे से लटकाया गया। समर्थ ने अपने बयान में कहा था कि उसने तुषा को नीचे उतारा, लिहाजा फिर से रिक्रिएट किया गया। समर्थ ने पुतले को नीचे उतारा, गिरबाला ने गले की गांठ खोली। दरअसल सीबीआई जांच कर रही है कि गिरबाला और समर्थ ने जो बयान दिए हैं वो घटना स्थल और परिस्थितियों से मेल खाते हैं या नहीं।
10: सीबीआई आज इस डमी पुतले के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह त्विशा को फंदे से उतारने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक के जो बयान दिए हैं, क्या उसकी टाइमलाइन आज के सीन रिक्रिएशन से मैच होती है या नहीं। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम ये भी देखेगी कि त्विशा के गले पर जो निशान थे, क्या वैसे ही निशान इस डमी पुतले पर भी बनते हैं या नहीं।
9: सीबीआई उस लिगेचर यानी बेल्ट की भी जांच कर रही है कि वो कितना वजन झेल सकती थी। देखना होगा कि त्विशा की मौत की मिस्ट्री कब खुलेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी तैयारियों में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर गुंडागर्दी तक पर सीधी चेतावनी, शहीदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल उठाने वाले विधायकों को किया बाहर। नीट और सीबीएसई में सिस्टम फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाला सिलेंडर 11 रुपए महंगा। प्रिशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन किया रिक्रिएट दोनों आरोपियों की मौजूदगी में। जून के महीने में बीजेपी का राजनीतिक शेड्यूल, राजनीति का पारा बहुत बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद बीजेपी इस समय देश से लेकर कम से कम 5 बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कई राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह नेताओं को मिलनी है, कई नेताओं को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विदाई मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं?
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
2: देश के 22 राज्यों तक मोदी राज में पहली बार बीजेपी खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ विस्तार कर चुकी है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने नए लक्ष्य, नई मोर्चाबंदी, नए चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया। जहां जून में जब पारा चढ़ने लगा, सियासी पारा उससे भी तेज चढ़ने की तैयारी है। जून के इसी महीने में भविष्य के 7 राज्यों के चुनाव की रणनीति में बीजेपी जुट चुकी है। इसी महीने 26 राज्यसभा सीट का चुनाव है। इसी जून में 5 राज्यों में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी शासित राज्यों में होना है। इसी जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की तस्वीर साफ होनी है। इसी जून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम सामने आनी है। तो जून में ही सबसे ज्यादा सियासी उर्वरक शक्ति वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में संगठन के पदों का बंटवारा होना है। और जब मोदी 3.0 के 2 साल इसी महीने जून में पूरे हो रहे हैं, तो मोदी राज के 12 साल में देश में बदलाव की बिग पिक्चर जनता के सामने रखी जानी है।
1: ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर।
2: जनता के प्यार की बदौलत ही बंगाल में सरकार बनी, तो जून की पहली तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री हो गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल के कील और कांटे दुरुस्त करने के बाद इसी हफ्ते आसाम में भी कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां बीजेपी लगातार 3री बार सरकार में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं और इसीलिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे। जहां सरकारें बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ।
2: राज्यों में सरकार की टीम मजबूत हो रही है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जो 15 जून के बाद संभव हो सकता है। तो नितिन नवीन की संगठन की टीम के चेहरों का चुनाव लगभग लगभग किया जा चुका है। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम सबके सामने इस महीने होगी, यानी इसी जून में जल्द नितिन नवीन की नई टीम होगी, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मजबूती से दिखेगा, फोकस परफॉर्मेंस पर होगा। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं।
3: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है।
2: इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40 से 60 फीसदी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा, तो वापस बंगाल और असम हारने के बाद जुड़ना चाहता है। लेकिन तब 10 जून को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव आना है। ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर आएगा। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आ रहे हैं।
4: मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन दे। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है।
2: तो इसी जून के महीने में होने वाले राज्यसभा की 22 समेत 2 सीटों पर उपचुनाव, यानी कुल 24 सीट पर राज्यसभा का रास्ता निकलना है, जहां पीएम के आवास पर बैठक करके बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। तो दूसरी तरफ 5 जून से नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का अभियान बीजेपी चलाएगी।
3: दरअसल आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में वो राज्य हैं जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है। पंजाब में बीजेपी कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीती है। हिमाचल में पिछली बार थोड़े से अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। नितिन नवीन अपनी नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के साथ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह और आसान करना चाहते हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: एक मोर्चाबंदी योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी। बंगाल जीत के बाद हिंदू वोट की लहर बीजेपी को नजर आ रही है। क्या वो लहर यूपी तक 2027 में चलती रहेगी? और इसीलिए योगी आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को योगी ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवा को मारने वाले असद की वारदात का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर हमारे सामने खर दूषण है।
5: याद रखना कि व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति फेल कब होता है, असफल होता कब है, जब वह अति आत्मविश्वास में भर करके चलता है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। ये छोटी बातें उसके लिए बाद में बैरियर बन जाती है, ऐन वक्त पर उसको धोखा दे देती है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना।
2: यूं तो मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी परीक्षा में योगी आदित्यनाथ की भी आप बीती है? मेधावी छात्रों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं, व्यक्ति असफल होता है जब वो अति आत्मविश्वास में भर कर चलता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। क्या इस मंत्र का रिश्ता 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोट की एकजुटता के आत्मविश्वास में चलती बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान वाले दाव को नजरअंदाज किया तो 29 सीटें बीजेपी की यूपी में घट गई। और क्या इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 8 महीने पहले अपनी पूरी रणनीति हिंदू वोट पर लाकर केंद्रित कर दी?
5: एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा।
2: तो क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए सही रास्ता पकड़ा है? रास्ता हिंदू वोट जोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति का उदाहरण से समझिएगा। शुक्रवार 29 मई मऊ में विकास की सौगात देते मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं, यज्ञ में व्यवधान डालने वालों की रावण कंस जैसी दुर्गति होगी।
6: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
2: शनिवार 30 मई लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज के लिए खतरा है उसके लिए हिंसा ही अपनानी होगी।
6: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
2: और अब 1 जून बिजनौर में विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन देने के कार्यक्रम में योगी कहते हैं, शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
6: अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
2: सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किसे रावण कह रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री समाज का दुश्मन बताकर हिंसा की बात कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने किसे खरदूषण बताया है और शस्त्र उठाने की बात कही है?
6: आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे असद ने अपने साथियों के संग मिलकर चाकू से मार दिया। असद तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अब असद, नवाब, फरहान, आसिफ जैसे लोगों की सोच के खिलाफ संदेश शस्त्र उठाने का देने लगे?
6: याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे।
2: सबका साथ सबका विकास के तहत हर मुस्लिम को सरकार की योजना का फायदा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम आरोपी किसी हिंदू नागरिक के साथ अपराध करता है तो उस अपराधी की केवल बात होगी या सीधे समाज को चिन्हित करके कटघरे में खड़ा किया जाए?
6: भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
2: एक तरफ सूर्या हत्याकांड का जिक्र करके बिना नाम लिए हिंदू वोट को जाति में ना बटने देने की जुगत में योगी लगे हैं, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचार को याद दिलाकर मौलाना मौलवी से सवाल करते हैं।
6: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को।
2: यहां तक किसी भाषण में मुख्यमंत्री पाकिस्तान तक को लाकर ब्रह्मोस से अस्तित्व तक खत्म कर देने की बात कहते हैं।
6: अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
0: पर बंगाल की जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, कलिता मांझी भी इसमें शामिल है। कलिता 12 वर्ष पहले बीजेपी से जुड़ी और आज कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे के घरों में काम करने वाली कलिता चुनाव लड़ने तक काम करती रही और आज कैबिनेट मंत्री है।
7: আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন?
8: না না না, আমি বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী।
2: राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती है बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझकर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है।
9: कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए।
2: कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी, फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसकोरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। दो साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद थंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है।
10: एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार।
2: कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया है। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती है बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनियाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
10: पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है।
2: इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है।
10: एक घरेलू कामगार
0: ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो गई, लेकिन क्या उनके जीते हुए सांसद और विधायक भी हाथ से जाने लगे हैं? कारण यह है कि टीएमसी की मीटिंग थी, 80 विधायकों को बुलाया गया, 60 गायब हो गए। इससे पहले ही दो विधायकों ने तो स्पीकर को शिकायत भी कर दी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके टीएमसी ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का चयन कर लिया।
2: अब हालत ये कि जीते हुए विधायक भी ममता की बुलाई बैठक का बहिष्कार करने लगे। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ हुई हिंसा के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन की अपील भी बेअसर दिखी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 4 मई को नतीजों के फौरन 2 दिन बाद टीएमसी की बैठक बुलाई गई थी। 6 मई को बैठक बुलाई गई, विधायकों की अटेंडेंस लगी तो 10 एब्सेंट थे। 19 मई को बैठक बुलाई गई, फिर 35 विधायक गायब मिले। 31 मई को तो बैठक में 60 विधायक अनुपस्थित थे। टीएमसी की झोली में कुल है 80, इसमें भी 60 विधायक गायब होने लगे और तो और खुलेआम नाराजगी भी जताने लगे।
11: फॉलो करते ही किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी, तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया।
2: अब टीएमसी के अंदर बगावत का माहौल है या नहीं अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब टीएमसी के अंदर भी नेता विपक्ष के चयन में हुए फर्जीवाड़े का विरोध होने लगा। मामला ये कि 4 मई को नतीजों के बाद 6 मई को टीएमसी की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी गई कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिराद हकीम को मुख्य सचेतक बनाया जाए। स्पीकर ने पार्टी की आधिकारिक स्वीकृति मांगी। 13 मई को सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी। सचिवालय ने फिर विधायकों की सहमति पूछी। 19 मई को 70 विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी गई, जबकि 19 मई की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे भी नहीं थे। गैर मौजूद विधायकों ने चिट्ठी में अपने दस्तखत देखे तो सवाल खड़े हुए। चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहरुल इस्लाम सहित कुछ अन्य विधायकों के दस्तखत कथित तौर पर फर्जी थे। बहरुल इस्लाम ने कहा भी कि वो बैठक में मौजूद नहीं थे।
12: जो कम्प्लेन है, कम्प्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर, जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है, ये बहुत बंगाल के लिए।
0: और अब आपके हमारे यानी कि जनता के हित की खबर। गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, छोटे रेहड़ी ठेले वाले दुकानदार और बेरोजगार युवा सबसे अधिक खाना बनाने के लिए छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं, लेकिन अब वही छोटू सिलेंडर 11 रुपए महंगा हो गया। 2 महीने में 323 रुपए छोटू के दाम बढ़ गए।

0: सिलेंडर छोटा है, महंगाई की गैस लेकिन इतनी भर चुकी है कि अब प्रवासी मजदूर, गरीब, ठेले रेहड़ी वाले और गांव कस्बे से दूर शहर में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों के जीवन में यही छोटू सिलेंडर सबसे बड़ी महंगाई की वजह बन चुका है। वजह ये कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 2 महीने में 323 रुपए बढ़ गया। अप्रैल में 51 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, 1 मई को 261 रुपए और अब 1 जून को 11 रुपए महंगा होकर यह 821 रुपए का मिलने लगा। जयपुर की अर्चना और रजनी जैसे मजदूर छोटू सिलेंडर की महंगाई से वापस चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं।
1: चूल्हा से खाना बनाते हैं, गैस के दाम घटाना चाहिए।
2: महंगाई होने के वजह से बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चे लेके परदेश में डले हैं, कुछ कर नहीं पाते, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है।
0: इसी मजबूरी में अब आपको वो छोटे चाय वाले रोटी पराठा सड़क किनारे बनाकर खिलाने वाले मिलेंगे, जिन्हें सरकारी रेट पर नहीं बल्कि 2 गुने या 3 गुने दाम पर इस सिलेंडर में गैस भराने को मिलती है। जिन्होंने रोटी पराठा चाय का दाम बढ़ाया तो ग्राहक कम होने लगे, चोट दोनों तरफ से केवल गरीब या आम आदमी को लगी है।
3: इस 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में आज बढ़कर 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। 2 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 11 रुपए अब इसके दाम और बढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे चाय की दुकान हो, ढाबे हो, होटल वाले हो, वो करते हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो सके। अब इसकी कीमत जो है इस कदर बढ़ी है कि अब ये 821 रुपए 50 पैसे सिर्फ ये 5 किलो का सिलेंडर हो चुका है। जाहिर इससे फर्क कहाँ पड़ेगा, जेब पर पड़ेगा। पहले कितने में खरीदते थे, अभी कितने पड़ता है?
4: पहले हम 400 का आता था, 500 में खरीदते थे। अब यो एजेंसी वाले बताते हैं 850 रुपए इसका गवर्नमेंट चार्ज हो गया है इसका एजेंसी का, तो अब यो 1200-1300 में यहाँ पहुँचाते हैं। चाय का रेट बढ़ने से ग्राहक भी थोड़े कम हुए हैं।
3: पहले कितने की थी महीने भर पहले और अब कितना?
4: महीने भर पहले 10 रुपए की थी, महीने के हो गए 15 रुपए।
5: पहले 500 रुपए का खरीदते थे
3: भरा हुआ सिलेंडर।
5: भरा हुआ सिलेंडर 500 से कम में ही आता, 470 रुपए में आता था।
3: नहीं, भर के 5 किलो गैस के साथ?
5: गैस के साथ तो महंगा आता करीब 1100 रुपए का।
3: खाली सिलेंडर था?
5: खाली सिलेंडर 500 रुपए का, बाकी 1100 रुपए का।
3: अब
5: तो और महंगा हो गया, 1900-2000 का लगभग आ रहा है।
3: भर के या खाली वाला?
5: अब भर के आ रहा है 1900-1800 रुपए मान लो।
3: आप उनको बोलते नहीं कि बाजार में तो 850 रुपए का ही है?
5: लेकिन नहीं मानती है पब्लिक, क्या करा जाए, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। इसमें हर चीज पे महंगाई कर दी, लेकिन खाने पीने की चीज पे महंगाई नहीं करना चाहिए सरकार के लिए।
3: अब आप कैसे मैनेज करते हैं सिलेंडर वगैरह? जब
5: सिलेंडर के आप तो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा इस छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल देश में बेरोजगार युवा करते मिलते हैं, लेकिन रांची में आप हाल सुनेंगे होश उड़ जाएगा। हमारे नौजवान गैस की महंगाई से दावा है केवल एक वक्त का खाना बनाकर खाने को मजबूर हो गए हैं।
6: रांची के इस वक्त हम लालपुर के इलाके में हैं, जहां हॉस्टल्स का जाल फैला हुआ है और अलग अलग जगहों से यहां पे एस्पिरेंट्स आते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी के तलाश में तैयारियां करते हैं। और हॉस्टल्स में ये जो छोटू गैस सिलेंडर है, यही लाइफलाइन है। 5 किलो वाला जो ये छोटे सिलेंडर्स हैं, यही लाइफलाइन होते हैं। और ये जिस तरह से महंगा हो रहा है कि 2 जून की रोटी इनके लिए अब मुश्किल होते जा रही है।
7: पहले जो कि 100 रुपए आसपास था, हाँ। लेकिन कुछ दिन से 250 रुपए केजी हो गया।
6: 250 रुपए किलो?
7: बिल्कुल।
6: तो किलो के हिसाब से भरवाते हैं?
7: जी जी,
6: क्योंकि ज्यादा भरवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा।
7: जी,
6: तो फिर कैसे चारों समय का बनाते हैं खाना?
7: नहीं नहीं, पहले क्या था कि सुबह सुबह अपना रोटी भुंजिया बना लेते थे, उससे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। बट अब क्या होता है कि जाते हैं दुकान से कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रहते हैं, और शाम में भी वही थोड़ा बहुत केला वाला कुछ ब्रेड व्रेड लाते हैं, वही खा के रह जाते हैं। बस एक टाइम का खाना बना पाते हैं।
0: कम तेल खर्च हो, विदेश यात्रा ना की जाए, वो सब तो ठीक था, जनता ने मान भी लिया। लेकिन जब छोटे सिलेंडर की महंगाई बढ़ी तो कम खाना तक बेरोजगारों को खाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा गया था। क्या इनके बारे में सरकार सोचेगी?
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी तैयारियों में जुटे यूपी के सीएम का सख्त बयान, गाय से लेकर गुंडागर्दी तक पर सीधी चेतावनी, शहदों सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हार के बाद टीएमसी में हाहाकार, ममता के सामने पार्टी बचाने की चुनौती, संगठन पर सवाल उठाने वाले विधायकों को किया बाहर। नीट और सीबीएसई में सिस्टम फेल, री इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश। शिक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। जनता को महंगाई का एक और झटका, कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा, 5 किलो वाला सिलेंडर 11 रुपए महंगा। प्रिशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज, क्राइम सीन किया रिक्रिएट दोनों आरोपियों की मौजूदगी में। जून के महीने में बीजेपी का राजनीतिक शेड्यूल, राजनीति का पारा बहुत बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को जीतने के बाद बीजेपी इस समय देश से लेकर कम से कम 5 बड़े राज्यों में बीजेपी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी जून के महीने में कई राज्यों के मंत्रिमंडल में जगह नेताओं को मिलनी है, कई नेताओं को संगठन में कुर्सी मिलनी है। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विदाई मंत्रिमंडल और संगठन दोनों से हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि वो बहुतों को फिर से चौंकाने वाले हैं?
1: एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर